0: दिल्ली दौरे पर सीएम योगी पीएम मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच में राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें रांची जाना चाहिए था। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बात। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा, मांग पूरी नहीं तो घेरेंगे विधानसभा। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्य में उफान पर नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। अब बात रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के, जहां पर अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हैं। इस बीच में बातचीत का दौर शुरू हुआ है, लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हुई। और ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की तब तक नाराजगी दूर कर पाएगी, या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है। अब तक नहीं निकला कोई समाधान। राज्य में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ही लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से, वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहाँ बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा,
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहाँ से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवाज घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है। बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़ने का।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए, और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
0: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
0: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। ये छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर डटे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में उन छात्रों का दर्द आपको सुनना चाहिए जो यहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं।
8: छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम मनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
9: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा, कितने दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिन्हा कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
11: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
12: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो की रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
10: जी 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएससी की भी, जेपीएससी के भी तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
12: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
10: जी मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वह ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक। और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जॉब हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
12: और आपने 14वीं जेपीएससी भी दी?
10: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज 1 दिन के लिए कम हो गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है। मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
11: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
9: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा। फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं यार, पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया। हम मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
12: आपने कितनी परीक्षाएं दी
9: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं।
12: 7 साल हो गए,
9: सात साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
12: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
9: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है और मेरे चार बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है। एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जे होमगार्ड से लेकर जेपीएससी तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
11: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
12: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता।
9: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है। यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया। हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे, पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया। एक दो सीट मात्र बचाता है, सबको बेच देता है, एक दो सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है, बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
12: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ।
9: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी। हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ। मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते। किस मुंह से जाएंगे पापा को, इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ये सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
11: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है और अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।

0: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
1: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम से संवाद किया। लगभग 47 मिनट के अपने संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बातचीत भी की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की, उनसे शिक्षा रोजगार से जुड़े हुए सवाल किए।
2: हाउ आर यू, हाउ इज प्रयागराज, आपके परिवारों से आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
3: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
2: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
1: अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात, पुलिस कमिश्नर का तबादला उस समय हुआ है जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
4: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
5: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पूछगिछ कल आई है कि 8 जने इकट्ठे होके जंतर मंतर दिल्ली गए सी, जो प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
4: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
6: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे। जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था, इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
7: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
4: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे ISI समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
8: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे तां ए आ मनसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के यह कह देंदे भी यह तां होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
7: अपनी टाइमिंग देखे, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
4: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
1: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत के एक पोस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज है, जहां ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी को लेकर बातचीत की है।
4: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
9: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
4: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी? आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है? क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी मां रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांवड़ यात्रा की, जिसके अलग अलग रंग अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, तो दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों का सम्मान किया।

0: श्रावण मास की दशमी तिथि पर मेरठ में भोले के भक्तों पर श्रद्धा से पुष्प बरसाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद अरुण गोविल भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां बीजेपी के तमाम नेता कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए। इस मौके पर कांवड़ यात्रियों के हर हर बम बम के उद्घोष से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान हो उठा। कांवड़ यात्रा में निकली झांकी में बाबा के गण विभिन्न स्वरूपों में भोले की मस्ती में डूबे दिखे। कोई भगवान भोलेनाथ की यात्रा में झूम रहा था तो कोई कार्तिकेय गणेश के स्वरूप में शिव परिवार के प्रति श्रद्धा दिखा रहा था। भूत प्रेत के स्वरूप में भी बाबा के गण रथ पर सवार रहे।
1: सनातनियों को लगता है कि सनातन की सरकार है, लोगों को लगता है कि सनातन का ध्यान रखने वाली, सनातन की चिंता करने वाली सरकार है। इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कांवड़ की हर साल करोड़ों की संख्या में बढ़ रहे हैं। इस बार लग रहा है कि 4-4.5 करोड़ कांवड़ती इस हाईवे से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जब से सरकार बनी है हर साल आते हैं और हर साल आके कांवड़तियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और इस बार भी उसी क्रम में उन्होंने पुष्प वर्षा की है।
0: उधर कांवड़ियों के सम्मान की एक तस्वीर दिल्ली से भी आई, जहां सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते दिखे।
2: एक एक हमारा कांवड़िया भोले के रूप में हम सब के लिए बहुत ही पूज्य है, सम्मानित है। और मैं देख रही हूँ कि बहनें भी बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर के आ रही हैं।
0: सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां भोले के भक्तों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: बात पाकिस्तान की करते हैं, जहां हर बार मुंह की खाने के बाद क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर कोई साजिश रच रहा है? क्या सऊदी अरब के बाद तुर्की को गठबंधन में शामिल करने का कदम इसी साजिश का हिस्सा है?
4: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता यह है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
5: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتمم
4: ایران کی سنسد کی راشٹریہ سرکشا اور ودیش نیتی سمیتی کے سدسیہ ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا۔ آج تک پیو
3: وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا, خبروں کا سلسلہ جاری ہے, آپ دیکھتے رہیے آج تک.
6: پریزنٹڈ بائی پتنجلی دنت کانتی ٹوتھ پیسٹ, کمپلیٹ اورل ہیلتھ کا سچ.

की प्रधानमंत्री मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक, विधानसभा चुनाव पर चर्चाओं के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज, कहा युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया, बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की, रिजिजू बोले उन्हें जाना चाहिए रांची। रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत, अब तक की वार्ता बेनतीजा, प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा मांग पूरी नहीं होने तक करेंगे प्रदर्शन। 15 अगस्त पर आतंकवादी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल, एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा।

0: आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। रांची में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच में ये बैठक होनी है। इससे पहले 7 और 8 अगस्त को भी बातचीत के दो दौर हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही दौरों में छात्रों की मांगों पर कोई सहमति अभी तक नहीं बन पाई। ऐसे में आज होने वाली बैठक में बहुत ज्यादा सबकी निगाहें हैं और उम्मीदें भी अहम माना जा रहा है इस बैठक को। प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। छात्रों ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यानी कि आज की बैठक न सिर्फ सरकार और छात्रों के बीच के गतिरोध को खत्म करेगी और बहुत ज्यादा उम्मीदें इससे हैं, बल्कि इस बातचीत के नतीजे पर आगे के आंदोलन की दिशा भी तय होगी। तो कुल मिलाकर इस लिहाज से देखा जाए तो आज की जो बातचीत है जो 12 बजे होने जा रही है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी बता दें कि ये तीसरे दौर की बातचीत है। 7 और 8 तारीख को जो बातचीत हुई थी वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है और आज की बैठक के बाद तय किया जाएगा कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्योंकि विधानसभा घेराव की तैयारी उसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र करेंगे, इसका ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। और इसी बीच रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की सेहत को लेकर भी अब चिंताएं बढ़ने लगी। अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों का डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल चेकअप किया। डॉक्टर्स ने सभी छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की है और उनकी स्थिति का जायजा लिया है। लगातार भूख हड़ताल के बीच छात्रों की सेहत पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि भूख हड़ताल को कई दिन बीत चुके हैं। और इसी बीच डॉक्टर्स की पूरी टीम पहुंची थी मेडिकल जांच के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब पूरे देश की निगाहें इन छात्रों पर टिकी हुई है। दो दौर की बातचीत होने के बावजूद भी छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है तीसरे दौर की, ये बहुत ही ज्यादा खास होने जा रही है, क्योंकि आगे की रणनीति इसके बाद ही तय होनी है। तो रांची में चल रहे आंदोलन की हम बात करें, जहां अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हुए हैं हड़ताल पर। और इसी बीच बातचीत का जो दौर शुरू हुआ, अभी छात्रों की नाराजगी लेकिन दूर नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की नाराजगी को दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
1: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन? आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी? बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है, अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने एनएसयूआई और जेएमएम के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल आईडी और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
2: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ बदलते दिन के साथ ही लगातार बढ़ती जा रही है और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहाँ बढ़ गया है।
1: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
3: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
2: होगा।
3: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
2: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
3: जी जी जी, 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
1: उधर मामले पर सियासत जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
4: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग टिंकर के जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़नेगा।
1: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
5: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
1: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
6: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए, जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
1: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग पर अभी भी डटे हुए हैं। पूरे घटनाक्रम के बीच उन छात्रों का दर्द भी सुनना चाहिए जो यहां भूख हड़ताल कर रहे हैं। देखिए,
7: जिस देश में छात्रों की इज्जत है, जिस देश में नौजवानों के पास नौकरी हो, एक सम्मानजनक रोजगार हासिल कर सके, ये देश हम मनाएंगे इस छात्र आंदोलन से।
8: हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे, पापा कितना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए। घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
9: संविधान के दायरे में रह करके चलना है, अगर सिन्हा ने कुछ भी नहीं करना है तो फिर मैं प्रशासन का क्यों सुनूं? फिर हम लोगों ने डट के मुकाबला किया प्रशासन से और लड़ा, उसके बाद हमें ये सारी चीजें जो टेंट आप देख रहे तब जाके हमें बनाने को मौका।
10: सब्र टूट रहा है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, आशाएं धुंधली हो रही हैं और लगातार अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। इसी अनशन के मंच पर दो छात्राएं भी हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, 27 साल की हबीबा और 28 साल की सरिता। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8-10 सालों से ये परीक्षाएं देते हैं लेकिन कहीं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पता चलता है कि नौकरी बिक गई।
11: पिछले 4 दिनों से जो छात्र अनशन पर बैठे हैं उसमें 27 साल की हबीबा भी हैं, बोकारो के रहने वाली हैं। अब कितनी परीक्षाएं इस 27 साल की उम्र में हबीबा ने दे दी, प्रतियोगी परीक्षाएं?
9: जी, 2017 से लगातार मैं देती आई हूं, तो जेएसएससी की भी, जेपीएससी के भी, तो हो गए होंगे 15-20, इतने प्लस तो हो ही गए होंगे।
11: कितनी परीक्षाओं में आप पास हुई, क्वालिफाई कर गए?
9: जी, मैंने पंचायत सचिव का एग्जाम दिया था, 2017 की वैकेंसी थी तो उसमें मैं पास हो गई थी। फिर उसमें सेकेंड एग्जाम था हिंदी टाइपिंग का, तो उसमें भी क्वालिफाई हुई। फिर डीवी भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो ऐसे भी तो डिले कर ही रही थी, तुरंत नहीं कर रही थी एग्जाम वगैरह। फिर 1 साल लगे, फिर 2 साल लगे उस एग्जाम को। उसके बाद जब उसका रिजल्ट देना था तो 5 साल तक प्रोटेस्ट करना पड़ा, 5 साल तक, और जिसमें मेरे भैया भी थे, उनका भी जो हुआ था, और भी 3,000 अभ्यर्थी थे सारे, और उसमें मैं भी थी।
11: और आपने 14वीं JPSC भी दी?
9: जी बिल्कुल, बट उस एग्जाम में मेरी एज एक दिन के लिए कम हो गई थी, जिसकी वजह से हो नहीं पाई। लेकिन फिर और एक चीज मैं बता दूं कि उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, मेरा थर्ड लिस्ट में हो जाएगा, लेकिन 3 साल से अभी तक से आया नहीं है।
10: 28 साल की सरिता की कहानी तो बिल्कुल झकझोर कर रख देने वाली है। गरीब परिवार की सरिता ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर पढ़ाई की, होमगार्ड से लेकर JPSC तक की परीक्षा दे चुकी हैं, 2019 से परीक्षाएं दे रही हैं, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिल रही, घर के हालात भी ठीक नहीं है।
8: करते करते अब तो मेरा उम्र भी निकलते जा रहा है, 28 साल होने जा रहा है, 28 में पार होने जा रहा है, अब 29 में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 साल में मेरा एज भी खत्म होने को रहेगा, फिर हम तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। यार ये पढ़ाई के चक्कर में हम आगे कुछ और पढ़ाई नहीं किया, मेरा घर की स्थिति बहुत खराब था सर, इसीलिए हमको यही लगता था कि एक जॉब ले ले, उसके बाद जो आगे के भविष्य होगा आगे देखा जाएगा।
11: आपने कितनी परीक्षाएं दी
8: अभी तक सर? हम 2019 से परीक्षा दे रहे हैं, 2019 हम तैयारी कर रहे हैं।
11: 7 साल हो गए?
8: 7 साल होने जा रहा है, आज तक एक रिजल्ट नहीं हो पाया। हम एकदम नीचे लो लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कर चुके।
11: आपके परिवार के बारे में बताइए मुझे।
8: सर मेरा परिवार में मेरा पापा सिर्फ है, और मेरे 4 बहनें हैं, तो सबका शादी हो गया है, एक छोटा भाई है, तो हम अपना पढ़ाई करने के चक्कर में मेरा घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो भाई का भी शादी करवा दिया कि हम पढ़ लेंगे कुछ कर लेंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, घर का भी स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का परिस्थिति इतना गंदा है ना, इतना गंदा है ना कि सर हम आज तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पता है सर, हम जैसे होमगार्ड से लेकर JPSC तक का कर चुके, अगले बार हम होमगार्ड का भी रनिंग कर चुके।
10: सरिता की दर्द भरी कहानी सुनिए और समझिए कि इस देश में एक गरीब विद्यार्थी जब पढ़ लिख जाता है और फिर नौकरी नहीं मिलती तो क्या स्थिति होती है। सरिता आज अपने आप को कोस रही है और सवाल पूछ रही है कि कहीं पढ़ लिख कर उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं कर लिया।
11: जिम्मेदारियों का बोझ बहुत होता है ना सरिता?
8: जिम्मेदारी का बोझ बहुत है सर, एक गरीब परिवार से रहना ना बहुत मुश्किल है, यही रीजन था कि हम बाहर पढ़ने के लिए निकल गए, घर में उतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो सोचे कुछ नहीं कम से कम हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा मैं तो पढ़ के भी गुनाह कर दी हूँ ऐसा लगने लग गया, पढ़ाई पे से भरोसा उठ गया, भगवान पे से भरोसा उठने लग गया, हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का कोई शौक नहीं अपना स्वास्थ्य कोई खराब करना चाहेगा, लेकिन भी क्या करें, मजबूर कर दिया ये सरकार। जब से ये सरकार आया उस समय से तो कुछ ज्यादा ही होने लगे, पहले होता था, हम लोग भी जानते थे पहले होता था, लेकिन ये सरकार आया तब से हर एक वैकेंसी अब बिकने लग गया, 1-2 सीट मात्र बचाता है, सबको भेज देता है, 1-2 सीट बचाता है, गरीब बच्चा को दे देता है और बोलता है हम क्लीन एग्जाम लिए हैं।
11: सोच रहे हैं आपके पापा अगर आपको ऐसे रोता हुआ देखेंगे तो उनको कितना तकलीफ?
8: वो बोले थे हमको कि तेरा स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, तुम कब तक भूखा रहेगी, हम बोले जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक भूखा रहेंगे, मैं क्या करूँ, मैं रूम में भी तो रह के घुट घुट के मर ही रहे थे, घर से हम लड़ाई करके पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब घर जाने का भी रास्ता नहीं, हम तो घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे पापा को, इतना दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए, घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया है।
10: आशुतोष मिश्रा, रांची, आज तक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू होने जा रही है, अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।
12: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है, मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में संवाद किया है और अपने करीब 47 मिनट के संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बात की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल गांधी ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र और छात्राओं से बात की है, उनसे शिक्षा और रोजगार से जुड़े तमाम सवाल किए।
13: आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
14: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
13: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
0: उधर यूपी के बुलंदशहर से आई तस्वीरों पर भी सियासत हो रही है, जहां पप्पू यादव पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया।
15: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे।
16: इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
15: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात पंजाब की करेंगे, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस कमिश्नर का तबादला उस वक्त हुआ जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
17: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
18: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पूछगिछ कल आई है कि 8 जने इकट्ठे होके जंतर मंतर दिल्ली गए सी जो प्रोटेस्ट चल रहे सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दिता गया सी और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
17: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
19: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे। जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था, इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे। और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
20: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
17: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
21: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे ता ए आ मंसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये ता होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
20: अपनी टाइमिंग देते हैं, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी लाठियां चली, पेलेट चली और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
17: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत की एक पोस्ट ने हलचल तेज कर डाली, जहां ऋषभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी की बात कर रहे हैं।
17: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम

0: वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
1: बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
0: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी, आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: क्या आपकी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है? तमाम प्रयास के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? क्या है शीघ्र विवाह का उपाय? सावन में शीघ्र विवाह का कैसे मिलेगा वरदान? क्या होगा पूजा का विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र में।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: I've lived through all this, what I'm seeing. That's why I came here.
3: Good concept. Happy that has happened.
4: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
5: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
6: Best part, it is a perspective and narrative of the nation.
7: It's brought back old memories.
8: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

और छात्रों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत, अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा मांग पूरी नहीं होने तक करेंगे प्रदर्शन। 15 अगस्त पर आतंकवादी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल, एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा। और दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरी राज्यों में उफान पर नदियां, खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात, अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक, विधानसभा चुनाव पर चर्चाओं के कयास। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज, कहा युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया, बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की, रिजिजू बोले उन्हें जाना चाहिए रांची।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं जलंधर से बड़ी और अहम खबर के साथ। दिन दहाड़े दंपत्ति के साथ कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया जरा देखिए, क्योंकि दो हथियारबंद बदमाशों ने शिव विहार में पति पत्नी को पहले बुरी तरह से डराया और उसके बाद बाइक सवारी लुटेरे आसानी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
1: बेखौफ लुटेरे महिला की चेन झपट कर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। घटना है जालंधर के शिव विहार इलाके की, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक दंपति को लूट लिया। सुबह करीब 8 बजे गली में पति पत्नी पैदल गुजर रहे थे, तभी बाइक पर आए दो बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। दोनों ने हथियार निकालकर दंपति को धमकाना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दंपति घबरा गया। पति पत्नी मदद के लिए लगातार बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। इसी दौरान बदमाशों ने महिला के गले से चेन झपटी और बाइक की तरफ भाग निकले। दोनों लुटेरों ने चेहरे ढक रखे थे। वारदात के बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिससे पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। दिन के उजाले में हथियार दिखाकर हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान और तलाश में जुटी है। इस वारदात ने एक बार फिर सड़क पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और उधर मुजफ्फरनगर से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बुढ़ाना इलाके में एक शख्स पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया था। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में हत्या की वजह अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित की हैं। तो पूरी ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। किस तरीके से बेरहमी के साथ शख्स की हत्या की गई है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको बता दें कि गंभीर हालत में शख्स को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे सूरत से, क्योंकि सड़क हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं। कैनाल रोड पर तेज रफ्तार कार अचानक से बेकाबू हुई। कार सीधे सड़क के किनारे लगी हुई रेलिंग में जाकर टकरा गई और घटना इतनी जबरदस्त थी, इतनी जोरदार ये टक्कर थी कि कार हवा में उछलकर पीछे की तरफ मुड़ गई थी। गनीमत यह रही कि इस हादसे के वक्त पीछे से आ रहे ऑटो और बाइक सवार कार की चपेट में नहीं आए। और ये पूरी घटना जो पास में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था उसमें कैद हो गई है, और उसके बाद ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। बागेश्वर में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात अब ऐसे हैं कि बीमार और बुजुर्गों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीणों ने उन्हें कुर्सी में बांधा और पीठ पर लादकर करीब 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और तब जाकर सड़क मार्ग से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीण लंबे समय से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से जल्द निर्माण की गुहार लगातार लगाई जा रही है। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरह के हालात रोजमर्रा की जिंदगी में यहां पैदा होते हैं, और खास तौर से अगर कोई इमरजेंसी हो। इस बुजुर्ग को कमर पर बांधकर कुर्सी से बिठाया हुआ था, और आपको बता दें कि लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद सड़क मार्ग से अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया जा सका। भरूच से चलती ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग की कोशिश में एक युवक की मौत की खबर आई है। पानौली रेलवे स्टेशन के पास चलती हुई ट्रेन में दरवाजे के पास सफर कर रहे युवक से मोबाइल को छीनने की कोशिश हुई। इसी दौरान युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन से नीचे जा गिरा। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। और ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से फोन स्नैच किया गया और वो शख्स अपना संतुलन खोते हुए अचानक से नीचे गिरा। रफ्तार में ट्रेन थी और इस शख्स के घायल होने के बाद हालांकि तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। हरिद्वार में कांवड़ मेले के बीच 500 हॉर्न वाली बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। फरीदाबाद के अमन की इस मॉडिफाइड बाइक को पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर रोककर सीज कर दिया। बाइक को कनखल थाने ले जाते वक्त किसी ने इसका वीडियो बना लिया था जो अब वायरल हो चुका है। पुलिस के मुताबिक बाइक में बड़े पैमाने पर मॉडिफिकेशन किया गया था जिसके चलते उसका चालान भी काटा गया है। तो एक दो हॉर्न नहीं है, 500 हॉर्न लगाए गए हैं। और जो पुलिस वाला शख्स आपको दिख रहा है इस बाइक को चलाता हुआ, ये सीज करने के दौरान बाइक को ले जाता हुआ पुलिसकर्मी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू होने जा रही है, अब आपको जीवन की नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना होगा।
2: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में संवाद किया है और अपने करीब 47 मिनट के संवाद में राहुल गांधी ने कुछ छात्रों से बात की और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल गांधी ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्रों छात्राओं से बात की है, उनसे शिक्षा और रोजगार से जुड़े तमाम सवाल किए।
3: आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि हाँ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। आंकड़ा मैं आपको देता हूं, 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है।
4: आज मैं ब्लिंकिट में काम करता हूं 10 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूं, इंडियन आर्मी का एग्जाम दिया, 1 नंबर से मैं बच गया।
3: ये कह रहा है कि शिक्षा लेने के लिए मुझे ब्लिंकिट में बंधुआ मजदूर जैसे काम करना पड़ा, और उसके बाद मजदूरी करने के बाद 21वीं सदी की मजदूरी करने के बाद पेपर लीक होता है, और कोई अमीर बच्चा, अमीर परिवार पेपर खरीद के मेरे फ्यूचर को खत्म करता है।
0: और अब बात पंजाब की करेंगे, जहां अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को हटाने पर सियासत तेज हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस कमिश्नर का तबादला उस वक्त हुआ जब उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में आईएसआई की साजिश का खुलासा किया था।
5: अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 48 घंटे बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुल्लर दिल्ली के जंतर मंतर में आतंकी साजिश का खुलासा कर रहे थे।
6: पेट्रोल बॉम्ब वाला मॉड्यूल है, इहदे च बड़ी इंपोर्टेंट पुछगिछ गल आई है कि 8 जने इकट्ठे हो के जंतर मंतर दिल्ली गए सी जदों प्रोटेस्ट चल रहा सी उत्थे, और उत्थे भी इन्हां नूं टास्क दित्ता गया सी, और पाक बेस्ड हैंडलर ने इन्हां नूं उत्थे प्रोवाइड कराईआं सी बॉटल्स ते पेट्रोल वगैरह।
5: पंजाब सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर गुरप्रीत सिंह भुल्लर का तबादला कर दिया। उनकी जगह डीआईजी बॉर्डर रेंज हरमनबीर सिंह को अमृतसर पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर अब विपक्ष आपको घेर रहा है।
7: पर जब भुल्लर साहब की ट्रांसफर की, इसकी टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। वही भुल्लर साहब आज इनके ब्लू वाइट बॉय थे, जब कोई भी पंजाब में कोई काम कराना था इन्हीं भुल्लर साहब से कराते थे, और जब भुल्लर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि उन्होंने कोई बम बनाते लोग पकड़े हैं जो दिल्ली जंतर मंतर पे गए थे, तो फिर तार हिल गई दिल्ली तक। केजरीवाल को नींद नहीं आई रात को, सोया नहीं केजरीवाल कि भाई कहीं भुल्लर साहब पर्दा उठाना दे और पता ना चल जाए भी कौन कौन इन्वॉल्व था, किस किस इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए।
8: आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ हुई है कि क्या परेशानी हुई है कि इनको बदलना पड़ा? इसमें तो जो ऐसे लोग काम करते हैं, अफसर अच्छा काम करते हैं, उनको तो अवार्ड देना चाहिए कि ऐसे लोग पकड़ लें ताकि वो आगे भी कुछ ऐसा ना करें।
5: बीजेपी ने भुल्लर के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने खुलासा किया कि इस प्रदर्शन के पीछे आईएसआई समर्थित मॉड्यूल सक्रिय है। इस पर एक दिन पहले अमृतसर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया था। पुलिस ने कहा था कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कुछ दावे और वीडियो भ्रामक हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
9: बड़े शानदार अफसर ने हर सरकार च लग दे रहे हैं। जे उन्होंने कोई गल सच्ची दसती सी, जे तां ए आ मनसूबा सी भई उत्थे कोई ना कोई ऐसी वारदात केजरीवाल करवा के उत्थे पेट्रोल बंब सटा के मुड़ के ये कह देंदे भी ये तां होम मिनिस्ट्री दे अंडर अमित शाह जी दे अंडर सी, देखो आ की कराता उरे। एदे विच होर गहरी जांच होनी चाहीदी आ।
8: अपनी टाइमिंग देते हैं, पहले अपना कमिश्नर बदला उन्होंने एक दो दिन पहले, और उसके बाद बल प्रयोग हुआ, लाठी चार्ज हुआ, कील लगी, लाठियां चली, पेलेट चली, और महिलाओं के साथ हुआ। तो मैं समझता हूं वो अपनी टाइमिंग देख रहे हैं और अपनी टाइमिंग से उस टाइमिंग को मिला रहे हैं।
5: अब भुल्लर को हटाने की क्या वजह थी ये साफ नहीं हुई, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर पंजाब में सियासत तेज है। आज तक ब्यूरो।
0: उत्तराखंड में क्रिकेटर ऋषभ पंत की एक पोस्ट ने हलचल तेज कर डाली, जहां ऋषभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में हो रही परेशानी की बात कर रहे हैं।
5: क्रिकेटर ऋषभ पंत के इस ट्वीट ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें वो उत्तराखंड के सीएम से राज्य में जमीन लेने को लेकर हो रही परेशानी का जिक्र कर रहे हैं। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे यहां रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है। मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया जमीन अधिग्रहण में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल स्पष्टता न होने से ये एक नाइटमेयर बन गया है। मैं अपने पहाड़ी लोगों के बीच वापस लौटना चाहता हूं और राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहता हूं। 3 साल से कोशिश करने के बावजूद उन्हें अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। राज्य से कोई मुफ्त जमीन या तोहफा नहीं मांग रहे हैं। कम से कम मैं अपने और हमारे राज्य में अपना पहला घर बना सकूं। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है। पंत के इस ट्वीट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब भी दिया। प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। आपके द्वारा उठाए गए विषय के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, वे शीघ्र ही आपसे संपर्क कर नियमानुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
10: बिल्कुल स्वागत है, जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे, कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से।
5: अब सवाल ये कि आखिर ऋषभ को ये पोस्ट क्यों करनी पड़ी, आखिर उन्हें उत्तराखंड में जमीन लेने में क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि ऋषभ उत्तराखंड से ही आते हैं। ऋषभ पंत उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में जन्मे थे। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए वो दिल्ली आ गए थे। पंत अब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली के लिए ही खेलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनका पैतृक घर भी है जहां उनकी माँ रहती हैं। वहीं हाल ही में व्यक्तिगत तौर पर उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर बने थे। 2025-26 वित्त वर्ष में उन्होंने 23.84 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा था। आज तक ब्यूरो।
0: और बात करेंगे रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में, जहां अपनी मांगों को लेकर 15 दिन से छात्र बैठे हुए धरने पर, और इसी बीच बातचीत का दौर तो शुरू हुआ लेकिन अभी छात्रों की नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। ऐसे में छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है, और अब सवाल यह है कि क्या सोरेन सरकार छात्रों की नाराजगी दूर कर पाएगी या फिर 10 अगस्त को रांची में बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा।
11: आखिर कब खत्म होगा छात्रों का ये आंदोलन, आखिर कैसे दूर होगी छात्रों की नाराजगी। बैठकों का दौर जारी है, छात्रों का आंदोलन भी जारी है, अब तक नहीं निकला कोई समाधान। रांची में जारी छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की बातचीत जारी है। आज देवेंद्र महतो गुट के प्रतिनिधियों ने सरकार के मंत्रियों से बातचीत की, जिसके बाद छात्रों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि इससे पहले कल सरकार की ओर से बनाए गए मंत्रियों की टीम ने पीयूष गुट के 10 सदस्यीय दल के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद सरकार ने NSUI और JMM के छात्र संगठनों के साथ भी बैठक की। छात्रों को सुझाव देने के लिए ईमेल ID और फीडबैक नंबर जारी किया गया।
12: अगले 24 घंटे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलने वाला है, ये जरूर देखा जा सकता है, लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा और इसीलिए उस मंच के साथ साथ जितने भी पंडाल हैं वहाँ पर छात्रों से की संख्या बीते दिन के साथ, बदलते दिन के साथ ये लगातार बढ़ती जा रही है, और सब नारे बैनर पोस्टर लेकर। और इतना ही नहीं, अब क्या है, चूंकि छात्रों ने आह्वान किया है कि जो बाकी के छात्र हैं अलग अलग इलाकों से वो भी पहुंचने लगे, क्योंकि 10 तारीख को संभवतः ना पहुंच पाए, तो अब इसीलिए मंच का आकार भी यहां बढ़ गया है।
11: सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों ही बैठकों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अब इंतजार है दूसरे राउंड की बातचीत का, जिसका समय अभी तय नहीं हुआ है। वही छात्र कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं निकला तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
13: अब सरकार के पाले में है, सरकार को निर्णय करना है और बहुत ही जल्दी निर्णय करना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम रखा है 10 तारीख को विधानसभा घेराव
12: होगा,
13: वो होगा यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से आश्वासन के साथ।
12: छात्र आ रहे हैं असेंबली के लिए।
13: जी 2400 जिला से हजारों छात्र पहुंचेंगे। हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है, चूंकि हमारी व्यवस्थाएं उतनी नहीं है, हमारे पास शेल्टर नहीं है, तो हमने अभी छात्रों को रोक कर रखा है। जिस दिन हम यहां से कॉल करेंगे, 2400 जिलों से हजारों छात्र हमारे समर्थन में है।
11: उधर मामले पर सियासत जारी है। ABVP कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। ABVP के कार्यकर्ता CM आवास घेरने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
14: झारखंड में झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है, बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठी चार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करे। अगर आंदोलन करेंगे
15: तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को वापस पड़नेगा।
11: बीजेपी लगातार इस मामले में सोरेन सरकार को घेर रही है।
16: देखिए, बातचीत तो निश्चित रूप से सरकार को करनी चाहिए और बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार को बातचीत के नाम पर मामले को इधर से उधर डायलोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला अत्यंत ही गंभीर है और किस प्रकार से एक एक एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है उसको मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं कि भाई गड़बड़ किया गया है जानबूझ करके, और उसके लिए तो उन सारे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए।
11: उधर जैसे जैसे छात्र आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज भी चेकअप टीम जांच के लिए पहुंची। वहीं छात्रों ने साफ किया कि अलग अलग गुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी मांग एक ही है।
17: हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए, जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
11: 10 अगस्त का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है। इससे पहले छात्रों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जारी है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
19: क्या आपकी उम्र तेजी से बढ़ती जा रही है? तमाम प्रयास के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है? क्या है शीघ्र विवाह का उपाय? सावन में शीघ्र विवाह का कैसे मिलेगा वरदान? क्या होगा पूजा का विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: से बढ़ती जा रही है। तमाम प्रयास के बावजूद आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। क्या है शीघ्र विवाह का उपाय? सावन में शीघ्र विवाह का कैसे मिलेगा वरदान? क्या होगा पूजा का विधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

छात्रों के बीच आज 12 बजे तीसरे दौर की वार्ता, अब तक वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा मांग पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को घेरेंगे विधानसभा। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज, कहा युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले उन्हें जाना चाहिए रांची। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी से आधे घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक, विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। 15 अगस्त पर आतंकी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी, दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्यों में उफान पर है नदियां। खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और भगवान शिव की पूजा से आपको शीघ्र विवाह का वरदान इस समय मिल सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो सावन में कौन से उपाय करके आपका विवाह शीघ्र हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 11:04 तक, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 2:43 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं सावन में शीघ्र विवाह के उपाय कैसे किए जाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह होने में बाधाएं कब आती हैं, मुश्किलें कब आती हैं। कुंडली में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कुंडली के 5 तत्वों में अगर अग्नि तत्व ज्यादा है या वायु तत्व ज्यादा है तो विवाह होने में विलंब होता है। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति, अगर इनकी स्थिति कुंडली में गड़बड़ है, कमजोर है, खास तौर से शुक्र की, तो विवाह में विलंब होता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है या ग्रहण योग है तो भी विवाह में विलंब होता है। कुंडली के 8वें स्थान में या दूसरे भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, तो ये भी विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। कुंडली का 7वां भाव अगर पाप प्रभाव में हो या 7वां भाव के स्वामी की स्थिति पापक्रांत हो, पाप प्रभाव में हो, तो इसके वजह से भी विवाह में विलंब होता है। मुख्य बात ये समझिए कि कुंडली में अगर फायर ज्यादा होगा तो आदमी के जीवन में हर कार्य में विलंब होगा और ऐसी स्थिति में विवाह में भी विलंब होगा। सावन के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज के दिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के इस पावन महीने में सफलता का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा पीला। तो सावन के महीने में विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ऐसा सावन में ही क्यों हो सकता है? देखिए, सावन के महीने में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। चंद्रमा वर्षा ऋतु के स्वामी हैं, जो इस समय प्रभावशाली होते हैं और जल तत्व ज्यादा होने से पारिवारिक जीवन बेहतर होता है। मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह ना होने का योग सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता शिव जी हैं और भावी मेटि सके त्रिपुरारी। भगवान शिव की पूजा से भाग्य बदल सकता है, प्रारब्ध में परिवर्तन हो सकता है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो विवाह शीघ्र होता ही है। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा भी दूर हो जाती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अवश्य करिए। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भी सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से आपको लाभ होगा। शीघ्र विवाह के उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

की समस्या हो सकती है, पारिवारिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय शांति और धैर्य बनाए रखिए। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

होगा, अतिथि का आगमन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है और श्वेता जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 8 अक्टूबर 1993 का जन्म है, सुबह 9:55, जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं पुणे से। श्वेता कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, उसमें अड़चने बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? श्वेता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा। साल 2026 के अंत में आपका विवाह अपनी इच्छा से हो जाएगा, ये संभावना बन रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप एक बार बालक की कुंडली दिखा लीजिए और उसमें कुछ कमी है तो विवाह के पहले उसका निवारण कर लीजिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, आपको धन का लाभ हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं सावन के महीने में शीघ्र विवाह के उपाय कौन से हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच की है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? सावन में जितने भी दिन बचे हैं नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करिए और रोज शाम को भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। और सावन में जितने भी दिन कर सकें एक ही माला शिव और पार्वती जी को संयुक्त रूप से चढ़ाइएगा और रोज शाम को या रात में कम से कम 3 माला या 11 माला ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन शुरू करें, लगातार 9 दिन तक करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। उपायों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइए, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, विवाद तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर के 30 वर्ष के बीच की है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सावन में पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिएगा। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करिए और इसके बाद जल की धारा चढ़ाइएगा। इसके बाद कम से कम एक माला ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और नियमित रूप से ऐसा करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी और ये प्रयोग सावन में लगातार 9 दिनों तक अगर आप करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। जब उम्र

ज्यादा हो जाती हैं, तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, 32 है, 35 है, 38 है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लें और हर बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम लिखिएगा। इसके बाद एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे कह करके एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। और ये प्रयोग सावन में या तो हर सोमवार को करें या सावन में किसी एक सोमवार को ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो अपने घर में ही मध्यरात्रि को सावन के सोमवार में ये प्रयोग करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। देखिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि सावन में शीघ्र विवाह के उपाय क्या हैं। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो इसके लिए सावन में क्या करेंगे? सावन में एक नियम बना लें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी संभव हो सके एक लोटा जल अपने घर से भर करके शिव मंदिर तक नंगे पैर जाएं और जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर पत्नी ये उपाय करती हैं तो अपने और पति दोनों के लिए प्रार्थना करेंगी, और पति ये उपाय करते हैं तो अपने और पत्नी दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। सावन में जब भी ये मौका मिले आप ये प्रयोग कम से कम सावन में एक सप्ताह तक जरूर करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

रखें, धन हानि से बचाव करें, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होता है। क्या बेलपत्र किसी और देवी देवता की पूजा में भी प्रयोग होता है? देखिए, बेलपत्र और जल चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की पूजा में भी बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, पैसे रुपए की दिक्कत है और आप हर शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर

नंबर एक, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर दो, धन लाभ के योग हैं। नंबर तीन, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर चार, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर पांच, परिवार में शांति रखें। नंबर छह, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर सात, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर आठ, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर नौ, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार या तीन बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राखी जी ने हमें लिखा है और राखी जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1977। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है धनबाद। मेल लिखती हैं कोलकाता से। राखी जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और मेरी मानसिक स्थिति भी लगातार खराब होती जा रही है, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो जाए। राखी जी, आपके स्वास्थ्य में ज्यादातर समस्या आपके डाइजेशन की है, पेट की है, और दूसरे नंबर पे चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से मानसिक दिक्कतें भी बहुत हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, अपनी साइकोलॉजिकल जांच करवाएं, क्योंकि मानसिक प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा के पहने, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये उपाय करें, मनोचिकित्सक की सलाह माने, तो आप जल्दी ठीक होंगी। वैसे आपकी कुंडली ये कहती है कि नवंबर 2026 से आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रंग का रुमाल साथ में रख के

जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज एकादशी की तिथि है और रविवार की एकादशी अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य की शुरुआत ना करें। सावन के इस पावन महीने में आपका भाग्य कैसे बेहतर होगा, आइए जानते हैं सावन सूत्र में।

ऊर्जा दूर होगी, घर की बीमारियां समाप्त होंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान सामने आया। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जेन जी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की पेशकश की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं, पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं और वो भारत के विश्व गुरु भारत को बनाएंगे। प्रधान ने आपको ये बता दें कि 25 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जबरदस्त जेंजी आंदोलन के बाद, और पहली बार 25 तारीख के बाद यानी कि 25 जुलाई के बाद उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेंजी बच्चे हैं उनके और उन्हें गुमराह कर दिया गया था, पद कभी भी महत्वपूर्ण था ही नहीं उनके लिए। उनकी तरफ से साफ किया गया कि गुमराह करने की कोशिश की गई थी तमाम नए बच्चों को, यंगस्टर्स को, पद मेरे लिए कभी भी महत्वपूर्ण नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके मैंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे की पहले ही पेशकश की थी। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे नॉन स्टॉप 100 प्रेजेंटेड

0: आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत का एक और दौर आज दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। मंत्री संजय यादव ने जानकारी दी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी विवाद में एमएलए जयराम महतो ने बड़ी घोषणा की, कहा छात्रों के समर्थन में आज रखेंगे निर्जला उपवास। रांची में परीक्षा धांधली के आरोप खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से सोरेन सरकार की अब तक की बातचीत नाकाम हुई, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं छात्र। छात्रों के आंदोलन के बीच रांची में सीएम हेमंत सोरेन की 4 सदस्यीय मंत्री समूह के साथ मीटिंग, 4 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत चली। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों का कैंडल मार्च, राज्य सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार। रांची में छात्रों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत है, 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के गुट के बीच बातचीत 2 बार बेनतीजा। नौकरी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ, झारखंड सरकार ने समाधान के लिए फिर से बातचीत करने का फैसला किया। पीएससी और जेएसएससी प्रदर्शन में पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा ने छात्रों से मुलाकात की, छात्रों की आंखों में दर्द और तकलीफ साफ नजर आई। राहुल गांधी ने युवाओं को दिया है दर्द डेटा, युवाओं को दिया दर्द डेटा दौलत का संदेश, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा उन्हें रांची जाना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, बोले जेंजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। धर्मेंद्र प्रधान बोले मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी, कहा मंत्री पद मेरे लिए कभी महत्वपूर्ण था ही नहीं, जेंजी देश का भविष्य। नवीन पटनायक पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, बीजेडी के गो बैक नारे पर दिया जवाब, कहा मैं किसान का बेटा हूं, वापस जाने को कहेंगे तो भी लौट कर आऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने नवीन पटनायक पर युवाओं को अपने खराब प्रदर्शन में आरोप लगाए, कहा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उड़ीसा की जनता को शर्मिंदा होना पड़े। 2027 की तैयारी में बीजेपी की यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल, नई टीम का ऐलान, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने के लिए क्षेत्र व फ्रंट विंग प्रभारियों की नियुक्ति। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। नौकरी के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को मिल रही है स्थायी नौकरी। नोटबंदी पर और जीएसटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा नोटबंदी और गलत जीएसटी ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को किया खत्म, आज नहीं मिलेगा मेड इन इंडिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से बोले राहुल गांधी, एक दर्द आपका डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। राहुल के यूथ आउटरीच पर टिप्पणी के बाद थरूर की सफाई, बोले ये पार्टी या नेतृत्व पर हमला नहीं है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर ब्रिजेश पाठक ने पलटवार किया, बोले अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी, डेप्यूटी सीएम ने आरोप लगाए चुनावों में वोटों की फसल काटने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। अखिलेश यादव का रिग्रेसिव सीक्रेट सोसाइटी पर हमला, का छुपी साजिशों को देश के सामने लाना जरूरी है, बोले नई प्रगतिशील पीढ़ी अपने वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सोच के साथ भविष्य तय करेगी। वंदे मातरम के पूर्ण गायन के निर्देश पर पिनराई विजयन का विरोध, तत्काल वापस लेने की मांग की गई, देश ने इसे स्वीकार नहीं किया, सरकार को फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। एमके स्टालिन ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की है, कहा विधेयक की समीक्षा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज देना चाहिए। डीएमके सांसद कनिमोझी ने परिसीमन पर पार्टी का रुख साफ कर दिया है, डीएमके परिसीमन से पूरी तरह खिलाफ नहीं है, निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और को मजबूत करने पर चर्चा। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान, आरएसएस के इतिहास का अध्ययन कर रही है सरकार, कानून के दायरे में रहकर की जाएगी सख्त कार्रवाई। आम लोगों के लिए यूपीआई ट्रांसफर पूरी तरह से बन गया है मुफ्त, लेकिन कुछ मर्चेंट्स के बाद देनी पड़ सकती है मामूली फीस। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हुई है मुस्तैद, आतंकी हमले के मिले इनपुट्स के बाद बड़े स्तर पर दिल्ली में मॉक ड्रिल। पंजाब में बीएसएफ सीआई की बड़ी कार्रवाई, करीब 30 किलो हिरोइन के साथ 2 की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की, कहा पीएम मोदी मार्गदर्शन मुझे सुशासन के पथ पर अविराम गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। काकोरी कांड की 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी करेंगे हम घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक युवाओं संघ पैदल मार्च, डिप्टी सीएम समेत कई और मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली के दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम योगी, मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। जेनजी के लिए सरकार योगी सरकार की नई पहल, अब छात्रों को आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स करियर टिप्स देंगे, जिला स्तर पर बनेगा पूरा शेड्यूल। अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित, खराब मौसम और ट्रैक मरम्मत के चलते लिया गया फैसला। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को अकाली दल का समर्थन मिला, सुखबीर बादल ने परिसीमन बिल को भी समर्थन का किया ऐलान। राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए गए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महिलाओं पर राहुल गांधी की सोच में बदलाव, उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। राहुल गांधी का किरण रिजिजू पर पलटवार, महिला आरक्षण बिल 2023 में हो चुका है पास, 3 साल के बाद भी कानून लागू नहीं किया गया, परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। किरण रिजिजू का राहुल गांधी को जवाब, बोले संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान है, परिसीमन के बाद लागू होता महिला आरक्षण, 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े जरूरी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, परिसीमन बिल में सदन में आने पर चर्चा करेंगे, एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ बीजेपी पर हमला बोला, बोले दोनों का आजादी में कोई योगदान नहीं, हम हैं असली देशभक्त। पंजाब के मलेरकोटला में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, स्टेज पर चढ़ने को लेकर भिड़ गए थे कार्यकर्ता। मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले पर निशाना साधा, बोली जातिवादी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, पीडीए का फॉर्मूला राजनीतिक छलावा है। यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले जनता परिवारवाद को समझती है, परिवारवाद के खिलाफ लोहिया थे। सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़े चंदे के गड़बड़ी के मामले में सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए, पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, राज ठाकरे ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सहारनपुर में नोटों से सजी हुई कावड़ देखने के लिए लोग उमड़े, एक कावड़ पर करीब 2,70,000 रुपए, जबकि दूसरी कावड़ सजाने में लगाए गए 50,000 के नोट। कावड़ की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे यूपी पुलिस के जवान, हरिद्वार से चलकर हरियाणा के यमुनानगर और जगाधरी पहुंचेंगे भोले के भक्त। गाजियाबाद में भी कावड़ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी कावड़ियों पर बरसाए फूल, बाबा भोले की बाटी खाने पीने के समान। बुरके में कावड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंची मुस्लिम महिलाएं 11 अगस्त को पति अमन त्यागी के साथ डासना मंदिर में जलाभिषेक करेंगी तमन्ना। गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव की धूम है, 12 राज्यों के 300 से ज्यादा कलाकारों ने समा बांधा। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के दर्शन होंगे। यूपी के एटा में दिखी कलयुग के श्रवण कुमार जैसी अनोखी कावड़, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 4 बेटों ने कंधों पर उठाई अनोखी कावड़। सहारनपुर में अनोखी गौरक्षा कावड़ बनी गुरु आकर्षण का केंद्र, 3 कावड़ों को जोड़कर बनाई गई थी भव्य कावड़। वाराणसी में सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स का उत्तर प्रदेश में खुला है पहला वेयरहाउस, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतविंदर सिंह ने शुभारंभ किया, ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा। लगातार और भारी बारिश से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, ओखल बैराज और यमुना का जलस्तर 202 मीटर ऊपर पहुंचा। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है, यूपी सदन के बाद झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव, सोना रोड पर वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक प्रभावित हुआ, वाहनों की रफ्तार थमी। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने दरांग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। शिवपुरी में तेज बारिश से महू और नदी उफान पर है, घरों स्कूलों मंदिरों और खेतों में घुस गया पानी, कई गांव चपेट में आए। राजस्थान के धौलपुर में गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई, सावन की बरसात से किसानों के चेहरे खिले। तमिलनाडु पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश, जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जलभराव का शहर की रफ्तार पर साफ असर नजर आया। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग के मुताबिक चलेंगी तेज हवाएं। वीकेंड पर भी खुशनुमा रहेगा दिल्ली का मौसम, उमस भरी गर्मी से राहत दिलाएगी बारिश। हरियाणा की रेवाड़ी में सड़क पर बाल पकड़कर घसीटकर पति ने पत्नी को पीटा, थाने ले जाकर खुद ही एफआईआर भी दर्ज करवाई। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के लालच में साले ने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा की हत्या कर डाली, चारों की गिरफ्तारी। अलवर में कुएं में नवजात बच्ची को फेंकने के मामले में 3 महीने के बाद गिरफ्तारी, आरोपी मां और बेटे को हरियाणा में किया गया था अरेस्ट। अलवर में 8 फुट के लंबे अजगर ने महिला पर किया था अटैक, रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। सूरत में ऑटो चालक के साथ भीड़ ने की थी मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। सूरत में वीडियो बनाने को लेकर युवक और महिला होमगार्ड के बीच तीखी बहस हुई थी, वीडियो वायरल हुआ। सूरत में जब्त शराब पर चलाया गया रोलर कोस्टर, करीब 2.5 करोड़ रुपए की विदेशी शराब को नष्ट किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 69 ATM कार्ड के साथ छात्र को गिरफ्तार किया गया, 2000 ATM फ्रॉड मामले में खंगाले जा रहे हैं गिरोह के तार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।

आज के समय में मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 2000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स पर एमडीआर लग सकता है। दरअसल संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। आसान भाषा में समझे तो एमडीआर वो फीस होती है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर लागू है, लेकिन आगे चलकर इस पर एक तय सीमा के बाद चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित बदलाव के बाद कई तरह के विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनमें बड़े कारोबारियों के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू या टर्नओवर के आधार पर एमडीआर लागू करने पर विचार हो सकता है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को दायरे में लाने का प्रस्ताव सामने आया है और 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कुल यूपीआई वॉल्यूम का महज 4% है, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है। अनुमान है कि अगर इस तरह का मॉडल लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को हर साल 5000 से 10000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, लेकिन इस संभावित बदलाव का असर ग्राहकों और कारोबारियों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 53% लोग एमडीआर लागू होने पर 3000 से महंगे पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल घटा सकते हैं। वहीं 27% लोग क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% बैंक ट्रांसफर या नगद भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 18% लोगों का कहना है कि अगर अतिरिक्त लागत दुकानदार खुद वहन करें तो वो यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सर्वे में शामिल 12% लोगों ने कहा कि वो चार्ज लगने के बाद भी यूपीआई का इस्तेमाल करते रहेंगे और 14% लोगों ने कहा कि उनका फैसला लगने वाले शुल्क पर निर्भर करेगा। सरकार ने संशोधन प्रस्ताव में सेक्शन 10A हटाने का प्रावधान किया है, जो फिलहाल जीरो एमडीआर का प्रावधान देता है, लेकिन फिलहाल ग्राहकों पर किसी तरह का प्रत्यक्ष शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। जानकारों का मानना है कि पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए राजस्व मॉडल की जरूरत हो सकती है। साफ है कि इसके बाद ये बहस तेज हो सकती है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को आगे कैसे फंड किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से चल रही आईपीओ की तेज रफ्तार हाल के दिनों में थोड़ी धीमी पड़ती नजर आने लगी है। जिन कंपनियों को कुछ महीने पहले तक बाजार से शानदार रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी, वो अब अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसकी वजह है कि बाजार में बढ़ती अस्थिरता, निवेशकों की सतर्कता और वैल्यूएशन को लेकर बढ़ती चिंता ने आईपीओ मार्केट को धीमा कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के आईपीओ बाजार में फिलहाल पहले जैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। कई कंपनियां तो अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रही हैं और हाल ही में जेप्टो ने अपने आईपीओ का प्लान टाल भी दिया है। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्केट की कमजोरी के चलते कई कंपनियां अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन कम करने को मजबूर हो गई हैं। इसकी वजह है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार में बढ़ते उतार चढ़ाव ने निवेशकों को ज्यादा सतर्क बना दिया है। वहीं कुछ हालिया लिस्टिंग्स के कमजोर प्रदर्शन के बाद निवेशक शेयरों की कीमत और बिजनेस मॉडल को ज्यादा बारीकी से परखने लगे हैं। बाजार के इस बदलते माहौल का असर केवल निवेशकों पर ही नहीं, उन कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है जो केवल बाजार के जरिए पूंजी जुटाने की तैयारी में थीं। ऐसे में कंपनियां जल्दबाजी में बाजारों में उतरने की जगह सही समय और सही वैल्यूएशन का इंतजार कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने की रफ्तार पहले के मुकाबले धीमी पड़ी है। वहीं कई कंपनियों ने बाजार की स्थिति को देखते हुए अपनी लिस्टिंग योजनाओं की टाइमिंग पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है और मर्चेंट बैंकर्स कंपनियों को आक्रामक प्राइसिंग से बचने और निवेशकों के लिए आकर्षक वैल्यूएशन रखने की सलाह दे रहे हैं। यानी जो आईपीओ बाजार पिछले कुछ समय से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था, वो एक नए दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। ऐसे में केवल नाम या चर्चा के दम पर निवेशकों का पैसा जुटाना आसान नहीं होगा। कंपनियों को मजबूत बिजनेस, संतुलित वैल्यूएशन और बेहतर ग्रोथ प्लान के साथ बाजार में आना होगा। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बदलाव लंबे समय में बाजार को और ज्यादा परिपक्व और मजबूत बना सकता है। यानी फिलहाल आईपीओ बाजार में भले ही सुस्ती का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन आगे चलकर यही कमजोरी इसकी ताकत बन सकती है, क्योंकि निवेशकों की बढ़ती समझ कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद बनने का रास्ता तैयार करने में मदद करेगी। आदित्य राणा, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रांची में सरकार और छात्रों के बीच आज 12 बजे तीसरे दौर की बातचीत। अब तक की वार्ता बेनतीजा। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा मांग पूरी नहीं होने तक 10 अगस्त को करेंगे विधानसभा का घेरा। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज। कहा युवाओं को सिस्टम ने चक्रव्यूह में फंसाया। बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोलियों ने जाना चाहिए रांची। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ घंटे भर से ज्यादा चली मुलाकात। अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ भी बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के कयास। 15 अगस्त पर आतंकवादी हमले की खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल। एनएसजी दिल्ली पुलिस समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने लिया हिस्सा। और दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी राज्यों में उफान पर नदियां खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है। दोपहर 12 बजे इसके लिए समय रखा गया है। सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच में ये बैठक होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले की जो दो दौर की बातचीत है वो बेनतीजा रही है, उसमें कोई हल नहीं निकल पाया, दोनों ही ओर से सहमति नहीं बन पाई, इसीलिए सबकी नजरें टिकी हुई हैं आज दोपहर को 12 बजे होने वाली इस बातचीत पर। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कल अपने प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने लगभग 4 घंटे तक मैराथन बैठक की है। इस पूरे के पूरे मुद्दे को कैसे सुलझा जाए इस पर चर्चाएं जारी हैं। और आपको ये भी बता दें कि छात्रों की तरफ से भी साफ संकेत दे दिए गए हैं कि जब तक उनकी तमाम मांगों को, सभी बातों को नहीं माना जाएगा, यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। और 10 तारीख को, जी हां 10 अगस्त को प्लानिंग है विधानसभा घेराव की भी। अगर आज की बातचीत बेनतीजा रहती है तो दोपहर 12 बजे सरकार के साथ छात्रों की यह बातचीत होनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की यह बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जो दो दौर की बातचीत हुई है इससे पहले वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है। छात्रों के आंदोलन में लगातार ये रोष बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में छात्रों को समर्थन भी मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, अभी किस तरह की स्थिति और क्या खास तैयारियां 12 बजे को लेकर, और जो 4 घंटे की मैराथन बैठक कल मुख्यमंत्री ने की है, क्या उम्मीद की जाए कि आज कोई बीच का रास्ता निकल आएगा?
1: अब दरअसल बीच का रास्ता कोई बचा नहीं है शशि, सीधी सी बात है छात्रों की, जिन मांगों को लेकर के कि हम यहां बैठे हुए हैं, अगर आश्वासन मिलता है कि वो मांगे पूरी होंगी तब तो ठीक है, वरना काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल लगभग इसी समय ये छात्र यहां से विधानसभा घेराव करने के लिए मार्च करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक आह्वान कर दिया कि अब जितने लोग झारखंड में हैं, क्योंकि हो सकता है कल सीमाएं सीज हो जाएं, तो आज ही पहुंच जाएं रांची किसी तरह, ताकि यहां एक बार पहुंच गए, अब सुबह का समय है, तमाम सारे छात्र अपनी तैयारियों में, जैसे जैसे दिन बीतेगा ना इनका मोबिलाइजेशन जो बढ़ता रहेगा। कल जो 4 घंटे की मैराथन बैठक हुई उसमें जो यहां पर छात्रों का एक दूसरा धड़ा है उसको बुलाया गया था, उनसे कहा गया कि आप अपनी मांग पत्र दीजिए। उसके बाद सरकार ने एक ईमेल आईडी जारी, कहा कि इस पर जितने भी लोग अपनी समस्याएं हैं इस पर ग्रीवांसेस लिख करके दीजिए, मांगों को भेजिए। उसके बाद जो राजनीतिक दलों के छात्र संगठन है उनको भी बुलाया गया था, तो इसलिए वो थोड़ा मैराथन बैठक हो गई। आज 12 बजे इसी गुट के जो छात्र हैं उनको बुलाया गया है। अब बुलाने में देखना होगा क्या एक साथ हर किसी को बुलाया जाएगा, और जब बैठेंगे तो उन मांगों पर, क्योंकि अब तो जो गेंद है वो सरकार के पाले में है, उन्होंने तो अपनी मांग बता दी थी, तो क्या 11वीं से लेकर 13वीं 14वीं परीक्षा के जो नतीजे हैं क्या वो रद्द होंगे, इस पर सरकार को फैसला लेना है, जांच को लेकर फैसला लेना है। उन्होंने आश्वासन दिया तो ठीक, वरना तो बस समझिए काउंटडाउन शुरू है।
0: आशुतोष, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है ना कि अब सरकार के पास ज्यादा उपाय नहीं बचते, जिस तरह का समर्थन यहां मिल रहा है, और जिस तरह से हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना पड़ गया था, और जबरदस्त तरीके का समर्थन के साथ साथ हंगामा 15वां दिन हो गया है। सवाल यह है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बात बुरी तरह से अटकी हुई है?
1: दो चीजें, वैसे 16वां दिन है आज आंदोलन को, अब तो समझिए कि 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। बात यहां अटकी है कि क्या सरकार सीबीआई जांच के लिए राजी होगी। झारखंड में जो हमने हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम देखे थे, ऐसे में सरकार किसी सेंट्रल एजेंसी को शामिल नहीं करना चाहती। दूसरा ये है कि अगर आप इन परीक्षाओं के नतीजों को रद्द कर देते हैं 11वीं से 13वीं, तो जिनकी नियुक्तियां हैं वो अदालत जा सकते हैं, अदालत के रास्ते, और वहां पर अगर ऐसा हुआ कि सरकार का जो फैसला उसे रद्द करने का अगर उस पर स्टे लग गया, तो ये पूरा आंदोलन एक बार फिर लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा। तो ऐसे में उस कोशिश दरअसल ये होगी कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हो, सरकार जो भी अधिसूचना जारी करेगी वो कानूनी वेटेड हो, यानी लीगल डिपार्टमेंट की उस पर सहमति हो, ठप्पा हो, तभी वो उस, ताकि वो अदालत में भी उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन प्रक्रियाओं के साथ ये भी देखना होगा कि जो लोग पहले चयन हुए, इतनी परीक्षाएं हुई, क्या सरकार कहते ना कि एक पॉलिटिकल विजडम की जरूरत होती है, क्या वो इच्छा शक्ति सरकार दिखा पाएगी, और उसी के लिए तो हालांकि देखिए इन प्रिंसिपल सहमति है, सरकार भी कह रही कि हम आपके साथ हैं, छात्रों के साथ, उनके आंदोलन के साथ हैं, और इसीलिए तो 19 हुई हैं। लेकिन यहाँ विश्वास की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और विश्वास, अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक सरकार अपने इन बच्चों की, अपने छात्रों की, अपने ही राज्य के लोगों की मांगे मान ले।
0: आशुतोष, बने रहे आप हमारे साथ। 15 दिन हो चुके हैं, आज 16वां दिन है इस आंदोलन का, बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है छात्रों को। 12 बजे आज बैठक होने जा रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो दौर की जो बातचीत है वो पूरी तरह से बेनतीजा रही है, और सबकी नजरें टिकी हुई हैं इसी महत्वपूर्ण बैठक पर, क्योंकि उसके बाद कहा गया है कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा तमाम छात्रों की तरफ से। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप।
2: रांची में छात्रों का आंदोलन।
3: जिस देश में छात्रों की इज्जत है।
2: सरकार से बातचीत के बावजूद नहीं निकला समाधान।
3: नौजवानों के पास नौकरी हो।
2: अब सरकार और छात्रों के बीच होने जा रही है तीसरे दौर की वार्ता।
4: घर भी नहीं जा सकते, किस मुंह से जाएंगे? पापा कितने दिन बोले कि हम जॉब ले लेंगे, जॉब ले लेंगे। अब नहीं कर पा रहे तो हम किस मुंह से घर जाए? घर जाने का भी रास्ता ही सरकार हम लोग का नहीं छोड़ दिया।
2: लेकिन अगर आज भी बात नहीं बनी तो 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी है। रांची में अपनी मांगों को लेकर छात्रों और युवाओं का आंदोलन जारी है। भर्ती और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारी लगातार सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के अब तक दो दौर हो चुके हैं। पहला दौर 7 अगस्त को हुआ, लेकिन इसमें कोई सहमति नहीं बनी। इसके बाद 8 अगस्त को दूसरे दौर की बातचीत हुई। हालांकि इस बैठक से भी कोई समाधान नहीं निकला। अब आज 9 अगस्त को दोपहर 12 बजे तीसरे दौर की बातचीत होनी है। ऐसे में सबकी नजर इस बैठक पर है कि क्या इस बार सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन पाती है। हालांकि बातचीत के साथ छात्रों ने आंदोलन का रुख भी साफ कर दिया है। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। ऐसे में सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ छात्रों के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ आंदोलन को विधानसभा तक पहुंचने से रोकना। अब निगाहें आज दोपहर 12 बजे होने वाली तीसरे दौर की बातचीत पर टिकी है। सवाल है कि क्या इस बार सरकार और छात्रों के बीच सहमति बन पाएगी, या फिर बातचीत बेनतीजा रही तो छात्रों का आंदोलन 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की ओर बढ़ेगा। दो दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब तीसरा दौर अहम है, क्योंकि बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो 10 अगस्त को छात्रों के आंदोलन का अगला पड़ाव विधानसभा होगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो आपको बता दें कि आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 12 बजे बैठक होने जा रही है और उससे पहले छात्रों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर ये जो तीसरी बैठक है ये भी बेनतीजा रही तो उसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उधर आपको ये भी बता दें कि इस्तीफे के बाद पहली बार धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जेंजी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया कि पहले ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। साल में पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी अपनी आकांक्षा है और वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आपको याद होगा 25 जुलाई को जबरदस्त हंगामे और जबरदस्त मांग के बाद उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और 25 जुलाई के बाद आज पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर बयान दिया है। तो देश के युवा भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़ी गई खबर है प्रयागराज से, जहां राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे थे और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने रोजगार, भर्ती और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। छात्रों ने भी अपनी तमाम समस्याओं को राहुल गांधी के सामने रखा, लेकिन कार्यक्रम खत्म होते ही सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी के छात्र संवाद पर पलटवार किया है।
5: डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी।
6: आप हिंदुस्तान के शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो?
7: सर, प्रेजेंट टाइम में तो बिलीव हमारा नहीं है।
2: प्रयागराज में राहुल का छात्र संवाद, नौकरी भर्ती पर उठाए सवाल। राहुल के सामने छात्रों ने खोला मोर्चा।
5: फ्यूचर, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड।
2: प्रयागराज में छात्रों की आवाज सुनने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल ने छात्रों से करीब 47 मिनट तक सीधा संवाद किया। इस दौरान शिक्षा, रोजगार और सरकारी भर्तियों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात हुई। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का सिस्टम युवाओं को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहा है जहां डिग्री तो मिलती है लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं मिलती।
5: डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए,
8: आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है, आपके परिवारों से, आपके जेब से पैसा छीना जाता है, लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि हाँ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है।
2: राहुल ने युवाओं के मुद्दे को दर्द, डेटा और दौलत से जोड़ते हुए कहा कि दर्द और डेटा युवाओं का है लेकिन दौलत किसी और की है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था
0: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। राजधानी में किसी भी आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बड़ा सुरक्षा अभ्यास किया गया है। कई जगहों पर अलग अलग आतंकवादी हमलों जैसे हालात बना दिए गए और एनएसजी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चे को संभाला। देखिए कैसे परखी गई राजधानी की सुरक्षा तैयारियां।

0: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा का बड़ा अलर्ट। आतंकी हमले की आशंका के बीच एजेंसियों ने कसी कमर। सुदर्शन शक्ति वी में एक साथ कई हमलों की मॉक ड्रिल। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का बड़ा अभ्यास। आतंकी हमले की आशंका से जुड़े इनपुट्स के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों को परखा। सुदर्शन शक्ति 5 नाम से हुए इस संयुक्त काउंटर टेरर एक्सरसाइज में कई एजेंसियों ने एक साथ हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्वॉट, जिला पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, ट्रैफिक क्राइम ब्रांच PCR और एयरपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स ने अभ्यास में हिस्सा लिया। इनके साथ NSG, सेना, NDRF, CISF, फायर सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसियां भी शामिल रहीं। अभ्यास के दौरान राजधानी में अलग अलग तरह के आतंकी हमलों जैसी परिस्थितियां बनाई गईं। मकसद था ये देखना कि किसी बड़े आतंकी हमले की स्थिति में अलग अलग एजेंसियां किस तरह मिलकर हालात को संभालती हैं। आतंकी हमले जैसी स्थिति, फायरिंग की स्थिति, बंधक संकट, विमान हाईजैक जैसी स्थिति, खतरनाक रासायनिक का खतरा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से ठीक पहले हुए इस बड़े अभ्यास को सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है, खासतौर पर तब जब राजधानी में 15 अगस्त के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने यह परखा कि किसी आपात स्थिति में मौके पर पहुंचने से लेकर ऑपरेशन और राहत बचाव तक अलग अलग विभाग कितनी तेजी से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा तैयारियों का यह बड़ा अभ्यास साफ संकेत है कि राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को लगातार परख रही हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ
1: खामनेई की सेहत को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक नया वीडियो सामने आया और ईरानी मीडिया ने खामनेई का एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो स्वस्थ नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो की तारीख अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। इससे पहले इजरायली मीडिया ने उनकी हालत गंभीर होने का दावा किया था। ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद खामनेई की सेहत और ठिकाने को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इजरायली मीडिया ने दावा यह किया था कि मुज्तबा बहुत ज्यादा बीमार है, कभी भी मौत हो सकती है, लेकिन अब ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर ने मुज्तबा का वीडियो जारी करके इजरायली दावे को खारिज कर दिया है। तो मुज्तबा खामनेई का ये वीडियो, लेकिन ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर ये वीडियो कब का है, लेकिन ये वीडियो ये दावा करने के लिए किया गया है जो मेहर टीवी की तरफ से रिलीज किया गया है कि पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं मुज्तबा खामनेई। और यह खबर है पश्चिमी कनाडा से, जहां जंगलों में लगी भीषण आग तेजी के साथ फैल रही है और यह आग तेजी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के ओकानागन झील के किनारे बसे हुए कस्बों की ओर बढ़ रही है। आग के चलते अब तक 24,000 एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समलन में रहने वाले लगभग 12,000 लोग और पासी के पीचलैंड और उसके आसपास के करीब 7,000 लोगों को इलाका खाली करने का आदेश दे दिया गया है इस भयावह आग की वजह से ही। तो जंगलों की आग लगातार बढ़ रही है, आग को बुझाने का काम लगातार जारी है, बावजूद इसके इस आग पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
8: In association with
9: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: I've lived through all this, what I'm seeing. That's why I came here. Good concept, happy that has happened.
11: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
12: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
13: Best part, it is perspective and narrative of the nation.
14: It's brought back old memories.
15: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त हर वाहन मालिक की यही कोशिश होती है कि माइलेज अच्छा मिले और इंजन लंबे समय तक बेहतर चलता रहे। ऐसे में पेट्रोल में इथेनॉल की बढ़ती मिलावट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से आगे बढ़ने को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। आसान भाषा में समझें तो E20 पेट्रोल पर सरकार का भरोसा बना हुआ है। अलग अलग टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स में इंजन पर किसी बड़े नकारात्मक असर का कोई सबूत नहीं मिला है और सरकार ने E20 कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से अहम बताया है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को भी खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार फील्ड ट्रायल्स में इंजन में जंग, असामान्य घिसाव या वाहन की उम्र घटने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जबकि इथेनॉल ब्लेंडिंग से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। सरकार ने इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू करने की बात कही है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार ने जानकारी दी है। देश में ईंधन मिश्रण के लिए अलग अलग कृषि स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत गन्ने के रस, मक्का, खराब हो चुके अनाज और टूटे चावल से इथेनॉल बनाया जा रहा है। वहीं इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली फसलों की सिंचाई से जुड़ी जरूरतों पर एक्सपर्ट्स की सिफारिशों का अध्ययन चल रहा है और सरकार E20 कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर ही फोकस बनाए हुए है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ाने की है। वहीं E20 से ज्यादा इथेनॉल मिश्रण या उससे जुड़े किसी नए नीति ढांचे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। साफ है कि सरकार E20 पेट्रोल को देश की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल पंप्स पर E20 की मौजूदगी बढ़ सकती है, जबकि इससे आगे के कदमों पर फैसला भविष्य की स्टडी और जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सबसे तेज नारे, सबसे तेज आवाज, ऐसा प्रदर्शन जहां अपना अधिकार पाने को आवाज उठाने के लिए ये नहीं देखा गया कि आवाज है या नहीं, ये देखा गया आवाज उठाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर, चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी। वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों, जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत से पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है, जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है। हालत ये कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची है। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
2: निलंबित हैं आप?
3: जी निलंबित हूँ। जी
2: यहाँ क्या करते हैं
3: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल है, मॉनिटरिंग है, या कोई क्लास में अगर खाली है तो मैं उसमें चला जाता हूँ।
1: जिस स्कूल में बच्चों को पानी, टॉयलेट, सुरक्षित क्लासरूम नहीं मिल पाया, वहाँ एक सच ऐसा है जो सुनेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, लेकिन ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में जहाँ 17 क्लासरूम है और 592 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 76। ऐसा दिव्य स्कूल तो कभी देखा सुना नहीं गया, जहाँ प्रति 7 से 8 बच्चे पर एक टीचर रख दिया गया। मतलब ये आप कहेंगे कि राम राज्य हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टीचर हैं जो वीआईपी होने की वजह से यहाँ तबादला कराकर आराम करते हैं। आज तक के सवाल पर कि आखिर इतने टीचर यहाँ करते क्या हैं, सब भागने लगे।
2: 76 लोग आप लोग हो तो 76 लोग क्या करते हो?
3: सर से बात करो, बड़े सर से।
2: 76 टीचर हो, क्या करते हो?
4: मैं क्यों बात करूं?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: सबसे तेज नारे, सबसे तेज आवाज, ऐसा प्रदर्शन जहां अपना अधिकार पाने को आवाज उठाने के लिए ये नहीं देखा गया कि आवाज है या नहीं, ये देखा गया आवाज उठाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर, चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी। वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों, जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत से पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है, जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है। हालत ये कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
3: निलंबित हैं आप?
4: जी निलंबित हूँ।
3: यहाँ क्या करते हैं
4: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल है, मॉनिटरिंग है, या कोई क्लास में अगर खाली है तो मैं उसमें चला जाता हूँ।
2: जिस स्कूल में बच्चों को पानी, टॉयलेट, सुरक्षित क्लासरूम नहीं मिल पाया, वहाँ एक सच ऐसा है जो सुनेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, लेकिन ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में जहाँ 17 क्लासरूम है और 592 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 76। ऐसा दिव्य स्कूल तो कभी देखा सुना नहीं गया, जहाँ प्रति 7 से 8 बच्चे पर एक टीचर रख दिया गया। मतलब ये आप कहेंगे कि राम राज्य हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टीचर हैं जो वीआईपी होने की वजह से यहाँ तबादला कराकर आराम करते हैं। आज तक के सवाल पर कि आखिर इतने टीचर यहाँ करते क्या हैं, सब भागने लगे।
3: 76 लोग आप लोग हो तो 76 लोग क्या करते हो?
4: सर से बात करो, बड़े सर से।
3: 76 टीचर हो, क्या करते हो आप?
5: मैं क्यों बात करनी है
3: सर? 76 टीचर हो, आप लोग क्या करते हो यहाँ? मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ।
2: एक एक करके जब इतनी समस्या इकट्ठा हो गई, तो जयपुर के सरकारी कॉलेज के दिव्यांग बच्चे सड़क पर उतर गए, किसी नारे, भाषण या शोर शराबे से नहीं, इशारों की भाषा में हुए मौन धरने से प्रशासन को जगाया। अब यहाँ प्रिंसिपल भरत जोशी को हटा दिया गया है और दूसरी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मूक बधिर बच्चे बोल भी नहीं सकते थे, तब उनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं था? शायद इसी दर्द ने इनके मौन को आंदोलन बना दिया। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों दिव्यांग बच्चों की आवाज है जिन्हें अक्सर व्यवस्था के शोर में अनदेखा कर दिया जाता है। जयपुर के इस मौन आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब अधिकारों की लड़ाई इशारों में लड़ी जाती है, तब खामोशी भी सत्ता के दरवाजे खटखटाकर अपना अधिकार ले लेती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रांची में छात्र आंदोलन को लेकर बड़ी और अहम खबर आ रही है। तीसरे राउंड की बातचीत से पहले छात्रों के गुट में खींचतान, छात्रों के बीच तालमेल नहीं है, इस तरह की खबर है। छात्रों के गुट के साथ वार्ता के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है ये गुट, और रिफॉर्म मंच और साथ ही महतो कैंप के छात्र एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठने को भी तैयार नजर नहीं आ रहे। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि महतो कैंप राजनीतिक है और आंदोलन छात्रों का गैर राजनीतिक। कोर कमेटी सदस्य हैं पवन गोस्वामी, उन्होंने कहा कि सरकार को हमने बताया है, अब जवाब का इंतजार हम करेंगे। सरकार आंदोलन को तोड़ने के लिए अलग अलग मंचों को बनाकर सबको बातचीत के लिए बुला रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है?
1: 12 बजे की जो बैठक है वो इसलिए सस्पेंस है क्योंकि इस बार सरकार ने, जब उनके अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि आप जितने छात्रों के अलग अलग मंच हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए और 8 लोग या 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल चल लीजिए। तो जो रिफॉर्म मंच है, अब आपको बता दूं, इसको ऐसे समझिए, जब प्रदर्शन शुरू हुआ था 16 दिन पहले तो यहां से शुरू हुआ था, इस मंच से शुरू हुआ था, फिर यहां पर क्या कि झारखंड क्रांति लोक मोर्चा, दरअसल एक बहुत छोटी सी पार्टी थी, उन्हीं क्या वो चेहरा महतो, अगर आपको याद हो, देखिए मेरे पीछे यहां पर है, अब इन्होंने अनशन में तोड़ा है तो नमक पानी तो ले रहे हैं लेकिन कुछ खाया पिया नहीं, और आज स्थिति है कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि बात नहीं करेंगे। इनसे हट करके यहां पर कुछ छात्रों को लगा कि राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए, तो यहां से हट के दूसरे कैंप की जो रिपोर्ट आप देख रहे थे वो वहां पहुंच गए, उन्होंने अपना आंदोलन बना लिया। अब आईसा का एक फैक्शन बन गया, उन्होंने भी 2 दिन से अपना कैंप लगा लिया है, तो छात्रों को यह लग रहा है कि सरकार आंदोलन को कमजोर कर रही है, तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमसे बात कर रहे हैं, आपने 2 दिन में, देखिए पहले दिन जो बातचीत हुई ना उस फैक्शन से हुई, कल जो बातचीत हुई उसे यहां से प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, और ऐसे में छात्रों के बीच आइए जरा बताइए मुझे कि क्या असहमति दिखाई दे रही है। रिफॉर्म मंच कह रहे हैं कि अगर हम इनके साथ टेबल पर बातचीत के लिए एक साथ नहीं बैठेंगे, ये धड़ा कैसे बट गया छात्रों का?
2: जी ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है लेकिन वे कुछ लोगों के वजह से हुआ है, लेकिन अभी भी जो है हम फिर से बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग जो छात्र हैं एकजुट हैं, और बस थोड़ी थोड़ी सी मतलब बात बिगड़ने की वजह से थोड़ी ये दिक्कतें।
1: मुद्दों की तो सैद्धांतिक सहमति है जिसके आधार पर, जिसको लेकर के धरने पर बैठे, आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन अब आपसी मनमुटाव ऐसा है, उनका यह आरोप है कि सरकार तोड़ रही है, अलग अलग फैक्शन है, तब वो कह रहे हैं कि सरकार को हमने बताया है अगर आप सिर्फ हमारे धड़े से बात करेंगे तो हम जाएंगे, तो हाँ अब ये थोड़ा सस्पेंस जरूर बना हुआ 12 बजे की बातचीत के लिए।
0: बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। और आपको बता दें कि सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अलग अलग गुट बनाकर आंदोलन को कमजोर करने की सरकार कोशिश कर रही है। 12 बजे आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, तीसरे दौर की। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे नॉन स्टॉप 100।

0: रांची में आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत का एक और दौर आज दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। मंत्री संजय यादव ने इसकी जानकारी दी। झारखंड में इस विवाद में एमएलए जयराम महतो ने बड़ी घोषणा की, कहा छात्रों के समर्थन में आज निर्जला उपवास रखेंगे। रांची में परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से सोरेन सरकार की अब तक की बातचीत नाकाम हुई, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं छात्र। छात्रों के आंदोलन के बीच रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने 4 सदस्य मंत्री समूह के साथ मीटिंग की, 4 घंटे तक मैराथन बैठक चली। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों का कैंडल मार्च, राज्य सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार किया गया। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की अहम बैठक है, 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध, प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के गुट के बीच बातचीत बेनतीजा रही। नौकरी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज, झारखंड सरकार ने समाधान के लिए फिर से बातचीत करने का फैसला किया। पीएससी और जेएसएससी प्रदर्शन में पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा ने छात्रों से मुलाकात की, छात्रों की आंखों में दर्द और तकलीफ साफ नजर आई। राहुल गांधी ने युवाओं को दिया दर डेटा दौलत का संदेश, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा उन्हें रांची जाना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, बोले जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। धर्मेंद्र प्रधान बोले मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की पेशकश की थी, कहा मेरे पद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है पद, जेनजी देश का भविष्य है। 2027 की तैयारी में बीजेपी का यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल, नई टीम का ऐलान, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर अमित शाह ने क्रांतिकारियों को नमन किया, बोले चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस घटना ने सशस्त्र क्रांति को नई ऊर्जा दी। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, बोला सरकार पर निशाना साधा, आरएमए पूर्व आरजेडी जिलाध्यक्ष लताफ हुसैन के परिजनों से मिले, जताई संवेदना। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। नौकरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को मिलती है नौकरी। नोटबंदी और जीएसटी पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, कहा नोटबंदी और गलत जीएसटी ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म कर दिया, आज नहीं मिलेगा मेड इन इंडिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से बोले राहुल गांधी दर्द आपका डेटा आपका धन और दौलत किसी और की। राहुल के यूथ आउटरीच पर टिप्पणी के बाद थरूर की सफाई, बोले ये पार्टी या नेतृत्व पर हमला नहीं है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर ब्रिजेश पाठक का पलटवार, बोले अपेक्षित भीड़ नहीं आई, डेप्यूटी सीएम ने आरोप लगाए चुनावों में वोटों की फसल काटने के लिए प्रयागराज आए थे। अखिलेश यादव का रिग्रेसिव सीक्रेट सोसाइटी पर हमला, कहा छुपी साजिशों को देश के सामने लाना जरूरी है, बोले नई प्रगतिशील पीढ़ी अपने वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सोच से भविष्य तय करेगी। वंदे मातरम के पूर्ण गायन के निर्देश पर पिनराई विजयन का विरोध, तत्काल वापस लेने की मांग की गई, देश ने इसे स्वीकार नहीं किया, सरकार को फैसला तुरंत लेना चाहिए वापस। एमके स्टालिन ने केंद्र से एफसीआर संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की है, कहा विधेयक की समीक्षा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। डीएम के सांसद कनीमोजी ने परिसीमन पर पार्टी का रुख साफ कर दिया है, कहा डीएम के परिसीमन के पूरी तरह से खिलाफ नहीं, निष्पक्ष प्रक्रिया होनी चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा। कर्नाटक की गृहमंत्री प्रियांका खड़गे का बयान, आरएसएस के इतिहास का अध्ययन कर रही है सरकार, कानून के दायरे में रहकर जताई सख्त कानूनी की जरूरत। आम लोगों के लिए यूपीआई ट्रांसफर पूरी तरह से मुफ्त रहेगा, लेकिन कुछ मर्चेंट्स को बाद में देनी पड़ सकती है मामूली सी फीस। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हुई है मुस्तैद, आतंकी हमले के मिले इनपुट्स के बाद बड़े स्तर पर दिल्ली में मॉक ड्रिल। पंजाब में बीएसएफ सीआई की बड़ी कार्रवाई, करीब 30 किलो हिरण के साथ 2 की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, कहा प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मुझे सुशासन के पथ पर अविराम गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। काकोरी कांड के 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी करेंगे घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक युवाओं के साथ पैदल मार्च, डिप्टी सीएम समेत तमाम मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम योगी, मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। जेंजी के लिए योगी सरकार की नई पहल, अब छात्रों को आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स करियर टिप्स देंगे, जिला स्तर पर बनेगा पूरा शेड्यूल। अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त से अस्थायी विराम, ट्रैक बहाली का काम बनेगा वजह। 3 जुलाई से शुरू इस 57 दिवसीय यात्रा 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ संपन्न हो जाएगी। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को अकाली दल का मिला समर्थन, सुखबीर बादल ने परिसीमन बिल को भी समर्थन देने का ऐलान किया। राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए गए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महिलाओं पर राहुल गांधी की सोच में बदलाव, उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे। राहुल गांधी का किरण रिजिजू पर पलटवार, महिला आरक्षण बिल 2023 में हो चुका है पास, 3 साल के बाद भी कानून क्यों नहीं लागू हुआ है, इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। किरण रिजिजू का राहुल गांधी को जवाब, बोले संविधान में महिला आरक्षण का प्रावधान परिसीमन के बाद लागू होता, महिला आरक्षण 2026 के बाद की जनगणना बड़ी जरूरी। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, परिसीमन के बिल आने के बाद पर चर्चा होगी, एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजा जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ पर हमला बोला, बोले दोनों का आजादी में कोई योगदान नहीं है, ना बीजेपी का ना आरएसएस का, असली देशभक्त हम। पंजाब के मलेरकोटला में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, स्टेज पर चढ़ने को लेकर कार्यकर्ता भिड़े। मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधा, बोली जातिवादी राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, पीडीए का फॉर्मूला राजनीतिक छलावा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले जनता परिवारवाद को समझती है और उसके खिलाफ थे लोहिया। सिद्धिविनायक मंदिर में चंदे की गड़बड़ी के मामले में सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए, 5 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, राज ठाकरे ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सहारनपुर में नोटों से सजी कांवड़ देखने के लिए उमड़े लोग, एक कांवड़ में करीब 2,70,000 रुपए लगाए गए, दूसरी कांवड़ को सजाने में खर्च किए गए 50,000 के नोट। कांवड़ की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे यूपी पुलिस के जवान, हरिद्वार से चलकर हरियाणा के यमुनानगर और जगाधरी पहुंचेंगे भोले के भक्त। गाजियाबाद में भी कांवड़ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी कांवड़ियों पर बरसाए फूल, बाबा भोले के बांटी भक्तों को खाने पीने की सामग्री। बुरखे में कांवड़ को लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंची मुस्लिम महिला, 11 अगस्त को पति अमन त्यागी के साथ डासना मंदिर में जलाभिषेक करेंगी तमन्ना। गुजरात के सापुतारा में मेघमला और उत्सव की शुरुआत हुई, 12 राज्यों के 300 से ज्यादा कलाकारों ने समा बांधा। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च की गई, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के लाइव दर्शन हो पाएंगे। यूपी के एटा में कलयुग के श्रवण कुमार जैसी तस्वीर देखने को मिली, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 4 कंधों पर बच्चों ने उठाई अनोखी कावड़। सहारनपुर में अनोखी गौरक्षा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र, 3 कावड़ों को जोड़कर बनाई गई थी ये भव्य कावड़। वाराणसी में सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स का उत्तर प्रदेश में खुला पहला वेयर हाउस, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतविंदर सिंह सलूजा ने किया शुभारंभ, ग्राहकों को मिलेगा सीधा फायदा। लगातार और भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया, ओखल बैराज पर यमुना का जलस्तर 202 मीटर पहुंचा। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है, यूपी सदन के बाहर झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव, सोना रोड पर वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक प्रभावित हुआ, वाहनों की रफ्तार थमी। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने दरांग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। शिवपुरी में तेज बारिश के बाद महुआ नदी उफान पर है, घरों स्कूलों मंदिरों में खेत में घुस गया पानी, कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। राजस्थान के धौलपुर में भी गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश हुई, सावन की बरसात से किसानों को राहत मिली। तमिलनाडु में पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, जलभराव के चलते वाहनों पर रफ्तार पर रोक लगी। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जलभराव का शहर की रफ्तार पर असर नजर आया। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बताया चलेंगी तेज हवाएं। वीकेंड पर भी खुशनुमा रहेगा दिल्ली का मौसम, उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत दिलाएगी बारिश। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क पर बाल पकड़कर घसीटकर पति ने पत्नी को पहले बुरी तरह से पीटा, फिर थाने जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाई। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के लालच में साले ने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा को मार डाला, चारों की गिरफ्तारी। अलवर में कुएं में नवजात बच्ची को फेंकने के मामले में 3 महीने के बाद गिरफ्तारी, आरोपी मां और बेटे को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर में 8 फुट लंबे अजगर ने महिला पर अटैक किया था, रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद इसे पकड़ा। सूरत में ऑटो चालक के साथ भीड़ ने मारपीट कर वीडियो वायरल किया, वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उठाए गए सवाल। सूरत में वीडियो बनाने को लेकर युवक और महिला होमगार्ड के बीच तीखी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ। सूरत में जब्त शराब पर चला रोलर, करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 69 एटीएम कार्ड के साथ छात्र को गिरफ्तार किया गया। 2000 एटीएम फ्रॉड मामले में खंगाले जा रहे हैं गिरोह के तार। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 42 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, 2 की गिरफ्तारी। बिहार के सीतामढ़ी में पेड़ से टकरा गई थी पुलिस की जीप, चालक की मौत हुई, दरोगा समेत 3 के जख्मी होने की खबर। बिहार के सहरसा में पूजा प्रसाद खाने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी, गांव में अफरा तफरी मची। जयपुर में पुरानी हवेली के मलबे में मिला खजाने का राज, करीब 66 किलो चांदी के साथ 5 की गिरफ्तारी। मुंबई के जुहू में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरूच में ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग का आतंक, एक युवक की मौत दे गया, दूसरा बाल बाल बचा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, स्विफ्ट डिजायर कार खड़े हुए डंपर से टकराई, 2 की मौत, 3 घायल हुए। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में कार में मिली थी लाश, खुलासा, शराब पीने के विवाद में पीट पीट कर हत्या की गई थी, 2 की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या, अवैध संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया। गोंडा में विचाराधीन कैदी मित्र से जेल में मिलने गई थी नाबालिग लड़की के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, पुलिस ने लड़की को पकड़ा, केस दर्ज किया। लुधियाना में 5 गोलियां मारकर नौजवान लड़के की हत्या की गई, वारदात के पीछे पुलिस ने बताया पुरानी रंजिश को। यूपी के मैनपुरी में अवैध मिल पर छापा मारा गया, आटे में मिलाया जा रहा था टेलकम पाउडर, फैक्ट्री को सीज किया गया। हॉर्मुज को लेकर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बड़ा दावा, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का फैसला सिर्फ ईरान तय करेगा, ओमान वार्ता से तय नहीं होगा हॉर्मुज का भविष्य। अमेरिका में 11 सीनेटर्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव दिया, 11 डेमोक्रेट सीनेटर्स ने कांग्रेस में पेश किया है प्रस्ताव। अरब देशों को 5,000 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका, अमेरिका के विदेश मंत्री ने सऊदी की पुष्टि की, मिसाइलें बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात खरीदेंगे। बेलग्रेड के पैलेस ऑफ सर्बिया में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का भव्य स्वागत हुआ, दोनों ही देशों के बीच यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के प्रयासों पर चर्चा। मुश्तबा खामनेई की सेहत पर अटकलों के बीच ईरानी मीडिया ने जारी किया वीडियो, इजरायली मीडिया के गंभीर दावों के बीमारी के दावों के बाद ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर ने वीडियो को जारी किया। अमेरिकी सीनेट ने 50-49 के करीब अंतर से टॉड ब्लेंच को अटॉर्नी जनरल के तौर पर मंजूरी दी है, इसके साथ ही टॉड ब्लेंच को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को दी गई औपचारिक कमान। कोसोवो में राजनीतिक गतिरोध के बीच संग्राम के बाद जबरदस्त हंगामा, सांसदों के बीच तीखी झड़प और हाथापाई भी। इराक और ईरान के बीच तेल निर्यात को लेकर लगातार बातचीत जारी है, ईरान के रास्ते तेल भेजने की तैयारी में इराक, दोनों ही देशों के बीच ऐसी व्यवस्था बनाने पर चल रही है चर्चा। जापान के दक्षिणी ओकिनावा प्रांत में तूफान डॉल्फिन की दस्तक, 5 लोग घायल हुए, करीब 14,000 इमारतों को बिजली ठप हुई। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का निधन हुआ, 68 की उम्र में सुरासियो शहर में अस्पताल में आखिरी सांस ली।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और भगवान शिव की पूजा से आपको शीघ्र विवाह का वरदान इस समय मिल सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो सावन में कौन से उपाय करके आपका विवाह शीघ्र हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 11:04 तक, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 2:43 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं सावन में शीघ्र विवाह के उपाय कैसे किए जाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह होने में बाधाएं कब आती हैं, मुश्किलें कब आती हैं। कुंडली में 5 होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कुंडली के 5 में अगर अग्नि तत्व ज्यादा है या वायु तत्व ज्यादा है तो विवाह होने में विलंब होता है। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति, अगर इनकी स्थिति कुंडली में गड़बड़ है, कमजोर है, खास तौर से शुक्र की, तो विवाह में विलंब होता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है या ग्रहण योग है तो भी विवाह में विलंब होता है। कुंडली के 8 स्थान में या दूसरे भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, तो ये भी विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। कुंडली का 7th भाव अगर पाप प्रभाव में हो या 7th भाव के स्वामी की स्थिति पापक्रांत हो, पाप प्रभाव में हो, तो इसके वजह से भी विवाह में विलंब होता है। मुख्य बात ये समझिए कि कुंडली में अगर फायर ज्यादा होगा तो आदमी के जीवन में हर कार्य में विलंब होगा और ऐसी स्थिति में विवाह में भी विलंब होगा। सावन के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज के दिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के इस पावन महीने में सफलता का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा पीला। तो सावन के महीने में विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ऐसा सावन में ही क्यों हो सकता है? देखिए, सावन के महीने में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। चंद्रमा वर्षा ऋतु के स्वामी हैं, जो इस समय प्रभावशाली होते हैं और जल तत्व ज्यादा होने से पारिवारिक जीवन बेहतर होता है। मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह ना होने का योग सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता शिव जी हैं और भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। भगवान शिव की पूजा से भाग्य बदल सकता है, प्रारब्ध में परिवर्तन हो सकता है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो विवाह शीघ्र होता ही है। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा भी दूर हो जाती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अवश्य करिए। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भी सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से आपको लाभ होगा। शीघ्र विवाह के उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

समस्या हो सकती है, पारिवारिक उलझने आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय शांति और धैर्य बनाए रखिए, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

सुधार होगा, अतिथि का आगमन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है और श्वेता जी हमें पूरे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 8 अक्टूबर 1993 का जन्म है, सुबह 9:55 जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं पुणे से। श्वेता कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूं, उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? श्वेता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा। साल 2026 के अंत में आपका विवाह अपनी इच्छा से हो जाएगा, ये संभावना बन रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप एक बार बालक की कुंडली दिखा लीजिए और उसमें कुछ कमी है तो विवाह के पहले उसका निवारण कर लीजिए ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, आपको धन का लाभ हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं सावन के महीने में शीघ्र विवाह के उपाय कौन से हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच की है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? सावन में जितने भी दिन बचे हैं नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करिए और रोज शाम को भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। और सावन में जितने भी दिन कर सकें एक ही माला शिव और पार्वती जी को संयुक्त रूप से चढ़ाइएगा और रोज शाम को या रात में कम से कम 3 माला या 11 माला ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। और ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन शुरू करें, लगातार 9 दिन तक करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। उपायों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइए, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के

वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, विवाद तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर के 30 वर्ष के बीच की है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करेंगे? सावन में पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिएगा। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करिए और इसके बाद जल की धारा चढ़ाइएगा। इसके बाद कम से कम एक माला ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और नियमित रूप से ऐसा करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये प्रयोग सावन में लगातार 9 दिनों तक अगर आप करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। जब उम्र

ज्यादा हो जाती हैं, तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, 32 है, 35 है, 38 है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लें और हर बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम लिखिएगा। इसके बाद एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसे कह करके एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। और ये प्रयोग सावन में या तो हर सोमवार को करें या सावन में किसी एक सोमवार को ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो अपने घर में ही मध्य रात्रि को सावन के सोमवार में ये प्रयोग करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। देखिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि सावन में शीघ्र विवाह के उपाय क्या हैं। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो इसके लिए सावन में क्या करेंगे? सावन में एक नियम बना लें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी संभव हो सके एक लोटा जल अपने घर से भर करके शिव मंदिर तक नंगे पैर जाएं और जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर पत्नी ये उपाय करती हैं तो अपने और पति दोनों के लिए प्रार्थना करेंगी, और पति ये उपाय करते हैं तो अपने और पत्नी दोनों के लिए प्रार्थना करेंगी। सावन में जब भी ये मौका मिले आप ये प्रयोग कम से कम सावन में एक सप्ताह तक जरूर करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाब।

मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

शिव की पूजा में प्रयोग होता है। क्या बेलपत्र किसी और देवी देवता की पूजा में भी प्रयोग होता है? देखिए, बेलपत्र और जल चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा जीवन में प्राप्त होती है, लेकिन आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की पूजा में भी बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, पैसे रुपए की दिक्कत है और आप हर शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन लाभ के योग हैं। नंबर 3, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, परिवार में शांति रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राखी जी ने हमें लिखा है और राखी जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1977। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है धनबाद। मेल लिखती हैं कोलकाता से। राखी जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और मेरी मानसिक स्थिति भी लगातार खराब होती जा रही है, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो जाए। राखी जी, आपके स्वास्थ्य में ज्यादातर समस्या आपके डाइजेशन की है, पेट की है, और दूसरे नंबर पे चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से मानसिक दिक्कतें भी बहुत हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, अपनी साइकोलॉजिकल जांच करवाएं, क्योंकि मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा के पहने, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए और रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये उपाय करें, मनोचिकित्सक की सलाह माने, तो आप जल्दी ठीक होंगी। वैसे आपकी कुंडली ये कहती है कि नवंबर 2026 से आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रंग का रुमाल साथ में रख के जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज एकादशी की तिथि है और रविवार की एकादशी अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य की शुरुआत ना करें। सावन के इस पावन महीने में आपका भाग्य कैसे बेहतर होगा, आइए जानते हैं सावन सूत्र में। अगर आपके घर में बीमारियां ज्यादा रहती हैं, लोग ज्यादातर घर में बीमार रहते हैं, तो सावन में अपने घर के मुख्य द्वार पर गमले में या जमीन में एक बेलपत्र का पौधा जरूर लगा दीजिएगा। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर की बीमारियां समाप्त होंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: लखनऊ में आज राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है विधान भवन। आपको बता दें कि मौका है हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का युवाओं के साथ शुभारंभ होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा चली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौजवानों के साथ पैदल मार्च किया उन्होंने। और खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कई और बड़े चेहरे और कैबिनेट मंत्री इस यात्रा में शामिल थे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के तमाम मंत्री यहाँ मौजूद रहे।
4: आज 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे और उससे पहले तिरंगा, ये तिरंगा यात्रा है, लेकिन ये तिरंगा हमारे घर में लगे, हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ। तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है, तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन पान शान के प्रति तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। मैं एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का इस आयोजन के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं, ये यात्रा यहां से अपने निर्धारित मार्ग होते हुए यहां से विधान भवन के सामने तक पहुंचेगी। हम लोग यहां से लेकर के विधान भवन तक पूरी अनुशासन के साथ भारत माता की जय,

0: नहीं है। रिफॉर्म मंच ने कहा है कि मैं तो कैंप राजनीतिक है और आंदोलन छात्रों का है, गैर राजनीतिक आंदोलन था ये। कोर कमेटी के जो सदस्य हैं पवन गोस्वामी, उन्होंने कहा है कि सरकार को हमने बताया और अब हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, अभी क्या जानकारी है और क्या समन्वय बन गया है?
1: अभी तक नहीं। दरअसल मैंने दोनों गुट के छात्रों से बात की है, वो ये मान तो रहे कि मतभेद है, मनभेद है, लेकिन अभी कोई इस टेबल पर नहीं बैठना चाहता। मैं तो कैंप के लोग हूँ तो तैयार हैं कि कोई और बैठेगा मुझ पर बैठ लेंगे, लेकिन जो जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल का रिफॉर्म मंच है जो प्योरली सिर्फ छात्रों का गुट है, वो किसी राजनीतिक धड़े के साथ नहीं बैठना चाहते। उनको लगता है कि कल को सरकार फिर सब कहेगी कि देखिए सारा तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो उनके मन में ये आशंका है क्योंकि इन्हीं का मंच ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा आप समझिए कि 90% छात्र जो हैं वो इन्हीं के कैंप में हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर हमारे आंदोलन पर राजनीति का रंग अगर लगा तो सीधे सीधे सरकार जो है हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, तो मन में उसको लेकर के शक है। सुबह दूसरा आईसा जब आ गए तो उन्हें लग रहा है कि देखिए आईसा जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट तो यहां सरकार में शामिल है, उनके समर्थन से सरकार चल रही है, तो ऐसे में क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो हां, मतभेद थोड़े गहरे हैं और इन्होंने कहा है कि हम इंतजार करेंगे, प्रशासन ये कह देगा कि सरकार आपके अकेले बातचीत करने के लिए तैयार है तो हम जाएंगे। तो अब क्या है कि हर पल इंतजार ही हो रहा है कि सरकार की ओर से जो लिएजन ऑफिसर्स हैं क्या वो किसी तरह का संदेश कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन चूंकि कॉज बड़ा है तो इन धड़े में ये भी एक तरह की चर्चा अब चल रही है कि कम से कम बातचीत के लिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता, लेकिन सहमति इस बात पर नहीं बन पा रही कि क्या हम उनके साथ बैठें जहां पर राजनीतिक धड़ा भी इस आंदोलन में शामिल हो।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे हेडलाइंस।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में तीसरे राउंड की बैठक से पहले छात्रों में गुटबाजी, रिफॉर्म मंच और महतो गुट आमने सामने एक टेबल पर आने को तैयार नहीं। आयसा के धरने पर बैठने से सरकार पर छात्रों को बांटने के आरोप। तिरंगा यात्रा के साथ सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमले की बौछार की। कहा, पहले तिरंगा फहराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। वंदे मातरम को लेकर कहा, अपमान बर्दाश्त नहीं। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज। कहा, युवाओं को सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया। बोले, दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। रिजिजू बोले, उन्हें जाना चाहिए रांची। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान। कहा, जेंजी हमारे बच्चे देश को बनाएंगे विश्व गुरु। कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। और खराब सेहत की अटकलों के बीच ईरानी मीडिया ने जारी किया है सुप्रीम लीडर खामनेई का वीडियो। लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, वीडियो की तारीख का पता नहीं।

रांची छात्र आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी है। दोपहर 12 बजे सरकार से वार्ता पर सस्पेंस बना हुआ है। तीसरे राउंड की बातचीत से पहले छात्रों के गुटों में खींचतान हुई। रिफॉर्म मंच और महतो कैंप के एक छात्र दूसरे पर एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, एक टेबल पर सरकार पर बांटने की राजनीति के भी आरोप लगाए। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी आंदोलन के बीच स्टेडियम में आयसा का अलग गुट बैठा हुआ है। विरोध तेज हुआ। रिफॉर्म मंच ने सरकार पर छात्रों को बांटने के आरोप लगाए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी विवाद में एमएलए जयराम महतो ने की है बड़ी घोषणा, का छात्रों के समर्थन में आज रखेंगे निर्जला उपवास। छात्रों के आंदोलन के बीच रांची में सीएम हेमंत सोरेन की 4 सदस्यीय मंत्री समूह के साथ मीटिंग, 4 घंटे तक मैराथन बैठक। रांची में छात्रों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की अहम बैठक होगी। 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं छात्र। अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के गुट के बीच बेनतीजा रही है बातचीत। कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। झारखंड सरकार ने समाधान के लिए फिर से बातचीत का भरोसा दिया।

प्रदर्शन में पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा ने छात्रों से मुलाकात की। छात्रों की आंखों में दर्द और तकलीफ साफ नजर आई। राहुल गांधी ने युवाओं को दिया दर्द डेटा दौलत का संदेश। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा उन्हें रांची जाना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, बोले जेनजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। धर्मेंद्र प्रधान बोले मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी। कहा मंत्री मेरे लिए महत्वपूर्ण पद नहीं था, जेनजी देश का भविष्य है। 2027 की तैयारी में बीजेपी का बड़ा संगठन में फेरबदल, नई टीम का ऐलान किया गया। क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने के लिए क्षेत्र और फ्रंट विंग प्रभारियों की नियुक्ति। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर अमित शाह ने क्रांतिकारियों को नमन किया, बोले चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस घटना ने सशस्त्र क्रांति को ऊर्जा दी थी। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, बोला सरकार पर सादा निशाना आ रहा है। पूर्व आरजेडी जिला अध्यक्ष लताफत हुसैन के परिजनों से मुलाकात की, संवेदना जताई। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। नौकरी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा आज हजारों में से सिर्फ 12 युवाओं को मिलती है स्थायी नौकरी। नोटबंदी और जीएसटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा नोटबंदी और गलत जीएसटी ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बर्बाद किया, आज नहीं मिलेगा मेक इन इंडिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी बोले दर्द आपका डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की। राहुल गांधी के यूथ आउटरीच पर टिप्पणी के बाद थरूर की सफाई, बोले यह पार्टी या नेतृत्व पर हमला नहीं है। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर ब्रिजेश पाठक का पलटवार, बोले अपेक्षित भीड़ नहीं जुटा पाए। डेप्यूटी सीएम ने आरोप लगाया चुनावों में वोटों की फसल काटने के लिए प्रयागराज आए थे। अखिलेश यादव का रिग्रेसिव सीक्रेट सोसाइटी पर हमला, कहा छुपी साजिशों को देश के सामने लाना जरूरी है। कई प्रगतिशील पीढ़ी अपने वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सोच के भविष्य को तय करें। वंदे मातरम के पूर्ण गायन के निर्देश पर पिनराई विजयन का विरोध, तत्काल वापस लेने की मांग की। देश ने इसे स्वीकार नहीं किया, सरकार को तुरंत फैसला वापस लेना चाहिए। एमके स्टालिन ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की है, कहा विधेयक की समीक्षा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए। डीएमके सांसद कनिमोझी ने परिसीमन पर पार्टी का रुख साफ किया, डीएमके परिसीमन के पूरी तरह खिलाफ नहीं है, निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, राजनीतिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा। कर्नाटक की गृहमंत्री प्रियंका खड़गे का बयान, आरएसएस के इतिहास पर अध्ययन कर रही है सरकार, कानून के दायरे में रहकर की जाएगी सख्त कार्रवाई। आम लोगों के लिए यूपीआई ट्रांसफर पूरी तरह से बना रहेगा मुफ्त, लेकिन मर्चेंट्स को बाद में देना पड़ सकता है मामूली सा फीस रकम। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, आतंकी हमले की इनपुट्स के बाद बड़े स्तर पर दिल्ली में मॉक ड्रिल। पंजाब में बीएसएफ सीआई की बड़ी कार्रवाई, करीब 30 किलो हीरोइन के साथ दो की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, कहा प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मुझे सुशासन के पथ पर अविराम गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। काकोरी कांड पर 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आवास से विधान भवन तक युवाओं के साथ पैदल मार्च, डेप्यूटी सीएम समेत कई और मंत्री भी शामिल हुए। दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर राजनाथ सिंह ने अमर क्रांतिकारियों को नमन किया, बोले आजाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और साथियों का बलिदान युवाओं के अटूट संकल्प का प्रतीक। अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त से अस्थायी विराम, ट्रैक बहाली का काम बनेगा वजह। 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिवसीय यात्रा 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ संपन्न होगी। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को अकाली दल का मिला है समर्थन, सुखबीर बादल ने परिसीमन बिल को भी समर्थन देने का ऐलान किया। राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए गए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महिलाओं पर राहुल गांधी की सोच में बदलाव, उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का भी समर्थन करेगी। राहुल गांधी का किरण रिजिजू पर पलटवार, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, 3 साल के बाद कानून क्यों नहीं बन पाया है, इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को किया याद, दी श्रद्धांजलि, बोले महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन ने आजादी की नई ऊर्जा और अंग्रेजी शासन के मुक्ति का संकल्प जगाया। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे एनसीपी के शरद पवार, गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा परिसीमन बिल सदन में आने पर चर्चा करेंगे, एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजना चाहिए। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में जमात इस्लामी से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, यूएपीए केस में 26 ठिकानों पर सुरक्षा बलों जांच एजेंसियों की छापेमारी।
पंजाब के मलेरकोटला में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा, स्टेज पर चढ़ने को लेकर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़े। मायावती ने अखिलेश यादव पर पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधा, बोली जातिवादी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, पीडीए का फॉर्मूला राजनीतिक छलावा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले जनता परिवारवाद को समझती है, परिवारवाद के खिलाफ थे लोहिया। सिद्धिविनायक मंदिर में चंदे की चोरी के मामले में सीएम फडणवीस ने जांच के आदेश दिए, 5 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, राज ठाकरे ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सहारनपुर में नोटों की गढ़ सजी, कावड़ को देखने के लिए लोग उमड़े, करीब 2,70,000 रूपये एक कावड़ में, दूसरी कावड़ में 50,000 रूपये लगाए गए। कावड़ की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे यूपी पुलिस के जवान, हरिद्वार से चलकर हरियाणा के यमुनानगर और जगाधरी पहुंचेंगे बाबा भोले के भक्त। गाजियाबाद में भी कावड़ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह, हरिद्वार में गंगा जल लेकर आ रहे कावड़ियों को पुष्प वर्षा की गई। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कावड़ियों पर बरसाए फूल, बाबा भोलेनाथ के भक्तों को खाने पीने की चीजें भी बांटी। बुरके में कावड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंची मुस्लिम महिला, 11 अगस्त को पति के साथ डासना मंदिर में जलाभिषेक करेगी। लगातार और भारी बारिश के बीच दिल्ली में बढ़ गया यमुना का जलस्तर, ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर 205 मीटर पहुंचा, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है, यूपी सदन के बाहर झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलजमाव, सोना रोड पर वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक प्रभावित हुआ, वाहनों की रफ्तार थमी। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने दरांग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। शिवपुरी में तेज बारिश से महू और नदी उफान पर है, घरों स्कूलों मंदिरों खेतों में घुस गया पानी, कई गांव बाढ़ की चपेट में। राजस्थान के धौलपुर में भी गरज और चमक के साथ बारिश हुई, सावन की बरसात से किसानों के चेहरे खिले। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई है बारिश, जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जलभराव का शहर की रफ्तार पर साफ असर नजर आया। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने बताया तेज हवाएं भी चलेंगी। वीकेंड पर भी खुशनुमा रहेगा मौसम का मिजाज, उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क पर बाल पकड़कर घसीटकर पति ने बुरी तरह से पत्नी को पीटा, थाने जाकर खुद ही एफआईआर भी दर्ज करवाई। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के लालच में साले ने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा की हत्या कर डाली, चारोही को गिरफ्तार किया गया। अलवर में कुएं में नवजात बच्ची के फेंकने के मामले में 3 महीने के बाद गिरफ्तारी, आरोपी मां और बेटे को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अलवर में 8 फुट लंबे अजगर ने महिला पर अटैक किया था, रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ा। सूरत में ऑटो चालक के साथ भीड़ ने मारपीट कर डाली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूरत में वीडियो बनाने को लेकर युवक और महिला के होमगार्ड के बीच में तीखी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ। सूरत में जब्त शराब पर चला रोला, करीब 3.5 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 69 एटीएम कार्ड के साथ छात्र को गिरफ्तार किया गया, 2000 एटीएम फ्रॉड मामले में खंगाले जा रहे हैं गिरोह के तार। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 42 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 2 की गिरफ्तारी। बिहार के सीतामढ़ी में पेड़ से टकरा गई थी पुलिस की जीप, चालक की मौत, दरोगा समेत कई और जख्मी हुए। बिहार में सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने के बाद 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई, गांव में अफरा तफरी मची। जयपुर में पुरानी हवेली के मलबे से मिला खजाने का राज, करीब 66 किलो चांदी के साथ 5 की गिरफ्तारी। मुंबई के जुहू में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरूच में चलती हुई ट्रेन से मोबाइल स्नैचिंग का आतंक, एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा बाल बाल बचा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, स्विफ्ट डिजायर कार खड़े हुए डंपर से टकराई, 2 की मौत हुई, 3 घायल हुए। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में कार से मिली लाश के मामले में खुलासा, शराब पीने के बाद पीट पीट कर हत्या कर डाली थी, 2 की गिरफ्तारी की गई। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या की गई, अवैध संबंधों के चक्कर में वारदात को अंजाम दिया गया। गौंडा में विचाराधीन कैदी मित्र से जेल में मिलने गई नाबालिग लड़की के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने लड़की को भी पकड़ा, केस दर्ज किया। लुधियाना में 5 गोलियां मारकर नौजवान लड़की की हत्या कर डाली गई, वारदात के पीछे पुलिस ने बताया है पुरानी रंजिश हो। यूपी के मैनपुरी में अवैध मिल पर छापा, आटे में मिलाया जा रहा था टेलकम पाउडर, फैक्ट्री सीज की गई। सूरत में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई, हवा में उछल गई थी कार, बाल बाल बचे ऑटो और बाइक सवार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा का पूरा हादसा।
ब्रिटिश कोलंबिया में वाइन और ऑर्चर्ड क्षेत्र में जंगल की आग तेजी के साथ फैली। आग का दायरा रात भर से लगभग दोगुना हो चुका है। हजारों लोगों को निकासी का आदेश दिया गया। पश्चिमी कनाडा में बेकाबू होते जंगल की आग से बढ़ गया खतरा। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रभावित इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन के घुड़सवारी के साथ हुआ मंगोलियाई नादान फेस्टिवल। रंग बिरंगी मंगोलियाई पोशाकों ने खींचा था ध्यान। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आसपास के रंगों में कार्निवल। सैकड़ों फीट ऊपर नजर आए खूबसूरत हॉट एयर बलून। हॉर्मुज को लेकर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बड़ा दावा। कहा हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का फैसला सिर्फ ईरान ही तय कर सकता है, कोई और नहीं। अमेरिका में 11 सीनेटर्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा। 11 डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने कांग्रेस में पेश कर दिया है प्रस्ताव। अब अरब देशों को 5,000 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की। ये मिसाइलें बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात खरीदेंगे। कोसोवो में राजनीतिक गतिरोध के बीच संसद में संग्राम। सांसदों के बीच तीखी झड़प हुई और हाथापाई हुई। मोश्तवा खामने की सेहत पर अटकलों के बीच ईरानी मीडिया ने जारी कर दिया एक वीडियो। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक बीमारी के बाद न्यूज एजेंसी ने इस वीडियो को जारी किया है। पूरी तरह से स्वस्थ है मोश्तवा।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
5: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
9: In association with
10: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
9: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
12: I have lived through all this, what I'm seeing. That's why I came here. Good concept, happy that has happened.
13: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
14: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
15: Best part, it is a perspective and narrative of the nation.
16: It's brought back old memories.
17: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.

0: मानसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
1: लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। अपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
0: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
2: It was a very, very big honor that he has invited us. And, उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए।
3: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
4: जी,
3: वेरी गुड।
4: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
3: हर हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
4: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में?
3: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
4: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
3: नो नो नो नो।
4: ओके सर, आखिरी सवाल सर, एफसीआरए पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
3: हम लोग मदद करेंगे।
0: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया एफसीआरए बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।

0: आज के समय में मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 2000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स पर एमडीआर लग सकता है। दरअसल संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। आसान भाषा में समझे तो एमडीआर वो फीस होती है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीरो एमडीआर लागू है, लेकिन आगे चलकर इस पर एक तय सीमा के बाद चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित बदलाव के बाद कई तरह के विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनमें बड़े कारोबारियों के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू या टर्नओवर के आधार पर एमडीआर लागू करने पर विचार हो सकता है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को दायरे में लाने का प्रस्ताव सामने आया है और 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कुल यूपीआई वॉल्यूम का महज 4% है, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है। अनुमान है कि अगर इस तरह का मॉडल लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को हर साल 5000 से 10000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, लेकिन इस संभावित बदलाव का असर ग्राहकों और कारोबारियों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 53% लोग एमडीआर लागू होने पर 3000 से महंगे पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल घटा सकते हैं। वहीं 27% लोग क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% बैंक ट्रांसफर या नगद भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 18% लोगों का कहना है कि अगर अतिरिक्त लागत दुकानदार खुद वहन करें तो वो यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सर्वे में शामिल 12% लोगों ने कहा कि वो चार्ज लगने के बाद भी यूपीआई का इस्तेमाल करते रहेंगे और 14% लोगों ने कहा कि उनका फैसला लगने वाले शुल्क पर निर्भर करेगा। सरकार ने संशोधन प्रस्ताव में सेक्शन 10A हटाने का प्रावधान किया है, जो फिलहाल जीरो एमडीआर का प्रावधान देता है, लेकिन फिलहाल ग्राहकों पर किसी तरह का प्रत्यक्ष शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। जानकारों का मानना है कि पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए राजस्व मॉडल की जरूरत हो सकती है। साफ है कि इसके बाद ये बहस तेज हो सकती है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को आगे कैसे फंड किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हमने एक टेबल पर आने को तैयार नहीं, आयशा के धरने पर बैठने से सरकार पर छात्रों को बांटने के आरोप। प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी की गूंज, कहा युवाओं को सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसाया गया, बोले दर्द और डेटा आपका लेकिन दौलत किसी और की, रिजिजू बोले उन्हें जाना चाहिए रांची। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, कहा जेंजी हमारे बच्चे देश को बनाएंगे विश्व गुरु, कहा लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। आरक्षण पर मायावती ने संघ को घेरा, कहा एससी एसटी आरक्षण पर न करें राजनीति, स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ने की दलील पर भी बोला हमला। और तिरंगा यात्रा के साथ सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमले की बौछार की, कहा पहले तिरंगा फहराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, वंदे मातरम को लेकर कहा अपमान बर्दाश्त नहीं होगा।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आपका स्वागत है वॉर रूम में। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों पाकिस्तान से लेकर यूरोप और पश्चिम एशिया तक गहरा रहे हैं महासंकट के बादल, कैसे हक की मांग के बदले गोलियां कत्लेआम पाकिस्तान का निजाम बन गया है, क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बदहाली और बगावत को रोकने के लिए इस्लामाबाद में सेना खामोशी से तख्ता पलट भी कर सकती है, दूसरी तरफ वेस्ट एशिया में ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान से बातचीत की कोशिशें जारी हैं, वहीं रेड सी में हूथी विद्रोहियों के हमले एक नए संकट को न्योता दे रहे हैं। उधर रूस और यूक्रेन की जंग अब पूरी तरह आसमान की खतरनाक लड़ाई बन चुकी है, जहां भीषण हवाई हमले शहर के शहर तबाह कर रहे हैं। दुनिया के इन चारों सुलगते मोर्चों की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग।
1: महंगाई की मार से दहल गया है पाकिस्तान और वहाँ के जो लोग हैं वो पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ खासकर कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में सड़कों पर उतरे हैं। हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं। जमात इस्लामी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, देशव्यापी आंदोलन तेज करने का अल्टीमेटम दिया है।
0: अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सरकार और पाकिस्तानी सेना मिलकर आवाम की आवाज को दबाने में लगी हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। लोगों की मांग सिर्फ एक, बिजली, सड़क, पानी, जमहूरियत में सही प्रतिनिधित्व मिले। इन्हीं बुनियादी अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे लोगों को गोलियां मिल रही हैं। पीस कमिटी में आतंकियों की जगह बता रही है कि शांति के लिए शरीफ और मुनीर कितने चिंतित हैं। उधर मोहसिन नकवी बता ही चुके हैं कि पाकिस्तान के हालात खराब हो गए हैं। दूसरी ओर तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी के एक साल पूरे होने पर उनकी पार्टी पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में बड़े आंदोलन और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में एक नया राजनीतिक बवाल खड़ा होना तय है।

0: मान नहीं चाहते, लिहाजा आप पीछे हट जाओ।
1: POJK, जिसे दुनिया गुलाम कश्मीर के नाम से भी जानती है, इस पर आज भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, पिछले कई महीने से जल रहा है।
0: क्या जुल्म हो सकता है?
2: लगातार फायरिंग जारी है।
0: हमें मारे, ये जालिम, ये जालिम ने मारे।
3: My father has been killed in Ramlakot.
1: पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों ही इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए अपना दमन चक्र चला रही है। हक और आजादी की मांग कर रही बेकसूर जनता को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। हालात ये है कि POJK में पाक सेना ने पूर्ण नाकाबंदी लगा दी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई। इन हमलों में करीब 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
4: पिछले 3-4 दिनों के अंदर बहुत बड़े पैमानों पे यहाँ पे शहादतें हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथियों को जख्मी किया गया है। पीसफुल प्रोटेस्टर पे अंधाधुंध फायरिंग की गई, स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में यह शहादतें हुई। और इसी तरह मुजफ्फराबाद के अंदर भी
5: दोस्तों हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। अब कोई हया कर लो, जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं। 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो बगैर।
1: जब विदेशी मीडिया ने ये दिखाया कि POJK के लोगों ने चुनावों का बायकॉट कर दिया है, तो पाकिस्तान ने कई चैनलों को ही बैन कर दिया। हर बार की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी POJK में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए भारत पर इल्जाम लगा दिया है। शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार और पूर्व गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह अब टीवी पर आकर भारत विरोधी चूरन बेच रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काम।
6: अब उनका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने देना। क्यों नहीं होने देना, वजह बताएं? क्योंकि पीछे से किसी का जो है वो एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। आजाद कश्मीर में ये संदूर 2 वालों का एजेंडा है कि आजाद कश्मीर में इलेक्शन ना हो। ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के बगैर मैं समझता हूं कि दुश्मन का, मोदी का संदूर 2 का एजेंडा कामयाब होता अगर ये इलेक्शन ना होता।
1: लेकिन पाकिस्तान के इस दावे की हवा खुद भारत के विदेश मंत्रालय ने निकाल दी है।
7: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस प्रकार की खोखले कवायदें वास्तविकता को छिपा नहीं सकती। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें करीबन करीबन 90 लोग उसमें मारे गए हैं और कई एक अन्य उसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: POJK को लेकर भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। POJK भारत का अभिन्न अंग है, जो आज नहीं तो कल भारत के पास होगा फिर से। ये बात पाकिस्तान में बैठी ISI, पाक सेना और वहां की हुकूमत को बेहतर मालूम है। पाकिस्तान में गंभीर प्रशासनिक विफलताओं, राजनीतिक खींचतान और प्रांतों के साथ साथ POJK में बढ़ते नागरिक असंतोष के बीच तख्ता पलट की खामोश चहलकदमी बयानों के जरिए सुनी जा सकती है। बस इस बार की तानाशाही में यह फर्क है कि पारंपरिक मार्शल लॉ लागू करने के बजाय पाकिस्तानी सेना ने नागरिक प्रशासन पर पूरी तरह से अपना अप्रत्यक्ष और कड़ा नियंत्रण बना लिया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
6: इन एसोसिएशन विद
7: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।
9: I have lived through all this, what I'm seeing. That's why I came here. Good concept. Happy that has happened.
10: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
11: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
12: Best part, it is a perspective and narrative of the nation.
13: It's brought back old memories.
14: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: सबसे तेज नारे, सबसे तेज आवाज, ऐसा प्रदर्शन जहां अपना अधिकार पाने को आवाज उठाने के लिए ये नहीं देखा गया कि आवाज है या नहीं, ये देखा गया आवाज उठाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर, चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी। वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों, जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत से पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है, जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है। हालत यह कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
1: निलंबित हैं आप?
2: जी निलंबित हूँ।
1: यहाँ क्या करते हैं
2: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल है, मॉनिटरिंग है, या कोई क्लास में अगर खाली है तो मैं उसमें चला जाता हूँ।
0: जिस स्कूल में बच्चों को पानी, टॉयलेट, सुरक्षित क्लासरूम नहीं मिल पाया, वहाँ एक सच ऐसा है जो सुनेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, लेकिन ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में जहाँ 17 क्लासरूम है और 592 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 76। ऐसा दिव्य स्कूल तो कभी देखा सुना नहीं गया, जहाँ प्रति 7 से 8 बच्चे पर एक टीचर रख दिया गया। मतलब ये आप कहेंगे कि राम राज्य हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टीचर हैं जो वीआईपी होने की वजह से यहाँ तबादला कराकर आराम करते हैं। आज तक के सवाल पर कि आखिर इतने टीचर यहाँ करते क्या हैं, सब भागने लगे।
1: 76 लोग आप लोग हो तो 76 लोग क्या करते हो?
2: सर से बात करो, बड़े सर से।
1: 76 टीचर हो, क्या करते हो आप?
3: मैं क्यों बात करनी है
1: सर? 76 टीचर हो, आप लोग क्या करते हो यहाँ?
3: Yes. आप हमारे
1: अरे मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ।
0: एक एक करके जब इतनी समस्या इकट्ठा हो गई, तो जयपुर के सरकारी कॉलेज के दिव्यांग बच्चे सड़क पर उतर गए, किसी नारे, भाषण या शोर शराबे से नहीं, इशारों की भाषा में हुए मौन धरने से प्रशासन को जगाया। अब यहाँ प्रिंसिपल भरत जोशी को हटा दिया गया है और

0: दिखाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर, चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी। वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों, जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत से पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है, जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है। हालत ये कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची है। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
1: निलंबित हैं आप?
2: जी निलंबित हूँ।
1: यहाँ क्या करते हैं
2: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल है, मॉनिटरिंग है, या कोई क्लास में अगर खाली है तो मैं उसमें चला जाता हूँ।
0: जिस स्कूल में बच्चों को पानी, टॉयलेट, सुरक्षित क्लासरूम नहीं मिल पाया, वहाँ एक सच ऐसा है जो सुनेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, लेकिन ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में जहाँ 17 क्लासरूम है और 592 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 76। ऐसा दिव्य स्कूल तो कभी देखा सुना नहीं गया, जहाँ प्रति 7 से 8 बच्चे पर एक टीचर रख दिया गया। मतलब ये आप कहेंगे कि राम राज्य हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टीचर हैं जो वीआईपी होने की वजह से यहाँ तबादला कराकर आराम करते हैं। आज तक के सवाल पर कि आखिर इतने टीचर यहाँ करते क्या हैं, सब भागने लगे।
1: 76 लोग आप लोग हो तो 76 लोग क्या करते हो?
3: सर से बात करो, बड़े सर से।
1: 76 टीचर हो, क्या करते हो आप?
4: मैं क्यों बात करनी है
1: सर? 76 टीचर हो, आप लोग क्या करते हो यहाँ?
4: आप
1: मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ।
0: एक एक करके जब इतनी समस्या इकट्ठा हो गई, तो जयपुर के सरकारी कॉलेज के दिव्यांग बच्चे सड़क पर उतर गए, किसी नारे, भाषण या शोर शराबे से नहीं, इशारों की भाषा में हुए मौन धरने से प्रशासन को जगाया। अब यहाँ प्रिंसिपल भरत जोशी को हटा दिया गया है और दूसरी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मूक बधिर बच्चे बोल भी नहीं सकते थे, तब उनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं था? शायद इसी दर्द ने इनके मौन को आंदोलन बना दिया। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों दिव्यांग बच्चों की आवाज है जिन्हें अक्सर व्यवस्था के शोर में अनदेखा कर दिया जाता है। जयपुर के इस मौन आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब अधिकारों की लड़ाई इशारों में लड़ी जाती है, तब खामोशी भी सत्ता के दरवाजे खटखटाकर अपना अधिकार ले लेती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रहा है, सवाल अमेरिका से भी यही है कि क्यों खुद को विजेता बताकर भी वो ईरान से बातचीत के लिए मीडिएटर खोजता घूम रहा है। कतर और अमेरिका के बयानों के बीच ईरान के साथ हॉर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने की बातचीत आगे बढ़ती दिख तो रही है, लेकिन ट्रंप की धमकियों की इन सब के बीच अपनी एक जगह है। इसी दौरान यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हमले तेज करने और सऊदी टैंकर को निशाना बनाने का दावा करते हुए तेल आपूर्ति रोकने की धमकी दी है। इस पूरे तनावपूर्ण वैश्विक घटनाक्रम के बीच खुद ईरान के भीतर भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी वहां चल रही है।
1: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान और ओमान नए शिपिंग रूट पर समझौते के बहुत करीब बताए जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अराग्ची ने पुराना रूट खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रेट को फिर से खोलना अमेरिका द्वारा किए गए उल्लंघन के मुआवजे और शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करेगा।

0: When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
1: अमेरिका और इसराइल के ईरान पर संयुक्त हमले के पीछे सबसे बड़ा तर्क था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह करना है, उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना है, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना और इन सब के साथ ही रिजीम चेंज करना है। इन चारों मकसद में से सबसे पहले चौथे मकसद का पूरा होना जरूरी था, जिसका आंकलन अमेरिका और इसराइल शायद ठीक तरीके से कर नहीं पाए। 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी और इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा तो किया है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाए। इस्फान, नतांज और फोर्दो, जो कि ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकाने हैं, उन पर बमबारी के बाद भी संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स का आंकलन कहता है कि ईरान के पास अभी भी लगभग 970 पाउंड 60% तक संवर्धित यूरेनियम बचा हुआ है। ये मात्रा इतनी है कि अगर ईरान चाहे तो कुछ ही हफ्तों में 9 से 10 परमाणु बम तैयार कर सकता है। यानी वॉशिंगटन की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति तेहरान की न्यूक्लियर क्षमता को पूरी तरह ध्वस्त करने में नाकाम रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान को बातचीत के रास्ते पर लौटने के लिए धमकियां दे रहे हैं, लेकिन बात बनती हुई लग नहीं रही है।
2: ये जो लड़ाई है अमेरिका और ईरान के बीच में, ईरान ने इसको एस्मेटिक लड़ाई लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका और जो इसराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी ज्यादा थी, मगर इसराइल ने इसको बड़ी चतुराई से एस्मेटिक लड़ाई बनाया, और जिससे उसने दो चीजें की। एक तो उसने खाड़ी के देशों पर हमला किया जहां पर मिलिट्री बेसी थी अमेरिका की, उनकी एक प्रकार से इकॉनमी को डगमगाया, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया।
1: लेकिन इस जंग ने खाड़ी के साथ साथ अमेरिका की बादशाहत पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। क्या वेस्ट एशिया में अमेरिका का खेल अब खत्म होने लगा है? क्या खाड़ी देशों का अमेरिका की सुरक्षा गारंटी से भरोसा उठ गया है? क्या पश्चिमी नाटो के मुकाबले अब एक नए मुस्लिम नाटो की नींव रखी जा रही है? हूती विद्रोहियों और इराकी आतंकी संगठनों से बढ़ते खतरे के बीच सऊदी ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ नया गठबंधन क्यों बनाया? क्या इसराइल ने भी अमेरिकी तेल टैंकर विमानों को अपने हवाई अड्डे से हटाकर वॉशिंगटन को बड़ा संदेश दिया है? उधर हथियारों की कमी को लेकर ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब भी कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है।
3: Oil down to less than 2 in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed 2 cents. I was in Iowa at a stop and we had 195, another one, 185 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please.
1: वहीं जानकारों की माने तो इन एयर स्ट्राइक्स ने ईरान की सत्ता को पहले से ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी है। ऐसा इसीलिए भी हो पाया क्योंकि ईरान अपने ऊपर किए गए हमले के बदले इस जंग को पूरे खाड़ी में फैलाने में कामयाब रहा, और युद्ध की आड़ में ईरान लोगों के रेजिस्टेंस, जो ईरान की सड़कों पर दिख रहा था, उसे खत्म करने में कामयाब हुआ। एक तरफ जहां परमाणु ठिकानों को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति वाले समुद्री रास्तों पर कब्जा जमाने की जंग छिड़ी हुई है, जिस पर जंग शुरू होने से पहले ईरान का कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं।
2: ये सच्चाई है कि आज की तारीख में न्यूक्लियर हथियार से ज्यादा ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा। जब चाहेगा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जब चाहेगा खोल लेगा। तो ऐसा लगता है कि आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस युद्ध की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और जिसको कंट्रोल ईरान करता है, और ईरान का इसी कारण इस लड़ाई के अंदर ऐसा लगता है पलड़ा भारी है।
1: इन हमलों ने ईरान को खाड़ी का बड़ा खिलाड़ी देश बना दिया है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि होर्मुज जल मार्ग को फिर से खोलने के लिए ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है, जिससे तेल आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद जागी है। हालांकि अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो ईरान के किसी भी तरह के नियंत्रण या टोल टैक्स को इस क्षेत्र में स्वीकार नहीं करेगा। ईरान लगातार अपने प्रॉक्सी का उपयोग करके इस जंग को खाड़ी में फैला रहा है, जिससे अमेरिका के सहयोगी देशों पर लगातार नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ईरान समर्थित यमन के हूतियों ने रेड सी में हमले तेज कर दिए हैं। वो लगातार सऊदी अरब के तेल टैंकरों और आपूर्ति लाइनों को निशाना बना रहे हैं। यमन के मारिब और हद्रमौत प्रांतों में हुए हालिया हमलों में कई सैनिक मारे गए, जिससे 2022 से चला आ रहा नाजुक युद्ध विराम अब टूटने की कगार पर है। ईरान पर भी इस जंग का असर अब दिखने लगा है। अटकलें हैं कि युद्ध के लंबे खींचने, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक मोर्चे पर बन रहे असंतुलन को लेकर ईरान के भीतर भी राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। खबर है कि ईरान की संसद में विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियां की जा रही।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ जो महाभियोग का चार्ज है वो दिखा रहा है कि वहाँ के कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच में किस प्रकार से मतभेद हो रहा है, और ये दिखा रहा है कि IRGC और कट्टरपंथियों की ताकत कितनी ज़्यादा है, और ये दिखा रहा है कि जो उनकी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी या कुछ उन्होंने बयान दिए थे उसका कितना विरोध है। आगे यही होगा कि ईरान की कट्टरवादी और बढ़ जाएगी, अमेरिका के साथ डील होना और मुश्किल हो जाएगा, और जो भी कोई व्यवहारिक है या उदारवादी है उनका धीरे धीरे सूपड़ा साफ हो रहा है और पूरी ताकत कट्टरवादियों के हाथ में।
1: वहीं अमेरिका की पकड़ खाड़ी देशों से कम होती दिख रही है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। जानकार इसको मुस्लिम नाटो की तरह से देख रहे हैं, जिसका असर US पर अच्छा नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के हथियार भंडार की कमी, खाड़ी देश पर लगातार हो ईरानी हमलों ने इस समझौते के लिए रास्ता तैयार किया है।
3: So we have so much, plus we have supplies of munitions all over the world that if we ever needed them we take that. We're supplied all over the world, but we're in very, very good shape.
1: यानी एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शह और मात का खेल जारी है, तो दूसरी तरफ रेड सी से लेकर तेहरान के संसद भवन तक अनिश्चितता के बादल गहरा रहे हैं। जलमार्ग के खुलने से दुनिया को कुछ राहत मिलती है या हूतियों का नया दुस्साहस वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नए तेल संकट में धकेलता है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई। युद्ध के बीच से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, यानी सीज फायर के बीच के युद्ध से निकल कर जो खबरें आ रही हैं, उन सबको थोड़ा डिकोड करने के लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता सुमित चौधरी के पास। सुमित, सबसे पहले तो ये समझाइए कि ईरान के भीतर जो राजनीतिक उथल पुथल की खबरें आ रही हैं कि विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, इसकी तैयारी हो रही है, कितनी सच्चाई हम इसमें देखें?
5: श्वेता, इस समय ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। इस समय वहां पर बहुत बड़ा वैक्यूम भी क्रिएट हो चुका है, क्योंकि अब तक मुस्तफा खामनेई है तो सही, लेकिन वो आखिरकार किस लेवल तक इन्वॉल्व है ये भी संशय बना हुआ है। लेकिन अराग्ची को लेकर बहुत ज़्यादा अब ईरान की सोसाइटी में, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ नाराजगी भी है। मुझे याद है कि जब मैं जो सुप्रीम लीडर के जनाजे में गया था, जब सुपुर्दे खाक के उन्हें जा रहा था, तब मैं उन्होंने आम लोगों से बातचीत की, तो आम लोगों ने उस समय भी अराग्ची को लगातार सड़क पर प्रदर्शन किया था, उनको घेर लिया था, और उस समय वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और ये कहा जा रहा था कि आम लोगों में भी नाराजगी है कि आखिरकार जब देश लड़ने के लिए तैयार है, जब लगातार युद्ध आगे चल रहा था, तो फिर आपने निगोशिएशन सैंक्शंस क्यों की, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत अराकची के सामने यह है कि इस समय जो हार्डलाइनर्स वहां पर मौजूद हैं वो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अराकची ने कई जगहों पर नेगोशिएशंस में ईरान की जो मौजूदा स्थिति को वीक किया है। उन्होंने नेगोशिएशंस करने का आगे बातचीत बढ़ाई और सीज फायर के लिए उन्होंने सहमति जताई। इसके अलावा अराकची को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनकी जो अप्रोच है बहुत ज्यादा मॉडरेट है और यूएस के साथ उनका जो आप कह सकते जुड़ाव है या उनका जो उनका रिफ्ट है वो देश के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। यहां तक कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी है उन्होंने जो स्थिति पैदा की, उन्होंने जो लगातार नेगोशिएशंस की उसमें अमेरिका को एक तरीके से उस बातचीत के दौरान अमेरिका को स्टैंड दे दिया जहां पर वो उससे नेगोशिएशंस में ईरान से इनके ईरान के साथ बातचीत कर सके। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर कहा जा रहा था कि अराकची को लेकर वहां पर गुस्सा पहले भी था लेकिन अब लगातार वहां के कई पार्लियामेंटेरियंस वहां के कई एमपीज लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी वजह से हार्डलाइनर्स जो है वो अराकची के इंप्रीचमेंट की बात कह रहे हैं और जो माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ईरान में जैसे स्थिति ठीक होंगी वो इंप्रीचमेंट आगे बढ़ सकता है।
6: अच्छा, ये तो ईरान से जुड़ी हुई बात हुई लेकिन अब ये समझाइए कि अमेरिका को लेकर भी बहुत सारे दावे होने लगते हैं। जैसे ये कहा गया एक रिपोर्ट के जरिए कि अमेरिका की जो मिसाइल है वो लगभग अब खत्म है, उसका स्टॉक लगभग अब खत्म है, इसमें कितनी सच्चाई है?
5: श्वेता, इसमें सच्चाई भी है और इसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना। आपको बता दें कि एक मीटिंग के दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य अधिकारी को यह कहा कि आखिरकार ये जानकारी लीक कैसे हो रही है। अमेरिका की कई मल्टीपल मीडिया हाउसेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जो पेट्रियट मिसाइल्स है, उनकी कई जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या मिसाइल्स की जो खेप है वो 80% तक कम हो चुकी है और ये अमेरिका के लिए कंसर्न है। और ये कंसर्न खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तब जाहिर कर दिया जब उन्होंने इसको लेकर, इस लीक को लेकर रिपोर्ट मांगी, जवाब तलब किया। तो ऐसे में अमेरिका के लिए दिक्कतें उसकी, आप कह सकते हैं जो उनकी मिसाइल भंडार है उसकी कमी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है।
6: असल में इससे कंफ्यूजिंग युद्ध इससे पहले लड़ा नहीं गया होगा, ना तो इससे कंफ्यूजिंग शांति कभी आई होगी, क्योंकि ट्रंप जितनी बार धमकियां दे चुके हैं कि हम डील बस खत्म करने वाले हैं, अब ईरान पर हम अटैक करने वाले हैं, अरे हमारा हाथ रोक लिया इसलिए हम नहीं कर रहे, ये न तो अब ट्रंप को याद होगा अब, ना ईरान को अब याद रह गया होगा, लेकिन इस सबके बीच संभावना बन रही है कि फुल एंड फाइनल शांति हो।
5: श्वेता, कंफ्यूजन भी है और एक तरीके का इसको देखें कि अमेरिका का स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर भी है। अमेरिका और इसराइल ने 5 महीने पहले जब इस युद्ध की शुरुआत की गई थी तभी से वो कन्फ्यूजन दिखना शुरू हो गया था। अमेरिका पहले रिजिम चेंज की बात करता है, फिर यूरेनियम इनरिच यूरेनियम की बात करने लगा और फिर धीरे धीरे धीरे अब ये पूरा युद्ध जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आके सीमित हो गया। लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को यथास्थिति बनी हुई है और शांति दूर दूर तक होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अमेरिका के लगातार जो भंडार कम हो रहा है मिसाइलों का, लगातार जो अमेरिका पर प्रेशर है मिडल ईस्ट के देशों का, खास तौर पर सऊदी अरब का, वो जरूर दर्शा रहा है कि शायद अमेरिका अपनी शर्तों से शायद पीछे हट जाएगा और ईरान के साथ ऐसी यथास्थिति कायम कर लेगा जिसमें ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पैसा वसूल सकेगा, टैक्स वसूल सकेगा और उसको अमेरिका जस्टिफाई बताते हुए उससे एक सेफ एग्जिट कर लेगा।
6: बहुत शुक्रिया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब पूरी तरह से आसमान पर कब्जे की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। जमीनी मोर्चे पर जंग लगभग थमने के बाद दोनों देश अब ड्रोन और नए हवाई हथियारों के दम पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की मौतें अब दोनों ही देशों के लिए केवल आंकड़ा भर रह गई हैं, क्योंकि अब केवल सैन्य ही नहीं रिहायशी इलाके भी निशाने पर हैं, जिससे यह संघर्ष घातक मोड़ पर पहुंच चुका है।
7: यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस की 2 तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का दावा है कि जबरदस्त हमले के बाद दोनों रूसी रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है।

0: यूक्रेन युद्ध अब जमीन की सीमाओं से निकलकर पूरी तरह से आसमानी महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। आसमान में केवल बारूद की गंध और धुएं का गुब्बार ही नहीं, सीधे तबाही बरस रही है। हालिया हमलों में रूस ने यूक्रेन पर 24 बैलिस्टिक और 4 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। लेकिन इस पूरे हमले में सबसे खौफनाक बात हमला नहीं है, बल्कि यूक्रेन की मिसाइल डिफेंस का नाकाम रहना है। यूक्रेन इन हमलों में एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन का सुरक्षा कवच खत्म हो गया है? क्यों नहीं कर पाया यूक्रेन एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट? और क्या अब रूस यूक्रेन युद्ध अपने अंतिम चरण में है? रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाके दहल गए। मिसाइलें इतनी तेजी से आई कि आम नागरिकों को शेल्टर होम तक भागने का वक्त तक नहीं मिला। इन हमलों की भयावहता की गवाही क्विटनीव रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां ट्रेन के इंतजार में 8 लोगों की इन हमलों में मौत हो गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की इन हमलों को लेकर रूस पर आरोप लगा रहे हैं कि इन हमलों का मकसद सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि नागरिक और व्यापारिक लॉजिस्टिक्स सेंटर थे। लेकिन आरोप लगाते हुए वो शायद भूल गए कि रूस की तेल रिफाइनरियों और रिहायशी इलाकों पर हमले के आदेश किसने दिए थे।
1: देखिए, एक तो 4 साल हो गए हैं इसको और इतने लोग हताहत हो गए हैं इसमें, आप हैरान हो गए। 18 से 20 लाख लोगों की सोल्जर्स की मौत हो गई है इसमें, कैजुअल्टीज हो गए हैं। और ये वो कंट्रीज हैं जिनकी अपनी पॉपुलेशन रशिया की 14 करोड़ है और उनकी 3.5 या 4.25 करोड़ है यूक्रेन की। उनके पास बंदे नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए और ये वॉर ऑफ अट्रीशन जिसको हम कहते हैं, जो आपस में आमने सामने की लड़ाई हुई है, उसमें ये सारे हताहत हुए।
0: यूक्रेनी वायुसेना ने स्वीकार किया है कि रूस की तरफ से आने वाले 98 ड्रोन उन्होंने मार गिराए, लेकिन 24 बैलिस्टिक और 4 हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक भी मिसाइल को नहीं छू सके। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की तरफ से मिलने वाली पैट्रियट मिसाइलों में भारी कमी। दरअसल यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जारी जंग ने पूरी दुनिया में एंटी मिसाइल और गोला बारूद के स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। इसका सबसे ज्यादा असर यूक्रेन पर दिख रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि अमेरिकी रक्षा सलाहकारों की चेतावनी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले टालने पड़े। वहीं रूस पर यूक्रेन लगातार ड्रोन हमला जारी रखे हुए है। रूस के 200 मील अंदर तुला शहर पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। वहीं मास्को में हुए कार बम धमाकों की खबर है। इन धमाकों में रूस के ड्रोन निर्माता कंपनी के प्रमुख गंभीर रूप से घायल हो गए। इन हमलों से यूक्रेन की रूस के अंदर गुप्त अभियान जारी रखने की क्षमता का पता चलता है। जमीन की लड़ाई अब पूरी तरह से आसमानी हो गई। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों के शस्त्रागार खाली हो रहे हैं, यूक्रेन का एयर डिफेंस ढहने लगा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में ये आसमानी जंग और भी विनाशकारी रूप ले सकती है। वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से हिमाचल तक भूस्खलन, मलबा और बढ़ते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देवालवाण मार्ग पर बारिश शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। पहाड़ से लगातार मलबा और कीचड़ आने की वजह से सड़क बंद हो रही है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार करनी पड़ रही है। देवालवाण मार्ग बंद होने से आसपास के गांवों की करीब 8,000 की आबादी प्रभावित है। लोगों को इलाज, राशन और जरूरी कामों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाद अब बागेश्वर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो गए हैं और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांडा बागेश्वर हाईवे पर थपोली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहन मलबे में दब गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर लगातार दिखाई दे रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडोह बांध से बीबीएमबी ने ब्यास नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने से पहले लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंद सड़कें, भूस्खलन और बढ़ते नदी नाले लोगों के लिए चुनौती बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में भर्ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई की आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।

झारखंड में तीसरे राउंड से पहले गुटबाजी रिफॉर्म मंच और महतो गुट आमने सामने, एक टेबल पर आने को तैयार नहीं। आयसा के धरने पर बैठने से सरकार पर छात्रों को बांटने का आरोप। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जुबानी जंग। रिजिजू बोले प्रयागराज जाकर गलती, जाना चाहिए था रांची। राहुल गांधी ने कहा सिस्टम ने युवाओं को फंसाया, न रोजगार न नौकरी।

0: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में बड़ी खबर सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट का एक पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। जी हां, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 का पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। हादसे के बाद पायलट का डोप टेस्ट करवाया गया था। जांच पूरी होने के बाद दोनों ही पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया। DGCA इस मामले की जांच लगातार जारी रखे हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बड़ी खबर और बहुत ही हैरान और चौंकान कर देने वाली चौंकाने वाली खबर।
1: घटनाएं होती हैं तो डोप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। हालांकि अगर आप SOP जो एयरलाइंस SOP है पूरी दुनिया की, उसमें यही होता है कि जब कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट क्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनका एक अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट भी किया जाता है और उसके साथ साथ डोप टेस्ट भी किया जाता है। तो इसमें ये भी बड़ी बात है कि क्या थाईलैंड की जो अथॉरिटीज हैं उनके मामले में उनके साइट पे कोई इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई। और जो हमें सूत्रों के हवाले से बात पता चल रही है, हमें सूत्रों ने कन्फर्म किया कि जब एयर इंडिया 2379 का इंसिडेंट हुआ तो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से SOP के तहत इन दोनों पायलट का डोप टेस्ट किया गया था। और एयर इंडिया ने भी इस बात पर हामी जताई है। जब हमने उनसे पूछा डोप टेस्ट के बारे में तो उन्होंने कहा कि डोप टेस्ट हुआ था इन पायलट का SOP के तहत। सूत्रों के हवाले से हमें ये बात पता चल रही है कि एक पायलट ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं उस टेस्ट में। हालांकि एयर इंडिया कह रहा है कि उन्हें डोप टेस्ट के बारे में तो पता है लेकिन इसकी फाइंडिंग्स अभी तक एयर इंडिया के साथ साझा नहीं की गई है। एयर इंडिया ये भी दावा कर रहा है कि जो उनके पायलट हैं, क्रू हैं, ऑपरेटिंग पायलट जो होते हैं, इन सब का डोप टेस्ट और बाकी जो जरूरी इंटरनेशनल रेगुलेशंस के तहत टेस्ट होता है वो कंडक्ट कराते हैं अपने सभी क्रू मेंबर्स के लिए और आगे भी वो एजेंसीज के साथ कॉपरेट करते रहेंगे। अहम बात यह है,
0: बने रहे हमारे साथ। इससे पहले एक और बड़ी और अहम खबर बता दें कि इस पूरे मामले में एयर इंडिया की तरफ से बयान दिया गया है और एयर इंडिया की तरफ से साफ किया गया है कि अभी हमें ये रिपोर्ट नहीं मिली है। आपको याद होगा इस टर्बुलेंस के बारे में, जिसमें जबरदस्त तरीके से टर्बुलेंस के बाद कई जो यात्री थे बुरी तरह से घायल हो गए थे। और आपको बता दें कि इसी फ्लाइट की बात करें जिसमें पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है, इस तरह की जानकारी है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे शतक।

0: रांची छात्र आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी। दोपहर 12 बजे सरकार से वार्ता पर सस्पेंस बना हुआ है। तीसरे राउंड की बातचीत से पहले छात्रों के गुटों में खींचतान है। रिफॉर्म मंच और महतो कैंप के एक छात्र के दूसरे के साथ टेबल पर बैठने के तैयार नहीं है दोनों ही गुटों के छात्र। सरकार पर बांटने की राजनीति के आरोप लगाए। रांची में आंदोलन के बीच स्टेडियम में आईसा का अलग से गुट बैठा हुआ है। विरोध तेज हुआ। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार पर छात्रों को बांटने के आरोप लगाए। कहा अब अल गुलान होगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी विवाद में एमएलए जयराम महतो ने बड़ी घोषणा की। कहा छात्रों के समर्थन में आज रखेंगे निर्जला उपवास। छात्रों के आंदोलन के बीच रांची में सीएम हेमंत सोरेन की 4 सदस्यीय मंत्री समूह के साथ मीटिंग हुई। 4 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत चली। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी छात्रों और सरकार के बीच आज तीसरे दौर की अहम बैठक है। 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे छात्र। अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच 1-2 बातचीत बेनतीजा। नौकरी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हुआ। झारखंड सरकार ने समाधान के लिए फिर से बातचीत करने का फैसला लिया। पीएससी और जेएसएससी प्रदर्शन में पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा ने छात्रों से मुलाकात की। कहा छात्रों की आंखों में दर्द और तकलीफ साफ नजर आई। राहुल गांधी ने युवाओं को दिया दर्द डेटा दौलत का संदेश। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा उन्हें रांची जाना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, बोले जेंजी को गुमराह करने की कोशिश की गई। धर्मेंद्र प्रधान बोले मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी। कहा मेरे मंत्री पद में लिए महत्वपूर्ण नहीं, जेंजी भविष्य है देश का। 2027 की तैयारी में बीजेपी का यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल। नई टीम का ऐलान। क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने के लिए क्षेत्र और फ्रंट विंग प्रभारियों की नियुक्ति। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर अमित शाह ने क्रांतिकारियों को नमन किया। बोले चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस घटना ने सशस्त्र क्रांति को ऊर्जा दी थी। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला। बोला सरकार पर साधा निशाना। आरा में पूर्व आरजेडी जिला अध्यक्ष हुसैन के परिजनों से मिले, संवेदना जताई। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। राहुल गांधी ने नौकरी के मुद्दे पर बड़ी बात कही। कहा 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को मिलता है रोजगार। नोटबंदी और जीएसटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। कहा नोटबंदी और गलत जीएसटी ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बर्बाद कर डाला। आज नहीं मिलेगा मेक इन इंडिया। छात्रों की गूंज युवाओं में राहुल गांधी ने अपना दर्द बयां किया। आप दर्द आपका, डेटा आपका और दौलत सारी किसी और की। राहुल गांधी के यूथ आउटरीच पर टिप्पणी के बाद तरूण की सफाई, बोली पार्टी नेतृत्व पर हमला नहीं था। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले अपेक्षित भीड़ नहीं जुटा पाए। डेप्यूटी सीएम ने आरोप लगाया कि चुनावों में वोटों की फसल काटने आए थे राहुल गांधी। अखिलेश यादव का रिग्रेसिव सीक्रेट सोसाइटी पर हमला। कहा छुपे साजिशों को देश के सामने लाने की जरूरत नहीं। प्रगतिशील पीढ़ी अपनी वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सोच से भविष्य तय करे। वंदे मातरम के पूर्ण गायन के निर्देश पर पिनराई विजयन का विरोध। तत्काल वापस लेने की मांग की। देश ने इसे स्वीकार नहीं किया। सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए फैसला। एम के स्टालिन ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की है। कहा विधेयक की समीक्षा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। डीएमके सांसद कनेमोझी ने परिसीमन पर पार्टी का रुख साफ किया। डीएमके परिसीमन से पूरी तरह खिलाफ नहीं है, निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा। एयर इंडिया की फुकेट विमान के फ्लाइट के दोनों ही पायलट का डोप टेस्ट, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अचानक ऊंचाई से गिरने की घटना के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है। आम लोगों के लिए यूपीआई ट्रांसफर पूरी तरह से बना रहेगा मुफ्त, लेकिन कुछ मर्चेंट्स को बाद में देना पड़ेगा मामूली सा फीस। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसी मुस्तैद है। आतंकी हमले के मिल गए हैं इनपुट्स। बाद में राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में मॉक ड्रिल। पंजाब में बीएसएफ और सीआई की बड़ी कार्रवाई। करीब 30 किलो हीरोइन के साथ 2 की गिरफ्तारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मुझे सुशासन के पथ पर अविराम गतिशील रहने की प्रेरणा देती है। काकोरी कांड के 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी करेंगे हम हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत उन्होंने की। मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक युवाओं के साथ पैदल मार्च, डिप्टी सीएम समेत कई और मंत्री भी शामिल हुए। दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर राजनाथ सिंह ने अमर क्रांतिकारियों को नमन किया, बोले आजाद बिस्मिल और शफाउल्ला खान साथियों का बलिदान युवाओं के अटूट संकल्प का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त से अस्थायी विराम होगा, ट्रैक बहाली का काम वजह बनेगा। 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिवसीय यात्रा 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ संपन्न हो जाएगी। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को अकाली दल का मिल गया है समर्थन, सुखबीर बादल ने परिसीमन बिल को भी समर्थन देने का ऐलान किया। राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए गए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महिलाओं पर राहुल गांधी की सोच में बदलाव है, उम्मीद है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। राहुल गांधी का रिजिजू पर पलटवार, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, 3 साल के बाद भी कानून क्यों नहीं बना, इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को किया याद, श्रद्धांजलि दी, बोले महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन की आजादी लड़ाई और नई ऊर्जा अंग्रेजी शासन से मुक्ति का संकल्प जगाया गया था। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा परिसीमन बिल सदन में आने पर चर्चा करेंगे, एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजना चाहिए। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में जमात इस्लामी से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, यूएपीए केस के तहत 26 ठिकानों पर सुरक्षा बलों की और जांच एजेंसियों की छापेमारी। पंजाब के मलेरकोटला में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा, स्टेज पर चढ़ने को लेकर भिड़ गए थे कार्यकर्ता। आरक्षण पर मायावती के संघ को घेरा, कहा एससी एसटी आरक्षण पर न करे राजनीति, स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ने की दलील पर भी बोला हमला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले जनता परिवारवाद को समझती है, लोहिया उसके खिलाफ थे। सिद्धिविनायक मंदिर में चंदे चोरी के गड़बड़ी के मामले में फडणवीस ने जांच के आदेश दिए, पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा, राज ठाकरे ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। सहारनपुर में नोटों से सजी हुई कावड़ को देखने के लिए लोग उमड़े, एक कावड़ में करीब 2,70,000 रूपये लगाए गए जबकि दूसरी कावड़ को सजाने में खर्च किए गए हैं 50,000 रूपये के नोट। कावड़ की सुरक्षा के लिए साथ साथ चल रही यूपी पुलिस के जवान हरिद्वार से चलकर हरियाणा की यमुनानगर और जगाधरी पहुंचेंगे बाबा भोले के भक्त। गाजियाबाद में भी कावड़ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह, हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे हैं कावड़िए, पुष्प वर्षा की गई। यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी कावड़ियों पर परसाए फूल, बाबा भोले की भक्तों को खाने पीने की सामग्री भी बांटी गई। बुरके में कावड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद पहुंची हैं मुस्लिम महिला, 11 अगस्त को अपने पति अमन त्यागी के साथ डासना मंदिर में जलाभिषेक करेंगी तमन्ना। लगातार और भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, उखल बैराज पर यमुना का जलस्तर 205 मीटर के पार पहुंचा, हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, खतरे के निशान से ऊपर है यमुना। दिल्ली में बारिश का दौर जारी है, यूपी सदन के बाद झमाझम बारिश की तस्वीरें सामने आई। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलजमाव, सोना रोड पर वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक प्रभावित हुआ, वाहनों की रफ्तार थमी। सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने दरांग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कई पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन। शिवपुरी में तेज बारिश के बाद महुआ नदी उफान पर है, घरों स्कूलों मंदिरों में घुस गया पानी, कई गांव बाढ़ की चपेट में आए। राजस्थान के धौलपुर में भी गरज और चमक के साथ बारिश हुई है, सावन की बरसात से किसानों के खिल गए हैं चेहरे। तमिलनाडु के पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जलभराव का शहर की रफ्तार पर असर। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक चलेंगी तेज हवाएं। वीकेंड पर भी खुशनुमा रहेगा दिल्ली का मौसम, उमस भरी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। सूरत में वीडियो बनाने को लेकर युवक और महिला होमगार्ड के बीच तीखी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ है। सूरत में जब्त शराब पर चलाया गया रोलर, करोड़ों की शराब को नष्ट किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में 69 एटीएम कार्ड के साथ 2 शातिर गिरफ्तार, 2000 एटीएम फ्रॉड्स के मामले खंगाले जा रहे हैं, गिरोह के तार तलाशे जा रहे हैं। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 42 किलो से ज्यादा गांजा को बरामद, 2 की गिरफ्तारी। बिहार के सीतामढ़ी में पेड़ से टकरा गई थी पुलिस की जीप, चालक की मौत हुई, दरोगा समेत कई लोगों के जख्मी होने की खबर। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क पर बाल पकड़कर घसीटकर पति ने पत्नी को पीटा, थाने जाकर खुद ही एफआईआर दर्ज करवाई। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के लालच में साले ने 3 युवा साथियों के साथ मिलकर जीजा को मार डाला, चारों की गिरफ्तारी। अलवर में कुएं में नवजात बच्ची को फेंकने के मामले में 3 महीने के बाद गिरफ्तारी, आरोपी मां और बेटे को हरियाणा से अरेस्ट किया गया। अलवर में 8 फुट लंबे अजगर ने महिला पर अटैक किया था, रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ा। सूरत में ऑटो चालक के साथ भीड़ ने की थी मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिहार के सहरसा में पूजा का प्रसाद खाने के बाद 100 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की खबर, गांव में अफरा तफरी मची। जयपुर में पुरानी हवेली में मलबे से मिला खजाने का राज, करीब 66 किलो चांदी के साथ 5 की गिरफ्तारी। मुंबई के जुहू में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। भरूच में चलती हुई ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग का आतंक देखने को मिला, एक युवक की इसमें मौत हो गई है, दूसरा बाल बाल बचा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर भीषण हादसा हुआ, स्विफ्ट डिजायर कार खड़े हुए डंपर से जाकर टकराई, 2 की मौत, 3 घायल। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में कार से मिली थी लाश, खुलासा हुआ शराब पीने के बाद विवाद में पीट पीट कर हत्या की थी, 2 की गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या की गई, अवैध संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया गया। गौरना में विचाराधीन कैदी मित्र से जेल में मिलने गई थी नाबालिग लड़की, पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस ने लड़की को पकड़ के मामला दर्ज किया। लुधियाना में 5 गोलियां मारकर नौजवान लड़के की हत्या की गई, वारदात के बाद पुलिस ने बताया इसे रंजिश पुरानी। यूपी के मैनपुरी में अवैध मिल पर छापा मारा गया, आटे में मिलाया जा रहा था टेलकम पाउडर, फैक्ट्री को सीज किया गया। सूरत में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई, हवा में उछली कार बाल बाल बची, ऑटो और बाइक सवार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा का पूरा हादसा। ब्रिटिश कोलंबिया के वाइन और ऑर्चर्ड क्षेत्र में भीषण आग लगी, तेजी के साथ फैल रही है आग, रात भर में लगभग 2 गुना बढ़ने से हजारों लोगों को निकाला गया। पश्चिमी कनाडा में बेकाबू होती जंगल की आग से बढ़ गया खतरा, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रभावित इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने को कहा जा रहा है। चीन में घुड़सवारी के साथ शुरू हुआ मंगोलियाई नादाम फेस्टिवल, रंग बिरंगी मंगोलियाई पोशाकों ने खींचा ध्यान। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आसमान में रंगों का कार्निवल, सैकड़ों फीट ऊपर नजर आए खूबसूरत हॉट एयर बलून। हॉर्मुज को लेकर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बड़ा दावा, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का फैसला सिर्फ ईरान ही तय कर सकता है, ओमान वार्ता से नहीं तय होगा हॉर्मुज का भविष्य। अमेरिका में 11 सीनेटर्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए रखा है प्रस्ताव, 11 डेमोक्रेट सीनेटर्स ने कांग्रेस में पेश किया प्रस्ताव। अरब देशों को 5,000 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका, अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसकी पुष्टि की है, मिसाइलें बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात खरीदेंगे। कोसोवो में राजनीतिक गतिरोध के बीच संसद में संग्राम हुआ, सांसदों के बीच तीखी झड़प और हाथापाई। मोजतवा हमले की सेहत पर अटकलों के बीच ईरानी मीडिया ने जारी किया एक वीडियो, इजरायली मीडिया के गंभीर बीमारी के दावों को ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर ने वीडियो के जरिए खारिज किया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: और यह खबर है रांची से, जहां आंदोलन को लेकर बड़ी और अहम खबर यह कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि 12 बजे मुलाकात होनी है सरकार के साथ, मुलाकात होने जा रही है इन छात्रों की, और मतभेद उससे पहले ही देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने अलग अलग मिलने पर सहमति दी थी, छात्रों की मांग है कि सरकार से जो सहमत महतो गुट है, रिफॉर्म मंच है और राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों से अलग अलग मुलाकात होगी। छात्रों के बीच मतभेदों को देखते हुए सरकार ने अलग अलग मिलने पर सहमति जता दी है। अब छात्रों का कहना यह है कि छात्रों के गुटों के बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, अभी क्या ताजा जानकारी है, क्या तस्वीर है, क्या कुछ छात्रों की तरफ से डिसीजन लिया गया है?
2: तस्वीरें एक बार दिखाना शुरू कर देते हैं वहीं से ही। ये जो औपचारिक सरकार की ओर से जो ऑफिसर्स हैं, एसडीएम हैं और लोकल हैं, ये यहाँ पर पहुंचे हैं। तो छात्रों से इसने मुलाकात की है। बड़ी खबर ये कि इसलिए कि कहीं पर जो नाराजगी थी, छात्रों में सहमति थी कि भाई कुछ गैर राजनीतिक मंच है, कुछ छात्रों का मंच है, हम उसमें एक साथ मिक्स नहीं होना चाहते, तो सरकार ने भी सहमति दे दी कि यहाँ पर जहाँ जैसे मैं जहाँ पर हूँ ये रिफॉर्म मंच है, यहाँ पर प्योरली सिर्फ छात्र बैठे हैं। इसमें एक जो छोटा सा राजनीतिक दल है जिन्होंने समर्थन, जिन्होंने अपना संगठन और वहां पर मंच लगा रखा है, तो उनसे, उनके लोगों से मुलाकात है, उन्होंने भी 5 लोगों का नाम दिया है। तो आज दूसरे दौर की बातचीत होगी, जितने संगठन हैं हर किसी से होगी। पहले वो रिफॉर्म मंच से मिलेंगे, फिर महतो कैंप है उससे मिलेंगे, उसके बाद जो राजनीतिक दलों के छात्र संगठन हैं, क्योंकि कुल मिला के जो मांगे हैं वो लगभग एक ही हैं। और इसीलिए अब जो सहमति है कि 12 बजे के बाद यानी 2.5 से 3 घंटे मैराथन बैठक चलेगी। पहले दौर में क्या हुआ था ये भी आपको बता दें, पहले दौर में तमाम छात्रों ने मिले, उन्होंने अपनी ग्रीवांसेस को लिखित तौर पर दर्ज कराया कि हमारी मांगे हैं, और उसी मांगों के साथ साथ वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड हुए। फिर कल देर रात मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की मंत्रिमंडल को बुलाया, जो लोग मिल रहे थे उनसे उस पर अपडेट लिया क्या है। आज सरकार की ओर से छात्रों को यह बताया जाएगा कि सरकार का फैसला आखिर क्या है। बारी बारी हर किसी से मुलाकात होगी और यहाँ मन से छात्रों का डेलीगेशन अब तैयार हो रहा है जाने के लिए। शशि
0: आशुतोष, अब ये जो मुलाकात है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरे दौर की मुलाकात है, और जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि अगर अभी भी बात नहीं बनी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा और पूरे देश की नजर इस पर है। खासतौर से जिस तरह से आंदोलन हमने जंतर मंतर पर देखा, हमने शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन देखा, और जिस तरीके का समर्थन इन छात्रों को मिल रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर अभी भी मामला नहीं सुलझाया गया तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी सोरेन सरकार की।
2: और उसी डेडलॉक को खत्म करने के लिए कवायद हो रही है। तो आप लोगों ने शुरू में नाराजगी थी कि भाई सबके साथ नहीं बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे, तो सरकार ने कहां तक सहमति, क्या कुछ बातें हुई अब तक?
3: अभी तो वार्तालाप चल रहा है। अभी एसडीओ साहब आए थे लेने के लिए, अभी 4 साथी जा रहे हैं हमारे,
2: अब जा रहे हैं, अलग अलग बातचीत होगी। आज उन्होंने बताया कि आज वार्ता में क्या होना है, आज भी आप अपनी बात रखेंगे, सरकार आश्वासन दे,
3: जो मांग वही रहेगा, वार्तालाप उसी पर होगा।
2: और अगर ये नहीं होता है तो कल तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने आह्वान दिया, लोग पहुंचना शुरू हो गए,
3: हम लोग आह्वान कर दिए 2400 जिला में।
0: तो लगातार छात्रों की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि मांग वही रहेगी, सरकार को बता दिया गया है, सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, तभी जाकर कोई बात बन पाएगी। तीसरे दौर की आज मुलाकात होने जा रही है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
4: काश वो एआई आने से पहले सरकार की आई, यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
5: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
3: एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
4: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना एआई यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
5: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
3: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था। लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़े, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला। साथियों,
4: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको क्या रे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके एआई वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे एक गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर है।
3: क्या घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको

0: तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
1: काश वो एआई आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
2: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
0: एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
1: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना एआई यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
2: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
0: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था। लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़े, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला साथियों।
1: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कह रहे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके एआई वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर है।
0: क्या घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
1: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नहीं की जाना चाहिए था रांची। राहुल गांधी ने कहा सिस्टम ने युवाओं को फंसाया, न रोजगार न नौकरी। तिरंगा यात्रा के साथ सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमले की बौछार की, कहा पहले तिरंगा फहराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, वंदे मातरम को लेकर कहा अपमान बर्दाश्त नहीं। आरक्षण पर मायावती ने संघ को घेरा, कहा एससी एसटी आरक्षण पर न करें राजनीति, क्रीमी लेयर स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ने की दलील पर बोला हमला। और फुके दिल्ली फ्लाइट के अचानक से नीचे आने के मामले में घिर गए पायलट, डोप टेस्ट में एक पॉजिटिव निकला, मामले की जांच कर रही है डीजीसीए, एयर इंडिया का बयान, नहीं मिली रिपोर्ट।

झारखंड में तीसरे दौर की बातचीत, छात्रों के तीन अलग अलग गुटों से अलग अलग मिलेगी सरकार के चार मंत्रियों की टीम। 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने पर अड़े हुए छात्र, भर्ती परीक्षा के लिए सालाना कैलेंडर की मांग। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर जुबानी जंग, रिजिजू बोले प्रयागराज जाकर गलत

0: नमस्कार, आप आज तक देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन में बात हम करेंगे छात्रों से जुड़ी दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। जो पहली खबर है वो झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां चल रहे आंदोलन का आज है 16वां दिन। 15 दिन पूरे हो चुके हैं, 16वां दिन है। और आपको बता दें कि छात्रों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है, जो पूरी तरह से बेनतीजा रही है। इस बातचीत में छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। लिहाजा आज की जो बैठक होने जा रही है तीसरे दौर की, उस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम में बातचीत की थी। ये कार्यक्रम रखा गया था एक संस्था की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को सीधा निशाने पर लिया है। तो जवाबी हमलों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में, क्योंकि छात्र आंदोलन लगातार जारी है। हेमंत सोरेन सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच आज होनी है बातचीत और तीसरा दौर आज शुरू होगा। कोशिश ये की जा रही है कि बहुत जल्द बातचीत के जरिए आंदोलन को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन इसी प्रयास के बीच एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि छात्र गुटों में भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। आंदोलनकारी दो गुटों में आमने सामने नजर आ रहे हैं और दोनों ही के साथ सरकार से वार्ता के लिए राजी नहीं है दोनों। और आपको ये भी बता दें कि इसीलिए सरकार ने अलग अलग बातचीत का फैसला भी किया है। आंदोलन और इस खींचतान के बीच छात्रों ने कल विधानसभा मार्च की भी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि छात्रों का कहना यह है कि अगर अभी भी बीच का रास्ता नहीं निकलता या हमारी मांगों को नहीं माना जाता, तो इसके बाद अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं एक बार फिर से। आशुतोष, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर है, कितनी देर में ये मुलाकात शुरू होने जा रही है और क्या अलग अलग गुटों में ही सरकार के प्रतिनिधि ये बातचीत करेंगे?
1: हाँ, 12 बजे शशि समय है और हमारे पास उन छात्रों के डेलीगेशन का नाम आ गया है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा यहाँ पर प्रशासन के जो लोग थे, जो दरअसल लीजन ऑफिसर है इस समय छात्रों के बीच और उनके बीच है, तो वो हैं। 12 बजे से बैठक शुरू होगी सर्किट हाउस पर, जो कि स्टेट गेस्ट हाउस है। और सबसे पहले जो महतो ग्रुप है, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है। कैमरा अगर जूम करूंगा आप देखेंगे वहाँ पे 50 मीटर की दूरी पर जो कैंप बना है वो महतो कैंप है। तो वहां से चार छात्रों का ग्रुप जाएगा, उनके साथ जब बैठक होगी उस बैठक के बाद फिर ये जो रिफॉर्म मंच जिसके पंडालों में हूँ, ये पूरी तरह से छात्रों का मंच है जो यहाँ पर बैठे हैं उनके समर्थन में। भले लोग आ रहे, कल पीयूष मिश्रा यहाँ पर आए थे, आज एबीवीपी भी आई थी अपना समर्थन देने के लिए। अब यहाँ के मंच से जो चार पांच लोग छात्रों का ग्रुप है वो भी यहाँ से निकलेगा। लेकिन ये बैठक इसलिए जरूरत है, थोड़ी देर पहले छात्रों ने सरकार को जवाब भी दिया कि हमारी कोर मांगों से आप न हटे। हमारी कोर मांगे जो है वो है परीक्षा में 11वीं से 13वीं जो जेएसपीसी उसको रद्द किया जाए, सीजीएल की नियमितताएं फिक्स हो। लेकिन उन अनियमितताओं के बारे में कई लोग समझ नहीं पाते, वो अनियमितताएं क्या थी। तो छात्रों ने क्या किया है, बहुत रचनात्मक तरीके से बताया कि पूरा घोटाला है क्या। अब सीआईडी जांच कर रही है, आपको भी मन में सवाल आएगा कि भाई सीआईडी जांच से छात्र क्यों नहीं चाहते कि सीआईडी जांच करे, सीबीआई जांच हो, क्योंकि पूरा स्कैम खोल के रख दिया है। सीबीआई से छात्र गंभीर सवाल पूछ रहे हैं कि जेएसपीसी सीजीएल में चुप्पी क्यों है, जेएसपीसी में कार्यवाही हुई तो सीजीएल में क्यों नहीं हुई। और इतने सारे जब मिले हैं कि इतने सारे सबूत मिले हैं, और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ये वो अभय तिवारी, जिस अभय तिवारी को लेकर के कहते हैं ना, झारखंड में अगर परीक्षा की धांधलियों को आपको समझना हो ना, तो ये मास्टरमाइंड चेहरा दिखाई देता है कि नेपाल में रटे रटाए गए, सीजीएल परीक्षा में रैंक दुआ गया, ऐसी कोई परीक्षा है नहीं जिसको अभय तिवारी ने पास नहीं किया हो। कर्मचारी भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई है, FIR कच्चा चिट्ठा है, नेपाल कांड में सीबीआई की टीम जांच करती है, ऐसे कुछ गंभीर सवाल इन छात्रों ने पूछा है कि सीजीएल की जो धांधली आप कैसे फिक्स करेंगे। जेएसपीसी के जो सदस्य हैं वो खुद इस समय आरोपों के दायरे में है। कई जो सेंटर थे जहां परीक्षाएं होती हैं वहां पर दलालों का पकड़ा जाता था। इस बार छात्रों के जो आरोप है वो हवा हवाई नहीं है, उन्होंने हर चीज सबूतों को बाकायदा है रचनात्मक तरीके से दिखा दिया है। और इस वजह से कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड आपके राज्य में अगर खुला घूम रहा था तो धांधली क्यों नहीं होती थी। और उस धांधली का जो सबसे बड़ा विलन है उसको तो बाकायदा सिंबॉलिक बना दिया है कि अभय तिवारी, वीर सूरमा भोपाली, टॉपर है खिलाड़ी हर परीक्षा में। अब सोचिए एक आदमी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, वो टॉपर निकलता है, तो बाकी क्या नाड़ी है। तो छात्रों ने अब ये कहना कि युवाओं का आंदोलन है तो रचनात्मकता दिख रही है, वो बातचीत के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहां से जाने वाले हैं, और इसीलिए चाहते हैं कि जांच में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए जैसे परीक्षा में हुई है, और मांगों पर सरकार को सहमत होना पड़ेगा। शशि,
0: आशुतोष बने रहे आप हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि रांची में लगातार जारी आंदोलन के बीच छात्रों की मांग का कोई हल नहीं निकल सका है, ऐसे में तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा घेराव की तैयारियां तेज हो गई हैं और सियासत गर्माती जा रही है। इस खास रिपोर्ट को देखिए।
2: सोलह दिनों से जारी आंदोलन, छात्रों की कई मांगे, सरकार से दो दौर की वार्ता और हासिल बेनतीजा। राज्य में जारी छात्र आंदोलन पर तनाव हर दिन बीतने के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत का अब तक कोई असर नहीं हुआ है और ऐसे में अब आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। छात्रों ने प्रस्तावित विधानसभा मार्च की योजना पर अमल शुरू कर दिया है।
1: अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो आप समझिए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सोमवार यानी 10 अगस्त को जो आह्वान किया है कि पूरे झारखंड से हजारों छात्र यहां जुटेंगे, इन परीक्षा में धांधली अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा का मार्च करेंगे और उसी के लिए तैयारियां अब यहां पर शुरू हो चुकी हैं। छात्रों ने आह्वान दिया कि बिहार झारखंड के दूर दराज के जो इलाके हैं, जो भी इन परीक्षाओं में जिनको भी जिनके भी भविष्य का नुकसान हुआ है, वो तमाम सारे छात्र पहुंचे और इसीलिए सुबह से आप देखेंगे ज्यादातर जो छात्र वो 24 घंटे यहां पर डटे हुए हैं और उन्होंने आह्वान किया कि इसके पहले 10 तारीख को सारी सीमाएं बंद हो जाएं, 8 और 9 तारीख को ही वो रांची पहुंचना शुरू कर दें। और ऐसे में अब नजर होगी सरकार के साथ होने वाली उस बातचीत की। अगर बातचीत सकारात्मक होती है, सरकार से कोई ठोस आश्वासन मिलता है तो ये फिर अपने घर चले जाएंगे, लेकिन अगर आश्वासन नहीं मिलता है, बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो बस समझिए सिर्फ 24 घंटे और उसके बाद ये छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलकर विधानसभा की ओर मार्च करेंगे।
2: सरकार लगातार कोशिश में लगी है कि कैसे छात्रों को मनाकर आंदोलन खत्म कराया जाए। वार्ता के जरिए जल्द कोई रास्ता निकालने का प्रयास है, लेकिन अब आंदोलन के बीच नया पेंच फंसता दिख रहा है। आंदोलनकारी छात्रों का गुट ही आमने सामने आता दिख रहा है। एक तरफ रिफॉर्म मंच है, दूसरी ओर महतो गुट। दोनों एक दूसरे के साथ सरकार से बातचीत को तैयार नहीं है।
3: साफ हम मना कर दिए हैं और सरकार की तरफ से मेरे को ऑफर आया था आज कि हमारे टीम के जो डेलीगेशन में जाएंगे वो सारा ग्रुप के टेबल टॉक साथ में करेंगे, लेकिन हम लोग इसका क्लियरिफिकेशन कर दिए हैं कि नहीं, हम लोग जब भी बात करेंगे, हम लोग सरकार से वार्ता होगी तो केवल और केवल हम लोग जो छात्र हैं उस छात्र के साथ हम लोग बात करेंगे, ना कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी,
1: क्योंकि
4: रिफॉर्म हम लोग का नाम जो है
1: रिफॉर्म मंच,
3: हम लोग उनके साथ नहीं बात कर सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग जिस दिन हम लोग लगा गया कि नहीं पार्टी विशेष मंच बनते जा रहा है, उस दिन हम लोग पार्टी वहां से हटने का काम किया, तो हम लोग राजनीतिक पार्टी के साथ बैठ के कैसे टेबल टॉक कर सकते हैं।
2: इस बीच वाम छात्र संगठन आयसा ने भी अपना अलग विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में छात्र आंदोलन के बीच बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहले दो दौर की बातचीत में छात्रों ने सरकार के सामने कई अहम मांगे रखी हैं। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, परीक्षा दोबारा कराई जाए, सीबीआई से मामले की जाँच कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, परीक्षा की प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके साथ सरकारी परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर जारी हो। इस मांगों के बीच टकराव बना हुआ है। डुमरी सीट से विधायक जयराम महतो भी छात्रों के समर्थन में एक दिन के अनशन पर बैठ गए हैं।
5: बातचीत का दो तीन प्रयास हुआ है लेकिन प्रयास विफल रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है, कम से कम जन्म दिवस के दिन बच्चों को वो उदास और नाराज नहीं करेंगे, उनकी जो मांगे हैं उसे पूर्ण करेंगे, मैंने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, वो स्पष्ट हैं, साफ साफ हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए।
2: लगातार बढ़ती सियासत के बीच नजर अगले दौर की वार्ता पर है, जिसके बाद ही आंदोलन के भविष्य का फैसला होगा। रांची से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, समझना हम ये भी चाहेंगे, हमने देखा कि छात्रों की तरफ से दो टूक कह दिया गया है कि उनकी मांगों को माना जाए वरना वो आगे की स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। कितनी देर में ये मुलाकात शुरू होने जा रही है, साथ ही साथ क्या किसी भी तरह की नरमी हम सरकार की तरफ से भी देख पा रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे की मैराथन बैठक कल खुद मुख्यमंत्री ने की है।
1: नरमी इस बात को लेकर के है कि छात्र अब तक जो जो शर्तें रखते जा रहे हैं वो यहाँ पर है, उनका आंदोलन भी यहाँ पर चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम अलग अलग मिलेंगे। नरमी तब हम वास्तविक रूप से देखेंगे कि जिस दिन के लिए, जिस आश्वासन के लिए 16 दिनों से छात्रों का जमावड़ा यहाँ पर झारखंड में रांची में, जो कि मूसलाधार बारिश हर दिन में कम से कम 4 बार होने लगती है, वो यहाँ बैठे हैं, वो अगर मान लें और ऐसे आसार दिखाई पड़ते नहीं हैं, तो दिन भर यहाँ नारेबाजी आंदोलन जो चल रहा है, वो छात्र यहाँ रहना थोड़ी चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि यहाँ से वो चले जाए। एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, संभवतः प्रशासन के लोग फिर आए हैं बातचीत करने के लिए। वो बातचीत इसीलिए हो रही है कि यहाँ से वो निकल सके। तो यहाँ पर कन्विंस किया जा रहा है कि छात्रों का डेलीगेशन में कौन कौन जाएगा, क्या सब हो सकते हैं। तो एक नरमी जरूर दिखाई है कि सरकार इस बात के लिए तैयार है कि हर किसी से अलग मुलाकात हो। मांग दरअसल ये है कि क्या 11वीं 13वीं परीक्षा रद्द होगी, नियुक्तियां रद्द होंगी, दोबारा परीक्षा होगी, और क्या सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार होगी। छात्रों ने भी नरमी दिखाई। पहले वो कह रहे थे कि हम भाई सीधा सीधे हेमंत सोरेन से मिलेंगे, और अगर हेमंत सोरेन नहीं आते तो और किसे मिलना मंजूर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी नरमी दिखाई। उसके बाद छात्रों ने कहा ठीक है, मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल है, बात कर लेते हैं। अलग अलग गुट की बातचीत हुई है, लेकिन दौर ये दूसरा है। आज ये दूसरा दिन होगा जब इनसे होगी, फिर युवाओं के जो राजनीतिक दलों के छात्र संगठन उनसे होगी। तो वो कह रहे हैं कि आप एक घोषणा पत्र किसी तरह कम से कम घोषणा कीजिए जो कानूनी रूप से वैध हो, या तो कोई गेजेट नोटिफिकेशन हो, सरकार का आदेश हो। इस तरह का जब तक कोई आदेश नहीं होता कि इनकी मांगे मान ली गई हैं, तब तक ये जारी रहेगा। और छात्रों ने इस बीच एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आह्वान किया है अपने तमाम छात्रों को, हजारीबाग से लेकर के कोई भी झारखंड का जिला हो, कि आप यहां पर पहुंचे। और छात्र आने लगे हैं अलग अलग जगहों पर। तो अगर ये ऐसा नहीं होता तो समझिए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल सुबह 9 बजे से मार्च करना शुरू कर देंगे।
0: हम समझ सकते हैं, इंतजार अब किया जा रहा है कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। सबकी निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दो बैठकें बेनतीजा रही हैं। और अब बात हम करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने कल प्रयागराज में छात्र गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। प्रयागराज के केपी ग्राउंड पर हुए इस कार्यक्रम में छात्रों की भारी भीड़ थी। प्रयागराज ही नहीं, पटना और अन्य शहरों से भी छात्र इलाहाबाद पहुंचे थे। छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, 3D फॉर्मूला दिया। राहुल गांधी ने द डेटा और दौलत की भी बातें कही।
6: नमस्कार भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो, हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st century इकोनॉमी।
0: तो राहुल गांधी के प्रयागराज शो पर बीजेपी अब हमलावर है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक पूछ रहे हैं कि रांची क्यों नहीं जाते राहुल गांधी, तो वहीं यूपी कैबिनेट के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता इसे फ्लॉप शो कह रहे हैं।
7: मैं राहुल गांधी से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं, क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है, ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है।
8: निश्चित रूप से ये दर्शाता है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, विदेश में जो क्लब पब उस तरह से जो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, वो यहाँ संघर्षरत कार्य पूर्वांचल से सहित प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो बघाड़ा में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो सलोरी में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो तिलियरगंज में रह करके संघर्ष कर रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया और इस दौरान सीएम योगी ने खुद तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इसकी शुरुआत की। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान हर किसी की जिम्मेदारी है।
9: बच्चों के साथ, युवाओं के साथ हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। तिरंगा हमारे घर में लगे, हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है।
0: और इसी के साथ हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
10: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है, उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।

आज के समय में मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट करना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके बाद 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूपीआई मर्चेंट पेमेंट्स पर एमडीआर लग सकता है। दरअसल संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके बाद यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खुल सकता है। आसान भाषा में समझे तो एमडीआर वो फीस होती है जो दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0 MDR लागू है, लेकिन आगे चलकर इस पर एक तय सीमा के बाद चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित बदलाव के बाद कई तरह के विकल्पों पर चर्चा हो रही है, जिनमें बड़े कारोबारियों के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू या टर्नओवर के आधार पर एमडीआर लागू करने पर विचार हो सकता है। वहीं 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले बड़े कारोबारियों को दायरे में लाने का प्रस्ताव सामने आया है और 2,000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर 0.3 से 0.5% तक एमडीआर लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन कुल यूपीआई वॉल्यूम का महज 4% है, लेकिन कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी करीब 67% है। अनुमान है कि अगर इस तरह का मॉडल लागू होता है तो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को हर साल 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है, लेकिन इस संभावित बदलाव का असर ग्राहकों और कारोबारियों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक 53% लोग एमडीआर लागू होने पर 3,000 से महंगे पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल घटा सकते हैं। वहीं 27% लोग क्रेडिट कार्ड, 14% डेबिट कार्ड और 12% बैंक ट्रांसफर या नगद भुगतान का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि 18% लोगों का कहना है कि अगर अतिरिक्त लागत दुकानदार खुद वहन करें तो वो यूपीआई का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सर्वे में शामिल 12% लोगों ने कहा कि वो चार्ज लगने के बाद भी यूपीआई का इस्तेमाल करते रहेंगे और 14% लोगों ने कहा कि उनका फैसला लगने वाले शुल्क पर निर्भर करेगा। सरकार ने संशोधन प्रस्ताव में सेक्शन 10A हटाने का प्रावधान किया है, जो फिलहाल 0 MDR का प्रावधान देता है, लेकिन फिलहाल ग्राहकों पर किसी तरह का प्रत्यक्ष शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। जानकारों का मानना है कि पेमेंट सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए राजस्व मॉडल की जरूरत हो सकती है। साफ है कि इसके बाद ये बहस तेज हो सकती है कि देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को आगे कैसे फंड किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

झारखंड में थोड़ी देर में तीसरे दौर की बातचीत, रिफॉर्म गुट महतो कैंप बाकी छात्रों से अलग अलग मिलेंगे मंत्रियों की टीम। 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने, ओएमआर जारी करने और भर्ती परीक्षा के लिए सालाना कैलेंडर की मांग। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर जुबानी जंग, रिजिजू बोले प्रयागराज जाकर की गलती जाना चाहिए रांची। राहुल गांधी ने कहा सिस्टम ने युवाओं को फंसाया, न रोजगार न नौकरी। तिरंगा यात्रा के साथ सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमले की बौछार की, कहा पहले तिरंगा फहराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, वंदे मातरम को लेकर कहा अपमान बर्दाश्त नहीं। आरक्षण पर मायावती ने संघ को घेरा, कहा एससी एसटी आरक्षण पर न करें राजनीति, क्रीमिलियर स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ने की दलील पर बोला हमला। और फुकेट दिल्ली फ्लाइट के अचानक से नीचे आने के मामले में घिरे पायलट, डोप टेस्ट में एक पॉजिटिव निकला, मामले की जांच जारी, डीजीसीए एयर इंडिया का बयान, नहीं मिली रिपोर्ट।

नगर पावन तीर्थ बन जाते हैं, भक्त खुद भगवान बन जाते हैं जब महाकाल स्वयं भक्तों से मिलने आते हैं। सावन के पवित्र महीने में महाकाल के अद्भुत भक्त, अविश्वसनीय भक्ति, अकल्पनीय दृश्य,

काल यानी समय, काल यानी मृत्यु। कहते हैं काल के आगे किसी की नहीं चलती, तब सोचिए महाकाल के आगे किसी की क्या हैसियत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज उन्हीं महाकाल के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय संसार में आपको लिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों ये मान्यता है कि कोई अधिकारी, कोई मंत्री उज्जैन नगरी में रात नहीं बिता सकता? क्या आप जानते हैं क्यों भस्म से श्रृंगार किया जाता है महादेव का, और क्यों महाकाल की राजसी सवारी में वर्दीधारियों का अनुशासित परेड होता है? अविश्वसनीय सवालों के अकल्पनीय जवाबों के साथ चलिए अद्भुत महाकाल लोक।

0: सावन के महीने में महाकाल के दरबार में भक्ति की ये अद्भुत तस्वीर। महाकाल राजा के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं, तब पूरा शहर ही शिवालय बन जाता है।
1: राजा हैं यहाँ के, तो नगर भ्रमण के लिए स्वयं ही अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकलते हैं।
0: भक्तों में महाकाल का रूप उतर आता है।
2: जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है।
0: सामने आते हैं महाकाल तो समय वहीं ठहर जाता है।
3: बाबा महाकाल जो है वो राजा धीराज है, वो ब्रह्मांड के नायक है।
0: 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की महिमा अलग है, उनका हर रूप अलौकिक है।
2: अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है।
0: उनकी पूजा की विशिष्ट विधि से लेकर उनके श्रृंगार तक का विधान अलग है। जो राख इंसानी देह का अंतिम सत्य है, वो क्यों बना महाकाल का श्रृंगार? हर दिन की शुरुआत महादेव को भस्म के स्नान से होती है।

0: भस्म से कराया जाता है महादेव को स्नान।
1: धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं।
2: जैसा बाबा महाकाल हाथ चला देता है वैसा बाबा महाकाल का श्रृंगार हो जाता है।
3: जब भगवान को भस्म अर्पण होता है तब भगवान निराकार रूप में व्याप्त होते हैं।
0: क्या सचमुच कोई भी राजा कोई भी शासक उज्जैन में रात को नहीं रुक सकता?
4: अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है।
0: क्यों उज्जैन को ही महाकाल की धरती माना गया? क्यों महाकाल है उज्जैन के शाश्वत राजा? क्यों सावन के महीने में आज भी मंदिर से बाहर निकलते हैं महाकाल और शान से निकलती है उनकी वो सवारी जिसमें प्रशासन के सिपाही उनकी सेवा में साथ चलते हैं?
2: भगवान महाकाल राजा स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देते हैं।
5: ऐसा लगता है कि पालकी में साक्षात भोलेनाथ विराजमान होके निकले और भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं।
6: महाकाल की नगरी बहुत बढ़िया लग रहा, आनंद आ रहा महाकाल।

जब कुछ भी नहीं था तब शिव थे, जब कुछ नहीं होगा तब शिव होंगे। आज अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय में हम आपको देवाधिदेव महादेव, जो आदि भी हैं, अनंत भी, जो भोलेनाथ हैं, तो रुद्र रूप भी, जो काल के स्वामी हैं, उन महाकाल के अलौकिक संसार लिए चलते हैं।

राजा मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और जब निकलते हैं तो सारे सांसारिक पद और प्रतिष्ठाएं गौण हो जाती। श्रावण मास के हर सोमवार को प्रचंड आस्था के बीच महाकाल की सवारी उज्जैन में निकलती है और वो दृश्य अद्भुत होता है। हम आपको महाकाल की इस सवारी में अपने साथ लिए चलते हैं।

0: जहां पैर रखने की जगह नहीं बचती, वहां कण कण में महाकाल के प्रति आस्था का सैलाब उमड़ता है। हर किसी को यह अनुभव होता है कि विशाल भीड़ में भले वो महाकाल को न देख पाए, लेकिन महाकाल उन्हें देख रहे हैं, उनकी आस्था को ग्रहण कर रहे हैं।
1: 15-20 साल हो गए हमको बाबा के दर्शन करते करते, चैतन्य वीर हनुमान के यहाँ से देखते बाबा दर्शन देते, बहुत बढ़िया।
2: 10 साल से आ रहे हैं पैदल महाकाल दर्शन करने के, बहुत प्यारा रूप है उनका, उनके दर्शन होते ही हमारी सब थकान उतार जाती है।
3: बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनको देखते से ही मेरे को आँखों से आंसू निकल आते हैं।
0: महाकाल के प्रति अद्भुत आस्था उज्जैन की ऊर्जा है, जो लोगों की सांसों में और आचरण में बसती है। डम डम डमरू, झाल, मृदंग के साथ जब महाकाल की सवारी निकलती है तो वो अद्भुत होती है। संसार में ऐसी भक्ति कहीं और नहीं मिलती। इस समय वहां उपस्थित हजारों लोगों के मन को पढ़ पाना मुश्किल नहीं होता, उनकी आंखें, उनके भाव सब कह देते हैं।
4: बहुत ही आनंद आए, और बाबा तो सबको हमारे हमारे उज्जैन के महाकाल के राजा हैं, और हम धन्य होते हैं उनके दर्शन पाकर। मैं तो 5 ईयर की थी जब से देखती आ रही हूँ, और मेरी 50 एज है।
5: बहुत अच्छा लगा,
6: मन खुश हो जाता है महाकाल की सवारी देखकर, आनंद आता है।
5: सभी दूर से आए, इतनी दूर से इतनी भीड़ में दर्शन करने बाबा के,
6: हमें बहुत अच्छा लगता महाकाल के।
5: कैसा लगा बोल?
0: कई कई दिन पहले से महाकाल के नगर भ्रमण की तैयारियां शुरू हो जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए रूप धारण करते हैं। इन्हें देखिए, ये शैलेंद्र व्यास हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल, लेकिन महादेव के प्रति श्रद्धा के वशीभूत ये दशकों से महाकाल की सवारी का हिस्सा बन रहे हैं, वो भी एक अलग रूप धारण करके।

0: विशाल कलश लहराते हुए आनंद और मस्ती के द्वार पर तोरण द्वार सजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या छत, क्या चौबारा, क्या छज्जा, चौ और आनंद और मस्ती के इंद्रधनुष छाए हुए हैं।
1: महाकाल उज्जैन के राजा हैं और जब इस रूप में निकलते हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें सलामी दी जाती है। प्रशासन महाकाल की सवारी की व्यवस्था राजा की तरह ही करता है। ये वो भाव होता है जिसमें ये माना जाता है कि एक राजा अपनी प्रजा के बीच निकले हैं उनका हाल चाल लेने के लिए। महाकाल की सवारी सावन में ही निकलती है और सिर्फ सोमवार के दिन ही निकलती है, पर ऐसा क्यों होता है इसके भी कई आध्यात्मिक कारण हैं। सावन के महीने को आध्यात्मिक ऊर्जा के तौर पर पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें वायुमंडल भी स्वच्छ रहता है। लेकिन 12 महीनों में क्यों सावन ही पसंद है महाकाल को, इसके पीछे कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं।
2: अपने कंठ में जब उन्होंने विष को धारण किया था, उनका शरीर ज्वलनशीलता का प्रभाव उनके ऊपर अत्यधिक हुआ, जिसके कारण चंद्रमा ने उनको शांत करने के लिए उसके मस्तिष्क पे धारण हुए, परंतु फिर भी उनकी ज्वलनता शांत नहीं हुई। तब माँ पार्वती ने प्रार्थना की सृष्टि से और सृष्टि में जल वर्षा के प्रभाव से संपूर्ण रूप से हरियाली व्याप्त हुई। इस हरियाली के प्रभाव से भगवान की ज्वलनशीलता शीघ्र शांत हुई और भगवान प्रसन्न होकर प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में संपूर्ण सृष्टि पर कैलाश से निकलकर विचरण करते हैं।
1: सोम यानी चंद्रमा, वार यानी दिवस, यानी चंद्रमा का दिवस। महाकाल ने चंद्रमा को सर पर धारण किया है जिसके कारण यह दिवस बेहद पवित्र माना जाता है, न केवल सावन में बल्कि हर महीने। कहते हैं कि महाराजा भोज ने 11वीं सदी में महाकाल की सवारी की परंपरा शुरू की थी। इसके बाद सिंधिया राजाओं ने इस परंपरा को और विस्तार दिया। आज भी उसी वैभव और शान के साथ महाकाल की सवारी निकलती है मंदिर परिसर से पालकी में, आगे हाथी पर सवार होकर। सवारी में वैसे तो कई वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन डमरू का विशेष प्रयोग और महत्व होता है और इसका सीधा संबंध महाकाल की महिमा से।
3: इंसान के मन को चंचल कहा जाता है, किसी बंदर की तरह जो कभी इधर कभी उधर भटकता है, लेकिन वो डमरू की आवाज पर मदारी के इशारे पर नाचता है। शिव मन को नियंत्रित करने की प्रेरणा देते हैं और डमरू की डम डम उसी का प्रतीक है।
1: अद्भुत पौराणिक और मध्यकालीन परंपराओं की अविश्वसनीय संगम होती है ये यात्रा। हाथी, घोड़े, तलवारबाज मध्यकालीन समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो भूत, पिशाच, गण पौराणिक मान्यताओं का सजीव चित्रण करते प्रतीत होते हैं। और अंत में ये वो घड़ी होती है जब खुद कालों के काल महाकाल निकल रहे होते हैं सड़कों पर। ऐसा भी संसार में कहीं और नहीं होता। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, यानी मैं शिव भगवान को नमन करती हूं जो निर्वाण रूप हैं, सर्वव्यापी हैं, ब्रह्म और वेद स्वरूप हैं। शिव रुद्राष्टकम की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी जिसमें भगवान शिव के अलग अलग रूप और गुण का वर्णन है। इन्हीं रूपों में है उनका महाकाल रूप। महादेव महाकालेश्वर के रूप में उज्जैन में वास करते हैं। यूं तो शिव जी की उपासना कई तरह से की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर में भस्म आरती की अद्भुत परंपरा है।

जो विश्व के विश्वनाथ वो यहाँ रुद्र है। जो संसार में महादेव वो यहाँ प्रलयंकारी हैं, जिन्हें दुनिया शिव शंकर के रूप में पूजती है वो यहाँ प्रचंड हैं, काल के भी काल महाकाल हैं। रात्रि के तीसरे पहर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब उज्जैन में महाकाल की नगरी जागती है। ये वो समय होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सर्वाधिक सक्रिय होती है। इसी पवित्र समय में पट खुलते हैं महाकाल के और प्रारंभ होती है महाकाल के अद्भुत श्रृंगार के साथ भस्म आरती। महाकाल को पहले पवित्र गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान संपन्न होता है।

स्नान के पश्चात प्रारंभ होती है महादेव के रूप श्रृंगार की प्रक्रिया। प्रतिदिन महादेव को एक नया रूप धारण कराया जाता है और इसकी भी एक अद्भुत मान्यता है।

0: बाबा महाकाल निराकार और साकार दोनों रूप हैं, इसलिए बाबा महाकाल निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। साकार रूप अर्थात शिव से शंकर बनते हैं, तो जब शंकर बनते हैं तो बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किए जाते हैं। कभी बाबा महाकाल मन महेश के रूप में श्रृंगार देते हैं, तो कभी उमा महेश के रूप में, कभी अर्धनागेश्वर के रूप में श्रृंगार होता है। जब हम श्रृंगार करने बैठते हैं मंदिर का जो पुजारी परिवार, तो पहले से यह नहीं रहता कि क्या श्रृंगार करना है, जैसा बाबा महाकाल हाथ चला देता है वैसा बाबा महाकाल का श्रृंगार हो जाता है।
1: ये माना जाता है कि महाकाल के प्रतिदिन परिवर्तित होने वाले रूप सृष्टि के चक्र में निरंतर होने वाले परिवर्तन के प्रतीक होते हैं। आम धारणा ये भी है कि महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं और हर रूप के साथ एक अलग संदेश और आशीर्वाद होता है। जैसे महाशिवरात्रि में महाकाल का श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया जाता है, जबकि सावन के महीने में राजाधिराज की तरह, और दोनों का अर्थ और महत्व अलग अलग है।
0: जब पुजारी श्रृंगार करने के लिए चालू करता है तो उसके मन में जो भगवान भाव दे देता है वही भाव श्रृंगार के अंदर आ जाते हैं। कभी राजा के रूप में आ जाते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं, कभी योगी के रूप में आ जाते हैं, कभी भगवान शिव के साथ में माता पार्वती विराजमान हो जाती है। ये उस समय जो भावना आती है बस उसी पर बाबा का श्रृंगार चालू हो जाता है। पहले से किसी प्रकार का इसमें यह नहीं रहता है कि आज हम जाकर ये बनाएंगे या ये स्वरूप होगा बाबा का कि वो स्वरूप होगा।
1: जब रूप धारण कर लेते हैं फिर शुरू होती है भस्म आरती। आखिर क्यों होती है महाकाल की भस्म से आरती? सिर्फ उज्जैन ज्योतिर्लिंग में ही क्यों होती है भस्म आरती? ये भस्म आरती होती है या भस्म से महाकाल का प्रथम स्नान? भस्म आरती में प्रयोग होने वाली राख कहां से आती है? क्या चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती की जाती है? और जैसी की मान्यता है, क्यों महिलाओं को भस्म आरती देखना वर्जित है? महाकाल शमशान वासी है। महाकाल की आरती जब भस्म से की जाती है तो ये संदेश होता है संसार की नश्वरता का और देह के राख से अंतिम संबंध का।
2: मृत्यु के देवता होने के नाते अगर हम देखें तो इस चराचर ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है? कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसकी अंतिम गति क्या होती है? भस्म होना है। जो अंतिम सत्य है उसको जो धारण करता है वो शिव है। तो बाबा महाकाल चूंकि मृत्यु के देवता हैं, तो इस धरती का जो अंतिम सत्य है उसको वो नित्य अपने ऊपर धारण करते हैं, उससे अभिषेक करते हैं और उससे अपना श्रृंगार करते हैं। यानी कि सत्य से जो श्रृंगार करता हो वो महाकाल है।
1: महादेव की उपासना में अभिषेक का महत्व बड़ा होता है। इस शब्द को इस संदर्भ में देखें तो मतलब होता है पवित्र जल से स्नान कराना। पौराणिक कथा यह है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिससे उनका शरीर गर्म हो गया। उस जलन को दूर करने के लिए तब देवताओं और दानवों ने मिलकर उनका अभिषेक किया। तब से अलग अलग सामग्री से उनके अभिषेक की परंपरा है। वैसे तो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में अभिषेक की विधि एक समान रहती है, पर केवल महाकालेश्वर की भस्म स्नान या भस्म आरती की परंपरा है। बारह ज्योतिर्लिंगों में केवल उज्जैन में ही महादेव महाकाल रूप में विराजमान है और इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं।
3: महासती को जो लेकर के भगवान महाकालेश्वर जो शिव जी चले थे, तो उज्जैन अवंतिका जो है अवंतिका नगरी में आकर के भगवती को महासती जो है वो पूर्ण रूप से भस्म जो साक्षात मतलब भस्म के रूप में हो गई थी, और भस्म रूप में भगवान शिव जी ने महाकाल को वो भस्म लेकर के भगवती सती का जो है अपने मस्तक पे धारण किया था, अपने शरीर के ऊपर धारण किया था।
2: दैत्य के वध के लिए ब्राह्मण बच्चों के रक्षार्थ जो बाबा के भक्त थे उनकी रक्षा के लिए बाबा यहाँ पर प्रकट हुए थे। काफी आक्रोशित भाव से प्रकट हुए थे कि ये छोटे बच्चों का वध करने जा रहा है, तो इसलिए फिर हुंकार भरी और काल रूप में प्रकट हुए और उसका वध किया और फिर यहाँ पर वो भगवान महाकाल के रूप में स्थापित हो गए।
1: कई लोगों का मानना है कि महाकाल भस्म से स्नान करते हैं, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो महाकाल का स्नान श्रृंगार से पहले ही हो जाता है और श्रृंगार के पश्चात भस्म के साथ आरती होती है, जिसे भस्म आरती कहा जाता है। महाकाल से मृत्यु पर विजय के साथ जीवन में मंगल का आशीर्वाद भक्त लेते हैं, इसी कारण से इसे मंगला आरती भी कहा जाता है।

0: ये कहा जाता है कि प्राचीन काल में अखंड ब्रह्मचारियों या साधु संतों की चिता की राख से महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन समय के साथ भगवान की आरती के लिए मनुष्यों की चिता की राख का प्रयोग अतार्किक लगने लगा, इसे रोक दिया गया। अब जिस राख का प्रयोग होता है उसे पीपल, शमी, पलाश, बरगद, अमलताश, बेर के पेड़ों की लकड़ी और कपिला गाय के कंडों को जलाकर प्राप्त किया जाता है। इसे लौकिक भस्म भी कहा जाता है।
1: भगवान महाकाल के ऊपर भी 2.5 किलो की पोटली से 5 मंत्रों से अभिमंत्रित कर भगवान शिव के ऊपर गाय के उबले जो कंडे होते हैं उसकी भस्म भगवान पर रमाई जाती है।
2: बाबा महाकालेश्वर की जो भस्म है वो यहाँ पे शुद्ध गाय के गोबर से निर्मित होती है, न कि कोई चिता की होती है।
0: मान्यता यह है कि महाकाल स्नान के समय दिगंबर रूप में होते हैं और उन्हें उस रूप में महिलाओं को देखना उचित नहीं माना जाता। दूसरे ये भी व्यवस्था है कि महाकाल के स्नान, श्रृंगार और भस्म आरती के समय अधो वस्त्र ही पहना जाता है, यानी सिर्फ कमर से नीचे बिना सिला वस्त्र। यही कारण है कि पुजारी केवल धोती धारण करते हैं भस्म आरती के समय।

जब भगवान को भस्म अर्पण होता है तब भगवान निराकार रूप में व्याप्त होते हैं। उस समय महिलाओं को उस स्वरूप का दर्शन निषेध किया गया है। भस्म चढ़ते समय मंदिर प्रांगण में भी यही कहा जाता है कि महिलाएं अपना घूंघट अथवा पट धारण करें, जिससे उस निराकार स्वरूप को ना देखें परंतु भस्म आरती एवं प्रातः मंगला आरती के दर्शन महिलाएं कर सकती हैं।

भस्म यानी अंत और अंत यानी मृत्यु, और जब अंत की प्रतीक ये भस्म महाकाल का श्रृंगार बनती है तो ये केवल उनकी आराधना नहीं मृत्यु का उत्सव बन जाता है।

शिव आदि यानी प्रारंभ भी है और अंत यानी समापन भी है। भस्म आरती आदि से अंत तक की ऐसी अद्भुत यात्रा है जो धरती पर कहीं और देखने को नहीं मिलती।

0: आस्था श्रद्धा और भक्ति के भाव के अलावा महाकाल एक ऐसे रहस्य की ओर भी अनादिकाल से संकेत दे रहे हैं जो अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय है। महाकाल को उज्जैन का शाश्वत राजा माना जाता है, उनके समक्ष किसी की नहीं चलती। यहां से जुड़ता है एक और मान्यता का सिरा, जिस कारण कहते हैं कि सदियों सदियों से सत्ता की किसी भी नुमाइंदे ने महाकाल की नगरी में रात नहीं बिताई। पर क्या वाकई क्यों कहा जाता है कि महाकाल की नगरी में कोई राजा या शासक रात्रि विश्राम नहीं कर सकता? इस मान्यता के पीछे क्या कारण है कि अगर कोई राजा कोई मंत्री उज्जैन नगरी में रात को रुका तो या तो उसकी सत्ता चली जाएगी या उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उज्जैन में महाकाल ही राजा है और इसीलिए सदियों पुरानी मान्यता है कि कोई भी यहां राजा की हैसियत से रात को नहीं रुक सकता।
1: क्या सचमुच में यहाँ पर कोई भी राजा रात्रि विश्राम नहीं कर सकता है?
2: बिल्कुल सत्य है। ये प्रथा भी जो थी, यहाँ विक्रम का जो राज्य था, विक्रम राज्य करते थे, उसके पहले एक प्रथा थी कि जो भी राजा बनेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसकी मृत्यु निश्चित होने के कारण जब वो राजा विक्रम का नंबर आया, वो एक छोटे से आदमी थे, तब उनका भी नंबर इसमें आया, तब उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प लिया। और उन्होंने फिर ये व्यवस्था को समाप्त की कि राजा कोई भी व्यक्ति रहे, गादी खाली रहेगी, केवल राज्य के रूप में उसका नाम चलेगा और राजा विक्रम की गादी के नाम से ये गादी होगी। तो यहाँ विक्रम संवत भी चलता है और विक्रम को भी माना गया और विक्रम ने इस प्रथा को बंद किया। लेकिन आज भी ये प्रथा है कि अवंतिका उज्जैन के अंदर केवल राजा है तो वो महाकाल है।
0: ये परंपरा इस हद तक निभाई जाती है कि उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि डीएम नहीं रुके। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को बदला।

0: दो दिन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ रहे हैं, बाद में भी लोग रहे हैं, तो मैं तो उसी सिलसिले में, और हम तो मुख्य सेवक हैं और बाबा कृपा करेंगे।
1: तो क्या ये वाकई मिथक है? क्या कभी किसी शासक की चतुराई के कारण ये मान्यता बनी, या फिर इसे किसी और रूप में समझना होगा? हमने इसे समझने का प्रयास किया।
2: परिधि उज्जैन की बहुत बड़ी भी हो सकती है नगर निगम के हिसाब से, लेकिन हमारी महाकाल की और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भगवान महाकाल का जो ध्वज होता है, जो शिखर के ऊपर उसकी जहाँ तक परछाई जाती है, उसको हम भगवान महाकाल की परिधि मानते हैं। उस परिधि के अंदर कोई राजा नहीं रहेगा, और रहेगा तो उसका नुकसान निश्चित होता है।
1: ये एक सुंदर सोच है कि महाकाल की ध्वज पताका ही उज्जैन का शासन है, यानी जहाँ तक ध्वज की छाया वहाँ तक महाकाल की राजसी माया, क्योंकि महाकाल केवल उज्जैन नहीं सृष्टि के नियंता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की महिमा प्राचीन काल से चली आ रही है। यहां पर महाकाल में काल के अर्थ को भी समझना आवश्यक है। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ मृत्यु भी है। कालों के काल है महाकाल, पर वो उज्जैन में ही क्यों स्थापित है? उज्जैन के ही राजा महाकाल को क्यों माना जाता है? उज्जैन यानी वो अद्भुत धरती जहां स्वयं प्रकट हुए महाकाल।
3: हमारे यहां 24 तत्वों की चर्चा की गई है, और उसमें मूल जो दो तत्व दर्शाए गए हैं वो प्रकृति और पुरुष है। प्रकृति वो है जिसे हम देख सकते हैं, जो एक विस्तारवादी है, जो फैलाव करती है, उसे हम प्रकृति कहते हैं, और जो परम चेतना है उसे हम पुरुष कहते हैं। यहाँ केंद्र में भगवान उस पुरुष तत्व को एक लिंग के रूप में, एक पिंड के रूप में स्थापित किया गया, और उसके चारों तरफ जलेरी है। जलेरी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर की तरफ से जलेरी का प्रारंभ होता है, जो कि बहुत पतला होता है स्वरूप, और जैसे जैसे वो दक्षिण की यात्रा करती है वो विस्तार करते हुए आगे चली जाती है, और एक अवस्था में आकर के दक्षिण की तरफ व्यासाकार होकर के अस्तित्वहीन हो जाती है।
1: उज्जैन यानी वो धरती जो पृथ्वी की नाभि मानी गई, जहां से दुनिया का विज्ञान और गणनाएं चलती रही है।
4: उज्जैन को पृथ्वी की नाभि, नेवल ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है?
5: देखिए, क्या है कि उज्जैन का प्राचीन समय पर जो महत्व था वो खगोलीय गणना के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण किस हिसाब से था? एक तो उज्जैन कर्क रेखा पर उस समय स्थिति थी, अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, और दूसरी बात क्या है कि जो समय की गणना होती थी, जो जीरो देशांतर, जो अभी ग्रीनविच को मानते हैं या भारत के लिए 82.5 डिग्री का मानते हैं, उस समय उज्जैन के देशांतर को जीरो मान के समय की गणना होती थी। महत्वपूर्ण ये रहता है कि अगर कर्क रेखा पर स्थित है तो इसका मतलब क्या है, जब हम आकाश में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक होता है, क्योंकि जो हमारा जितना भी राशियां की स्थिति है वो राशियों की स्थिति हम इक्वेटर से 9.5 डिग्री उत्तर और 9.5 डिग्री दक्षिण दोनों तरफ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कर्क रेखा पे होगा तो ऑब्जर्वेशन हम एकदम परपेंडिकुलर सर के ऊपर कर पाएंगे। तो जितना ऑब्जर्वेशन हम परपेंडिकुलर करेंगे उतना एरर की संभावना कम रहती है। अगर कोई एंगल होगा एरर की संभावना ज्यादा रहती है, गणनाएं गलत होंगी, तो इसलिए उज्जैन को प्राचीन समय से खगोल का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित है।
1: उज्जैन यानी वो धरती जहां से समय अपनी गति तय करके चलना शुरू करता है।

0: के नवरत्नों में बड़ा महिर जो प्रसिद्ध खगोल वेत्ता हैं, वो एक बात ऐसे खगोल वेत्ता हैं जिसमें हमारे तीन पक्ष होते हैं ज्योतिष के, जिसमें गणित फलित तो होरा, जिसमें तीनों में उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं। वर्तमान अगर हम वेधशाला देखते हैं तो इसका निर्माण 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया है। ये पहली वेधशाला है जो उन्होंने बनाई है, इसके बाद दिल्ली जयपुर मथुरा बनारस सब बाद में बनी है, पहली वेधशाला उज्जैन में बनी है।
1: विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। शक साम्राज्य को जब उन्होंने पराजित किया तो उस समय से समय की गणना के लिए विक्रम संवत शुरू किया। इसमें दिन सप्ताह और महीने की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की गई, जो आज भी भारत की मान्य परंपरा है। मान्यता है कि विक्रमादित्य ने भी एक वेधशाला बनाई थी जिसने उज्जैन को विश्व में ज्योतिष के प्रमुख शहर के तौर पर स्थापित किया।
0: वो राजा अपने नाम से संवत चला सकता है जो प्रजा का जितना भी कर्ज हो वो उसको चुका दे, और ये विक्रमादित्य एक ऐसे राजा रहे हैं कि जिन्होंने वो सब चुका के और प्रजा के कल्याण में जिस प्रकार से कार्य किया कि वो अधिकृत हुए कि अपने नाम से संवत चला सकें, और वो संवत प्रचलन में।
1: समय की गणना से जुड़ा उज्जैन का इतिहास और पृथ्वी पर उज्जैन जिस जगह स्थित है, समझ में आता है कि यही वो कारण हो कि महादेव उज्जैन की भूमि पर महाकाल के रूप में स्थापित है। महाकाल शिवलिंग दक्षिणमुखी है और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं पाया जाता। उज्जैन में महाकाल का दक्षिणमुखी होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की ऐसी व्यवस्था है जो आदिकाल से चली आ रही है और इसका सीधा संबंध महाकाल की महिमा से है। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग की दृष्टि दक्षिण दिशा की ओर होती है और सनातन मान्यताओं में दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है। अब अगर मान्यताओं का गूढ़ अर्थ समझें तो समझना मुश्किल नहीं कि कालों के काल महाकाल यमराज की ओर दृष्टि रखे हुए हैं, और जो भक्त महाकाल के समक्ष अर्जी लगाते हैं उसका क्या प्रभाव रहता होगा।
2: दक्षिण दिशा जो है वो काल की दिशा है, और कोई भी व्यक्ति काल की दिशा में कोई शुभ काम करना नहीं चाहता है, उसको भय होता है, मृत्यु भय होता है, अन्य भय होता है, इसलिए उसको दक्षिण में। तो भगवान स्वयं शिव जो महाकाल हैं, कालों के काल हैं, यानी कि मृत्यु के ऊपर भी यदि किसी ने विजय प्राप्त की है तो केवल शिव ने की है। महाकाल की जो दक्षिण तरफ मुख है वो इसलिए भी है कि काल का नियंत्रण, काल यदि अपनी सीमा छोड़ दे तो प्रलय प्रलय है, तो उसके ऊपर नियंत्रण रखना, भगवान महाकाल उसके ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं।

0: उज्जैन का कण कण अद्भुत है, उज्जैन का चप्पा चप्पा अविश्वसनीय है, उज्जैन से जुड़ा हर रहस्य अकल्पनीय है। अद्भुत है कि दुनिया में जब समय को मानने का कोई एक तय नियम नहीं था, तब से उज्जैन दुनिया को सटीक समय बता रहा है।
1: निश्चित रूप से उज्जैन प्राचीन समय में कालगणना की महत्वपूर्ण नगरी रही है। हम देखते हैं विक्रमादित्य

0: उज्जैन में महाकाल का शासन, उन्हीं की सत्ता चलती है। लिहाजा ये भी माना जाता है कि जो उनकी शरण में आ चुका होता है उसकी मृत्यु और मोक्ष दोनों का निर्णय महाकाल लेते हैं और यमराज को उसका अनुपालन करना होता है।
1: जो भी बाबा महाकाल का दर्शन करता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उसके पीछे जो एक भाव है। और चूंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे घरों में पहले पूर्वज कहा करते थे कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। हमारे यहाँ दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम लोग साउथ पोल से आने वाली जो ऊर्जा है उसको हमारे यहाँ ऐसा माना गया कि नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए हम दक्षिण की तरफ पैर करके सोएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करेगी, इसलिए कहते थे कि उत्तर की तरफ पैर करके सोना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा मिले। और दूसरी दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो दक्षिण की दिशा जो है मृत्यु की दिशा मानी गई है। भगवान महाकाल का जो गर्भगृह है वो दक्षिण मुखी है, तो जो दक्षिण की का देवता वो मृत्यु है और मृत्यु का जो देवता है, जो काल का भी देवता है, वो महाकाल है।
0: महाकाल की जागृत ऊर्जा को लेकर ये मान्यता है कि जब तक खुद महाकाल का बुलावा न हो कोई महाकाल के दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिसको दर्शन मिल जाता है वो अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। महाकाल अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, इसको लेकर कई प्राचीन और पौराणिक कथाएं हैं और इन्हीं में से एक कथा मृत्यु के संकट को टालने वाले महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ती है।
2: हम उस त्रिनेत्र वाले भगवान शिव की उपासना करते हैं जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों की आरोग्यता व पोषण करते हैं। जैसे ककड़ी या फल पक जाने पर बेल से स्वतः अलग हो जाती है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, लेकिन अमृत से नहीं।
0: सनातन मान्यता है कि जब किसी पर मृत्यु का संकट छाता है तो उसे महामृत्युंजय मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है।
3: मृकंड ऋषि ने भगवान शिव से आराधना की कि उन्हें एक दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हो। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य बालक की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत आकाशवाणी भी साथ में हुई कि उस बालक की आयु केवल मात्र 16 वर्ष ही रहेगी। इससे ऋषि पत्नी चिंतित हुए। जब बालक 14 वर्ष की आयु में आया तो माता की चिंता का कारण पूछा। तब मार्कंडे ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की और महामृत्युंजय के जप से अपनी मृत्यु को वश में किया। जब यमराज उन्हें उनके प्राण हरने को आए तब उन्होंने भगवान शिव के उस महामृत्युंजय जप के प्रभाव से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को क्रोधित होकर वहां से भगाया और उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद प्रदान किया।
0: शिव पुराण और मार्कंडे पुराण के अनुसार महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद ऋषि मार्कंडे अमरत्व को प्राप्त हुए और अष्ट चिरंजीवियों में उनकी गणना होती है। महाकाल के दरबार में आने वाले श्रद्धालु जीवन की विषमताओं से मुक्ति की कामना करते हैं और ये क्रम सदियों से अनवरत जारी है। जितनी भी अद्भुत बातें हम अपने आसपास देखते हैं उनका एक अविश्वसनीय स्वरूप होता है और एक अकल्पनीय सच भी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमित बधवार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: In association with
8: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: I have lived through all this, what I'm seeing. That's why I came here. Good concept, happy that has happened.
10: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
11: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
12: Best part, it is perspective and narrative of the nation.
13: It's brought back old memories.
14: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है.
3: लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं. सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है. अपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं. आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है. देश का संचालन करता है और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा.
4: ठीक है सर, यू सेड पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम.
5: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
2: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई. पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं. सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें.
6: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि actually सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, but वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए. उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है. यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए.
7: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
8: जी,
7: वेरी गुड.
8: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
7: हर हर डेवलपमेंट के बारे में.
8: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में सर?
7: मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया.
8: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
7: नो नो नो नो.
8: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का सर?
7: हम लोग मदद करेंगे.
2: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की. वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे. विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है. वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है. आज तक ब्यूरो.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से हिमाचल तक भूस्खलन, मलबा और बढ़ते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देवालवाण मार्ग पर बारिश शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। पहाड़ से लगातार मलबा और कीचड़ आने की वजह से सड़क बंद हो रही है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार करनी पड़ रही है। देवालवाण मार्ग बंद होने से आसपास के गांवों की करीब 8,000 की आबादी प्रभावित है। लोगों को इलाज, राशन और जरूरी कामों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाद अब बागेश्वर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो गए हैं और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांडा बागेश्वर हाईवे पर थपोली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहन मलबे में दब गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर लगातार दिखाई दे रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडोह बांध से बीबीएमबी ने ब्यास नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने से पहले लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंद सड़कें, भूस्खलन और बढ़ते नदी नाले लोगों के लिए चुनौती बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और बेहतर मौके की उम्मीद लगाए बैठे प्रोफेशनल्स के लिए राहत की खबर आई है। लंबे समय से सुस्ती झेल रहे व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट में फिर से तेजी लौटती दिखाई दे रही है। खासकर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में कंपनियां तेजी से नई हायरिंग कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश में व्हाइट कॉलर हायरिंग में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते महीने जॉब स्पीक इंडेक्स बढ़कर 3,227 पर पहुंच गया, जो पिछले साल जुलाई में 3,074 था। इस दौरान AI और मशीन लर्निंग से जुड़े रोल्स में 33% की सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई। वहीं IT और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से जुड़े पदों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर में हायरिंग 6% बढ़ी है। दरअसल बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कंपनियों का फोकस ऐसे स्किल्स पर है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। यही वजह है कि AI, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में हायरिंग 10%, रियल एस्टेट सेक्टर में 8%, IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में 6% बढ़ी, लेकिन टेलीकॉम, बैंकिंग, फार्मा और एजुकेशन सेक्टर्स में बढ़ती की रफ्तार धीमी रही। हालांकि टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों में आई इस तेजी ने जॉब मार्केट को नई ऊर्जा देने का काम किया है। दिलचस्प बात है कि इस रिकवरी का फायदा अनुभवी प्रोफेशनल्स के साथ फ्रेशर्स को भी मिल रहा है, जिनकी हायरिंग जुलाई में 6% बढ़ी है। वहीं कई शहरों में भी हायरिंग की रफ्तार तेज हुई है और बीते महीने कोलकाता में हायरिंग 17%, हैदराबाद में 16%, चेन्नई में 11% और बेंगलुरु में हायरिंग में 8% की ग्रोथ देखी गई। वहीं मुंबई और दिल्ली में हायरिंग का स्तर लगभग स्थिर रहा। उधर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स यानी GCCS में भर्तियां 5% बढ़ी हैं। यानी कंपनियां अनुभवी टैलेंट के साथ फ्रेशर्स को भी अपने साथ जोड़ने पर जोर दे रही हैं। जुलाई के आंकड़े संकेत देते हैं कॉर्पोरेट भारत में भर्ती गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। हालांकि सभी सेक्टर्स में एक जैसी तेजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल स्किल्स से जुड़े क्षेत्रों ने जॉब मार्केट की रफ्तार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में तीसरे दौर की बातचीत रिफॉर्म गुट मैं तो कैंप बाकी छात्रों से अलग अलग मिलेंगी मंत्रियों की टीमें 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने ओएमआर जारी करने और भर्ती परीक्षा के लिए सालाना कैलेंडर की मांग

गन छात्रों के झारखंड विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी ने तस्वीर जारी कर दावा किया। सोरेन सरकार ने पुलिस कर्मियों को पैलेट गन के साथ तैयार रखा। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर जुबानी जंग तेज। रिजिजू बोले प्रयागराज जाकर गलती की, जाना चाहिए था रांची। खड़गे ने कहा राहुल गांधी ने छात्रों के हक की बात कही। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 4 बजे मुलाकात। भारत ने 13 गोल्ड के साथ कुल 39 मेडल्स को जीता। महिला खिलाड़ियों के नाम रहे 18 गोल्ड। और फुकेट दिल्ली फ्लाइट के अचानक से नीचे आ जाने के मामले में घिरे पायलट डोप टेस्ट में एक पॉजिटिव निकला। मामले की जांच कर रही डीजीसीए, एयर इंडिया का बयान, नहीं मिली रिपोर्ट।

0: नमस्कार, मैं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। हर साल मॉनसून आता है और उसके साथ ही आती है बाढ़ की वही भयावह तस्वीरें। कहीं पहाड़ टूटते हैं, कहीं नदियां शहरों को निगल जाती हैं, तो कहीं खंडों की बारिश पूरी व्यवस्था की पोल खोल देती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे हमारी अपनी गलतियां हैं? आखिर क्यों हर साल भारत का कोई ना कोई हिस्सा पानी में डूब जाता है और क्या इस त्रासदी का कोई स्थायी समाधान है? आज कहानी में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि आखिर हर साल क्यों डूब रहा है भारत।
1: ज्यादा दिक्कत हो रहा है और आप देख सकते हैं पूरा शिवसागर टाउन पानी से डूब गया है।
2: घर का घर बर्बाद है, अभी क्या देगा गवर्नमेंट? 2,000-5,000 देगा, उससे इनका घर का पूरा सामान आ जाएगा।
3: मूसलाधार बारिश और तेज हुई और भारी बारिश साइबर सिटी दिल्ली NCR में दर्ज की जा रही है।
4: जो मेन सड़क है, मुख्य रोड है, ये कहीं ना कहीं झील में तब्दील हुई दिखाई दे रही है।
2: हर साल का प्रॉब्लम है, एक साल का प्रॉब्लम नहीं है।
5: सरकार कोई भी आ जाए, अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी तो यही हाल रहेंगे।
6: ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना चाहिए, बेसिकली प्रॉब्लम वहीं से, सब नाले वगैरह नैरो हो गए, पानी वहीं पे स्टक हो जाता है।
0: बाढ़ सिर्फ पानी का बढ़ा हुआ जलस्तर नहीं, ये वो ताकत है जो कुछ घंटों में पूरे शहर की रफ्तार रोक देती है, गांव का नक्शा बदल देती है और लाखों लोगों को बेघर कर देती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हर बार इसकी वजह सिर्फ आसमान से बरसने वाला पानी है या फिर नदियों के बदलते स्वरूप, जंगलों की कटाई, बेतरतीब विकास भी एक बड़ी वजह है।

0: लगभग इस गाय के वजह से 20-30 हजार लोग इफेक्ट हुए।
1: कुछ भी नहीं बचा भैया लोग।
2: तो घर पे था पानी, मतलब इतना स्पीड बढ़ के आया, मतलब घर का आदमी को हम लोग छोड़ के दूसरे का बचाने लग गए।
3: पच्चीस घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है, शायद एक कोई है उसको निकाल दो।
4: हम लोग कैसे सर्वाइव करेगा, फिर से नॉर्मल जिंदगी कैसे लाएगा, वही सोच के हम लोग को ज्यादा दिक्कत है। अभी तो जो हो गया वो हो गया है।
5: पिताजी का 70 साल हो गया, ये पहली बार ऐसा नहीं था।
6: अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी निचले इलाके में है वहाँ से सुरक्षित चले जाए, और जहाँ भी काम के बिना अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकले।
7: करीब 7 लाख से ऊपर लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 50 लोगों की मौत और खबरें सामने आ रही है।

0: ये वो बाढ़ है जो घरों को मलबे में बदल देती है, खेतों को झील बना देती है और जिंदगी को राहत शिविरों तक सीमित कर देती है। डूबी हुई सड़कें, डूबे हुए मकान, डूबे हुए खेत, डूबे हुए बाजार, डूबे हुए सपने और उम्मीद के सहारे किसी छत पर बैठा हुआ पूरा का पूरा परिवार। ये सिर्फ पानी नहीं, ये हर साल लौट कर आने वाली वो त्रासदी है जो किसी का घर बहा ले जाती है, किसी की जिंदगी और किसी की पूरी उम्र की कमाई।
1: बीस पच्चीस घरों में पानी है, सब लोगों को निकाल दिया है, शायद एक कोई है उसको निकाल
2: ऑटोमेटिक जो डैमेज है ये बारिश होना ये होना अब ये तो नेचुरली हो जाता है, लेकिन थोड़ा बारिश में ही ये ब्रिज डिसमेंटल हो गया, कोलैप्स हो गया है, तो ये नहीं होना।
3: लगातार ब्रह्मपुत्र का पानी बारिश हो रहा है, इसीलिए अभी 5-6 दिन से बढ़ रहा है। अब ब्रह्मपुत्र का पानी बढ़ने से लिए हम लोग के यहाँ पर जो भू कटआउट मतलब ज्यादा होता है, बहुत आखिरी हो गया है।
0: इस साल भी असम, गुजरात, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एक ही तस्वीर नजर आ रही है। चारों तरफ पानी और उस पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। कहीं हेलीकॉप्टर आसमान से उम्मीद बरसा रहे थे, कहीं नावे एम्बुलेंस बन गई है, कहीं स्कूल राहत शिविर बन गए, और कहीं पूरा गांव नक्शे से गायब हो गया है। क्या हर बार सिर्फ आसमान जिम्मेदार होता है या धरती पर भी कहीं कोई गलती हो रही है? सबसे ज्यादा दर्द इस बार भी असम ने झेला है। ब्रह्मपुत्र, जिसे जीवन देने वाली नदी कहा जाता है, वही ब्रह्मपुत्र लाखों लोगों के लिए तबाही बन गई है। लाखों परिवारों के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि अब जिंदगी कहां से शुरू करें।
4: बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है हर साल और बहुत नुकसान होता है लोगों को जो भाड़े से रहते हैं, उनका तो अब देखा नहीं जाता, आंखों से रूलन जैसे आ जाते। गादले है, फर्नीचर है, पूरा ढेर लगाया होता अभी 7-8 दिन पहले और अभी वापस ये की पोजीशन है, पूरा ढेर लगने वाला है, बहुत नुकसान लोगों का।
5: मान जाएगा जाएगा, पानी नहीं मिले, दूध नहीं मिले, क्या जाएगा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे
6: 4-5 दिन से पानी नहीं है और दूध के और कोई वस्तु बाहर ले तकलीफ होती है, इसमें 4-5 दिन लगता है, पानी रहता है और बच्चों को पढ़ाई में भी तकलीफ पड़ती है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे।
0: लेकिन असम हर साल ही डूबता क्यों है? क्या ब्रह्मपुत्र में बढ़ती गाद इसकी वजह है? क्या जंगलों की कटाई और नदियों के किनारों का बढ़ता अतिक्रमण बाढ़ को और भी विकराल बना रहा है? और सिर्फ असम ही क्यों, अब देश के बड़े बड़े शहर भी कुछ घंटों की बारिश में पानी पानी हो जाते हैं। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसा आधुनिक शहर तैरने लगता है।
7: आदमी का खाना पीना बारिश हड़ी करता है, उसको बारिश में नहीं होता है। पानी अभी हो गया 6 दिन से बेसी हो गया है, 10 दिनों पानी हो गया है।
8: बहुत ज्यादा बारिश का देख लीजिए कितनी प्रॉब्लम है, सब भीगते भीगते कैसे कैसे कमर तक पानी के साथ जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है।
9: भर गए हम लोग, सुविधा नहीं है कुछ भी, इतने बड़े पानी से हम लोग जा रहे हैं, इतने इसे कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रास्ता तो बनाना मांगता है, उधर से पूरा हम इतना भीग के आए हैं।
0: पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, दिल्ली, सूरत तक बारिश में डूब जाता है। सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी छोटी हो गई है या हमारे शहर बहुत बड़े हो गए हैं। बाढ़ सिर्फ लोगों को नहीं डुबोती, हजारों करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था भी अपने साथ बहा ले जाती है। तो क्या हर मॉनसून में यही कहानी दोहराई जाएगी, या बाढ़ को समझने और उससे लड़ने का कोई रास्ता भी है? आज कहानी में जानिए आखिर क्यों हर साल डूब रहा है भारत, असम बार बार बाढ़ का सबसे बड़ा शिकार क्यों बनता है, बाढ़ से देश को हर साल कितना नुकसान होता है और क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता है।
10: असम में बाढ़ का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की तबाही ने पुराने कई रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। सवाल सिर्फ इतना कि ब्रह्मपुत्र हर साल उफान पर क्यों आती है। सवाल ये भी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस प्राकृतिक आपदा को हर साल और ज्यादा विनाशकारी बना रही है। क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है या इसके पीछे असम का भूगोल है, ब्रह्मपुत्र में बढ़ती गाद है और हमारी तैयारियों की कमी भी जिम्मेदार है।

0: 19 जुलाई 2026 शाम के करीब 5 बजे असम के शिवसागर के इलाके में हर कोई अपने घर में बैठा था। ये पूरा इलाका यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर है। यहाँ कभी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा था, लेकिन उस दिन महज 2 घंटे में पानी उनकी छाती तक पहुंच गया। जान बचाने के लिए यहाँ के लोगों ने बिस्तर पर कुर्सियां और टेबल रखी और पूरा परिवार रात भर उन्हीं कुर्सियों पर बैठा रहा। यहाँ हर कोई कहता है जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। ये सिर्फ कुछ परिवारों की कहानी नहीं है, ये आज के असम की कहानी है।
1: इतना ज्यादा था कि वो यहाँ से रास्ते तक नहीं निकल पाया, बाढ़ यहीं से सामने में से ही उसको बहा के लेके गया।
2: तो मोहल्ले सब लोग में ऐसे लड़का बच्चा को निकलते निकलते मैंने पूरा पानी हो गया एकदम। तो गरु गाय छगली बच्चे लोग मैंने निकलने नहीं सका, सब चला गया। खाली हम लोग आदमी लोग के बच्चे मैंने सब चला गया, घर के जितना सामान रहा सब खत्म हो गया।
0: लेकिन सवाल है, आखिर असम हर साल क्यों डूबता है? इस सवाल का जवाब असम के भूगोल में छिपा है। असम 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है। इसके बीच से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। मॉनसून में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश का पूरा पानी बहकर असम के मैदानों में उतर आता है। यही वजह है कि राज्य का लगभग 40% हिस्सा बाढ़ संभावित क्षेत्र माना जाता है। इस बार भी 18 से 19 जुलाई को ऊपरी इलाकों में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई।
3: करने के लिए हम लोगों को तो अभी 15 इयर्स रहेगा फिर से नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है। घर का कोई सामान भी रुका नहीं, इस बार पहला बाढ़ आया है 5 मिनट्स भी नहीं दिया, कुछ घर से निकालेगा वो भी कुछ नहीं है, घर का जितना सामान सब चला गया।
4: हम लोग मतलब पहले हम लोग का यहाँ पे बाढ़ आता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था कि सब लोग मतलब शॉक हो गए। बाद में जब पता चला कि सबके घर में पानी ऐसा घुस गया है, उसके बाद मतलब सब जान बचा के मतलब कुछ ले नहीं सके, जान बचा के यहाँ से निकल गए। पूरा पानी मतलब घर बचा ही नहीं, घर घर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अभी।

0: लेकिन सिर्फ एक वजह नहीं है असम में बर्बादी की। नक्शे के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकलते समय सिर्फ पानी ही नहीं लाती, बल्कि पहाड़ों की मिट्टी और पत्थर भी अपने साथ बहाकर लाती है। लेकिन जैसे ही ये असम के मैदानों में पहुंचती है, पूरी कहानी बदल जाती है। यह नदी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और उसके साथ आई मिट्टी नदी के तल में जमने लगती है। हर साल ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है और धीरे धीरे नदी का तल ऊंचा होता जाता है। इसका मतलब है कि नदी में पानी के बहने की जगह हर साल कम होती जाती है। और फिर आता है मानसून। अरुणाचल प्रदेश, भूटान और आसपास के पहाड़ों से आने वाली दर्जनों नदियां एक साथ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। देखते ही देखते नदी में पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र इतना पानी संभाल नहीं पाती और अपने किनारे छोड़कर आसपास के इलाकों में फैल जाती है। यही वजह कि असम में बाढ़ सिर्फ भारी बारिश की कहानी नहीं, बल्कि उसके भूगोल, ब्रह्मपुत्र और हर साल जमा होती गाद की भी कहानी है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की सबसे ज्यादा गाद यानी सिल्ट ठोड़ने वाली नदियों में से एक है। हर साल ब्रह्मपुत्र का तल थोड़ा थोड़ा ऊंचा होता जा रहा है और उसकी पानी समेटने की क्षमता कम होती जाती है। फिर थोड़ा ज्यादा पानी आते ही नदी अपने किनारे छोड़ देती है। आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। 1912 से 1928 के बीच ब्रह्मपुत्र का फैलाव लगभग 3,870 वर्ग किलोमीटर था। 2006 तक यही फैलाव बढ़कर करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। कई जगह नदी की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया था 15 अगस्त 1950 को। असम में 8.6 तीव्रता का भूकंप आया, पहाड़ धरक गए, भारी भूस्खलन हुआ, लाखों टन मिट्टी और चट्टाने ब्रह्मपुत्र में आ गिरी, नदी का रास्ता बदल गया, कई जगह नदी का तल 10 फीट तक ऊपर उठ गया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र ने हर साल अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया। जहाँ पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी वहाँ पानी पहुँचने लगा, और जहाँ पहले बाढ़ आती थी वहाँ हालात बदलने लगे। इस साल भी शिवसागर, चराईदेव और जोरहट जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि यहाँ के लोग कहते हैं कि उनके बुजुर्गों ने भी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी।
1: सबसे बड़ी है हमारा गोरु गाय जितना रहा सब भुगा गया। हमारा गोरु 16 रहा, 16 में 2 बचा है और बाद बाकी चला गया। सामान दामान सब घर सर सब खत्म है, कुछ नहीं है। अभी बिहू पर तरफ रहता है और दिन को उधर रहता है, रात को अभी दिन को उधर जाएगा, रात को उधर जाकर सोता है। बहुत तकलीफ में है हम लोग।
2: ऐसा फ्लड हमने भी कभी देखा नहीं है। बहुत साल बाद में लोग बोल रहे हैं कि हुआ है और बहुत ही मतलब ज्यादा महामारी हो रहा है और परेशानी हो रहा है, लोगों को बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है।
0: अब तक असम में ब्रह्मपुत्र के किनारे लगभग 4,800 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी बाढ़ आते ही यही तटबंध टूट जाते हैं। जलवायु परिवर्तन और जंगलों की कटाई की वजह से अब बारिश कई महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों में ही अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। दूसरी तरफ जंगल कम होने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और ज्यादा गाद नदियों में पहुंचती है, इससे बाढ़ और भी विकराल होती चली जाती है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि असम की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बाढ़ को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। असम में 2016 में 10,000 करोड़ की बर्बादी हुई और 64 लोगों की मौत हुई। 2017 में 4,358,000 करोड़ और 160 लोगों की मौत हुई। 2019 में 3,237 करोड़ और 101 लोगों की मौत हुई। 2020 में 2,642 करोड़ और 150 लोगों की मौत हुई। 2022 में 10,000 करोड़ और 179 लोगों की मौत हुई।
3: अगर हम असम की बात करें तो असम में हर साल बाढ़ आती है और उसका कारण यह है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो और बाकी नदियों से काफी हटके है। इसका जो तटबंध है काफी चौड़े हैं, उथली नदी है यानी गहराई कम है लेकिन इसकी चौड़ाई ज्यादा है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। तो जब भी कैचमेंट एरिया में बारिश होती है, असम में, अपर असम में अगर बारिश कम भी होती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और चाइना में ज्यादा बारिश होती है, तो उसका असर भी ये इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनता है, पड़ता है, जिसके कारण जो असम है पूरा बाढ़ग्रस्त हो जाता है। तो इस बार जो असम में बाढ़ आप देख रहे हैं वो पिछले 80 सालों में सबसे ज्यादा भयानक बाढ़ आई हुई है।
0: हर साल बारिश होगी, ब्रह्मपुत्र उफान पर आएगी और शायद असम के लिए किसी नए गांव, किसी नए शहर में फिर बाढ़ से बर्बादी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि बाढ़ कब आएगी, सवाल ये है कि क्या हर साल लाखों लोगों की जिंदगी यूं ही पानी में डूबती रहेगी, या फिर अब समय आ गया है ब्रह्मपुत्र से होने वाली बर्बादी को रोकने का।
4: बाकी छोटे से ब्रेक का हौसला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश के बाकी हिस्सों में पाठ की कहानी।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: In association with
3: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
5: AI se jud jaye, to 5 minute mein pata chalega ki falana panchayat mein falana booth number par जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
6: काश वो एआई आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवीं तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
7: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
5: एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
6: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना एआई यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
7: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
5: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था। लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़ रहे, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला। साथियों,
6: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कह रहे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके एआई वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर।
5: क्या घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोले

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: In association with
3: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
5: AI se jud jaye, to 5 minute mein pata chalega ki falana panchayat mein falana booth number par जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
6: काश वो एआई आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
7: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
5: एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
6: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना एआई यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
7: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
5: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था। लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़ रहे, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला। साथियों,
6: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कह रहे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके एआई वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे एक गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर।
5: क्या घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी एक मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
6: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।

0: डूबी हुई सड़कें, घंटों जाम में फंसी गाड़ियां, करोड़ों की कॉलोनियों के बीच नाव से पहुंचते बचाव दल। ये तस्वीरें अब किसी एक शहर की नहीं रही हैं। बेंगलुरु हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर गुरुग्राम, हर मौसम में कोई ना कोई बड़ा शहर पानी में डूब जाता है। सवाल यही कि क्या इसकी वजह सिर्फ रिकॉर्ड बारिश है या फिर बेतरतीब शहरी विकास और हमारी सरकारी तैयारियों की कमी भी इन शहरों को डुबो रही है।
1: ये 4 फीट लमसम होगा पानी, ठीक है। समुद्र में लहरें उठती

0: हैं, उस तरीके की लहरें जो है सड़क पर देखने को मिल रहा है।
1: तमाम वो लोग हैं जो कि हर मानसूनी बारिश में इस तरह के हालातों का सामना करने के लिए मजबूर हैं।
2: यहाँ से गोविंदपुरी से यहाँ तक 10 मिनट का रास्ता नहीं है, 2 घंटे हो गए जाम में खड़े हुए हैं।

0: ये मुंबई है, देश की आर्थिक राजधानी, जिस शहर को कभी रुकना नहीं आता था, अब हर मानसून में कुछ घंटों की बारिश इसे रोक देती है। मीठी नदी की सफाई के दावे हर साल होते हैं, लेकिन बारिश आते ही सड़कें नदी बन जाती हैं, लोकल ट्रेनें रुक जाते हैं, एयरपोर्ट तक पानी पहुंच जाता है और करोड़ों का कारोबार घंटों के लिए ठप पड़ जाता है।
1: बहुत बेकार हाल है इधर, 6 दिन से लगातार बारिश हो रहा है और पानी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और पब्लिक परेशान है, आने जाने का दिक्कत है। बस भी देखो इधर पड़ी है, खड़ी है, 4 दिन 3 दिन से पड़ी है। समझ
2: स्टेशन से जा रहा था, मीरा रोड में जॉब करता हूँ, स्टेशन से जा रहा था, पर देख सकते हैं कितना पानी भरा है, क्या करें। मैं सोच रहा हूँ चल के जाओ या कैसे जाओ।
3: और हम लोग ऐसे घर पे ही बैठे हैं 3 दिन से, हम लोग का रूम में भी पानी भर चुका है।
4: पानी है, 4-5 दिन लगातार बारिश हो रही है और पानी इतना है कोई पैदल नहीं चल पा रहा है, इतने गाड़ी वाले जा रहे हैं, सब गाड़ियाँ बंद हो रही है।
5: सर क्या बताना चाहेंगे कि आपको क्या किल्लत आ रही है?
6: लोग परेशान है, यहाँ पे हर जगह पे पानी पानी हो गया है, कहीं भी लोगों को मतलब घर से निकलने के लिए भी जगह नहीं है कोई।
0: अब चलिए अहमदाबाद, स्मार्ट सिटी, रिवर फ्रंट, चौड़ी सड़कें, लेकिन बारिश आते ही पूरा सिस्टम बह जाता है। जिस शहर को आधुनिक विकास का मॉडल बताया जाता है, उसी शहर में पैदल चलने के लिए सड़कें गायब हो जाती हैं, अंडरपास तालाब बन जाते हैं और लोग गाड़ियों से नहीं पानी में उतरकर घर पहुंचते हैं। यह है सूरत, कपड़ा और हीरा उद्योग का सबसे बड़ा शहर, लेकिन यहाँ हर बारिश के साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ताप्ती नदी का पानी पहले घरों में आएगा या शहर का ड्रेनेज पहले जवाब देगा। कई कॉलोनियों में घर और सड़क का फर्क मिट जाता है। कहां नाली है, कहां सड़क और कहां किसी का आंगन, समझना मुश्किल हो जाता है।
7: पानी आता है ना तभी हम लोग को तकलीफ होती है, हाँ, कोई नहीं देखने आता इधर।
8: सब सामान बिगड़ता है, जो अपना जो फ्रिज वगैरह जो भी होता है, जो सामान मतलब घर का फैमिली का होता है, सब बिगड़ता है।
9: 200 दुकान अंदर घर का हो चुकी है, तो समझ लो कि एक दुकान में किसी का 1 करोड़ का माल था, किसी का 50 लाख का था, आप एवरेज भी लगाओगे तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है।
10: दुकान के अंदर से 2 रुपया भी नहीं निकल पे, गाड़ी भी पार्किंग में पड़ा है अंदर पूरे, आप अंदर जाके चेक करो 200 दुकान है, सब सामान तो 10 रुपया भी कोई, गाड़ी का चाबी भी कोई नहीं निकल पाई, ऐसा हालत हो गया, 1.5 घंटे में पानी पूरा भर गया।
0: सूरत की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बड़े बड़े मॉल तक डूब जाते हैं। अब गुरुग्राम, देश का कॉरपोरेट हब, गगनचुंबी इमारतें, करोड़ों की सोसाइटियां, लेकिन बारिश के सामने सब बेबस। कुछ देर की बारिश और एक्सप्रेसवे पार्किंग बन जाता है। ऑफिस पहुंचने का रास्ता घंटों के इंतजार में बदल जाता है। इतना ही नहीं, ये देश के सबसे आधुनिक शहरों में से एक है।
11: कि पानी में 2 पैर 1 बजे से चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे आज तो स्कूलों का थोड़ा बंद कर रखा है, अदरवाइज इतनी बुरी हालत है। ये लेडीज को देखो जी, कैसे भीग के किस तरह से आ रहे हैं।
12: हर हर अंगे जय शीतले, त्रिपुर सरकार सबसे बढ़िया।
13: यानी अब आपको अगर स्नान करना है तो गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है,
12: त्रिपुर सरकार दबा के बरसात हो रही है।
0: अब दिल्ली, देश की राजधानी, जहां संसद है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बारिश के बाद कई इलाकों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़क और नाला एक जैसे दिखने लगते हैं। संगम विहार से आनंद विहार तक और कनॉट प्लेस से साउथ एक्स तक, हर जगह वही कहानी। पानी भरता है, ट्रैफिक थमता है और राजधानी की रफ्तार रुक जाती है।
14: देखिए सबसे बड़ी बात है, सदर बाजार में जगह जगह पानी भर चुका है, चाहे वो अपना तेलीवाड़ा हो, कुतुब रोड हो या मेन सदर बाजार हो, यहाँ पर ये समझ लो निकलना तक मुश्किल हो गया है। गलियों में इतना भर चुका है, कई दुकानों के अंदर पानी आ चुका है, उससे जो व्यापारियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।
15: सीवर सिस्टम जो इतने पुराने हो चुके हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के सीवर डले हुए हैं, जब बहुत कम आबादी होती थी, अब आबादी बहुत गहन हो चुकी है, तो अब ये सारे सीवर सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है।
16: कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे?
17: बहुत दिक्कत यहाँ पे, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है
16: यहाँ पे। क्या वजह है दिक्कत की?
17: पानी जम जमा होती है यहाँ पर।
16: सरकार तो कहती है मैंने सारे इंतजाम कर रखे
17: हैं, क्या यहाँ तो आज मैं 200 वर्ष से ऐसे देखता हूँ,
16: ऐसे ही होता है।
0: ये है बेंगलुरु, देश की आईटी राजधानी। कभी से झीलों का शहर कहा जाता था, आज झीलें कम हो गई और पानी सड़कों पर ज्यादा दिखाई देता है। आईटी पार्कों में पानी, सोसाइटियों में पानी, बारिश रुक जाती है लेकिन शहर घंटों तक पानी में डूबा रहता है। अब हैदराबाद तेजी से बढ़ता महानगर, लेकिन यहाँ भी कुछ घंटों की तेज बारिश पूरी व्यवस्था की परीक्षा लेती है। झीलों और प्राकृतिक नालों पर बढ़ते अतिक्रमण का नतीजा अब हर मानसून में दिखाई देता है। कई इलाके टापू बन जाते हैं और लोगों को घर लौटना भी मुश्किल हो जाता है। शहर अलग अलग है लेकिन कहानी एक ही है। कहीं नदियों के रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं झीलों पर इमारतें खड़ी कर दी गईं, कहीं नालियां छोटी पड़ गईं और कहीं शहर इतने बड़े हो गए कि बारिश के लिए जगह ही नहीं बची। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बादल कितना बरसा है, सवाल ये है कि क्या हमारे शहर बारिश के लिए तैयार है।
18: कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्सट्रीम इवेंट बढ़ गए हैं, जैसे पहाड़ों पर आप देख रहे हैं कि जो मूसलाधार बारिश के कारण लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। गुरुग्राम पूरी तरह से जाम हो जाता है जब पानी बरसता है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपने देखा कि मुंबई में, बिहार में, असम में, सभी जगह बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो इस क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो इस तरह से देखा जा सकता है कि पहले जो बारिश हुआ करती थी, दो तीन डिकेड पहले अगर 80s और 90s की बात करें, तो 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश होती थी, रिमझिम बारिश होती थी, जिससे कि पानी जमीन में फिर से चला जाता था, रिचार्ज हो जाता था और फ्लैश फ्लड वगैरह कम आते थे। लेकिन अब वही जो क्वांटिटी है 3 से 4 दिनों में जो बारिश हुआ करती थी, वो 8 से 10 घंटों में काफी भारी बारिश के रूप में हो जाती है, जिससे कि पानी को निकासी नहीं मिल पाती और जलभराव हो जाता है।
0: जानकार कहते हैं कि शहरी बाढ़ के लिए कई कारण हैं। सिर्फ आसमान से बरसता पानी नहीं, जमीन पर बिछी लापरवाही की परत बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। पहला कारण अनियोजित शहरीकरण, झीलों पर मॉल, नालों पर बिल्डिंग, हर खाली जमीन पर कब्जा। दूसरा कारण पुराना ड्रेनेज सिस्टम, कई शहरों में अंग्रेजों के काल की नालियां आज भी इस्तेमाल में हैं। तीसरा कारण कचरा प्रबंधन का ठीक ना होना, प्लास्टिक और कूड़े से नाले बंद, बारिश का पानी निकल नहीं पाता। चौथा कारण जलवायु परिवर्तन, बारिश अब अचानक और ज्यादा हो रही। पांचवा कारण गांव से पलायन, शहरों पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। छठा कारण कंक्रीट का जंगल, शहर का विकास तो हो रहा है लेकिन इसके साथ जमीन पर मिट्टी की जगह कंक्रीट और तारकोल ने ले ली है, जिससे जमीन से मिट्टी गायब हो गई है, तो पानी सूखेगा कहाँ से?
18: मुंबई से लेकर के दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, पटना है, सारे जगह पर जो बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वो इतनी ज्यादा भी नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा पैटर्न तो बदला है, लेकिन जो अनइवन इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमने बिना प्लानिंग के जो मकान बनाने शुरू किए हैं, वाटर बॉडीज को एनक्रोचमेंट करना शुरू किया है, जैसे चेन्नई वगैरह में आपने देखा है, जो वहाँ की जो नदी थी उसको भी एनक्रोचमेंट हो गया वहाँ का, और जो गुरुग्राम है वो भी किसी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सारे जो हमने जो एक तरह से अनप्लान डेवलपमेंट किया, ये भी इसकी एक वजह है कि जो जल भराव है वो ज्यादा देखने को मिलता है।
0: भारत के हर महानगर का यही हाल है, तेज बारिश और शहर जलमग्न। जब शहरों में नालियां ढक दी जाएं, नदियां सिकुड़ जाएं और हर खाली जमीन कंक्रीट से पट जाए, तो बारिश का पानी कहां जाएगा? 2021 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पालघर में जबरदस्त बाढ़ आई, 2022 में असम, बिहार और यूपी के कुछ जिलों में भयंकर बाढ़ आई। 2023 में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। चेन्नई में तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने कई दिनों तक शहर को ब्लॉक कर दिया है। 2024 में शहर का वायनाड और गुजरात के कई शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। 2025 में फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ था। बाढ़ को पूरी तरह रोकना शायद संभव ना हो, लेकिन वैज्ञानिक योजना, मजबूत ड्रेनेज सिस्टम, समय पर चेतावनी, नदियों के प्राकृतिक रास्तों की रक्षा और बेहतर आपदा प्रबंधन से इस नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। सवाल अब सिर्फ राहत का नहीं, तैयारी का है, क्योंकि अगर तैयारी नहीं बदली तो हर बारिश के साथ सिर्फ नदियां ही नहीं, विकास के दावे भी बहते रहेंगे।
19: हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर जाती है और राहत बचाव का वही पुराना सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यही कि क्या हम सिर्फ बाढ़ के बाद राहत पहुंचाने तक ही सीमित हैं या फिर उससे पहले की तैयारी कर रहे हैं। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र करीब 32.9 करोड़ हेक्टेयर है। इनमें से 4 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा इलाका बाढ़ संभावित क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ की वजह से 2023 में करीब 27,337 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

0: आसमान से पानी बरसता है, लेकिन कई जगहों पर ये पानी सिर्फ खेतों को नहीं सींचता, बल्कि पूरे शहर, पूरे गांव और लाखों जिंदगियों को डुबो देता है। कहीं पहाड़ टूटते हैं, कहीं नदियां किनारे तोड़ देती हैं, तो कहीं कुछ ही घंटों की बारिश पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर देती है। राहत शिविर भर जाते हैं, सड़कें नदियां बन जाती हैं और लोगों की पूरी उम्र की कमाई देखते ही देखते पानी में बह जाती है। अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद डराने वाली है। 2020 में बाढ़ से 1,474 लोगों की मौत हुई और देश को 11,536 करोड़ का नुकसान हुआ। 2021 में तबाही और बढ़ी, 1,371 लोगों की जान गई, लेकिन आर्थिक नुकसान बढ़कर 58,433 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 5 वर्षों में ये सबसे बड़ा नुकसान था। 2022 में 1,673 लोगों की मौत हुई और नुकसान 27,337 करोड़ रुपए रहा। 2023 में सबसे ज्यादा 4,472 लोगों की जान गई, हालांकि आर्थिक नुकसान 2,153 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। 2024 में भी राहत नहीं मिली, 1,539 लोगों की मौत, करीब 4,74,000 पशुओं की मौत और 6,447 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया गया।
1: कि जो डीप डिप्रेशन है या डिप्रेशन है, उनसे भी मानसून का काफी ज्यादा गहरा नाता होता है कि जब बंगाल की खाड़ी में कोई भी वेदर सिस्टम जैसे कि लो प्रेशर एरिया बना तो वो धीरे धीरे मजबूत होता है, डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन बनता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये जो लो प्रेशर एरिया था ये विदर्भ और छत्तीसगढ़ के आसपास आकर के डीप डिप्रेशन बना, तो ये मानसून को एक्टिव करता है। जब ये पश्चिम से पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है, बंगाल की खाड़ी से जब अंदर की तरफ आता है, तो इसका जो असर है वो भारी बारिश के रूप में दिखाई देता है। विशेषकर आपने देखा होगा कि ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही थी, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात और राजस्थान में इसका असर हुआ।
0: राष्ट्रीय तस्वीर देखने के बाद अब बात उन राज्यों की जहां बाढ़ सिर्फ एक मौसमी आपदा नहीं बल्कि हर साल लौटने वाली त्रासदी बन चुकी है। अलग अलग कारण, अलग अलग हालात, लेकिन नतीजा एक, जान माल का भारी नुकसान। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि किन राज्यों पर बाढ़ सबसे ज्यादा भारी पड़ी। असम में 2022 में 205 लोगों की जान गई और करीब 2,398 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिहार में 2023 में 502 लोगों की मौत दर्ज की गई, जो पिछले 5 वर्षों में राज्य का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। 2024 में भी 327 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। पश्चिम बंगाल में 2021 में बाढ़ से 163 लोगों की मौत हुई और नुकसान 16,079 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। वहीं केरल में 2021 में 131 लोगों की जान गई और आर्थिक नुकसान 9,256 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में 2022 की बाढ़ ने 10,526 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में 2023 में बादल फटने और भूस्खलन के बाद 1,503 लोगों की मौत या लापता होने के मामले दर्ज हुए, ये पिछले 5 वर्षों के सबसे गंभीर आंकड़ों में शामिल है।
1: जो भारी बारिश हुई है बीच बीच में और खास करके कैचमेंट एरिया में जो बारिश हुई है, अरुणाचल प्रदेश में, चाइना में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसकी सहायक नदियां हैं, वो उफान पर जब आ जाती है तो असम में बाढ़ आमतौर पर आ जाती है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मालूम है कि बारिश अभी लगातार हो रही है और अच्छी बारिश हो रही है, तो इसीलिए ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब अगर हम ये देखें कि जो मानसून है वो डेफिसिट है, जब जुलाई खत्म हुआ तो 13% के डेफिसिट पर खत्म हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। उसके बावजूद आपने देखा कि कुछ इलाके सूखे जैसे हालात झेल रहे हैं, खास करके जो दक्षिण भारत है वहाँ बारिश नहीं हो रही है, उत्तर भारत में भी बारिश बीच बीच में हो रही है और गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाके और राजस्थान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। तो उसका यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा स्क्यूड हो जाता है। जब डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मध्य भारत और जो गुजरात और राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहां पर इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है।
0: ये आंकड़े सिर्फ मौत और नुकसान नहीं बताते, ये बताते हैं कि देश का बड़ा हिस्सा हर साल एक जैसी आपदा से जूझ रहा है। बर्बादी की वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन नतीजा हर जगह एक जैसा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब सिर्फ राहत और मुआवजे से काम नहीं चलेगा, नदियों के प्राकृतिक बहाव को बचाना होगा, फ्लड प्लेन पर अतिक्रमण रोकना होगा और समय रहते सटीक चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करना होगा, वरना हर मानसून के साथ यही आंकड़े बदलेंगे लेकिन तस्वीर नहीं।
2: फिलहाल कहानियों मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए टिकते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
3: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में प्रदर्शनकारियों के साथ तीसरे दौर की बातचीत जारी। 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने की मांग पर अड़े हैं छात्र। खड़गे बोले, सीएम सोरेन को लिखेंगे चिट्ठी। झारखंड तक पहुंचा पैलेट गन विवाद, बीजेपी का दावा। छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर सोरेन की पुलिस पैलेट गन के साथ तैयार। कांग्रेस बोली, फर्जी आरोप। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर जुबानी जंग। रिजिजू बोले, प्रयागराज जाकर की गलती जाना चाहिए था रांची। ब्रिजेश ने कहा, वोट की फसल के लिए आए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4 बजे मुलाकात। भारत ने 13 गोल्ड के साथ कुल 39 मेडल जीते। महिला खिलाड़ियों के नाम रहे 8 गोल्ड। और फुकेट दिलीप फ्लाइट के अचानक से नीचे आने के मामले में घिरे हैं पायलट। डोप टेस्ट में एक पॉजिटिव निकला। मामले की जांच कर रही डीजीसीए। एयर इंडिया का बयान, नहीं मिली रिपोर्ट।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। दोपहर के 2 बजे के बुलेटिन में बात हम करेंगे रांची में छात्रों के आंदोलन और उस पर जारी सियासत के बारे में। छात्र आंदोलन का आज 16वां दिन है और छात्रों की मांगों को लेकर अलग अलग गुटों से सरकार बातचीत कर रही है। छात्रों से पहले भी सरकार की 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही थी। तीसरे दौर की बातचीत से पहले छात्रों के गुटों में अलगाव की भी खबरें सामने आई हैं। उसके बाद सरकार ने सभी गुटों से अलग अलग मुलाकात का फैसला किया है। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग गुटों से सरकार की बातचीत होनी है। और आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामे और प्रेशर के बाद जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन हमने देखा, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन हुआ और जिस तरीके से लगातार रांची में छात्र अड़े हुए हैं अपनी मांगों पर, कल मैराथन बैठक की है। मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने तमाम मंत्रियों के साथ, और आपको बता दें कि 2 दौर की जो बातचीत बेनतीजा रही है, आज की जो बातचीत है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है उस लिहाज से। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आज की बातचीत भी सफल नहीं होती है, अगर छात्रों की मांगों को आज भी नहीं माना जाता है, तो वो घेराव करेंगे छात्र विधानसभा का। उसकी भी तैयारियां कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि अलग अलग गुटों के बारे में जानकारी मिल रही है, जिसमें आरोप ये लगाया गया था छात्रों की तरफ से कि यहां सरकार चाहती है कि आपस में छात्र ही बट जाएं। 4 गुटों की हम बात करेंगे। देवेंद्र महतो गुट है, अभ्यर्थी न्याय मंच है, साथ ही साथ JKLM छात्र गुट है और ISA छात्र गुट भी है। चारों ही गुट वहां पर मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं इन चारों ही गुटों से बारी बारी से बात करेंगे। हालांकि जिस तरह से मनमुटाव की खबरें आ रही थी, अलग अलग बात रखने की बात कही जा रही थी, उसमें कहा जा रहा है कि सामंजस्य बैठा हुआ नजर आ रहा है। बातचीत के लिए मंत्रियों का पैनल बनाया गया है। छात्र गुटों से अलग अलग बातचीत की बात कही गई है सरकार की तरफ से। बातचीत का नतीजा तीसरे राउंड में क्या होगा, सबकी नजरें उस पर हैं क्योंकि हर गुट के बाद सुने जाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है, ये आश्वासन दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हर गुट की बात सुनी गई। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि आश्वासन हमको नहीं चाहिए, हमको समाधान चाहिए, और अगर उन्हें समाधान नहीं मिलता है तो विधानसभा घेराव की भी तैयारियां कर ली गई हैं इन छात्रों की तरफ से। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हमारे साथ सत्यजीत भी हैं और आशुतोष भी हैं। आशुतोष, सबसे पहले चाहेंगे आप बताएं, क्या सत्यजीत का रुख कर लेते हैं। बोले सत्यजीत, आपके पीछे भी बहुत भीड़ नजर आ रही है, क्या तस्वीर है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? जी
1: हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? देखो तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है,
0: हम सुन पा रहे हैं। सत्यजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जबरदस्त भीड़ है सत्यजीत के पीछे, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। आशुतोष का हम रुख कर लेते हैं तब तक। आशुतोष, क्या तस्वीर है, मुलाकात शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी निकल कर आ रही है अभी?
2: जो JSPC रिफॉर्म मंच है शशि, उसके साथ पहले दौर के दूसरे दौर की बैठक खत्म हो गई है। लगभग 50 से 55 मिनट की बैठक चली थी, वो खत्म हो चुकी है। मैं उसी केंद्र के बाहर ही हूँ जहाँ पर ये बैठक हो रही है अभी भी। तो पहले दूसरे दौर की बैठक पहले गुट के साथ हो गई है। दूसरा दौर जो है, जो महतो गुट है उनके साथ वो भी बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो दूसरे छात्र संगठन ये हैं। अभी जो जानकारी मिली है कि सरकार द्वारा ये कहा गया कि हमने अपने मांगे सुनी है, आपकी जो मांगे हैं उस पर सरकार सहमत है, सैद्धांतिक रूप से जांच भी चल रही है, लेकिन एक बड़ा फैसला लेने के लिए उन्होंने कहा कि उम्मीद है। हालांकि छात्रों ने कहा कि उम्मीद नहीं, ठोस आश्वासन की जरूरत है, अश्योरेंस में बदलना चाहिए, आश्वासन से ज्यादा नहीं चलेगा। तो अब ये कहा गया है कि थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि कल बीती रात लगभग 2 से 2:30 बजे तक जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने मंत्रियों के उस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते रहे। तो ये अभी जो दबे पांव ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 बजे तक किसी बड़े ऐलान का अंदेशा भी है कि सरकार की ओर से कोई फैसला है जिसके बारे में अनुमान लगाया जाए। इस बीच छात्रों का जो बड़ा रेला है वो झारखंड के अलग अलग इलाकों से रांची भी पहुंचने लगा। हमने देखा ट्रेनों में बसों के जरिए लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर आज आप आश्वासन नहीं देते हैं तो काउंटडाउन तो अब शुरू हो चुका है, आज का दिन लगभग थोड़ी देर में बीत जाएगा, उसके बाद कल सुबह तो मार्च है। तो अगर आज देर रात तक ये आश्वासन सरकार की ओर से ऐलान नहीं होता सारी मुलाकातों के बाद की, जो क्योंकि जितने भी प्रतिनिधिमंडल हो, मांग तो सबकी एक ही है, और अगर वहां सहमति नहीं बनती है, सिर्फ सैद्धांतिक सहमति रह जाता है, तो कल मार्च होगा। अब सरकार ये नहीं चाहती कि शोडाउन हो किसी तरह का, या छात्र इस तरह से सड़कों पर मार्च करने निकले, क्योंकि वो कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती होगी, और इतना बड़ा रेला सरकार तो दबाव में पहले भी है। तो बस इंतजार है कि क्या कोई बड़ा आश्वासन किसी अश्योरेंस के रूप में, ऐलान के रूप में आज निकलेगा। शशि,
0: आप बने रहे हमारे साथ। आशुतोष, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि कल रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने साफ दावा किया है कि छात्रों के विधानसभा घेराव पैलेट गन के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। घेराव को देखते हुए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए दमन और खौफ का सहारा ले रही है। तो राजनीति इस पर शुरू हो चुकी है, हालांकि कांग्रेस की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा गलत है, सरासर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये जो आंदोलन है, जबरदस्त तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस पर, राजनीति लगातार इस पर की जा रही है। राहुल गांधी से भी पूछा गया कि वो छात्रों से मिलने के लिए इलाहाबाद पहुंच गए, रांची क्यों नहीं गए। खड़गे की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी लिखने की बात कही गई है मुख्यमंत्री सोरेन को। तो कुल मिलाकर आज की जो वार्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है हर लिहाज से।
3: देखिए, हेमंत सरकार छात्रों के आंदोलन को झारखंड में कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति तो अपना ही रही थी। उन्होंने उन सारे छात्र संगठनों को वार्ता के लिए बुला लिया था जो इस आंदोलन में भी शरीक नहीं थे और इत्तेफाक से सभी दल सरकार के सहयोगी थे। लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी। राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया। ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें पुलिसकर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ एससी एसटी ओबीसी बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं? ये छात्र नहीं डरने वाले साहब।
0: बीजेपी के आरोप आपने सुने और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या कहा गया है वो भी सुनिए।
4: ये झूठे नहीं, अनपढ़ जाहिल भी है, ये बबल गन है, रंग निकलता है इससे, और पैलेट गन का इस्तेमाल बिना होम मिनिस्ट्री के। दिल्ली में जो पैलेट गन चला था वो बीएसएफ ने चलाया था, जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, बिना उसके नहीं हिलता है। इनको कोई जाकर बताए, और इनका काम ही है कि शगुफा छोड़ के झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों से समझ लगे। लेकिन आखिरकार देश की जनता ने इन्हें पहचान लिया है। दिल्ली में जिस तरह से जिस अनुभूत किया इनको प्रदेश की देश की जनता ने, ये डरे हुए और इस तरह का लगा बयानबाजी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई बहुत समस्या की बात नहीं, छात्र इनको पहचानते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार बने हुए। आशुतोष, अब तो पैलेट गन की बात भी कही जा रही है, उधर छात्र मार्च की तैयारी में हैं और घेराव की तैयारी में विधानसभा के। सवाल ये है कि चार चार घंटे तक मैराथन बैठक की है मुख्यमंत्री ने, यहां सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और पूरे देश की निगाहें इस आंदोलन पर अब है, पक्ष विपक्ष सबकी निगाहें, क्योंकि रेजिग्नेशन हम देख चुके हैं दिल्ली में।
2: और इसीलिए तो ज्यादा दबाव बढ़ा कि अगर यही बच्चे बैठ करके एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं, और अगर यही कल को जिद पर बैठ गया कि नहीं अब तो सरकार हटानी है, तब तो और ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि 11 से 13वीं परीक्षा इसको रद्द कर दीजिए, 14वीं को रद्द कर दीजिए, जो नियुक्तियां उन्हें खारिज करके। दरअसल सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर हमने सीधे ऐसे कोई आदेश जारी कर दिया तो कल को जिन छात्रों की नियुक्तियां रद्द होंगे वो हाईकोर्ट चले जाएंगे, अगर वहां स्टे लगा, क्योंकि आपके पास कोई ठोस आधार है क्या? सिर्फ आरोप नहीं, ठोस आधार के नाम पर कोई जांच रिपोर्ट होनी चाहिए, किसी तरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट हो जिसके जरिए, क्योंकि जो सरकार का अगर कोई अध्यादेश या कोई आदेश आता है तो उसके सरकार का भी कानूनी डिपार्टमेंट होता है, वो भी उसे वेट करता है। अगर वो भाव उस पर नहीं कहेगा कि हम इस पर सहमत हैं, तब तक तो ये आदेश अपने आप में आगे चुनौतियों का पता चला, आंदोलन जो शुरू हुआ था वो जस का तस बरकरार रह जाएगा। तो वो इसीलिए आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन देखो आश्वासन की बात नहीं होती है, आपकी नाक के नीचे धांधली हुई, ये हर साल साल दर साल की बात तो है नहीं, मतलब दो दशक से ज्यादा झारखंड को आंदोलन करते हो गए, यहाँ छात्र जब से बने तब से इस राज्य में कोई न कोई सरकारी कर्मी आंदोलन ही कर रहा है,
0: इसीलिए निगाहें टिकी हुई हैं इस बातचीत पर जो तीसरे दौर की जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका आशुतोष, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन कर रहे छात्र पोस्टर्स के जरिए भी सवाल उठा रहे हैं। इन पोस्टर्स में अभय तिवारी की भूमिका पर खासा फोकस किया गया है, जिसके परिवार के कई लोगों को सिस्टम की खामी का फायदा मिला।
2: एसपीसी जेएस एससी सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है, बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन सीआईडी जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो सीजीएल में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो जेएसएससी कार्यालय में सीजीएल आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये सीआईडी जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के सीजीएल में चयन के संबंध में सीआईडी ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई, और जेएसएससी के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, जेएसएसपी में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन सीजीएल में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है, ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब सीबीआई की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषियों पर कार्यवाही। उन्होंने दिखाया कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की। सीआईडी के द्वारा पेपर लीक के प्रमाण सबूतों की लिपापोती। पेपर लीक करने वाला बाहर और प्रमाण देने वाले को ही जेल हो गया। योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। जेएसएससी के अंदर ही भ्रष्ट अधिकारियों का होना, अब ये कहता ना कि माइक्रोस्कोप वाला ये जो चाचा है, और जेएसएससी सीजीएल द्वारा अयोग्य भ्रष्ट अभ्यर्थियों का चयन होना, और उसी के साथ सेंटरों पर दलालों का लगातार पकड़ा जाना। ये छात्र हर उस बारीकी को जानते हैं कि जब ये पेपर सेट कर रहे होते हैं सालों, तो सेटिंग कौन कर रहा होता है पर्दे के पीछे। ये बड़ा क्रिएटिव तरीका, और अभय तिवारी उसके परिवार पर आप लोग सबसे ज्यादा आक्रामक हैं।
5: सर, अभय तिवारी एक ऐसा व्यक्ति थे जो सब एग्जाम बैठे हैं, और सबसे बड़ा सेटरबाज है वो। अपने परिवार सबको नौकरी दिए और बाहरियों को भी नौकरी दिलवाए हैं।
0: और इसी बीच रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी हेमंत सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले रही है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आखिर राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे। अब बीजेपी के इस हमले का कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया है। तो राहुल गांधी को लेकर वैसे भी सवाल पूछे जा रहे थे कि वो इलाहाबाद छात्रों के बीच पहुंच गए तमाम मुद्दों को उठाने के लिए। उन्हें रांची जाना चाहिए था, जहां 16 दिन से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि वो सोरेन सरकार को पत्र लिखेंगे इस पूरे मामले पर।
6: राहुल गांधी जी ने सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी छात्र ने नहीं उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाकर कोटा में गए, सबसे मिले, उसके बाद में उसमें जान आ गई, सब चल रहा है। और उसके साथ साथ छात्र भी अपनी डिमांड को रखे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लड़ाई को सबसे ज्यादा पुष्टि मिली राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के, और राहुल गांधी जो यंगस्टर्स को बूस्ट दे रहे हैं, उस बूस्ट का फायदा उनको भी हुआ।
0: तो बातचीत लगातार जारी है छात्रों के गुटों के साथ, प्रतिनिधिमंडल की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यजीत जुड़ गए हैं। सत्यजीत, किस गुट के साथ बातचीत चल रही है, कहां तक बात पहुंची, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी?
7: देखिए, दोनों गुटों को बुलाया गया था। दो सेंटर थे प्रोटेस्ट के जयपाल सिंह स्टेडियम में। एक को हेड कर रहे हैं जेएलकेएम लीडर देवेंद्र महतो, जो इंडेफिनिट पास्ट में है पिछले 6-7 दिनों से। इसके अलावा एक जो है कोर स्टूडेंट ग्रुप्स है, जिसका नाम उन्होंने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स ग्रुप रखा है, जबकि देवेंद्र महतो गुट के का जो ग्रुप है उसका नाम अभ्यर्थी न्याय मंच है। तो दोनों से ही बात हो रही है। पहले राउंड का जो डायलॉग हुआ था, तो दोनों को अलग अलग बुलाया गया था, एक दिन इनको, दूसरे दिन उसको। लेकिन उसके बाद जब कल रात मुख्यमंत्री से बात हुई, पूरा ब्रीफिंग किया गया पैनल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें 4 मंत्री है उनके द्वारा, उसके बाद आज सेकेंड राउंड ऑफ डायलॉग हो रहा है दोनों से अलग अलग। और ये जो है उम्मीद है, कयास लगाया जा रहा है, जो सोर्सेज हैं पैनल के करीबी सोर्सेज जो हैं, 4 मंत्री जिस पैनल में हैं, सुदीप सोनू, चामरा लिंडा, दीपिका पांडे और इसके अलावा संजय प्रसाद, उनके करीबी और उनके जो सोर्सेज हैं वहां के सोर्सेज, उन्होंने कहा है कि कोई मेजर अनाउंसमेंट शाम तक हो सकता है। इनकी मुख्य मांगे जो थी 14th जेपीएससी की प्रीलिम्स को कैंसिल करना, तो शायद यह अनाउंसमेंट किया जा सकता। और एक सीआईडी प्रोब लगातार जो चल रही है, 19 गिरफ्तारियां हुई, इसके अलावा जो है इस्तीफे लिए गए, तो वहां पे जांच शायद सीआईडी से ही हो और निगरानी में हो रिटायर्ड जज के, रिटायर्ड जज का कोई पैनल हो सकता है जो इसको मॉनिटरिंग करे, ऐसी घोषणा की जा सकती है। और इसके अलावा एक रिफॉर्म्स के लिए, सुझाव के लिए, अगर किसी को कोई ग्रीवांसेस है, तो एक ईमेल, एक चैनल ये भी खोला गया है कि jpsc.jssc.feedback@gmail.com पे अगर किसी को कोई ग्रीवांस है किसी अभ्यर्थी को, तो अपनी राय या फिर शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो रिफॉर्म्स के तरफ भी सरकार ये इंडिकेशन दे रही है एक मेजर हिंट ड्रॉप किया है कि
0: बिल्कुल बहुत शुक्रिया सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद उन्होंने किया था और छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। उसके बाद बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी झारखंड के छात्रों की फिक्र क्यों नहीं कर रहे, वहां रांची क्यों नहीं पहुंचे छात्रों का साथ देने के लिए।
8: जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो, हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है, 1 GB डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st century इकोनॉमी।
0: राहुल गांधी के प्रयागराज शो पर बीजेपी हमलावर है। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी पूछा है कि रांची क्यों नहीं जाते हैं राहुल गांधी। वहीं यूपी कैबिनेट के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता इसे फ्लॉप शो कह रहे हैं।
9: मैं राहुल गांधी से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं, क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है।
10: निश्चित रूप से ये दर्शाता है क्योंकि राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, विदेश में जो क्लब पब उस तरह से जो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, वो यहाँ संघर्षरत कार्य पूर्वांचल से सहित प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो बघाड़ा में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो सलोरी में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो तिलियरगंज में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो मुट्ठीगंज कीटगंज चौक इलाके में रह करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके संघर्ष के बारे में उनको पता नहीं है। तो वो एक तरह से एक टूरिज्म की तरह से यहाँ पर आए हुए थे और पूरा फ्लॉप शो रहा। और मुझे बताते हुए मतलब थोड़ी हंसी भी आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन उनका लाजमी है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरा है। खड़गे ने कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन से लेकर ट्रस्ट के मेंबर चुनने तक सब कुछ मोदी ने किया है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि चोरी क्यों हुई और किसने की।
6: वो देख रेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया, उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की, उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे, उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया, उसने किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो क्यों ऐसा हुआ।
0: महाराष्ट्र के बारामती से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बारामती में एक और विमान हादसा हुआ, एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। विमान हादसे में एयरक्राफ्ट का पायलट सुरक्षित है, अच्छी खबर यह है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बारामती में ट्रेनी एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और आपको बता दें कि ट्रेनी एयरक्राफ्ट था जो क्रैश हो गया है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विमान हादसे में जो एयरक्राफ्ट का पायलट है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये जो ट्रेनी विमान है यहां क्रैश हुआ है। बारामती का इलाका है, हालांकि इसकी वजह क्या रही अभी ये साफ नहीं हो पाया है। मौसम शुरुआती कारण जरूर बताया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पायलट सुरक्षित है इस हादसे में। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
8: In association with
9: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: I've lived through all this, what I'm seeing. That's why I came here. Good concept, happy that it happened.
11: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
12: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
13: Best part, it is perspective and narrative of the nation.
14: It's brought back old memories.
15: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते वक्त हर वाहन मालिक की यही कोशिश होती है कि माइलेज अच्छा मिले और इंजन लंबे समय तक बेहतर चलता रहे। ऐसे में पेट्रोल में इथेनॉल की बढ़ती मिलावट को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते रहे हैं। अब सरकार ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से आगे बढ़ने को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। आसान भाषा में समझें तो E20 पेट्रोल पर सरकार का भरोसा बना हुआ है। अलग अलग टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स में इंजन पर किसी बड़े नकारात्मक असर का कोई सबूत नहीं मिला है और सरकार ने E20 कार्यक्रम को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से अहम बताया है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से वाहनों को नुकसान पहुंचने की आशंकाओं को भी खारिज किया है। मंत्रालय के अनुसार फील्ड ट्रायल्स में इंजन में जंग, असामान्य घिसाव या वाहन की उम्र घटने के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जबकि इथेनॉल ब्लेंडिंग से आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है। सरकार ने इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा, जल उपयोग और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू करने की बात कही है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी सरकार ने जानकारी दी है। देश में ईंधन मिश्रण के लिए अलग अलग कृषि स्रोतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत गन्ने के रस, मक्का, खराब हो चुके अनाज और टूटे चावल से इथेनॉल बनाया जा रहा है। वहीं इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली फसलों की सिंचाई से जुड़ी जरूरतों पर एक्सपर्ट्स की सिफारिशों का अध्ययन चल रहा है और सरकार E20 कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर ही फोकस बनाए हुए है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता E20 पेट्रोल के इस्तेमाल को बढ़ाने की है। वहीं E20 से ज्यादा इथेनॉल मिश्रण या उससे जुड़े किसी नए नीति ढांचे पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। साफ है कि सरकार E20 पेट्रोल को देश की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। ऐसे में आने वाले समय में पेट्रोल पंप्स पर E20 की मौजूदगी बढ़ सकती है, जबकि इससे आगे के कदमों पर फैसला भविष्य की स्टडी और जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 18,000 फीट पर है। बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
1: उन्होंने ली थी परमिशन हमारे देश में घुसने से पहले। तुम्हें जो करना है करो।
2: फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की नहीं, फाइटर्स की होती है।
3: हमारे भाइयों के सम्मान में हम लड़ेंगे।
4: अब हम या तो इतिहास बना देंगे या बन जाएंगे।
5: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। साल 1997 जेंजी की पैदाइश है और जेंजी की पैदाइश के कुछ सालों के बाद भारत पर एक युद्ध थोपा गया। भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए बहुत प्रयास पाकिस्तान ने किया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ वही जो हमेशा होता आया है, उसमें भारत के युद्ध कौशल की जीत हुई। कारगिल का ये युद्ध था और उसमें एक ऑपरेशन चला गया भारतीय वायुसेना की तरफ, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ऑपरेशन सफेद सागर नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज भी आ रहे हैं, और उस सीरीज की जो स्टार कास्ट है इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे और आपको एक बार फिर से हम साल 1999 में लिए चलेंगे। और जो स्टार कास्ट है हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रजक्ता कोहली हैं, हमारे साथ तारुक रैना है, मिहिर आहूजा हैं, अर्नब भसीन हैं, अभय वर्मा हैं और अमृता बागची हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, ऑपरेशन

0: और वो इस शो की खासियत है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर. बहुत सारे बटालियंस, बहुत सारे स्क्वाड्रन्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबने काम किया था, सबने एकजुट होकर युद्ध में हिस्सा लिया था. ये एक स्क्वाड्रन की कहानी है. 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज, जो एक फोटो रिकॉनिसेंस स्क्वाड्रन है. तो मेरा जो अनुभव रहा है, इट्स मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग एक्सपीरियंस, मैं बोल सकता हूँ इसे.
1: क्या बात है.
0: हाँ, क्योंकि दो साल हमने, हम पायलट तो बने नहीं, हम कभी बन नहीं सकते, हम उसके काबिल भी नहीं है, लेकिन दो साल हम, वी वर एबल टू वॉक इन देयर शूज. और हमें जो गाइडेंस दी गई है, जितना रिसर्च इस शो के लिए हुआ है, और हमने असली पायलट्स के साथ दिन शुरुआत की है, उनसे हमने ट्रेनिंग और एडवाइस लिया है. और जो किरदार मैं निभा रहा हूँ वो शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का किरदार है. और सो दैट इज अ रियल ऑनर. तो दिस इज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस. और सबसे बढ़िया अगर मेरा टेक अवे है, वो आपके सामने बैठा है यहाँ पे, इतने उम्दा कलाकारों के साथ काम करने का मौका. और ये जेंजी के लोग हैं, तो जिस जेंजी की आप बात कर रहे हैं, ये उसी जेंजी का हिस्सा है. इनफैक्ट दो लोग यहाँ पे हैं जो कारगिल वॉर से भी कम उम्र के हैं. तो उनसे आप जरूर पूछिएगा कि उनका अनुभव कैसा रहा. बट मेरे लिए इट वॉज अ लाइफ टाइम ऑनर.
1: किसी और की जूतों में पैर रखना बहुत मुश्किल होता है. मैं आपसे अजय आहूजा जी के जीवन के बारे में समझना चाहूंगा कि मतलब हमने उनकी वीरता के बारे में, उनके शौर्य के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग कैसे थे, क्योंकि आपने उस कैरेक्टर को जिया है, वो कैसे थे?
0: सबसे जरूरी बात यह है कि जिस टाइम में अजय आहूजा सर काम कर रहे थे, उस टाइम में इतने वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वॉइस नोट्स का जमाना नहीं था. तो हमारे पास बहुत बहुत कम एक्चुअल फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस है. तो वी हैव फोटोज बट वी हैव नो वीडियोस, वी हैव नो साउंड. तो मेरा जो भी इसमें प्रयत्न रहा है, जो भी मैंने कोशिश की है, वो एक शख्स से मैंने इंस्पिरेशन लेके किया है, वो है हमारी वीर नारी अलका आहूजा जी. तो उन्होंने मुझे गाइड किया है, उन्होंने इतना सारा हमें दिया है. फर्स्ट चीज़ तो उन्होंने इजाज़त दी है कि मैं आहूजा सर का किरदार निभा पाऊँ. और फिर उन्होंने मेरे लिए बहुत खास एक भेंट भेजी थी. मैंने उनसे पूछा था कि मैं आहूजा सर का कुछ आपके पास होगा, जैसे शूलेस या कुछ कर्चीफ जो मैं अपने साथ रख पाऊँ दो साल के लिए, ताकि मैं कुछ तो जान पाऊँ उनके बारे में, आई कुड एक्सपीरियंस हिम. तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी. उन्होंने कहा था, एक तो मेरे पास उनके कोई वीडियोस या वॉइस रिकॉर्डिंग्स नहीं है सिद्धार्थ, लेकिन तुम जो भी करोगे ऑपरेशन सफेद सागर में, वो मेरी मेमोरीज बन के रह जाएंगे.
1: क्या बात है.
0: और उससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए मेरे लिए अजय सर के विंग्स भेजे. विंग्स जो फ्लाइंग पैचेस बोलते हैं. तो जो आहूजा सर के विंग्स हैं, मैंने इस शो में पहने, और वो मेरी जिंदगी का सबसे भारी कॉस्ट्यूम मैं मानता हूँ, क्योंकि उस कॉस्ट्यूम के साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां आती हैं. और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा इजाजत के लिए और उनके ढेर सारे भरोसे और प्यार के लिए.
1: क्या बात है. प्राजक्ता, वैसे तो हर कैरेक्टर बहुत खास है इस ऑपरेशन का, लेकिन जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उनकी खासियत के बारे में बताएं. 900 से 1000 किलोमीटर.
2: मेरे लिए ऑनेस्टली, आप अगर, जब हम शूट कर रहे थे ना, जब हम नाल के एयरफोर्स बेस में शूट कर रहे थे, हमने हमारे स्केड्यूल की शुरुआत करी थी एक एयरफोर्स ऑफिसर के घर में, सेट लगा था और हम बॉल्डी और माधवी का घर वहाँ शूट कर रहे थे. मेरी शो की शुरुआत वैसे हुई थी. एंड जिनका घर था ना, वो रिसेंटली शिफ्ट हुए थे, तो वो भी आए थे वहाँ पे. बहुत सुंदर घर था जहाँ हम शूट कर रहे थे. तो बिटवीन शॉट्स ना, मैं उनसे बातें करती थी, क्योंकि अगेन ये किरदार ऐसा है कि आप कैसे इसके लिए प्रिपेयर करोगे, कि किसी के भी दिमाग में क्या बात चलती है, कि रोज़ आप उठ रहे हो, आपके पार्टनर सुबह उठ के काम पे जा रहे हैं, यू नो द रिस्क, यू नो द अनसर्टेंटी दैट कम्स विद इट, बट यू स्टिल सेंड देम विद अ स्माइल एंड यू स्टिल रिसीव देम व्हेन दे कम बैक विद अ स्माइल एंड लाइफ गोज ऑन. मैंने कहा ये समझना बहुत मुश्किल है ऑर्डिनरी लोगों के लिए हमारे जैसे, कि ये क्या सैक्रिफाइस, क्या करेज होता है. ये आप इमेजिन कर करके ऑल्सो एज एन एक्टर आई डोंट थिंक यू विल एवर नो एग्जैक्टली कि क्या होता है. बट आई रिमेंबर वो जो उनके साथ कॉन्वर्जेशन होती थी, उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि आई डोंट थिंक आई विल एवर अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, लेकिन मैं शायद अगर रेप्लिकेट कर पाऊँ वो जो ग्रेस है, वो जो करेज है, या कोशिश भी अगर मैंने कर ली समझने की, तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी नॉर्मली करते हैं. हम जब एयरफोर्स पे, उस बेस पे हम जब चलते थे, हम लोगों से मिलते थे, एवरीवन देयर वाज सो ग्रेशियस. हम उनके घर खाना खाने चले जाते थे, हम पार्टी करते थे, सारे बैठ के एक साथ बातें करते थे. तो

0: उनसे मिलके समझ में आया कि उनके लिए ये नॉर्मल है और वो समझना बहुत मुश्किल है. तो मेरा तो टेक अवे यही था कि इतना करेज अगर इसका 1000 भी मैं इससे सीख पाऊं तो मेरी लाइफ बड़ी आसान होगी.
1: क्या बात. मिहिर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज के साथ काम करते हुए? और सच मतलब हमारी जो नई पीढ़ी है वो सच बोलने के लिए जानी जाती है. आप सच बताना, ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में आप जानते थे?
2: नहीं, ऑनेस्टली मैं, मुझे नहीं ज्यादा नॉलेज नहीं थी इस ऑपरेशन के बारे में. कारगिल वॉर जानता था, बट मैं भी एक साल का था जब कारगिल वॉर हुआ था, तो उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या एग्जैक्टली हुआ है. और जैसा सिट सर ने कहा कि इतने फुटेज नहीं थे उस टाइम, यू नो, एंड इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आया था तब तक, तो बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं था. तो स्कूल में हम थोड़ा सा जो कारगिल वॉर के बारे में पढ़े थे इतना ही पता था. तो जब ये शो ऑफर हुआ एंड जब ऑडिशन हुआ, तब मैं उसके बाद जब स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने फर्स्ट टाइम, स्क्रिप्ट पढ़ते साथ सबसे पहली फीलिंग तो ये थी कि देयर्स सो मच प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, यू नो, प्ले समवन, प्ले अ हीरो लाइक दिस. सो पहले तो बहुत नर्वस था शुरुआत में कि मैं कैसे करूँगा. बट ऑल्सो आई गॉट लॉक 2 days बिफोर द शूट. शूट के 2 दिन पहले मैं लॉक हुआ था, तो वो प्रेप टाइम भी नहीं मिल पाया था.
1: कैसे मतलब इतना देरी से? कैसे
2: वो तो क्रिएटर्स को पता है कि बट
3: एक बात के मामले में सर, ऐसी प्रोजेक्ट्स बनती नहीं है, बनते बनते बन जाती है और उनका हिस्सा बनना कहीं पे लिखा होता है. तो आप कौन से वक्त पे आप एंटर हुए वो आपके हाथ में नहीं होता. आप एंटर हुए ये मतलब पूरी कायनात ने आपको एक मतलब बहुत बड़ा पुरस्कार दिया मैं समझता हूँ.
2: बिल्कुल. सो व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन, एज सर सेड. क्योंकि कई बार आपको बहुत ज्यादा प्रेप टाइम मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, डिपेंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. तो इस प्रोजेक्ट में 2 दिन पहले जैसे लॉक हुआ था मैं, जैसे मैंने बताया, तो उसके बाद इसमें खास बात क्या हुई कि जब मैं, मुझे मुंबई में वो टाइम नहीं मिला, यू नो, प्रिपेयर करने का बाय माई सेल्फ. बट 2 दिन बाद, यू नो, वी वर ऑल शूटिंग इन बीकानेर एफओ स्टेशन, वहाँ से शुरुआत की थी हमने. तो पहले 2 days काफ़ी ईजी गोइंग थे मेरे लिए, इट वॉज नॉट वेरी टेक्निकल. उसके बाद आई हैड अ 7-8 day ब्रेक, तो वहाँ पर मेरा प्रेप मिक के साथ ही हो रहा था, यू नो, विद द एफओस ऑफिसर्स अराउंड मी, विद द रियल मिक्स अराउंड मी. सो आई कुड टच एंड फील द मिक्स एंड आई कुड बी अराउंड देम, और मैं प्रेप एफओ स्टेशन में कर पा रहा था. सो व्हाट बेटर फीलिंग देन दैट. सो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है. अगर इसमें वो मौका नहीं मिला, उतना टाइम नहीं मिला होमवर्क का, तो उतना ही मौका मुझे फ्री टाइम वहाँ मिल गया एफ एस बेस पे इसको एक्सप्लोर करने का. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस.
1: क्या बात. अमिता, आपको इस मतलब पूरे के पूरे सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा किस बात में चौंका?
4: जब मैं अलका जी से पहली बार मिली थी तैयारी करने के लिए, मुझे लगा था कि वीर नारी अलका हुजा, मेरे दिमाग में एक छवि बैठ गया था कि वो कैसी होंगी, सीरियसनेस होगा उनमें एक हैवीनेस होगा. मैं भूल गई थी कि 25-26 साल बीत चुके हैं, है ना, और वो दुख जो है वो मतलब आंसू के बाद एक फेज होता है दुख का, जब आप एकदम एक वो पत्थर बन के आपके अंदर सीमेंट हो जाता है. वो जो फेज है ना, वो फेज अलका जी जी चुकी थी. उसके बाद जब वो मुझसे मिलने आई, वो तो हंस रही थी. वो जब अजय जी की बात कर रही थी, वो हंस रही थी. और मुझे, मैंने पहले सोचा था कि इस चीज में बहुत, मतलब जो कहते हैं ना, ग्रेविटास रहेगा, एक सीरियसनेस से मैं अप्रोच करूंगी. मैंने रियलाइज करा कि बहुत हल्का होना है टू प्ले अलका. बहुत हल्का होना है, और वो हल्का होना, एक दुख में, गम में, लॉस में हल्का होना, ये चीज एकदम मैं चौंक गई थी देख के. हाउ इज इट पॉसिबल?
1: अब इस पूरी की पूरी सीरीज में आपको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कितना होगा?
5: Completely. Sorry, I didn't mean to laugh at your question, but it was like, मुझे तो पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट ने बदल दिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेरी जिंदगी का. और जिन लोगों से मैं मिला, ये पूरी जो कास्ट है, हमारी जो क्रू है, जिस स्केल पर ये प्रोजेक्ट हो रहा है, एयरफोर्स पे जो लोग मिले, एवरीथिंग, I've had so many firsts. I'm still having firsts. पहली बार मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत कुछ सीखने मिला है. और मतलब लिटरली 180 degrees मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है इस प्रोजेक्ट के बाद. बट ये मेरा बेस सेट कर देगा आगे जाने के लिए, क्योंकि मुझे इन सब लोगों ने इतनी अच्छे तरीके से दिल खोल कर यू नो जो भी मुझे सवाल थे सारे जवाब मुझे उन्होंने दिए, चाहे वो प्रोजेक्ट के बारे में हो. बहुत क्लैरिटी से ये प्रोजेक्ट में काम हुआ. हम बात कर रहे थे कल हमारे डायरेक्टर से ओनी सर से कि हम जब दूसरे सेट पे जा रहे हैं अब हमें समझ आ रहा है कि ये सेट इतना अच्छा था क्योंकि हमें यहाँ पे जो क्लैरिटी से जवाब मिलते थे, हमारे पास एक डाउट होता था और यहाँ पे डाउट भी मतलब इट हैज़ टू बी वेरी यू नो इट हैज़ टू बी क्लियर्ड immediately because it is a the air force is involved, so you need to your questions and your answers have to be aligned, like in sense. So we were given answers immediately and we were clear ki, okay, this is how we have to approach this scene, and that does not happen in every set because some people are figuring it out and you know it takes a longer time to understand things.
6: Taruk jab bhi ek
7: taruk
6: nahi nahi main taruk.
7: तू तारुक बन सकता है, तुझमें वो बात है अब है कि तारुक बन सकता है तू.
6: मैं तारुक हूँ
7: आज की तारीख में, वो तारुक है, वो तारुक वर्मा.
6: मैं
7: क्या बात है, क्या बात है,
6: मैं माफी चाहता हूँ
7: तारुक. हाँ जी बोलिए.
6: अच्छा उस तारुक कितने साल हो गए थे जब मतलब आप पैदा हुए और कारगिल, आपको कुछ कुछ मेमोरी है और जब आप वो वर्दी पहन रहे थे तो वो कैसी फीलिंग?
3: सर मुझे कोई मेमोरी नहीं है. मैं 4 साल का था तो मुझे कारगिल जब हुआ था उसका मुझे इतना कुछ याद नहीं. पर अभी जब हम इस प्रोजेक्ट पे जब हम आए, मैंने रियलाइज किया कि मूवी हीरोज और असली हीरोज में फर्क क्या होता है. जैसे यू नो आप जब हमारा शो देखेंगे आपको कोई यहाँ पे हम किसी कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि कोई हार्नेस पहन के बैक फ्लिप करके किसी को गोलियां मार. यू नो दिस इज अबाउट पीपल हु एक्चुअली जो हमारे देश के लिए लड़े, जिन्होंने अपनी असली में जान दांव पे लगाई. फ्लाइंग लेफ्टिनेंट जितेंद्र सांगवान, फ्लाइंग ऑफिसर अमित गुप्ता, फ्लाइंग ऑफिसर बाल रेड्डी, फ्लाइंग ऑफिसर आरएस धालीवाल, दीज पीपल आर रियल हीरोज. अजय आहूजा, दीज आर रियल हीरोज. तो जब हम इनके शूज में स्टेप इन करते हैं, जैसा आप सिट सर से कह रहे थे, तो ये एक बहुत अलग समा हो जाता है. हम जब भी वो ओवरऑल पहनते थे, हम बाहर निकलते थे अपनी मेकअप वैन या जो भी हमारे पास होता था, और हमारे सामने हमें एक्चुअल पायलट्स दिखते थे जो हम बनने की कोशिश कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे. जो आपको रियलिटी चेक मिलता है जब आपके सामने ही वो आपकी डेस्टिनेशन है, आपका गोल है, जो आपको बनना है, वो बहुत अलग हो जाता है. जब वो असली में ही ये काम करते हैं और आप बस कोशिश करने मतलब के तौर पे वहां पे हो, तो आपको समझ आता है कि दुनिया में असली हीरोज किस चीज को कहते हैं. तो ये सबसे बड़ी सीख थी मेरी इस पूरी एक्सपीरियंस को.
7: और हम रोज सुबह से लेके शाम तक जब हम बेस पे थे, इतनी सारी मिग्स और मिराजेस और सुकोई टेक ऑफ और लैंड होती थी कि वो जो जेट इंजन की आवाज होती है वो मैं आपको, आप अभी तो सब लोग एयरपोर्ट जाते हैं, आप तो इंडिगो और एयर इंडिया की फ्लाइट को भी उड़ते हुए देखते हैं, इंजन का साउंड सुनते हैं, ये जेट इंजन है, इसकी आवाज अलग होती है, इसका जो जो आप में महसूस उसको कराता है आपको, वो बहुत अलग एक अनुभव होता है. और हम लोग छोटे बच्चों की तरह उन्हें देखते थे और उनमें हमें बैठने का मौका मिला, उनके अंदर सीन्स करने का मौका मिला. वो मैं समझता हूँ हम 6 जो पायलट्स बने हैं इसमें और बाकी जो भी एक्टर्स इसमें पायलट का किरदार निभा रहे हैं, उन सब के लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, जो हम किसी और सेट पे कभी अनुभव हमारा ऐसा था नहीं.
3: और सर वो जो जेट इंजन की आवाज है ना, बहुत अलग है, वो बहुत अलग है और वही उनकी आवाज है. आप अगर इन कमाल के एयरफोर्स पायलट से मिलेंगे ना, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, इनको पता है इनका काम कितना बड़ा है. ये बहुत ही जेंटल अच्छे लोग हैं जो आपसे मतलब आराम से you know you'll feel like they'll make you feel so warm and welcome and safe and comfortable.
7: aur bahut kam bolte hain jaise ki abhay
6: ab hai bahut theek hai
7: so abhay se kuch bulwate hain abhi
6: abhay ka anubhav kaisa tha ye
7: aap apna anubhav batao.
3: par jab unki jet engine ki awaaz aati hai na aapko samajh aata hai ki ye kahan se aa rahe
6: hain ab hai ji sir aapka anubhav kaisa tha
8: hamara kaam hai low flyer ke photos
5: khinchna. एक बहुत ही खूबसूरत बात तो मुझे रियलाइज हुई शूट करने के बाद. हम एक
9: हम एक्टर्स के लिए ना जब बनना चाह रहे होते हैं एक्टर्स, तो हम अपना हीरो डिसाइड करते हैं और फिर उसको उनकी तरह बनना चाहते हैं। एक वो चीज़ तो है ही, लेकिन इस शो के बाद मेरे साथ उल्टा हुआ। मुझे एक्टिंग करने के बाद मेरे हीरोज दिखे और मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे इनके जैसा बन।
10: क्या बात है,
9: जैसे हम चलते थे, जैसे अभय बोल रहा है
7: तारुख तू भी ना
9: सॉरी
7: क्या यार,
9: तो जैसे तारुक ने बोला कुछ बात नहीं करते हैं, दे जस्ट डू देयर वर्क और उनका काम ही उनका जवाब है, उसके अलावा कुछ नहीं। आहूजा सर एक बार एक सीन करने जा रहे थे, तो उनका जी सूट है जो पहनना होता है फ्लाइट पर मेघ में जाने से पहले, तो एक संधु सर हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो अपना काम कर रहे थे, तो सर ने बोला मेरा जी सूट नहीं हो रहा है, तो वो कुछ काम कर रहे थे, करे अच्छा बेटा रुक, तो वो उठे, उन्होंने जी सूट उनका बांध दिया। कुछ ऐसा सवाल नहीं कि अरे यार टीम को बोलो ये वो सब, तो वो इट इज ऑल यूनाइटेड, वो एकता का जो प्रतीक है एयरफोर्स, वो बहुत कुछ सिखा देता है आपको।
10: अभी अब हम जब बात कर रहे हैं, इस समय जब लोग हमें देख रहे हैं, इस समय आपकी सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स पर दिख रही है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आगे कुछ और सवालों की तरफ आना चाहता हूं कि आज वो समय है जब कोई भी सीरीज या कोई भी फिल्म आती है तो उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है। अब आपकी जो ये सीरीज है ये तो उस समय के जब एनडीए की सरकार थी, अब इस समय ये आ रहे हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है? एक तबका ऐसा भी कहें कि भाई एक विशेष दल को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ये सीरीज ऐसे समय में लाई गई है कि इससे उनकी छवि बहुत अच्छी हो जाएगी।
7: जी मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री में पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 100% परमिटेड एंड कोलैबोरेटेड विद द इंडियन एयरफोर्स है, तो इसमें ना राजनीति की बात होती है और ना किसी भी सरकारी दल या किसी भी सरकारी पार्टी की बात होती है, ये इंडियन एयरफोर्स की कहानी है और उसमें स्क्वाड्रन 17 जो गोल्डन एरोज कहलाते थे उनकी कहानी। अब इसको आप जिस नजरिए से देखेंगे आप, वो तो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इनके प्लेन्स में बंदूकें और बॉम्ब्स नहीं होती, सिर्फ कैमरा होते थे, तो इनका काम था कि ऊपर से युद्ध को देखना और सबको इन्फॉर्मेशन भेजना ताकि सब लोग युद्ध में जुट सके। आर्मी सब कुछ इस हाई लेवल पे देखता है, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो सब कुछ 3D में दिखता है आर्मी को, एयरफोर्स सब कुछ 2D में देखता है, क्योंकि नक्शे बनते थे कि ताकि फोटो रिकॉन, ताकि आप युद्ध लड़ सके, तो एक फोटो रिकॉन स्क्वाड्रन फोटो लेके भेजता था ताकि नक्शे बन सके, और उन्हीं प्लेन्स में से कैमरा निकाल के बॉम्ब लगाए गए, क्योंकि इन यंग जाबाज पायलट्स को मौका मिला था कि वो जाके युद्ध लड़े, जिसकी ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई थी और जिनके कैपेबिलिटी उनके प्लेन्स में तो थी लेकिन उनको वॉर प्रिपरेशन नहीं दिया गया था। तो ये राजनीतिक शो नहीं है, ये बहादुरी का किस्सा है।
10: क्या बात,
7: और एक ऐसी बहादुरी का किस्सा है जो उस टाइम कई स्क्वाड्रन ने दिखाई थी, कई लोग शहीद हुए थे, कई लोगों ने अपनी जान दे दी अपने देश के लिए, ये एक ऐसी स्क्वाड्रन की कहानी है जो यंगेस्ट थी और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अंडरडॉग कहला सकती, क्योंकि उसके पास ना प्रेपरेशन था ना सिर्फ काबिलियत और हौसला था, और उसने उन्होंने हमारे देश को विजय दिलाई और हम हमेशा उसे गर्व से कहेंगे कि ऑपरेशन सफेद सागर जो 250 करोड़ का इकोनॉमिक जनरेशन का दावा लगाती है, वो शो सिर्फ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के शौर्य के बारे में बात करेंगे।
10: क्या बात है, और मुझे पूरी मतलब शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को भी इतनी ही पसंद आएगी। आपने भी बहुत मेहनत की है और उन्होंने भी 1999 में बहुत मेहनत की थी, सभी को बहुत पसंद आएगी और आप सभी जुड़े, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
14: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
15: भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी, दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: लखनऊ में हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बिजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, वंदे मातरम इसका अपमान मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि तिरंगा भारत की सादगी, विकास, विरासत और देश की आन बान और शान का प्रतीक है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: मैं राहुल गांधी से दो तीन बातें पूछना चाहता हूं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं, क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है।
4: निश्चित रूप से ये दर्शाता है क्योंकि राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, विदेश में जो क्लब पब उस तरह से जो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, वो यहाँ संघर्षरत कार्य पूर्वांचल से सहित प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो बघाड़ा में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो सलोरी में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो तिलियरगंज में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो मुट्ठीगंज कीटगंज चौक इलाके में रह करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके संघर्ष के बारे में उनको पता नहीं है। तो वो एक तरह से एक टूरिज्म की तरह से यहाँ पर आए हुए थे और पूरा पूरा फ्लाप सो रहा। और मुझे बताते हुए मतलब थोड़ी हंसी भी आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन उनका लाजमी है।
5: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे।
6: फूल बरसाए जा रहे, मारे जा रहे, इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है, आगे ये मारेंगे हम।
5: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से हिमाचल तक भूस्खलन, मलबा और बढ़ते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देवालवाण मार्ग पर बारिश शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। पहाड़ से लगातार मलबा और कीचड़ आने की वजह से सड़क बंद हो रही है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार करनी पड़ रही है। देवालवाण मार्ग बंद होने से आसपास के गांवों की करीब 8,000 की आबादी प्रभावित है। लोगों को इलाज, राशन और जरूरी कामों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाद अब बागेश्वर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो गए हैं और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांडा बागेश्वर हाईवे पर थपोली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहन मलबे में दब गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर लगातार दिखाई दे रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडोह बांध से बीबीएमबी ने ब्यास नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने से पहले लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी। बंद सड़कें, भूस्खलन और बढ़ते नदी नाले लोगों के लिए चुनौती बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो

झारखंड में प्रदर्शनकारियों के साथ तीसरे दौर की बातचीत, 14वीं जेपीएससी पीडी रद्द करने की मांग पर अड़े हैं छात्र। खड़गे बोले, सीएम सोरेन को लिखेंगे चिट्ठी। झारखंड तक पहुंचा पैलेट गन विवाद, बीजेपी का दावा। छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर सोरेन की पुलिस पैलेट गन के साथ तैयार, कांग्रेस बोले ये फर्जी आरोप। प्रयागराज कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने पायलट गन को लेकर किया पोस्ट, कहा गृहमंत्री अमित शाह को जवाब देना ही होगा। बीजेपी ने कहा वोटों की राजनीति कर रहे नेता विपक्ष। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 4 बजे मुलाकात। भारत ने 13 गोल्ड के साथ कुल 39 मेडल जीते, महिला खिलाड़ियों के नाम रहा 8 गोल्ड। और फुकेट दिल्ली फ्लाइट के अचानक नीचे आने के मामले में घिरे पायलट, डोप टेस्ट में 1 पॉजिटिव निकला, मामले की जांच कर रही है डीजीसीए। एयर इंडिया का बयान, रिपोर्ट नहीं मिली।

रांची छात्र आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं व छात्रों का आंदोलन, तीसरे दौर की इसमें वार्ता, रिफॉर्म की मांग लगातार कर रहे हैं छात्र। तीसरे राउंड की बातचीत से पहले छात्रों के गुटों में खींचतान, रिफॉर्म मंच और महतो कैंप के छात्र एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठने को तैयार नहीं, सरकार पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। झारखंड में छात्र आंदोलन तक पहुंचा पायलट गन का मामला, छात्रों के झारखंड विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी ने तस्वीर की जा रही दावा किया, सोरेन सरकार ने पुलिस कर्मियों को पायलट गन के साथ तैयार रखा है। झारखंड में पायलट गन को लेकर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता कुमार राजा ने आरोप को गलत बताया, बोले वीडियो में पायलट गन नहीं है बल्कि बबल गन है। झारखंड में जेपीएससी जेडब्ल्यू से विवाद में एमएलए जयराम महतो ने बड़ी घोषणा की, कहा कि छात्रों के समर्थन में निर्जला उपवास करेंगे। आज रांची में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के बीच में स्टेडियम में आयसा का अलग से गुट बैठा है, विरोध तेज, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सरकार पर छात्रों को बांटने का आरोप लगाया, कहा कि अब उलगुलान होगा। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के एक गुट के बीच में बातचीत बेनतीजा। नौकरी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज, झारखंड सरकार ने समाधान के लिए फिर से बातचीत करने का फैसला किया। पीएससी जेएसएससी प्रदर्शन के मामले में अभिनेता पीयूष मिश्रा ने भी छात्रों से की मुलाकात, छात्रों की आंखों में दर्द तकलीफ साफ दिखाई दी। कहा राहुल गांधी ने युवाओं को दिया दर्द डेटा दौलत का एक संदेश, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार, कहा कि उन्हें तो रांची जाना चाहिए था। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मुलाकात की, कहा कि पीएम मोदी का मार्गदर्शन मुझे सुशासन के पद पर अविराम गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। काकोरी कांड के 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, सीएम आवास से विधान भवन तक युवाओं के साथ पैदल मार्च, डिप्टी सीएम समेत मंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम योगी, मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर राजनाथ सिंह ने अमर क्रांतिकारियों को नमन किया, बोले कि आजाद, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और साथियों का बलिदान युवाओं के अटूट संकल्प का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त से अस्थायी विराम, ट्रैक बहाली का काम जारी है और 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिवसीय यात्रा 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ संपन्न भी होगी। इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का पहला बयान, बोले कि जेनजी को गुमराह करने की कोशिश हुई है। धर्मेंद्र प्रधान बोले कि मैंने खुद पीएम मोदी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी, कहा था कि मंत्री पद मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जेनजी देश का भविष्य है। 2027 की तैयारी में बीजेपी का यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल, नई टीम का ऐलान, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास भी है, क्षेत्र और फ्रंट विंग प्रभारियों की नियुक्ति। काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर अमित शाह ने क्रांतिकारियों को किया नमन, बोले चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में इस घटना ने सशस्त्र क्रांति को नई ऊर्जा दी। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर बोला हमला, सरकार पर साधा निशाना, के आरा में पूर्व आरजेडी जिलाध्यक्ष लतावत हुसैन के परिजनों से मिले, संवेदना भी जताई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है, वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात, शाम 4 बजे होगी मुलाकात। भारत ने 13 गोल्ड समेत कुल 39 मेडल जीतकर 4th स्थान प्राप्त किया है। एयर इंडिया के फुकेट विमान की फ्लाइट के दोनों ही पायलट का डोप टेस्ट एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अचानक ऊंचाई गिरने की घटना का डीजीसीए ने जांच की है और दोनों ही पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटाया भी गया। एयर इंडिया का बयान है कि हमें रिपोर्ट नहीं मिली। आम लोगों के लिए यूपीआई ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे, लेकिन कुछ मर्चेंट्स को बाद में इसमें मामूली फीस देनी पड़ सकती है। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर एजेंसियां अलर्ट पर हैं, मुस्तैद हैं, आतंकी हमले के इनपुट्स मिले, उसके बाद दिल्ली में मॉक ड्रिल की गई। प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कहा कि सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसाया है। नौकरी के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को स्थायी नौकरी मिल रही है। नोटबंदी और जीएसटी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, का नोटबंदी और गलत जीएसटी ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को खत्म किया और मेड इन इंडिया नहीं मिलेगा। प्रयागराज के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने पायलट गन को लेकर एक पोस्ट किया, कहा गृहमंत्री अमित शाह को इस पर जवाब देना होगा, बीजेपी ने कहा वोटों की राजनीति करना है नेता विपक्ष। राहुल के यूथ आउटरीच पर टिप्पणी के बाद थरूर की सफाई, बोले कि यह पार्टी या नेतृत्व पर हमला नहीं है।
महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार को अकाली दल का मिला समर्थन। सुखबीर बादल ने परिसीमन बिल को भी समर्थन देने का ऐलान किया। राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए गए बैन पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, महिलाओं पर राहुल की सोच में बदलाव, उम्मीद है कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करे। राहुल गांधी का किरण रिजिजू पर पलटवार, महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है, 3 साल बाद भी कानून लागू क्यों नहीं हुआ, इसे परिसीमन से क्यों जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को याद किया, श्रद्धांजलि दी, बोले महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में नई ऊर्जा और अंग्रेजी शासन से मुक्ति का संकल्प जगाया। कल पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद गुट पवार के सांसद और सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन बिल सदन में आने पर हम चर्चा करेंगे, एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजना चाहिए। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले कि अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी, डिप्टी सीएम ने लगाया आरोप, चुनाव में वोटों की फसल काटने प्रयागराज आए थे राहुल। अखिलेश यादव का रिग्रेसिव सीक्रेट सोसाइटी पर हमला, कहा कि छिपी साजिशों को देश के सामने लाना जरूरी है, बोले कि नई प्रगतिशील पीढ़ी अपने वैज्ञानिक धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक सोच से भविष्य तय करेगी। वंदे मातरम के पूर्ण गायन के निर्देश पर पिनराय विजयन का विरोध, तत्काल वापस लेने की मांग, कहा कि देश से स्वीकार देश ने नहीं किया, सरकार को फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। एम के स्टालिन ने केंद्र से एफसीआरए संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की, कहा कि विधेयक की समीक्षा के लिए इसे जेपीसी में भेजा जाए। पीएम के साथ सरकार ने मोदी ने परिसीमन पर पार्टी का रुख किया साफ, डीएम के परिसीमन के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग से। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में जमात इस्लामी से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, यूपीए के तहत 26 ठिकानों पर छापे मार रही। पंजाब के मलेरकोटला में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा, स्टेज पर चढ़ने को लेकर कार्यकर्ता भिड़ गए। आरक्षण पर मायावती ने संघ को घेरा, कहा कि एससी एसटी आरक्षण पर राजनीति ना करें, स्वेच्छा से आरक्षण छोड़ने की दलील पर भी हमला बोला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले कि जनता परिवारवाद को समझती है, परिवारवाद के खिलाफ थे लोहिया। सिद्धि विनायक मंदिर में चंदे की गड़बड़ी के मामले में सीएम फडणवीस ने जांच के दिए आदेश, पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड की होगी जांच, राज ठाकरे ने गड़बड़ी का आरोप लगाया था। देहरादून में घर घर तिरंगा रैली का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रैली में शिरकत की। रांची में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पुडुचेरी पुलिस ने गृहमंत्री को सौंपा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान और गोरीमेडू पुलिस ग्राउंड में सम्मान समारोह। धनबाद में दिखा चमत्कार, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबी युवती को घंटों की मशक्कत के बाद जिंदा निकाल लिया गया बाहर। कामिका एकादशी पर शिवालयों में उमड़ रहे हैं कांवड़िये, बाबा का किया जलाभिषेक। मुंगेर में घुटनों के बल बाबा धाम की यात्रा पर निकला शिव भक्त, 108 किलो की मूर्ति कंधे पर लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है शिव भक्त। फरीदाबाद में दिखा जॉर्डन से नौकरी छोड़कर आया अनोखा शिव भक्त, प्रेमानंद महाराज के लिए कर रहा है दंडवत कांवड़ यात्रा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा नन्हे शिव भक्तों का हौसला, स्केटिंग करते हुए कांवड़ लेकर हरिद्वार से गाजियाबाद जा रहे नन्हे कांवड़िए। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों ने निकाली अनोखी कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से बुलडोजर लेकर आए पवित्र गंगाजल। लगातार भारी बारिश के चलते दिल्ली में अब यमुना का जलस्तर बढ़ा है, ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर 205 मीटर तक पहुंचा, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, खतरे के निशान के अब ऊपर है यमुना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश, जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। गुरुग्राम में पिछले 2 दिनों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, जलभराव के चलते शहर की रफ्तार थमी। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा भी चलेगी। वीकेंड पर खुशनुमा रहेगा दिल्ली का मौसम, उमस भरी गर्मी से बारिश ने दिलाई राहत। मुजफ्फरनगर में 17 बार वार करके हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद घायल, बुढ़ाना में तालिब की हत्या के बाद फरार हाशिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल गंडासा बरामद, सीसीटीवी में हत्या की वारदात कैद हुई थी, पुलिस ने कई चीजें भी बरामद की। मुंबई के जुहू में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार। भरूच में चलती ट्रेन में मोबाइल स्नैचिंग का आतंक, एक युवक की इसमें मौत हो गई, दूसरा बाल बाल बच गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा होगा, स्विफ्ट डिजायर कार खड़े डंपर से जा टकराई, इसमें 2 लोगों की मौत, 3 घायल।
हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क पर बाल पकड़कर घसीटकर पति ने पत्नी को पीटा, थाने जाकर खुद ही एफआईआर कराई। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन के लालच में साले ने 3 साथियों के साथ मिलकर जीजा की हत्या कर दी, 4 गिरफ्तार। अलवर में कुएं में नवजात बच्चे को फेंकने के मामले में 3 महीने के बाद गिरफ्तारी, आरोपी मां और बेटे को हरियाणा में किया गया अरेस्ट। अलवर में 8 फुट लंबे अजगर ने महिला पर अटैक किया, उसके बाद रेस्क्यू टीम ने 3 घंटों के मशक्कत के बाद इस अजगर को पकड़ा। सूरत में ऑटो चालक के साथ भीड़ ने मारपीट कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूरत में वीडियो बनाने को लेकर युवक और महिला होमगार्ड के बीच में तीखी बहस, वीडियो वायरल। सूरत में जब्त शराब पर चला रोड रोलर, लगभग कई करोड़ की बताई जा रही है ये शराब जो नष्ट की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में 69 ATM कार्ड के साथ शातिर गिरफ्तार, 2000 ATM फ्रॉड मामलों में खंगाले जा रहे हैं इस गिरोह के तार। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 42 किलो से ज्यादा का गांजा बरामद, 2 गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में पेड़ से टकराई पुलिसिया जीप, इसमें चालक की मौत, दरोगा समेत 3 जख्मी हैं। लखनऊ के आशियाना थाना इलाके में कार में मिली लाश, मामले में खुलासा, शराब पीने के विवाद में पीट पीट कर हुई थी हत्या, 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना इलाके में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या, अवैध संबंधों में वारदात को दिया गया अंजाम। गोंडा में विचाराधीन कैदी मित्र से जेल में मिलने के लिए गए नाबालिग लड़की के पास से 10 जिंदा कारतूस मिले हैं, पुलिस ने लड़की को पकड़ लिया। लुधियाना में 5 गोलियां मारकर नौजवान लड़के की हत्या कर दी गई, वारदात के पीछे पुलिस ने पुरानी रंजिश बताई। यूपी के मैनपुर में अवैध मिल पर छापेमारी, आटे में यहां पर टेलकॉम पाउडर मिलाया जा रहा, फैक्ट्री सीज। सूरत में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकराए, हवाएं में उछली कार, बाल बाल बचे ऑटो और बाइक सवार, घटना सीसीटीवी में कैद। ब्रिटिश कोलंबिया के वाइन और ऑर्चर्ड क्षेत्र में जंगलों में भीषण आग अब तेजी से फैलती जा रही है, रात भर में 2 गुने केसेस बढ़े हैं और हजारों लोगों को निकासी के आदेश दिए गए। पश्चिमी कनाडा में बेकाबू होते दिख रहे हैं जंगलों की आग, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रभावित इलाकों में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। चीन में घुड़सवारी के साथ शुरू हुआ मंगोलियाई नदाम फेस्टिवल, रंग बिरंगी मंगोलियाई पोशाकों ने लोगों का खींचा ध्यान। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आसमान में रंगों का कार्निवल, सैकड़ों फीट ऊपर नजर आए खूबसूरत हॉट एयर बलून। होर्मुज को लेकर ईरान के IRGC का बड़ा बयान, कहा कि होर्मुज खोलने का फैसला सिर्फ ईरान तय करेगा, ओमान वार्ता से तय नहीं होगा होर्मुज का भविष्य। अमेरिका में 11 सीनेटर्स ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने का प्रस्ताव रखा, 11 डेमोक्रेट सीनेटर्स ने कांग्रेस में पेश किया प्रस्ताव। अरब देशों में 5,000 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका, अमेरिका के विदेश मंत्री ने सौदे की पुष्टि की है, इसमें बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात को ये पैट्रियट मिसाइल मिलेंगे। कोसोवो में राजनीतिक गतिरोध के बीच में संसद में संग्राम, सांसदों के बीच में तीखी झड़प, हाथापाई भी हुई। मुज्तबा खामिनी की सेहत पर अटकलों के बीच ईरानी मीडिया ने जारी किया नया वीडियो, इजरायली मीडिया के गंभीर बीमारी के दावों को ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर ने वीडियो के जरिए खारिज किया।

0: चलिए अब आपको सीधा झारखंड लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल रहे हैं,
1: उसके बावजूद भी आज हर समाज एक बराबर नहीं हो पाया। आज भी समाज में बड़ा असमानताएं हैं, गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। और ये असमानताएं जितनी बढ़ेंगी, समाज के अंदर, देश के अंदर, राज्य के अंदर और भी तनाव बढ़ेगा। और आज उस लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का एक बड़ा समूह पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, शिद्दत के साथ लगा हुआ है।
0: चले आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की। लाल किले पर कार्यक्रम को लेकर मिले खुफिया इनपुट के बाद से सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी गई है। लाल किले के आसपास सुरक्षा के इंतजाम के बारे में बता रहे हैं आज तक संवाददाता अंशुल सिंह।
2: इस 15 अगस्त को भारत के आजादी के 80 साल पूरे हो जाएंगे और जाहिर सी बात है इस मौके पर सेलिब्रेशंस भी और बड़े और व्यापक तौर पर होने वाले हैं, जिसके वजह से दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफी डिटेल सुरक्षा जो है वो यहाँ लाल किले पर लगा रखी है। बताया ये जा रहा है कि करीब 25,000 लोग इस बार लाल किले पे प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए आएंगे, जिसको लेकर के तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार 25,000 लोग तो आएंगे ही, उसके अलावा 15,000 तो बस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगी यहाँ पे, जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनहोनी या एंटी सोशल एलिमेंट या अराजक तत्व जो है वो इस भीड़ में ना घुस पाए और देश की खुशियों में किसी भी तरह का खलल ना डाल पाए। इसके अलावा जो आप ये कैमरेज देख रहे हैं, ये दर्शक दीर्घा में जो ये कैमरेज लगे हैं, ये सारे कैमराज जो हैं ये FRS यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस हैं। यानी अगर कोई अराजक तत्व यहाँ भीड़ में घुसने की कोशिश करता है तो उसे इन कैमरों से ही आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी भीड़ से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इन कैमरों से बचने में सक्षम रहा तो दिल्ली पुलिस के पास एक अभिज्ञान ऐप है। इस अभिज्ञान ऐप के जरिए फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स के जरिए जो उनके क्रिमिनल हिस्ट्री से कनेक्टेड होगा उससे ये पता लगा लिया जाएगा कि कौन ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं या कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ आकर अराजकता फैला सकते हैं और उनको जल्दी से जल्दी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्रोन हर साल की तरह इस बार भी बैन है, लेकिन दिल्ली में एक कल्चर है पतंग उड़ाने का। 15 अगस्त को दिल्ली वाले सुबह से पतंग उड़ाना शुरू करते हैं, उसको लेकर के भी सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि 15 अगस्त को सुबह जब तक ये प्रोग्राम चल रहा होगा तब तक इस इलाके में जो है पतंग उड़ाना पूरी तरीके से वर्जित है और इसके लिए काइट कैचर्स यानी पतंग पकड़ने का भी एक दस्ता बनाया गया है जो उड़ते हुए पतंगों को पकड़ेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि पूरे इलाके में जो है सिक्योरिटी बनी रहे और कानून व्यवस्था मजबूत रहे। अब 15 अगस्त को ये फंक्शन है, ये देखना होगा कि किस तरीके से जो ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि देश जो इस बार अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है वो शांति से हो जाए और किसी भी तरह का इसमें खलन ना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट इमानुएल के साथ अंशुल सिंह, आज तक। लाल किला एक बार फिर से 15 अगस्त के प्रोग्राम को लेकर के एक बार फिर से पूरी तरीके से तैयार है। इस वक्त मैं सीसीटीवी कंट्रोल रूम में खड़ा हूं और अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो ये करीब 1,000 सीसीटीवी का जो फीड है वो लगातार यहां पर आ रहा है और ये बस नॉर्मल सीसीटीवी फीड नहीं है बल्कि इसमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी जो है वो प्रयोग किया गया है। एनालिटिक्स की अलग टीम बनाई गई है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स की अलग टीम बनाई गई है और अगर आप यहां पे देखें तो ये जो पूरी एनालिटिक्स की टीम है ये देख रही है कि किस तरीके से कैमरेज की फीड आ रही है और उनमें क्या क्या दिख रहा है। इस बार भी टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और चाक चौबंद है पूरी सिक्योरिटी। अगर आप देखें ये तस्वीरें तो यहां इतने सारे कैमरेज का लगातार जो फीड है वो यहां आ रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बैठी रहेगी, एक एक कैमरे पर पूरी मजबूती से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो बस लाल किले के अंदर का ही नहीं बल्कि लाल किले के आसपास पुरानी दिल्ली इलाके का भी जो सीसीटीवी फीड है, जैसे ये छतों से छतों पर अगर कोई आकर किसी तरह की हरकत करता है तो वो भी पूरी तरीके से कैद हो जाएगा। ये लाल किले के सामने का पार्क है, ये लाल किले के सामने जो लाल बत्ती है उसकी फीड है, तो एक के बाद एक अगर आप देखें तो चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा सीसीटीवी के द्वारा बना दिया गया है। और ये घेरा और मजबूत तब होता है जब इसमें टेक्नोलॉजी लगती है और पुलिस रिस्पॉन्स तेज होता है, और इस बार इन दोनों चीजों की पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है तैयारी कर ली है। अब 15 अगस्त बस कुछ ही दिन दूर है और भारत एक बार फिर से सेलिब्रेशंस करेगा, एक बार फिर से अपनी 80वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में जो जोश है वो रहेगा। और लेकिन इसके अलावा भी इनपुट जो है वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन खुशियों में कहीं खलल डालने की कोशिश करें, तो उनसे निपटने के लिए जो इंतजाम है वो इस बार पुख्ता दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमानुएल के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: और अब रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे, लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: एआई से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
3: काश वो एआई आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
4: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से पांचवी क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
2: एआई और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
3: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना एआई यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
4: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
2: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था। लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़े, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला साथियों।
3: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए। नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कह रहे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके एआई वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे एक गलियारे में तीन तीन चार चार क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर है।
2: क्या घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
3: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में प्रदर्शनकारियों के साथ तीसरे दौर की बातचीत। 14वीं जेपीएससी रद्द करने की मांग पर अड़े हैं छात्र। खड़गे बोले, सोरेन को लिखेंगे चिट्ठी। सीएम बोले, जिन्होंने चोरी की उन पर कार्रवाई होगी। झारखंड तक पहुंचा पैलेट गन विवाद। बीजेपी का दावा, छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर सोरेन की पुलिस पैलेट गन के साथ तैयार। कांग्रेस बोली, ये आरोप फर्जी है। प्रयागराज कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने पैलेट गन को लेकर किया पोस्ट। कहा, गृहमंत्री अमित शाह को जवाब देना ही होगा। बीजेपी ने कहा, वोटों की राजनीति कर रहे नेता विपक्ष। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे मुलाकात। भारत ने 13 गोल्ड के साथ कुल 39 मेडल जीते। महिला खिलाड़ियों के नाम रहे 8 गोल्ड। और फुकेट दिल्ली फ्लाइट के अचानक नीचे आने के मामले में घिरे पायलट। डोप टेस्ट में 1 पॉजिटिव निकला। मामले की जांच कर रही है डीजीसीए। एयर इंडिया का बैन, मामले में रिपोर्ट नहीं मिली।

0: बातचीत कर रहे हैं। छात्रों से पहले भी सरकार के दो दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। तीसरे दौर की बातचीत से पहले छात्रों के गुटों में अलगाव की खबरें सामने आई और इसके बाद से सरकार ने सभी गुटों से अलग अलग मुलाकात का फैसला किया है और इस फैसले की भी काफी ज्यादा चर्चाएं चल रहे हैं। इससे पहले दो दौर की बातचीत हो चुकी है और वो बेनतीजा रही है और उसमें कुछ निकला नहीं। अब तीसरे दौर की बातचीत, छात्रों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है, जो पहले दिन थे वो अभी उन्हीं मांगों पर बरकरार है। सरकार कह रही कि हम मांगों को जो है बातचीत कर रहे हैं छात्रों के साथ, दो दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बेनतीजा रहे। अब तीसरे दौर की बातचीत, उससे पहले छात्रों के दो अलग अलग गुट बन गए, उन गुटों से अलग अलग मुलाकात का सरकार का फैसला। छात्र वही हैं और उनकी मांगे बिल्कुल वही हैं, लेकिन ये दो गुट कौन कौन से, एक तो JKLM छात्र गुट है और दूसरा देवेंद्र महतो गुट है जो कि अनशन भी कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी न्याय मंच है और एक आयसा छात्र गुट भी है जिसको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ, आप जो जानते होंगे। उन पर ये आरोप लगा कि वो इसको हाईजैक कर रहे हैं। अब बातचीत के लिए मंत्रियों का एक पैनल बनाया गया और छात्र गुटों से ये अलग अलग बताया जा रहा है कि बातचीत करेगा भी। हर गुट की बात सुनी गई है ये अब तक कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। बातचीत का तीसरा राउंड और अब हर गुट के साथ, क्योंकि अब वहां पर अलग गुट बन गए हैं, तो हर गुट के साथ सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 16वें दिन में अभी तक छात्रों की मांगे मानी नहीं गई। अब हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सत्यजीत भी जुड़े हैं और आशुतोष मिश्रा भी जुड़े हैं। आशुतोष, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि जब मांग एक है तो छात्रों के गुट अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ये आपस में क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, या फिर यहां पर भी कोई पॉलिटिक्स कोई राजनीति हो रही है, क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत कोई गुट खड़े किए जा रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पर चल रहा है।
1: राजनीति हो ना, दरअसल छात्रों ने इसी का ख्याल रखा है और इसीलिए एक मंच बना है। अब जैसे मैं जहां पर खड़ा हूं, ये JSPC जो मंच है, ये वही मंच है जहां पर ज्यादातर छात्र हैं। अभी जिनको आप देख रहे हैं मंच पर बोल रहे, ये सब आदिवासी समाज के नेता हैं। दरअसल आज से झारखंड का सबसे बड़ा जो मेला पर्व शुरू होता है उसकी शुरुआत हुई है, तो इसके लिए जो आदिवासी आए हैं वो भी अपना समर्थन देने आए हैं। उनके बच्चे दूरगामी, चूंकि पिछड़ा हुआ इलाका है ज्यादातर, आप देखेंगे। अब कहां से शुरुआत हुई थी राजीव, ये जो पीछे मंच दिखाई दे रहा है जयराम महतो का, सबसे पहला मंच यहीं पर शुरू हुआ था और इसी मंच से आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन चूंकि जो वो मंच था वो फिर झारखंड क्रांति लोक मोर्चा का था, तो छात्रों ने कहा कि हमें यहाँ पर राजनीतिक मंच नहीं चाहिए, राजनीतिक भाषण नहीं चाहिए, और इसलिए उन्होंने बाकायदा एक चार्टर तय किया, नियम तय किए कि किसके किस तरह के भाषण नहीं होंगे, किस तरह की बातें नहीं होंगी, और इसलिए उस मंच से हट करके वो यहाँ पर अपना टेंट लेकर के तिरपाल आ गए। अब मंच धीरे धीरे, ये एक वजह थी कि छात्र चाहते थे कि राजनीति जो है इस पर ना हो, मुद्दा उनका बड़ा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दो मंच बने, उसके बाद जब आयशा की एंट्री हुई तो आयशा ने एक अपना मंच लगा दिया। आपको रंग भी यहाँ पर कैसे, जब आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो आज भी इस त्योहार में, लेकिन सारे के सारे यहाँ पहुंचे हैं छात्रों को समर्थन देने के लिए। तो अब जब छात्र कह रहे हैं कि हमारा मामला राजनीतिक नहीं है, हम सरकार से सल चाहते हैं कि हमारी मांगे सुन ली जाए, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते, कहीं पर गुड़ाई का सीजन है, छात्रों को जाकर अपनी तैयारियां करनी है, तो राजनीति से वो बचने की कोशिश करते रहे कि इस पर नहीं करना है। और इसी वजह से अब से थोड़ी देर पहले जब हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि ये छात्रों की लोकतांत्रिक मांग है, उनकी मांग सही है, वो सही तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये एक ताकत बन गई उनकी, गैर राजनीतिक मंच और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन, ये ताकत बनी जिसके चलते सरकार झुकी। चार चार मंत्रियों का डेलीगेशन बनाया गया, छात्रों से बातचीत होगी, एक नहीं दो जितने गुट हैं सबसे होगी, एक नहीं दो दौर में होगी, और इसीलिए अब जो जानकारी आ रही है कि संभवतः सरकार झुकी है
0: तो सरकार को तो मांगे मान लेनी चाहिए थी ना आशुतोष, ये बड़ा सवाल। और सत्यजीत, इसी सवाल के साथ आपके पास, ये सरकार मांगे 16 दिन तक अभी तक मानी क्यों नहीं है, मतलब उनकी बातें ऐसे तो कोई कुछ नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी हो, बिल्कुल क्लियर है, परीक्षा रद्द हो, रिफॉर्म्स चाहते हैं, CBI जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार को परेशानी कहां पर आ रही है, मांग सीधी मानी क्यों नहीं जा रही है।
2: देखिए डायलॉग अब होना जो है दो दिन पहले से ही शुरू हुआ है, लगातार जो है इसके पहले आंदोलन चल रहा था और कई सरकार जो है उसके तरफ से डायलॉग करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन अब दोनों गुटों से बातचीत हुई है, एक राउंड दोनों गुटों से बातचीत हो चुका है। एक कोर स्टूडेंट ग्रुप है जिसमें जो है JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच जिसको कहा जा रहा है, और दूसरा जो हेडेड बाई देवेंद्र महतो JLKM नेता जो है उनका जो ग्रुप है वो अभ्यर्थी न्याय मंच है। दोनों के डिमांड जो है वो कॉमन है, दोनों ही चाहते हैं कि 14 JPSC का जो

0: टीम्स है उसको कैंसिल किया जाए। इसके अलावा सीबीआई प्रोब की उनकी मांग थी और कंप्लीट रिफॉर्म्स वो चाह रहे थे जेपीएससी और जेएसएससी में। और ये तमाम मांगों पर लगातार सरकार का जो मिनिस्टर्स का पैनल है वो बात कर रहा है। चार मंत्री उसमें शामिल है, जिसमें जो है कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह, आरजेडी के तरफ से संजय प्रसाद यादव, इसके अलावा चामरा लिंडा और सुदीव सोनू। ये अब स्टेट गेस्ट हाउस जो यहाँ है, यहाँ लगातार उनके साथ डायलॉग चल रहा है और आइस ब्रेक करने की कोशिश तो पहले ही की गई थी। अब जो है उनसे बातचीत हो रही है, उनके डिमांड्स को समझा जा रहा है, इनके डिमांड से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है और कोई ठोस निर्णय निकलने की गुंजाइश जो है आज देखी जा रही है। पैनल ऑफ मिनिस्टर्स के जो करीबी हैं, जो हाईली प्लेस सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि कोई मेजर अनाउंसमेंट शाम तक हो सकता है। कैंसिलेशन वाला जो मांग है वो मांग लिया जा सकता है। इसके अलावा जो बैकलॉग सीट्स थे उस पे भी इम्तिहान होने चाहिए। 2023 में कुछ बैकलॉग सीट्स थे जेपीएससी के, 2025 में कुछ बैकलॉग सीट्स थे, तो उस पर भी इम्तिहान नहीं होंगे, उसको भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा 90 दिन के अंदर सीआईडी जो प्रोब चल रहा है उसको कंप्लीट करने का आश्वासन सरकार के तरफ से दिया जा सकता है और जो जांच चल रहा है उसकी निगरानी रिटायर्ड जज कर सकते हैं। इसके अलावा पहले ही सरकार ने एक चैनल ओपन कर दिया है कि किसी को अगर कोई ग्रीवांस है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है jpsc.jssc.feedback@gmail.com पे। इसके अलावा रिफॉर्म को लेकर
1: सत्यजीत आप नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन सरकार को भी ये बताना चाहिए कि छात्रों के इन मांगों में से, यानी कि क्या वो रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अभी सीबीआई जांच नहीं करवा सकते या परीक्षा रद्द नहीं करवा सकते, छात्रों की कौन सी मांग मानने में सरकार को अड़चने आ रही है, दिक्कत आ रही है, सरकार को भी अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में जो आंदोलन चल रहा है, छात्र पोस्टर्स के जरिए भी सवाल उठा रहे हैं। इन पोस्टर्स में अभय तिवारी की भूमिका पर भी खासा फोकस किया गया है, जिनके परिवार के कई लोगों सिस्टम की खामी का फायदा मिला।
2: एसपीसी जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन सीआईडी जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो सीजीएल में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो जेएसएससी कार्यालय में सीजीएल आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये सीआईडी जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के सीजीएल में चयन के संबंध में सीआईडी ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और जेएसएससी के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, जेएसएसपी में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन सीजीएल में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब सीबीआई की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही, उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले, मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है, सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई, नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की, सीआईडी के द्वारा पेपर लीक के प्रमाण सबूतों की लिपापोती, पेपर लीक करने वाला बाहर और प्रमाण देने वाले को ही जेल हो गया, योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जेएसएससी के अंदर ही भ्रष्ट अधिकारियों का होना, अब ये कहता ना कि माइक्रोस्कोप वाला ये जो चाचा है, और जेएसएससी सीजीएल द्वारा अयोग्य भ्रष्ट अभ्यर्थियों का चयन होना और उसी के साथ सेंटरों पर दलालों का लगातार पकड़ा जाना। ये छात्र हर उस बारीकी को जानते हैं कि जब ये पेपर सेट कर रहे होते हैं सालों तो सेटिंग कौन कर रहा होता है पर्दे के पीछे, ये बड़ा क्रिएटिव तरीका। और अभय तिवारी उसके परिवार पर आप लोग सबसे ज्यादा आक्रामक हैं।
3: सर अभय तिवारी एक ऐसा व्यक्ति थे जो सब एग्जाम बैठे हैं और सबसे बड़ा शटरबाज है, वो अपने परिवार सबको नौकरी दिए और बाहरियों को भी नौकरी दिलवाए हैं।
1: अब इस बीच रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत भी चल रही है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं। अब बीजेपी के इस हमले का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है।
4: राहुल गांधी जी ने सबसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी छात्र ने नहीं उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाकर कोटा में गए, सबसे मिले, उसके बाद में उसमें जान आ गई, सब चल रहा है और उसके साथ साथ छात्र भी अपनी डिमांड को रखे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन उनके लड़ाई को सबसे ज्यादा पुष्टि मिली राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के, और राहुल गांधी जो यंगस्टर्स को बूस्ट दे रहे हैं उस बूस्ट का फायदा उनको भी हुआ।
1: जहां बीजेपी ये बोल रही है, पूछ रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं रांची, इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी अब बयान आ गया है। एक कार्यक्रम में वो बोल रहे थे और इस पर उन्होंने कहा कि पहले तो छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा, और इसके साथ साथ आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि संवाद के जरिए ही हल निकलता है, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। इशारों में यहां से उन्होंने बीजेपी पर भी कटाक्ष किया। आपको सुनाते हैं क्या कहा हेमंत सोरेन।
5: राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है, और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर सरकार उनकी बातों को सुन भी रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल युवा नौजवान छात्र छात्राओं को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं, कितनी बड़ी व्यवस्था चलती है लेकिन हमारी मनसा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ।
1: अब राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में युवाओं के साथ उन्होंने संवाद किया और छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लिया था, जिसके बाद बीजेपी सवाल कर रहे कि आखिर राहुल गांधी को तो झारखंड जाना चाहिए था, लेकिन उनको झारखंड के छात्रों की फिक्र नहीं है।
6: जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो, हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है, 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है, और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी।
7: मैं राहुल गांधी से 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं, क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए ना उनसे बात की? हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है।
8: निश्चित रूप से ये दर्शाता है क्योंकि राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, विदेश में जो क्लब पब उस तरह से जो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, वो यहाँ संघर्षरत कार्य पूर्वांचल से सहित प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो बघाड़ा में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो सलोरी में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो तिलियरगंज में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो मुट्ठीगंज कीटगंज चौक इलाके में रह करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके संघर्ष के बारे में उनको पता नहीं है। तो वो एक तरह से एक टूरिज्म की तरह से यहाँ पर आए हुए थे और पूरा फ्लॉप सो रहा, और मुझे बताते हुए मतलब थोड़ी हंसी भी आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन उनका लाजमी है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा है, और खड़गे ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन से लेकर ट्रस्ट के मेंबर चुनने तक सब कुछ मोदी ने तो किया है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि चोरी क्यों हुई।
4: तो देख रेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो क्यों ऐसा हुआ।
1: एयर इंडिया की बुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट का एक पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 का पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। हादसे के बाद पायलटों का डोप टेस्ट किया गया था और वहीं जांच पूरी होने तक दोनों ही पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। DGCA इस मामले में जांच कर रहे हैं।

0: टर्बुलेंस मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। फुकेट से ये फ्लाइट दिल्ली आ रही थी और टर्बुलेंस में ये फंस गई थी और इसमें 12 लोग जख्मी हुए थे, क्योंकि विमान 300 फीट इसने गोते खाए, इसमें 12 लोग जख्मी हो गए थे, जिनमें से जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस मामले में फिर जांच भी बिठाई गई, डीजीसीए ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की, फिर जो पायलट थे उनका डोप टेस्ट भी किया गया और डोप टेस्ट में एक पायलट अभी डोप टेस्ट में पॉजिटिव मिला है। तो ये जानकारी हैरान करने वाली है। वाक्य हुआ था 4 अगस्त को और AI-2379 वो फ्लाइट थे जो खबर वायरल भी हुई थी। अब इस मामले में ये जानकारी आई है कि डोप टेस्ट पॉजिटिव मिला है, हालांकि एयर इंडिया की तरफ से अभी ये कहा गया कि मामले में रिपोर्ट अभी उन्हें नहीं मिली है। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। मक्का में इन तीनों के बीच हुए समझौते ने न सिर्फ दुनिया भर में हलचल मचा दी है, बल्कि आने वाले दिनों में कई देशों को अपनी कूटनीति और सैन्य नीति भी इस समझौते को देखकर बदलनी पड़ सकती है। समझौता ये है कि तीनों देशों में से किसी एक देश पर हमला हुआ तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और तीनों मिलकर उसका जवाब देंगे। इस समझौते को लेकर दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में तो रक्षा समझौता पहले से ही है, अब तुर्की भी इसमें शामिल हो गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस समझौते में तुर्कियों को भी शामिल करना चाहता था? भारत के हाथों हर युद्ध और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य सहयोग का दायरा बढ़ाने में लगा हुआ है। वो इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब के पास वित्तीय ताकत है तो तुर्की नाटो का सदस्य भी है और उसके पास एक ताकतवर रक्षा उद्योग है। समझौते के तहत तीनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए संयुक्त सैन्य ट्रेनिंग, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करने और सुरक्षा तालमेल बढ़ाने पर काम किया जाएगा।
1: خیلی بهتر شده. حالا این جنگی که الان شکل گرفته، اسرائیل و آمریکا دنبال اینن که کشورهای خلیج فارس رو متحد کنن علیه ما و داریم تلاش میکنیم که اتفاق رخ نده. البته یه چالشی در داخل داریم چون نگاه‌های مختلفی باز داریم و طبیعتاً آمریکا هم داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه، اسرائیل داره سوء استفاده میکنه. من باور و اعتقادم اینه. خب گفتم هم
0: ایران کی سنسد کی راشتریه سرکشا اور ویدیش نیتی سمیتی کے صدسے ابراہیم رجائی نے اس سمجھوتے کی آلوچنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ترکیے اور پاکستان کے ساتھ کیا گیا کوئی کاغذی سمجھوتا اسے سرکشا نہیں دے گا آج تک پیوٹ۔

0: don't be crazy. Bro, time has changed. Now future is Gen Z.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
2: Bharat Ki Apni Electric Sawari Sokudo.
3: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

झारखंड में प्रदर्शनकारियों के साथ तीसरे दौर की बातचीत, 14वीं जेपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट रद्द करने की मांग पर अड़े हैं छात्र। खड़गे बोले, सोरेन को लिखी है चिट्ठी। सीएम बोले, जिन्होंने चोरी की उन पर होगी कार्रवाई। झारखंड तक पहुंचा पैलेट गन का विवाद, बीजेपी का दावा, छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर सोरेन की पुलिस पैलेट गन के साथ है तैयार। कांग्रेस बोली, फर्जी आरोप।

0: bak. कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 4 बजे मुलाकात। भारत ने 13 गोल्ड के साथ कुल 39 मेडल जीते हैं। महिला खिलाड़ियों के नाम रहा है 8 गोल्ड मेडल। और फुकेट दिल्ली फ्लाइट के अचानक नीचे आने के मामले में गिरे पायलट, डॉप टेस्ट में एक पॉजिटिव निकला, मामले की जांच कर रही है DGCA। एयर इंडिया का बयान, नहीं मिली रिपोर्ट।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करीब 165 दिन के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। तस्वीरें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की है। 12 सेकंड के इस वीडियो के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची है। कहा जा रहा है कि आखिरकार मुस्तफा खामनेई की तस्वीरें अब क्यों जारी की गई है, जब वो अपने पिता के स्पुर्दे खाक में भी शामिल नहीं हुए, उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, तो आखिरकार अब ये तस्वीरें सामने क्यों आई है? इसके पीछे कई आकलन लगाए जा रहे हैं। आज इन तस्वीरों को लेकर भी तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले आपको इसी बड़ी खबर पर इस 12 सेकंड के वीडियो का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इसके पीछे क्या ईरान की कोई स्ट्रेटजी है या फिर कोई मजबूरी है, और मुस्तफा खामनेई का 12 सेकंड का ये वीडियो आखिरकार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। रणभूमि स्पेशल की दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि हॉर्मूज को खोलने को लेकर ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी समेत शर्तों की एक लिस्ट थमा दी है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर में आपको बताएंगे कैसे यमन की सेना अब सऊदी अरब को लगातार निशाना बना रही है, और रणभूमि स्पेशल की चौथी खबर आपको लेकर चलेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में, जहां पर एक बार फिर से दोनों में वार पलटवार का दौर जारी है। रणभूमि स्पेशल की आखिरी खबर आपको दिखाएंगे कि कैसे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में इस वक्त भीषण आग लगी है, जहां से हजारों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है, और इसीलिए हमारे साथ रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े होंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवा सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे वो बड़ी खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। कहते हैं तस्वीरें कई कहानियां बयां करती हैं। ऐसी एक कहानी शुरू हुई ईरान से जारी एक वीडियो में, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के दौरान एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया। ये वीडियो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का है। दरअसल वहां एक न्यूज चैनल जो लगातार सरकार की बहुत करीबी है, उन्होंने मुस्तफा खामनेई का एक 12 सेकंड का वीडियो जारी किया है। 28 फरवरी के बाद यह पहला मौका है जब मुस्तफा खामनेई की कोई तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक रूप से बाहर आया हो, लेकिन वीडियो देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच हॉर्मूज को लेकर टकराव के हालात भी बने हुए हैं। आपको सबसे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
3: युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सामने आया मुज्तबा का वीडियो। ईरानी मीडिया ने दिखाया सुप्रीम लीडर का वीडियो। किस मकसद से जारी किया गया ये वीडियो? क्या ये वीडियो 28 फरवरी से पहले का है? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ 13 सेकंड के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के खुफिया और साइबर एजेंसियां तो अब तक इसके एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम कर चुकी होंगी। ये वीडियो मुज्तबा खामनेई का है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का, जिनके बारे में अभी तक कहा जा रहा था कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और किसी खुफिया जगह पर उनका इलाज चल रहा है। इलाज इतने खुफिया तरीके से चल रहा है कि वहां तक ईरान के राष्ट्रपति और कुछ गिने चुने कमांडर ही जा सकते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में ट्रंप ने भी माना था कि मुज्तबा जिंदा हैं। IRGC ने पिछले 5 महीनों में कई बार उनके ऑडियो और लिखित मैसेज जारी किए हैं, लेकिन मुज्तबा खामेनेई की 28 फरवरी के बाद से आज तक एक भी तस्वीर और फोटो जारी नहीं की गई थी। जुलाई के पहले हफ्ते में उनके पिता की अंतिम यात्रा जब ईरान के अलग अलग शहरों से निकल रही थी, तब भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। कहा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आ सकते। खैर, अब जब वीडियो सामने आया है तो कई सवाल भी साथ लाया है। इसे ईरानी सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। बल्कि मेहर न्यूज एजेंसी ने दिखाया है। क्या ये वीडियो ताजा है या फिर 28 फरवरी को हुए हमले से पहले का है? इस वीडियो को इस वक्त जारी करने का असली मकसद क्या है? अगर ये ताजा वीडियो है तो गंभीर रूप से घायल मुज्तबा इतने स्वस्थ कैसे दिख रहे हैं? इस वीडियो में मुज्तबा एक कमरे में करीब 10 लोगों से घिरे हुए हैं और किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा है। इस बीच होर्मुज ने ईरान और अमेरिका दोनों के जिद पर अड़ने की वजह से टकराव के हालात टले नहीं हैं। यूएई ने आरोप लगाया है कि उसके एक तेल टैंक पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। बहरीन ने भी इस हमले का विरोध किया है। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी की मौजूदगी में उसके तय रूट को न मानने वाले हर जहाज के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी और हर हाल में होर्मुज में आवाजाही उसके ही निर्देशों के हिसाब से होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत करने वाले पक्ष फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही के लिए अस्थायी समुद्री मार्ग तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होर्मुज फौरन खोल दिया जाएगा। बातचीत तो जारी है, लेकिन होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने जो 9 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, उन पर सहमति बनने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यानी अगले कुछ दिनों में होर्मुज में हाहाकार खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो।
0: तो आपने अभी हमारी एक खास रिपोर्ट देखी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो सऊदी अरब से। सऊदी अरब से जहां पर जाजान इलाके में अरामको पावर प्लांट पर आज फिर सुबह जबरदस्त हमले किए गए। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने अरामको में हुए इस पावर प्लांट पे हमलों की पुष्टि की है। सूत्रों की माने तो इस इलाके में कई धमाके सुनाई दिए गए। इसके अलावा नासा के सेटेलाइट ने भी पूर्वी सऊदी अरब के जुबेल में अरामको गैस फायर प्लांट के ऊपर धमाकों की जानकारी दी है। अरामको लगातार ही टारगेट का निशाना रहा है। इससे पहले भी 40 दिन के युद्ध के दौरान अरामको को टारगेट किया गया था और एक बार फिर से अरामको को दोबारा से सऊदी अरब के अंदर टारगेट किया गया है। और इसी से जुड़ा एक नया अपडेट भी सामने आ रहा है, जहां पर अरामको पर हुए हमले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यमन की सेना ने सऊदी अरब में जाजान अरामको रिफाइनरी को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ली है। यमन का कहना है कि यह कार्रवाई सऊदी ड्रोन के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के जवाब में की गई है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यमन और ईरान लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे। वहां पर मौजूद अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन कंपनीज को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सीधे नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो अमेरिका से रिलेट करती हैं। लेकिन इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी यथास्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। हॉर्मुज से जहां पर यूएई की एक समाचार एजेंसी ने जानकारी दी है कि आज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय एडनॉक कंपनी के जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां पर आज फिर से एक जहाज को निशाना बनाया गया और माना जा रहा है कि हमला ईरान की IRGC ने ही किया है। मतलब साफ है कि अभी भी हॉर्मुज में जहाजों का निकलना बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है और लगातार IRGC इन इलाकों को टारगेट कर रही है, उन शिप्स को जो बिना उसकी अनुमति के यहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर यह कि ईरान ने हॉर्मुज को खोलने को लेकर अमेरिका के सामने 5 शर्तें दोबारा से दोहरा दी है। आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो 5 शर्तें कौन सी है जो एक बार फिर से ईरान ने अमेरिका के सामने बड़ी कड़ी चेतावनी के साथ रखी है। सबसे पहली शर्त जो पहले भी ईरान कहता रहा है कि धमकी और क्षेत्रीय संघर्ष बंद हो, यानी सीज़फ़ायर लागू किया जाए, किसी भी तरीके के वॉर को या फिर एक्शंस को तुरंत अमेरिका रोके। ये पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। दूसरी शर्त क्या है 5 शर्तों में जो लगातार अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा से बातचीत का अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ईरान की घेराबंदी को खत्म किया जाए, यानी जो डेडलॉक या फिर जो लगातार बैरिगेडिंग की गई है अमेरिका की तरफ से शिप्स के हिसाब से, उनको अमेरिका हटाए। ये भी ईरान की तरफ से कहा गया कि आपको उन सारी बैरिगेडिंग्स को, उन शिप्स को वहां से मूव करना होगा। तीसरा बड़ी बात क्या है, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई। देखिए ये एक वो बात है जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों में कह चुके हैं कि वो ईरान को कभी पैसा नहीं देंगे, लेकिन ईरान कहता है जो 40 दिन और उससे पहले भी जो नुकसान उसे हुआ है उसकी आर्थिक तौर पर उसकी भरपाई अमेरिका को ही करनी पड़ेगी। ये तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जो एक बार फिर से बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका के सामने रखी है। चौथी बड़ी शर्त क्या, ईरान से सभी प्रतिबंध हटाए जाए। इन प्रतिबंधों में सबसे बड़े प्रतिबंध इकोनॉमिक सैंक्शंस है जो ईरान चाहता है कि इनको तुरंत हटाया जाए और जो एसेट्स है उसकी उनको डीफ्रीज किया जाए, चाहे वो अमेरिका में है चाहे वो मिडिल ईस्ट में, और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी रखना किया जाए। यानी पांचवी वही शर्त कि आप प्रतिबंध भी हटाएंगे और जो डी फ्रीजिंग के बाद जो हमारी संपत्तियां हैं, जो ईरान के पैसे हैं, वो ईरान को वापस किए जाएंगे ताकि ईरान अपने इकोनॉमिक चीजों को आगे रिवाइव कर सके, अपने अपने जो आप कह सकते हैं जो प्रतिबंध लगाए गए उससे जो नुकसान ईरान को झेलना पड़ रहा है उसकी भरपाई कर सके। लेकिन इससे बड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे ईरान के अरबिल में, इराक के अरबिल में के पास एक अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा था कि इरबिल में लगातार अमेरिका की जो फोर्सेज हैं वहां से निकल रही हैं। ये खबरें लगातार कई जगहों से इराक की मीडिया हाउसेस से सामने आ रही थी। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां पर अमेरिकी सेना ने इरबिल के पास हरीर बेस में मौजूदा लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर को खाली कर दिया है। दरअसल इरबिल में लगातार ईरान की तरफ से भी और ईरान के समर्थित जो इराक में मिलिशिया है वो भी इरबिल पर ही अटैक कर रहे थे। इसी के बाद ये अपडेट मिल रहा है कि इरबिल के आसपास जो लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, जो उनके छोटे छोटे कमांड सेंटर्स हैं, वहां से अमेरिका की फोर्सेज मूव कर रही हैं, उन बेसिस को खाली कर रही हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर जहां पर अमेरिका से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया जिसमें अमेरिका ने अब एशिया और यूरोप में जमा अपने गोले बारूद या फिर अपनी जो रसद है या फिर जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल है उनको वापस इस्तेमाल कर सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर दी है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जिसमें ईरान के साथ टकराव की वजह से अमेरिका ने गोला बारूद के भंडार में भारी कमी आई थी, इसलिए अब एशिया और यूरोप में देशों में जमा किए गए गोले बारूद को इस्तेमाल किया जाएगा। ये खबर अमेरिका के लिए परेशानी का एक और सबूत है, एक और चीजें बताती है कि कैसे अमेरिका सीधे तौर पर इस समय हथियारों की कमी से जूझ रहा है, इसलिए एशिया और यूरोप में मौजूद अपने जो रसद के या हथियारों के भंडार है उनका इस्तेमाल अब वो ईरान के खिलाफ कर सकता है। और हमारे साथ इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे जनरल मेजर जनरल ए के सिवाज हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सिवाज, अभी अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ईरान तो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा, वो लगातार कह चुका है कि ये पांच शर्तें प्रमुखता से मानी जाएंगी तभी बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन जो क्राइसिस अमेरिका झेल रहा है चाहे वो हथियारों की कमी हो जो लगातार हम देख रहे हैं, उसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों का जो नया समीकरण बन रहा है चाहे वो सऊदी के साथ हो, तुर्की आ रहा है उसमें पाकिस्तान आ रहा है, वो एक बड़ा कंसर्न है। और तीसरा बड़ा कंसर्न यह है कि अमेरिका में खुद में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हुई। क्या आपको लगता है इन मौजूदा स्थितियों में अमेरिका के बूते ये ताकत है कि ऑपरेशंस को आगे बढ़ा सके?
4: और बिल्कुल देखो सुमित, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका चाहता कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो, क्योंकि अमेरिका की जो हालात अच्छी नहीं है, और बहुत अच्छा असेसमेंट आपने दिया, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसकी वेपन और अम्यूशन में भारी कमी आई, जो पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम और थार के इंटरसेप्शन है वो करीब के 70% खत्म हो चुके, और इसी प्रकार से तोमाहक मिसाइल भी 50-60% हो चुकी, और इसी के कारण अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो हमारे हथियार अम्यूशन पूरे एशिया और यूरोप के में लगाए हुए हैं उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे, और उसकी वजह यही है। मगर क्या अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट करना चाहता, मुझे लगता नहीं है, और उसको दूसरे दो तीन रीजन एक और भी हैं कि एक तो हथियारों की कमी है, दूसरी बात है उसको अब ऐसा लगने लगा है कि ईरान की काबिलियत और क्षमता बहुत है, ईरान ने अपने जो मिसाइल रॉकेट फायर हुए थे उनको भी भरपाई कर ली है इस 30-40 दिन में, ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अमेरिका कोई बातचीत से नतीजा निकालना चाहता है। और ईरान जो है वो अगर आप देखें ज्यादा सक्रिय हो रहा है, अब अग्रेसर हो रहा है, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लड़ाई का अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज है।
0: बिल्कुल,
4: स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं छोड़ेगा। ईरान सच्चाई है कि ईरान ये चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुलेगा भी तो वो ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा।
0: बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी देर के लिए सर रोक रहा हूं क्योंकि इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपका रुख दोबारा से करूंगा क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नए आंकड़े सामने आए और ये कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले की यथास्थिति में कभी भी वापस नहीं आएगा। लगातार ये खबरें मिल रही और कहा जा रहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि रोजाना सिर्फ 8 जहाजी वहां से गुजर पा रहे हैं जो पिछले सप्ताह की तुलना में काफी कम है, इससे तेल की कीमतों में लंबे समय तक ऊंचाई बनी रह सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब दोबारा से उन परिस्थितियों में उन चीजों में वापस नहीं आएगा जो पहले था, यानी एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के सामने ये आ रहा है। एक ही सिवा सर, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जिस चीज का जिक्र आप कर रहे थे और हमने देखा कि ओमान के साथ भी लगातार ईरान के जो संबंध है या उनकी जो संधि है बहुत ज्यादा पॉजिटिव नोट पे चल रही है, तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दो भागों में बांट दिया जाएगा, ओमान अपनी तरफ से पैसा वसूलेगा, ईरान अपनी तरफ से पैसा वसूलेगा और पूरी दुनिया पर इसका बोझ पड़ेगा?
4: हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके ऊपर टोल लगेगा और उसका टोटल कंट्रोल जो है ईरान करेगा और ओमान भी इसके बीच का जो है आपस में बांटेंगे। ऐसे अब बातचीत ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दो रूट के बारे में बात हुई है, एक इन रूट एक आउट रूट। जो इन रूट है वो नदन साइड से जाएगा जो कि ईरान के कोस्ट लाइन से है, और जो आउट रूट है वो साउथ से जाएगा कि जो ओमान के कोस्ट लाइन के नजदीक है, मगर इसका ओवरऑल जो कंट्रोल है वो ईरान के पास होगा और ईरान जब चाहेगा इसको बंद कर सकता है। ये सच्चाई है, इस लड़ाई की एक ही तो देन है, 28 फरवरी से पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल खुला हुआ था, इंटरनेशनल वाटर है, आज ये कंट्रोल में हो गया है। और आपने बहुत अच्छा बोला कि 5 से 6 शिप जा पा रही हैं, 50 से 60, 150 से 160 शिप जाती थी 28 फरवरी से पहले। तो पूरे फूड फ्यूल फर्टिलाइजर स्पेशली जो ऑयल के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ सकते हैं एलएनजी के, और इसके साथ साथ बाबल मंदेब भी बंद हो गया है। जो बाबल मंदेब जो है होती रिबल ने बंद कर दिया है, सऊदी जो कि ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से अपना ऑयल लेके रेड सी में यानबू पोर्ट से इम्पोर्ट करता था, एक्सपोर्ट करता था, वो भी बंद हो गया है। तो यह सच्चाई है, डबल मार पड़ी है, यहां से 20% ऑयल और वहां से 10 से 15% ऑयल जाने के कारण आप देखेंगे कि ऑयल के प्राइसेस भी शूट करेंगे और सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है। ये कहना है कि क्या ये सी समझ जाएगी, ऐसा लगता नहीं। और इसीलिए ये जो छोटे छोटे देश हैं, अब जो खाड़ी के देश हैं उनको विश्वास हट गया अमेरिका पे, आप वो नहीं चाहते कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहे, अब वो एक रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक बना रहे हैं। जिस प्रकार से ये ट्रीटी साइन हुई है पाकिस्तान और एक टर्की और
0: जी
4: सऊदी के बीच में, ये इसी का समीकरण है कि आने वाले समय में कि सऊदी का जो आप देखेंगे रिसोर्सेज और टर्की का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार, ये एक कॉकटेल बनेगा।
0: और
4: और
0: सर
4: ऐसे मुझे लगता है कि यमन, कुवैत और बाकी देश भी, कतार भी आने वाले हैं
0: बिल्कुल,
4: इसके
0: और
4: अंदर।
0: सर जनरल
4: और
0: सिवाज एक ऐसा लगता है कि देखिए तुर्की का भी फायदा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज हो, उसके ड्रोन्स हो, उनको एक और जगह मिलेगी अपने अपने अपने बेचने के लिए, वहीं पाकिस्तान को रिवाइव करने के लिए पैसा मिलेगा, मदद मिलेगी, और सऊदी को एक इस पूरे रीजन के अंदर आसपास के नेबरहुड से एक ऐसा सपोर्ट मिलेगा जो अमेरिका उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, और शायद इसीलिए यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, उसकी साख पे एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका दोबारा से रुख करूंगा, लेकिन अब लौटते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध पे, जहां पर दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से बमों की बौछार तेज हो गई है। खार्किव और ओडेसा जैसे इलाकों में रूस ने मिसाइलों से बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर रिहायशी इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का आरोप भी लगाया, जबकि यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस में सारी रात एयर स्ट्राइक्स किए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
5: ओडेसा और खार्किव में भारी तबाही, रूस ने बम बरसाकर शॉपिंग सेंटर उड़ाया, यूक्रेन ने बेलकोरोद में की एयर स्ट्राइक। जलती हुई इमारत की तस्वीरें खार्किव की हैं। एक रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत की कई मंजिलों में आग लग गई। हमले के बाद हुए धमाकों से घरों के शीशे चकनाचूर हो गए, दीवारें टूट गई और कई लोग अंदर फंस गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पावलोहराद शहर में तो रूसी मिसाइलों ने एक शॉपिंग सेंटर को ही निशाना बना दिया। रूस के इस हमले में पूरा मॉल ही तबाह हो गया है। बमों की बौछार से बर्बादी का अंदाजा इन तस्वीरों से आसानी से लगाया जा सकता है। लोग चीख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले में कई दुकानें जलकर राख हो गई। ओडिशा के इस्कंदर एम और KH-31P जैसी विनाशकारी मिसाइलों से हमला किया गया, जिसकी चपेट में आने से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हफ्ते भर के रूसी हमलों की पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ साझा की है। उनका आरोप है कि ओडिशा, सुमी, खार्किव और कीव में रूसी मिसाइलें बर्बादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कई बेकसूर लोगों की जान जा रही है, लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, वाहन नष्ट हो रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। जेलेंस्की के मुताबिक इस हफ्ते में ही रूस ने 56 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कुल 61 मिसाइलें दागी हैं। इनके अलावा 1560 ड्रोन के जरिए भी हमले किए गए हैं। यूक्रेन भी पूरी ताकत से पलटवार करने में लगा हुआ है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक ने तबाही मचा दी। ताबड़तोड़ बम बरसने से शहर के कई इलाकों में आग की लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। यूक्रेन के हमले पूरी रात जारी रहे और धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। लेकिन यूक्रेन के अटैक की एक सीमा है, मिसाइल उसके पास बेहद कम है और मिसाइल रोकने की क्षमता तो खत्म ही हो गई है। ड्रोन की काबिलियत के सहारे वो रूस को लगातार नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। उधर रूस लगातार आक्रामक होता जा रहा है। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसने मिसाइलों का जखीरा खोल दिया है। आम मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अब पहले से ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी हैं, वो भी रिहायशी इलाकों पर। आज तक ब्यूरो।
0: और देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर एक खास रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब एक चौंकाने वाली एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां पर तुर्की के एक बंदरगाह पर मौजूद रूसी कार्गो जहाज पर यानी नादेजदा पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया। यह खबर हैरान करने वाली है, क्योंकि यह हमला रूस के किसी शहर, किसी बॉर्डर पर नहीं, बल्कि एक तीसरे देश यानी तुर्की के एक पोर्ट पर किया गया है। और ये तस्वीरें भी उस कार्गो शिप की दिखाई गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह अटैक यूक्रेन ने किया है और रूस के कार्गो शिप को अटैक किया है। हमारे साथ जनरल सिवाज, ये युद्ध का दायरा तो एक ऐसे दौर में जा रहा है जहां पर रूस और यूक्रेन के ऊपर जो वार पलटवार का दौर है, वो तीसरे युद्ध में या तीसरे देशों के अंदर मौजूद उनके कार्गो शिप से दूसरी जगहों तक पहुंचता जा रहा है।
4: हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा बताया सुमित। क्या हो क्या रहा है कि पहले तो जो ये लड़ाई का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये लड़ाई भयानक होती जा रही है, दोनों तरफ से वार हो रहे हैं। आपने बहुत ठीक बोला कि ये रूस ने यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। उसने अभी कीव, खारकीव और उड़ीसा, ये उड़ीसा जो है एक सबसे बड़ा पोर्ट है, उसको भी बर्बाद करने से ये ब्लैक सी से कट जाएगा यूक्रेन, और वो जो अपना एक्सपोर्ट कर पा रहा था स्पेशली ग्रेन को, वो भी बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है यूक्रेन के लिए। मगर ये भी सच्चाई है, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। ड्रोन से जो सटीक हमले उसने रूस में किए हैं, उससे उसने 28 में से 22 जो रिफाइनरीज हैं रूस की, वो बर्बाद कर दिए। तो रूस को भी इसका फर्क पड़ रहा है। मगर जो आपने इशारा किया कि जो एक रशियन शिप थी जो टर्की के अंदर थी, उसके ऊपर हमला हुआ है कि जो यूक्रेन ने किया है, तो ऐसा लगता है कि ये दायरा बढ़ेगा। मगर एक और भी न्यूज है, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों की, कहीं ना कहीं ये सुनने आया है कि नेटो कंट्री अब हथियार और देंगे यूक्रेन को, उसके अंदर टर्की के भी ड्रोन आ सकते हैं। तो ये भी एक नया समीकरण है, क्योंकि टर्की और रूस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं। क्या अभी टर्की हथियार देगा यूक्रेन को ओपनली, ये एक प्रकार से ओपन क्वेश्चन है। मगर यह सच्चाई है कि यह लड़ाई अब और भयानक होगी और ज्यादा नुकसान यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके पास पेट्रोइट और थार सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उसके पास मिसाइल रॉकेट की भी भारी कमी है, उसके पास ड्रोन के अलावा बाकी हथियार नहीं है। वो अमेरिका से दोहे लगा रहा है, पर अमेरिका के पास अपने पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है ईरान से। तो ऐसे में जो
0: सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा जनरल सिवाज, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बैनर्जी के काफिले पर हमला किया गया है। ये मैं आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में, जहां पर पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बैनर्जी के काफिले पर हमला किया गया है। उत्तर परगना के अंदर ममता की गाड़ी पर कीचड़, बोतल और जूते फेंके गए। उत्तर 24 परगना में ममता बैनर्जी के काफिले की पर हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने ममता के खिलाफ नारेबाजी भी की है। देखिए तीसरी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उत्तर 24 परगना की तस्वीरें हैं, जहां पर ममता बैनर्जी के काफिले पर हमला किया गया। चलिए, रणभूमि स्पेशल में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमारी एक और खास पेशकश, नई पेशकश जिसमें पावर प्ले, जहां पर प्रणय उपाध्याय आपको बताएंगे दुनिया की सबसे दमदार खबरों के पीछे की खबर, जहां कौन बना है पावर प्लेयर और घटनाओं का भारत पर क्या हुआ है असर, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।

0: सबसे तेज नारे, सबसे तेज आवाज, ऐसा प्रदर्शन जहां अपना अधिकार पाने को आवाज उठाने के लिए ये नहीं देखा गया कि आवाज है या नहीं, ये देखा गया आवाज उठाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर, चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी। वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों, जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत से पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है, जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है, हालत ये कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची है। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
1: निलंबित हैं आप?
2: जी निलंबित हूँ।
1: यहाँ क्या करते हैं
2: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे
3: दुनिया की विसात पर ताकत का खेल, कौन हुआ पास तो कौन कहां कैसे हो गया फेल, धरती के नक्शे पर क्या कुछ बदला। आज तक पर लेकर हाजिर हम आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें आप और हम मिलकर पढ़ेंगे दुनिया में हुए हर छोटे बड़े बदलाव की कहानी, जानेंगे कि आखिर इस खेल के बड़े पावर प्लेयर्स कौन है वो पावरफुल किरदार। साथ ही आप और हम मिलकर जानेंगे कि विश्व में हो रहे इन तमाम बदलावों का आप पर, हम पर, हमारी जेब पर, जिंदगी पर कितना होगा असर। तो चलिए करते हैं शुरुआत पावर प्ले की। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। तो पावर प्ले में सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर स्टोरी के साथ में। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई अब 5 महीने से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, मगर इस लड़ाई में जितनी मिसाइलें, जितने ड्रोन दागे गए, जितना इस्तेमाल किया गया, उतना ही कंफ्यूजन बम का भी इस्तेमाल किया गया है। हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी और अगर खत्म होगी तो कैसे खत्म होगी, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, कभी कहते हैं कि हम डील के लिए तैयार हैं और डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। क्या बयानों का ये पूरा उलझाव कोई सोची समझी रणनीति है या फिर किसी रणनीति के अभाव की निशानी? आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, ये घमासान बढ़ता रहा, तो ये लड़ाई आखिर कहां जाकर थमेगी? तो चलिए पावर प्ले में करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रेन की मैपिंग।
4: The denuclearization of Iran has to happen.
5: I'm losing faith in them because they do lie. We have great people talking. Marco's involved.
6: They're all involved. Talks aren't happening.
5: Very good people. We're the best people. But they'll make a deal.
7: You're 100% and they don't happen. I've gone into deals that there is no chance of getting them done, and it happens, and they happen easily.
8: पूरी दुनिया इस सवाल को लेकर उलझी हुई है कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर दफ्तर में रूज़वेल्ट डेस्क के पीछे बैठा शख्स यानी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कैसा खेल खेल रहा है जिसके झटके पूरी दुनिया झेल रही है। लेकिन इस सवाल को लेकर अमेरिका इन्हीं पूरी दुनिया में दो खेमे भी दिखाई देते हैं और दो नजरिए भी। पिछले 5 महीनों में ईरान को लेकर ट्रंप का रवैया एक लूप में चक्कर लगा रहा है, जिसमें अचानक सैनिक हमला शुरू होता है, फिर एकाएक ही बातचीत का प्रस्ताव भी आ जाता है, फिर धमकी दी जाने लगती है। जानकारों का एक तबका मैडमैन थ्योरी का हवाला देता है, कहता है कि एक सोचा समझा हथियार है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, मगर ट्रंप के आलोचक मानते हैं कि ट्रंप के पास कोई थ्योरी है ही नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच तकरार, इनकार और इकरार का यही पैटर्न बीते 5 महीनों में बार बार नजर आया है, यानी वार पलटवार के साथ साथ पर्दे के पीछे सुलह समाधान और सौदे। ऐसे में ट्रंप के निर्णयों में आम चश्मे से पढ़ी जा रही अनिश्चितता भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। सवाल पूछा जाता है कि 17 जून को ईरान के साथ हुए जिस समझौते पर खुद ट्रंप ने दस्तखत किए, जिसे अपनी कामयाबी करार दिया, फिर आखिर वो करार महज 1 महीने के भीतर क्यों टूट गया। आलोचक कहते हैं कि अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति ट्रंप के पास ना तो ईरान में राजनीतिक बदलाव की कोई स्पष्ट योजना है और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट को स्थायी रूप से सुरक्षित करने का कोई रास्ता।
9: कोई शक नहीं, उनको लगता था कि ईरान जो है जिस प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था उसके तहत कहीं ना कहीं वो मान जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, क्योंकि आज की तारीख में सेंटर ऑफ

0: के पास स्टेट ऑफ हार्मोन, और इसको सच्चाई है कि अमेरिका समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या।
1: दरअसल बीते 80 सालों से दुनिया की स्थिरता एक अनकहे नियम पर टिकी रही। कोई एक ताकत पूरे सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी उठाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यह भूमिका निभाई, लेकिन कोई भी व्यवस्था तभी चलती है जब कोई महाशक्ति ऐसी कीमत को उठाने को तैयार हो। आज जब ये व्यवस्था टूट रही है क्योंकि अमेरिका अब इसका दाम चुकाने से हिचक रहा है। यहीं से नजर आता है कि किंडल बर्गर ट्रैप, यानी ऐसी स्थिति जिसमें वैश्विक व्यवस्था आसानी से नहीं बदलती, वो टूटती है। इसी को विश्लेषक पॉली क्राइसिस भी कहते हैं, यानी समस्याओं का दशानन। बहरहाल यही वजह है कि ट्रंप की ईरान नीति को मास्टर प्लान या भ्रम में खांचे में बांटना उतना आसान नहीं है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के लिए सबसे खतरनाक दौर वो नहीं होता जब एक साम्राज्य हावी हो, बल्कि सबसे खतरनाक दौर वो होता है जब दो साम्राज्यों के बीच का खालीपन हो। आज तक ब्यूरो।
2: तो पावर प्ले में अभी आपने देखी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रेन मैपिंग की कोशिश। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जिसको लेकर अमेरिका और ईरान बीते 5 महीनों से उलझ रहे हैं, जिस हॉर्मूज की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को मानो हार्ट अटैक आ रहा है। इसी बीमारी का इलाज करने के लिए अब खाड़ी के देश हॉर्मूज की बाईपास सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, नया नक्शा तैयार करने की कोशिश हो रही है, वो रास्ता जो कि इस बीमारी का इलाज कर सकता है। और ये सब कुछ आपको बताने के लिए हम आपको अब लिए चलते हैं उस मैप रूम में, यानी उस नक्शे पर जहां ये सारी कहानी न केवल लिखी जा रही है बल्कि ये सारी कहानी जहां पर इन दिनों उलझी हुई है, क्योंकि ये नक्शा समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरे इलाके की इबारत को तय कर रहा है। और मेरे पीछे जो आप ये नक्शा देख रहे हैं, ये है खाड़ी का वो इलाका। आप अदन की खाड़ी का इलाका भी देख सकते हैं और साथ ही यहां आपको नजर आ रही होगी, ये अदन की खाड़ी का इलाका है और साथ ही यहां आपको नजर आ रहा है ये अदन की खाड़ी का इलाका और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका। लेकिन ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं, ये लाल लकीर दरअसल सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है और यही वो पाइपलाइन है, यानी ये जो आप देख रहे हैं यानबू तक खींचती हुई लाइन, यानी यह तेल का इलाका है और यहां से जो तेल की पाइपलाइन है वो लाल सागर की तरफ जाती है। इस इलाके तक सऊदी अरब अपना तेल पहुंचाता है और ये लाइफलाइन कही जा सकती है तेल की सप्लाई के लिहाज से। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमत $120 से ज्यादा पार नहीं पहुंची तो उसकी बड़ी वजह ये पाइपलाइन भी है। लेकिन यहां पर अब हम बात कर रहे हैं बाईपास सर्जरी की, और इस बाईपास सर्जरी के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि पूरब से पश्चिम तक यानबू तक एक और पाइपलाइन बनाने की तैयारी सऊदी अरब कर रहा है। और ये काम केवल सऊदी अरब ही नहीं कर रहा है बल्कि इस काम के अंदर जो अन्य देश हैं वो भी जुटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हॉर्मूज के इस बाईपास के लिए ये जो आप दो जगहें देख रहे हैं होरफक्कन और फुजैरा, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की जगह है और हॉर्मूज से ये दूरी होने के कारण ये एक ऐसा रास्ता बनता है, ये एक ऐसी जगह बनती है जहां से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अपने तेल की सप्लाई कर सकता है। हॉर्मूज के इस बाईपास के लिए एक और कोशिश चल रही है सीधे भारत तक पहुंचने की। भारत तक पहुंचने की कोशिश इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है और ये जो पाइपलाइन आप पीछे देख रहे हैं ये अंडर सी पाइपलाइन की प्रस्तावित योजना है जो इस यानी ईरान अमेरिका और इजराइल के इस पश्चिम एशिया के संकट ने एक बार फिर टेबल पर ला दी है, यानी इस विचार पर इस प्रस्ताव पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि क्यों ना यूएई से लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट तक पाइपलाइन बिछा दी जाए और इसके अंदर केवल संयुक्त अरब अमीरात ही नहीं, इस परियोजना के अंदर ओमान भी शामिल हो सकता है और ओमान भी अपने तेल का निर्यात भारत तक इसके जरिए कर सकता है। तो ये वो सारी कहानी है जिसे हम कह रहे हैं कि वो इस पूरे इलाके के अंदर बाईपास सर्जरी करने की कोशिश है, क्योंकि ओमान की भी कोशिश है कि ये जो पूरा इलाका है इस पूरे इलाके के अंदर ओमान अपने जो दुकम का पोर्ट है, सलाला का पोर्ट है, वो जो सारे उसके जो पोर्ट्स हैं उनके जरिए निर्यात कर सके, यानी जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इलाके को टाल दिया जाए, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के इलाके को यहां पर बाईपास कर दिया जाए। लेकिन अब आपको रूबरू कराते हैं इस खेल से ही जुड़े हुए चार किरदारों से, यानी पावर प्लेयर्स से, जो इस वक्त घटना चक्र की सुर्खियों में। तो आपको मिलवाते हैं उन पावर प्लेयर्स के साथ जिनका जिक्र हम कर रहे थे, जिनके किरदारों को लेकर आप नकारात्मक बात भी कर सकते हैं, सकारात्मक बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो चार चेहरे आप देख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं चेहरों की इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान के सेना प्रमुख यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की।

हम बात कर रहे हैं आसिम मुनीर की एक पावर प्लेयर के तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट की लगातार अटकलें इस समय चल रही हैं। कोशिश हो रही है कि आसिम मुनीर एक बार फिर जनरल अयूब, जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के किरदार को निभाते हुए नजर आए। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाए और सत्ता के सारे सूत्र जो हैं वो आसिम मुनीर के हाथ में नजर आए। अहम मानी जा रही है मुनीर की भूमिका इस लिहाज से भी, क्योंकि वो न केवल पाकिस्तान की सत्ता के सूत्र तय कर रहे हैं बल्कि इस समय उन्हें लगता है कि वो वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी बेहद करीबी बन चुके हैं और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर सेना की ही पकड़ को मजबूत कर लिया जाए। इन किरदारों के चेहरे के अंदर अब आपको मोहसिन नकवी का भी चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी का ये जो चेहरा है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हरकारे हैं, यही मैसेंजर हैं जो इस्लामाबाद और तेहरान के बीच में जो संदेश है वो लेकर जाते हैं। मुनीर बात करते हैं अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में और उसके बाद उस संदेश को लेकर तेहरान यानी ईरान की राजधानी पहुंचते हैं मोहसिन नकवी। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ जो बयान दिए मोहसिन नकवी ने, उसको लेकर अटकलों का बाजार तेजी से गर्म हो गया है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे को बर्बाद कर दिया गया है। ये बात कौन कह रहा है? मोहसिन नकवी कह रहे हैं। वो मोहसिन नकवी, एशिया कप की चोरी की बात अभी यहां नहीं करेंगे, बात करेंगे मोहसिन नकवी के इस लिहाज से भी, क्योंकि मोहसिन नकवी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और जो कि शहबाज शरीफ की ही सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनके गृह मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तोहमत का ठीकरा फोड़ रहे हैं किसी और के नाम और कह रहे हैं कि सरकार का प्रशासनिक ढांचा बर्बाद हो गया है। किसने बर्बाद किया है ये जवाब देने की बजाय वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 21 साल से पाकिस्तान के अंदर रिश्वत का खेल चल रहा है। साथ ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो भी मोहसिन नकवी के अंदर जबरदस्त देखने को मिल रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर जो खेल चल रहा है भारत के पड़ोस में, पाकिस्तान में, दक्षिण एशिया में और साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका मोहसिन नकवी की नजर आती है और इसीलिए मोहसिन नकवी एक पावर प्लेयर है। लेकिन इस खेल के अंदर अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ईरान की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, वो चेहरा जो कई बार तस्वीरों के सामने आता रहा, बातचीत के अंदर अगुवाई करता नजर आया, यही इस्लामाबाद भी पहुंचे थे, यानी सैयद अब्बास अराकची कुछ समय पहले भारत भी आए थे, 5 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचे थे, पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत उन्होंने की। इसके साथ साथ यूएस का साथ देने को लेकर उन्होंने संयुक्त जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसको उन्होंने धमकी भी दे डाली। इसके अलावा इसराइल पर जंग को भड़काने का आरोप लगाते रहते हैं, इसको लेकर भी वो चर्चाओं में हैं। लेकिन बयानों से ज्यादा सैयद अब्बास अराकची के नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि वो ओमान पहुंचे मस्कट में फिर एक बार उस प्रस्ताव को लेकर कि क्यों ना स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओमान और ईरान मिलकर मैनेज करते हैं, आइए मिलकर $2 मिलियन वसूलते हैं हर उस जहाज से जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाला है। लेकिन इन तस्वीरों के किरदारों के अंदर एक चर्चा हो जाए जरा शेख हसीना को लेकर भी, क्योंकि भारत में मौजूद हैं और 2 साल बाद दुनिया के सामने आई और उन्होंने ऐलान किया कि वो दिसंबर 2026 के अंदर लौटना चाहती हैं, एक बार फिर ढाका पहुंचना चाहती हैं। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं इन तमाम पावर प्लेयर्स की और इनके इन पावर प्लेयर्स के चलने वाले खेल के भारत पर होने वाले असर की भी, क्योंकि भारत के लिए आखिर ये सारी चीजें क्या मायने रखती हैं, क्या असर रखती हैं, ये जानना, इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। इस पूरी चीज का इंडिया इंपैक्ट कितना है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है और इसीलिए अब हम बात करते हैं इंडिया इंपैक्ट की, यानी आखिर भारत पर इन तमाम चीजों का कितना, कहां, कैसे असर हो रहा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इंडिया इंपैक्ट के अंदर बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो तेल का खेल चल रहा है, यानी जब भी दुनिया के अंदर कोई जंग होती है, कोई तनाव होता है तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन तेल की कीमत जैसे ही $100 प्रति बैरल से पार पहुंचती है तो यहीं से दबाव का खेल शुरू हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि तेल की जब भी संकट आता है, जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो लोग देखते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, देखते हैं गाड़ी के बढ़ते हुए खर्चे की तरफ, लेकिन यहीं पर लोग चूक कर जाते हैं। चूक इस लिहाज से कर जाते हैं क्योंकि तेल का ये जो पूरा खेल है, यानी एक बैरल का जो तेल है उसका महज 45% जो है, जो यहां पर आपको नक्शे पर नजर आ रहा है, ये जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट बताता है कि महज
जो 45% है वो जाता है आपकी गाड़ी में ईंधन के तौर पर, लेकिन ये जो 55% का बड़ा हिस्सा है ये आपकी जिंदगी की हर चीज से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो कपड़े हमने पहने हैं, ये जो टैबलेट मेरे हाथ में है, ये जो पेन मेरे हाथ में है, ये तमाम चीजें जो इस तेल से ही बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसी के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिहाज से ये पूरी चीज बहुत महंगी है, ये बहुत चीजों पर असर डालती है। साथ ही तेल और गैस का जो असर है वो आपके रोजमर्रा जिंदगी में यानी थाली को प्रभावित करता है। भारत में आयात का खर्च तो बढ़ा ही है क्योंकि भारत तेल का बड़ा आयातक देश है, लेकिन नाइट्रोजन जो इसी से निकलता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ही बाय प्रोडक्ट है, उसके कारण उर्वरक का एक बड़ा संकट खड़ा होता है, फर्टिलाइजर का संकट खड़ा होता है, और दुनिया की 8 अरब की आबादी को 2 वक्त की रोटी मिल सके उसमें एक बड़ी भूमिका इन नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरकों की है, फर्टिलाइजर्स की है, और इसके कारण उनका संकट बढ़ता है, कीटनाशक का संकट बढ़ता है, और इसी संकट से मुकाबले के लिए माथापच्ची हर देश में चल रही है। भारत के अंदर बीते 5 महीनों के अंदर 4 CCS की बैठक हो चुकी है। हाल ही में 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी जो थी वो स्पेशल CCS की बैठक की। जो बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी इसकी अगुवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर CCS की एक्सटेंडेड बैठक थी। इसमें कृषि मंत्री भी शामिल थे, इसके अंदर पेट्रोलियम मिनिस्टर भी शामिल थे, इसके अंदर वित्त मंत्री शामिल थे, और तमाम जो अधिकारी थे उनको बुलाया गया था ये बात करने के लिए कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। 22 मार्च को एक्सपर्ट समूह बनाने का आदेश भारत की तरफ से दिया गया था। साथ ही 1 अप्रैल को खाद की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कोशिश की गई, क्योंकि रबी का फसल है, रबी की जो बुआई है उसके पहले खाद और उर्वरकों की जो सप्लाई है वो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर भारत जैसे देश के लिए जहां पर कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम भूमिका रखती है। इसके अलावा 30 जुलाई को जो बैठक हुई उसमें वैकल्पिक खाद के स्रोतों पर भी विचार किया गया। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आखिर इंडिया इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है आपकी हमारी जिंदगी के ऊपर। ये जो दाम बढ़ने का संकट आप और हम इस समय झेल रहे हैं, आखिर उसका दायरा कितना बड़ा है, उसका विस्तार कितना बड़ा है, यही हमने आपको समझाने की कोशिश की। और इस पूरे पावर प्ले के अंदर हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिग्नल्स की भी जो न केवल भारत से जुड़ते हैं बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, 2 बड़े देश आपस में एक मामले को लेकर इस समय उलझते हुए नजर आ रहे हैं, और वो है ह्यूमनॉइड रोबोट। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच इस समय ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स को लेकर एक रस्साकशी चल रही है। दोनों ही तकनीक की बड़ी ताकत रखने वाले देश हैं, लेकिन इस समय भिड़े हुए हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने फैसला किया है कि चीन के जो रोबोट्स हैं वो अब अमेरिका के अंदर नहीं आएंगे। चीन का दबदबा रोबोट्स के क्षेत्र में न केवल बढ़ रहा है बल्कि अमेरिका के लिए एक खतरा बन रहा है, और इस खतरे के सिग्नल्स को लेकर यह जानना और समझना जरूरी है कि क्या भारत के लिए भी इसका किसी तरीके का कोई असर है, क्योंकि हम इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये सिग्नल कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित करते हैं। हम बात कर रहे हैं इन तमाम ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, और ये रोबोट्स जो हैं वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाले समय में काम संभालने वाले हैं। इनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है, ये जो रोबोट्स हैं ना ये आने वाले समय के अंदर रोजगार के नए चुनौती देने वाले साबित हो सकते हैं। यानी इंसानों जैसे दिखने वाले जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं इनके आयात पर अमेरिका ने ये कहते हुए रोक लगा दी है चीन के कि ये हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी का खतरा बन सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने तय किया है कि ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जिसे चीन की फैक्ट्रियों में तैयार किया जा रहा है उन्हें अब अमेरिका में नहीं आने दिया जाएगा, वो अमेरिका के लिए चुनौती है। इसके अलावा बिजली की ग्रिड संचार नेटवर्क को निशाना बना सकते हैं ये ह्यूमनॉइड रोबोट, ये अमेरिका कह रहा है जो खुद अपने यहां पर रोबोट्स बना रहा है। इसके अलावा दुनिया में करीब 85% जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं वो चीन बना रहा है। जी हां, दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश बड़ी तेजी से रोबोट तैयार कर रहा है। चीन के इस रोबोट के खेल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चीनी रोबोट पर रोक अमेरिकी कंपनियों का फायदा तो बढ़ाएगी, लेकिन एक बड़ा संकट इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि चीन में 20 लाख जो रोबोट हैं और यूएस में करीब करीब 4 लाख ही रोबोट हैं। यानी रोबोट की भी तुलना की जाए तो तराजू में इस समय चीन का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि यह रोबोट अगर चीन बना रहा है तो किस चीज के लिए बना रहा है। चीन ने इसका एग्जाम्पल दिखाया है कि यह रोबोट तैयार किए जा रहे हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, यानी जो रोजगार के अवसर हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है ह्यूमनॉइड रोबोट बनने जा रहे हैं। दुनिया की 8 अरब की आबादी, दुनिया के कई देशों के सामने रोजगार
और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा एक संकट है, और बड़ी आबादी रखने वाले भारत जैसे देश के लिए तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो रोबोट की आंधी है, इससे मुकाबला करने के लिए आखिर हमारे दरवाजे कितने मजबूत हैं, भारत इसके लिए क्या तैयारी कर रहा है, और यदि भारत की भी फैक्ट्रियों के अंदर और दुनिया की अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर यदि रोबोट काम करने लग जाएंगे तो फिर इंसान क्या करेगा। ये एक बड़ा और अहम सवाल है जो इस तस्वीर के साथ में, इस पूरे खेल के साथ में और गंभीर होता चला जा रहा है। तो पावर प्ले में हमने कोशिश की इन तमाम चीजों को, इन तमाम बदलावों को एक जगह समेटने की, पढ़ने की, ये जानने की कि आखिर जो कुछ दुनिया में चल रहा है, ताकत का ये खेल आखिर कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, और ये आपकी हमारी जिंदगी, आपकी हमारी जेब को कैसे प्रभावित कर रहा है, और आगे आपको और हमें किस तरह से तैयार रहने की जरूरत है। तो पावर प्ले की ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।

युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सामने आया मुज्तबा का वीडियो। ईरानी मीडिया ने दिखाया सुप्रीम लीडर का वीडियो। किस मकसद से जारी किया गया यह वीडियो? क्या यह वीडियो 28 फरवरी से पहले का है? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ 13 सेकंड के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका और इसराइल जैसे देशों के खुफिया और साइबर एजेंसियां तो अब तक इसके एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम कर चुकी होंगी। ये वीडियो मुज्तबा खामनेई का है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का, जिनके बारे में अभी तक कहा जा रहा था कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और किसी खुफिया जगह पर उनका इलाज चल रहा है। इलाज इतने खुफिया तरीके से चल रहा है कि वहां तक ईरान के राष्ट्रपति और कुछ गिने चुने कमांडर ही जा सकते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में ट्रंप ने भी माना था कि मुज्तबा जिंदा हैं। IRGC ने पिछले 5 महीनों में कई बार उनके ऑडियो और लिखित मैसेज जारी किए हैं, लेकिन मुज्तबा खामेनेई की 28 फरवरी के बाद से आज तक एक भी तस्वीर और फोटो जारी नहीं की गई थी। जुलाई के पहले हफ्ते में उनके पिता की अंतिम यात्रा जब ईरान के अलग अलग शहरों से निकल रही थी, तब भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। कहा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आ सकते। खैर, अब जब वीडियो सामने आया है तो कई सवाल भी साथ लाया है। इसे ईरानी सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है, बल्कि मेहर न्यूज एजेंसी ने दिखाया है। क्या ये वीडियो ताजा है या फिर 28 फरवरी को हुए हमले से पहले का है? इस वीडियो को इस वक्त जारी करने का असली मकसद क्या है? अगर ये ताजा वीडियो है तो गंभीर रूप से घायल मुज्तबा इतने स्वस्थ कैसे दिख रहे हैं? इस वीडियो में मुज्तबा एक कमरे में करीब 10 लोगों से घिरे हुए हैं और किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा है। इस बीच होर्मुज ने ईरान और अमेरिका दोनों के जिद पर अड़ने की वजह से टकराव के हालात टले नहीं हैं। UAE ने आरोप लगाया है कि उसके एक तेल टैंक पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। बहरीन ने भी इस हमले का विरोध किया है। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी की मौजूदगी में उसके तय रूट को न मानने वाले हर जहाज के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी और हर हाल में होर्मुज में आवाजाही उसके ही निर्देशों के हिसाब से होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत करने वाले पक्ष फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही के लिए अस्थायी समुद्री मार्ग तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होर्मुज फौरन खोल दिया जाएगा। बातचीत तो जारी है, लेकिन होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने जो 9 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, उन पर सहमति बनने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यानी अगले कुछ दिनों में होर्मुज में हाहाकार खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो।

ओडेसा और खार्किव में भारी तबाही। रूस ने बम बरसाकर शॉपिंग सेंटर उड़ाया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में की एयर स्ट्राइक। चलती हुई इमारत की ये तस्वीरें खार्किव की हैं। एक रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत की कई मंजिलों में आग लग गई। हमले के बाद हुए धमाकों से घरों के शीशे चकनाचूर हो गए, दीवारें टूट गई और कई लोग अंदर फंस गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पावलोहराद शहर में तो रूसी मिसाइलों ने एक शॉपिंग सेंटर को ही निशाना बना दिया। रूस के इस हमले में पूरा मॉल ही तबाह हो गया है। बमों की बौछार से बर्बादी का अंदाजा इन तस्वीरों से आसानी से लगाया जा सकता है। लोग चीख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले में कई दुकानें जलकर राख हो गई। ओडिशा के इस्कंदर एम और KH-31P जैसी विनाशकारी मिसाइलों से हमला किया गया जिसकी चपेट में आने से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हफ्ते भर के रूसी हमलों की पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ साझा की है। उनका आरोप है कि ओडिशा, सुमी, खार्किव और कीव में रूसी मिसाइलें बर्बादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कई बेकसूर लोगों की जान जा रही है, लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, वाहन नष्ट हो रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। जेलेंस्की के मुताबिक इस हफ्ते में ही रूस ने 56 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कुल 61 मिसाइलें दागी हैं। इनके अलावा 1560 ड्रोन के जरिए भी हमले किए गए हैं। यूक्रेन भी पूरी ताकत से पलटवार करने में लगा हुआ है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक ने तबाही मचा दी। ताबड़तोड़ बम बरसने से शहर के कई इलाकों में आग की लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। यूक्रेन के हमले पूरी रात जारी रहे और धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। लेकिन यूक्रेन के अटैक की एक सीमा है, मिसाइल उसके पास बेहद कम है और मिसाइल रोकने की क्षमता तो खत्म ही हो गई है। ड्रोन की काबिलियत के सहारे वो रूस को लगातार नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। उधर रूस लगातार आक्रामक होता जा रहा है। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसने मिसाइलों का जखीरा खोल दिया है। आम मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अब पहले से ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी हैं, वो भी रिहायशी इलाकों पर। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: झारखंड में प्रदर्शनकारियों के साथ तीसरे दौर की बातचीत। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्र। खड़गे बोले, सोरेन को लिखेंगे चिट्ठी। सीएम बोले, जिन्होंने चोरी की उन पर होगी कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी का कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमला। सिद्धार्थनगर की सभा में बोले, दोनों ही पार्टी ने लोगों को बांटने का काम किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत को देखा गया। त्यागराज कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी ने पायलट गन को लेकर किया पोस्ट। कहा, गृहमंत्री अमित शाह को जवाब देना ही होगा। बीजेपी ने कहा, वोटों की राजनीति कर रहे नेता विपक्ष। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ममता के काफिले पर हमला। कार पर फेंकी गई पानी की बोतल और कीचड़। पूर्व सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी। और फुकेट दिल्ली फ्लाइट के अचानक नीचे आने के मामले में घिरे पायलट। डोप टेस्ट में एक पॉजिटिव निकला। मामले की जांच कर रहे डीजीसीए। एयर इंडिया का बयान, नहीं मिले रिपोर्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। संसद का मानसून सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अगले कुछ दिन इस लिहाज से बहुत अहम है। FCRA से लेकर परिसीमन तक ऐसे सवाल सामने हैं जिनका असर सिर्फ आज की राजनीति पर नहीं बल्कि आने वाले बरसों के भारत पर पड़ सकता है। परिसीमन देश की राजनीति को नया आयाम दे सकता है। महिला आरक्षण बिल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की तस्वीर बदल सकता है। FCRA नागरिक संस्थाओं और विदेशी फंडिंग के बीच में रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। इन सब के बीच कांग्रेस समेत विपक्ष गृहमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष की मांग है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह संसद में आए, बयान दें, जवाब दें। इस बीच कांग्रेस ने कल से 3 दिनों के लिए व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। कल विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग भी है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा मतभेद में नहीं, मतभेद के बावजूद रास्ता निकालने की क्षमता में होती है। क्योंकि संसद में बहस रुकती है तो सिर्फ माइक बंद नहीं होता है, जनता और सत्ता के बीच संवाद का एक रास्ता भी संकरा पड़ता है। और अब सवाल यही है कि क्या अगले कुछ दिन राजनीति की जो एक कड़वाहट है या जो टकराहट है ये बढ़ेगी या लोकतंत्र को संवाद की तरफ ये लौटाएंगे? क्या विपक्ष की मांगों को सरकार मान लेगी या विपक्ष को एक कदम पीछे हटना होगा? अब आज इन्हीं सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 लाइनें लोकतंत्र की पूरी आत्मा को समेट देती हैं। लेकिन आज सवाल यही है कि सरकार के पास बहुमत तो है, लेकिन संसद में सर्वसम्मति क्यों नहीं बन पा रही? संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा। और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक घोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। संसद का एक एक मिनट कीमती है। कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती है और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है। लेकिन अगर वही समय नारेबाजी और गतिरोध में निकल जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है, जिसमें विपक्ष के सवाल भी शामिल है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई पर गृह मंत्री सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं?
3: गृह मंत्री जी सुबह से लेकर के देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, फिर ये जो डिमांड कर रहा है ये सब नाटकबाजी नहीं करना चाहिए। मैंने सदन में भी कहा है कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से।
2: कल प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी के हौसले बुलंद है। राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा। 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अमित शाह, आप ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियों और पैलेट चले और आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब देना ही पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, लेकिन कई बड़े मुद्दे अब भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की वजह बने हुए हैं। विपक्ष चर्चा और जवाब मांग रहा है। FCRA संशोधन, महिला आरक्षण, परिसीमन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे विपक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर है।
4: FCRA के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं, एक दूसरी चीज ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे कल।
2: सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद को चलने भी दिया जाना चाहिए।
3: लोकसभा में एमएसएमई वाला बिल को हम लोगों ने पारित किया है। डिस्कशन कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने हंगामा करके नारेबाजी किया, इसलिए डिस्कशन कम हुए हैं। लेकिन बिजनेस पारित हुआ है और राज्यसभा में एनडीए पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं सबने डिबेट में हिस्सा भी लिया है, अपना बात रखा है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाउस नहीं चल रहे हैं, हाउस चली है, बिल्स पारित हुए हैं, सिर्फ चर्चा कम हुए हैं क्योंकि हंगामा है। हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल्स भी आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास, उसको भी हम लेके आ रहे हैं।
2: संसद में टकराव के बीच मानसून सत्र में अब तक 4 बड़े कानून पारित हो चुके हैं। वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, विपक्ष के सवाल जरूरी है, सरकार का बहुमत भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत तब होती है जब बहुमत कानून बनाए और सर्वसम्मति से देश को साथ लेकर चले, क्योंकि संसद में हर मिनट सिर्फ सांसदों का समय नहीं होता, उसमें 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें बैठी होती हैं। देखना यही है कि मानसून सत्र के बचे हुए दिन गतिरोध के नाम होंगे या बहुमत और विपक्ष दोनों मिलकर सर्वसम्मति की उस राह पर लौटेंगे जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री ने बरसों पहले की थी। संसद चलना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, और विपक्ष को सुनना सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो।
0: दंगल की शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करने से पहले उन सवालों पर डालते हैं नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस केंद्रित रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या मानसून सत्र के बचे हुए 4 दिनों में क्या संसद चलेगी, क्या कल से संसद चलेगी? सवाल नंबर 2, क्या संसद में परिसीमन महिला आरक्षण बिल पर सहमति बनेगी? और सवाल नंबर 3, संसद में गतिरोध से सत्ता या विपक्ष में आखिर किसे सियासी फायदा हो रहा है? आम आदमी को तो नुकसान हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों में किसे फायदा हो रहा है? चर्चा की शुरुआत करते हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता निगत अब्बास हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मनोज काका, और आरएलडी से मल्लूक नागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज निगत अब्बास आप बताइए, हर मिनट लाखों का खर्चा, हर घंटे करोड़ों का खर्चा हो रहा है, लेकिन संसद है चल नहीं पा रही है क्योंकि ऑपोजिशन हंगामा कर रहा है, क्या कल संसद चलने देंगे आप लोग?
5: राजीव जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात कि आई होप कि मोदी जी को पता है कि सरकार इंस्टाग्राम रील से नहीं चलानी है। आई होप मोदी जी को ये भी पता है कि सरकार में है तो पार्लियामेंट में आना पड़ेगा और अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और आई होप मोदी जी और अमित शाह जी को ये भी पता है, जो बात आपने कही राजीव जी, कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे दूं कि पर मिनट मानसून सेशन के किसी भी सेशन को चलाने का खर्चा, पार्लियामेंट को चलाने का खर्चा पर मिनट 2.5 लाख का है, मतलब एक घंटे का करीब 1.5 करोड़। और 21 जुलाई से सेशन शुरू हो गया था तो अभी अगर एस्टिमेटेड हम काउंट करें तो 100 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा सेशन में लग चुका है, प्लस एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो अलाउंसेस हैं वो अलग हैं। तो ये एक एस्टिमेटेड आइडिया है और इनके खुद के बीजेपी के जो सांसद हैं वो इस बात को क्लेम भी कर रहे हैं और एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। तो जब ऐसा है और मोदी जी, अमित शाह जी को ये पता है, बड़े जिम्मेदार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, तो वो सेशन में आकर जनता का जवाब क्यों नहीं दे रहे, जबकि उन्होंने अभी अभी विटनेस किया है ना राजीव जी की कैसे लेटेस्ट देश के यूथ ने सवाल पूछे, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मांगी और सरकार को झुकना पड़ा। तो आज देश का यूथ पूछ रहा है ना कि बताइए, जब सीबीआई की चार्जशीट में कहा जा रहा है कि एनटीए के खुद के लोग इन्वॉल्व थे, तो बात तो साफ है कि ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम का एक्सेस अंदर किसके पास था, ये बहुत बड़ा लूप होल है। उस पर आपने बच्चों को, जब बच्चों ने सवाल पूछा, बच्चों पर आपने पैलेट गन चलवाई, आप बताइए पैलेट गन का आदेश किसने दिया, आप बताइए बच्चों के लिए AK-47 का आदेश किसने दिया, आप बताइए कि बेटियां जो,
0: मैं निखत मैं आपके ये जो पॉइंटेड सवाल है मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं आप ऑपोजिशन में है, क्या आपकी जवाबदेही आपकी जिम्मेदारी नहीं है? है ना आपके भी, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं कि हर मिनट इतना 2.5 लाख रुपए लग रहा है और एक एक घंटे में जो है लगभग 1.5 करोड़ खर्चा हो रहा है, जिम्मेदारी आप भी तो लीजिए, क्योंकि क्या आपके पास एकमात्र तरीका बचा है प्रोटेस्ट करने का? आप बेल में आकर वहां पर हंगामा करते हैं, क्या यही एकमात्र तरीका बचा? आप तो खुद नहीं चलने दे रहे हैं ना संसद।
5: ये सही है, मतलब मैं तो बड़े ये हास्य का विषय बन जाता हूँ, हर बार ये नैरेटिव हम प्रोपोगेट करने लगते हैं और कई लोग तो कुछ ज्यादा ही करते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी गायब हैं सदन से, उसके बावजूद सारा जो ठीक रहा है वो ऑपोजिशन के सर पे फोड़ दिया जाता है। इट इज वेरी इजी,
0: इट इज नॉट, मतलब ये आप मतलब इट इज विजिबल, आप जब संसद में जाते हैं, जब आप संसद में जाते हैं तो लाइव होता है, सब दिख रहा है ना, वेल में कौन आकर हंगामा कर रहा, कौन नारेबाजी कर रहा है। आप जो आपके तथ्य, जो आपके तर्क हैं, वो आप यहाँ पटल पर रखिए ना। हाँ बोले
5: राजीव भाई, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, मुझे 10 सेकंड आप दीजिए। आप समझिए ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है। आप मुझे बताइए आज देश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो डिस्कस होना चाहिए, कि अभी थोड़े दिन पहले जब हमारे देश के छात्रों ने, बच्चों ने, स्कूल के स्टूडेंट्स ने, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने जब अकाउंटेबिलिटी मांगी तो उन्हें लाठियों से पिटवाने का आदेश किसने दिया?
0: अकाउंटेबिलिटी ले ली ना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया ना, वो छात्र वहां सड़क पर थे चले गए, वो छात्र चले गए घर। नीट पर चर्चा भी हो गई है निखत, चर्चा हो गई। मुझे बताइए कि चलिए पीएम और गृह मंत्री नहीं आएंगे तो आप सदन नहीं चलने देंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप सदन नहीं चलने देंगे अगर वो दोनों नहीं होंगे तो?
5: नहीं, कैसी बात है, मैं वही कह रही हूँ कि आप ऑपोजिशन पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं?
0: मैं ठीकरा नहीं फोड़ रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप यही तर्क दे रहे हैं कि गृह मंत्री नहीं आ रहे, पीएम नहीं आ रहे, तो आप ये बताइए कि वो नहीं होंगे तो आप सदन ही नहीं चलने देंगे, मतलब आपके लिए
5: ऑपोजिशन पर फोड़ा जाएगा? नहीं, महामानव महापुरुष प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, चाणक्य नीति वाले अमित शाह जी नहीं आएंगे, लेकिन ठीकरा ऑपोजिशन पर फोड़ा जाएगा? राजीव भाई,
0: मैं निगत मैं ये सवाल पूछूंगा उनसे,
5: आप की जनता,
0: मैं क्या उनसे, वो मेरे सवाल बाद में आएंगे, मैं उनसे क्या पूछूंगा? आप अपने, आपकी जो जवाबदेही उस पर जवाब दीजिए। आप छोड़िए सत्ता पक्ष का, आप क्यों नहीं चलने दे रहे संसद, आप अपना बताइए।
5: नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना लगातार, संसद चलने के लिए सवाल आपको बता दिए गए हैं कि हमने कहा मना किया है कि आप संसद मत चलने दीजिए। ये मैंने कहा ना, देखिए मैंने कहा ना, ये जो प्रोपोगंडा, ये नैरेटिव बीजेपी चलाती है ना कि सारा ठीकरा के राहुल गांधी जी पे, कांग्रेस पे, विपक्ष पे फोड़ देने का, ये अब बहुत हो गया, जनता समझ रही है। जब टॉप टू, जिसको सबको पता है कि सिर्फ देश नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सब कुछ, ये दो चार लोग ऊपर के मिलके चला रहे, जिसमें टॉप टू आई नहीं है
0: पार्लियामेंट, मैं हो गया निगत, आपके ही सवाल है जो मैं अब तुहिन के पास ले जा रहा हूं। तुहिन, अब आप बताइए, वो ऑपोजिशन कब से कह रहा है कि भाई पीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, गृहमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? आप चुनावों में जाते हैं ना कि हमें संसद में चुनने के लिए भेजिए कि हम संसद में आपकी बात उठाएंगे, वो क्यों गायब है, सदन के भीतर क्यों नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं। और ऑपोजिशन की बातें, ऑपोजिशन के मुद्दे स्वीकारने में इतनी दिक्कत क्या है?
6: नमस्ते राजीव जी, सबको नमस्ते। आज विश्व आदिवासी दिवस है, सबको शुभकामनाएं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, सबको शुभकामनाएं। जिन जो विपक्षी पार्टियों को आदिवासी बच्चों की गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है झारखंड से, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि आज वर्ल्ड आदिवासी डे है। देखिए, पिछले आज से 10-11 दिन पहले जब प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, तो हमें लगा था कि सबसे ज्यादा सदमा इससे एग्जाम पेपर लीक माफिया को लगेगा, लेकिन गजब की बात है कि विपक्ष तब से और ज्यादा बौखलाई हुई है और रोज किसी न किसी कारण से कोई अवरोध, कोई बाधा पैदा करके सदन नहीं चलने दे रही। इसका असल कारण आपको पता है राजीव जी क्या है? दो ऐसे बिल हैं जिनसे ये लोग कांप रहे हैं, जो अगले चार दिन में संभवतः आने वाले हैं, FCRA अमेंडमेंट बिल और डिलिमिटेशन और वेमेंस रिजर्वेशन बिल। और मुझे लगता है इससे भागने के लिए ये तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। अब ये जो पूछ रहे हैं कि गृहमंत्री जी सदन में क्यों नहीं, गृहमंत्री जी रोज सदन में मौजूद रहते हैं, लेकिन जो आप लोग ड्रामा करते हैं ना, उसके बीच उनको आना सार्थक नहीं लगता है। आपके दो सवाल थे, ठीक है, आपके दो सवाल थे कि वहां पर AK-47 क्यों इस्तेमाल हुआ। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि वहां गन फायरिंग हुई ही नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप लाकर दिखाइए। दूसरी बात, जहां तक पैलेट के इस्तेमाल का सवाल है, अब सुप्रीम कोर्ट की पिछले हफ्ते की रूलिंग देख लीजिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात को माना गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, कि अगर लाठी चार्ज और आंसू गैस से बात नहीं बनती है, सिचुएशन काबू में नहीं रहती है, तो पुलिस जो है पैलेट गन, पैलेट्स के इस्तेमाल से बाधित नहीं है। तो अब किस बात को लेकर रोज हंगामा कर रही है? सत्य यही है राजीव जी कि इतिहास के कगार पर है हम लोग, अब आने वाले चार दिन जो है ऐतिहासिक होने वाले हैं और पता नहीं इनकी क्या डर है।
0: अभी तो तुहिन जी इतने दिन हो गए, हमें हर दिन ही ऐतिहासिक लग रहा है कि ऐसा ऐतिहासिक हंगामा हो रहा है कि सदन नहीं चल रहा है। लेकिन हमने पीएम का एक बयान सुनाया था अभी कुछ देर पहले दर्शकों को, जो उन्होंने 2024 में दिया था कि देश चलाने के लिए सर्वमत आवश्यक है। लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप ओपोजिशन को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे, इस मामले में आप पूरी तरह से फेल हैं, आप एक आम सहमति नहीं बना पा रहे।
6: देखिए ये लोग बड़ी बड़ी बातें टीवी पर करते हैं। जब दो दिन तक चर्चा हुई प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट में, मैं इनसे पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, एक ढंग का इनके पास सुझाव था क्या? उल्टे इन्होंने केवल और केवल बाह्यात बातें की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गौमूत्र विशेषज्ञ कहा। राहुल गांधी ने इस देश के आधे युवा को इडियट और अंधभक्त कहा। तो ये तो इनका तरीका है, यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सदन में केवल और केवल बाधा और अवरोध पैदा करने के अतिरिक्त आज तक कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जैसा माननीय किरण रिजिजू जी ने कहा कि सदन आगे बढ़ रहा है, बिल्स भी पास हो रहे हैं, अगर इनको नहीं पार्टिसिपेट करना है, ठान लिया इन्होंने कि रोज हंगामा रोज हुड़दंग मचाएंगे, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो
0: दूसरे मेहमानों के पास एक पर्टिकुलर जो उनका सवाल है भाई कि गृहमंत्री आकर यही बात जो आप यहां कह रहे हैं कि गृहमंत्री यही बात सदन में आकर कह दें भाई पुलिस या कार्रवाई पर एक बयान दे देंगे, थोड़ा मामला शांत हो जाएगा, एक कदम आप पीछे ले लें एक वो ले लें।
6: राजीव जी गृहमंत्री, देखिए जब तक गृहमंत्री जी नहीं बयान दे रहे ना तब तक कांग्रेस को खुश होना चाहिए। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी 20 जुलाई को कयामत चाहती थी। आपको याद होगा कौ प्रोटेक्शन एक्ट के विरुद्ध जो साधु आंदोलन चला था उसमें 7 लोगों की जाने इसी परिस्थिति में गई थी और ये विपक्ष भी यही चाह रही थी, यही मना रही थी कि कुछ लोगों की जाने गई। तो जिस परिपक्वता के साथ हमने डील किया ये इनको हजम ही नहीं हो रहा। और जिस दिन गृहमंत्री जी हमेशा मुंह खोलते हैं लेकिन जिस दिन मुंह खोलेंगे ना ये लोग सदन से गायब हो जाएंगे, ये भी मैं आपको लिख के दूंगा।
0: निगत इस पर 20 सेकंड में ही रिप्लाई दीजिएगा, फिर मनोज जी और मलुक जी के पास जाऊंगा।
7: नहीं मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे ना हंसी आ रही है। मतलब तुम्हें जी ऐसी फिल्मी वाली बातें कर रहे हैं ना, जैसी फिल्मी बात है कि जिस दिन अमित शाह जी मुंह खोलेंगे, मेरे भाई वही तो वेट कर रही है ना देश की जनता। जाके छर्रों के निशान देखो बच्चों के छाती पर कमर पर, जाके देखो कि कैसे दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को जो जख्मी हो गए थे उनकी लाठियों से उनको अस्पताल भी नहीं लेके गए। जाकर देखो कि कैसे आप कह रहे हो कि AK-47 फायर नहीं, ये सही है कि AK-47 होगी, कांस्टेबल या आपका पुलिस का अधिकारी गुंडों की तरह स्टूडेंट के पीछे लेकर भागेगा भी, लेकिन जी फायर तो नहीं हुआ ना, ये सही है कि मार पीछे पुखार कर लेंगे वो बेहतर है। मतलब कैसी तुम्हें जी कैसे की बात करते हैं आपने।
0: मनोज का मैं आऊंगा तुम्हें आपके पास आऊंगा एक साथ, ठीक है निगत, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मनोज काका ओपोजिशन को जो छात्र प्रेम है ना, ये जो छात्र प्रेम है इसे बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, आपका कोई छात्रों से कोई प्रेम नहीं है, आपको अपनी राजनीति चमकानी है। क्योंकि छात्रों से प्रेम होता ना तो आप जंतर मंतर को भी और झारखंड को भी एक ही बराबर देखते, लेकिन चूंकि वहां पर पार्टी अलग है सत्ता में तो इसलिए आप सिर्फ एक तरफा एक जगह की बात उठा रहे हैं, तो आप नौटंकी एक तरीके से कर रहे हैं।
8: देखिए बीजेपी को ये हक है, चूंकि जो लोग भी लोकतंत्र में तानाशाही के रवैये का अधिनायकत्व करते हैं तो उन्हें पूरा यह हक होता है कि जिसको चाहे जो कह दें। बीजेपी से आप कह सकते हैं कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखो, आप तो अपनी तकरीर जारी रखो, इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, आप जिसको जो कीमत चाहो हमारी रखो। तो बीजेपी जिसको चाहे जो कह देती है, बीजेपी के प्रधानमंत्री देश के लोगों को कपड़े देख के पहचान लेते हैं, बीजेपी के मिनिस्टर उसी दिल्ली में प्रधानमंत्री के सटे इस देश के लोगों को गोली मारो वाला नारा देता है एक मिनिस्टर। बीजेपी जो आती बीजेपी के वही गृह मंत्री एक बार कहे कि लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लोग गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। तो जो लोग इतने संवेदनशील हो, हृदयहीनता
0: जंतर मंतर खत्म। झारखंड मतलब आपके लिए छात्र अलग अलग क्यों हैं? वो प्रेम वो गुस्सा आपको झारखंड के मामले में क्यों नहीं आ रहा है?
8: बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। हमारे लिए कोई छात्र अलग नहीं है, हमारे लिए सब छात्र पूरे देश का छात्र एक है। हमारे लिए वो बिल्कुल छात्र वो भी हमारा है जो भक्त हो चुका है, और वो सब छात्र हमारे हैं। वही छात्रों ने तो सवाल पूछा है, वो छात्र क्या झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पर सवाल खड़ा करने के लिए लोगों पे वहां पैलेट गन चला दी गई है? क्या वहां AK-47 चलाया गया बिहार में डबल इंजन की सरकार की तरह? क्या वहां की सरकार अभी नहीं जाग रही है? वहां की सरकार से आपने अभी अपने शुरुआती संदर्भ में कहा कि 3 राउंड वार्ता हो चुकी हालांकि विफल हुई। वहां के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि हम संवाद को तैयार हैं। क्या क्या दिल्ली की तरह वहां हुआ है, जो देश के प्रधानमंत्री जी जब गोली लाठी चलाने के बाद जब 12:30 बजे रात में जगते हैं, वो 20 दिन तक क्यों नहीं जग पाए? उनके ही अपने बच्चे हैं, जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सर्वसम्मति से चलती है और सरकार बहुमत से, दोनों बात झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। उनकी सरकार बहुमत की नहीं है, उनकी सरकार अधमत की है, और वो चोरी किए हुए वो सांसदों से सरकार चलाना चाहते हैं और सर्वमत की जगह शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनकी कोई वाणी उनके उनके शब्दों उनके कर्मों तक नहीं जा के टिक रही है। सवाल यह है कि जो गृह मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है तो तुहिन सिन्हा जवाब देंगे? इस देश की सुरक्षा व्यवस्था किसके हाथ में, कौन तय करेगा कि अब इस देश में संविधान जो अनुच्छेद 19 जो इस देश के 140 करोड़ नागरिक में से हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ आप इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी बात उठा सकते हैं। और वो एनटीए के शोषण के खिलाफ पूरे देश भर का नौजवान सड़कों पर आया था, शांतिपूर्ण उसका प्रदर्शन था, लोकतांत्रिक प्रदर्शन था, रचनात्मक प्रदर्शन था, जिस प्रदर्शन ने हमारे हमारे सदन के लोगों को जेंजी वर्ड सिखा दिया, उस प्रदर्शन पर आपने गोलियां चलवा दी। और किस तरह से दोहरी बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ पहले गन चलाने की पूरी कानून है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चला नहीं। तो क्या एम्स के डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं? जो एक हरियाणा का युवा था वो झूठ बोल रहा है, उसकी तस्वीरें किसने नहीं दिखी? तो इतनी हृदयहीनता, आप होंगे दरबारी, आपका काम होगा कि आप सरकार की हर कथनी करें। ये देश हमेशा सवालों से चला
9: है। और लोग तो इस पर 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मल्लू जी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि भाई हम तो झारखंड के मामले में भी सवाल उठा रहे हैं, वहां सरकार 3 राउंड की बातचीत कर चुकी है छात्रों से।
6: उसका हर्ष क्या हो रहा है? सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं हेमंत सोरेन? क्या छुपाना चाहते हैं? देखिए निखिल जी को मैं एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। 250 पुलिस कर्मी किस तरह से इंजर हुए थे ये भी पूरे देश ने देखा, और बेचारे उनके परिवारों को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। नहीं, देखिए इस तरह का उकसाना आप लोग हमेशा किए थे, याद रखिए आप लोग इसी तरह उकसाते थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर कब डिबेट होगा, मणिपुर पर कब डिबेट होगा। जब डिबेट होता है आपके पास कोई तथ्य नहीं होते हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं होते हैं, आप लोग कुछ छुपाकर इस डिबेट में निकल जाते
8: हैं। जाके संवाद करें बच्चों से, कोई मुंह छुपा के नहीं निकलता। आप सवालों का जवाब दीजिए।
6: स्टेट गवर्नमेंट को
9: एक करके बोलेंगे। ठीक है मनोज गागर जी और तुहिन जी होगी, मैं ठीक है मल्लूक नागर जी, क्या आप लोगों को जरा से भी चिंता है इस देश के नागरिकों की, जो संसद में तमाम जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सत्ता पक्ष विपक्ष में उनको चुनकर भेज रहे हैं, उनके टैक्स से पैसा जा रहा है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है? एक आंकड़ा भी जो है निगत ने दिया भी था, लेकिन संसद चल ही नहीं पा रही है। किसकी विफलता है? आपकी विफलता है या ऑपोजिशन की विफलता है?
10: सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की पूरे देश के आदिवासी और सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 600 किलोमीटर बाउंड्री पे गुजर बकरवाल, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, और जहां जुल्म हो रहा है झारखंड, वो आदिवासी लोग हैं सब। तो कम से कम आज विश्व दिवस पे तो झारखंड की सरकार को शर्म आनी चाहिए। और जो हमने यहां देश में देश के जेंजी युवा और छात्रों के लिए करा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाया, इन्हें सारी स्टेटों में, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो यहां पे अपना झारखंड हो, सब में इस्तीफा दिलाना चाहिए। और जो आपकी बात आई संसद की, तो मैं राजीव जी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, संवैधानिक तरीके से देश की संसद की परंपरा में सरकार एक पक्ष है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ संसद है और संसद के ऊपर सभापति है, वह 3 लोग मालिक है, संसद कैसे चले? सबसे ऊपर इस संसद के लोकसभा अध्यक्ष और देश की सरकार की तरफ से संसदीय मंत्री, और विपक्ष की तरफ से जिसको लेफ्ट विंग कहते हैं वहां अपोजिशन के लीडर। और सदन चलने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें तालमेल बैठा करके काम चलाया जाता है। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जानकारी में लाने चाहते हैं पूरे देश की, आपके टेलीविजन के माध्यम से 14 दिन पहले ऑनलाइन फीड हो जाते हैं, और पहला जो 1 घंटा होता है 11:01 भी नहीं, 11:01 और 12:01 पहले तक, यानी कि पूरे 1 घंटे, वो 14 दिन पहले जो प्रश्न आते हैं किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, मजलूमों के, उनको नहीं चलने दे रहे ये। तो क्या देश की जो गाढ़ी कमाई का पैसा है लोगों का वो वेस्ट हो रहा है। सत्रहवीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चलने दिए, इस 18वीं लोकसभा के 8 सत्र पहले ना के बराबर चले हैं। अगर हां की संख्या कितनी ना की संख्या कितनी और बिल पास हो जाए तो फिर विपक्ष के नेता का क्या रोल है और फिर देश की संसद का क्या मतलब है। और 20 लाख के करीब लोग चुनके भेजते हैं, जाओ हमने अपनी अधिकृत करी तुम शक्ति तुम जाओ और हमारे लिए देश के लिए काम करो, और ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन। हम जैसे लोग जो देश की संसद में काम करना चाहते हैं हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो पूरा देश देख रहा है, ऐतिहासिक बिल आने वाला है जो 283 लेडीज को देश की आबादी 147 करोड़ की आधे 73.5 करोड़ में से 283 एमपी लेडीज बन के आएंगी परिसीमन बिल के बाद, और ये उसको भी नहीं लाना चाहते।
11: नागर जी वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो 2023 में पास कर चुके हैं, इसे लागू क्यों नहीं किया।
10: राजीव जी परिसीमन के बगैर वो नहीं हो सकता, और परिसीमन में 283 लेडीज आ रही है और कांग्रेस की सबसे बड़ा परिवार गांधी परिवार, दो लेडीज और दोनों एमपी, और 147 करोड़ के आधे 73.5 करोड़ में से 283 लेडीज आए, तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती? क्या कांग्रेस पूरे देश के लेडीज के खिलाफ है? क्या चाइना में जो है 2977 एमपी है, तो यहाँ क्या 850 भी ना हो आजादी के समय से?
11: ठीक है निगत, मैं चाहता हूँ इस पर आप पर्टिकुलर जवाब दें। वो कह रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि एफसीआरए लागू, आप नहीं चाहते कि विदेशी फंडिंग नियंत्रित हो, आप महिलाओं के पक्ष में नहीं है, आप परिसीमन के पक्ष में नहीं है, इसीलिए आप लोग हंगामा कर रहे हैं।
7: राजीव जी बड़ी देर से बड़े आरोप लग रहे हैं, तुहिन जी ने भी पहले मेरा नाम लिया था और अब मलूक भाई ने भी लिया है। पहले कुछ सवालों के जवाब लिख लूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये फर्स्ट आवर भी नहीं चलने दे रहे, ये सारी डिस्कशन होती है। मैं तो सिर्फ और बहुत एक बेसिक सवाल है मेरा मलूक भाई से भी और तुहिन जी से भी कि मुझे आज ये बता दो कि क्या जिस माँ ने अपना बच्चा खोया क्योंकि सरकार की वजह से पेपर लीक हुआ था, क्या उसकी माँ क्या उसके पिता डिजर्व नहीं करते, उनका हक नहीं है कि अमित शाह जी उन्हें जवाब दें कि उन बच्चों पर लाठीचार्ज पैलेट गन क्यों चलवाई गई जिन बच्चों ने उन मृत बच्चों को, मैं तो कहूंगी वो शहीद हो गए बच्चे, उनको मृत बोलना मुझे तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि किसी का बच्चा है वो देश के लिए शहीद हो गए, उनकी कुर्बानी से आज शायद पेपर लीक के लिए सरकार कुछ सोच रही है और शायद कुछ कर दे, तो उन्होंने तो शहादत दी।
11: 250 पुलिसकर्मियों के जख्मों का क्या,
7: माताओं को उनके पिताओं को जवाब मिले, उनके जो 7 समर्थक खड़े हुए थे उनके लिए जवाब मांग रहे थे सरकार से और उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, क्या
11: 250 पुलिस कर्मियों के जख्मों का निगत क्या, उस पर भी जवाब दीजिए, उसको भी ऐड करिए।
7: इन्होंने तुहिन भाई ने अभी कहा पार्लियामेंट में रहते रहे तो भाग क्यों रहे हो, वही तो कह रहे हैं मुखौटा क्यों पहना है, छुप क्यों रहे हो, किससे छुप रहे हो, सदन में आओ, युवा जवाब मांग रहा है, यूथ सवाल पूछ रहा है, ऑपोजिशन सवाल पूछ रही है, बर्बरता करने का आदेश किसने दिया, गृह मंत्री तब से क्यों गायब है, दाल में कुछ काला क्यों लग रहा
11: निगत,
7: है
11: निगत, इसका निगत, जवाब ठीक है निगत, क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले को आप कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का, इस पर डिस्कशन हो गया है, ठीक है आप गृह मंत्री अमित शाह के उनसे बयान की मांग कर रहे हैं, ठीक है वो मांग, लेकिन उसके बावजूद मतलब पूरा का पूरा संसद की कार्यवाही धुल जाए क्या, ये सही है?
10: मैं एक बात कह रहा हूं, हमारे देश के गृह मंत्री भी संसद में आएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी संसद में आएंगे, पर ये कांग्रेस की प्रवक्ता बहन हमारी ये रिकॉर्ड देख ले पिछला, जब भी हंगामे हुए और जब भी देश के प्रधानमंत्री या गृहमंत्री सदन में जाके बयान दिया ये बिल्कुल छोड़ करके हाय हाय करके 3-4 मिनट चले जाते हैं, खाली पड़ी रहती है सीट। तो जब ये सदन नहीं चलने देना चाहते और जब वो आए तो जब क्यों सुनना नहीं चाहते, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरी बात ये है, हमें पूरी हमदर्दी अगर किसी को जरा सी चोट भी पहुंची है, जैन जी को, युवा को, स्टूडेंट को, लेकिन उसकी आड़ में जो ये असामाजिक तत्व जो पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में अमृतसर के कमिश्नर ने आईपीएस ऑफिसर ने एक बयान दिया उसमें कुछ असामाजिक तत्व और आपराधिक प्रवृत्ति के उग्रवाद से जुड़े हुए लोग थे जो देश में ऐसी हरकत करना चाहते थे, जो नेपाल और ये अपना श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह करते, तो क्या उनको ये सपोर्ट करना चाहते
11: हैं?
10: क्या जिन लोगों को दूसरे पुलिस वालों को भी चोटें लगी क्या उनको हमदर्दी है नहीं है? और झारखंड में क्या कर रहे हैं? इनका दोगला चेहरा सामने आ गया झारखंड के बारे में जवाब दे दे, क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रहे, क्यों नहीं स्टूडेंट का ध्यान रख रहे?
11: इस्तीफा, सीबीआई जांच, रिफॉर्म, परीक्षा रद्द, कितना मुश्किल है इन मांगों को मानना, इसमें इतने दिन 16 दिन क्यों लग रहे हैं? ठीक है, बोलिए
7: राजीव भाई, आई विल आंसर दैट एंड आई विल कम टू दैट। आपने एक बहुत बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट कही और उसको मैं एक बार काउंटर करना चाहूंगी। आपने कहा ये मामला खत्म हो गया, विपक्ष इतना क्यों उठा रहा है, ये मामला खत्म नहीं हुआ।
11: मैंने कहा लंबा क्यों खींच रहे हैं जिससे संसद की कार्यवाही पर असर पड़ रहा है?
7: बिल्कुल भी नहीं, ये मामला खत्म नहीं हुआ है और ये मामला खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि ये वही देश का यूथ है जो ये भी पूछ रहा है पेपर लीक के साथ साथ कि ऐसा क्यों है कि अमृतकाल का
10: हमें कांग्रेस पार्टी
7: मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ। ये वो यूथ है जो ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है कि अमृतकाल के बड़े बड़े सपने दिखाकर 40% बेरोजगारी युवाओं में है, ग्रेजुएटेड जो ग्रेजुएटेड युवा है 67% अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी उसमें है, ये बताइए ना। ऐसा क्यों है कि सिर्फ 7% युवा है जिसे एक साल में, जो ग्रेजुएटेड युवा है जिसे एक साल में जॉब मिल पाती है, नहीं तो लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही। ये वही युवा है जो पूछ रहा है कि बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आज भी 22,000 पद खाली क्यों है। ये वही युवा है जो पूछ रहा है कि
11: पर्टिकुलर झारखंड पर जवाब दे दीजिए, एक छोटा सा जवाब झारखंड पर भी दे ही दो।
7: देखिए सरकार ने मल्टीपल सेटिंग्स बैठक करी है स्टूडेंट्स से,
11: एनएसयूआई क्यों नहीं जा रहे
7: जाकर मिले हैं। सुनिए, सरकार खुद बातचीत करने को तैयार है और चर्चा हो रही है और सीबीआई की जांच अगर जरूरी लगेगी तो जरूर होगी। आरोपी जल्दी, अभी हेमंत सोरेन जी ने भी कहा कि आरोपी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। हमें आप नहीं ऐसा देखेंगे कि झारखंड में आप एक और ऐसा प्रदर्शन
11: आपके पास आपकी बात आ गई तो
6: देखिए राजीव जी, मैं कांग्रेस के झूठ और छल को आड़े हाथों लेने में यकीन रखता हूं। एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या किया पिछले 2 सप्ताह में, आपको भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। मैं इनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो ड्रामा चल रहा है इसका कारण एक ही है, आखिर क्या डर है इनको FCRA अमेंडमेंट बिल से? आपने भी उसके प्रावधान पढ़े, ये पूरा ड्रामा केवल और केवल FCRA अमेंडमेंट बिल को रोकने के लिए, डिलिमिटेशन रोकने के लिए, वेमेन्स रिजर्वेशन रोकने के लिए। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन कोई कुछ ऐसे फंड्स का दुरुपयोग किया है जो अब जो है जिसका दुरुपयोग खत्म होगा? दूसरा, डिलिमिटेशन रोकने का कारण इनका बस एक है कि नॉन डायनास्टिक, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आएंगे जो पारिवारिक पार्टीज की कंट्रोल को ध्वस्त कर देंगे। तीसरा, ये जो बार बार सवाल पर पूछते हैं ना कि विमेन रिजर्वेशन को क्यों नहीं पहले ही लागू कर दिया, देखिए डिलिमिटेशन ड्यू था, 2026 में ड्यू हो जाता है और अगर विमेन रिजर्वेशन उससे पहले लागू हो जाता है तो विमेन रिजर्वेशन बाई रोटेशन 15 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को विमेन के लिए आवंटित कर देगा। अगर उसके उपरांत डिलिमिटेशन होता है तो जो 15 साल के लिए आवंटित हुआ है उसको तुरंत तोड़ना पड़ेगा, 5 साल के अंदर ही वो पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। तो ये छोटा सा लॉजिक कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आता है? कांग्रेस ये सब केवल इसलिए कर रही है क्योंकि घबराई हुई है कि उसका कंट्रोल, उसके परिवार का कंट्रोल खत्म होने वाला है जब बड़ी संख्या में युवतियां और बड़ी संख्या में युवा 2029 के चुनाव में आएंगे लोकसभा में।
11: ठीक है मनोज काका, FCRA, परिसीमन महिला आरक्षण, आप तो आरक्षण समर्थन भी है, तो इन तीनों पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है?
8: देखिए राजीव जी, इधर उधर की बात बहुत करी जा रही, वो जो बात है ना कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। FCRA बिल और महिला बिल इस देश में कब पारित हुआ था इनको पता है? 2023 में जब महिला बिल पारित हुआ, और डिलिमिटेशन कमीशन कब बनता है? जब देश में हमारे संविधान में अनुच्छेद में उल्लिखित है कि कभी भी डिलिमिटेशन कमीशन सेंसस के बाद बनता है। तो जब आपको इतना जल्दी है तो 2021 में आपने सेंसस क्यों नहीं करा दिया? आप 2026 तक सेंसस क्यों आपने रोक के रखा? जब आप एक बार 2023 में बिल पारित हो गया तो उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया सरकार? तो सरकार स्वयं चाहती है, असल में पूरी सरकार जो है पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही अपने अपने तरह तरफ से गिरवी रखना चाहते हैं। ये लोग अपने हिसाब से डिलिमिटेशन करके संसदीय क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का वो क्षेत्र बनाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से जो सरकार सिर्फ इस देश में निर्वाचन आयोग के धांधली से जीतती हो, वो सरकार यही चाह रही है कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही गिरवी कर ले। और जो आपने कहा कि फंड का दुरुपयोग हो रहा है, एफसीआरए सबसे ज्यादा इस देश में पीएम केयर फंड का दुरुपयोग हो रहा है। अगर पारदर्शिता निष्पक्षता में इतना विश्वास करते हैं नरेंद्र मोदी, तो आप पीएम केयर फंड को जो इस देश के एक एक नागरिकों के पैसे से है, उसको आप आरटीआई से बाहर क्यों किए? आप वो तो हम सबका पैसा है, हम सबने उसमें दिया है। आप इतना पारदर्शी बन रहे हो, आप गौ रक्षक बनते हो, गौ काटने वाली कंपनियों से 200 करोड़

0: पारदर्शिता और शुचिता के वो बनते हैं। आप कहां से लोकतंत्र और लोकतंत्र का जब लड़ाई लड़ी जा रही थी आजादी की, तब तो आप अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनकी दास्ता कर रहे थे। पूज्य गांधी ने सावरकर से पूछा तो कहा कि नहीं नहीं, हमारी सांस्कृतिक लड़ाई, हम राजनीतिक लड़ाई में आपका साथ नहीं दे पाएंगे और आप बनेंगे। आपकी परंपरा यह रही है। आप अगर निष्पक्षता और पारदर्शिता चाहते हैं तो बताइए कि एनटीए में विगत 14 सालों में कितना पैसा आया और उसको आपने भी, उसको भी आप आरटीआई से हिसाब नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? आप देश में शिक्षा पर इतना 2.4% ही बजट क्यों खर्च करते हैं? अपने चेहरे चमकाने पर तो 10 घंटे में मोदी जी जाते हैं सऊदीया तो 12 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 6812 करोड़ रुपया, लगभग 3 करोड़ रुपया रोज योगी जी अपना चेहरा चमका रहे और विज्ञापन विकास पर खर्च करते हैं।
1: 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा कि व्यवस्था पर नियंत्रण करना आपका मकसद है, वो कह रहे हैं।
2: नहीं देखिए, ये मैंने क्या बकवास करते, देखिए 1.39 लाख करोड़ इस साल का, पिछले साल का एजुकेशन बजट था केंद्र का। नहीं फैक्चुअल बैठे आप साबित करिए, 12 करोड़ अभी आपने क्या कहा फेशियल में खर्च किया प्रधानमंत्री ने, है कोई प्रमाण आपके पास? ये फैक्ट है आपका, लाइए आप मुझे बिल दिखाइए।
0: एक दिन प्रधानमंत्री अरब के यात्रा पर जाते हैं,
2: प्रमाण आपके
0: एक होटल में 10 घंटे का है, सरकार का जवाब है 10 घंटे का बिल 11 करोड़।
2: शिक्षा के ऊपर बात ही नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी का वो फेशियल पर नहीं है,
0: तो बस कर सकते
2: सुरक्षा पर होगा, दूसरी चीजों पर क्या बोलते रहते हैं?
0: नैतिकता और साधुता का चेहरा
1: मनोज जी, आपके बहुत सारे सवाल एक बार सुन लेते, तुहिन बोलिए।
2: देखिए राजनीति समाजवादियों को शिक्षा के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 1992 में जो देश का किसी राज्य ने जो पहला एंटी कॉपिंग बिल लाया होगा, एक्ट लाया होगा, राजनाथ सिंह उस समय जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश, जैसे इनकी सरकार आई मुलायम सिंह यादव जी ने उस बिल को रद्द कर दिया था, उस एक्ट को रद्द कर दिया था 2017 में। 2017 के पहले के आप वीडियो देख लीजिए, चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव कह रहे थे कि थोड़ी बहुत चीटिंग की आजादी होनी चाहिए,
1: प्लीज इंटरप्ट ना करें। मनोज जी मैं आपको समय दूंगा, देखिए मैं जब आप बोल रहे थे मैं सबको पूरा समय दे रहा हूँ। हाँ तो इन
2: ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 2017, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ, 2017 के चुनाव कैंपेन के पहले तो अखिलेश यादव का वीडियो है, कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत चीटिंग करने देनी चाहिए बच्चों को, अन्यथा अन्याय होगा। तो ये तो इन लोगों की नियत है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस का नकल करते हैं सावरकर को, ये लोग पहले गाली नहीं देते थे, आज आपके शो पर सावरकर को अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो कांग्रेस ही बन जाइए ना, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कांग्रेस पार्टी, आपकी कोई अपनी आइडेंटिटी तो है नहीं आजकल।
1: ठीक है 30 सेकंड बोलिए मनोज जी, फिर मैं
0: मलूक जी के पास। हमारी आइडेंटिटी संवैधानिक आइडेंटिटी है, आप देखिए जो एंटी कॉपी बिल की जो बात कर रहे हैं वो ये बिल था कि उत्तर प्रदेश में नकल के बाद छात्रों पर मुकदमे करके उन्हें जेल भेज दिया जाता था, उन पर आपराधिक मुकदमे होते थे, और वो हटाया था हमारी सरकार ने, श्रद्धेय नेताजी ने, और आप में इतनी हिम्मत था तो वही बिल को लाइए। आप इस तरह से छात्रों को उत्तर प्रदेश में अपराधी बनाया जा रहा था, उनको जेल में ठूसा जा रहा था, उसके खिलाफ बिल लाया था समाजवादी पार्टी ने। आप लोग झूठ बोलते हैं।
1: इस पर चर्चा कभी और कर लेंगे, क्योंकि मैं फिर एक बार संसद पर आना चाहता हूं जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है आम आदमी का। मैं एक बार फिर से वापस इसी बहस पर आते हैं।
0: सुन लीजिए राजीव जी, 5 सेकंड दीजिए,
1: चलिए 5 सेकंड कंप्लीट कीजिए,
0: 5 सेकंड दीजिए। देश में अगर कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री रहे हैं भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 22 लाख लैपटॉप बांटा है, मोदी की 10 साल की सरकार, योगी की 9 साल की सरकार भी 5 लैपटॉप नहीं दे पाई है इस देश के छात्रों।
1: ठीक है मलूक नागर जी, मतलब हमारे देश में सत्ता पक्ष के पास भी और अपोजिशन के पास भी एक से बढ़कर एक वक्ता है, अच्छे अच्छे वक्ता हैं, जानकार वक्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिबेट नहीं हो पाती है, संसद चल नहीं पाती है, वहां पर सिर्फ नारेबाजी हो जाती है।
3: राजीव भाई मैं सीधी सी बात कह रहा हूं जो आराम से सबके समझ में आ जाए, आपके टेलीविजन की स्क्रीन पे 4 लोग हैं हम,
1: हाँ।
3: और 4 में से मुझे छोड़ दो तो 3 में से ना कोई सा विधायक रहा ना सांसद रहा, तो क्या अगर पार्लियामेंट में सीट ज्यादा हो जाएं 543 की जगह और करीब 850 हो जाएं और इन तीनों का भी मौका मिले देश में सांसद के रूप में या प्रदेशों में विधायक के रूप में, तो इन्हें क्या दिक्कत है? दूसरा, जब देश आजाद हुआ 31 करोड़ लोग थे।

0: छह करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ यहां रहे, तो जब भी 450 के करीब एमपी थे, और 1970 में 543 हुए, और जब केवल आबादी 70 करोड़ के करीब थी, और आज 147 करोड़ है और एमपी 543। चाइना हमारी बराबर में है, 2977 एमपी, तो बड़ी संसद क्यों बनाई फिर? इतने लोग राजनीति में हैं, लेडी जाना चाहती हैं, सपने देख रहे हैं, क्या नहीं चाहते उनके पूरे हो? एक एक कॉन्स्टिट्यूशन 30-30 लाख 50-50 लोग संख्या है, तो क्या वो लोग 20 लाख पे आगे लोगों के लिए ज्यादा काम करें? क्या ये लोग ये नहीं चाहते? देखिए, मेरे बीच में कूदने का मतलब है कि इनको मेरी बात में समझ नहीं आ रहा, या मेरी बात झिल नहीं रही, या मेरी बात सही लग रही है और बगैर मतलब के बात काटना चाहते। मनोज क्या कहा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम बहुत प्यारे भाई हो, तुम भी सांसद या विधायक बन जाओ, हम ये भी चाहते हैं। देश के बहुत सारे लोग और सांसद और विधायक बन जाए, हम ये भी चाहते हैं। देश के लोगों की ज्यादा खिदमत करें सांसद और विधायक बन के, हम ये भी चाहते हैं। पर तुम देश के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ, देश की लेडीज के खिलाफ रहोगे, और देश के संविधान के अनुसार देश के संवैधानिक मंदिर को बड़ा बनाए जा रहे हैं, और देश के संवैधानिक बड़े मंदिर के खिलाफ रहोगे, तो पूरा देश और देश के लोग देख
1: रहे हैं। निगत, आप मतलब आप और आपकी पार्टी के जितने भी महिला नेता हैं, उनको तो बल्कि समर्थन करना चाहिए कि एक तो आरक्षण मिलेगा, आप लोगों का नंबर भी आएगा संसद में पहुंचने का, विधानसभाओं में पहुंचने का, तो ये तो बहुत अच्छा है, आपको तो पुरजोर समर्थन करना चाहिए।
2: राजीव भाई, पहले तो मेरी मलूक भाई से, तुहिन जी से और पूरे बीजेपी से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पॉलिटिकल फसाड, विमेन्स रिजर्वेशन बिल को पॉलिटिकल फसाड की तरह, टोकनिज्म की तरह और महिला को हैशटैग की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आई रीट्रेट माई सेल्फ, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यूनैनिमसली पास हो चुका है, पारित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ मलिशियस इंटेंशंस हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशन है नहीं महिलाओं को अधिकार देने की, नहीं तो वो तभी उसी क्षण 33% आरक्षण 543 सीट्स में से महिलाओं को दे देते, और आज भी दे देते हैं। ये कंडीशंस अप्लाई, और कमिंग सून का जो बोर्ड लगाया है ना बीजेपी ने और मोदी जी ने, उससे देश की महिलाएं बड़ी हताश है और दिख रहा है उन्हें। ये वेल रेड जनरेशन है, वेल रेड जो ये Gen Z है, ये सारे बच्चे पढ़ते हैं और इनको सब पता है, डिजिटल मीडिया पे इनको सब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। इन्हें पता है कि मोदी जी ने
1: क्या दिक्कत है उसमें?
2: नहीं राजीव जी, आप अपना सवाल दोबारा दो।
1: मेरा प्रश्न ये है कि 2023 में आप पास कर चुके हैं, ठीक है, तब सपोर्ट किया था, एक बार फिर से सपोर्ट कर देंगे, क्या जाएगा उसमें, क्या दिक्कत है?
2: कर तो रहे हैं राजीव भाई, जो अमेंडमेंट करते रहते हैं, ये तो बीजेपी वाले खुद ही है ना जो अमेंडमेंट करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक अमेंडमेंट करके आप डिलिमिटेशन वाला जो आपने ये पेज फंसाया है, निकालो ना, महिलाओं को उनका हक दो ना। नाटक क्यों कर रहे हो कि हक देंगे? अरे दे दो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, जो बिल पारित होना था वो तो हो गया 2023 में, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन तो दिया है, अब नाटक क्यों कर रहे हो उसका जवाब?
1: ठीक है, तो इसका बिल्कुल इसका जवाब दीजिए कि ये परिसीमन वाला जो कील आप उसमें जोड़ रहे हैं, ये परेशानी पैदा कर रहा है।
3: नहीं नहीं, देखिए राजीव जी, लॉजिक और कांग्रेस पार्टी का दूर दूर तक आजकल कोई सरोकार नहीं है। 2023 में पूर्ण बहुमत से, हर सर्वसम्मति से ये बिल इन्होंने भी सपोर्ट किया था, तो तब इनको याद नहीं आया। अब आपको जो है सबसे पहले उस अमेंडमेंट को अंडू करना पड़ेगा, तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। खैर, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं। 2023 में इन्होंने भी सपोर्ट किया था, आपने भी देखा था, देश ने भी देखा था। अगले चार दिन इतिहास रचने का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है पूरे देश के पास। जो विपक्षी पार्टी और विशेषकर कांग्रेस को कहना चाहता हूं, आपको इतिहास के गलत साइड में दिखने की आदत हो गई है, भले विभाजन का विषय हो, आर्टिकल 370 का विषय हो, यह आपके लिए प्रायश्चित का समय है। यह चार दिन में आप जो है इसको सपोर्ट करिए, अन्यथा देश के युवा, देश की महिलाएं आपको कभी जो है माफ नहीं करेगी। प्रायश्चित का समय आपके लिए।
1: समय का छोटे छोटे रिएक्शन जल्दी से, मनोज काका जी आप भी बोल दीजिए, आप तो समर्थन करेंगे महिला आरक्षण का?
4: देखिए, ये लोग इतने दोहरे लोग हैं, इतना इन लोगों का कोई भी सब दिन के कर्म तक नहीं जाता। आज ये कितने चालाकी से 2023 में बिल पास हुआ और उसका नोटिफिकेशन इन्होंने 3 साल बचा के रखा। आज ये आदिवासी दिवस की बात कर रहे, शर्म नहीं आ रही? इस देश में सबसे ज्यादा आदिवासी कहां? मणिपुर है, 2023 से जल रहा, नगा जल रहा है, कुकी जल रहा है, मैकई जल रहे हैं, वहां के आदिवासी नहीं याद आए, हंसदेव जंगल के आदिवासी नहीं याद आए, अभी आपके संस्थान ने चैनल ने भी चलाया, बेन और केतवा के आदिवासी बेचारे आंदोलन कर रहे थे, पानी में सो रहे थे, जान दे रहे थे, वो आमरण अनशन पर थे, उन पर लाठियां भाज करके उनको खत्म करा दिया। और ये आदिवासी की बात करें, पूरे देश के आदिवासी जल जंगल जमीन उद्योगपतियों को गिरवी रखने वाले और उनको दे देने वाले लोग आदिवासी की बात कर रहे हैं, शर्म करो यार
0: जी। देखिए राजीव भाई, 543 एमपीओ की जगह अगर 850 कर दिए जाएं तो जो लेडीज हैं वो भी करीब दोगुनी एमपी हो जाएं, तो इन्हें दिक्कत क्या है। दूसरा, आदिवासी की बात करी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे मनोज काका भाई 29.4%
1: ठीक है,
0: 30 किलोमीटर में 600 किलोमीटर तक जो बगैर तनख्वाह दिए लड़ते हैं गुजर बकरवाल, वो आदिवासी हैं।
1: मुझे माफी के साथ मलुक जी आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि समय इतनी ही ज्यादा दे रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अब अगले चार दिन संसद में क्या होता हमारी निगाहें तो रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति इस देश का चाहता है कि संसद चले, वहां पर बहस हो, वहां पर उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जाएं, रखे जाएं और उनके लिए काम हो। दंगल में आप रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
4: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
6: Jahan jurm, wahin kahani. Jahan kahani, wahin saazish. Jahan saazish, wahan crime. Jurm chahe kitna hi uljha ho, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
7: I have lived through all this, what I'm seeing. Just like KPR. Good concept. Happy that has happened.
8: Fantastic experience, and we were, I was looking forward to see what I saw.
9: We have also seen a very lot of ups and downs, and that's what is being portrayed very well in this documentary.
10: Best when it is perspective and narrative of the nation.
11: It's brought back old memories.
12: Very well presented, very well encapsulated. It's a nice capsule of India as told by India today.

0: मैं राहुल गांधी से दो तीन बातें पूछना चाहता हूं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं, क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए ना उनसे बात की। हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है? शिमला में छात्रों के बीच में क्या आप जाने की हिम्मत रखते हैं? या झारखंड में महतो जी से बात किया आपने? आपकी जो दोमुही नीति है ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है।
1: निश्चित रूप से ये दर्शाता है क्योंकि राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, विदेश में जो क्लब पब उस तरह से जो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, वो यहाँ संघर्षरत कार्य पूर्वांचल से सहित प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो बघाड़ा में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो सलोरी में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो तिलियरगंज में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो मुट्ठीगंज कीटगंज चौक इलाके में रह करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके संघर्ष के बारे में उनको पता नहीं है। तो वो एक तरह से एक टूरिज्म की तरह से यहाँ पर आए हुए थे और पूरा पूरा फ्लॉप सो रहा। और मुझे बताते हुए मतलब थोड़ी हंसी भी आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन उनका लाजमी है।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: इट इज अ वेरी डेंजरस टाइम.
1: डायरेक्शन नहीं कर सकते.
2: अपने जो मुद्दे हैं, जो सत्रह जो चलाना नहीं चाहते हैं.
3: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी है.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो लाइनें लोकतंत्र की पूरी आत्मा को समेट देती हैं. लेकिन आज सवाल यही है कि सरकार के पास बहुमत तो है, लेकिन संसद में सर्वसम्मति क्यों नहीं बन पा रही. संसद के मॉनसून सत्र के तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा. और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक घोड़ा खड़ा होता है. लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मॉनसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है. संसद का एक एक मिनट कीमती है. कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती है, और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है. लेकिन अगर वही समय नारेबाजी और गतिरोध में निकल जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है, जिसमें विपक्ष के सवाल भी शामिल है. विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई पर गृह मंत्री सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं. कल प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी के हौसले बुलंद है. राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा. 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला. अमित शाह, आप ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे. राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियों और पैलेट चले, और आपने एक शब्द भी नहीं कहा. आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब देना ही पड़ेगा. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा. अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, लेकिन कई बड़े मुद्दे अब भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की वजह बने हुए हैं. विपक्ष चर्चा और जवाब मांग रहा है. FCRA संशोधन, महिला आरक्षण, परिसीमन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे विपक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर है.
5: FCRA के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं. एक दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे कल.
4: सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद को चलने भी दिया जाना चाहिए. संसद में टकराव के बीच मानसून सत्र में अब तक 4 बड़े कानून पारित हो चुके हैं. वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026. लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, विपक्ष के सवाल जरूरी है, सरकार का बहुमत भी जरूरी है. लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत तब होती है जब बहुमत कानून बनाए और सर्वसम्मति से देश को साथ लेकर चले. क्योंकि संसद में हर मिनट सिर्फ सांसदों का समय नहीं होता, उसमें 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें बैठी होती हैं. देखना यही है कि मानसून सत्र के बचे हुए दिन गतिरोध के नाम होंगे या बहुमत और विपक्ष दोनों मिलकर सर्वसम्मति के उस राह पर लौटेंगे जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री ने बरसों पहले की थी. संसद चलना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है. और विपक्ष को सुनना सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है. आज तक ब्यूरो.
5: ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया. मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे. लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया. अरे ये इतिहास है तुम्हारा. और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति. अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं।

0: दंगल के बाद अब आगे देखिए राउंड टेबल अंजना ओम कश्यप के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मानसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम महिला आरक्षण परिसीमन और एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना। सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। राहुल की प्रयागराज रैली के बाद योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया यूपी को बर्बाद, बीजेपी ने देश के साथ साथ राज्य का भी किया विकास। झारखंड में जारी है छात्रों का अनशन, बातचीत के बीच सीएम सोरेन का बयान, पेपर में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, 14वीं जेपीएससी पीटी रद्द करने पर अड़े हैं स्टूडेंट्स। और अमेरिका से तनाव के बीच सामने आया मुज्तबा खामिनी का वीडियो, ईरानी मीडिया ने किया जारी, होर्मुज खोलने को लेकर तेहरान ने 5 शर्तें रखी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जेनजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, मतलब जंतर मंतर के बाद यहां पर संवाद है। जेनजी से संवाद की बात का दबाव अब हेमंत सोरेन के पास है और बहुत सारे लोग उनके प्रतिनिधिमंडल से जा रहे हैं। जेनजी से संवाद लगातार राहुल गांधी भी कर रहे हैं। जेनजी से ही संवाद आज अगर आप देखिए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश कर रही हैं। और आज बड़ा सवाल यही बनकर सामने आ रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेनजी से संवाद की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि जेनजी ने अपनी आवाज की ताकत हर पार्टी को, हर वर्ग को, संगठनों तक को महसूस करा दी है। और इसी कड़ी में आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या अब जेन जी एक ऐसी प्राथमिकता हर पार्टी की बनेगी जिसमें उन्हें शायद इस बात का एहसास हो कि भाई परीक्षा तो ठीक से करा लो, नहीं तो हमारी सरकार ना खतरे में आ जाए। जेन जी का सर्टिफिकेट तभी बचेगा विकेट, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस राउंड टेबल में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद बीजेपी के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए हैं। और इसी राउंड टेबल में हमारे साथ अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। अरुण भारती जी जो कि सांसद है चिराग पासवान की पार्टी LJPR से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अखिलेश यादव जुड़ गए हैं जो कि छात्र नेता हैं NSUI के। और हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं जो कि डूसू में छात्र नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। एकदम पूरा ऐसा करके उन्होंने एकदम मतलब ताकत, अब यही ताकत है जो सुधांशु जी आप लोगों को देखनी है, क्योंकि ये जो अब जिसको कहते हैं assertion अंग्रेजी का शब्द है, जो अपनी ताकत ये पीढ़ी दिखा रही है, वो शायद आप लोगों को समझना पड़ेगा। और अब खैर सबको समझ भी आ रहा है, बच्चों ने ही समझा दिया है। चर्चा करेंगे कि तभी बचेगा विकेट जब मिलेगा जेन जी का सर्टिफिकेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट।
3: दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों से लेकर झारखंड के स्टेडियम तक देश ने इस बार उस जनरेशन की बुलंद आवाज की ताकत देख ली है जिसे दुनिया जेन जी कहती है।
4: हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं।
3: एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे संवाद साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनके बीच चौपाल लगा रहे हैं।
5: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी, ये आपका प्यार बना रहेगा।
6: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। Students are on the street in severe pain. They don't have work.
3: और तो और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब जेन जी के साथ वैचारिक संवाद की टेबल पर हैं।
7: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है
8: जी सर,
7: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है। तो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
8: अरे वाह बढ़िया है,
7: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील।
3: सवाल है आखिर अचानक सबका ध्यान जेन जी से बात करने, मनाने, समझाने या अपने साथ लाने पर क्यों है? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने बीते दौर की पुरानी राजनीतिक लड़ाइयों को नहीं जिया है। ये अतीत के बस्ते ढोने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो दौर है जो वर्तमान की हर एक चाल को खुली आंखों से देख रहा है और भविष्य का बारीक आकलन कर रहा है। साफ है देश का ये युवा इतिहास के पन्नों को पलटकर नहीं बल्कि आज के हालात को देखकर अपना फैसला करेगा। जेन जी के वोट का रिमोट अब पुराने नारों से नहीं बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों के आज के एक्शन से कंट्रोल होगा। इसलिए आज हमारी बड़ी राउंड टेबल पर सवाल एकदम सीधा और चुपता हुआ है, जेन जी का सर्टिफिकेट तभी बचेगा विकेट।
2: चर्चा की शुरुआत सांसद जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्या अब ये तमाम पार्टियों को एहसास हो गया है, बीजेपी को भी, कि भाई देखिए जिनको शुरू में मतलब अनदेखी की जा रही थी ना छात्रों की, उनसे बात करना पड़ेगा, उनसे एंगेज करना पड़ेगा, और अगर अपने अपने किले को मजबूत रखना है तो जेन जी से एंगेज करना पड़ेगा।
9: देखिए जो आपने कहा जेन जी, तो इसके बारे में जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस समय कोई जेन जी से बात हो रही, तो भारत को ही नहीं समझता। भारत में तो अनादिकाल से आज तक, ये बताइए कठोपनिषद में जाकर सबसे पहले ब्रह्म विद्या किसने बताई? नचिकेता ने, जो बालक था 16 साल की आयु में जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण वेदों को आत्मसात कर लिया था। उसके बाद मध्यकाल में छोड़िए, अभी 125 साल पहले की बात है, स्वामी विवेकानंद 29 साल की उम्र में जब अमेरिका में गए तो शिकागो के अखबारों ने क्या लिखा कि इस 29 साल के युवा सन्यासी के पास लगता है ज्ञान का वो सागर है जिसकी एक बूंद मिलाकर भी हमारे सारे लोगों के पास नहीं है। अब आप उसके बाद आइए आजादी के समय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, बागा जतीन, सचिन नाथ सान्याल, ये सब क्या थे? 19, 20, 21, 22, 23 साल के नौजवान थे। आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन क्या हुआ? जेपी का मूवमेंट, जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने, क्रांति द्वार पर आई है, वो भी था जिसने भारत की राजनीति की धारा बदल दी, वो राम मंदिर आंदोलन। वो कौन थे बच्चे जिनके लिए कहा गया था वो चढ़ तो गए थे गुंबद पे मगर गोली मारी गई और वो नीचे गिरे आकर कान से सटा सटा के गोलियां मारी गई, उन्होंने भारत की राजनीति बदल दी। तो हमेशा युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं, नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते हैं, तब करने करके शरसंधान जवानी जागा करती है। और आज देखिए
2: तो ये विपदा है ना, परीक्षा परीक्षा व्यवस्था विपदा है ना, आप खुद ही कह रहे हैं।
9: आज क्या है? आज कौन है? भारत ने फिजिक्स का ओलंपियाड में 5 गोल्ड मेडल के साथ ज्वाइंट ही सही टॉप किया है। अगर आप देखें मैथ्स के ओलंपियाड में 3 गोल्ड मेडल। भारत का जेंजी कौन है? विक्रम 1 फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर का जो स्पेस में सैटेलाइट सेटल हो गया और स्काई रूट कंपनी की एवरेज है 28। भारत का जेंजी कौन? गुकेश डोमराजू 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन। भारत का जेंजी कौन? वो देवव्रत महेश रेखे जिसने 19 साल की उम्र में शुक्ल यजुर्वेद का दंड कंपारण किया और पहली बार इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप में मेंस का भी चैंपियन और वुमेन्स का भी चैंपियन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा, और इसके लिए अगर सबसे गंभीरता से आइए परीक्षा के विषय पे,
2: एक सेकंड आपको टोक रही हूं क्योंकि आज जेन जी की बात हो रही है, तो ऋषभ शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ बहुत स्वागत है आपका आज तक पर, और ऋषभ आप संस्थापक भी हैं IIMUN के और छात्रों के साथ आप लगातार संवाद करते हैं, हालांकि आज मुझे लग रहा है कि जो जेन जी है वो सुधांशु जी हम लोग को आउट नंबर कर रही है, तो ऋषभ भी यहाँ पर मौजूद हैं और 3 यहाँ पर युवा नेता भी हैं। अजय जी का मुझे पता नहीं वो अपने आप को कहाँ रखेंगे, आपका एज मैं नहीं पूछूंगी लेकिन
9: बाकी मैं तो टीचर भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने दोनों तरफ से देखा है, छात्र के रूप में भी देखा है और इंजीनियरिंग का ही रहा हूँ। तो जो नीट के बच्चे हैं ना, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले, तो मैंने उसको दोनों तरफ से महसूस किया है, एज ए स्टूडेंट भी कंपटीशन के बाद और एज ए टीचर भी।
2: अब मैं यहाँ पे बस ऋषभ को मैं कंग्रेचुलेट पहले करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया ऋषभ मोहन भागवत।
10: थैंक यू अंजना जी, थैंक यू अंजना जी कि आपके शो पे आपने बुलाया और इंटरव्यू के बारे में बात की। खाली एक ही चीज करेक्ट करूंगा कि मैं मिलेनियल हूँ, मैं जेनजी और जेन अल्फा के साथ काम करता हूँ, पर मैं खुद हूँ मिलेनियल। पर आपने ये बोला कि मैं जेनजी दिखता हूँ तो अच्छा है,
2: कॉम्प्लीमेंट समझिए, कॉम्प्लीमेंट समझिए इसको, कॉम्प्लीमेंट समझिए। अब सुधांशु जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास।
9: अब देखिए जो नीट का विषय यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने आने के बाद किस किस प्रकार से चीजों को व्यवस्थित किया। एक छोटी सी बात, आज नेट सब कुछ सोशल मीडिया पे है ना, याद करिए जीबी की कॉस्ट क्या थी, 290 रुपए पर जीबी पर मंथ, आज क्या है 19 रुपए। और अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रॉडबैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस वो अलग है। जब नीट नहीं था तो क्या होता था, प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें नीलाम होती थी 25 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए में अंडर ग्रेजुएट की, और मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट की तो 1-1 करोड़ तक जाती थी। गरीब सामान्य मध्यम वर्ग और का बच्चा सोच ही नहीं सकता था कि वो 25-50 लाख 1 करोड़ देके एडमिशन पाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज तमिलनाडु के बहुत से लोगों ने कहा नीट खत्म कर देना चाहिए, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र में वो कॉलेजेस किसके हैं, किस पार्टी से जुड़े नेताओं के हैं,
2: तो
9: जो सैकड़ों करोड़, भाई तो कह रहा हूं सैकड़ों करोड़ पर डे कमाते थे, बंद हो गया नीट आने के बाद, कैपिटेशन फी के थ्रू एडमिशन खत्म। इसीलिए तन बदन में आग लगना कहावत होती है, ये तन बदन और धन में आग लगी है, पीछे यह भी एक रहस्य है, इसे भी आज के जनजी को समझना चाहिए कि मूल स्रोत कहां से आ रहा है। और इसीलिए वही लोग और वही पार्टियां ज्यादा एक्टिव हैं जिनके लोग नीट आने से पहले सैकड़ों करोड़ पर डे कमाते थे, किसकी कीमत पे, उन गरीब बच्चों की कीमत पे। जैसे बाड़मेर में राजस्थान में एक दिहाड़ी मजदूर लखाराम की बेटी का एडमिशन हुआ है, विशाल तिवारी लखनऊ का जिसका पिता ऑटो ड्राइवर है उसका एडमिशन हुआ है। ये कभी 25 लाख 50 लाख वाले में सोच सकते थे? इसलिए विचार करें, मैं जनजी से कहूंगा लॉजिकली करिए, कंपैरिजन करिए, फिर जाके कंक्लूजन ड्रॉ करिए।
2: ठीक है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे अकम्प्लिश करते हैं, लेकिन इसलिए नीट का पैटर्न नहीं बदला था कि पेपर लीक हो जाए ना सुधांशु जी। और अब तो ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, इस इंटरव्यू में मोहन भागवत जी ने क्या बीजेपी को आईना नहीं दिखाया जब उन्होंने कहा कि बच्चों से पहले बात करनी चाहिए थी, जब उन्होंने कहा कि वो एंटी नेशनल नहीं है, कोई भी अगर व्यवस्था के खिलाफ बोले तो सबको एंटी नेशनल ब्रांड मत कर दीजिए, क्या एसेंस था उनकी बातों का, क्या ये नहीं था?
10: क्या असेंस था वो जान, वो प्रश्न उनके लिए ज्यादा उचित रहेगा और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनके लिए ज्यादा उचित रहेगा। मैं तो छात्रों के साथ काम करता हूँ और मैं खाली एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये जेनजी के प्रोटेस्ट थे, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर में नहीं है, ये झारखंड में है, ये राजस्थान की 8वीं 9वीं कक्षा की लड़कियां बैठी है और वो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे पास स्कूल में टीचर नहीं है। ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स आज बन गए हैं भारत में, पर 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी है। आज ये बात भी सही है कि 1 लाख स्कूल में हम लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है, हम लोगों के पास 15,000 स्कूल में अभी तक वी डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी बात भी जरूरी है रखने के लिए। और जो लोग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, वो लोग एजुकेशन कि जब प्रोटेक्टर बनते हैं या फिर यूथ के बारे में बात करते हैं और यूथ के लिए बोलते हैं, तो वो पॉलिटिसाइज कर देते हैं पूरे विषय को कि किसी को हटाओ किसी को लेके आओ। पर एक्चुअल जो इशू है, जो नीट का इशू है, जो सीबीएसई का इशू है, जो फिक्स करना है, वो इशू फिक्स नहीं हो रहा है। सिर्फ कमेटी पे कमेटी, मेरा सुझाव भी ये था कि कमेटी बनाए, बट जो लास्ट कमेटी थी वो कमेटी के राधाकृष्णन जी की जो कमेटी बनी थी उसमें से 160 जो सजेशन दिए थे उसमें से 57 सजेशंस आर ओनली इम्प्लीमेंटेड फुल्ली, तो बाकी की सजेशंस भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। तो मैं उम्मीद यही रखता हूँ कि एक्चुअल में जेन जी और जेन अल्फा की हम लोगों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी 40 करोड़ हो गए हैं, जेन जी इज 40 करोड़ पीपल। तो जेन जी जो है उनकी जो मांगे हैं उनके साथ आप बातचीत करिए, संवाद कीजिए और संवाद से समाधान निकालिए। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को। जी
2: बिल्कुल, संवाद करिए और उसी से रास्ता निकलेगा। अब मैं अजय जी आपके पास आ रही हूँ, हालांकि लेकिन ऋषभ भी ये कह रहे हैं कि किसी का इस्तीफा, आप लोगों ने सबसे बड़ा अचीवमेंट बना दिया कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, सबसे बड़ी विक्ट्री हो गई, लेकिन व्यवस्था में क्या बदलाव का आप दबाव बना पाए, क्योंकि बिल पर तो अच्छे से चर्चा ही नहीं। अब आप सोचिए कि लोकसभा की कार्यवाही हो नहीं रही है, कितने सारे बिल ध्वनि मत से पास कराए जा रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, फिर कौन तय करेगा?
11: बहुत अच्छा प्रश्न है, और शिक्षा सुधार प्रणाली कैसे हो ये बहुत पूर्ण है, और भागवत साहब ने भी जो बात कही है ठीक है कि सुधांशु भाई को हो सकता है इसकी जानकारी होते हुए भी वो छुपाना चाहें, उन्होंने भी क्या कहा कि संवाद और सुधार होना चाहिए, उन्होंने बात रखी। अब ये उसी जेनजी के बारे में जिन जेनजी ने प्रदर्शन किया उसको एंटी नेशनल कहने वाले की एक लंबी फहरिस्त है। किसी ने वायरस कहा भाजपा वालों ने, किसी ने गुमराह कहा, किसी ने तो गट्टर का कीड़ा तक कह दिया। भाजपा के ऑफिशियल पदाधिकारी और सांसदों का ये रूप है। तो अब ये संवाद इस तरीके से करना चाहते हैं, लाठी डंडों से, कील लगे लाठियों से, करेंट बैरिकेड में लगाकर, उन पर पेलेट गन चलाकर, या संवाद का तरीका होना चाहिए वाद विवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है। अब ये आपस का कंफ्लिक्ट है, पहले इसको क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, संवाद कैसे होगा? 12 सालों में सरकार है, मैं आरएसएस के भी साथियों से जरूर ये बात पूछना चाहता हूँ, 12 साल में क्या कभी यही मोहन भागवत जी ने या बाकी लोगों ने परीक्षा सुधार पर कभी कोई चर्चा करने का प्रयास किया? कभी जो परीक्षा में धांधली होती रही है इस पर कोई सरकार से प्रश्न करने का काम किया? कोई मांग नहीं है आज तक उठा करके रिकॉर्ड में दिखाएं। सरकार किसी की भी हो सकती है, यदि गलती हो रही है तो उस पर डिमांड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये संसद क्यों नहीं चल रहा है? सिर्फ दो बातें हैं, बार बार हम एक मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी संसद में आएं, बात रखें। ये मंदिर है लोकतंत्र का, खुद कहते हैं और सच्चाई है। क्या उस मंदिर में आने से डर लग रहा है, या वो मंदिर अहंकार में नहीं आना चाहते हैं? ये दो में से एक कारण हो सकता है। ये बताएं कि भाई वो लाठी डंडे जो चले हैं, पैलेट गन चले हैं, आखिर किसने चलवाए, ये कौन सा बड़ा मांग है, इसको आकर जवाब देना चाहिए। जवाबदेही तभी तय होगी ना, पहली बात। दूसरी बात, जो सुधार की बात की है और अभी चर्चा लंबी हुई,
2: पहले आपने क्या शर्त रखी थी?
11: मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी,
2: पार्टी ने क्या शर्त रखी थी? छात्रों ने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब हम लोग चर्चा करेंगे, रखी थी या नहीं? अगर मैं गलत हूं तो बता।
11: एकदम बहुत अच्छी बात आपने कही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, परीक्षा सुधार पर चर्चा हो, और इस बीच में लाठी चार्ज उसी दौरान हो गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 3 मई जब नीट का परीक्षा जब ये हुआ था, लीक हुआ था पेपर लीक, तब से हम मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह से लाठी चार्ज और बच्चों पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, उसकी जिम्मेदारी तो बनती है ना, जिम्मेदार तो कोई ना कोई होगा ना, जवाबदेह तो होगा। और पार्लियामेंट के लिए अंतिम बात, आपने जो भी चर्चा अभी की है, हमारी मांग क्या है? पैलेट गन जिसने चलाया उस किसके आदेश पर चलाया, उसको आप चर्चा में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आखिर बच्चों पर टीयर केस किसी ने तो कहा होगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? सुधार की बात की है, राधा कृष्णन कमेटी ने बनाया था इन्होंने टास्क फोर्स, हम लोगों ने उस पर डिस्कशन भी किया, उसमें 101 रिकमेंडेशन दिया। उस रिकमेंडेशन में से 9 रिकमेंडेशन अभी जो नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में जो टास्क फोर्स बना है, उसी में से 9 रिकमेंडेशन के लिए ये समिति गठित कर दी, और उस 9 में से 7 ऑलरेडी वो रिकमेंडेशन दे चुका है राधा कृष्णन कमेटी ने, 2 आंशिक तौर पे भी उसने अपना सुझाव दे दिया है।
2: ठीक है, अरुण
11: जी, जो सुझाव हमने दे दिया, हाँ, या जो कमेटी ऑलरेडी बन गई थी उसका सुझाव मान लेती सरकार, ये नया बनाना मतलब प्रधानमंत्री जी सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं, अपना इमेज प्रबंधन कर रहे हैं, अपने अहंकार को कहीं ना कहीं कम करके कैमरे का जो है सेल्फी लेने में कैमरे को खाली डेविएट कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जवाबदेही तय करनी होगी, परीक्षा सुधार प्रणाली पर बात करनी होगी, और हम सबको मिलकर के एक पारदर्शी निष्पक्ष व्यवस्था करनी होगी जिसमें किसी पार्टी और विचारधारा का मामला नहीं हो। जो बच्चा, जो जेएनजी, जो लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देता है, मेहनत करता है, उसके गार्जियन पैसे खर्च करते हैं, हम लोग भी छोटे परिवार से, उनको न्याय मिलना चाहिए।
2: पता चला कि चिराग जी भी सोच रहे हैं कि जेएनजी के साथ संपर्क करें और जेएनजी के साथ बातचीत करें, झारखंड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे?
12: सबसे पहले अंजना जी, हमारे नेता जेनजी में बहुत ज़्यादा स्वीकार्य हैं, आपने बिहार में भी देखा होगा, अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, और हमने जेनजी को मौका दिया है। शांभवी जेनजी हैं, हमारे 2 विधायक जो लड़े हैं बिहार के चुनाव में वो भी जेनजी हैं, तो उनको हमने मौका ही दिया, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। परीक्षा सुधार पर कांग्रेस को तय करना है कि पहले इनका गोल पोस्ट क्या है, क्योंकि लगातार हर रोज बदलता रहता है। जब इस बात को लेकर के संसद में चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने अपनी तरफ से, मैंने संसद में स्पीच दिया था, तो मैंने कहा था कि परीक्षा सुधार और छात्रों के अधिकार, इन दोनों पर बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी इस बात को लेकर के इतना कंफ्यूज है कि जब जेनजी की बात करते हैं तो सिर्फ उसको एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि वो बात करते हैं दिल्ली के छात्रों की मगर वो रांची की बात नहीं करते हैं। अरे रांची कराची नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, भारत में ही है। अभी तक पता नहीं चला कि छात्रों की गूंज रांची में कब होगी, केरला में कब होगी, पंजाब में कब होगी, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। जब जेनजी की बात की, अभी चिराग पासवान जी ने भी जब तीसरे दिन ही जब
2: तो
12: हुआ था,
2: कौन जाएगा विरोध करने?
12: देखिए आप
2: मतलब राहुल गांधी यहाँ दिल्ली में भी करेंगे और रांची में भी करेंगे या आप लोग करेंगे?
9: में तो सरकार है,
2: आप जाइए ना
12: अंजना जी,
9: हम तो कर रहे हैं,
2: आप लोग जाइए ना। आप कह रहे हैं कि वो इस्तीफा मांगे हेमंत सोरेन का, वो क्यों मांगेंगे? उनकी सरकार है सुधांशु जी, सुधांशु जी उनकी सरकार है, चार मंत्री है कांग्रेस।
9: इस्तीफा मांगे नहीं, आप तो कार्रवाई करिए, आप सरकार में है, इस्तीफा दीजिए।
12: एक जवाब,
9: यहाँ शिक्षा मंत्री ने मांगे इस्तीफा
12: दीजिए। पहले मैं देखिए, किसी भी नेता को, किसी भी छात्र और युवा के आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। आप जब वहां जाते हैं तो सिर्फ आप अपनी राजनीति करके आते हैं। बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग गए अपनी बात करके आए, ऐसे में छात्रों का मुद्दा डाइल्यूट हुआ। आप देखिए, सपा के लोग गए वहां पर, जितने भी नेता गए सिर्फ अपनी पार्टी की बात करके आए हैं, छात्रों के मुद्दों को डाइल्यूट करके आए हैं। किसी भी नेता को किसी भी छात्र के मुद्दे पर किसी भी मंच पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब राहुल गांधी जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी क्या गए थे?
2: राहुल जी तो
12: सिर्फ
2: नहीं,
12: और
2: हाँ, पीएम
12: सिर्फ
2: से।
12: सिर्फ और सिर्फ वहां पर लाभ लेने गए थे। उनको पता चला कि अंत में कोई जंतर मंतर पे नहीं जा रहा है, तो लगा कि कुछ ना कुछ तो करेंगे शॉर्ट में। अब उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो घुमा फिरा करके, देखिए छात्र मेरा और छात्र तेरा नहीं हो सकता है, छात्र देश का भविष्य है।
2: उन्होंने वीडियो बनाया है भाई, झारखंड के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है।
11: 30 सेकंड दे दीजिए,
2: टाइम ज्यादा लग गया।
11: 30 सेकंड,
2: अब फिर बच्चों को बोले दे, जेन जी को खत्म नहीं होगा सर आपका, जल्दी से बोलिए।
12: अंजना जी, लास्ट लास्ट लास्ट पॉइंट, अभी तक छात्र के अधिकार पर एक भी शब्द कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है।
11: अरुण भाई, छात्रों के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए तो सबको बात रखनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के। झारखंड के बारे में जरूर आपने चर्चा की, राहुल गांधी जी ने उन एजिटेट जो
12: छात्रों की गूंज करने के लिए
11: 10 सेकंड, जो झारखंड में जो हमारे नेता वहां के जो विद्यार्थी हैं उनसे बात भी की है, और कांग्रेस पार्टी का पूरा एकदम क्लियर कट स्टैंड है कि हम, चाहे वो झारखंड की बात हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, या देश के किसी हिस्से की,
12: हमारी भी सरकार
11: क्यों ना हो, यदि छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम उसकी आवाज उठाएंगे,
2: यहाँ पर दिल्ली में नीट का एग्जाम, रुकिए, लड़ाई,
11: लेकिन आप लोग क्या,
2: ये लड़ाई इसका क्या, एक सेकेंड बाप,
12: पहले ही मैंने
2: एक सेकेंड अरे कुछ सामने भी सुनिए, सामने भी सुनिए ऋषभ, इसका क्या इलाज है, क्या सोल्यूशन है? क्योंकि अल्टीमेटली तो देखिए पॉलिटिकली ही सोल्यूशंस निकलेंगे ना, देश की संसद से ही सोल्यूशंस निकलेंगे। अगर आपको कोई कमिटी के रिकमेंडेशंस हैं, शिक्षा मंत्रालय को ही करना है, सरकार को ही करना है, ये तो मेरा झारखंड तेरा झारखंड, तेरा केरल, केरल कब जाओगे, तुम यहाँ क्यों आए, तुम वहां क्यों गए, यही चल रहा है।
10: नहीं, यही राजनीतिक विषय बन गया है, और ये मतलब इसमें तूतू मैमे में सब लोग थक गए, तो उसके लिए मैं खाली यही उम्मीद रखता हूँ कि जो सारे राजनीतिक दल से लोग आए हैं वो लोग एक्चुअली छात्रों के बीच में जाए, उन लोगों को पूछे, यूथ को पूछे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या विषय है, एडुकेशन के बारे में क्या विषय है, क्लाइमेट चेंज का क्या विषय है, ये सारे अन्य विषय के बारे में उनसे बातचीत करे एक्चुअल में, और वो खुद की अपने यूथ विंग में ना जाए, क्योंकि अपने यूथ विंग में वो लोग को एक और चेंबर मिलेगा कि मतलब
2: एक सेकेंड, आप बहुत ही क्रांतिकारी चीज सजेस्ट कर रहे हैं ऋषभ। आप ये कह रहे हैं कि सुधांशु जी NSUI की बैठक में जाए, और अजय उपाध्याय, मैं आप गुस्साए ना, मैं इनको भी कह रही हूँ, अजय उपाध्याय जी जाए ABVP की बैठक में, आप ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहे हैं?
10: जी बिल्कुल, मैं क्यों ऐसा
2: बोल रहा हूँ? बूइंग नहीं होगी और हल्ला गुल्ला नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा?
10: नहीं, मैं मतलब वही तो चले गया है ना, पहले जैसे अटल जी ने बोला था कि मनभेद आप लोग मत कीजिए, मतभेद हो सकता है पर कभी मनभेद नहीं होना चाहिए, वो हम लोग को वो राजनीति वापस लेके आनी है। और इसमें पूर्व पक्ष स्टाइल डिबेट, खाली आपको मैं बताऊंगा अंजना जी, कि मतलब आप तो जानते रहेंगे कि पहले हमारे जो डिबेट्स होते थे वो वन वर्सेस दी अदर कभी नहीं होते थे, वो हम लोग करते थे कि आप विपक्ष का पहले पक्ष समझो, बाद में अपना जो चीज है वो आप व्यक्त करें। अभी ऐसा हो गया है कि मतलब पहले से ही लड़ाई चालू हो जाती है, और उसमें यूथ को हम लोग खाली माध्यम बना रहे हैं। और मैं ये एक चीज बताऊंगा कि हमको तो माध्यम बनाया था, मिलेनियल्स को माध्यम बनाया था, और ज्यादा करके बहुत सारी आवाज नहीं निकली थी, पर जेन जी को यदि माध्यम बनाया और एक्चुअल में वो लोग ने इश्यू सॉल्व नहीं किए, तो ये जेन जी एक्चुअली रास्ते पे आ जाएगा, और देश भर में आंदोलन होते रहेगी, और भारत अगला नेपाल और बांग्लादेश बन जाएगा, और यही चीज विश्व के जो बहुत सारे पावरफुल नेशंस है वही ये चाहते हैं कि देश टूटे। तो मैं राजनीतिक दल को यही पता है कि ये क्रांतिकारी चीज है, पर यदि सुधांशु जी NSUI जाए और यदि आपकी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन BJYM आए, और मैं चाहता हूं कि दोनों आयमन भी आए और ऐसे युवा संगठन में भी जुड़े।
2: दोनों मुस्कुरा रहे हैं लेकिन दोनों कमिट नहीं कर रहे हैं। चलिए उसके लिए इंतजार करते हैं ऋषभ। लेकिन मुझे पता है कि आपको कहीं जाना है। एक आखिरी आपसे मेरा सवाल है। इस सवाल के जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं। एक डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, एक स्पष्टता के साथ भी हो सकता है, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन आपने एक सवाल पूछा था कि जब भी कोई देश में प्रोटेस्ट करता है तो उनको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, कोई भी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है उसको एंटी नेशनल। तो जो ऑडियंस थी वहां पर वो बहुत जोर से तालियां बजाने लगी, और जो रिएक्शन था संघ प्रमुख का वो ऐसे संकेत दे रहा था जिसमें साफ दिखा कि वो चाहते थे कि छात्रों से पहले एंगेज करते तो ऐसा नहीं होता। क्या इस बातचीत के दौरान आपको ऐसा लगा कि वो ये चाह रहे थे कि मतलब कहीं से एक कोर्स करेक्शन की बात आए कि भाई छात्रों से पहले क्यों नहीं एंगेज किया जंतर मंतर पर?
10: नहीं, आई थिंक उन्होंने स्पष्ट रूप में ये चीज बता दी थी कि बच्चों के साथ संवाद हम लोगों को करना चाहिए था और अभी भी कर रहे हैं और आगे करते जाएंगे। तो मतलब ये तो स्पष्ट रूप में उन्होंने बता ही दिया था कि डायलॉग शुड हैव बीन नेसेसरी। और मैं भी ये मानता हूं कि डायलॉग यदि पहले हो गया होता तो ऑटोमेटिकली ये आंदोलन आगे बढ़ता नहीं। पर जैसे मैंने ये भी बोला है कि आंदोलन इस कारण नहीं होना चाहिए कि किसी की पक्षपात हो या किसी की सरकार गिरानी है। एक्चुअल में आपको देश को विकसित बनाना है। मुझे पता है कि मैं मतलब इट इज वेरी आइडियलिस्टिक एंड यूटोपियन जो मैं चीज बोलते बोल रहा हूं, पर मैं यही मानूंगा कि जो हमारे नेता बने हैं वो नेता इस कारण बने हैं कि देश को विकसित बनाना है। और यदि देश को विकसित बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य को फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने कई सारी चीज ये इंटरव्यू में बताई, पर मैं आखिरी चीज आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने एक चीज ये भी बताई कि 6% एडुकेशन बजट में से हम देने का प्रयास नहीं करेंगे पर प्रॉमिस कर रहे हैं। ये 68 से कांग्रेस की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी 86 में रिवाइज हुई और बाद में 2020 में रिवाइज हुई NEP में, पर कोई भी सरकार ने दी नहीं है। तो यदि देश को हम लोग को विकसित बनाना है तो प्लीज एडुकेशन पे फोकस कीजिए एंड संवाद कीजिए। संवाद नहीं करेंगे तो ये अगला नेपाल और बांग्लादेश बनेगा। एंड आई डोंट थिंक द कांग्रेस नॉ द BJP नॉ एनीबडी हू सीरियस अबाउट दिस कंट्री वांट्स दैट।
2: बिल्कुल, और मैं देख रही हूँ कि कितना स्ट्रेटेजिकली आपने IIMUN अपने पीछे लगा रखा है। तो इस आप है मिलेनियल,
10: थोड़ा सीख रहा हूँ।
2: हाँ, हमारे तो चारों तरफ आज तक लिखा ही रहता है। लेकिन आप हैं मिलेनियल, लेकिन जेंजी की बात करते हैं और संवाद कराते हैं जनता और लोगों के बीच में। रियली अप्रिशिएट यू जॉइनिंग अस, बहुत धन्यवाद।
11: बांग्लादेश और नेपाल बन जाएगा। भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमेशा जीवित रहेगी, वाद विवाद संवाद चलते रहेगा। यहाँ कभी भी कोई बांग्लादेश और नेपाल वाली स्थिति नहीं बनेगी। हम सब पॉजिटिव हैं। पार्टियां अलग अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग हो सकती
2: है, गलत है,
11: पर सभी लोग मिलकर के देश का निर्माण करें।
13: नेपाल में भी चंद महीनों में क्या हुआ है अभी?
10: सॉरी, आई कुड नॉट हियर दैट।
2: वो कह रहे हैं कि आप नेपाल और बांग्लादेश की जो बात आपने कही कि वो बन जाएगा वो गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा भारत के साथ।
11: डेमोक्रेटिक तौर पर डीप रूटेड डेमोक्रेसी है यहाँ। डीप रूटेड डेमोक्रेसी वर्षों से हम लोग के जेहन में है। हम सब लड़ेंगे, संवाद करेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे। जेंजी को भी ये पता है, संवैधानिक दायरे में रह करके वो लड़ाई लड़ेगा और उसे मिलेगा अधिकार, उसको मिलेगा।
2: बोलिए ऋषभ, एक छोटा सा रिस्पांस बस।
10: जी, छोटा सा रिस्पांस इसमें यही कि यही उम्मीद है सुधांशु जी और जिन्होंने भी ये बात बोली, यही उम्मीद है सरकार से, विपक्ष से, कि ये संवाद एक्चुअल में स्टार्ट हो और वो संवाद बना रहे और एक्चुअल की जो इश्यूज है वो बाहर आए। और मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि यूथ को सिस्टम पे अभी भरोसा दिलाना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो हो रहे, 35 प्रोटेस्ट आर हैपनिंग एट दिस टाइम अंजना जी। तो ये सारे प्रोटेस्ट में से 27 प्रोटेस्ट यूथ प्रोटेस्ट है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और सरकार, मैं जानता हूं कि सरकार विकसित भारत बनाना चाहता है, उसके लिए मेरी उम्मीद यही है सुधांशु जी से और विपक्ष से कि संवाद बना रहे। थैंक यू सो मच
2: सुधांशु जी, इस वजह बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आपके पास आती हूँ अखिलेश यादव जी, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि छात्रों की भी बात आए। आप लोग NSUI की तरफ से एक्टिव है, मुझे ये भी पता चला है कि झारखंड में भी है। लेकिन सवाल है कि एक एक एक आपको नहीं लगता है कि वहां पर तो जो हालत है, मतलब नौकरियों की लिस्ट, अगर आप गए हो, मुझे नहीं पता आप गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन गजब मायूसी है वहां पर लोगों में।
14: आपकी बातों का जवाब मैं एक दार्शनिक, बड़े दार्शनिक रहे, उनकी कहानी से देना चाहूंगा कि जब पहले कोल माइंस में मजदूर जाते थे तो जहरीली गैसों से मर जाते थे, तो वह क्या करते थे कि अपने कंधे पर कनारी की चिड़िया को लेकर के जाते थे। तो कनारी की चिड़िया जैसे जैसे अंदर जाती थी टें टें टें करते हुए एक गाने के मतलब गाते हुए अंदर जाती थी, और जैसे जैसे जहरीली गैस अंदर से आती थी तो वह या तो गाना स्लो कर देती थी या तो वह दम तोड़ देती थी। तो इससे क्या होता था कि जो मजदूर हैं उनको पता चल जाता था कि जहरीली गैस शुरू हो गई है, तो सारे मजदूर बाहर निकल करके भाग जाते थे। यहाँ लोकतंत्र में छात्र राजनीति का काम, स्टूडेंट्स का काम, जेंजीज का काम उस कनारी की चिड़िया के तौर पर है कि देश में आने वाली जो समस्या है, जो खतरा है, उसके बारे में देश को, सरकार को, समाज को, विपक्ष को जगाने का काम करती है। हम क्या देखते हैं कि ये जो कनारी की चिड़िया है जहरीली गैस से मरने की बजाय ये जो सत्ता के लोग हैं लोहे की किल लकड़ियों में बांध करके मारते हैं, उसको पायलट गन से उसको मारने का काम करते हैं। जब जंजीज अपनी बातों को लेकर के जंतर मंतर पर आते हैं, देश भर से लोग आते हैं और कईयों बार बोलते हैं, आज जो बोल रहे हैं कि जंजीज को सुन लेना चाहिए, इस तरीके से कर लेना चाहिए, भाई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पिछले 12 सालों में जितने बड़े आंदोलन हुए, छात्र आंदोलन हुए, लगातार एंटी नेशनल घोषित कर दो, उन्हें आतंकवादी बता दो कहीं और से फंडेड है, तो भाई वो देश का आपका भविष्य है। हम वह लोग थे जिनको लगता था कि 2014 में जब हम हाई स्कूल में थे हमें लगता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें लगता था कि इस तरीके का है। हम वह व्यक्ति थे जो कि अपने परिवार वालों को मतलब अपनी माँ को, दीदी को, इन लोगों को मैनेज किया कि नहीं मोदी जी आएंगे तो चीज़ें बदलेंगे। मेरा भाई जो फौज में था वो लोग उस समय अरुणाचल में थे, अरुणाचल में ये लोगों की अलग खुशी थी। और मैं बता रहा हूँ आपको, NSY तो मैं यूनिवर्सिटी में आने के बाद ज्वाइन किया।
2: अच्छा, बचपन की बात बता रहा हूँ।
14: हाँ, ये पहले की बात बता रहे हैं कि आप समझिए कि इस तरीके की चीज है कि इन्होंने आर्मी को भी अग्निवीर बदल दिया, जो कि हमारे गांव में बच्चे दौड़ते थे, निकलते थे, वो अग्निवीर हो गए। फिलिप अल्टबैक ने बोला है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो होते हैं टू टाइप से होती है, नॉर्म ओरिएंटेड और वैल्यू ओरिएंटेड। नॉर्म ओरिएंटेड वह है जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, वैल्यू ओरिएंटेड है कि ये जो सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने का काम किया जाए। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि वही लोग हैं जो कनारी की चिड़िया को जिस किल से मार रहे हैं कि पूरे देश के जो छात्र कुछ चुनिंदा जगहों को छोड़ दिया जाए तो छात्र संघ के चुनावों को बैन किया है। हाँ। और जहां पर छात्र यदि आवाज उठाए तो वहां पर उनके ऊपर इतने मुकदमे लाद देते हैं, जहां से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आता हूं तमाम FIR किए हुए।
2: आपने नॉर्म ओरिएंटेड कहा तो ये नॉर्म ओरिएंटेड काम झारखंड में भी होना चाहिए,
14: बिल्कुल होना चाहिए।
2: यदि नहीं
14: नहीं मानते हैं मांगे और नहीं चलते तो बिल्कुल देना चाहिए, और क्या, छात्र आंदोलन विपक्ष में है ना, वहां पे आवाज उठाए थे तो यहीं से इस्तीफा मांगने जाइए, वहां पर कौन मना किया है आपको। और मेरा मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि छात्र आंदोलनों को चाहे कोई भी सरकार हो, सत्ता हो, उसको सुनना होगा। नहीं सुनेगी तो वही जो छात्र है बंगाल की खाड़ी में उस सत्ता को, उस सरकार को फेंकने का काम।
2: अर्जुन जी, क्या वो सही कह रहे हैं, क्या छात्रों की आवाज दबाई जाती है?
15: मुझे नहीं लगता, मुझे लगता थोड़ा सा इसको हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। हर समय में जैसा कि सुधांशु जी ने भी कहा, युवा जो है वो विरोध करते हैं, वो उभरते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हम देखते हैं खुदीराम बोस, अनंत कन्हरे, भगत सिंह, सुखदेव थापर, बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया देश के लिए, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी एक सीमा तक जाके रिबेलियस होने की। और आज के भी समय में हम देखते हैं जहां पे भी पॉलिसी लेवल पे कुछ गड़बड़ होती है या देश में कुछ गड़बड़ होती है तो एक ग्रीवेंस होता है, और उस ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए युवा पहले ही सोचता है कि हमें आंदोलन करना है। अब उस आंदोलन में हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक जनरेशन है तो वो सब एक जैसा ही सोचते हैं, हम ये नहीं बोल सकते कोई एक जनरेशन है तो उसकी एक ही विचारधारा है। हर एक जनरेशन में भांति भांति के लोग होते हैं, हमको यह समझना पड़ेगा। जो कि आज हमें
2: पेपर लीक पर गुस्सा आता है कि नहीं?
15: ऑफकोर्स
2: आता है।
15: ABVP ने
2: तो किस पर गुस्सा निकालते हैं?
15: बिल्कुल सरकार पे निकालना चाहिए। एबीवीपी ने इस बार वो तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। एबीवीपी ने इस बार हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी पारित किया प्रस्ताव कि जितने पेपर लीक हो रहे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, और उसका आंदोलन खड़ा हुआ, उसका हमने देखा क्या परिणाम हुआ। पर मैं ये कह रहा हूं कि हम आशावान हैं, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं भारतीय युवा से, ये कभी बांग्लादेश नेपाल नहीं बन सकता, कि भारत में दायित्व बोध पे हमेशा बात होती है, हम ऋणों की बात करते हैं, तो भारत का जो युवा है वो ना केवल सिस्टम के बाहर बैठ के हम ये बात करेंगे कि ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, कैसे बदले वो नहीं पता, तो अनार्की की दिशा में नहीं जाते हुए वो पॉलिसी क्या होगी जिससे परिवर्तन आएगा उस डिबेट में अब हम
2: क्या मोहित जेंजी इस डिबेट में भी है कि क्या क्या सोल्यूशन निकालना है, कैसे निकालना है?
16: जी बिल्कुल,
15: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही गलत है। बिकॉज जेन जी इज नॉट अ होमोजेनस ग्रुप. नो जनरेशन, कोई भी ऐसी जनरेशन नहीं होती है जो एक रूप होती है. हर जनरेशन में भांति भांति के लोग होते हैं. उदाहरण के लिए कॉकरोचेज में से ही दो तीन लोगों ने यह बोला, उनके मुखियाओं ने, कि उस प्रदर्शन में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उनके शब्द हैं मेरे नहीं है, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. अब आप उसको किसी जनरेशन में बांध के नहीं देख सकते हैं कि इस जनरेशन का बस 1997 जनवरी 1 को कोई पैदा हो गया तो वो अलग होगा, और 1996 31 दिसंबर को कोई पैदा हो गया तो वो बिल्कुल अलग इंसान होगा. मतलब बात करने को हम ये बात कर सकते हैं, परंतु इसका कोई तार्किक कुछ आधार नहीं दिखता है.
2: आपको क्या लगता है?
16: पहले तो मैं आपने जो पहले बात की थी, मोहन भगवत जी ने एक मीटिंग की जेन ज़ी के साथ, उस पर बात करना चाहता हूँ कि यूथ के साथ क्लॉकेट करके, जब प्रधानमंत्री मोदी रात के 12 बजे रील बना के, अच्छी अच्छी रील्स बना के, वो जेन ज़ी नहीं बन जाएंगे. जो जेन ज़ी है, जो यूथ है, उसका एक टेम्परामेंट होता है कि वो एक तो इंक्लूसिव है. ये जो पूरी जनरेशन है बहुत इंक्लूसिव है, जो कि आरएसएस बीजेपी नहीं है, वो सोशल इंक्लूसिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव है. लेकिन जेन ज़ी जो है वो प्रोग्रेसिव है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करते हैं, जो कि आरएसएस की विचारधारा के आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है. और सुधांशु जी ने कुछ बातें की, बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया. वो उस वक्त बरतानवी हुकूमत के खिलाफ थे, अगर आज होते तो वो आरएसएस बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ होते, क्योंकि उस वक्त गोरों की सरकार थी. आज जो सरकार है वो चोरों की सरकार है, चाहे वो वोट चोरी करती हो, चाहे पेपर लीक करती हो. और जिस तरह
17: व्यवस्था से क्या मतलब है?
16: अरे बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था से
17: इशू नहीं है,
16: अगर वोट चोरी करके सरकार आती है तो वही
17: ठीक है. ये कांग्रेस का इशू है, ये छात्र का इशू
16: नहीं है. इशू नहीं है,
17: इससे बहुत साफ समझ में आ जाता है.
16: एजुकेशन को आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते. एजुकेशन, वोट, एम्प्लॉयमेंट
17: से कोई कनेक्शन नहीं,
16: बहुत कनेक्शन है.
17: एक राजनीतिक
14: क्या वोट नहीं देता है,
17: ये बताइए. नीट एंट्रेंस का सो कॉल्ड वोट चोरी से कनेक्शन बताइए मुझे, साइंटिफिक आधार पर बिल्कुल पक्का बताइए.
16: मेरी पंजाब में वोट है, वहां पे ऐसा ही आर चल रहा है. अगर मान लीजिए अगले साल हमारी वहां पे इलेक्शन में वोट ना मैं दे पाऊं, तो मेरा रिप्रेजेंटेशन कहाँ रहेगा?
17: उसका तो है ऑल ओवर इंडिया, जहां आप रहेंगे वहां इलेक्शन 15 दिन पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं.
16: जिस तरह से वोट चोरी हो रही है ना, उसका है असर.
17: वोट चोरी का आधार बताइए,
16: जो
17: लाखों में

0: जो
1: लाखों में
0: पॉलिसीज
1: एक हजार भी एप्लीकेशन नहीं आती हैं।
0: पॉलिसीज पॉलिसीज कहां से बनती हैं? पार्लियामेंट से नहीं बनती क्या?
2: मैं एक बात,
0: अब पार्लियामेंट जो पेपर लीक होते हैं वो कहां से होते हैं?
2: आप कौन से संगठन से हैं भाई?
0: ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से।
2: हां एआईएस
1: तो समझ में आ गया ना।
0: तो मेरे और भी कुछ सवाल के जवाब थे, मैं बात कर रहा था जरा।
2: एक बात बस मैं बोलना चाहूंगा, एक बात
3: पूरा
1: चलिए पूरी बात।
0: और आपने बोला कि जीडीपी 14 से पहले कितनी थी, अब कितनी होगी?
1: मैंने नहीं बोला भाई,
0: आपने कहा।
1: मैंने जीडीपी बोला ही नहीं भाई, आप लगता है वो लिख के आए पहले। मैंने कोई जाके ट्रैक
0: नहीं, मैंने भी लिखा नहीं
1: आया। मैं आपको एक बता दूं, कोई बात नहीं, फिर भी आप बोलिए।
0: स्टूडेंट सुसाइड
1: बोले? मैंने स्टूडेंट सुसाइड में नहीं बोला,
0: मैं ये बोल,
1: मेरा वर्ड ही नहीं है।
0: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है,
4: स्टूडेंट सुसाइड से
0: आप, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि एक साल में जो स्टूडेंट सुसाइड होते थे 2014 में वो 8,000 था आंकड़ा, 2024 की लेटेस्ट उनकी रिपोर्ट है वो है 14,000। तो ये जो 6,000 का इजाफा हुआ है ये इन 10 सालों में हुआ है, तो ये भी एक चीज देखने वाली है। दूसरा, आपने नीट के ऊपर बात की कि तमिलनाडु में से आपने ये इल्जाम लगाया कि जो लोग नीट के खिलाफ कर आ रहे हैं वो लोग हैं जिनके पहले बच्चे पैसे देके एडमिशन लेते थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस राजन
1: मालिक,
0: हाँ माल ठीक है, तो जस्टिस राजन की कमेटी की रिपोर्ट देख लेना आप, उसको पता चल जाएगा किस तरह से जो सोशल पहले इक्वालिटी थी ना, जो स्टेट बेस्ड एग्जाम होते थे उनके थ्रू होते थे, उसमें क्या था कि जो उस सोशल बैकवर्ड स्टूडेंट थे जिस तरह से उनको एडमिशन मिल पाता था वो अब नहीं मिल पाता, जिस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को मिल पाता था वो अब नहीं मिल पाता। सेंट्रलाइज एग्जाम्स का बहुत फायदे हुए हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये भी है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर सोशल सेक्टर से ही स्टूडेंट आ पा रहे हैं।
2: झूठ है ये,
3: उसका जवाब दे दे उसका, आप बोल।
0: और एक और भी, नीट के आने के बाद कोचिंग माफिया कितना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस कितनी कितनी होती है, 2 लाख 2.5 लाख, क्या ये सोशल बैकवर्ड स्टूडेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या एक साल का ड्रॉप सोशल बैकवर्ड स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं? जिन लड़कियों के सर पे तलवार लटकी रहती है कि एक साल में अगर नीट क्लियर नहीं होगा तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, जिन बच्चों के मतलब जिन लड़कों के सर पे तलवार लटकी रहती है कि बेटा दिन में तुम दिहाड़ी मजदूरी करो और रात में तैयारी करो, या दिन में तैयारी करो तो रात में स्विगी जोमेटो में काम करो, क्या वो लोग कर सकते हैं?
3: ठीक है,
1: जल्दी बात, बड़ी प्रिविलेज है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मगर यहीं पे मैं बात करना चाहता हूँ। इन्होंने अच्छी बात कही, 2-2, 3-3 लाख रुपए देना पड़ता है कोचिंग में, तो गरीब वर्ग का बच्चा कैसे दे पाएगा? पर इन्होंने कहा कि साहब नीट से पहले सोशल इंक्लूजन होता था, मतलब 25 लाख 50 लाख डोनेशन दे सकता है। अरे वो कैसे मान सकते हैं गरीब बच्चा दे सकता है 1-1 करोड़ का डोनेशन? और उन्होंने कहा कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और वो जो जो बच्चे बैकवर्ड क्लासेस के, अरे वो तो 13 लैंग्वेजेस में अब शुरू हुआ है तो वो सब बच्चे आ पाए गांवों वाले, वरना पहले वो सिर्फ अंग्रेजी तो वो आ ही नहीं सकते थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जो भी बात हो बिल्कुल लॉजिकल होनी चाहिए। और अगर आप देखें जो आपने बात कही साइंटिफिक वाली बात, अच्छा ये बताइए, पेपर के ऊपर चर्चा हो रही थी, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, कोई जाके राहुल गांधी की स्पीच देख ले, एक बार भी कोई क्लॉज का उल्लेख ही नहीं किया कि मुझे इस बिल के इस क्लॉज के इस सेक्शन पे आपत्ति है और मेरे हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, अननेसेसरी गोमूत्र आ गया बीच में, इसका नीट परीक्षा से क्या लेना देना था? और उसका भी मैंने साइंटिफिक जवाब दिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जब आप बात करें से आपके मुंह से अनायास निकला, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बात हो रही परीक्षा की और बात आ गई सो कॉल्ड वोट चोरी पे, और फिर जब रीजनिंग की बात हो तो देखिए कितनी जबरदस्त है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हार जाते हैं मगर हम सब मैनेज करके रखते हैं, हम 2024 का चुनाव हार जाते हैं प्रधानमंत्री जी की लीड कम हो जाती है हम सब मैनेज करके रखते हैं, और कितना जबरदस्त मैनेजमेंट है कि देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता, हरियाणा गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड गड़बड़ करता है, राजस्थान में 2018 में सही करता 23 में गड़बड़ कर देता है, मध्य प्रदेश में 18 में सही था 23 में गड़बड़ था, यूपी में 2 बार से गड़बड़ कर रहा है, अब आइए बंगाल में अभी तक ठीक था इस बार गड़बड़ कर दिया, अब
3: आइए पेपर लीक पर आइए, पेपर लीक पर आइए,
1: सही काम करता है कर्नाटक, सही काम करता है केरल, सही काम करता है आंध्रा, सही काम करता है आसाम में गड़बड़ कर देता है,
0: पेपर लीक
1: बच्चों को लॉजिकल समझ में आता है।
0: जो रिसर्च पे सेमिनार होते हैं वो बंद करवा के 5 दिन का गौ रक्षा के ऊपर सेमिनार होता है, तो ऐसे इसलिए इसी वजह से ना ये इन इश्यूज पे बात करना जरूरी है, क्योंकि
5: लॉजिकल बात की है। दो पहली बात, रुक जाओ भाई,
2: छात्रों में संवाद
3: ठीक है, एक बार उनसे बोल लीजिए, बोल लीजिए फिर आपके पास आते।
2: फर्स्ट पॉइंट कि जब कोई मार्क्सवादी साइंस की बात करता है वो वैसा ही है जैसे कोई कांग्रेसी भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। मार्क्सिज्म इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक थॉट ऑफ ऑल टाइम। माओ के समय में जितनी हत्याएं हुई थी वो सब साइंस के नाम पे हुई थी, स्टालिनवाद के समय जितनी हत्याएं हुई सब साइंस के नाम पे हुई थी, सब चीजें साइंस के नाम पे हुई, तो पहली बात तो मार्क्सवादियों को साइंस के ऊपर तो बोलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, नीट से पहले जो एग्जाम्स

0: होते थे जो स्टेट्स में अलग अलग होते थे, आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से पूछिए जो उस समय बैठा था, लोग रात को कहीं जाते थे, वहां पे बस का भाड़ा खर्च करके वहां होटल रहते थे, वहां एग्जाम देते थे, अगले दिन कहीं और की टिकट कराते थे दूसरी स्टेट में जाने के लिए, वहां जाकर एग्जाम देते थे, तीसरे दिन अगले स्टेशन करवाते थे, वो कौन गरीब बच्चा कर पाता है। तीसरी बात, सीयूईटी आने से पहले हम देख रहे हैं, मैं जेएनयू में चुनाव लड़ा हूं, मैं छात्र नेता हूं, मैं एबीवीपी का रिसर्च का काम देखता हूं, पूरे देश मेरा प्रवास होता है, गैर अंग्रेजी भाषी बैकग्राउंड के पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स जितना अब विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं उतना कभी भी नहीं कर रहे थे।
1: सीटें जो पहले समझ जाए होती थी वो सीटें नहीं समझ जाइए, वह दिल्ली विश्वविद्यालय का भी डेटा,
0: जहां तक
1: वह आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी डेटा
0: है, जहां तक जहां तक
1: जो ये बात कर रहे हैं, जहां तक आपके इतिहास में आते हैं तो जानते हैं आप,
2: जहां तक बात है जल्दी जहां तक बात है कि
0: हमें नीति के स्तर पे को कमियां दिख रही है तो स्वाभाविक रूप से हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें उस पर आवाज उठानी चाहिए, परंतु कोई वामपंथी आके शिक्षा पे भाषण दे, मुझे लगता है उससे बड़ी विडंबना तो कोई हो ही नहीं सकती।
1: ये जो एनईटी की बात हो रही है, जो एनईटी की बात हो रही है, एफवाई यूपी इन्हीं की सरकार द्वारा लाया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र उसको भुगत रहा है। एक दूसरा यह चीज है, बिना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर,
0: नाम बताइए,
1: नाम नहीं, 2000 छात्रों की सूची है, इसे अभी ग्रुप दिखाऊंगा, अभी मैं ग्रुप दिखाऊंगा, दूसरा यह चीज है, अभी दिखा दूंगा। अरे ऐसे नहीं, अब हवाई बातें हम नहीं करते, हो सकता है आप कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप,
0: मेरे पास 3000 छात्रों की,
1: एक बार मैं बोल दूं,
0: नहीं मेरे पास 3000 के, मैं ग्रुप दिखा
1: बोल दूं, अरे इसी FYUP में यदि मुझे हिस्ट्री को ऑनर्स करना है, उसमें हमें ये बताएंगे कि योगा पढ़ो, आर्ट्स ऑफ लिविंग पढ़ो, जीवन कैसे जीते हैं उसके बारे में पढ़ो, विकसित भारत पढ़ो। यदि अगले व्यक्ति को PhD मास्टर्स करना है हिस्ट्री में, तो इन चीजों का क्या, एक दूसरा यह चीज है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चीजें लाए, और कौन प्रोफेसर पढ़ाएगा, वही हिस्ट्री का प्रोफेसर योगा भी पढ़ा देगा, वही हिस्ट्री का प्रोफेसर आपको बता देगा कि आर्ट्स ऑफ लिविंग। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जो है, क्या वह चूहे का लेबोरेटरी का चूहा है क्या, कि लगातार उस पर नए नए आप प्रयोग करेंगे। एक इतिहास की बात हो रही है, वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जिसका निर्माण आप जानते हैं कैसे हुआ, महात्मा गांधी जी की जब हत्या नथुराम गोडसे किया, उसके बाद स्वयं सेवक अधिकतर युवक थे, जब स्वयं सेवक जब जाते थे शाखा में तो गांव वाले दौड़ा लेते थे मारने के लिए,
0: ये भी मैसेज आया है,
1: ट्रोजन हॉर्स के तौर पर निर्माण
0: मुझे लगता है
1: की चर्चा की बात करते हैं,
0: मुझे लगता है
1: फ्रांस करके आते हैं,
2: मुझे लगता है
3: हो गया, मुझे लगता है उसमें लड़िएगा जरा, हमें सुधांशु जी का जरा, सुधांशु जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि अब जो है डोनेशन नहीं चलता है और फी स्ट्रक्चर भी बहुत सस्ता हो गया, आप तो 2-3 हजार रुपए में ही एडमिशन मेडिकल वाले का जो बच्चे होते हैं उसका हो जाता है। सुधांशु जी आपकी पार्टी
4: मैंने मंगल ग्रह तो नहीं बोला, मान लीजिए मैंने कहा 25 लाख से 1 करोड़ का डोनेशन नहीं
3: कम, अच्छा अब फी लेकिन बहुत कम हो गया है,
4: फीस जो है वो है वो तो
3: सुधांशु जी आप ही बताइए, आपकी पार्टी मंगल ग्रह पर भी है, आजकल वहां के प्रभारी आप हो गए हैं क्या,
4: क्यों भाजपा का आप बताइए, नहीं इसका तर्क
3: नहीं, तो ये तर्क इसलिए कह रहा हूं कि आज भी डोनेशन का हाल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है मेडिकल कॉलेजेस उसका जाकर,
4: अरे मुझे बताइए डोनेशन वाले के नेताओं जुड़े हुए हैं कि नहीं, तमिलनाडु में एक भाजपा नेता का होता है
3: सबसे ज्यादा है,
4: अब दूसरी बात,
1: हम लोग 13 दिन भूख हड़ताल पर थे, मार करके लाठी जेल में डाल दिया,
3: अगले 2 मिनट, दूसरी बात इन्होंने कहा वोट चोरी से संबंध नहीं है, अरे भैया जब वोट चोरी करके सरकार बनाओगे तो जनता और छात्र की क्या जरूरत है आपको, उसके वोट की जरूरत नहीं है, तभी तो उसे संवाद नहीं कर रहे थे, धर्मिता अपने अपना रहे थे, पेलेट गन तक छात्रों पर चलाया इसलिए क्योंकि वोट चोरी नहीं,
2: समय समाप्त हो रहा है, सिर्फ दो दो लाइन का कमेंट में सबसे रुक गया भारती जी, आपसे
3: आप नफरत हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कीजिए, छात्रों का सुधार का मामला है, शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार होगा, कैलेंडर हो, एग्जामिनेशन का, इस पर ध्यान दीजिए, फी स्ट्रक्चर कम हो और प्राइवेट सेक्टर के बदले पब्लिक सेक्टर के जो कॉलेजेज और स्कूल जैसे आपने 1 लाख बंद किए उसको फिर से शुरू कीजिए, ये डिमांड है, इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया आप लोगों ने, और प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को तो आने की हिम्मत नहीं, आते तब सुनते, अभी सुनने ही नहीं देते, बोलने देते,
5: हम लोग वापस घूम करके वही हो गया बैक टू स्क्वायर वन, 13 छात्र मेरा छात्र,
3: नहीं नहीं
5: होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए चाहिए था सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात करेंगे तो उनके भविष्य की बात करेंगे, परीक्षा सुधार की बात करेंगे और छात्रों के अधिकार की बात करेंगे। यहां पर एक भी विमर्श छात्रों के अधिकार को नहीं हुआ है। अभी जो भी नीट की परीक्षा ये पेपर लीक के बाद जो भी हुई वो सरकार की तरफ से हुई कि हमने सद्भावना में किया, ये कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। इस पर कोई विचार किसी का नहीं आया। मैंने संसद में भी कहा है कि कम से कम इसमें चार ऐसे अधिकार हो जहां पर छात्रों में कोई भी ऐसा पेपर लीक भविष्य में हो तो आप 30 दिन की बाध्यता रखिए कि फिर से वो टेस्ट होगा, कैसे छात्र का वो साल सुरक्षित रहेगा, दाखिले का कैलेंडर ठीक रहेगा और छात्रों को परीक्षा देने के लिए आने जाने के लिए पूरी
2: दो लाइन का जवाब
5: अधिकार की बात जब करनी थी इस विमर्श में हम नहीं आए। 13 छात्र मेरा छात्र हो गया, ये कहीं से छात्रों के भविष्य में नहीं है।
1: एआईएसएफ ने इस प्रोटेस्ट से पहले भी और बाद में भी हमारी वही डिमांड्स हैं कि फ्री एजुकेशन, एक्सेसिबल एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन फॉर ऑल, और ये डिमांड्स हम बहुत
2: जल्दी।
1: और एक बात मैं और कह दूं, इन्होंने अभी बात की थी एबीवीपी के साथी ने कि वामपंथी साथी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात ना करें, तो मैं कह दूं कि हमारे लोग हमेशा से साइंटिफिक टेम्परामेंट बात करते हैं, लेकिन वो जो हिटलर और मुसोलिनी के फॉलोअर्स हैं वो ना करें, जो माफी वीर के सावरकर के फॉलोअर्स हैं।
6: रात में 11 बजे मोदी जी आते हैं इंस्टा पे और बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स और डॉग विसलिंग करने का काम करते हैं क्या, कि उन छात्रों छात्राओं को बोलते हैं कि हम माफ कर दिए, छात्रों को माफ कर दिए और इनके जो गुर्गे हैं जो जिनको या इंस्टा पे ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन छात्राओं को महिलाओं को गाली देने का काम करते हैं और जाकर इनकी पुलिस प्रताड़ित करती है, तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। डॉग विसलिंग करना बंद करें।
0: विद्यार्थी परिषद आशावान है कि आने वाले समय में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, ये सकारात्मक दिशा लेंगे और छात्र जो है वो नीति निर्धारण में एक सकारात्मक अपना योगदान भी देगा और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में जो है हम जो है छात्र स्टूडेंट पॉलिटिक्स।
2: अजय जी दो
3: देखिए, यदि शिक्षा व्यवस्था में वाकई सुधार आप चाहते हैं तो एनईपी जो बना है, मैं प्रोफेसर भी हूं साथ में पढ़ाता भी हूं और पढ़ता भी हूं बच्चों के बीच, बच्चों की समस्या रियल है कि उनको टाइम पर उनका सिर्फ ना कैलेंडर है ना एक परीक्षा का कैलेंडर है, न्यायिक सिस्टम हो, एनटीए जो आपने बनाया है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनजीओ बना दिया है, उसको खत्म कीजिए और जिम्मेवार व्यक्ति को उसमें रखिए। पूरी व्यवस्था में यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसको सख्त से सख्त
2: ये जो पीढ़ी है ना सुधांशु जी, इसने आप ही को देखा है, 12 साल से आपको देखा है, तो बार बार क्या कांग्रेस में हुआ ये याद दिलाने से नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस को ये जनरेशन आंक रहा है।
7: हाँ तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जो आपके सरोकार हैं उनको उठाइए, प्रबलता से उठाइए, पुरजोर विरोध के साथ उठाइए, सरकार स्वागत करने को तैयार है। मगर यह भी ध्यान रखिए, जैसा कि अभी एक बच्चे ने बोला, यह भी ध्यान रखिए, यह सच है कि भारत इस समय वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज में सबसे हाई फास्टेस्ट ग्रोथ से बढ़ रही है। इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर एक्सपोर्ट में सबसे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी शक्तियों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो आपके आंदोलन की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे। तो इसे मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी जिस परिस्थिति में लेके जा रहे हैं ये भी सावधानी रखिए, जो पुराना गीत है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
2: और बीजेपी से संभाल पेपर लीक रोकना, ये आप चूंकि आप सरकार है तो उसमें एक लाइन उसमें भी कर लीजिए कि बच्चों को संभाल के रखना, पेपर लीक रोकना, क्योंकि ये अगर घी नहीं होता तो ये आंदोलन में इस तरह से तमाम जेंजी नहीं पहुंचते। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: बहुत टायर्ड हो गई।
11: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR. ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: तक Digital First Channels. 11 billion views. 85 million unique viewers. One stop solution for your brand. Regional or hyper local reach. हर शहर, हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें.
3: भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी. दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी. मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में. आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है. 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस. जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है. आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ. भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है. मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों से लेकर झारखंड के स्टेडियम तक देश ने इस बार उस जनरेशन की बुलंद आवाज की ताकत देख ली है जिसे दुनिया जेन जी कहती है।
3: हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं।
2: एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे संवाद साध रहे हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनके बीच चौपाल लगा रहे हैं।
4: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा।
5: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री। Students are on the street in severe pain. They don't have work.
2: और तो और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब जेन जी के साथ वैचारिक संवाद की टेबल पर हैं।
6: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
7: जी सर,
6: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है। तो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
7: अरे वाह, बढ़िया है।
6: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील।
2: सवाल है आखिर अचानक सबका ध्यान जेन जी से बात करने, मनाने, समझाने या अपने साथ लाने पर क्यों है? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने बीते दौर की पुरानी राजनीतिक लड़ाइयों को नहीं जिया है। ये अतीत के बस्ते ढोने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो दौर है जो वर्तमान की हर एक चाल को खुली आंखों से देख रहा है और भविष्य का बारीक आकलन कर रहा है। साफ है, देश का ये युवा इतिहास के पन्नों को पलट कर नहीं बल्कि आज के हालात को देख कर अपना फैसला करेगा। जेन जी के वोट का रिवोट अब पुराने नारों से नहीं बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों के आज के एक्शन से कंट्रोल होगा।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। मानसून सत्र के आखिरी 4 दिन बहुत अहम। महिला आरक्षण, परिसीमन और FCRA लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना। सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले गृहमंत्री को देना होगा जवाब। बीजेपी का आया पलटवार। राहुल की प्रयागराज रैली के बाद योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा कांग्रेस और समाजवादी ने किया यूपी को बर्बाद। बीजेपी ने देश के साथ साथ राज्य का किया विकास। झारखंड में छात्रों से बातचीत का नहीं निकला कोई भी हल। तीसरे दौर की चर्चा के बाद आंदोलनकारियों का बयान, सरकार ने नहीं मानी पूरी बात। कल विधानसभा मार्च। सोरेन बोले दोषियों को सजा देंगे। और अमेरिका से तनाव के बीच सामने आया मुज्तबा खामेनेई का वीडियो। ईरानी मीडिया ने जारी की तस्वीर। होर्मुज खोलने को लेकर तेहरान ने रखी 5 शर्त। शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। झारखंड से बड़ी खबर, JPSC और JSSC में धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है और छात्रों की सरकार के साथ आज तीसरे दौर की बातचीत हुई है, मगर यह बातचीत भी बेनतीजा रही है। बड़ी खबर इस बीच में आपको दे दें कि छात्रों के साथ बातचीत हुई तो है लेकिन कोई हल निकला नहीं। सरकार ने आंदोलनकारियों की सारी बातें नहीं मानी है और अब कल सुबह 10 बजे सरकार के विरोध में छात्र मार्च निकालेंगे और पहले से इसका ऐलान उन्होंने किया हुआ है। इस बीच में बड़ी खबर यह भी इस समय है, JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। ये JPSC के सदस्य हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है लेकिन छात्रों के साथ सहमति नहीं बनी है। छात्र क्या मांग कर रहे हैं? परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि CBI से इस मामले की इंक्वायरी की जाए, जांच CBI करे, रिफॉर्म्स लेकर आया जाए। 3 सदस्यों के इस्तीफे की इस बीच में खबर है और अभी तक कोई बातचीत सरकार ने मानी नहीं है। बातचीत चल रही है लेकिन छात्रों की मांग मानी नहीं गई है और कल अब वो घेराव करने का उनका अपना ऐलान है। रांची में एक बड़ी जबरदस्त हलचल इस समय चल रही है। 3 दौर की बातचीत लेकिन बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। तो इस बीच में JPSC में एक बड़ी हलचल हुई है। 3 इस्तीफे हुए हैं। छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कल का दिन अब बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि 10 तारीख के लिए उनका पहले से ऐलान था कि हम तो मार्च निकाल लेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर जैसा प्रोटेस्ट हुआ, अब झारखंड में भी उसी तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और कल उनका मार्च का ऐलान है।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक 4 ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच। ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। 4 मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
2: SPC, JSSC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्रवाई अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी, पत्नी, उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और JSSC के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग जांच क्यों? JSSP में गिरफ्तारी, छापेमारी, लेकिन CGL में न छापेमारी, न पूछताछ, न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब सीबीआई की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, इन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
3: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
0: हमारे दोस्त संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ सत्यजीत भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब आशुतोष, चूंकि अब तक मांगे मानी नहीं गए तो ये माने हम कि अब कल मार्च होगा और होगा तो उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं?
2: बिल्कुल मार्च होगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि सारी मांगे मान ली गई हो और ऐसा भी नहीं कि सारी मांगे नहीं भी मानी गई हो। एक बड़ी खबर आपको ये भी दे दें, झारखंड सर्विस जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसे भंग कर दिया गया। जीएसपीसी भंग हो चुका है, उसके तीनों सदस्य जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया है। जमाल अहमद, अनिमा हसंदा और इसी के साथ साथ बच्चाचार्य, ये भी छात्रों की उन मांगों में से एक थी कि जीएसपीसी जो है उसको दोबारा गठन किया जाए, इन सभी लोगों को यहां से हटाया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से लिखी है, दो दौर की बातचीत, तीन दिनों की बातचीत, कुछ बातों पर जो बेनतीजा रही लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिस पर सहमति आई। लेकिन छात्र सहमत इस बात पर नहीं है कि जो 11वें से लेकर के 13वीं जेपीएससी ही उसको आप रद्द नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ सीजीएल सबसे बड़ा मुद्दा जेएसएससी सीजीएल का था, सरकार ने उस पर कोई आश्वासन नहीं दिया और इसीलिए जब बातें कहीं पर नतीजे पर पहुंची तो ज्यादातर मुद्दे बेनतीजा थे। 360 डिग्री में आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये जो अब करंट आपको दिखाई पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि छात्रों ने आह्वान किया था, लोग सुबह से अपने घरों से झारखंड के दूरदराज इलाकों से निकले और पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में इसी मैदान में जो पंडाल छोटा पड़ रहा था, अब वो पंडाल और ज्यादा छोटा पड़ा क्योंकि छात्रों की संख्या है और एक और मंच तैयार हो रहा है जहां से थोड़ी देर में अनाउंसमेंट की जाएगी। कल सुबह 9:30 बजे इन सभी छात्रों को पुरानी विधानसभा के पास
0: संख्या तो बहुत बहुत बड़ी दिख रही है। सत्यजीत, क्या दिक्कत आ रही है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? मतलब उनकी जो मांग है परीक्षा रद्द करना, रिफॉर्म कर दो, आप सीबीआई जांच कर दो, क्यों, कौन सी मांग पर सरकार को आपत्ति है?
4: देखिए, आपको हम तफ्तीश से समझाते हैं। सरकार का दावा है कि 98% मांग जो स्टूडेंट्स के थे वो मान लिए गए हैं। जो उन्होंने कहा था, जो डिमांड सबसे बड़ा डिमांड था कि 14 जेपीएससी के प्रीलिम्स को कैंसिल करो, उसके लिए तैयार, सरकार तैयार है, वो रद्द होगी। इसके अलावा जो है एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जाँच होगी, उसकी भी जाँच की मांग स्टूडेंट्स ने की थी, वो भी मान ली गई है। एसीएफ की परीक्षा जो है वो रद्द होगी। TDPL जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी थी जिसको लेकर काफी बवाल मचा था कि आखिर ब्लैकलिस्टेड कंपनी से कैसे जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम करवाए गए और आवेदन मंगवाने से लेकर रिजल्ट पब्लिकेशन तक का काम उसको कैसे दिया गया, तो उसने अभी तक जो जो भर्ती परीक्षा ली है उस तमाम परीक्षा की जांच होगी और कुछ अगर गलत पाया गया तो उस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। ये सरकार ने ब्लैंकेट एश्योरेंस दिया है।
0: तो आप बता रहे कि सरकार कह रही है कि हमने 98% मांगे मान लिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इस बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उनसे बातचीत की है, आपको दिखाते हैं वीडियो जो सामने आया।
5: बात पर हमें इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही हम्बल है। सर, आप कुछ बोले?
6: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
5: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी. आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर. हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा. ये बहुत ही हम्बल है. सर आप कुछ बोले.
6: जो खेलेगा वो खिलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय.
0: चल एक बार फिर से बात करेंगे रांची की. रांची में प्रदर्शन के साथ ही जबरदस्त सियासत भी अब चल रही है और अब बीजेपी ने आरोप लगाया कि छात्र जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर सोरेन सरकार ने पैलेट गन के साथ सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया है. बीजेपी आरोप लगा रहे कि सोरेन सरकार पैलेट गन से आंदोलनकारी छात्रों को डराने की कोशिश कर रहे हैं.
1: छात्रों का प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन के साथ ही गहरा रहा है राजनीति का रंग. इस सियासत को और गहरा किया बीजेपी ने जब बीजेपी ने दावा किया कि छात्रों को डराने के लिए सोरेन सरकार ने पैलेट गन के साथ सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद कर दिया है.
7: राजधानी रांची की सड़कों में पैलेट गन से तैनात सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने डेपुटेशन किया. ये तस्वीरें हैं आज की जिसमें पुलिस कर्मी पैलेट गन के साथ जो है वो रांची की सड़कों पर वो घूमते नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री जी, क्या यहाँ एससी एसटी ओबीसी बच्चे जो ज्यादातर संख्या में धरने पर बैठे हैं उनको खौफ आप दिखा रहे हैं?
1: बीजेपी सोरेन सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलना चाहती है.
7: सरकार के मंसूबे गलत लग रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है. अगर किसी भी तरीके से पैलेट गन या कोई बलपूर्वक आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे. और राहुल बाबा, आपने पैलेट गन का विरोध किया था ना दिल्ली में, जो चला भी नहीं था, तो झारखंड के मुद्दे पर कब मुंह खोलेंगे आप?
1: लेकिन जेएमएम बीजेपी पर पलटवार कर रही है और बता रही है कि पैलेट गन तो बहुत दूर की बात है, छात्रों को टच तक नहीं किया गया
8: अभी तक. पिछले 16 दिनों से जो है छात्रों का यह आंदोलन जो है चल रहा है. किसी भी छात्र को प्रशासन का, सरकार का कोई भी प्रशासन किसी भी छात्र को टच तक नहीं किया. लाठी डंडा गोली चलने तो दूर की बात है.
1: बीजेपी ने पैलेट गन को लेकर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया.
9: ये बबल गन है, रंग निकलता है इससे. और पैलेट गन का इस्तेमाल बिना होम मिनिस्ट्री के, दिल्ली में जो पैलेट गन चला था वो बीएसएफ ने चलाया था जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, बिना उसके नहीं हिलता है. उनको कोई जाकर बताए और इनका काम ही है कि शगुफा छोड़ के झूठ को इतनी बार बोलो कि लोगों से समझ में.
1: अब छात्रों को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है मगर सवाल वही है कि क्या इस राजनीति के फेर में छात्रों का आंदोलन फंस रहा है? आखिर छात्रों की मांगों को कब माना जाएगा? रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो.
0: अब आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हो रही सियासत की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा है. खड़गे ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन से लेकर ट्रस्ट के मेंबर चुनने तक सब कुछ तो मोदी ने किया, तो उन्हें तो जवाब देना चाहिए कि चोरी क्यों हुई. तो चढ़ावा चोरी पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर आक्रामक दिखे, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर. उन्होंने कहा कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी को आकर बयान देना चाहिए.
10: तो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया. उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया. पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया. झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर पे? उसने किया. ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया. इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो क्यों ऐसा हुआ.
0: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं. आज सीएम योगी ने एक बार फिर से याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के शासन में हर जिले में एक माफिया को पाला जाता था. सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में माफिया गिरी नहीं चलेगी.
11: इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था. हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया, और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता एक प्रदेश की पहचान थी।
0: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया और इस दौरान सीएम योगी खुद तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों भी लिया।
12: हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब यह नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। तिरंगा हमारे घर में लगे, हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो, लेकिन उसके कोड में संशोधन करते अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है।
0: एयर इंडिया की फुकट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है। एयर इंडिया की फ्लाइट का एक पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 का पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव मिला है। हादसे के बाद पायलट का डोप टेस्ट किया गया था और जांच पूरी होने तक दोनों ही पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया। दोनों पायलट में से एक का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। DGCA इस मामले की जांच कर रहा है। अब पायलट के डोप पॉजिटिव को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं।
13: फ्लाइट के लैंड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान पायलट्स का बीए टेस्ट होता है, पायलट्स का डोप टेस्ट होता है और उस जांच के दौरान यह पता चलता है कि पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। दो नहीं, उनमें से एक पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि डोप टेस्ट का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इररिलेवेंट है अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड कि हम जो बात कह रहे हैं कि डोप टेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन इतना है कि हम कह सकते हैं पायलट इंटॉक्सिकेटेड था, उसका काम करने का या उसके मेंटल फैकल्टी का, उसके रिएक्शंस का जो मापदंड है वो उस मापदंड से नीचे उतरता है। तो क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे बहुत तरह का एडल्ट्रेशन होता है हमारे खाने में, हमारे मीट प्रोडक्ट में, हमारे डेयरी में, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतने फेक ड्रग्स हैं और सबसे ज्यादा कल्चरली हम बहुत हर्बल ड्रग्स लेते हैं जैसे अश्वगंधा हुआ और बहुत तरह की दवाएं जो कि हर्बल ड्रग्स होती है और कल्चरली हम लेते हैं, ये सारे कुछ ना कुछ ट्रेस डोप पैदा कर सकते हैं।
0: ये थे एक्सपर्ट से, लेकिन अब पायलट फेडरेशन का क्या कहना है वो भी सुनिए।
14: जो ये फुकेट से दिल्ली की जो फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की, इसमें खुलासा किया गया है कि पायलट का लैंडिंग के बाद साइकोएक्टिव टेस्ट हुआ है नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर डिपार्चर के ऊपर टेस्टिंग नहीं होती है पायलट की ब्रेथ एनालाइजर को लेके और साइको एक्टिव को तो नहीं होती है, बट ब्रेथ एनालाइजर के अंदर डिपार्चर के ऊपर 100% होता है हिंदुस्तान के अंदर। बट बाहर की फ्लाइट सिंस वहां पे डॉक्टर या वहां पे सुविधा नहीं है तो इसकी जो टेस्टिंग होती है वो अराइवल पे होती है। बट एयरलाइन ने सोचा होगा कि उसके अलावा भी हम साइको एक्टिव टेस्ट करें, तो दोनों टेस्ट किए होंगे। अभी इस बात का ठीक से खुलासा नहीं हो पाया है कि वो पायलट पॉजिटिव टेस्ट किया है।
0: अब खबर धनबाद के, जहां पर एक इलाके में देखते देखते कई मकान धस गए। अब इन मकानों के धसने से कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि 3 दिन से भूत हिसाब चल रहा था मगर प्रशासन का कहीं अता पता ही नहीं था।
15: इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि पैरों तले से जमीन खिसक जाना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। धनबाद के बागमारा इलाके में छाताबाद में अचानक जमीन धसी और ये सारे घर जमींदोज हो गए। इसी मलबे में एक महिला दब गई। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए, ये स्थानीय लोगों के मुस्तैदी। तुरंत लोग भागे, मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और इस महिला को बचा लिया गया।
16: दो औरत देखे निकाला गया, ले जा हॉस्पिटल, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जा। देखिए एक लड़की को भी यार निकाला जा रहा, देखिए फंसा हुआ कि कैसे निकाला जा रहा।
15: इसी तरह से कई लोगों को यहां से निकाला गया। 3 दिन से इस इलाके में भू धसान हो रहा है मगर प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। इसलिए जब भू धसान के बाद इलाके के सांसद ढुलू महतो हालात का जायजा लेने पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी की।
17: जीववार कौन, जीववार जिला प्रशासन को लेना चाहिए, कौन नहीं जानता पीछे से बना रहे, कौन क्या फोन करवाया, इसका तो जवाबदेही बीसीसीएल और जिला प्रशासन को बना रहे नहीं होगा। और अगले 7 तारीख को भूधसान हुआ, फिर 7 तारीख को भूधसान, एक महीना तो जो स्थिति आज बना हुआ पूरे कोयलांचल में, इसका सीबीआई जांच होके दोषियों पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए।
15: ढुलू महतो बीजेपी के सांसद हैं और ये ठीकरा प्रशासन और सरकार पर फोड़ रहे हैं। मगर इस सियासत के बीच सवाल ये है कि इस तरह से भू धसान लोगों के जिंदगी पर बड़ा खतरा है, प्रशासन यहाँ से लोगों को सुरक्षित क्यों नहीं निकाल रहा? और सवाल ये भी है कि इस तरह से लगातार भू धसान हो क्यों रहा है? धनबाद से सिथुन के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब आपको तस्वीरें मध्य प्रदेश की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में तिरंगे के सम्मान में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी निकल पड़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में अपने आवास पर तिरंगा फहराकर राज्य में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। तो हर घर तिरंगा अभियान और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सिकड़ी में छोटे छोटे बच्चों को उनके हाथ में तिरंगा थमाते हुए दिखाई दिए। तो तिरंगा अभियान का आगाज शुरुआत उन्होंने कुछ इस तरह से की है। तो अपने आवास पर ही उन्होंने तिरंगा फहराया और फिर छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने बहुत सारे जो तिरंगे हैं उनके हाथों में दिए। बीजेपी अब हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। अलग अलग प्रदेशों में मुख्यमंत्री इस तरह से अभियान चलाते दिख रहे हैं और मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है। अब वक्त चला छोटे से ब्रेकअप और होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
20: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
21: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
22: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
23: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
21: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: In association with
2: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
3: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
1: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
4: युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सामने आया मुज्तबा का वीडियो। ईरानी मीडिया ने दिखाया सुप्रीम लीडर का वीडियो। किस मकसद से जारी किया गया यह वीडियो? क्या यह वीडियो 28 फरवरी से पहले का है? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ 13 सेकंड के इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका और इसराइल जैसे देशों के खुफिया और साइबर एजेंसियां तो अब तक इसके एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम कर चुकी होंगी। ये वीडियो मुज्तबा खामनेई का है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का, जिनके बारे में अभी तक कहा जा रहा था कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और किसी खुफिया जगह पर उनका इलाज चल रहा है। इलाज इतने खुफिया तरीके से चल रहा है कि वहां तक ईरान के राष्ट्रपति और कुछ गिने चुने कमांडर ही जा सकते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका की एयर स्ट्राइक में अली खामेनेई और उनके परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी, जबकि मुज्तबा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में ट्रंप ने भी माना था कि मुज्तबा जिंदा हैं। IRGC ने पिछले 5 महीनों में कई बार उनके ऑडियो और लिखित मैसेज जारी किए हैं, लेकिन मुज्तबा खामेनेई की 28 फरवरी के बाद से आज तक एक भी तस्वीर और फोटो जारी नहीं की गई थी। जुलाई के पहले हफ्ते में उनके पिता की अंतिम यात्रा जब ईरान के अलग अलग शहरों से निकल रही थी, तब भी उन्हें किसी ने नहीं देखा। कहा गया कि सुरक्षा के मद्देनजर वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आ सकते। खैर, अब जब वीडियो सामने आया है तो कई सवाल भी साथ लाया है। इसे ईरानी सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है, बल्कि मेहर न्यूज एजेंसी ने दिखाया है। क्या ये वीडियो ताजा है या फिर 28 फरवरी को हुए हमले से पहले का है? इस वीडियो को इस वक्त जारी करने का असली मकसद क्या है? अगर ये ताजा वीडियो है तो गंभीर रूप से घायल मुज्तबा इतने स्वस्थ कैसे दिख रहे हैं? इस वीडियो में मुज्तबा एक कमरे में करीब 10 लोगों से घिरे हुए हैं और किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं दिख रहा है। इस बीच होर्मुज ने ईरान और अमेरिका दोनों के जिद पर अड़ने की वजह से टकराव के हालात टले नहीं हैं। UAE ने आरोप लगाया है कि उसके एक तेल टैंक पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। बहरीन ने भी इस हमले का विरोध किया है। दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी की मौजूदगी में उसके तय रूट को न मानने वाले हर जहाज के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी और हर हाल में होर्मुज में आवाजाही उसके ही निर्देशों के हिसाब से होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत करने वाले पक्ष फारस की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही के लिए अस्थायी समुद्री मार्ग तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि होर्मुज फौरन खोल दिया जाएगा। बातचीत तो जारी है, लेकिन होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने जो 9 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, उन पर सहमति बनने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। यानी अगले कुछ दिनों में होर्मुज में हाहाकार खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाले सुमित और हैप्पी जब बुलंदशहर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। माला पहनाया गया, जय श्री राम के नारे लगे।
6: फूल बरसाए जा रहे, मारे जा रहे, इसका मतलब है कि मारने की तैयारी है। आगे ये मारेंगे हम।
5: ये पूरी सियासत शुरू हुई संसद में मानसून सत्र में पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर, जहां पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर एक कटाक्ष वाला नाटक किया। साधु के भेष में पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके बाद पप्पू यादव हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर बुलंदशहर के सुमित और हैप्पी ने हमला किया। ऐसे में उनके जोरदार स्वागत पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा में अपराधियों की बलिहारी है, दोषियों के स्वागत की परंपरा जारी है। सुमित बीजेपी का नगर मंत्री है, वहीं हैप्पी मंडल महामंत्री हैं, जिसके जोरदार स्वागत पर अब सियासत हो रही है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मानसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम महिला आरक्षण परिसीमन एफसीआरए से लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलट गन से राहुल ने फिर सियासी निशाना लगाया। सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। राहुल की प्रयागराज रैली के बाद योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस और सपा ने किया यूपी को बर्बाद, बीजेपी ने देश के साथ साथ राज्य का भी किया विकास। झारखंड में छात्रों से बातचीत का नहीं निकला कोई भी हल। तीसरे दौर की चर्चा के बाद आंदोलनकारियों का बयान, सरकार ने नहीं मानी पूरी बात, कल विधानसभा मार्च। सुरेन बोले, दोषियों को सजा देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मानसून सत्र में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं। सवाल यह है कि कल जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या फिर सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलेगा। सवाल यह भी है कि सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा।
3: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
4: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
5: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
4: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
6: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, चार दिन बचे हैं सदन में।
7: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
4: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
8: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह

0: बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा।
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
2: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है क्या?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है। अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
3: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
1: संसद का एक एक मिनट कीमती है। कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है। लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
4: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर पर नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं था, हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीस ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का नुकसान है।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी? आज तक ब्यूरो।
5: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण, चढ़ावा चोरी और FCRA को लेकर भी हमलावर हैं। सवाल ये भी है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्षी चर्चा होगी या एक बार फिर सदन में हंगामा होगा और हंगामे की भेंट सदन चढ़ेगा।
6: अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार।
1: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान

0: पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
1: दान पात्र में चोरी महापाप। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
0: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है। इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की। परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
2: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
0: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
3: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बन नहीं सकते हैं और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनके विचार दौड़ते रहता, उनके माइंड में वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते हैं उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
0: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का कोट नजर आता है।
4: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट। डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
0: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है।
5: विमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा। जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है, अब कल से लागू करो ना, कह दो विद इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
0: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
6: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, MLA ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, MP और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
0: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही FCRA को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और FCRA की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दाव के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो FCRA का विरोध करेंगे।
7: FCRA चा जे बिल है ते आत्ताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
0: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
8: छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर है और अब उन्होंने एथेनॉल का मुद्दा भी उठाया है। तो सवाल यह है कि कल जब संसद का सत्र शुरू होगा तो एथेनॉल का मुद्दा एक बार फिर गूंजेगा।
0: ये शोध का विषय है कि संसद का गतिरोध कैसे थमेगा, कैसे संसद सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा है। वो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी प्रयागराज में थे, वहां उन्होंने सरकार पर हमला बोला।
9: भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी, दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस।
0: राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों से संवाद कर रहे थे, लेकिन ये संवाद बीजेपी को पसंद नहीं आया।
8: विशेष में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये बीजेपी और आरएसएस देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे। लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम है, तुम सब भगोड़े हैं।
3: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।

0: नहीं कर सकते।
1: भारत के काम कर रहे देश के हित में नहीं।
2: दिस इज नॉट द वे।
3: अपने जो मुद्दे हैं, जो सत्र जो चलाना नहीं चाहते हैं,
4: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दो लाइनें लोकतंत्र की पूरी आत्मा को समेट देती हैं। लेकिन आज सवाल यही है कि सरकार के पास बहुमत तो है, लेकिन संसद में सर्वसम्मति क्यों नहीं बन पा रही। संसद के मॉनसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा। और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक घोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मॉनसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है। संसद का एक एक मिनट कीमती है। कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती है और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है। लेकिन अगर वही समय नारेबाजी और गतिरोध में निकल जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है, जिसमें विपक्ष के सवाल भी शामिल है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई पर गृह मंत्री सदन में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। कल प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा। 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अमित शाह, आप ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियों और पैलेट चले और आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब देना ही पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, लेकिन कई बड़े मुद्दे अब भी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की वजह बने हुए हैं। विपक्ष चर्चा और जवाब मांग रहा है। FCRA संशोधन, महिला आरक्षण, परिसीमन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे विपक्ष की लिस्ट में सबसे ऊपर है।
6: FCRA के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं, एक दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे कल।
5: सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद को चलने भी दिया जाना चाहिए। संसद में टकराव के बीच मानसून सत्र में अब तक 4 बड़े कानून पारित हो चुके हैं। वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, विपक्ष के सवाल जरूरी है, सरकार का बहुमत भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत तब होती है जब बहुमत कानून बनाए और सर्वसम्मति से देश को साथ लेकर चले। क्योंकि संसद में हर मिनट सिर्फ सांसदों का समय नहीं होता, उसमें 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें बैठी होती हैं। देखना यही है कि मानसून सत्र के बचे हुए दिन गतिरोध के नाम होंगे या बहुमत और विपक्ष दोनों मिलकर सर्वसम्मति के उस राह पर लौटेंगे जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री ने बरसों पहले की थी। संसद चलना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, और विपक्ष को सुनना सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मानसून सत्र के आखिरी चार दिन बहुत अहम महिला आरक्षण परिसीमन और एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले गृहमंत्री को देना होगा जवाब बीजेपी का आया पलटवार राहुल की प्रयागराज रैली के बाद योगी का विपक्ष पर निशाना कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी को किया बर्बाद बीजेपी ने देश के साथ साथ राज्य का किया विकास झारखंड में छात्रों से बातचीत का नहीं निकला कोई भी हल तीसरे दौर की चर्चा के बाद आंदोलनकारियों का बयान सरकार ने नहीं मानी पूरी बात कल विधानसभा मार्च सोरेन बोले दोषियों को सजा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो कहा जो खेलेगा वो खिलेगा
1: नमस्कार आज तक पर आपका स्वागत है 9 अगस्त इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख है जब 84 साल पहले 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो सबसे शक्तिशाली आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो 2026 में भी इस वक्त देश के युवाओं से जुड़ा सबसे बड़ा आंदोलन हर स्तर पर शुरू हो गया है जहां एक तरफ सरकार का नारा है कि पेपर लीक की बीमारी भारत छोड़ो वहीं सरकार के साथ ही विपक्ष समाज संघ संगठन सब बेरोजगारी से लेकर भर्ती में भ्रष्टाचार स्कूलों में लटकी भर्ती की समस्या के भारत छोड़ो आंदोलन में जुट चुके हैं
2: 9 अगस्त 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है भारत के जनसंकल्प जनशक्ति और स्वतंत्रता के प्रति अटूट विश्वास का वो आंदोलन जिसने अंग्रेजों के पांव उखाड़ देने वाली लहर देश में पैदा की 9 अगस्त 1942, 84 साल पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ता है वो आंदोलन जिसने देश भर में नई चेतना का संचार किया और असंख्य भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने की प्रेरणा दी भारत छोड़ो आंदोलन इस बात का सबूत है कि बिना त्याग तप और संघर्ष के बड़े मकसद हासिल नहीं हो सकते हैं और तब 9 अगस्त 2026 इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में भारत के युवाओं ने बेरोजगारी भारत छोड़ो पेपर लीक भारत छोड़ो लटकी भर्ती भारत छोड़ो भर्ती में भ्रष्टाचार भारत छोड़ो स्कूलों में बदहाली भारत छोड़ो के आंदोलन अलग अलग स्तर पर अलग अलग राज्यों में छेड़ रखे दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन जुलाई में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरा हो चुका है इस वक्त रांची के जंतर मंतर कहे जा रहे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड में भर्ती में हुई धांधलियों के खिलाफ 16 दिन से चलते आंदोलन पर सबकी नजर है उत्तर प्रदेश में लटकी भर्ती पर आंदोलन प्रदर्शन लगातार बेरोजगार करते आए हैं यूपी के फतेहपुर में स्कूल के भीतर साफ पानी साफ टॉयलेट की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अपनी मांगे पूरी करा चुका है पंजाब में पेपर लीक के आरोप लगाकर प्रदर्शन होता आ रहा है राजस्थान के अलग अलग कई हिस्सों में स्कूली छात्र प्रदर्शन करके अपने हक के टीचर हासिल कर चुके हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिव्यांग बच्चों की मौन क्रांति ने सत्ता के कान खोल दिए हैं बिहार की राजधानी पटना में 2 साल से लटके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर प्रदर्शन होने लगा है बिहार के गया जी में स्कूली छात्र प्रदर्शन करके अपने हक को मांगना जान चुके हैं कर्नाटक के विजयपुरा में इसी महीने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के ओएमआर शीट का नंबर और सवालों का नंबर बेमेल होने के बाद छात्रों का आक्रोश फूट चुका है इन सब आंदोलन धरना प्रदर्शन की मांगे इस बात का सबूत है कि अब सरकारों को मिलकर छात्रों के हक में बड़े फैसले लेने होंगे बताना होगा कि बेरोजगारी पेपर लीक स्कूलों का चरमराता ढांचा आयोगों में फैला भ्रष्टाचार भारत छोड़े इसीलिए जेन जी की बात हर पार्टी सत्ता सरकार संगठन संघ करने लगा है
3: हाय फ्रेंड्स बच्चों आओ हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े
4: हर सरकार स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए
5: अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं उनको लॉजिकल आंसर चाहिए
6: और उत्तर प्रदेश के जैन जी और अल्फा भी देख रहे हैं कि जो पेपर लीक करते हैं वही सरकार में बैठे हुए लोग
3: देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बख्शा नहीं जाएगा
7: युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी।
8: झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए।
9: सरकार ये चाहती है कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए।
5: हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेएनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
10: बिल्कुल
5: उसको ठीक करना।
2: हर दल किसी न किसी तरह से जेएनजी से मिलने जुलने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश में जुट चुका है, चाहे वो पीएम मोदी की इंस्टा रील्स हो, राहुल गांधी के इंस्टा क्वेश्चन आंसर सेशन या फिर गूंज कार्यक्रम, चाहे वो मोहन भागवत का जेएनजी कनेक्ट हो या फिर योगी सरकार का जेएनजी से जुड़ने का प्लान। हर दल को लगता है कि जेएनजी से कनेक्ट रहे बिना देश की सियासत में मौजूद नहीं रहा जा सकता।
11: जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए।
5: तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति, अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना क्या करना डेमोक्रेसी में इसके तरीके भी बताए हैं। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
10: बिल्कुल
5: उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए।
10: करेक्ट,
5: तब सब ठीक रहेगा।
7: हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है, और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है, प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है।
2: सबको युवा की चिंता है, जेन जी जेन अल्फा की चिंता है, और ये चिंता यूं ही नहीं आई। बात देश की करें तो फरवरी 2024 के आंकड़ों के मुताबिक जब देश में कुल वोटर 96,88,21,926 हैं, तो 18 से 29 साल के वोटर की संख्या 21,59,18,770 यानी 22.29% हिस्सेदारी जेन जी की देश के वोटर वर्ग में है। और अगर देश के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल वोटर जब 15,44,03,112 2024 की संख्या के आधार पर हैं, तो 18 से 29 साल के वोटर की संख्या इसमें 3,27,18,019 है। और जब देश के युवा की ताकत राजनीति में सत्ता पर स्थापित या विस्थापित करने की है तो सब युवा की बात सुनने को तैयार भी होने लगे।
1: भर्तियों में भ्रष्टाचार इस वक्त वो बीमारी है जिसने देश के तमाम राज्यों के नौजवानों को शिकार बना रखा है। और तब 16 दिन से सबकी नजर रांची के जंतर मंतर पर है, जहां झारखंड में कहा जाता है कि कोई भर्ती ही बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो पाती है। सरकार और प्रदर्शनकारियों में बातचीत के दौर चल रहे हैं, लेकिन इंतजार तो उस दौर का है जब भर्तियां शीशे की तरह साफ सिस्टम के जरिए हों, नौकरी देने वाला भ्रष्टाचार भारत छोड़ दे।
2: धरना प्रदर्शन और आंदोलन के 16 दिन।
10: झारखंड में इतनी धांधलियां चल रही है कि हम लोग छात्रों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अंदर से एकदम वैकेंसियों को बेची जा रही है, एकदम उसका एक फिक्स रेट हो जा रहा है।
12: खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बारिश ये पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा।
13: जो मेंस की कॉपियां हैं एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई, तो ऐसा कहां रूल है।
14: एग्जाम दिया हुआ था हम लोग का, दोबारा कैंसिल कर दिया। सीजीएल में तो कहीं इतना भ्रष्टाचार है।
15: वो भ्रष्ट ऑफिसर, वो भ्रष्ट नेता, जो लोगों जो अमीर जादों से पैसे लेकर नौकरियां बांटते हैं, लड़ाई हमारी उनसे है।
16: आप जिस तरह का बहाली लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, फिर लाते हैं, फिर रद्द करते हैं, और विज्ञापन अगर निकाल रहे तो आप नशा में निकाल रहे हैं।
17: जेपीएससी के साथ पिछले 7 सालों से मैं लॉयल हूँ, लेकिन जेपीएससी कभी मेरे साथ लॉयल नहीं रहा।
18: तो हम लोग चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो और जो उस पर संलिप्त है उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो,
2: ताकि अब किसी छात्र को भर्ती के भ्रष्टाचारी दलदल में न धंसना पड़े।
19: फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं।
20: जो सारी भर्तियां जिनमें अनियमितता हुई है टीडीपीएल के माध्यम से हुई हो या अभय तिवारी कुमार तिवारी की संलिप्तता वाली हो, उन सभी को रद्द चाहिए, उसके बाद जांच और फिर रिफॉर्म।
21: तो हम लोग चाहते हैं कि केवल जो हमारा जो मांग है वो पूरा हो जाए। हम लोग आज मांग पूरा होगा, सुबह तक से हम लोग निकल जाएंगे, शाम तक से निकल जाएंगे।
22: मतलब पेपर वर्क कभी आज तक हुआ ही नहीं कि आज पेपर वर्क में क्लियर, कल हमको मिल गया नोटिफिकेशन कि हाँ ये चीज हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ।
23: इस समस्या का त्वरित समाधान हो, सरकार छात्रों के हित में निर्णय ले।
2: जिस झारखंड में कहा जाता रहा कि भर्तियां बिना धांधली के नहीं हो सकती,
24: नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले है, माड़ भात खाने वाले है, पोथल भात खाने वाले छात्र है, नहीं पूरा करेगी। इसी प्रकार हम अधिकता से खड़े रहेंगे और सरकार का सामना करेंगे।
25: झुकनी पड़ेगी, जब तक नहीं झुकेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे।
26: लोग जब लड़के झारखंड अलग करवा सकते हैं तो ये सरकार क्या है सर।
27: जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम आंदोलन छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले।
2: झारखंड जहाँ के युवा चाहते हैं अब आर या फिर पार,
28: और हमारी मांगे जो है सर उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
29: नकारात्मक बात हुई है, हम लोग का डिमांड लिया गया है, डिमांड पे चर्चा भी आगे और भी चलेगा, अभी आंदोलन कंटिन्यू है।
30: सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि उन बातों को वो लोग समझें कि हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं।
31: अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं करे 10 तारीख को आपको पता चलेगा कि झारखंड के छात्र जो है सो एक मंच पर है या नहीं।
2: जहां सरकारी नौकरियों की परीक्षा में दावा है इतनी धांधली होती है कि अभिषेक जैसे हजारों छात्र तैयारी करना ही छोड़ देते हैं।
32: दूसरे स्टेट में सुनते हैं कि पेपर लीक होता है, यहाँ पेपर लीक होता है लेकिन सीट बिकता है, सीधा सीट ही बेच दिया जाता है।
33: आपका नाम?
32: मेरा नाम अभिषेक है, मैं तैयारी करता था, तैयारी में छोड़ दिया हूँ।
33: तैयारी कर रहे थे?
32: हाँ, छोड़ दिया मैंने।
33: कितने एग्जाम की तैयारी किया है?
32: सीजीएल में लास्ट दिया 2024 में 22 सितंबर को जो हुआ था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया।
33: कितने दिए थे अभी?
32: वही एग्जाम दो बार दिया था।
2: झारखंड यानी वो राज्य जहां पर दावा है कि छात्र परीक्षा हॉल में पेपर लिखते हैं तो सेटर होटल में बैठकर।
13: फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेंस की कॉपियां हैं एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई, तो ऐसा कहां रूल है। मेंस की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेंस लिखते हैं उसको मेंस लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, आयोग की जेपीएससी की स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है। बट एफआरओ मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है जो मेंस के एग्जाम में लिखी गई थी एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप में भी कॉपियां पाई गई, तो कैसे हुआ ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है। लोग एक बच्चा बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेंस जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में बैठकर मेंस की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं। मैम,
2: झारखंड यानी वो राज्य जहाँ पर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों से हर कदम छल होता है, इसलिए स्मृति कुमारी जैसी छात्रा अपने ही राज्य की परीक्षा देने से तौबा कर लेती।
33: यहाँ पर क्यों पहुँची?
34: प्रोटेस्ट के पहुँचे हैं, जब पीएससी रद्द करना चाहते हैं हम सब।
33: कितने साल की?
34: मैं 22 साल की हूँ।
33: 22 साल की है, इतना आपको गुस्सा क्यों है, क्या हुआ?
34: क्योंकि इस झारखंड में हमेशा 10 साल के बाद एग्जाम होता है, वो फेयर टाइप का नहीं होता है, हमेशा रद्द होगा एग्जाम, पेपर लीक भी हो गया है, सबका पैसा से नौकरी होता है, गरीब बच्चा गरीब होते जा रहा है, अमीर बच्चा अमीर होते जा रहा है।
33: आप कितने एग्जाम दिए हैं जो रद्द हुए?
34: हम झारखंड में एक भी एग्जाम नहीं दिए हैं, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं झारखंड में तैयारी करने का। यहाँ 10-15 साल लगता था एग्जाम तब, लेकिन नौकरी होता है, इसलिए हम सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं।
2: कहने को झारखंड में 14वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा में धांधली के बाद परीक्षा रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू होता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यहां हर परीक्षा में भ्रष्टाचार के पीड़ित न्याय मांगने पहुंचने लगते हैं।
0: जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा, सीबीआई रद्द मत करो। कल का जो हम लोग का विधानसभा मार्च घेरावा है वो रहेगा।
1: एज रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी मतभेद है, जो पेंडिंग एग्जामिनेशन उसको जल्दी बहाली करने का कोशिश की जाएगी। जे एस एस सी सीजीएल में उनका कहना था रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हम कमेटी बना के जांच करवाएंगे, जो बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीआईडी जांच करेगी, जो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईडी का बात उन्होंने किया सर, तो ईडी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल ईडी नहीं, सीबीआई के साथ ईडी उससे पहले रद्द होना चाहिए।
3: एससी सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन सीआईडी जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो सीजीएल में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो जेएसएससी कार्यालय में सीजीएल आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये सीआईडी जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी, पत्नी, उसके भाई के सीजीएल में चयन के संबंध में सीआईडी ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और जेएसएससी के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों? जेएसएसपी में गिरफ्तारी, छापेमारी, लेकिन सीजीएल में न छापेमारी, न पूछताछ, न कार्यवाही।
2: सरकार के साथ बातचीत के दौर चले, लेकिन पहले दो दौर में कामयाबी नहीं मिली।
4: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है, जो पूरा होगा।
2: रविवार को तीसरे दौर की बातचीत के साथ ही अब ये छात्र तय कर चुके हैं कि सोमवार को विधानसभा का घेराव करेंगे।
5: आश्वासन, जब आश्वासन मिल जाएगा, नहीं लिखित हम लोग को चाहिए, जब तक लिखित नहीं तब तक हम लोग टूटने वाले, झुकने वाले नहीं है।
3: मतलब शोडाउन होगा
6: आश्वासन तो देखिए, ये जब से झारखंड बना ना, तब से आश्वासन का ही बात हो रहा है। कभी मतलब पेपर वर्क कभी आज तक हुआ ही नहीं कि आज पेपर वर्क में क्लियर, कल हमको मिल गया नोटिफिकेशन कि हाँ ये चीज हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी है क्लियर करिए।
3: तो भरोसा नहीं है उस संस्था पर जो एसपी जेएसपीसी चलाती है,
7: ब्लैकलिस्टेड कंपनी है वो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ब्लैकलिस्ट कर दिया था और वो यहाँ चल रहा है। सरकार जबकि जान रही थी, लेकिन यहाँ चलने कैसे दे रही है? अब सरकार की मंशा कैसी है? यहाँ भी एक रोका गया था और फिर इसको एग्जाम कंडक्ट करने दिया गया।
0: हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द, मतलब रद्द, इसको नहीं रखने वाले। सरकार की मंशा थी सीजीएल में, उन्होंने न्यायिक जांच का हम लोग को बोला कि उसमें न्यायिक जांच करेंगे। हम लोग इसको नहीं माने। हम लोग का कहना है कि सीजीएल पहले रद्द हो, उसके बाद उसमें सीबीआई जांच हो। सब एग्जाम को रद्द कीजिए और मैं पुनः कहूंगा सीबीआई जांच का जो हमारा मांग है अटल है। हमारा और साथ आने वाला जो हमारा कार्यक्रम है 10 तारीख का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम, उसको झारखंड के इतिहास में ऐतिहासिक बनाना है।
8: जब तक सीजीएल रद्द की मांग हमारी नहीं मानी जाती, हम नहीं जाने वाले। और हमारा जो आंदोलन है यह शांतिपूर्वक होगा।
2: इस बीच 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत रविवार सुबह 3 बजे बिगड़ जाती है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज होता है। वहीं जेकेएलएम प्रमुख और डुमरी के विधायक जयराम महतो भी छात्रों के आंदोलन और मांगों के समर्थन में रविवार को पुराने विधानसभा परिसर में एक दिन के निर्जला उपवास पर बैठ जाते हैं।
9: अनशन है, निर्जला अनशन है, और इस निर्जला अनशन का उपवास का मूल उद्देश्य जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है उस आंदोलन को समर्थन देना, उनको नैतिक समर्थन देना, उनको अपने एक दिन के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको सहयोग और समर्थन देना ही उसका उद्देश्य है। और जैसा कि आपने कहा, सरकार को डायलॉग करनी चाहिए और बातचीत का 2-3 प्रयास हुआ है लेकिन प्रयास विफल रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, कम से कम जन्मदिवस के दिन बच्चों को वो उदास और नाराज नहीं करेंगे, उनकी जो मांगे हैं उसे पूर्ण करेंगे।
2: जंतर मंतर से झारखंड के धरना स्थल तक एक बात साफ दिखती है, परीक्षा व्यवस्था में खामियां होने के बावजूद तुरंत छात्रों की मांग सुनने पर सरकार किसी भी दल की हो गति नहीं दिखाती। यही वजह है कि प्रदर्शन को झारखंड में 16 दिन तक हो जाते हैं।
10: युवाओं में बेरोजगार की बड़ी वजह पेपर लीक, भर्तियों में भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन इसके साथ ही नौजवानों में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण स्कूल एजुकेशन सिस्टम का बंटाधार होना है। और ये हाल एक राज्य नहीं बल्कि हर राज्य का है, जिसमें आज हम आपको सबसे पहले बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट से खबरदार कर रहे हैं।
11: AI से जुड़ जाए तो 5 मिनट में पता चलेगा कि फलाना पंचायत में फलाना बूथ नंबर पर जनता को क्या कष्ट हो रहा है, वहां क्या दिक्कत आ रही है, वहां लोग क्यों चिंतित हैं।
2: काश वो AI आने से पहले सरकार की आई यानी आंखें खुल जाती तो दिख जाता कि झोपड़ी में एक ही जगह बिहार में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं।
12: ये एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी के अंदर पहली से 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं।
11: AI और कंप्यूटर साइंस पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की कल्पना को सर जमीन पर लाया और आप तमाम विधायकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, सबने समर्थन करके दोनों सदन से पारित करके महामहिम के पास भेजने का काम किया, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी चाहिए।
2: लेकिन काश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी खो जाते जहां दिख जाता कि बिहार के बच्चे अब भी जमीन पर बोरिया बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां सपना AI यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी का संजोया जा रहा है।
12: पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूल का अपना भवन नहीं है।
11: इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मॉडल स्कूल नहीं था, लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़े, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला। साथियों,
2: जो खुला हुआ है उसको कौन देखेगा सरकार? देखिए ना पश्चिमी चंपारण का ये स्कूल, जो मॉडल तो छोड़िए अब तक मॉडर्न युग में नहीं आ पाए, नन्हे मुन्ने बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं, लगे आपको कह रहे ये सब तो होता रहता। तो देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आज आपके AI वाले युग स्वप्न के समय में बच्चे एक गलियारे में 3-3, 4-4 क्लास एक साथ लगाकर पढ़ने के लिए मजबूर है।
14: 3 के बरामदे के नीचे एक साथ 1-2-3-4-4 क्लास की कक्षाएं चल रही है।
11: बच्चा घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा।
2: लेकिन एक स्कूल की इमारत तो दिला देती सरकार पहले, वरना बिहार में एक मंदिर में स्कूल चलाकर बच्चों को पढ़ाना ना पड़ता।
15: सर यहाँ क्लास यही चलता है, स्कूल नहीं बन
16: नहीं है इसका, हाँ। भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है, और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
15: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला,
16: बिल्डिंग नहीं मिला है।
15: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
16: कोशिश की है, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है,
15: हाँ।
16: लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है,
15: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
16: हाँ, बहुत बहुत परेशानी होती है।
2: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, आज तक की खबरदार करते इस रिपोर्ट को आज बहुत ध्यान से देखें, वक्त निकाल कर देखें, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार को जगाना और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ऑनलाइन बिहार स्कूल लाइव क्लासेस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं तो देखकर ये लगता है कि सरकार शायद कुछ बेहतर करने जा रही है। जहां मुख्यमंत्री के पास बैठने के लिए कुर्सी है, सामने बोतल बंद साफ सुथरा बढ़िया पानी है, सामने 50 से 55 इंच के टीवी पर AI क्लास से बिहार के स्कूल में कैसे सब कुछ बदल जाएगा उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है, लेकिन ये तो भविष्य की बात है। भगवान करे भविष्य में ऐसा हो, सब AI से पढ़ें और बढ़ें, वरना हकीकत बिहार के स्कूलों की ये भी है कि ये घर है या फिर ये झोपड़ी है, ये क्या है।
12: बच्चों को अगर कहीं पढ़ाई करने के लिए जाना हो तो उन्हें स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल का एक अपना भवन होता है। ये सबसे न्यूनतम जो है कहें तो एक जरूरत होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन बिहार सरकार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से ध्वस्त है इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत मैनापट्टी गांव में। और मेरे सामने आप ये देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर एक स्कूल चल रहा है, आप सामने देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल चल रहा है, पहली से पाँचवीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि आपको पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन हकीकत है क्योंकि ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ये झोपड़ी बिहार सरकार का एक प्राइमरी स्कूल है।
2: बधाई दीजिए सहरसा के सोनबरसा प्रखंड के मैनापट्टी गांव के 55 बच्चों को, एक झोपड़ी में एक साथ 5 क्लास वाला स्कूल दिया गया है।
12: ये मेरे सामने ये दो बेंच लगा, ये क्लास 1 है, फिलहाल 3 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो गया क्लास 1। मेरे बाएं तरफ यहाँ 2 बेंच, ये हो गया क्लास 2, यहाँ पर फिलहाल 4 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरफ आ जाइए, फिर उसके बगल में ठीक 2 बेंच इधर भी, ये क्लास 3 हो गया, यहाँ भी आपको 5-6 बच्चे पढ़ाई करते हुए दिख रहे होंगे। अब उसके बगल में ये है चौथी कक्षा, चौथी कक्षा भी 2 बेंच और यहाँ 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और अंत में 5वीं कक्षा, यहाँ पर एक ही बेंच है और 3 छात्राएं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं।
2: टॉयलेट साफ, पानी छोड़ दीजिए, वो सब तो दूर की बातें हैं। कहने को सरकार बस ये कहकर पीठ थपथपा सकती है कि अरे ऑर्गेनिक माहौल में एक झोपड़ी में 5 क्लास चलाकर सबका साथ सबका विकास का इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ दिखेगा।
17: शौचालय भी जाने के लिए बहुत कष्ट है, पढ़ने में भी दिक्कत है, बारिश का समय आते हैं तो सबका देह पर पानी गिरता है, हम लोग भींग जाते हैं।
12: बिल्कुल, छत तो देख रहे हैं, छत भी कई जगहों से टूटा हुआ है तो पानी तो टपकता ही होगा।
17: जी, इस तरह का बहुत समस्या है सर।
12: शौचालय है स्कूल में?
17: जी नहीं है शौचालय।
12: पीने के पानी की व्यवस्था है?
17: जी नहीं है।
18: बिहार के शिक्षा मंत्री जो है, नए शिक्षा मंत्री बने, उनका क्या नाम है?
2: और कुछ दे नहीं पाई सरकार यहाँ, जो उर्दू पढ़ने वाला कोई बच्चा था नहीं तो उर्दू का टीचर जरूर दे दिया।
18: तिवारी,
19: हम उर्दू के टीचर हैं लेकिन यहाँ उर्दू के बच्चे एक भी नहीं है, तो हम 1-5, 1-8 जो सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो हम कभी मैथ्स पढ़ा देते हैं, तो कभी GK पढ़ा देते हैं, कभी पर्यावरण पढ़ा लेते हैं।
2: इन बच्चों की नींव ही सरकार खोखली कर देगी तो भविष्य में ये क्या कर लेंगे, इनके साथ अपराध किया जा रहा है और दुख की बात है कि अपराधी बिहार की ही सरकारी व्यवस्था है।
12: अगर इस हालात में बिहार में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे, पहली से पांचवी प्राइमरी के बच्चे, जिनकी बुनियाद अगर इस तरीके से अगर सींची जा रही है इस तबेले नुमा स्कूल में, झोपड़ी है यहाँ पे सिर्फ केवल, तो फिर बहुत हैरानी होती है और देख के ये तस्वीरें बहुत दुख भी होता है।
2: लेकिन संवाददाता रोहित सिंह को तो अभी और चौंकना बाकी, सहरसा के सोनबरसा का झिटकिया गांव। 2007 में यहां प्राथमिक स्कूल शुरू हुआ, 20 साल बाद भी सरकार कह सकती है कि बच्चों को जमीन से जोड़ कर रखा है। काहे कि ना उनके लिए कुर्सी है, ना मेज, ना स्कूल की इमारत, जमीन है, बोरा है, पेड़ है, पेड़ भी बांस वाला और बांस के सहारे बोर्ड है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में बच्चों को लेकर खोट है।
12: पिछले तकरीबन 20 सालों से यही स्थिति है। बच्चे इसी तरीके से पेड़ की छांव में रोजाना आते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये प्राइमरी स्कूल जो है, इसमें पहली से लेकर पांचवी कक्षा तक के बच्चे आते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली और दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बाप दादा, हम लोग सुना करते थे कि बोरे पर रख कर पढ़ाई किया करते थे, लेकिन बिहार की स्थिति आज भी ऐसी है कि सब लोग को देखिए अपना अपना बोरा लेकर खुद आना पड़ता है या बोरा यहाँ दिया जाता है, लेकिन बोरे पर ही बैठकर आज बिहार के ये नौनिहाल जो है वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। टीचर हैं आप यहाँ पे?
13: जी जी।
12: 2007 से ही पढ़ा रही
13: हैं? जी, 7 से, फरवरी से।
12: तो बहुत पुरानी टीचर हैं, 20 साल से यही व्यवस्था है जीता जी।
13: जी,
12: बोले बोले कि नहीं बीओ को, डीओ को, डीएम को?
13: बोले हैं, बीओ सबको बोला हुआ,
12: कोई देखने नहीं आता है।
13: बीओ सब आते थे, सब आते थे, सब अपना
12: 20 साल में सिर्फ आते थे, देख के चले गए हैं, कुछ किया नहीं है किसी ने?
13: नहीं, कुछ नहीं।
20: बिहार के इस स्कूल में सरकारी दावों की हालत इस हैंडपंप की तरह है, जहां का पानी केवल हाथ पैर धोने के काम आता है, पीने के काम नहीं आता, क्योंकि इस पानी में दावा है आयरन बहुत है। जैसे सरकारी दावों में आयरन शक्ति बहुत होती है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। बाकी भीतर एक गोदाम नुमा कमरे में बापू और देश के असली लौह पुरुष सरदार पटेल की तस्वीर है,
12: जहां प्रिंसिपल
20: जो इस इंतजार में होंगे कि एक दिन कम से कम स्कूली शिक्षा के बुनियादी अधिकार की आजादी बिहार के इन स्कूल तक भी पहुंचेगी। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।
21: ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार को पता नहीं है, पता सब कुछ है। बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की कमी का मामला विधानसभा में उठा। वहां सरकार ने खुद बताया कि सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है।
20: मुख्यमंत्री बिहार के और शिक्षा मंत्री बिहार के जरा जहानाबाद का हाल देख लीजिए। भगवान भरोसे बिहार के सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं, जहां भगवान ना हो, मंदिर ना हो, तो शायद स्कूल ना चल पाए। भगवान भरोसे सरकार, भगवान भरोसे बच्चे, भगवान भरोसे भविष्य। खबर जहानाबाद की, जहां 64 साल से स्कूल है, लेकिन स्कूल की इमारत नहीं, स्कूल मंदिर के भरोसे चल रहा है।
22: यहां पर स्कूल चल रहा है, पर आपको जूता खोल कर जाना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मंदिर के परिसर में सरकारी स्कूल चल रहा है। यहां पर सर, यहां क्लास यहीं चलता है, स्कूल नहीं बन
23: नहीं इसका। हाँ, भवन नहीं है, भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय यहाँ चल रहा है, और ये विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, 1962 से चल रहा है।
22: 1962 से सरकारी स्कूल को बिल्डिंग नहीं मिला?
23: बिल्डिंग नहीं मिला है।
22: आप लोग कोशिश तो किए ही होंगे?
23: कोशिश की है, अभी हाल ही में हमने आवेदन दिया है।
22: हाँ,
23: लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है,
22: क्योंकि खुले में होने से दिक्कत तो होता होगा कि लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे हैं, बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी होते होंगे।
23: हाँ, बहुत बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब हम लोग को जिस भी परिस्थिति में हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा ही करें।
22: हाँ,
23: बेहतर ही करें। जब शादी ब्याह का टाइम आता है तो बहुत सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से फिर भी बच्चों को हम लोग संभाल के ही रखते हैं, लेकिन परेशानी हमें बहुत ज्यादा होती है।
22: देखिए, बच्चों की लिखावट भी बड़ी अच्छी है, कोशिश भी यहाँ पर टीचरों की तरफ से हो रही है कि पढ़ाई, पूरी शिक्षा अच्छे से दी जाए, लेकिन हाथ बंध जाते हैं आपके उस जगह पर आकर जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। मैम, आप लोग कोशिश कर रही हैं?
24: तो कोशिश तो करिए रहे, तो क्या करेंगे, बिल्डिंग न है तब तो जैसे यहाँ करना हो वैसे ही करेंगे ना।
22: तो मंदिर ने आप लोगों को ये जगह कम से कम दे रखी है 62 से?
24: तो सार्वजनिक है तो यहीं पर 62 से चल रहा है, तो यहीं पर पढ़ा रहे हैं हम लोग।
22: सर, बच्चे नियमित आते हैं?
24: यहीं है, ये है, आज से नहीं, बहुत दिन से स्कूल यहीं पर चल रहा है। तो हम लोग बच्चा के देखिए, आप लोग तो खुद देख रहे हैं,
22: आंखों से देख रहे हैं, सब
24: आंखों से देख रहे हैं कि हम लोग बच्चा के किस तरह से रखते हैं।
22: स्कूल में मजा आता है, पढ़ने में अच्छा लगता है सबको। क्या बनोगी बड़ी होके?
25: पुलिस बनने।
22: पुलिस? और तुम?
25: पुलिस।
22: पुलिस, कितने बच्चे पुलिस बनेंगे बड़े होके?
20: बिहार की सरकारी व्यवस्था के अपराध के हाथों ठगे जाते ये बच्चे बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हैं। जहां पहले सरकारें बदलती रही, बाद में मुख्यमंत्री बदलते रहे, बस नहीं बदला बच्चों का भविष्य।
22: बिहार में मेधावी छात्रों की कमी नहीं होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती है, पर इस सुविधा के बारे में तो हर एक पार्टी, 62 से अगर बात हो रही है, हर एक पार्टी की जिम्मेदारी है इन बच्चों के भविष्य की।
20: मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री पश्चिमी चंपारण का हाल देखें। बगहा के तरुणवा पंचायत का कुनई लक्ष्मीपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय 14 साल से अपनी बिल्डिंग का इंतजार कर रहा है। लाल रंग की पुरानी बिल्डिंग, ये पुराना स्कूल है, खंडहर हो चुका है, कभी इसे सरकार ने बनवाया नहीं। गांव के एक शख्स ने बाद में जमीन दी, गांव वालों ने चंदा दिया तो 4 कमरा 3 शेड वाला बन गया। वहां 2 से 5वीं क्लास चलती है, पहली क्लास बाहर जमीन पर खुले में बच्चे पढ़ते हैं, 106 बच्चे यहां पढ़ते हैं। लेकिन पार्टी दफ्तरों को बनाने की चिंता करने वाले लोग बच्चों के स्कूल नहीं बनवा पाते।
1: गर्मी में परेशानी होती, गर्मी गर्म हो जाता है ट्रेन तो बगल में है, पेड़ पौधे उसी के नीचे बैठकर हम लोग पढ़ाई करते हैं।
3: ये जो है भवन गांव के ग्रामीणों द्वारा सहयोग के से बनाया गया है, जिससे हम लोग अपनी बच्चों को यहाँ एडजस्ट कर पढ़ा पा रहे हैं। और हमारी जो है कटरैना में बहुत सारी समस्या होता है गर्मी के मौसम में, हम लोग बच्चों के साथ हम लोग भी झुलस जाते हैं।
20: मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बिहार के बेगूसराय का हाल देखें। मटिहानी प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय एक सामुदायिक भवन के एक कमरे और एक बरामदे में चलता है, 112 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जुगाड़ देखिए, एक ब्लैक बोर्ड को आधा आधा बांटकर 2 टीचर पढ़ाती है, एक तरफ क्लास 1 दूसरी तरफ क्लास 2 की पढ़ाई हो रही है। एक मैडम जब पढ़ाने लगती है बच्चों को बुलवाती है, दूसरी तब तक किनारे खड़ी रहती है। ये सब 21वीं सदी में चल रहा है, जहाँ जेंजी जेन अल्फा की बात हो रही है। बच्चों को मिलेनियल से भी पुराने दौर वाली शिक्षा व्यवस्था में फंसा कर रखा गया है, जहाँ न बेंच न कुर्सी न टॉयलेट न साफ पानी की व्यवस्था, महिला टीचर तक टॉयलेट के लिए आसपास के घरों में जाती है।
3: तो यहाँ जो है ये एक कम्युनिटी हॉल है, सामुदायिक भवन है जो जीर्ण अवस्था में था, फिर इसे हम जो है क्या कहते हैं कंपोजिट ग्रांट के फंड से इसको रेनोवेट करा के जो है यहाँ पे 2 क्लासरूम चला रहे हैं। एक अंदर में है जिसमें कि 3, 4 और 5 के बच्चे पढ़ते हैं, और बाहर जो है बरामदा में 1 और 2 के बच्चे पढ़ते हैं।
4: वर्ग एक कमरा में 3 क्लास 3, 4, 5 की पढ़ाई चलती है, जिसमें पढ़ाई के दौरान भी बहुत कठिनाई सामने आती है। ना तो चापाकल की व्यवस्था है, पानी पीने के लिए भी समस्या होती है, और बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे दूसरे के घर जाना पड़ता है।
20: मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मुजफ्फरपुर का हाल देख ले। 228 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 2 कमरे हैं, एक जर्जर टीन शेड, पहली से पांचवी तक की क्लास एक कमरे में चलती है, 6 से 8 के छात्र टीन शेड के नीचे बाहर पढ़ते हैं। स्कूल में न बेंच न डेस्क, बच्चे दरी पर बैठते हैं, बारिश में टीन शेड से पानी टपकता है, ब्लैक बोर्ड हवा से गिर जाता है, कई क्लास एक साथ चलती है, पढ़ाई क्या होती होगी आप समझते हैं।
5: 2 कमरे हैं जिसमें एक कार्यालय और एक जो है वो वर्ग कक्ष कह सकते हैं आप, जिसमें हम कई संयुक्त क्लास चलाते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4 क्लास चलाते हैं, और उसके बाद जो है वो शेष सभी कक्षाएं जो है वो बरामदे पर चलाते हैं यहाँ से वहाँ तक। अभी तेज हवा चल रही है, ब्लैक बोर्ड उलट

0: अखलासपुर के प्राथमिक विद्यालय में 99 बच्चों के लिए 3 टीचर, स्कूल के 3 कमरों में 2 खंडहर। शिक्षक कहते हैं कुछ समय पहले छत से प्लास्टर गिरा, 1 टीचर और छात्र घायल हो गए। ऐसा नहीं कि सरकार जानती नहीं, वो सब जानती है, क्योंकि बिहार के स्कूलों की इस हालत पर सवाल विधानसभा में सरकार के साथी ही उठाते हैं।
1: राज्य के कुल 35 जिलों में कुल 2276 माध्यमिक एवं प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। उच्चतर माध्यमिक प्लस टू विद्यालयों की संख्या 9,297 है, जिसमें से 34 जिलों के 720 विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है।
2: शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, अध्यक्ष महोदय उसके अनुपात में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक हो, उच्चतर मध्य विद्यालय हो, 10+2 है, उसमें भवनों का निर्माण नहीं है, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे।
0: बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 600 से ज्यादा स्कूलों को बनाने का फैसला लिया जा चुका है, बाकी सब जल्द बनेंगे। क्या आपको लगता है कि ये काम बिहार में होगा? यकीन मानिए, आज तक संवाददाता एक बार फिर जल्द इन्हीं स्कूलों में रिपोर्ट करेंगे, ताकि सरकार के दावों का सच हम आप तक फिर ला सके।
3: पिछले 10 दिन के भीतर देश जैन अल्फा के अलग अलग शहर वाले प्रदर्शन का भी गवाह बना है, जहां स्कूलों में टीचर की कमी, साफ पानी की जरूरत, साफ टॉयलेट की मांग को लेकर बच्चों ने अपना हक मांगा। लेकिन इन सब के बीच एक प्रदर्शन ऐसा रहा जिसने वाकई महात्मा गांधी की याद दिला दी, वो आंदोलन जहां बच्चे राजस्थान में इशारों से इनकलाब लेकर आ गए।
0: सबसे तेज नारे, सबसे तेज आवाज, ऐसा प्रदर्शन जहां अपना अधिकार पाने को आवाज उठाने के लिए ये नहीं देखा गया कि आवाज है या नहीं, ये देखा गया आवाज उठाने की ताकत है या नहीं। राजस्थान में ऐसा आंदोलन देखने को मिला जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हौसलों से आती है। राजस्थान ने पहली बार मौन दिव्यांग छात्रों की ताकत देखी है, जहां मूक बधिर विद्यार्थियों ने बिना एक शब्द बोले ऐसा संदेश दिया, सरकार को भी झुकना पड़ा। अब इस तीसरे वीडियो को देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरकारी सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ये वो बच्चे हैं जो थक गए थे चुप रहकर, चुप्पी उस कुव्यवस्था के खिलाफ जो रोज इन्हें चीख कर अपनी आवाज उठाने को कहती थी। वही आवाज जब फूटती है तो प्रदर्शन को देख सब अचरज में रह जाते हैं। लेकिन ये नौबत आई क्यों? जहां जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने आवाज उठाकर अब तक आंख कान बंद करके रखने वाले सरकारी प्रशासन को जगाया। इसीलिए आज तक संवाददाता शरद कुमार जयपुर की इस मौन क्रांति की वजह आप तक पहुंचाने के लिए जयपुर के इस सरकारी स्कूल पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही पता चल गया कि क्यों छात्रों की पीर पर्वत से पिघलकर इस स्कूल से निकली, जहां छत से बारिश का पानी टपकता है।
4: दिव्यांग बच्चे जो पढ़ने आते हैं क्लास में, वो डरते हैं, इस तरह से देख सकते हैं पानी टपक रहा है, किस तरह से छतों से यहाँ पर पानी टपकता है। बाहर भी देख सकते हैं आप किस तरह की स्थिति, अभी भी आपको पानी टपकता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, और इस तरह से कभी भी इन्हें डर सताते रहता है कि ये छत नीचे आ सकती है, जिसकी वजह से ये हमेशा डरे रहते हैं।

0: जहां क्लासरूम में जंग लगी कुर्सी और मेज है,
1: ये क्लासरूम है दिव्यांग बच्चों का, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से ये टेबल और कुर्सियां हैं जिस पर ये बैठते हैं। जंग लगे हुए इस तरह से दीवारें झड़ रही है, छतों से पपड़ियां नीचे गिरते रहती हैं, सिर पर जो पढ़ने बैठते हैं और ये सारे परेशान रहते हैं।
0: और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, तस्वीर बदलने को ये दिव्यांग केवल क्लासरूम की हालत भर से सड़क तक नहीं आए, साफ पानी तक जयपुर में स्कूल में बच्चे नहीं पा रहे थे।

0: यहाँ पर बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगाया गया है जो खराब पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से, किस स्थिति में यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इन सब कहना है कि यहाँ पर पानी पीने के लिए आता नहीं है। पानी का कहना है कि पानी आता नहीं, जो पानी पहले आता भी था वो खराब आता था। और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नल की व्यवस्था की गई है, मगर नलों में पानी आता नहीं है, किसी भी नल में पानी आता नहीं है। इस अव्यवस्था को लेकर ये सड़क पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं।
1: हालत ये कि टॉयलेट के भीतर तक स्कूल का बच्चा नहीं जा सकता, इतनी दुर्दशा है। दिव्यांग बच्चों के स्कूल बस की हालत देख लीजिए, लोहे का टुकड़ा भर बची। और समस्या केवल इतनी नहीं, गबन का भ्रष्टाचारी टीचर तक स्कूल में काम करता मिल गया।
0: निलंबित हैं आप?
2: जी निलंबित हूँ।
0: यहाँ क्या करते हैं
2: अभी? जो भी प्रधानाचार्य जी या मैनेजमेंट जो मेरे को काम देते हैं, जैसे बच्चों की देखभाल है, मॉनिटरिंग है, या कोई क्लास में अगर खाली है तो मैं उसमें चला जाता हूँ।
1: जिस स्कूल में बच्चों को पानी, टॉयलेट, सुरक्षित क्लासरूम नहीं मिल पाया, वहाँ एक सच ऐसा है जो सुनेंगे तो आपको लगेगा मजाक है, लेकिन ये आपको अब तक किसी ने नहीं बताया कि राजधानी जयपुर के सरकारी स्कूल में जहाँ 17 क्लासरूम है और 592 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इन्हें पढ़ाने वाले टीचर की संख्या है 76। ऐसा दिव्य स्कूल तो कभी देखा सुना नहीं गया, जहाँ प्रति 7 से 8 बच्चे पर एक टीचर रख दिया गया। मतलब ये आप कहेंगे कि राम राज्य हो गया, लेकिन हकीकत ये है कि ये वो टीचर हैं जो वीआईपी होने की वजह से यहाँ तबादला कराकर आराम करते हैं। आज तक के सवाल पर कि आखिर इतने टीचर यहाँ करते क्या हैं, सब भागने लगे।
0: 76 लोग आप लोग हो तो 76 लोग क्या करते हो?
2: सर से बात करो, बड़े सर से।
0: नहीं 76 टीचर हो, क्या करते हो आप?
3: मैं क्यों बात करनी है
0: सर? तो 76 टीचर हो, आप लोग क्या करते हो यहाँ?
3: यस आप हमारे किसी को पढ़
0: लो। अरे मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ।
1: एक एक करके जब इतनी समस्या इकट्ठा हो गई, तो जयपुर के सरकारी कॉलेज के दिव्यांग बच्चे सड़क पर उतर गए, किसी नारे, भाषण या शोर शराबे से नहीं, इशारों की भाषा में हुए मौन धरने से प्रशासन को जगाया।
4: मैंने मेरा नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर, इनको सुनो, इनको सुनो साइन से। काम नहीं हो और बताओ, कोई परेशान करे, कोई परेशान करे, सीधा मेरे को फोन करना।
1: अब यहाँ प्रिंसिपल भरत जोशी को हटा दिया गया है और दूसरी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मूक बधिर बच्चे बोल भी नहीं सकते थे, तब उनकी सुनने वाला कोई क्यों नहीं था? शायद इसी दर्द ने इनके मौन को आंदोलन बना दिया। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों दिव्यांग बच्चों की आवाज है जिन्हें अक्सर व्यवस्था के शोर में अनदेखा कर दिया जाता है। जयपुर के इस मौन आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब अधिकारों की लड़ाई इशारों में लड़ी जाती है, तब खामोशी भी सत्ता के दरवाजे खटखटाकर अपना अधिकार ले लेती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: जनता को केवल भर्तियां लटकाकर ही परेशानी के जाल में नहीं उलझाया जाता है, बल्कि जहां जनता शिकायत करने जा सकती है, वहां भी पद खाली छोड़कर आम आदमी को दौड़ाया जाता है। उदाहरण राजस्थान है, जहां बड़े बड़े आयोग में कुर्सियां खाली पड़ी हैं।
1: जिस सरकार में दावा है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, वहां राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का दफ्तर ही बेरोजगार है। आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों का पद खाली है। 10 सदस्य में केवल 5 लोग हैं। और बात केवल इतनी नहीं, राजस्थान महिला आयोग के दफ्तर में जब आज तक संवाददाता शरद कुमार दाखिल होते, दरवाजा खोलते ही पता चल जाता है कि आयोग में खाली पदों का कितना अंधेरा है। जहां महिला आयोग के अध्यक्ष का पद ही खाली है। कांग्रेस राज में महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी वो चली गई। नई सरकार में न तो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई, न सदस्यों की। रोजाना सैकड़ों महिलाओं की सुनवाई जहां होती थी, अब वहां कोई नहीं आता। महिला आयोग के दफ्तर में संविधान की प्रस्तावना की तस्वीर मानो मुंह चढ़ाकर कहती हो कि हम भारत के लोग किससे अपनी बात कहें, जहां महिला आयोग का पद ही खाली पड़ा हो।
0: ये राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष का दफ्तर है, जहां पर आप देख सकते हैं कुर्सियों पर धूल पड़ी हुई है। और इस तरह से पिछले डेढ़ साल से कोई अध्यक्ष नहीं है, तीन सदस्य होते हैं, सदस्यों तक की नियुक्ति नहीं हुई है। राजस्थान के महिलाओं की पीड़ा यहां पर सुनी जाती है, मगर कोई नियुक्ति नहीं होने की वजह से यहां पर कोई नहीं बैठने वाला है। सरकार की तरफ से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। कांग्रेस सरकार के दौरान नियुक्त हुई अध्यक्ष पद छोड़ दी है कार्यकाल खत्म होने के बाद, तब से ये पूरा दफ्तर यूं ही खाली पड़ा हुआ है।
1: राजस्थान सरकार के 10.5 लाख कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए बने राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण की हालत भी आज आप देखिए और खबरदार हो जाइए, क्योंकि यहाँ अप्रैल से कोई चेयरमैन नहीं, दो सदस्यों की जरूरत है, तो मुख्यमंत्री ने अपने ओएसडी को रिटायरमेंट के बाद लगा रखा है। यहाँ 2000 से ज्यादा कर्मचारियों की केस पेंडिंग है और प्राधिकरण का पद बड़ा सा बड़ा खाली पड़ा है, जिसकी वजह से राजस्थान हाईकोर्ट तक को अल्टीमेटम देना पड़ा।
0: ये राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन का कमरा है, जहां आप देख सकते हैं कि लंबे समय से पद खाली है, जबकि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं रहती है। आप इस बोर्ड को देख लीजिए, 1978 में इसके अध्यक्ष जब बने उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पद खाली है और इस तरह से यहां पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इसके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर स्थिति यह है कि आप देख सकते हैं कुर्सी खाली पड़ी है, कमरा खाली पड़ा है और अध्यक्ष का इंतजार सिस्टम कर रहा है। चेयरमैन नहीं है,
6: चेयरमैन साहब नहीं आए सर,
0: तब से खाली है पोस्ट?
6: ये सर 4-5 महीने से खाली है सर।
7: नंबर ऑफ केसेस में ट्रांसफर हुए हैं, जिससे कर्मचारी और वकीलों को दोनों को ही सफर करना पड़ रहा है इसकी वजह से, और कई बार सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय में हमने गुहार भी लगाई पर उस पर कोई विचार नहीं किया गया।
1: जयपुर में लोकायुक्त का पद मार्च 2026 से खाली है, अब यहाँ कोई शिकायत लेकर भी नहीं आता, पूरा लोकायुक्त सचिवालय खाली पड़ा है। जस्टिस पीके लोहरा मार्च में चले गए, नेम प्लेट हटाने तक की सुध लोगों को है ही नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा मुख्यालय खादी निगम का है, जिसके भवन का शिलान्यास कभी पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था और उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। यहाँ भी चेयरमैन और 8 सदस्यों की विदाई गहलोत सरकार के साथ हो गई, मगर कोई नियुक्ति नहीं हुई। चेयरमैन का पद कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। सुबह से शाम तक यहाँ कर्मचारी आते हैं, बिना काम के बैठे रहते हैं। गहलोत सरकार ने इस भवन में शांति एवं अहिंसा निदेशालय बनाया था, उसके अध्यक्ष का पद भी खाली पड़ा है।
0: ये राजस्थान का सबसे बड़ा खादी भवन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीवा रेड्डी ने इसका शिलान्यास किया था और माननीय मुरारजी देसाई ने इसका उद्घाटन किया था। मगर हालत क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरकार नई आ गई है पर अध्यक्ष कोई नहीं है। यहाँ पर कमरे में ताला लगा हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह से दरवाजों पर इस तरह से धूल जमी हुई है। स्टाफ के नाम पर यहाँ पर जो लोग हैं वो दफ्तर में कोई आता है कोई नहीं आता है, और इस तरह से ये चेयरमैन का कमरा लॉक पड़ा है जो धूलों से भरा हुआ है। आप समझिए कि इतने बड़े भवन में इस तरह से जो कर्मचारी हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो सब गायब हैं। कैसे काम होता होगा उन बनकरों का, उन खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से जुड़े हुए काम करने वाले कर्मचारियों का, सदस्यों का, कामगारों का, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
8: ब्रज किशोर जी थे लास्ट, उसके बाद नहीं आया,
0: नई सरकार में कोई नहीं आया।
9: नहीं बिल्कुल सही है, ये कह रहे हैं जो सही है।
1: 2023 से भजन लाल सरकार बनने के बाद से अभाव अभियोग आयोग, 20 सूत्री कार्यक्रम, समाज कल्याण बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड और पर्यटन निगम में भी चेयरमैन का पद खाली है। फिलहाल राज्य में बोर्ड, निगम, आयोग और प्राधिकरण में 100 से ज्यादा पद खाली हैं और मंत्री कहते हैं हम क्या करें, फैसला तो मुख्यमंत्री करेंगे।
5: इस तक लगातार नौजवानों के हक की आवाज उठाता रहेगा, ताकि बेरोजगारी, पेपर लीक, लटकी भर्ती से लेकर स्कूल शिक्षा की समस्या से आजादी मिल सके। आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
6: Lion Date Nut Bites.
8: आगे आगे।
9: अरे उधर
8: उधर क्या?
9: Correct correct.
10: मिल गया।
11: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: आगे आगे उधर किधर करेक्ट करेक्ट
1: मिल गया।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: In association with
4: Cera Sanitaryware, it's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी, दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड के छात्र आंदोलन के बारे में बताएंगे। भारी बारिश के बीच छात्रों का गुस्सा अब सरकार की नींद उड़ाने लगा है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र बार पार के मूड में है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। कल ये छात्र आंदोलन अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा तक एक तिरंगा मार्च का ऐलान किया है। इन सब के बीच 5 छात्र अनशन पर बैठे हैं और हाल ही में निकले मशाल जुलूस ने रांची का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। कल होने वाले इस विधानसभा घेराव को रोकने के लिए प्रशासन के पसीने छूट गए हैं। वहीं सोरेन सरकार के सामने साख बचाने की चुनौती है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि समाज में रिश्तों की डोर कैसे कमजोर हो रही है। एक तरफ सोनीपत के वृद्धाश्रम में दम तोड़ने वाले पिता का अंतिम संस्कार बेटियों ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर कर दिया, तो दूसरी तरफ लखनऊ में एक मां ने सिर्फ एक मकान के लालच में अपने ही नवजात का सौदा कर दिया। ये घटनाएं नहीं है, हमारे समाज की बदलती संवेदनाओं, गिरते संस्कारों का एक कड़वा सच। और आखिर में देश की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस दौड़ रहे 16.5 करोड़ से ज्यादा वाहनों के लिए जरूरी खबर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन वाहनों के मालिक सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बीमा नहीं, न गाड़ी में तेल होगा न गाड़ी चलेगी। सबसे पहले 16 दिनों से धरने पर बैठे उन छात्रों की बात जो झारखंड में आयोजित हुई 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जबरदस्त बारिश के बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्रों का धरना हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन में जंतर मंतर की तरह हंगामा नहीं है, अपशब्द नहीं है, छात्रों के मुद्दे हैं, उनके सवालों पर बात हो रही है। उन्होंने तो पोस्टर्स लगा दिए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया है वहां पर कि भाई यहां पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी, अब शब्द नहीं होंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब पूरे देश की नजर झारखंड पर पहुंच गई है और कल का दिन इस छात्र प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा है, हलचल से भरा होने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने तय किया है कि वो कल विधानसभा तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और इस दौरान झारखंड सरकार से उनकी मांगे मानने की अपील करेंगे। छात्र प्रदर्शनकारियों ने इसे तिरंगा मार्च नाम दिया। इसके जरिए वो सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों में से इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उनकी योजना है जयपाल सिंह स्टेडियम से झारखंड विधानसभा जाएंगे। ये दूरी करीब 13 से 15 किलोमीटर है, यानी करीब 15 किलोमीटर तक पैदल मार्च और फिर विधानसभा तक जाना। वहां पहुंचने के बाद विधानसभा के घेराव का भी प्लान है। अगर इसके बाद झारखंड सरकार उनकी मांगे मानने से इनकार करती है तो इस प्रदर्शन को पूरे राज्य में फैलाने की बात कही गई। कल का दिन झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बहुत चैलेंज वाला रहने वाला है। अगर प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा तक पैदल मार्च किया तो मुमकिन है प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में गहमागहमी की स्थिति बने। हालांकि कोशिश यही हो रही है कि विधानसभा के घेराव से पहले छात्रों के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकाल लिया जाए।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक 4 ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। 4 मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
2: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और JSSC के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, जेएसएसपी में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन सीजीएल में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब सीबीआई की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले, मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है, सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई, नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
3: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
0: देश में छात्रों के जो आंदोलन हुए या हो रहे हैं उन्हें किसी राजनीति, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार या किसी नैरेटिव के छोटे से दायरे में नहीं बांधा जा सकता। यह आंदोलन किसी विचारधारा के नहीं बल्कि उस पीढ़ी का है जो अपने हिस्से का इंसाफ मांग रहा है। ये तमाम युवा सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें हमारी इस मेहनत की कीमत दे दीजिए, हमारी नौकरियां दे दीजिए, हमारी परीक्षाओं को ईमानदार बना दीजिए और हमारे सपनों को बार बार लीक होने वाले पेपर धांधली और भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे मत दबाइए। दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जगह अलग अलग हो सकती है, चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, नारे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन आंदोलनों की आत्मा एक है क्योंकि हर शहर में सड़कों पर उतरा ये छात्र एक ही दर्द लेकर आया है। उनका दर्द क्या है, उनकी मेहनत आप सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए। जो लोग नौकरी करते हैं या अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन इतनी कम उम्र में छात्रों को सब कुछ भूलकर, खाना पीना, नींद, जागना, सोना सब भूलकर उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, पता चलता है नौकरी नहीं मिली। ये दर्द जो है ना कि उसने मेहनत की लेकिन व्यवस्था ने इंसाफ नहीं किया, इस दर्द की वजह से ही आए हैं। उसने रातें जागकर किताबें पढ़ी, उसकी किस्मत का फैसला कभी पेपर लीक ने कर दिया, कभी धांधली ने कर दिया, कभी लापरवाही ने, कभी उस सिस्टम ने जिसने उसकी ईमानदारी की कोई कीमत समझी ही नहीं। आज आप रांची से आई इन तस्वीरों को पहले देखिए जिनमें प्रदर्शनकारी युवा ऐसे प्लकार्ड्स लेकर आए हैं जिन पर लिखा है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो उनकी शादी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर इन प्लकार्ड्स की आज खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इन छात्रों का विरोध जताने का तरीका कितना नया है, कितना अलग है और कितना अलग है, मतलब अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं। हम भी मानते हैं कि ये क्रिएटिविटी अद्भुत है, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि क्या ये क्रिएटिविटी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इन बच्चों को तो सारी मेहनत क्रिएटिविटी अपने एग्जाम्स, अपनी पढ़ाई पर लगानी थी, नौकरियां हासिल करने में लगानी थी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। जो युवा इस देश के लिए नई टेक्नोलॉजी बना सकते थे, जो हाथ नए उद्योग खड़े कर सकते थे, जो युवा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में अपना योगदान दे सकते थे, आज यहां बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, मतलब अपनी पीड़ा समझाने के लिए उनको नारे गढ़ने पड़ रहे हैं, उन्हें अपने सपनों की भाषा छोड़कर विरोध की भाषा सीखनी पड़ रही है। और यह इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां छात्र आंदोलनों को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि वहां यह समझा जाता है कि अगर पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर उत्तर आए हैं तो समस्या छात्रों में नहीं व्यवस्था में है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन युवाओं को अब सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं उनकी आवाज अनसुनी ना रह जाए। वो ऐसे प्लाकार्ड्स बनाते हैं, ऐसे नारे लिखते हैं जो प्रतीकात्मक चीजें लेकर आते हैं, जिन पर लोगों और सरकार की नजर तो पड़े। यानी ये सारे युवा आंदोलन भी कर रहे हैं और इन्हीं पर यह भी जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह सरकार का ध्यान अपने मुद्दों पर खींच सके। ये बैनर्स, ये प्लेकार्ड, ये तराजू, ये गीत, ये देखिए। वैकेंसी निकलेगी तभी शहनाई बजेगी, ऐसे प्रकाश लेकर आना पड़ रहा है। और चेहरों की मायूसी देखिए, व्यंग, ये प्रतीक जो है ये सबको, मेरा सीवी तैयार है, सिस्टम कब तैयार होगा। ये उस पीढ़ी की मौन चीख है जो कहना चाहती है कि हमें विरोध करने का शौक नहीं है। नो जॉब नो शादी, हमें तो सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, एक निष्पक्ष, एक ईमानदार परीक्षा जिसमें पेपर लीक ना हो, नौकरियों में धांधली ना हो। मेरे होने वाले ससुर कहते हैं पहले नौकरी फिर लड़की, नो जॉब। शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दर्दनाक सच यही है। जब आप इस तरह के पोस्टर देखते हैं और पीछे इन मायूस चेहरों को देखते हैं, इन युवाओं ने अपनी क्रिएटिविटी विरोध के लिए नहीं सीखी थी, उन्होंने ये कल्पनाशीलता भारत का भविष्य बनाने के लिए सीखी थी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उन्होंने अपने सपनों के पोस्टर बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए संजोया था, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दर्द आकर्षक बनाना पड़ रहा है ताकि लोग रुकें, तस्वीरें तो देखें, पोस्ट शेयर करें, उनकी बात तो फैले, बहस करें और शायद तब जाकर सत्ता तक उनकी आवाज पहुंचेगी। किसी भी देश के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उसके सबसे होनहार युवा अपने सपनों का निर्माण करने के बजाय टूटे हुए सपनों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो। इसीलिए इन तस्वीरों को सिर्फ एक आंदोलन की तस्वीर मत समझिए, यह भी मत समझिए कि आंदोलन रील बनाने के लिए है। ये छात्र सिर्फ इसलिए अपने आंदोलन को आकर्षक बनाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वो अपने मुद्दों पर समाज, देश, सरकारों का ध्यान चाहते हैं और यही इन संघर्ष कर रहे युवाओं की असली पीड़ा है। देखिए,

Bye.

0: हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये क्रिएटिविटी जो आज इस आंदोलन में दिख रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है, और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उस क्रिएटिविटी की हर तरफ प्रशंसा हो भी रही है, लेकिन इन बच्चों को ऐसी स्थिति में लाने पर मजबूर किसने किया उसके खिलाफ हमारी आवाज है। ये क्रिएटिविटी आंदोलन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए थी, ये क्रिएटिविटी उनकी जिंदगी के सपनों के पूरे करने की यात्रा में शामिल होना चाहिए था कि भाई उनकी नौकरी लगी और नौकरी में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उनके अच्छे जगह दाखिला लगा और उस पढ़ाई में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन ताकत कहां झोंकनी पड़ रही है? आंदोलन में। सरकार कहती है उसके दरवाजे हमेशा अपने युवाओं के लिए खुले हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसे दरवाजे हैं जिन पर भले ताला नहीं है लेकिन इन पर सुनने वाले कान भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके लिए आपको 13 साल के इस बच्चे को सुनना होगा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची से आने वाले पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से अपील करता है, और जानते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। सुनिए।
1: गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 2-3 years 5 years की मेहनत यूं ही रायगढ़ चली गई, जब वो आते तो पता चलता कि ये पेपर कैंसिल हो गया, ये पेपर रद्द कर दिया गया, तो पेपर लीक हो गई। तो मैं सोचा नहीं, मुझे भी आवाज उठानी चाहिए फॉर माई फ्यूचर एंड फॉर दीदीज एंड भैया फ्यूचर। सो जस्ट वी आर अपीलिंग दैट एवरी एग्जाम शुड बी टेकन विद कंडक्टेड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द फेयर ओपिनियन। जनरली सर रांची एक बार पॉपुलर हुआ था एमएस धोनी सर की वजह से, और जंतर मंतर जो कि दिल्ली है और उसमें ज्यादा तादाद में प्रोटेस्ट भी हुई, इसलिए सेलिब्रिटीज और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो भी इस सड़क पर आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने। यहाँ पे जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरे पीसफुली तरीके से हो रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो रहा था। मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तादाद की डिफरेंस है, वहाँ पे तादाद और क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे तादाद और क्वांटिटी कम है। बस हम एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ हम एक ही मांग कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन सर से, बिकॉज वी वांट आवर राइट्स, our accountability. We want that every exam should be conducted, not only JPSC, not only JSSC, every exam should be conducted in the fair and transparent way.
0: कई लोग कहते हैं कि उन्हें झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों का मुद्दा अब तक समझ नहीं आया है, तो ऐसे लोगों को आज हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें इस आंदोलन की वजह साफ साफ नजर आती है। ये तस्वीर है उस तराजू की जिसमें सरकारी नौकरियों का पूरा रेट चार्ट बनाया गया है। जैसे इसमें लिखा है कि एफआरओ की नौकरी का रेट 50 लाख रुपए, महिला सुपरवाइजर की नौकरी का रेट 20 लाख रुपए, माध्यमिक आचार्य की नौकरी का रेट 35 लाख रुपए, आबकारी पुलिस की नौकरी का रेट 15 लाख रुपए और पंचायत सचिव की नौकरी का रेट भी 15 लाख रुपए। सोचिए अगर किसी व्यवस्था में सचमुच नौकरियों का रेट कार्ड छप जाए तो फिर परीक्षा, मेरिट, मेहनत, ईमानदारी, इसका क्या मतलब रह जाएगा? आज ये तमाम युवा प्रदर्शनकारी इसी रेट कार्ड को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं और सरकार के लिए ये गाना गा रहे हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। देखिए,
2: 30 लाख डीजीटी के लिए, 20 लाख वीडियो सीओ के लिए, 1 करोड़ और डीएसपी के लिए जो है सो आपको निर्धारित यहाँ पर नहीं किया है, काहे कि उसमें 1.25 करोड़।
3: तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे छात्र उठ जाएंगे तो हाथ उठोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
4: तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप एफआरओ का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, मध्यमिक आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख और पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया।
0: इनकी व्यथा कौन सुनेगा? इस आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोकनायक बिरसा मुंडा जी और दिवंगत नेता शिबू सोरेन जी की तस्वीर को मंच पर रखा गया है। और सोचिए ये बात कितनी खूबसूरत है, ये बच्चे हेमंत सोरेन की सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी विरोध प्रदर्शन में उन्होंने उनके पिता शिबू सोरेन की तस्वीर को प्रेरणा के तौर पर अपने साथ रखा है। इससे पता चलता है कि यह आंदोलन छात्रों के असली मुद्दों का है, उन्हें भी बातों की गंभीरता समझ में आ रही है। वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ये युवा कैसे देशभक्ति के गानों से अपना जोश बढ़ा रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए।
5: Get up!

0: अब आपको देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सुनवाते हैं। मुंबई में छात्रों के साथ एक खास संवाद के दौरान मोहन भागवत ने युवाओं की खुलकर तारीफ की, कहा कि देश की व्यवस्था को सुधारने में युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ कहा कि आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार है, कहीं ज्यादा देशभक्त है। उन्होंने चेताया कि अगर युवाओं से संवाद में कमी रहती है तभी जंतर मंतर जैसे आंदोलन होते हैं। संवादहीनता ही इन टकरावों की सबसे बड़ी वजह है। आंदोलनों और प्रदर्शनों के मुद्दे पर भागवत ने दो टूक कहा कि अगर जेंजी सड़क पर उतरते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एंटी नेशनल है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन सिस्टम में सुधार के लिए और पूरी मर्यादा में ही होनी चाहिए।
1: इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर मैं कह रहा हूँ तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
2: जी सर,
1: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए।
3: और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता।
4: विदाउट
3: इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
4: अरे वाह, बढ़िया है।
3: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
0: कहा जाता है कि किसी देश की महानता सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था, ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार विकास से नहीं मापी जा सकती। किसी राष्ट्र की असली पहचान उसके समाज, उसके तौर तरीके, उसकी संवेदनशीलता से होती है, और इस बात से भी होती है कि वो अपने सबसे कमजोर और सबसे बुजुर्ग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वो सिर्फ बागबान जैसी फिल्म देखकर दो आंसू बहाता है, या घर जाकर ये समझता है कि जो उन्हें इस दुनिया में लाए उनकी क्या कीमत है। अगर बात भारत की करें तो दुनिया हमेशा हमारे देश को उसके पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों, बड़ों के लिए सम्मान के लिए पहचानती है। कहते भाई इतने बड़े बड़े लोग नौकरी कर रहे हैं फिर भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हाँ, हमारा देश है ऐसा, हमारे लिए रिश्ते बड़े अहम होते हैं, जीवन से भी बड़े होते हैं। सदियों से यही कहा जाता रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है, जहां माता पिता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय होते हैं, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस दौर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि क्या हमारा समाज अब भी वैसा ही है जैसा हम उसे मानते हैं, और क्या रिश्तों की वही गरिमा आज भी बची हुई है। आज हम आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि हमारे समाज के सामने रखा गया एक आईना है। पहली तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है। एक बुजुर्ग पिता जिसने जीवन भर अपने परिवार का ख्याल रखा, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उनके भविष्य के लिए संघर्ष किया, जब उनके जीवन की अंतिम यात्रा शुरू हुई तब उनकी बेटियां ही उसमें शामिल नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए अंतिम संस्कार में आना संभव नहीं होगा, इसलिए वो वीडियो कॉल पर ही अपने पिता के इस अंतिम संस्कार को देख पाएंगी, वीडियो कॉल पर। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब ये वीडियो कॉल किया गया तब एक बेटी ने अपने पिता की चिता जलने से पहले ही ये पूछ लिया कि इस अंतिम संस्कार में और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर उसे और ये सब देखना होगा। एक पल ठहर कर सोचिए उस पिता की आत्मा पर क्या बीती होगी जिसने अपने अंतिम दिन एक वृद्धाश्रम में ही बिताए, जिनके पास परिवार था, बेटियां थी, रिश्ते थे, लेकिन विदाई की घड़ी में कंधे समाज ने दिए, अपनों की मौजूदगी मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट गई। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहां एक मां पर आरोप है कि उसने अपने ही नवजात बच्चे को सिर्फ इसलिए 3 लाख रुपए में बेच दिया ताकि उन पैसों से वो नया मकान बनवा सके। जब ये खबर पहली बार हमारे सामने आई तो हमें वाकई विश्वास नहीं हुआ। बच्चे से बड़ा घर, हमें लगा कि शायद कहीं कोई गलत फहमी हुई होगी, ये मामला ऐसा नहीं होगा, ऐसा सीधा नहीं होगा। लेकिन जब हमने FIR पढ़ी तो उसमें लिखी बातें पढ़कर हम स्तब्ध रह गए। सबसे हैरान की बात ये थी कि आरोप सिर्फ माँ पर नहीं, आरोप यह है कि जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ वही के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद की और रिश्वत लेकर पूरे सौदे को अंजाम तक पहुंचाया, यानी जिस जगह पर एक बच्चे का स्वागत होना चाहिए वहीं उस मासूम की जिंदगी का सौदा हो गया। मां की गोद नहीं मिली, पैसों के लिए बेच दिया गया। ये दोनों घटनाएं इतनी विचलित करने वाली थी कि हमने तय किया कि आज सबसे पहले हम समाज का यही कड़वा सच आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हमारे बीच हो रही हैं, अगर बच्चे वीडियो कॉलिंग पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो इसको किसी भी श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनाएं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, रिश्तों को देखने का लोगों का नजरिया है, वो बदल रहा है और वो शायद धरातल से भी नीचे पहुंच रहा है। इस बात को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं जिसमें तीन बेटियां ये कहते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची कि उन्हें मुंबई, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और नेपाल से आने में वक्त लग जाएगा। और जानते हैं इन्हें आना कहां था? इन्हें सोनीपत के उस वृद्धाश्रम में जाना था जहां शिवचरण गुप्ता ने बीमारी के दौरान अपना दम तोड़ा। जब बेटियों के कहने पर वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया तब सबसे बड़ी बेटी नेपाल से वीडियो कॉल पर जुड़ी। हमारे पास जो वीडियो है उसमें वो एक जगह भावुक भी नजर आती हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर अपने पिता को खोने का अफसोस तक नहीं है वो शायद गलत है, क्योंकि एक जगह पर वो भावुक भी नजर आ रही है। नेपाल से वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रही अनीता एक पल के लिए भावुक हुई थी, लेकिन सवाल तब उठे जब बाद में उन्होंने मुखाग्नि से पहले ही ये पूछ लिया कि अंतिम संस्कार में और वक्त कितना लगेगा। वृद्धाश्रम के लोगों का कहना है कि ये सुनकर उनका शरीर ठंडा पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटी समय की कमी के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आई उसके पास वीडियो कॉल पर भी उनका अंतिम संस्कार देखने के लिए वक्त नहीं था। देखिए,
2: तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ।
5: अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना।
2: हाँ जी हाँ जी,
5: अच्छे से हो गया ना सारा काम?
6: हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया।
7: ठीक है
6: भेज दूंगा
7: आपके आने पे होगा सारा काम।
6: हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना।
7: ये संस्कार हुआ है
6: अभी, तो संस्कार हुआ है
5: अभी। और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नहाएंगे, शिमला जलाएंगे?
7: नहीं अभी तो बस ये है ना, मैं पिता को अपनी बेटी
0: कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर कुछ भी कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शिवचरण गुप्ता कभी महाराष्ट्र के एक बड़े कपड़ा कारोबारी होते थे। उन्होंने मेहनत से अपना संसार बसाया, उनके पास किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। तीन बेटियां थी जिन्हें वो अक्सर अपना बेटा कहकर पुकारते थे। उन्होंने तीनों को अच्छी शिक्षा दिलाई, उनमें से दो बेटियां आगे जाकर टीचर भी बनी। समय बीता, बेटियों की शादियां हुई, फिर वही हुआ जो अक्सर हर पिता के जीवन में होता है, घर धीरे धीरे खाली होने लगा। शिवचरण गुप्ता और उनकी पत्नी अकेले रह गए। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से शिवचरण गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं हुए। करीब एक साल पहले वो सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे जहां पहले उनकी पत्नी मीना गुप्ता का देहांत हुआ और शिवचरण गुप्ता अकेले पड़ गए। एक महीने पहले जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसके बारे में उनकी बेटियों को बताया गया तो आरोप है कि वो उन्हें देखने नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता ने ही उन्हें आने से मना कर दिया था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पूछने की क्या जरूरत थी। जब पिता एक वृद्धाश्रम में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे तभी बेटियों को जिद करके वहां आना चाहिए था, लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं। शिवचरण गुप्ता इस आघात से इतना टूट चुके थे कि उन्होंने अपनी मौत से पहले अपना शरीर दान करने का फैसला किया। जब मृत्यु के बाद ये बात बड़ी बेटी को पता चला तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आंखें दान करके उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम को 5,100 रुपए भी भेजे, लेकिन बाद में वृद्धाश्रम के लोगों ने यह पैसा भी वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि अंतिम संस्कार का खर्च समाज खुद उठाएगा, और यह कहानी यही खत्म नहीं होती। उन लोगों का यह मानना था कि जब जीते जी कोई बेटी उन्हें देखने नहीं आई तो मरने के बाद यह 5100 रुपए के क्या मायने। और जब उनके अस्थियों के विसर्जन की बात आई तब भी बेटियों ने यह कहा कि उन्हें आने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। इसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने ही उनकी अस्थियों का विसर्जन करने का फैसला लिया। हालांकि यहां इस बात को साफ करना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में अब तक बेटियों का पक्ष सामने नहीं आया है। अगर वो सामने आती हैं, कोई उनकी मजबूरी है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, और जैसे ही उनका पक्ष हमारे सामने आएगा हम वो जरूर आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई कुछ पारिवारिक ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से तीनों बेटी नहीं आ पाई। ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्या वजह थी। लेकिन अभी वृद्धाश्रम के लोग क्या कह रहे हैं, उनके अंदर कुछ टूटा है, उनकी बात सुनिए।

0: देखिए बड़ी बिटिया थी, भावुक तो थी वो, इसमें मतलब हम ये कहें कि नहीं थी, नहीं भावुक थी, ये तो हर कोई होता है।
1: मैं तो बड़ा दुख का विषय है कि उन बच्चों के माथे पे सिनक तक नहीं थी, आंसू तक मैंने आंखों में नहीं देखे, मैं बिल्कुल सब कुछ लाइव देख रहा था वहां पे। एक बेटी का ये बोलना कि जब बाप की चिता सामने जल रही हो, कि ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, तो आप मानिए कि जब हम सारी क्रिया करने लग रहे हैं तो बच्चियों का ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, ये मतलब एक बहुत बड़ी क्रूरता है।
2: आजकल जो आज की पीढ़ी है वो मोबाइल में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में उलझी हुई, रील में उलझी हुई, लेकिन जो बुजुर्ग थे इनकी बेटियां तो उम्र दराज हैं, बड़ी उम्र की हैं, नेपाल में रहती हैं, बॉम्बे में रहती हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी।
3: कहते कलयुग है, इसी को कलयुग कहते हैं। मैंने ये जरूर सुना था कि लड़के अपने माँ बाप से विमुख हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो आधी रात को भी आवाज दो तो भागी जाती है। कैसी विडंबना इस कार्य के अंदर जो कल घटित है, सारा शहर क्या जिस आदमी से बात होती है कि ये ऐसा कलयुग आया जरूर था, लेकिन तो घोर कलयुग आ गया है।
4: आपका भी दिल शायद भारी हो गया होगा इस खबर को देखकर। कई लोग ये लिख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है। अब ये इस तरह की कोई पहली आखिरी घटना नहीं है। इसी साल 21 जुलाई को अमरोहा में एक बुजुर्ग पिता का अंतिम संस्कार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके चारों बेटे संपत्ति के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। यही नहीं, इन लोगों ने अपने पिता के शव को तब तक अर्थी नहीं चढ़ने दिया जब तक पंचायत बुलाकर संपत्ति के बंटवारे का फैसला नहीं हुआ। पैसा कितना बड़ा हो जाता है। इसी साल फरवरी महीने में जालौन में भी एक बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार को इसलिए रोक कर रखा गया क्योंकि उनके दोनों बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था और इन दोनों बेटों ने इस विवाद के कारण अपने पिता की अर्थी उठाने से इनकार कर दिया। 15 मई 2025 को तो राजस्थान के कोटपुतली में सारी मर्यादाएं टूट गई थी। एक बेटे ने इसलिए अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया क्योंकि वो उनके चांदी के कंगन मांग रहा था। सोचिए हमारे देश में हुआ, उस देश में जिसे श्रवण कुमार का देश कहा जाता है। अरे श्रवण कुमार ना बन पाइए तो मत बनिए, लेकिन कम से कम आंखों का पानी इतना तो रखिए कि उनके चले जाने के बाद ये सब ना करना पड़े। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिन्हें बताने के लिए ये शो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन हाँ इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बागवान जैसी फिल्म जाकर देखकर बहुत लोग उस पर आंसू बहाते हैं। अब देखिए इन घटनाओं में सबसे दुखद बात जानते हैं, अपने बूढ़े माता पिता का वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार करना। क्या आप यकीन करेंगे कि आज हमारे देश में इसका पूरा बाजार बन चुका है? हमने इस खबर को देखने के बाद इस माइंडसेट को, इस मानसिकता को समझने की कोशिश की तो जो हमारे सामने आया वो हमें हैरान कर रहा है। अलग अलग शहरों में ऐसी कई कंपनियां काम कर रही हैं जो वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कराने का काम करती हैं। ये कंपनियां अंतिम यात्रा, शव वाहन, फ्रीजर बॉक्स, शमशान बुकिंग, धार्मिक अनुष्ठान, ऑनलाइन श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार की लाइव स्ट्रीमिंग, विदेश से पार्थिव शरीर लाने जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सहूलियत की भी हैं, लेकिन जब अपने ही बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉल पर अपने पिता, अपनी माँ का अंतिम संस्कार देखें, इससे दुखद क्या हो सकता है। पैकेज बने हुए हैं इन लोगों के, दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई, ऐसे शहरों में कई लोग इन कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी, किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते, और इसके लिए ये लोग इन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। उन्हें हजारों रुपए देकर एक पैकेज खरीदते हैं जिसमें अंतिम संस्कार इन कंपनियों द्वारा किया जाता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग उनके बच्चों को दिखा दी जाती है। सरकार परिसीमन और विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर जो नए बिल लाना चाहती है उनके लिए सांसदों को एकजुट किया जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जिसमें चर्चेस से जुड़े पादरी और कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। ये बैठक एक घंटे तक चली थी जिसमें विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल को लेकर इनकी आपत्तियां रखी गई थी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैली मूर ने ये कहा था कि अगर भारत सरकार इस कानून को लेकर आई तो ये कानून भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भारत सरकार का ये नया कानून ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाओं और चर्चों पर कब्जा करने के लिए लाया गया है। इसे ईसाई पर सीधा, क्रिश्चियनिटी पर सीधा हमला माना जाएगा। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में मूर के इस बयान पर कई नेताओं और लोगों ने चिंता जताई है, क्योंकि वो उसको सीधा सीधा इस बिल को कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब होंगे, अगर ये बिल आया तो ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। इस बिल पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आज समझना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है और इस सवाल इतने सारे इस FCRA बिल को लेकर क्यों उठ रहे हैं। तो हमने सोचा सरल भाषा में आपको बता दें कि ये बिल है क्या। इस नए बिल का नाम है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, और ये पुराने FCRA कानून है उसका एक बदला हुआ रूप है। सरल शब्दों में समझे तो FCRA विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसमें सरकार ये कहती है कि NGO, ट्रस्ट, चर्च, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या सामाजिक संस्थाओं के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए इन संस्थाओं को कुछ नियमों का पालन करना होगा। क्या नियम होंगे? जैसे ये बताना होगा कि पैसा किसने भेजा, कितना भेजा, क्यों भेजा और इसका इस्तेमाल कहां हुआ है, यानी लेखा जोखा देना होगा। ऐसा भी नहीं कि ये कानून मौजूदा सरकार में पहली बार आया। आज से 50 साल पहले साल 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी फंडिंग के लिए पहली बार इस कानून को लागू किया था। उस वक्त कांग्रेस सरकार का ऐसा मानना था कि अगर विदेशी फंडिंग की निगरानी नहीं हुई तो इससे चुनाव प्रभावित होंगे, सरकार पर दूसरे देशों का प्रभाव पड़ेगा, आतंकवाद, अलगाववाद को फंडिंग हो सकती है। यानी सरकार को जब ऐसा लगा कि विदेशी फंडिंग से सरकारें गिराई जा सकती हैं, कहीं कोई विरोध प्रदर्शन आंदोलन कराया जा सकता है, कहीं किसी प्रोजेक्ट, फैक्ट्री या प्लांट को बंद कराया जा सकता है, तब ये कानून बना। ये दावा भी गलत है कि मौजूदा सरकार इस कानून में पहली बार बदलाव कर रही है। इस कानून में पहला संशोधन 1984 में हुआ, जब विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। इसके बाद 2010 में UPA की सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाया। ये तय हुआ कि अब किसी भी NGO का रजिस्ट्रेशन केवल 5 सालों के लिए होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और निगरानी को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी। इसके बाद साल 2020 में मौजूदा सरकार ने पहला संशोधन किया, दूसरा संशोधन साल

बार ऐसे संशोधन इस कानून में नहीं कर रही है। अब ये समझिए कि मौजूदा कानून में सरकार ऐसे कौन से बदलाव करना चाहती है जिन पर विवाद है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें पहला प्रावधान है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का। इसके तहत अगर विदेशों से फंडिंग लेने वाली कोई संस्था बंद हो जाती है या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस संस्था की सारी संपत्ति इस अथॉरिटी के अधिकार में चली जाएगी। यानी मान लीजिए अगर किसी संस्था ने विदेशों से फंडिंग लेकर अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया या कोई धार्मिक स्थल बनाया, बाद में वो संस्था बंद हो गई तो उसकी संपत्ति इस अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अब इस पर विरोध करने वाले लोगों और संस्थाओं का ये कहना है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है, यानी उन्हें डर है कि सरकार अगर जानबूझकर किसी संस्था का लाइसेंस ही कैंसिल कर दे तो उसकी संपत्तियां इस अथॉरिटी के पास चली जाएंगी। जबकि सरकार ये कह रही है कि ये डर या ऐसी कोई भी आशंका सही नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर किसी संस्था का लाइसेंस दोबारा बहाल होता है तो उसे उसकी संपत्तियां वापस लौटा दी जाएंगी। अगर हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है तब ऐसी स्थिति में इन संपत्तियों को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा होने से कई चर्च सरकार के कब्जे में चले जाएंगे, जबकि सरकार कहती है कि ये सब झूठ है। सरकार का कहना है कि जो चर्च, मस्जिद, मंदिर विदेशी फंडिंग से बनाए गए हैं उनका कभी भी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। यहां ये समझना भी जरूरी है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार कहती है कि इसके पीछे ऐसे कई मामले हैं जिनमें कुछ लोग एनजीओ बनाकर पहले विदेशी फंडिंग लेते थे, फिर उस एनजीओ को बंद कर देते थे और बाद में संपत्तियों की ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती थी। ऐसा ना हो और इन संपत्तियों की ट्रैकिंग की जा सके, यही सोचकर सरकार ने इस बिल में यह प्रावधान जोड़ा है। दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि अगर किसी एनजीओ ने अपना रजिस्ट्रेशन 5 साल में फिर से रिन्यू नहीं कराया तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। इसी में यह नियम भी जोड़ा गया है कि अगर किसी एनजीओ ने 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस पर विरोध करने वाले लोगों का बड़ा तर्क यह है कि जो छोटे एनजीओ हैं, जो छोटे संगठन हैं और जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते वो बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि वो ये नियम इसलिए ला रही है क्योंकि अभी बहुत सारे एनजीओ रजिस्ट्रेशन लेकर बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं करता। सरकार का दावा है कि जो डमी एनजीओ हैं, जिन पर विदेशी फंडिंग को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने का आरोप लगता है पैसा इधर से उधर करने के लिए, उनके लिए यह बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें तीसरा और सबसे अहम प्रावधान यह जोड़ा है कि अब से एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशों से मिली फंडिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। चौथा प्रावधान रिपोर्टिंग को लेकर है। इसमें विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों को यह बताना होगा कि उन्होंने विदेशों में किस संस्था से पैसा लिया, किससे लिया, किस उद्देश्य से लिया, किस राज्य में खर्च किया और किस चीज पर खर्च किया, मतलब कहां कहां खर्च हुआ है उसका ब्यौरा। यानी अगर किसी एनजीओ ने मध्य प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए विदेशी फंडिंग ली होगी तो उसे उस पैसों को किसी और चीज पर खर्च नहीं करना है, वो नहीं कर सकते। अगर आपका उद्देश्य था स्कूल बनाना तो आपको स्कूल ही बनाना होगा। और यही नहीं, वो एनजीओ इस पैसे को किसी दूसरे राज्य में नहीं बेच सकेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप पैसा ले रहे हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाएंगे और उससे आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं या उससे आप आपस में बांट रहे हैं। विदेशों से पैसा अगर किसी राज्य में स्कूल या कोई भी चीज बनाने के लिए आया है तो उससे वही काम किया जाएगा और वो विदेशी फंडिंग दूसरे कामों में इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। माना जा रहा है कि ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि अभी सरकार को लगता है कि पैसा तो किसी और काम के लिए आता है, खर्च किसी और काम पर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात सिर्फ मौजूदा सरकार को लग रही है। साल 2012 तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। उस वक्त जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइंस पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि विदेशों से फंडिंग लेने वाले कुछ एनजीओज इन विरोध प्रदर्शनों को करवा रहे। बाद में यूपीए सरकार में ही गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच संभाली थी और ये कहा था कि 3 एनजीओ ने सामाजिक कामों के लिए विदेशों से फंडिंग ली और बाद में यही पैसा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराने में लगाया जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब इस बिल्स के सबसे अहम बिंदु पर आते हैं।

0: जिसमें धर्म परिवर्तन का जिक्र किया गया है। सरकार कहती है कि उसने ऐसे सभी धार्मिक कामों और गतिविधियों की एक सूची बनाई है जो विदेशों से फंडिंग लेकर किए जा सकते हैं, लेकिन इन कामों में धर्म परिवर्तन और उसके प्रचार प्रसार को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब विदेशों से फंडिंग लेकर धार्मिक स्थलों का रखरखाव हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, गरीबों की मदद भी हो सकती है, अस्पताल चलाए जा सकते हैं, स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं हो सकता। भारत में 52,156 एनजीओ और संस्थानों को विदेशी फंडिंग का लाइसेंस दिया गया है, जिनमें सिर्फ 14,435 के करीब एनजीओ हैं जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। 22,496 हैं जो कि लाइसेंस रद्द है। अब देखिए, जो 14,435 हैं जो सक्रिय हैं, जबकि 72% एनजीओ के लाइसेंस जो है वो या तो रद्द है या रिन्यू नहीं हुए हैं। दूसरा, भारत उन देशों में शामिल है जहां इन एनजीओ को सबसे ज्यादा विदेशों से फंडिंग आती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2019 से 22 के बीच 55,741 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई। अगर सिर्फ 2024-25 की बात करें तो सिर्फ इस एक साल में 22,963 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई, और यह पैसा कम नहीं है। अगर आप भारत के इस नक्शे को देखेंगे तो हमारे देश के जिन 5 राज्यों में विदेशी फंडिंग लेने वाले एनजीओ की संख्या सबसे ज्यादा है, उसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर है। इसके अलावा रेंटेक डिजिटल के मुताबिक 2023 के मुकाबले भारत में चर्चेस की संख्या 6% बढ़ी है। इनमें भी सबसे ज्यादा एनजीओ आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, तीसरे स्थान पर सूची में तेलंगाना है। यहां सरकार एक और बात यह कहती है कि इस कानून में सांसद, विधायक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, जज, राजनीतिक दल, पत्रकारों के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक लगाई गई है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत का लोकतंत्र प्रभावित ना हो। लेकिन सरकार कहती है कि अगर ये विदेशी फंडिंग भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने लगे तो वो क्या करेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इस्लामिक नेटो बनाने वाले हैं। तीनों देशों ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है। इस अग्रीमेंट के मुताबिक इन तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देश मिलकर लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐसा ही एक डिफेंस पैक्ट हुआ था जिसमें अब तुर्की भी शामिल हो गया है, और ये तीनों देश चाहते हैं कि अन्य मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि मक्का में हुए समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस अग्रीमेंट के तहत ये तीनों देश दुश्मन के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये तीनों ही देश रणनीतिक साझेदारी के लिए एक साथ आए हैं। तीनों ही देशों की अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे सऊदी अरब के पास कच्चा तेल, पैसा है, तुर्की पहले से नेटो का सदस्य है, उसके पास नेटो ग्रेड के हथियार हैं, और इस नए इस्लामिक नेटो में वो हथियार सऊदी और पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसलिए तीनों देशों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हालांकि इस्लामिक नेटो कितना कामयाब होगा ये कहना मुश्किल है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ था वो भी अभी तक असरदार साबित नहीं हुआ है। इस डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान ने करीब 95,000 करोड़ रुपए के बदले सऊदी अरब में 25,000 पाकिस्तान सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां, अन्य हथियार पहुंचाए, और वादा किया था कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मिलकर लड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब तो ईरान ने खूब सारे हमले किए। हुती आतंकियों के खतरनाक अटैक के जवाब में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, कोई पलटवार नहीं किया। सऊदी अलग भुगतता रहा लेकिन पाकिस्तान गुना। अब इस डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलकर हूती के खिलाफ लड़ना चाहिए था। उस वक्त इस्लामिक नेटो में शामिल तीसरे देश तुर्की का भी इस नए इस्लामिक नेटो में एक्टिव होना मुश्किल है। दरअसल वो पहले से ही नेटो का मेंबर है। अगर उसने इस नए ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की तो उसे अमेरिका का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने तो बस सऊदी अरब के पैसों के चक्कर में एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है, कुछ कटोरे में आ जाएगा, जबकि उसे भी पता है कि अगर वो सऊदी अरब की लड़ाई में उतरा तो उसे बहुत नुकसान होगा। अब आपको रशिया यूक्रेन जंग का एक ऐसा सच बताएंगे जिसने मानवीय संवेदनाओं को एक गंदे बिजनेस में बदल दिया है। इधर रशिया की तरफ से युद्ध लड़ रहे सैनिक पति का जनाजा उठता है, उधर पत्नी की मतलब उसको पैसे मिल जाते हैं और उसके लिए खुशियों की शुरुआत होती है। मतलब कल्पना करके ये कहने में भी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन सोचिए कितना क्रूर, कितना अमानवीय होगा। अब ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि जहां जंग के मैदान में सैनिक का खून बहने पर करोड़ों के मुआवजे की लूट का खेल शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट CNN की है। इस खबर से जुड़ी केस स्टडी और ग्राउंड रिपोर्ट्स CNN ने की है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने मोहब्बत और मौत को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने पर रशिया की सरकार ने सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया था, जिसके तहत युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक के उत्तराधिकारी यानी नेक्स्ट ऑफ किन को 60 लाख से 90 लाख रुपए तक भारी भरकम मुआवजा दिया जाता है। इस मुआवजे को हासिल करने के लिए रशिया में भीतर एक ऐसा शातिर सिंडिकेट एक्टिव हो गया है जो सैनिकों की मौतों पर जश्न मना रहा है। ऐसे पैसे को हासिल करने के लिए कुछ जालसाज महिलाएं जानबूझकर सैनिकों को अपने जाल में फंसाती हैं, युद्ध के मुहाने पर जाने से ठीक पहले शादी रचाती हैं और उनके शहीद होते ही करोड़ों का मुआवजा लेकर हवा हो जाती हैं। रशिया में इन ठग महिलाओं को ब्लैक विडोज कहा जा रहा है। ये घिनौना खेल अब खुलेआम एक बिजनेस का रूप ले चुका है और ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने पूरे रशिया को झकझोर दिया है। एक मिलिट्री अस्पताल की नर्स ने वहां इलाज करा रहे गंभीर रूप से घायल 5 सैनिकों से चुपचाप शादी कर ली। 5 सैनिकों से बार में आपस में सब अनजान थे, उनमें से जैसे जैसे सैनिक दम तोड़ते गए ये नर्स उनके डेथ बेनिफिट्स बटोरती रही। बाद में इस नर्स का काला चिट्ठा सामने आया। एक पॉडकास्ट में एक महिला रियल एस्टेट एजेंट ने हंसते हंसते ये सलाह दी कि अगर किसी को अपार्टमेंट खरीदना है तो वो किसी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वाले सैनिक से शादी कर ले, सैनिक के मारे जाने के बाद 90 लाख मिलेगा, आसानी से घर खरीद लेगी। यहां तक कहा कि ये बिजनेस है। बहुत सारी महिलाएं ऐसा करी है। बाद में इन दोनों महिलाओं को माफी मांगनी पड़ी और इसमें उन्हें लंबी कम्युनिटी सर्विस की सजा भी भुगतनी पड़ी है। एक और मामले में एक सैनिक ने ऑनलाइन संपर्क में आई महिला से 10 दिन में शादी की। युद्ध में जाने के बाद जब फौजी को पता चला कि उसकी नई नवेली पत्नी सोशल मीडिया पर दूसरे व्यक्तियों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रही है, उसने तलाक की अर्जी दे दी। कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले ही ये सैनिक शहीद हो गए और वो शातिर पत्नी मुआवजे की कानूनी हकदार बन बैठी। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगा दी। मामला सिर्फ कुछ महिलाओं की चालाकी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अब सेना और प्रशासन के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों से भी जुड़ चुके हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जब एक वारंट ऑफिसर, एक सार्जेंट और एक मिलिट्री अकाउंटेंट पर आरोप लगा कि वो मिलकर एक सिंडिकेट चला रहे थे। ये लोग अनाथ या अपने परिवार में अकेले पुरुषों को चुनते थे, उनकी शादियां ऐसी महिलाओं से कराते थे, फिर उनकी उन सैनिकों को जानबूझकर युद्ध के सबसे खतरनाक और जो सुसाइडल फ्रंट लाइन है उन मिशंस पर भेज देते ताकि जल्द से जल्द मारे जाते वो लोग और मिलने वाला मुआवजा आपस में बांट लिया जाता। रशिया की एक 37 साल की लड़की, उसकी कहानी किसी को भी झकझोर देगी। इसके 59 वर्षीय पिता फ्रंट लाइन पर गोली लगने से मारे गए। इसके बाद लड़की को पता चला कि उसके पिता ने सेना में जाने से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी लड़की से शादी कर ली थी जिसे इस लड़की ने कभी देखा तक नहीं था। इसके बाद मारिया के पिता का अपार्टमेंट इस महिला का हो गया, वो उसे बेचकर गायब हो गई और इस लड़की के हाथ कानूनी रूप से कुछ नहीं आया। अब रशिया की संसद से लेकर आम जनता तक इस बात पर शोर मचा रही है कि देश के वीरों के बलिदान और उनके परिवारों को इन शातिर भेड़ियों से कैसे बचाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट CNN की है। इस खबर से जुड़ी केस स्टडी और ग्राउंड रिपोर्ट्स CNN ने की है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहे, किसी का हक खाकर बादाम नहीं खाए जाते, दवाइयां ही खानी पड़ती है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। B-Tex मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही B-Tex मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: In association with
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
6: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
4: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
7: Ye BJP aur RSS देश के लिए कुछ नहीं किया, आजादी के लिए कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, कोई आरएसएस का आदमी देश के आजादी के लिए जेल में गया है? आपके पास कोई बीजेपी के चेले गई हैं? अगर गई भी है तो वो लोग ऐसे होंगे जो कांग्रेस में रह के उधर भाग गए होंगे। लेकिन असल बीजेपी का आदमी कोई भी इस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। अरे ये इतिहास है तुम्हारा, और हमको हमेशा सिखाते हैं देशभक्ति। अरे देशभक्त तो असल हम हैं, तुम सब भगोड़े हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे।

मानसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम महिला आरक्षण परिसीमन और एफसीआरएस को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलट गन से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों के तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, कल विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को सजा देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खेलेगा। ईडी डायरेक्टर का एक साल बड़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, मेट्रो शहर हों या फिर गांव, बरसात का प्रकोप हर जगह है। भारत में हर साल बाढ़ से औसतन 1650 से अधिक लोगों की जान जाती है और लगभग 5700 करोड़ रुपए तक का आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान होता है। इस बार भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। तबाही नॉनस्टॉप देश के अलग अलग इलाकों को सीधे प्रभावित कर रही है।
1: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं आफत बनती हुई दिखाई दे रही है।
2: बहुत ज्यादा है, लोगों की गाड़ियां बंद हो रही है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों के कामों के लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा।
3: अरे बहुत ज्यादा परेशानी, देखो ना पूरे पानी
4: बंद हो गई है।
3: हाँ,
4: तो मैं लेकिन
1: तस्वीरों में देखिए कि कहीं आपको दूर तक सड़क नजर आ भी रही है कि नहीं आ रही है।
5: यहाँ पर रोड ना बनवा अगर बनवा नहीं पा रहे हैं तो एक काम जरूर करें, यहाँ पे कम से कम नहीं तो दो चार नाव डाल दें जिससे कि बच्चों को निकलने में परेशानी ना हो।
1: वाहन चालक खासतौर पर परेशान है, चाहे वो बसें हैं चाहे वो कारें हैं, क्योंकि इस पर जल प्रलय जैसे हालात साइबर सिटी के तमाम इलाकों में दर्ज किए जा रहे हैं।
6: बारिश काफी तेज है और बारिश के बीच एमबी रोड पर कई जगहों पर जल भरा हुआ है।
7: कम से कम 3 फीट पानी है, 3 फीट 3-4 फीट इतना था पानी।
8: आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है।
9: ये ताबड़तोड़ तबाही की नॉन स्टॉप तस्वीरें। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान के दरवाजे खुल चुके हैं।
10: यहाँ लड़का बच्चे को पढ़ने के लिए दिक्कत है, खाने पीने के लिए दिक्कत है,
11: सब चीज दाना पानी सब बर्बाद हो गया, कथी खाएगा बाल बच्चा कथी खाएगा।
9: जैसे आकाश में पानी की टंकियां फट चुकी हैं, जैसे बादलों ने अपनी सारी हदें तोड़ दी।
12: दक्षिण कश्मीर के शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने से कहीं घर जो है पानी की लपेट में आ चुके हैं।
9: जैसे आसमान ने पूरा समंदर उलट दिया, जहां नजर जाए पानी ही पानी।
13: कम से कम 50 साल से भी ज्यादा होगी जब जब बरसात होती है हमारे घरों में पानी भर जाता है, हमारा खाना पीना सब बिगड़ जाता है, हर साल हमें लाखों का नुकसान होता है।
9: जैसे नदियां अपने किनारे भूल चुकी हैं और सड़कें जैसे नदियों का रूप ले चुकी हैं। आसमान से बरसता पानी आफत का सैलाब बन चुका है। दिल्ली जैसे महानगरों से लेकर गुरुग्राम तक जहां सड़कें विकास की पहचान थी, अब वही सड़कें पानी में डूबी दिखाई दे रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश ने ट्रैफिक, ड्रेनेज और शहरी इंतजामों की पोल खोल कर रखी। कई जगह जल जमाव हो गया। गुरुग्राम में सड़कें तालाब बनी, गाड़ियां पानी में फंसी और घंटों का सफर कई कई घंटे लंबा हो गया। जाम गुरुग्राम की पहले से ही पहचान थी, जाम से बचने का इंतजाम न पहले था, बारिश हुई तो और ऐसी की तैसी हो गई। उधर पहाड़ों पर बारिश का एक अलग ही रूप दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक दर्जनों क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें जान माल और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 5 साल के आंकड़े डराते हैं। 2020 में बाढ़ से 1474 लोगों की मौत हुई और देश को 11,356 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2021 में तबाही और बढ़ी, 1371 लोगों की जान गई, लेकिन आर्थिक नुकसान बढ़कर 58,433 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले पांच वर्षों में यह सबसे बड़ा नुकसान था। 2022 में 1,673 लोगों की मौत हुई और नुकसान 27,337 करोड़ रुपए रहा। 2023 में बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा 4,472 लोगों की जान गई। हालांकि आर्थिक नुकसान 2,153 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। 2024 में भी राहत नहीं मिली। 1,539 लोगों की मौत हुई, करीब 4,74,000 पशुओं की मौत और 6,447 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया गया। मैदानी इलाके में नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी घुस रहा है और कई जगह सड़कें लगातार बर्बाद हो रही हैं। कहीं शहर डूब रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं नदियां सीमा तोड़ रही हैं। बारिश का ये बदलता मिजाज अब महज मौसम नहीं, एक बड़ी चेतावनी है।
0: जम्मू कश्मीर में आसमान से बरसता पानी आफत बन चुका है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं देखते ही देखते उफनते नाले पूरे के पूरे गांव को निगल रहे हैं। इस साल कश्मीर में 35 से ज्यादा बार बादल फटे हैं। हर गुजरता घंटा राहत और बचाव की नई चुनौती लेकर आ रहा है।
9: जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है।
14: अभी पानी और आ रहा है इसमें।
9: कहीं सड़कें पानी में बह गईं तो कहीं तेज बहाव अपने साथ खेत, गाड़ियां और रास्ते तक बहा ले गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से बड़ी बर्बादी हुई। दूध पथरी इलाके में बादल फटने के बाद पानी का ऐसा सैलाब आया कि देखते ही देखते सड़कें, गलियां और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर करीब करीब 2 फीट तक पानी भर गया। तेज बहाव के आगे गाड़ियां भी टिक नहीं पाईं और कई वाहन पानी के साथ बह गए। हालात इतने बिगड़े कि लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया।
15: मेन मार्केट में है जो कि इलियारपोरा कहलाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक मोटरसाइकिल इस जो है पानी की जद में आ चुका है और कहीं जो है काउशर्ड्स गिर चुके हैं। कहीं नदी नालों में इतना ज्यादा फ्लो है पानी का कि जो आसपास के घर है वो उनपे खतरा जो है मंडला रहा है। आप देख लीजिए कि जो लॉन्स है या जो आंगन जिनको बोलते हैं उनमें जो है पानी जमा हो रखा हुआ है। कहीं सारी विसिनिटी जो है वो ज्यादा उनमें पानी घुस चुका है और लोग ज्यादा जो है परेशान है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी कुछ खासा जो है इंतजाम नहीं किया जा चुका है।
9: फ्लैश फ्लड का असर सिर्फ सड़कों पर नजर नहीं आ रहा, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बडगाम के कई निचले इलाकों और गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। रायार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अचानक आए इस सैलाब ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। बादल फटने के बाद कुछ ही समय में बदले हालात ने साफ कर दिया कि पहाड़ी इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ कितनी खतरनाक हो सकती है। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक कम से कम 35 क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं में करीब 31 लोगों की मौत हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से जुलाई के मध्य तक कम से कम 22 क्लाउड बर्स्ट दर्ज किए गए थे। इसके बाद जुलाई और अगस्त की शुरुआत में लगातार भारी बारिश हुई। भारी बारिश के दौरान कई और क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद कुल संख्या 35 से ज्यादा हो गई। जम्मू डिवीजन में सबसे ज्यादा जाने गई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पुंछ, राजौरी, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ शामिल हैं। बारामूला में तेज बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने मुश्किलें बढ़ा दी। पुरी के बोनियार इलाके के लाचीपुरा में तेज आंधी तूफान के बाद स्थानीय नालों में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते बाढ़ का पानी इलाके में घुस गया और निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए। तेज बहाव और ओवरफ्लो होते नालों की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों को नालों और बाढ़ संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजौरी में फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई कि कई जगह जहां सड़कें थीं, अब उनका नामो निशान तक नहीं बचा है। मंजाकोट इलाके में दो दो लेन वाली सड़कें तेज बहाव के आगे बह गईं। कहीं सड़क का एक हिस्सा बचा है तो कहीं पूरा का पूरा रास्ता ही गायब हो गया। आसपास के गांवों के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार तक कैसे पहुंचे और जरूरी काम के लिए दूसरे इलाके में जाएं तो किस रास्ते से जाएं। कुछ जगह बची हुई सड़कें ही अब लोगों के लिए बड़ा सहारा है।
16: क्या रोड की इतनी खस्ता हालत है, आदमी को बीमार हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से वो मंजे पे उठा के इसको वहाँ यहाँ से निकाला जाता है। बड़ी मुश्किल से, बड़े दूर दराज, ये पहाड़ी एरिया है और ये स्लाइडिंग एरिया है। बहुत बहुत दूर से ये बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी हैं, और है कि रोड की खस्ता हालत है। ये रोड जो है बतराड़ा से शादराशी और भैरोट सोडा से सोडा में जाके कनेक्ट होती है। तीन चार रोडों को ये मलाती है। ये इसके साथ ये हट्टा शेरी हमारा बड़ा गाँव है, यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर है, वो भी इससे डिस्कनेक्ट हो गया है।
9: फ्लैश फ्लड ने किसानों पर भी बड़ी मार की है। मेहरा गांव में सैकड़ों एकड़ में फैली कृषि भूमि पानी और मलबे की चपेट में आ गई। तैयार फसल के साथ किसानों की महीने भर की मेहनत भी बह गई।
17: तो हमारी जमीन है, बहुत पहले जो दरिया आया था 19 को उसने भी नुकसान किया था, लेकिन अब जो दरिया पड़ा है कल वो पूरी जमीन ले गया है। 10-12 कनाल जगह मेरी थी और मेरे चाचे हैं और भाई हैं, मतलब कम से कम यहाँ हमारी जमीन में 50 कनाल रकबे में दरिया चला गया।
18: यहाँ धान लगा हुआ था ये भी चला गया, बाकी तो यहाँ मंग तो दिखाई नहीं दे रहे, जमीने रुड़ गई। तो जहाँ आज दरिया चल रहा है वहाँ का लोगों के फसल लगे हुए थे, नुकसान जो यही किया कि जमीने कट के ले गया है।
9: सड़क किनारे बने मकानों में रहने वाले लोग भी डरे हुए हैं। बारिश के बीच अगर पहाड़ खिसका या लैंडस्लाइड हुई तो खतरा सीधे घरों तक पहुंच सकता है। एकाएक आए इस सैलाब ने राजौरी में सड़क, खेत और ट्रांसपोर्ट सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है।
0: पहाड़ों में बारिश खतरे का दूसरा नाम है। हिमाचल से उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों तक कहीं भूस्खलन, कहीं फ्लैश फ्लड जिंदगी की रफ्तार को रोक रही है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें बंद हैं, कई गांवों तक मदद पहुंचाना तक मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग लगातार भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर रहा है।
9: उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और पश्चिम बंगाल तक पहाड़ों पर बारिश अब सिर्फ पानी नहीं, मलबा, चट्टाने और तबाही लेकर आ रही है। लगातार बारिश ने पहाड़ों की मुश्किलें बढ़ा दी और कई इलाकों में रास्तों और जिंदगी दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश अब पहाड़ों के लिए मुसीबत बन गई है। कहीं पहाड़ टूटकर सड़क पर आ रहे हैं तो कहीं मलबा और बड़े पत्थर गाड़ियों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। लगातार बारिश से पहाड़ों की मिट्टी कमजोर पड़ रही है और इसका असर सड़क से लेकर घरों तक दिखाई दे रहा है। बागेश्वर जिले में हालात ऐसे हैं कि मलबा आने की वजह से 15 से ज्यादा सड़कें खुद ब खुद बंद हो गई हैं, तो कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। बारिश के बीच बागेश्वर के छटिया गाँव में एक मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा।
19: इस आवासीय मकान में हंसी देवी जी जो हैं, जो विकलांग हैं, असहाय हैं, गरीब हैं और अपने बेटे के साथ जो है इस आवासीय मकान में रहते थे, उनके स्थानांतरण की भी व्यवस्था, कैसे वो सुरक्षित स्थान में रह सकते हैं, कहाँ वो रहेंगे, किस तरीके से उनका रहन सहन होगा, उसके लिए भी प्रधान जी के साथ मिलकर के हम अभी काम कर रहे हैं।
9: बारिश का असर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा। कांडा बागेश्वर हाईवे पर धपोली के पास पहाड़ से अचानक बड़े बड़े पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां आ गईं। फिलहाल लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से संवेदनशील इलाकों और पहाड़ी रास्तों पर सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है। चमोली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों की मुश्किलें बढ़ा दी है। कहीं पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़कों पर आ गया है तो कहीं मलबे और चट्टानों ने रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया है। जोशीमठ में पहाड़ों से मलबा और पत्थर लगातार टूटकर गांव की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बरसाती नाले में अचानक तेज बहाव के साथ पेड़, पत्थर और मलबा बहकर नीचे पहुंच रहा है। दहशत की वजह से लोगों की रातों की नींद उड़ गई।
20: सरकार सब सो रखी है और रोड की हालत ब्रेकिंग रोड है।
21: हाँ जी, क्यों बोले बबू भाई?
20: भाई साहब देखो, सब जनता परेशान है, दिखाई है जनता को आगे।
21: कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं है, कम से कम एक होमगार्ड या कोई प्रशासन का एक आदमी होता यहाँ पर, जो कि कंटिन्यू बोलता कि रोड खाली जीसीबी तो चाल से पता भी नहीं है कि किसको गाड़ी कहाँ डालना, कोई रोकने वाला नहीं है।
20: देखो इतनी नुकसान हो गया, आप दिखाइए नीचे को, काफी पत्थरों से काफी गाड़ियों को नुकसान हो चुका है। वो एक भाई साहब तो पूरा ही नीचे टूट गए थे, वो नीचे दिख रहे होंगे छाता वाले।
9: लगातार बारिश से अलकनंदा और पिंडर नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई जगह लैंडस्लाइड के चलते सड़कें बंद हैं। छोटे छोटे नालों में बारिश का पानी इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को अपने घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एक चूक हो जाने पर जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है।
22: छोटे बच्चों को
9: मौसम विभाग के मुताबिक अभी लगातार पहाड़ों में बारिश होगी। अब इस अलर्ट के बाद लैंडस्लाइड का खतरा भी लगातार बना हुआ है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बीच अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका असर अब नदी किनारे बसे इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। नदी का पानी अब लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। घरों में पानी भरने से नदी किनारे रहने वाले परिवारों में डर का माहौल है। दो गाँव को जोड़ने वाला पुल भी पानी में डूब गया है।
23: आप देख सकते हैं जो यह पुल है, यह वाल्मीकि समाज को जोड़ता है। इस पुल से आए दिन कई लोग सफर करते हैं, लेकिन यह पुल पूरी तरह पानी में डूब चुका है। पुल के ठीक बगल में देख सकते हैं ये वाल्मीकि समाज के लोगों के आवासीय घर हैं, लोग इनमें रहते हैं, लेकिन यह घर पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं और लोगों ने समय रहते हुए अपने घरों को खाली कर दिया है। इसके अलावा आप नदी के दूसरे छोर पर देख सकते हैं जो नदी किनारे बनाए गए आवासीय घर हैं, इन घरों तक नदी का पानी पहुंच चुका है।
9: बारिश के बीच विजयनगर त्याला मोटर मार्ग पर भी एक पहाड़ का हिस्सा खिसक गया। सड़क पर भारी मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसके बाद गांव से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और कई गाँव से संपर्क टूट गया। पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की टीमें जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रहे छोटे भूस्खलन के कारण राहत कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीरों ने दार्जिलिंग में रहने वाले लोगों की नींद उड़ा रखी है। बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर ऊंचाई वाले इलाकों में नजर आ रहा है। रिम्बिक लोडहामा इलाके में मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा बारिश की वजह से बह गया है। इस सड़क के जरिए बिजनबाड़ी और दार्जिलिंग शहर जुड़ता था, लेकिन सड़क टूटने से हर किसी के लिए परेशानी बढ़ गई है।
24: इस साल भी बारिश ज्यादा होने के कारण यहाँ का जनजीवन इतना अस्त व्यस्त है, हर जगह बाढ़ और ये लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके कारण स्कूल, बीमारी, बस यातायात, ऑफिस सब परेशानी झेल रहे हैं।
9: पिछले साल 5 अक्टूबर की आपदा में भी यहां बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था, लेकिन अब तक सड़क का काम पूरा हो नहीं पाया और उससे पहले ही एक बार फिर से आपदा आ गई। दोबारा बारिश में हालात और बिगड़ गए हैं। सिरमौर के पांवटा साहिब में बरसात ने एक पुराने पुल की आखिरी कड़ी भी तोड़ दी। नेशनल हाईवे पर बना करीब 50 से 60 साल पुराना ये पुल लगातार बारिश और तेज बहाव के बीच अचानक टूट गया। एक तस्वीर उस पुल की जर्जर हालत दिखाती है और दूसरी तस्वीर में देखिए कैसे पानी की तेज धार के बीच पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। दरअसल पुल का बीच वाला पिलर पहले ही कमजोर हो चुका था। बरसात के दौरान बढ़े पानी के दबाव ने इसकी हालत और बिगाड़ दी। प्रशासन ने पहले ही इस पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया था, फिर भी लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे। पुल पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। जिस खतरे की आशंका पहले से थी, आखिरकार वही हुआ। गनीमत रही कि पुल टूटने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
0: वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देश के कुछ और हिस्सों का हाल आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
1: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ.
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स.
3: लायन डेट नट बाइट्स.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: 6000 करोड़ रुपए का AUM था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया.
3: हाँ, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़. यस, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया. एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया. आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल का. एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर. उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना. सिर्फ महीने के 1.5 लाख की ऐसा ही 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर ऑफ कमाया.

ओडेसा और खार्किव में भारी तबाही। रूस ने बम बरसाकर शॉपिंग सेंटर उड़ाया। यूक्रेन ने बेलगोरोद में की एयर स्ट्राइक। चलती हुई इमारत की तस्वीरें खार्किव की हैं। एक रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत की कई मंजिलों में आग लग गई। हमले के बाद हुए धमाकों से घरों के शीशे चकनाचूर हो गए, दीवारें टूट गई और कई लोग अंदर फंस गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पावलोहराद शहर में तो रूसी मिसाइलों ने एक शॉपिंग सेंटर को ही निशाना बना दिया। रूस के इस हमले में पूरा मॉल ही तबाह हो गया है। बमों की बौछार से बर्बादी का अंदाजा इन तस्वीरों से आसानी से लगाया जा सकता है। लोग चीख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले में कई दुकानें जलकर राख हो गई। ओडिशा के इस्कंदर एम और KH-31P जैसी विनाशकारी मिसाइलों से हमला किया गया जिसकी चपेट में आने से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हफ्ते भर के रूसी हमलों की पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों के साथ साझा की है। उनका आरोप है कि ओडिशा, सुमी, खार्किव और कीव में रूसी मिसाइलें बर्बादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कई बेकसूर लोगों की जान जा रही है, लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, वाहन नष्ट हो रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। जेलेंस्की के मुताबिक इस हफ्ते में ही रूस ने 56 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कुल 61 मिसाइलें दागी हैं। इनके अलावा 1560 ड्रोन के जरिए भी हमले किए गए हैं। यूक्रेन भी पूरी ताकत से पलटवार करने में लगा हुआ है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक ने तबाही मचा दी। ताबड़तोड़ बम बरसने से शहर के कई इलाकों में आग की लपटें और काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। यूक्रेन के हमले पूरी रात जारी रहे और धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई देती रही। लेकिन यूक्रेन के अटैक की एक सीमा है, मिसाइल उसके पास बेहद कम है और मिसाइल रोकने की क्षमता तो खत्म ही हो गई है। ड्रोन की काबिलियत के सहारे वो रूस को लगातार नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। उधर रूस लगातार आक्रामक होता जा रहा है। यूक्रेन को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसने मिसाइलों का जखीरा खोल दिया है। आम मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अब पहले से ज्यादा इस्तेमाल की जाने लगी हैं, वो भी रिहायशी इलाकों पर। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मानसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम महिला आरक्षण परिसीमन और एफसीआरएस को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलट गन से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना। सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले गृहमंत्री को देना होगा जवाब। बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों के तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल। कल विधानसभा मार्च का ऐलान। आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा। सोरेन बोले दोषियों को सजा देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। ईडी डायरेक्टर का एक साल बड़ा कार्यकाल। 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान।

0: देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का मिजाज बिल्कुल अलग है, लेकिन परेशानी एक जैसी। आपको देश के दूसरे हिस्सों का हाल भी दिखाते हैं।
1: ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। लंबे अरसे के बाद दिल्ली में बादल जमकर बरसे, लेकिन बारिश ऐसी हुई कि राहत के बजाय आफत बरस पड़ी। जल भराव, ट्रैफिक जाम, पानी में आधे डूबे लोग, सड़कों पर रेंगती गाड़ियां, बारिश के बाद दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी नजर आई। ऐसे लगा जैसे देश की राजधानी नहीं बल्कि किसी दूर दराज इलाके में पहुंच गए हो, जहां बुनियादी सुविधाएं बारिश के आगे बेबस नजर आती हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की एमबी रोड यानी मेहरौली बदरपुर रोड की हैं। बारिश हुई तो सड़क देखते ही देखते दरिया में तब्दील हो गई। यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ और कई गाड़ियां पानी में फंस गईं।
2: अभी हम दिल्ली के एमबी रोड पर हैं, जहां पर आप देखेंगे जलभराव किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अब स्कूल का टाइम बीत रहा है, बच्चों को बाहर घर पहुंचाना है और स्कूल को लौटना है, तो जैसे तैसे निकालने का प्रयास। देख सकते हैं कितना सड़क डूबा हुआ है, कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। कितना फीट तक पानी भर गया है यहाँ पर?
3: ये मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरी आप देख सकते हैं घुटने से ऊपर और कमर से हल्का सा नीचे पानी है। आपको मैं बस इतना जरूर कहूंगा, सरकार कोई भी आ जाए, अगर वो जमीन पे काम नहीं करेगी तो यही हाल रहेंगे।
4: ये तो आप फिर भी, ये बाहरी इलाका है, आप संगम बिहार के अंदर जाइए, आप वहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, वहाँ तो गाड़ियाँ फंसी पड़ी है, लोग नहीं जा पा रहे हैं, लोग जो जो इतना दूर दूर से संगम बिहार के लिए आ रहे हैं, दुकानें बंद हो गई है, व्यापार खत्म हो चुका है संगम बिहार के अंदर।
1: दक्षिणी दिल्ली के स्कूल के बाहर की ये तस्वीर देखिए। तुगलकाबाद में स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर और बाहर इतना पानी भर गया जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और स्कूल की छुट्टी कर दी गई। टीचर ने कहा अटेंडेंस लगाओ, घर जाओ। बारिश की सबसे खौफनाक तस्वीरें दिल्ली के वजीराबाद से सामने आई। यहां एक खुले नाले में 3 बच्चे गिर गए। बारिश के पानी ने सड़क और नाले के बीच का फर्क ही मिटा दिया था। स्कूल से लौट रहे बच्चों को लबालब भरा नाला दिखाई नहीं दिया और वो हादसे का शिकार हो गए। दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये दिल्ली का सबसे महंगा, सबसे पॉश इलाका वसंत कुंज है। दिल्ली की ये सड़क एयरपोर्ट तक जाती है, लेकिन जल भराव का हाल देखिए। सड़कों के बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी की लहरें बनाती हुई चल रही हैं और बगल में स्कूल के बच्चे मानो समुद्र का मजा उठा रहे हैं। हालांकि ये जान को बेहद जोखिम में डालने वाले दृश्य भी हैं।
5: राजधानी दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दिया है और समस्याएं एक बार फिर से आपके सामने आ गई है। ये तस्वीर एयरपोर्ट को जाने वाली रास्ता है, ये वसंत कुंज से एयरपोर्ट जाती है और आप देखिए ये सड़कें नहीं, दरिया है, दरिया की तरह दिख रहा है। दिक्कत हो रही है स्कूल के बच्चों को भी, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा छोटा भाई पढ़ता है, इसमें लेने आए थे।
4: अच्छा,
5: सड़क पे हर तरफ पानी ही पानी है।
4: पानी आ गया है।
1: अब तस्वीरें देखिए छतरपुर की। शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह जलमग्न हो गई। गलियों से लेकर लोगों के घरों तक 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे बने कि स्कूल से लौट रहे बच्चों को अस्थाई नाव के जरिए उनके घरों तक पहुंचाना पड़ा। शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे से दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती चली गईं। कहीं सड़कें तालाब बन गईं, कहीं गाड़ियां पानी में फंस गईं और कहीं घंटों तक ट्रैफिक रेंगता रहा। अब जरा गुरुग्राम का हाल देखिए। देश के सबसे विकसित शहरों में शुमार गुरुग्राम की रफ्तार को बारिश ने जैसे ब्रेक लगा दिया। लंबे लंबे ट्रैफिक जैम यहां कोई नई बात नहीं, लेकिन बारिश ने हालात को और भी बदतर बना दिया। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। हालात ऐसे कि जहां गाड़ियां चल भी पा रही थी, वहां आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई नजर आई। बारिश का पानी गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के बेसमेंट में भी घुस गया। पानी ने दीवार को तोड़कर अपना रास्ता बना लिया। हालात इतने बिगड़े कि अस्पताल के इंजेक्शन रूम तक पानी पहुंच गया। इससे अस्पताल की सेवाएं भी प्रभावित हुई। ये तस्वीरें गुरुग्राम के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर के बाहर की हैं। घुटनों तक भरा पानी, पानी में फंसी गाड़ियां और सड़क पर चलने के लिए जूझते लोग। मुश्किलें बेहिसाब हैं, लेकिन जिंदगी है कि थमने का नाम नहीं ले रही।
6: मैं इस वक्त शीतला माता मंदिर के बाहर ही मौजूद हूं। तकरीबन 3 से 4 फीट पानी आप साफ तौर से देख सकते हैं, जहां पे ये श्रद्धालु परेशान है, मंदिर में आने वाले श्रद्धालु परेशान है। खास तौर पर जो इस सड़क को यूज कर रहे हैं, उस सड़क को यूज करने वाले, इस्तेमाल करने वाले वाहन चालक परेशान है। पहले तो जरा आप तस्वीरों में देखिए कि कहीं आपको दूर तक सड़क नजर आ भी रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये सेक्टर 5 को जोड़ने वाला सिग्नेचर टावर से सेक्टर 5 पालम विहार जाने वाला मुख्य रास्ता है, लेकिन आज इस रास्ते पर न तो वो सड़क दिखाई दे रही है और न कहीं रास्ता दिखाई दे रहा है। यही कमोबेश स्थिति सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद इन तमाम इलाकों में देखी जा रही है।
1: अब जरा रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। यहाँ गंगा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग के डेली फ्लड बुलेटिन के मुताबिक गंगा के जल

0: बढ़ाती है। गंगा के पक्के घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। घाट किनारे बने छोटे बड़े मंदिर भी अब बाढ़ के पानी की चपेट में आने लगे हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका तीर्थ पर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी बाढ़ के पानी में समा चुका है। गंगा का बढ़ता जलस्तर सिर्फ घाटों को नहीं डुबो रहा, बल्कि काशी की उन तस्वीरों को भी बदल रहा है जो सदियों से गंगा के साथ जुड़ी रही हैं।
1: ये गंगा जी जब बढ़ती हैं, गंगा जी में 3 महीना ये सूखे में रहता है और बाकी 9 महीना ये पानी के अंदर रहता है। गंगा से डूब जाता है पूरा मंदिर, जब गंगा का बाढ़ आता है तब जब पानी जाता है नीचे, मिट्टी सफाई करके 2-3 महीना इसका सफाई करके फिर पूजा आरती भोग पूजा होता है।
0: संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। बारिश के चलते शहर की प्रमुख सड़कें पानी में डूब गईं। सिविल लाइंस, स्टेशन रोड, निरंजन ओवरब्रिज और जॉर्ज टाउन समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर कई कई फीट तक पानी भर जाने से लोगों का आना जाना बुरी तरह प्रभावित हुआ।
2: प्रयागराज का ये पॉश इलाका है जॉर्ज टाउन, तो ये जॉर्ज टाउन का जो इलाका है ये पूरा बारिश के पानी से जो सड़कें हैं वो डूब गई हैं और इसी डूब करके लोगों को यहाँ से निकलना पड़ रहा है। लोग स्मार्ट सिटी के नाम पर इसे धोखा बता रहे हैं और चारों तरफ आपकी जहाँ नजर जाएगी ये बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ है। पूरी सड़क तालाब बन गई है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये बारिश का पानी पूरा भरा हुआ है और नगर निगम के जो दावे थे वो फेल होते नजर आ रहे हैं।
3: ये मेन इलाका ये जॉर्ज टाउन, इसको VIP इलाका कहा जाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे ये धोखाधड़ी है, देखिए क्या स्थिति है, घुटने भर पानी भरा हुआ है और न निकासी है। एक दिन पानी भर जाता है तो 4 दिन में ये पानी निकलता है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, गलियों में पानी भर गया है, मेन रोड पर तो भरा ही है, गलियों में लोगों को पानी भरा हुआ है।
0: बारिश हर साल ऐसी दिक्कतें लाती है तो ये हालात सवाल भी उठाते हैं कि इनसे बचने के उपाय क्यों नहीं किए जाते।
4: असम में बाढ़ का पानी जरूर उतर चुका है, लेकिन पानी जाते जाते तबाही की ऐसी तस्वीरें छोड़ गया कि देखकर आपको अचरज हो। घर तबाह हो गए, खेत खत्म हो गए, बस ये समझ लीजिए कि जिंदगी किसी तरीके से वहां पर चल रही है। असम में बाढ़ के बाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।

0: तबाही ऐसी आई कि जिंदगी ने जरूरतों का जितना सामान जोड़ कर रखा था वो सब दिन का बह गया। रहने को घर नहीं बचे।
1: गाय सामान सब कुछ ले गया। इतना बड़ा तूफान आया है बारिश का और पानी का धो करंट को हम जिंदगी में नहीं देखा, पहली बार देखा है ये।
0: पैरों के नीचे जमीन नहीं रही।
2: बच्चा लोग को अभी किताब उताब कुछ भी नहीं है, हम लोग का डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, हम ड्राइविंग करता है, मेरा लाइसेंस भी नहीं है, सब चला गया, पानी ने सब कुछ लेके चला गया।
0: जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक बर्बादी के निशान नजर आते हैं।
3: कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा पानी हुआ है।
0: सैलाब का पानी कुछ दिन से घटा जरूर है लेकिन आंखों में पानी अब तक भरा है। बेबसी से अपनी उजड़ी दुनिया देखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। बाढ़ बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र सहित तमाम नदियों के उफान पर आने के बाद कई जिलों में ऐसी तबाही मची कि लंबे समय तक लोग उबर नहीं पाएंगे। तस्वीरें बता रही हैं कि असम के लोगों को मौसम की मार का कैसा दर्द मिला है। कुल 13 जिले अभी भी बुरी तरह प्रभावित हैं और उनमें भी सबसे अधिक तबाही वाले क्षेत्र शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, विश्वनाथ है। असम के करीब

0: 563 गांव पानी में डूबे हैं, लगभग 100 लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। शिवसागर सबसे अधिक प्रभावित जिला रहा, जहां 57,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इसके बाद गोलाघाट में करीब 34,000 और जोरहाट में 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए।
1: सबसे बढ़ गया, हमारा गोरू गाय जितना रहा सब भुगा गया। हमारा गोरू 16 रहा, 16 2 बचा है और बाद बाकी चला गया। सामान दामान सब घर सब सब खत्म है।
2: ऐसा फ्लड हमने भी कभी देखा नहीं है। बहुत साल बाद में लोग बोल रहे हैं कि हुआ है और बहुत ही मतलब ज्यादा महामारी हो रहा है और परेशानी हो रहा है, लोगों को बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है।
3: देख रहे हैं कि सारा आदमी चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, चारों तरफ से शोर आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि जो सामान तो हम लोग का था तो जाने दीजिए, अभी वो बचा के भी फायदा नहीं, आदमी को बचाए पहले।
0: ये शिव सागर का संतक इलाका है। तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया है। नदियों के साथ बहकर आई गाद ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। जैसे तैसे लोग जो बचा पाए वो भी किसी काम का नहीं रहा।
4: भी टूट गया, जो मेरा एक छोटा सा बिजनेस था, वो दुकान था, वो उसका सामान भी चला गया, घर का सामान भी चला गया। पानी आगे से आया है ना, पीछे से सब कुछ लेकर चला गया।
5: हमारा घर का जो हमारा दो घर था, वो पीछे का घर पूरा चला गया था, पानी में पूरा चला गया।
0: बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोग फिर से जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ मिट्टी के दलदल बने हुए हैं। गलियों में नदियों से आई गाद इस कदर जमा है कि उन्हें ठीक होने में ही कई दिन लग जाएंगे।
6: याद करने के लिए हम लोग को तो अभी 15 इयर्स लगेगा फिर से नॉर्मल जिंदगी लाने के लिए, लेकिन अभी तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे वही सोच के हम रो रहा है। कुछ नहीं है, घर का जितना सामान सब चला गया
7: पूरा पानी में, तो घर बचा ही नहीं, घर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है अभी।
0: किताबें, अलमारियां, घर, आंगन, छत, खेत सब टनों मिट्टी के नीचे दबे हैं। गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। जहां खेत थे वहां बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन गए हैं, और जहां गड्ढे थे वहां जल भराव से हालात मुश्किल हैं। न बचा आशियाना, न बचा अन्न का दाना।
8: घर का कोई भी एठो सामूस भी नहीं बचा हम लोग का, पूरा स्कूटी भी चला गया और बारिश लेके अभी पकड़ के लेके आया है हमें, और हम लोग का हाथ में पैसा भी नहीं है। जो कैश पैसा था हम लोग का, माँ का था 285,000 रुपया, मेरा था 80,000 रुपया, वो भी चला गया। अभी हम लोग का औखुट खाने के लिए, दवाई खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है।
5: जान बचाने के लिए दूसरे के घर में हम गया, जान तो बचाया लेकिन कुछ भी नहीं बचा। हम रिक्वेस्ट करता है कि कुछ तो मिले तो हम घर बना सकते हैं, यही रिक्वेस्ट है। बच्चा लोग अभी भी हम जमीन पे सो रहा है, वो बाजार घर है वहाँ में सो रहा है, हमारा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ तो सामान हमें मिले।
0: मदद, खाना, घर, राहत। गोलाघाट के नेपाली कुटी गांव की तस्वीर भी एक ही रात में बदल गई। बाढ़ ने न केवल कई घरों को तबाह किया बल्कि लोगों की रोजी रोटी भी छीन ली। पशुधन की हानि ने कई परिवारों के सामने आजीविका का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।
9: भैया का ऐसा हो गया कि वो अपना पालतू जानवर लेने के लिए आ गया था, तो उसी समय इतना प्रबल बाढ़ आया, वो यहाँ से रास्ते तक नहीं निकल पाया, बाढ़ यहीं से सामने में से ही उसको बहा के लेके गया। अभी का परिस्थिति जो है ऐसा है कि जो इनकम करने वाला आदमी है तो वो इनकम करने वाला आदमी ही नहीं रहेगा, तो इन लोगों का भरपाई, इन लोगों का खर्चा पानी कैसे चलेगा।
0: मंदिर, मस्जिद, सड़क, गांव, खेत, मकान, दुकान, गली, मोहल्ला सब कीचड़ की भेंट चढ़ चुके हैं। लोग पानी उतरने के बाद कीचड़ और मलबे को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने जटिल हैं कि जिंदगी दोबारा कब पटरी पर लौट सकेगी ये कहा नहीं जा सकता।
5: अभी तो राशन तो बहुत मिल रहा है लेकिन बनाने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो वही विनती कर रही हूँ। मैं तो अभी 12th में हूँ, इस बार मैं फाइनल दूंगी, लेकिन मेरे पास किताब भी नहीं है जो मैं पढ़ के मैं किताब मतलब एग्जाम दूँ।
0: 200 से अधिक घर या तो पूरी तरह बह गए या अब इस लायक ही नहीं बचे कि उन्हें मरम्मत करके ठीक भी किया जा सके। ऐसे में कई संगठन गांव वालों की मदद के लिए आगे हैं और गांव वालों को घर और खाना दोनों मुहैया करा रहे हैं।
10: यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ गोरखाली समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं, यहाँ गाय आदि पाल करके उनके सारे गाय यहाँ मर चुकी है, इतना स्मेल आ रहा है। तो हम लोग श्री निम्बार्का वैष्णव परिषद उत्तर असम की तरफ से यहाँ पर कुछ सहायता देने के लिए आए हैं।
11: रेशन पानी तो सब दे रहा है, अभी रखने का भी जगह नहीं, तो हम लोग चूज करके ऐसा छोटा छोटा मैक्सिफ हम लोग बना रहे उन लोग ताकि बैठ के बना सके, पका सके, खा सके, कुछ सामान रख के लोग रेस कर सके। उन लोग का सब तबाह हो गया।
12: 19 जुलाई उसी दिन सबसे ऊपरी आसाम में सबसे बड़ा तबाही मसा हुआ बाढ़ आया था। उसी दिन जोरहाट, शिवसागर, सरायदेव डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा प्रभावित हुआ था। लगभग 89 लोग की मौत हुई है अभी तक और 7 लाख से ऊपर लोग प्रभावित हुआ था। हम अभी है शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के नेपाली खुटी में, सबसे तबाही मसाया हुआ गांव में हूँ, जहां लगभग 200 से ऊपर घर बांध में बांधने लेकर गया था। और मेरे पीछे आप देख रहे बोबेल सिख ऑर्गेनाइजेशन आकर यहाँ घर बना रहे, लोगों को सहायता कर रहे, रात सामग्री पहुंचा रहे।
0: बाढ़ के कारण सैकड़ों हेक्टेयर जमीन भी कट गई, जिसके कारण लोगों के सामने खेती का संकट भी आ खड़ा हुआ है। बोका घाट में भी लोग वापस रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अब उनके लिए आसान बिल्कुल नहीं रहा। शासन की तरफ से मंत्री और अधिकारी दौरा करके जायजा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों की हालात जिस तरह के सामने आ रहे हैं वो असम की दर्दनाक कहानी बयान कर रहे हैं।
13: 10-12 दिन हो गया पानी हुआ है, यहाँ पे सारा एरिया पानी है। और तो कानफोला बकतगा बोलता है गाँव का नाम है, सारा एरिया सब रिलीफ है, यहाँ पे रिलीफ में सब आदमी जमा हुआ है।
0: हर तरफ जब सांसें टूट रही थी और जिंदगी डूब रही थी और ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी और अपनों की जान बचाएं, कैसे घर गृहस्थी को बचाएं, तब क्वारी गांव के लोगों ने मानवता की मिसाल कायम की। कुछ लोग अपनी जान को संकट में डालकर लोगों की जान बचाने में जुटे रहे।
14: था पानी मतलब इतना स्पीड बढ़ के आया, मतलब घर का आदमी को हम लोग छोड़ के दूसरे का बचाने लग गए। घर का आदमी पानी में इतना पानी में उन लोग खड़ा था, हम लोग नाव लेके दूसरे का बचा रहा था। फिर भी हम लोग सोचा नहीं थे घर पर इतना पानी हो गया है। जहाँ भी कोई कोई किसी का घर टूट गया है, कोई कोई गांच का ऊपर लटका हुआ है, कोई बांस पकड़ के लटका हुआ है, नाव में जिसे तैसे उठा के ले जाकर हम लोग टाउन तक पहुँचाया।
15: तो हम लोग घर का आदमी लोग को अपना बच्चा लोग को पहले पहुँचाया, उसके बाद में आया कि घर का सामान वामान ले जाएंगे। घर का सामान ले जाने के टाइम नहीं मिला। इधर अगल बगल भी आदमी फोन भी कर रहा है, घाट में जाने से फोन करता है लोग कि हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है, वहाँ है, लेके बचा के लेके आओ। तो सामान अपना छोड़ ओड़ के वो लोग को बचाने में लग गए।
0: करीब 2000 लोगों की जान इन लोगों ने बचाई, जिसका संतोष इनके चेहरे पर भी झलकता है।
16: अभी के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों से लेकर झारखंड के स्टेडियम तक देश ने इस बार उस जनरेशन की बुलंद आवाज की ताकत देख ली है जिसे दुनिया जेन जी कहती है.
3: हम लोग भी देश की सेवा करने चाहते हैं.
2: एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे संवाद साध रहे हैं तो दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इनके बीच चौपाल लगा रहे हैं.
4: थैंक यू फ्रेंड्स. कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी. ये आपका प्यार बना रहेगा.
5: वी आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेंज टाइम इन आवर कंट्री. Students are on the street in severe pain. They don't have work.
2: और तो और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अब जेन जी के साथ वैचारिक संवाद की टेबल पर हैं.
6: जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है.
7: जी सर,
6: इस अपनेपन से डायलॉग का 7 महीने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है. तो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है.
7: अरे वाह, बढ़िया है.
6: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील.
2: सवाल है आखिर अचानक सबका ध्यान जेन जी से बात करने, मनाने, समझाने या अपने साथ लाने पर क्यों है? क्योंकि ये वो पीढ़ी है जिसने बीते दौर की पुरानी राजनीतिक लड़ाइयों को नहीं जिया है. ये अतीत के बस्ते ढोने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो दौर है जो वर्तमान की हर एक चाल को खुली आंखों से देख रहा है और भविष्य का बारीक आकलन कर रहा है. साफ है, देश का ये युवा इतिहास के पन्नों को पलटकर नहीं बल्कि आज के हालात को देखकर अपना फैसला करेगा. जेन जी के वोट का रिमोट अब पुराने नारों से नहीं बल्कि नेताओं और राजनीतिक दलों के आज के एक्शन से कंट्रोल होगा.
8: भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी. दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी. मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है. 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस. जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है और आपको फंसाया जाता है. आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ. भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है. मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में.

0: मॉनसून सत्र में संसद में जुबानी बिजलियां कड़क रही हैं, कार्यवाही ठप है और विपक्ष अमित शाह के पैलेट गन पर जवाब को लेकर अड़ा हुआ है।
1: लीडर ऑफ द अपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। अपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री को कब आना है, ये अपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट नहीं रहता है, देश का संचालन करता है, और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा।
2: पार्लियामेंट द अपोजिशन विल नॉट एबल टू लिसन हिम।
3: बिगेस्ट जोक विच आई हर्ड टुडे इज दैट biggest joke in this parliament was Kiran Rijiju's statement.
0: इस बीच एनडीए में नई एंट्री लेने वाले सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। पीएम के साथ नाश्ते पर ये चर्चा खास है क्योंकि एनडीए परिवार के विस्तार के बाद इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद न चलने पर चिंता जाहिर की और सांसदों को भरोसा दिया कि अगर विकास योजनाओं में कोई अड़चन आए तो सीधे पीएमओ से संपर्क करें।
4: It was a very, very big honor that he has invited us. And उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहे तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है, तो बट वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे ही कहा कि देखिए हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो जो है हमारे ग्रुप के जो है हम आपके साथ है, यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चले।
5: बहुत अच्छा चर्चा हुआ है
6: जी,
5: वेरी गुड।
6: किन मुद्दों पे चर्चा हुई सर?
5: हर हर ये डेवलपमेंट के बारे में।
6: कई सारे आपके साथी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो भी मौजूद थे मीटिंग में? सर
5: मीटिंग में मौजूद थे, वो लोग भी सपोर्ट किया।
6: क्या स्पीकर का इशू भी चला इस पे मस्जिदों को लेके जो इशू?
5: नो।
6: ओके सर, आखिरी सवाल सर, FCRA पे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? सर
5: हम लोग मदद करेंगे।
0: पीएम मोदी ने उद्धव गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना के सांसदों के साथ अलग से बातचीत की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात करने पहुंचे। विदेशी फंडिंग पर रेगुलेशन का नया FCRA बिल सरकार की बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित है। आज तक ब्यूरो।
7: पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड से हिमाचल तक भूस्खलन, मलबा और बढ़ते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं सड़कें बंद हैं, तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देवालवाण मार्ग पर बारिश शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। पहाड़ से लगातार मलबा और कीचड़ आने की वजह से सड़क बंद हो रही है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पोकलैंड मशीन की बकेट में बैठकर सड़क पार करनी पड़ रही है। देवालवाण मार्ग बंद होने से आसपास के गांवों की करीब 8,000 की आबादी प्रभावित है। लोगों को इलाज, राशन और जरूरी कामों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाद अब बागेश्वर में भी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो गए हैं और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कांडा बागेश्वर हाईवे पर धपोली के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहन मलबे में दब गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का असर लगातार दिखाई दे रहा है। ऑरेंज अलर्ट के बीच मंडी जिले में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंडोह बांध से BBMB ने ब्यास नदी में 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने से पहले लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट किया गया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बंद सड़कें, भूस्खलन और बढ़ते नदी नाले लोगों के लिए चुनौती बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मानसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम महिला आरक्षण परिसीमन और एफसीआरएस को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलट गन से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों के तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, कल विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को सजा देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान।
1: आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। जब से फिल्म सिंघम आई अजय देवगन की, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पुलिस अफसर हैं देश भर में जिन्हें मीडिया ने, हम लोगों ने, आपने सिंघम के नाम से पुकारा। मतलब सिंघम एक ऐसा अफसर जो ईमानदार है, दबंग है, डरता नहीं है ना नेताओं से, ना सरकार से, न गुंडों से, और अपना काम करता है। तो ये सिंघम शब्द खासतौर पर खाकी यानी कि पुलिस के साथ जुड़ गया। अब कोई सोच सकता है कि एक आईएएस अफसर, और वो भी एक ऐसी जगह पे पोस्टिंग जिस डिपार्टमेंट का नाम शायद ही अपने देश में ज्यादातर लोग जानते भी हों, और वो अचानक सिंघम बन जाए, और मुंबई के लोग मुंबई पुलिस से इस वक्त ज्यादा उसी से खौफ खाएं, जो दफ्तर साल भर तक, मतलब उनके आने से पहले, बल्कि 2-4 महीने पहले तक, जिस दफ्तर का पता किसी को मालूम नहीं, जहां सन्नाटा पसरा होता था, कभी कभार कुछ लोग आते थे, अचानक उस दफ्तर के बाद अब लोगों की भीड़, लोग अर्जियां लेकर, अप्लीकेशन लेकर, सिफारिश लेकर दफ्तर के बाहर है कि भाई एक बार उस सिंघम से मिल लूं, काम हो जाए। और वो सिंघम ऐसा कि अगर आप सिफारिश ले आए, आप नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की, तो फिर उल्टा पड़ जाएगा, और उसकी पास्ट हिस्ट्री यही बता रहे हैं। 2005 बैच के आईएएस अफसर, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तब 20वीं रैंकिंग थी, और उसके बाद 21 साल हो गए नौकरी की, जो 2005 में ज्वाइन किया। अब 21 साल की नौकरी में अगर किसी शख्स की 20 बार ट्रांसफर हो जाए, तो एवरेज निकालिए तो 10-11 महीने में एक बार, एक दो साल तो ऐसे भी थे जब एक ही साल में दो बार, तो कुल 21 साल की नौकरी और 25 बार तबादला। अब अगर एक अफसर जिसकी सबसे बनती हो, क्यों तबादला होगा? आज भी हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी में आप उठाकर देखें, जिनकी सही जुगाड़ है वो अपना एक ही जगह बने रहते हैं, पड़े रहते हैं, चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस हो। लेकिन जो सरकार को खटकते हैं या फिर उनकी बात नहीं सुनते, या ईमानदारी का कीड़ा होता है जिनके अंदर, यही जुबान है आजकल, तो फिर समझिए कि भाई वो आदमी एक बैग तो अपना रेडी रखता होगा, पता नहीं कब ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाए। ऐसे ही एक ईमानदार अफसर, आईएएस अफसर तुकाराम मुंडे, इस वक्त मुंबई में सोशल मीडिया पर, मीडिया पे इनका नाम छाया हुआ है अचानक, और इनकी वजह से ही हमारे देश के एक डिपार्टमेंट का नाम भी अचानक सामने आ गया। जैसे याद होगा आपको, जब मुंबई में 2020 में जब मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की, उसके बाद उस केस में बहुत सारी एजेंसियां आई, जैसे कुछ साल पहले तक ईडी को कोई नहीं जानता था कि ईडी भी कोई फोर्स है, आज ईडी पुलिस से भी ज्यादा जाना जाता है, और ईडी से मतलब ज्यादा खौफ है लोगों को, क्योंकि ईडी का डंडा ऐसा है कि अच्छे अच्छे अंदर। तो उसी टाइम में ईडी के साथ साथ एक नया आया था, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, को जानता ही नहीं था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरीके से ड्रग्स वाला मामला आया, फिर पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक करके लोगों को परेड करके बुलाया गया, पूछताछ हुई, तो लगा अच्छा भाई एनसीबी भी कुछ है। तो उसी तरीके से अब जब से ये तुकाराम मुंडे मुंबई पहुंचे, तो फिर लोगों को पता चला कि भाई हमारे देश में एक एफडीए नाम की भी चीज है, एक एफडीए नाम का भी डिपार्टमेंट है। एफडीए बोले तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी एफडीए के कमिश्नर बनकर तुकाराम मुंडे मई में मुंबई में उतरते हैं। अब FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, नाम ही से लग रहा होगा आपको ये क्या डिपार्टमेंट है, तो फिर कोई भाव भी क्यों देगा। लेकिन इनका काम क्या होता, चलिए पहले ये बताता हूँ। फूड एंड ड्रग्स कॉर्पोरेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका काम ये है कि जितने भी रेस्तरां हैं, होटल हैं, दुकानें हैं, इन जगहों पर मिलावटी खाना ना हो, रेस्तरां हो तो साफ सफाई हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, कीड़े मकोड़े ना हो। बहुत बार खबरें आप सुनते होंगे खाने में कुछ कीड़ा मिल गया, कभी छिपकली मिल गई, कॉकरोच मिल गया, तो ये सारी चीज़ें FDA के अंडर में आती है और ये पूरे देश में अपने हर स्टेट में भी है। तो कायदे से FDA का काम है फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करना। अब उसमें मिलावट चीज नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दूध हो, घी हो, पनीर हो, खाना हो, पीना हो, ये सारी चीजें, इवन गुटखा वुटका सारी चीजों पे है। तो अब तुकाराम मुंडे अपने साथ 25वें तबादला ट्रांसफर का सर्टिफिकेट लिए मई में मुंबई में लैंड करते हैं FDA कमिश्नर बनकर। लगा कि क्या होगा, फिर होता यह कि अचानक वो अपने तेवर के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। वो क्या काम करते हैं आगे बताएंगे आपको। लेकिन इसी दौरान कुछ बड़े बड़े होटल और रेस्तरां और कुछ डेयरी फार्म की मिलावट और गंदगी को लेकर वो उसे बंद कर देते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर कहते हैं साहब हमें ना कोई नोटिस दी गई, ना हमें वार्निंग दी गई, ना हमें सुधरने का मौका दिया गया और ये बंद कर दिया गया बॉम्बे हाई। अब वो सारे बड़े लोग, तो आप सोचिए 70-100 साल पुराने जो रेस्टोरेंट और डेयरी फार्म चला रहे हैं वैसे लोग, और बड़े बड़े 5 सितारा होटल के लोग, वो पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट में। सुनवाई हुई बॉम्बे हाईकोर्ट में। सुनवाई के दौरान जज साहब ने एक कमेंट्स किया, उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होता है कि अचानक आप बंद कर दें, अचानक आप छोड़ दें, कहता कुछ वार्निंग दीजिए, कुछ और कीजिए। फिर उसके बाद एक लाइन कहते हैं जज साहब कि बताइए कि आप सिर्फ टारगेट ही रेस्टोरेंट को मतलब करके एक एक करके चुन रहे हैं और वो कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन, या होटल को कभी सरकार की जो सारी कैंटीन्स हैं बाकी वो हैं, तो सरकारी जगहों पर भी आप दबिश डाल रहे हैं, छापे मार रहे हैं, या सिर्फ प्राइवेट लोगों को और बड़े लोगों को ही परेशान कर रहे हैं? तो जरा सरकारी कैंटीन और सरकारी रेस्टोरेंट जो चलता है ये सारे उनको भी आपने देखा? अब ये बात हो गई, कमेंट्स मिल गया। वेंसडे को लास्ट वीक की बात है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट बड़े बड़े लोगों के अलावा आप कभी सरकारी इन रेस्टोरेंट दुकानों की तरफ या होटलों की तरफ ध्यान दिया? FDA की टीम वहां से निकल आती है। अगले दिन 24 घंटे के अंदर बॉम्बे हाईकोर्ट में तमाम मुकदमे, वकील सब वहां मौजूद हैं। अचानक दंदनाते हुए FDA यानी कि यही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, तुकाराम मुंडे की टीम पहुंचती है और सीधे पहुंचती है बॉम्बे हाईकोर्ट के कैंटीन में। एक दिन पहले जज साहब कह रहे हैं कि क्या आपने कभी सरकारी जगहों पर भी इस तरह के छापे मारे, और अगले ही दिन अब FDA की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन में। 3 कैंटीन है बॉम्बे हाईकोर्ट में। अब वो एक एक कर वहां जाकर चेक करते हैं, फूड चेक करते हैं, सफाई देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, जो फसाई के रूल्स रेगुलेशन है वो देखते हैं, फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है सारा। इन सब को देखने के बाद पाते हैं कि एक कैंटीन फूड के जो सारे नियम है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जो कानून है, 2 भी नहीं कर रहा, लेकिन उन दोनों में सुधार की गुंजाइश है। बाकी 2 कैंटीन को वार्निंग देते हैं कि भैया जो जो गलतियां सुधारो, पर एक का ये था कि तुम्हारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है फसाई का, तो तुम चला ही नहीं सकते हो। कैंटीन के बाहर बिजनेस क्लोज्ड, कैंटीन बंद, और टीम निकल जाती है। अब थोड़ी देर के बाद बाकी जो वकील सब पहुंचते हैं तो देखते हैं ये क्या, तो कैंटीन ही बंद है। मतलब कमाल है कि नहीं है, 24 घंटे पहले हाई कोर्ट इसी FDA से कहता है कि आप ये बड़े बड़े प्राइवेट लोगों को शिकार बनाते रहते हैं, कभी सरकार की तरफ भी नजरें घुमाइए। और शुरुआत ही सीधे उसी कोर्ट, जिस कोर्ट ने ये कमेंट्स किया, उसी हाई कोर्ट की कैंटीन से कर दिया तुकाराम मुंडे ने। जिगरा चाहिए इसके लिए। खैर अब ऐसे अवसर कहां मिलेंगे आपको। मतलब कहते हैं कि जिस जगह रहा तुकाराम मुंडे रहे वहीं अपनी एक निशानी छोड़ी, क्योंकि इनका ये था कि बनेगी नहीं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सरकार हो, तो इसीलिए मोहब्बत तो कोई करेगा नहीं जब कोई ऐसा अवसर होगा। तो जिस जिस जगह गए यही तरीका अपनाया। सिर्फ और सिर्फ अभी हाल में जब ये मुंबई पहुंचे मई के महीने में, और अभी जुलाई का महीना, बल्कि अब अगस्त का महीना शुरू हुआ है, करीब करीब 1200 जगहों पर छापे मार चुकी है एफडीए की टीम। करीब 50 करोड़ रुपए के माल जब्त कर चुकी है, जिसमें दूध से लेके पनीर से लेके और खाने पीने की बाकी चीजें। 443 रेस्टोरेंट और होटल, साथ में कुछ ढाबा, इनको पकड़ा। 360 से ज्यादा जो बाकी दुकानें हैं और वो सारी चीजें खाने पीने की बेचते हैं उनको। तो मतलब 1200 छापे, कई सौ के नोटिस, 50 से ज्यादा के लाइसेंस, बल्कि 56 के लाइसेंस कैंसिल। तो भड़कम तो मचेगा अचानक। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जो मुंबई में रहते हैं इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, कब का पुराना और बहुत ही मशहूर, बहुत रेपुटेटेड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में जो कैंटीन चल रहा है भाई ने जाके उसको ही बंद करवा दिया। जो मोहम्मदी एक होटल है 100 साल पुराना, वहां भी गंदगी देखी, सीधे लाइसेंस कैंसिल। एक पारसी फार्म डेयरी का कुछ है वो भी 70-75 साल पुराना, उस मेयार स्टैंडर्ड पर नहीं उतरा, बंद। इसके अलावा जो खासतौर पर स्कूल के आसपास जितने भी गुटके की दुकानें सब बंद, जंक फूड। तुकाराम मुंडे का कहना है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता था कि वो बेहतर भविष्य तैयार कर सके, लेकिन वही माँ बाप अगर अपने बच्चे को जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं तो फिर पढ़ाई ना कराएं, क्योंकि वो उसे जहर दे रहे हैं, ये उनकी सोच है, उनका बयान है। फिर उनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा उन्हें नफरत है इस पूरे फूड प्रोडक्ट्स में फार्म डेयरी के साथ, यानी दूध पनीर के साथ जो मिलावट करते हैं, क्योंकि ये दूध छोटे बच्चे पीते हैं, प्रेग्नेंट लेडी पीती है, घर घर में बच्चों को पिलाया जाता है, और अगर इस दूध में ही जहर हो, मिलावटी हो, तो उसका कितना नुकसान होगा सेहत पर। करीब 1.5 लाख टन से ज्यादा दूध ही सिर्फ जब्त कर चुके, जिस एफडीए के तहत आने वाले लैब में मक्खियां मारी जाती थी अब तक। अब डेली आलम यह है कि वहां सैंपल की भरमार पड़ी हुई है, हर दिन छापे, हर दिन सैंपल उठाए जा रहे हैं, हर दिन चेक किए जा रहे हैं, और पूरे मुंबई में इस वक्त हड़कम मचा हुआ। जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल की जो पूरी लॉबी है वो एक्टिव हो गई है कि ये हो क्या रहा है, और डेली इनकी टीम 10-12 तो छापे पड़ ही रहे लगातार, और अब सब परेशान। बहुत सारे लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने भी अजीब टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई अगर आप जाते हैं किसी जगह पे कोई कमियां पाते हैं तो आप पहले उसे वार्निंग दीजिए, उसे नोटिस दीजिए, सुधरने के लिए 15 दिन का सुधारने के लिए वक्त दीजिए, आप सीधे वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन लॉ में ये लिखा हुआ है कि ठीक है, एक कमिश्नर जाकर अगर कोई चीज़ गलत पाता है तो उसको 14 दिन की नोटिस दे सकता है, आप सुधार लो। लेकिन उसी कमिश्नर को लगता है कि नहीं ये पूरी तरह गलत है, हाथों हाथ वो लाइसेंस रद्द कर सकता है, और तुकाराम मुंडे ने इसी का इस्तेमाल किया है। अब पूरे मुंबई में जितने जो भी रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हर एक को ये डर है कि पता नहीं कब तुकाराम मुंडे की टीम उनके यहाँ पहुंच जाए। अब खाने पीने की चीज़ें वो होती है जो सीधे हर आदमी के पेट से जुड़ी होती हैं, लेकिन एक शख्स ने, सिर्फ एक शख्स ने, इस तुकाराम मुंडे ने ये बताया कि ये भी कितनी ज़रूरी चीज़ है, जो पुलिसिंग, जो ड्रग्स, जो बाकी चीज़ें होती हैं, इसके साथ अगर चोरी और मिलावट हो, इसके साथ गंदगी हो। एक रेस्टोरेंट को तो सिर्फ 2 कॉकरोच वहां पे मिला और बंद कर दिया, लाइसेंस रद्द कर दिया। कोर्ट में ये मामला गया तो कहा भाई 2 कॉकरोच ही तो मिला यार, ये इंडिया है, इतना भी सख्ती मत दिखाओ। और यही सोच फिर हम सबको वहीं ले जाती है कि नहीं क्या बात है, जबकि आप शायद हैरान रह जाएंगे, दुनिया के ज्यादातर देशों में बल्कि कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पुलिस से ज्यादा लोग फूड इंस्पेक्टर से डरते हैं। जैसे आप यूएई का ही एग्जांपल ले लीजिए, दुबई का ले लीजिए। अब पता नहीं दुबई में ये है कि नहीं, लेकिन एक रेस्टोरेंट चलाने वाले वो हमारे फ्रेंड थे। जब हम गए वहां से मुलाकात हुई उनके रेस्टोरेंट में, एक दिन खाना खाया तो यूं बातचीत हो रही थी करप्शन और बाकी चीजों पर। तो उन्होंने कहा कि, जब मैंने पूछा कि आपकी तो काफी सेल होती होगी, काफी भीड़ थी, तो उनका यह था कि वहां पे एक इंडियन रेस्टोरेंट एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दोनों मुकाबला होता था। तो उन्होंने कहा सेल तो ऊपर वाले क्रम से बहुत है, बस यहाँ का एक कानून है, हम पुलिस से नहीं फूड इंस्पेक्टर से ज्यादा डरते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब तक ये रेस्टोरेंट खुला है, शटर ऊपर है, ग्राहक हैं, सब ठीक है, एक बार अगर ये रेस्टोरेंट बंद करने का जो भी टाइम है, चाहे एक दो, अगर हम शटर नीचे गिराते हैं तो जो बचा हुआ खाना है वो उस शटर के अंदर नहीं रहेगा। या तो उस बचे हुए खाने को हमें फूड बैंक को देना पड़ेगा, या जरूरतमंदों को देना पड़ेगा, या फिर ये कि अब वो रिसाइकिल होता है तो वहां तक पहुंचाना होगा। लेकिन हम दुकान के अंदर शटर गिराने से पहले रेस्टोरेंट में जो भी सामान रखा है उसे हमको बाहर निकालकर इस तरीके से फूड बैंक को और बाकी सबको देख देना ही पड़ेगा, हम अंदर नहीं छोड़ सकते। मैंने पूछा वजह? बोला वजह यह कि अगर उस दरमियान रेस्टोरेंट का शटर गिरा हुआ और फूड इंस्पेक्टर आ गया और उसने खोला और उसके अंदर हमें बचा हुआ खाना मिल गया, तो उनकी सोच यह है कि इसी खाने को तुम कल गर्म करके या बाकी खानों में मिलाकर इसे ताज़ा खाना बनाकर फिर से परोस दोगे, और ये बेईमानी, और इससे सेहत भी खराब हो सकती, कोई बीमार पड़ सकता है। तो इस पर भारी जुर्माना है। सोचिए खाना बचा हुआ रात को शटर गिराने से पहले आपको बाहर निकालना है। अब हमारे यहाँ सोचिए कौन सा खाना किस दिन का कब कौन खिला रहा है, पता ही नहीं होता है। जैसे वो कहा, कहते हैं ना हम लोग कि जब हम हाईवे से गुजरते हैं, चूंकि मैंने बहुत ट्रैवल बाय रोड किया रिपोर्टिंग के चक्कर में, तो हमारे जितने भी तजुर्बेकार लोग वो कहते थे कि रास्ते में उसी ढाबे पे खाना खाना है जिस ढाबे पे सबसे ज़्यादा भीड़ हो, और ख़ासतौर पर जिस ढाबे के आसपास ट्रक ड्राइवर ज़्यादा खाना खाते हो, क्योंकि वहाँ ताज़ा खाना मिलता है। वजह यह है कि ट्रक ड्राइवर की पूरी ज़िंदगी सड़क पर गुजरती है, बेचारे उनको भी खाना खाना है, बीमार ना पड़े, तो ताज़ा खाना चाहिए। तो जो ट्रक ड्राइवर जिन ढाबों पर खाना खाते हैं, इसका मतलब उन ढाबों पर खाना ताज़ा है, क्योंकि ये उनके 300 दिन का काम है। अब हमारे यहाँ फूड को लेके कितनी जागरूकता है क्या है, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में एक मुर्दा डिपार्टमेंट, एक मुर्दा के अननोन डिपार्टमेंट, FDA, सिर्फ एक शख्स की वजह से इस वक्त सुर्खियों में आ गया, चर्चा में। अब डर इसी बात का है कि दो महीने के अंदर ही जो 1200 से ज्यादा छापे मारे हैं, करोड़पति लोग भाई हैं इसमें, बड़े बड़े 5-स्टार होटल में भी कुछ हो चुका है मामला छापे का, वहाँ के रेस्टोरों का, तो वो भी बड़े लोग हैं, सरकार तक पहुँचे। तो अब डर ये है कि कहीं 26वां ट्रांसफर ना हो जाए, जो इतिहास बताता हो सकता है, बहुत मुमकिन है। और इसको लेके बहुत सारे दुकानदार और बहुत सारे पावरफुल लोग तो नेताओं तक भी पहुँच गए। अब आप ये सोचिए कि ये तुकाराम मुंडे का मामला मुंबई में फूड क्वालिटी को सुधारने का महाराष्ट्र की असेंबली में भी उठ गया, और कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा मुंडे का सपोर्ट करते हुए कहा, भाई कम से कम मुंबई में 3 साल रहने दो इस पोस्ट पर FDA में, तो मुंबई की आबो हवा और खाना शायद बेहतर हो जाए। लेकिन क्या इन बड़े लोगों के बीच तुकाराम मुंडे डट पाएंगे, टिक पाएंगे, रुक पाएंगे, पता नहीं, क्योंकि बैर तो उन्होंने ली है तमाम ताकतवर लोगों से। लेकिन इस कहानी से एक चीज तो जरूर सीखने को मिलती है, वो ये कि बहुत सारे फिल्मों में भी डायलॉग सुनाई दिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन डिपार्टमेंट करने नहीं देता। तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो फिर आप बाहर हो जाते हैं या फिर आप उनके जैसे करप्ट हो जाते हैं। लेकिन तुकाराम मुंडे जैसे लोग हमें ये बताते हैं कि आप अपने उसूलों, अपने आदर्शों पर चल कर भी काम कर सकते हैं, आप बदलाव ला सकते हैं। एक अकेला शख्स अगर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनकर इस डिपार्टमेंट को सुर्खियों में ला सकता है, बता सकता है कि ये खाना जो हम खा रहे हैं ये जहर है, ये दूध बच्चों को दे रहे हैं इसमें मिलावट है, तो ईमानदारी ज्यादा से ज्यादा क्या 21 साल में 25 ट्रांसफर हो सकता है 26वां हो जाए, और क्या पता तुकाराम के ट्रांसफर या रिटायरमेंट तक यह आंकड़ा हाफ सेंचुरी भी मार ले। लेकिन उस आदमी ने कभी समझौता नहीं किया अपने उसूल से। जब नवी मुंबई के ये कमिश्नर बने तो वहां पे बुलडोजर चलवा दिया सारे जो अवैध निर्माण थे। इसी तरीके से जब ये शोलापुर में थे तो उस वक्त पानी के टैंकर के लिए बड़े मशहूर हुए थे गरीबों को देने, और फिर इनको वाटरमैन कहा गया था। जब हेल्थ इनको डिपार्टमेंट दिया गया, हर अस्पताल के ऐसे दौरे किए कि अब डॉक्टर नर्सों को टाइम पर आना पड़ा और वहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दिया ताकि आप धांधली नहीं कर सको, तब तक के 21 ट्रांसफर में ये जहां गए अपनी छाप छोड़। और अब इस अननोन डिपार्टमेंट को भी सुर्खियों में ला दिया। तो वाकई इस देश को ना तुकाराम मुंडे जैसे अफसरों की सख्त जरूरत है। ऐसे अफसर अगर हर शहर में हो, हर डिपार्टमेंट में हो, तो सोचिए इस देश की तस्वीर क्या होगी। तो रियली हम सभी को प्राउड करना चाहिए तुकाराम मुंडे पर। थैंक यू सो मच इस कहानी में।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
3: घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
0: झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने JPSC PT परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन JSSC CGL परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि CGL परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे, और इस बीच में JPSC में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
6: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे। बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
7: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी ना जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं JPSC में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

मानसून सत्र के आखिरी चार दिन अहम महिला आरक्षण परिसीमन और एफसीआरएस को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना। सोमवार को संसद में अहम बिल के अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों के तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल। कल विधानसभा मार्च का ऐलान। आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा। सोरेन बोले, दोषियों को सजा देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। ईडी डायरेक्टर का एक साल बड़ा कार्यकाल। 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
5: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यह चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
6: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुखे है, बहरे है, क्या है?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
7: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
1: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं, और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
8: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं, कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपी ने अपना मत रखा है। अच्छा भाई, कांग्रेस का नुकसान है।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
8: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे हैं और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी? आज तक ब्यूरो।
9: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
10: परंपरा का अनुकूल नहीं।

0: बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
1: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
0: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है। इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की। परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
2: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं?
0: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
3: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बन नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
0: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
4: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट। डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर दो हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
0: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
5: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू कर लो ना, कह दो विथ इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
0: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
6: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, MLA ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, MP और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
0: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही FCRA को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और FCRA की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो FCRA का विरोध करेंगे।
7: FCRA जो बिल है आता ज्या फॉर्म मध्य है

0: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवारांचा विरोध आहे. म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका. हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची.
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी. बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है. एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं. सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा. आज तक ब्यूरो.
2: छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं और अब उन्होंने एथेनॉल का मुद्दा भी उठाया है. तो सवाल यह भी है कि जब संसद की शुरुआत होगी तो एथेनॉल का मुद्दा क्या फिर गूंजेगा.
1: ये शोध का विषय है कि संसद का गतिरोध कैसे थमेगा, कैसे संसद सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा है. वो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. एक दिन पहले राहुल गांधी प्रयागराज में थे, वहां उन्होंने सरकार पर हमला बोला.
3: भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी. दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी. मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है. 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस.
1: राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों से संवाद कर रहे थे, लेकिन ये संवाद बीजेपी को पसंद नहीं आया. अब बीजेपी की ओर से सवाल किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं.
4: मैं राहुल गांधी से 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ. राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं, क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की. हिमाचल में युवाओं का क्या हाल है?
5: प्रदेश के बहुत सारे छात्र जो बघाड़ा में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो सलोरी में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो तिलियरगंज में रह करके संघर्ष कर रहे हैं, जो मुठ्ठीगंज, कीड़गंज, चौक इलाके में रह करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके संघर्ष के बारे में उनको पता नहीं है. तो वो एक तरह से एक टूरिज्म की तरह से यहाँ पर आए हुए थे और पूरा पूरा फ्लॉप सो रहा. और मुझे बताते हुए मतलब थोड़ी हंसी भी आ रही है कि फ्रस्ट्रेशन उनका लाजमी है.
1: बीजेपी के इन सवालों का जवाब कांग्रेस दे रही है.
6: मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा सबसे पहले अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाकर कोटा में गए, सबसे मिले, उसके बाद में उसमें जान आ गई, सब सब चल रहा है. और उसके साथ साथ छात्र भी अपनी डिमांड को रखे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लड़ाई को सबसे ज्यादा पुष्टि मिली राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के, और राहुल गांधी जो यंगस्टर्स को बूस्ट दे रहे हैं, उस बूस्ट का फायदा उनको भी हुआ.
1: राहुल जो मुद्दे संसद के बाहर उठाते हैं, उन्हीं को सदन में भी उठाते हैं. जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों पर हंगामा होना तय है. E20 का जो अब राहुल ने छात्रों के साथ साथ पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट का मुद्दा भी उठा दिया है. बोले, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है.
7: E20 का जो मामला है, ये बहुत बड़ा इशू है. नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है.
1: E20 एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता का सीधा सरोकार है, इसीलिए कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लग गई है. हालांकि सरकार के सहयोगी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं.
8: Rahul Gandhi is absolutely right. Every government must listen to the students and dialogue with them. And that's exactly what the NDA is doing. Contrary to him, as leader of opposition, he is only playing leader of propaganda.
1: तो मुद्दे कई हैं और उन मुद्दों पर हंगामा अब तक होता आया है. देखना ये होगा कि सरकार विपक्ष के शोर की क्या काट निकालती है. आज तक ब्यूरो.
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों के 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
2: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है 7 चूज के पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, 7 जो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य है, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
3: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों, जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
4: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक 4 ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। 4 मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का 3रा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
5: SPC, JSSC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के CGL में चयन के के संबंध में सीआईडी ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और जेएसएससी के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, जेएसएसपी में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन सीजीएल में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब सीबीआई की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषियों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, इन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
4: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
6: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
4: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मानसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच एपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली को लेकर आज रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च है। सरकार के खिलाफ ये मोर्चा, बातचीत भी हुई लेकिन बेनतीजा। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सहमति नहीं बनी। आंदोलनकारी छात्रों ने आज मार्च नहीं करने के सोरेन सरकार की अपील है और कहा कि हम छात्रों की बात तो सुन रहे हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र आंदोलन के बीच में बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, संवाद से ही आते हैं सुधार, परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना प्राथमिकता। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच आज मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा, कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच करेगी, 90 दिनों में दाखिल होगी चार्जशीट। जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा भी। सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर झारखंड सरकार का बयान, कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर परीक्षा हुई है, सरकार के पास परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं। आज संसद में अमित शाह पेश कर सकते हैं 2 बिल लेकिन गृहमंत्री के बयान को लेकर तनातनी जारी है। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, बोले कि छात्रों पर लाठीचार्ज, पायलट को लेकर जवाबदेही तय हो। सरकार के खिलाफ आज विपक्ष बनाएगी रणनीति, विपक्ष के 4 लीडर्स के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे मंथन। एफसीआरए बिल के खिलाफ विपक्ष लामबंद, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कांग्रेस एफसीआरए बिल का विरोध करेगी, सहयोगियों के साथ इस पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी व्हिप किया जारी, अपने सभी सांसदों को आज 3 दिनों तक संसद में रहने के निर्देश। मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेताओं से मुलाकात की, वीडियो किया शेयर, कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा। समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा कि पहले दंगाइयों को सम्मान मिलता था, एसपी ने हर जिले में माफिया पाले थे। भागवत के बैन पर भड़की मायावती, कहा कि क्रीमी लेयर की बात करना ही गलत है, एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण अहम। कोलकाता के आरजे का रेप केस मामले में बंगाल के सीएम सुमेध अधिकारी बोले कि रेप मर्डर केस में होगी नई जांच, पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रही। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में ममता बनर्जी की कार पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर पर ममता बनर्जी जा रही थी। बंगाल में ममता बनर्जी की कार पर हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल भड़के, बोले कि हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं, ये चौंकाने और डराने वाला वाक्य। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, सोशल मीडिया पर लिखा देश का प्रगतिशील युवा कह रहा है बीजेपी रास्ता छोड़ो, अगस्त क्रांति निरंतर। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने इस्तीफे पर बोले जेनजी को गुमराह करने की कोशिश में देश के युवा भारत को बनाएंगे विश्व गुरु। दिल्ली में कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, नए मंत्रियों के विभाग सौंपने को लेकर अटकले तेज। पुडुचेरी में हर घर तिरंगा यात्रा, गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और देशभक्ति के नारों से इलाका गूंजा। भुवनेश्वर में अमित शाह के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, मशाल जुलूस के जरिए विरोध जताया। 15 अगस्त को लेकर लाल किले और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां तैनात। अमृतसर में घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया। भारत बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा में बीएसएफ की कार्रवाई, गोली लगने से बांग्लादेशी तस्कर की मौत। दिल्ली में सिंदूर आर्मी महाब्लड डोनेशन यात्रा के दूसरे चरण का आगाज, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद। लखनऊ में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत, सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई झंडी, कहा कि राष्ट्र प्रतीकों का अपमान अब नहीं चलेगा, डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य भी रहे। भोपाल में निकाले गए तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। देहरादून में हर घर तिरंगा रैली में का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। ओडिशा के संबलपुर में निकाली गई हर घर तिरंगा रैली, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हौसला बढ़ा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने हर घर तिरंगा यात्रा की को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी शामिल। महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 11 अगस्त से नई दरें भी लागू। राजस्थान सीआईडी स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई में खुलासा, आतंकी कनेक्शन के आरोप में टोंक से 2 गिरफ्तार। एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस मामले में एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, हादसे में 17 यात्री घायल हुए। बारामती निजी ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश, कोई हताहत नहीं। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन का सेवा विस्तार, 1 साल और पद पर बने रहेंगे राहुल नवीन। सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़, हर तरफ अद्भुत नजारा दिखा। यूपी के हापुड़ में दिखा योगी मोदी का कांवड़, शिव भक्तों के हाथों में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर। यूपी के सहारनपुर में 121 फीट ऊंचे तिरंगा कांवड़, भोले के भक्ति के साथ देशभक्ति का भी संदेश, शहीदों को समर्पित विशाल कांवड़। फतेहपुर शेखावटी में झुंझुनू के लोहारगल की कांवड़ पहुंची और पवित्र जल लेकर शिव भक्तों का जत्था पहुंचा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ कांवड़ी पथ पर खास सेवा, आधुनिक मशीनों से कांवड़ियों की मसाज हो रही। उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, बागेश्वर जिले के लिए 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी घोषित आज। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या पहुंची 7 जिलों में, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। मंडला में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, नर्मदा नदी के ऊपर छोटा जो पुल बना था डूब गया। वाराणसी में गंगा में बाढ़ में डूबे पक्के घाट, जल पुलिस की पेट्रोलिंग भी तेज। गंगा नदी भी उफान पर दिखाई दी, कई हिस्सों में खेत भी जलमग्न दिखाई दिए, लोग परेशान। महाराष्ट्र के अकोला में खेत के रास्ते में विवाद में खूनी खेल, आरोपी ने चलाई 6 गोलियां एक। बिहार के सिवान में फैमिली रेस्टोरेंट में लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में एक्शन होटल को किया गया सील। लखनऊ में गोमती नगर थाने में बैरक में सिपाही ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर जान दे दी। झांसी में नाइट क्लब में दो गुटों के बीच में जमकर हुई मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में ड्रग तस्करों से मुठभेड़, दो आरोपियों के पैर में लगी गोली, मुठभेड़ के बाद 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 21 किलो गांजा जब्त। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाबालिग की गोली मारकर हत्या, निर्माणाधीन साइट पर घुसने पर गार्ड के साथ विवाद हुआ। लखनऊ के मड़ियाओ थाना इलाके में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, 22 साल के युवक के पिता पुत्र ने हत्या कर दी। सोनभद्र में युवक पर महिला से छेड़खानी का आरोप है, अर्धनग्न करके बाल मुंडवा कर पीटने, गांव में घुमाने का वीडियो वायरल, 10 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ में श्रीराम पावर प्लांट में बड़ा हादसा, फर्नेस फटने से 10 से ज्यादा मजदूर झुलस गए। एमपी की गुना में जूतों की माला पहनाने वीडियो वायरल होने से आहत कजोड़ बंजारा ने जहर खा लिया, एसपी ने केस दर्ज करके जांच की शुरू। एमपी के रतलाम में बाल सुधार गृह से 7 बच्चे फरार, होमगार्ड से मारपीट करके भागे, और बाद में 6 बच्चे पकड़े गए और एक की तलाश जारी है। जोधपुर में लीटी डॉन सुमता बिश्नोई 14 अगस्त तक रिमांड पर भेजी गई, चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी में 2 बेटों समेत गिरफ्तारी। राजस्थान के ब्यावर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, ऑपरेशन अग्निपथ के तहत कामयाबी मिली। हापुड़ में कावड़ मार्ग पर मुर्गे का मीट ले जाते हुए युवक की कावड़ियों ने पिटाई कर दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। अलीगढ़ के खैर थाना इलाके में कावड़ यात्रा के दौरान हंगामा, टैंकर के चालक को कावड़ियों ने पीट दिया। फतेहगढ़ साहिब सरहिंद हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने 4 कावड़ियों को रौंदा, 3 की मौके पर मौत, 1 जख्मी। भरूच में 2 अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरफ्तार, मोबाइल स्नैचिंग के दौरान ट्रेन से गिरकर हुई थी यात्री की मौत के मामले में कार्रवाई। दानापुर स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में मिला यात्री का शव, दुर्गंध से यात्रियों की तबीयत बिगड़ी। बिहार के खगड़िया में फर्जी आईएएस मनीष गुप्ता गिरफ्तार, आरोपी के घर से ड्राइवरलेस टेस्ला कार जब्त। यूपी के भदोही में सांड के हमले में मां बेटी की मौत, घटना से पूरे इलाके में मातम, आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं। दिल्ली मेट्रो में 2026 में अब तक 99.95% ट्रेन पंक्चुअलिटी का दावा किया गया, डीएमआरसी के मुताबिक 59 सेकंड से ज्यादा की देरी होने पर ही लेट मान लिया जाता है। अमृतसर में सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए गुलाब सिद्धु और जैस्मीन भसी, नई फिल्म की सफलता के लिए माथा टेका। रक्षाबंधन से पहले पाली डाकघर में शुरू खास पहल, राखी से रक्षा अभियान की शुरुआत, सीमा पर तैनात जवानों को राखी भेजी जाएगी। भिलाई में आदिवासियों की विशाल रैली, 5,000 से ज्यादा लोग रैली में शामिल, जल जंगल जमीन बचाने का संदेश। बेंगलुरु में उल्लाल में अनोखा मॉनसून उत्सव, कीचड़ में मस्ती करते दिखे लोग, महिलाओं ने पानी के बीच लोक गीतों पर जमकर किया नृत्य।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको झारखंड के छात्र आंदोलन के बारे में बताएंगे। भारी बारिश के बीच छात्रों का गुस्सा, सरकार की नींद उड़ाने लगा है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र बार पार के मूड में है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। कल ये छात्र आंदोलन अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा तक एक तिरंगा मार्च का ऐलान किया है। इन सब के बीच 5 छात्र अनशन पर बैठे हैं और हाल ही में निकले मशाल जुलूस ने रांची का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। कल होने वाले इस विधानसभा घेराव को रोकने के लिए प्रशासन के पसीने छूट गए हैं। वहीं सोरेन सरकार के सामने साख बचाने की चुनौती है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि समाज में रिश्तों की डोर कैसे कमजोर हो रही है। एक तरफ सोनीपत के वृद्धाश्रम में दम तोड़ने वाले पिता का अंतिम संस्कार बेटियों ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर कर दिया, तो दूसरी तरफ लखनऊ में एक मां ने सिर्फ एक मकान के लालच में अपने ही नवजात का सौदा कर दिया। ये घटनाएं नहीं है, हमारे समाज की बदलती संवेदनाओं, गिरते संस्कारों का एक कड़वा सच। और आखिर में देश की सड़कों पर बिना इंश्योरेंस दौड़ रहे 16.5 करोड़ से ज्यादा वाहनों के लिए जरूरी खबर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन वाहनों के मालिक सावधान हो जाएं, क्योंकि अब बीमा नहीं ना गाड़ी में तेल होगा ना गाड़ी चलेगी। सबसे पहले 16 दिनों से धरने पर बैठे उन छात्रों की बात जो झारखंड में आयोजित हुई 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जबरदस्त बारिश के बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों की संख्या में छात्रों का धरना हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन में जंतर मंतर की तरह हंगामा नहीं है, अपशब्द नहीं है, छात्रों के मुद्दे हैं, उनके सवालों पर बात हो रही है। उन्होंने तो पोस्टर्स लगा दिए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया है वहां पर कि भाई यहां पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी, अब शब्द नहीं होंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब पूरे देश की नजर झारखंड पर पहुंच गई है और कल का दिन इस छात्र प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा है, हलचल से भरा होने वाला है। प्रदर्शनकारियों ने तय किया है कि वो कल विधानसभा तक एक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और इस दौरान झारखंड सरकार से उनकी मांगे मानने की अपील करेंगे। छात्र प्रदर्शनकारियों ने इसे तिरंगा मार्च नाम दिया। इसके जरिए वो सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों में से इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं। उनकी योजना है जयपाल सिंह स्टेडियम से झारखंड विधानसभा जाएंगे। ये दूरी करीब 13 से 15 किलोमीटर है, यानी करीब 15 किलोमीटर तक पैदल मार्च और फिर विधानसभा तक जाना। वहां पहुंचने के बाद विधानसभा के घेराव का भी प्लान है। अगर इसके बाद झारखंड सरकार उनकी मांगे मानने से इनकार करती है तो इस प्रदर्शन को पूरे राज्य में फैलाने की बात कही गई। कल का दिन झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बहुत चैलेंज वाला रहने वाला है। अगर प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा तक पैदल मार्च किया तो मुमकिन है प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में गेमागेमी की स्थिति बने। हालांकि कोशिश यही हो रही है कि विधानसभा के घेराव से पहले छात्रों के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकाल लिया जाए।
2: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच। ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
3: SPC, JSSC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी, पत्नी, उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और JSSC के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों? JSSP में गिरफ्तारी, छापेमारी, लेकिन CGL में न छापेमारी, न पूछताछ, न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषियों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
2: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
4: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
2: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
1: देश में छात्रों के जो आंदोलन हुए या हो रहे हैं उन्हें किसी राजनीति, किसी पार्टी, किसी नेता, किसी सरकार या किसी नैरेटिव के छोटे से दायरे में नहीं बांधा जा सकता। यह आंदोलन किसी विचारधारा के नहीं बल्कि उस पीढ़ी का है जो अपने हिस्से का इंसाफ मांग रहा है। ये तमाम युवा सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें हमारी इस मेहनत की कीमत दे दीजिए, हमारी नौकरियां दे दीजिए, हमारी परीक्षाओं को ईमानदार बना दीजिए और हमारे सपनों को बार बार लीक होने वाले पेपर धांधली और भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे मत दबाइए। दिल्ली का जंतर मंतर हो या झारखंड का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जगह अलग अलग हो सकती है, चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, नारे अलग हो सकते हैं, लेकिन इन आंदोलनों की आत्मा एक है। क्योंकि हर शहर में सड़कों पर उतरा ये छात्र एक ही दर्द लेकर आया है। उनका दर्द क्या है, उनकी मेहनत आप सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए। जो लोग नौकरी करते हैं या अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन इतनी कम उम्र में छात्रों को सब कुछ भूलकर, खाना पीना, नींद, जागना, सोना सब भूलकर उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है और फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया, पता चलता है नौकरी नहीं मिली। ये दर्द जो है ना कि उसने मेहनत की लेकिन व्यवस्था ने इंसाफ नहीं किया, इस दर्द की वजह से ही आए। उसने रातें जागकर किताबें पढ़ी, उसकी किस्मत का फैसला कभी पेपर लीक ने कर दिया, कभी धांधली ने कर दिया, कभी लापरवाही ने, कभी उस सिस्टम ने जिसने उसकी ईमानदारी की कोई कीमत समझी ही नहीं। आज आप रांची से आई इन तस्वीरों को पहले देखिए, जिनमें प्रदर्शनकारी युवा ऐसे प्लकार्ड्स लेकर आए हैं जिन पर लिखा है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो उनकी शादी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर इन प्लकार्ड्स की आज खूब चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इन छात्रों का विरोध जताने का तरीका कितना नया है, कितना अलग है और कितना अलग है, मतलब अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं। हम भी मानते हैं कि ये क्रिएटिविटी अद्भुत है, लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि क्या ये क्रिएटिविटी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, इन बच्चों को तो सारी मेहनत, क्रिएटिविटी अपने एग्जाम्स, अपनी पढ़ाई पर लगानी थी, नौकरियां हासिल करने में लगानी थी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। जो युवा इस देश के लिए नई टेक्नोलॉजी बना सकते थे, जो हाथ नए उद्योग खड़े कर सकते थे, जो युवा भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने में अपना योगदान दे सकते थे, आज यहां बारिश, धूप, गर्मी, पसीना, मतलब अपनी पीड़ा समझाने के लिए उनको नारे गढ़ने पड़ रहे हैं, उन्हें अपने सपनों की भाषा छोड़कर विरोध की भाषा सीखनी पड़ रही है। और यह इनकी उपलब्धि नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां छात्र आंदोलनों को सबसे ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि वहां यह समझा जाता है कि अगर पढ़ने लिखने वाले छात्रों पर उत्तर आए हैं तो समस्या छात्रों में नहीं, व्यवस्था में है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन युवाओं को अब सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं उनकी आवाज अनसुनी ना रह जाए। वो ऐसे प्लाकार्ड्स बनाते हैं, ऐसे नारे लिखते हैं जो प्रतीकात्मक चीजें लेकर आते हैं, जिन पर लोगों और सरकार की नजर तो पड़े। यानी ये सारे युवा आंदोलन भी कर रहे हैं और इन्हीं पर यह भी जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह सरकार का ध्यान अपने मुद्दों पर खींच सके। ये बैनर्स, ये प्लाकार्ड, ये तराजू, ये गीत, ये देखिए। वैकेंसी निकलेगी तभी शहनाई बजेगी, ऐसे प्रकार लेकर आना पड़ रहा है। और चेहरों की मायूसी देखिए, व्यंग, ये प्रतीक जो है ये सबको, मेरा सीवी तैयार है, सिस्टम कब तैयार होगा। ये उस पीढ़ी की मौन चीख है जो कहना चाहती है कि हमें विरोध करने का शौक नहीं है, नो जॉब नो शादी, हमें तो सिर्फ एक निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, एक निष्पक्ष, एक ईमानदार परीक्षा जिसमें पेपर लीक ना हो, नौकरियों में धांधली ना हो। मेरे होने वाले ससुर कहते हैं पहले नौकरी फिर लड़की, नो जॉब। शायद इस पूरे आंदोलन का सबसे दर्दनाक सच यही है। जब आप इस तरह के पोस्टर देखते हैं और पीछे इन मायूस चेहरों को देखते हैं, इन युवाओं ने अपनी क्रिएटिविटी विरोध के लिए नहीं सीखी थी, उन्होंने ये कल्पनाशीलता भारत का भविष्य बनाने के लिए सीखी थी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उन्होंने अपने सपनों के पोस्टर बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए संजोया था, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें ऐसी जगह खड़ा कर दिया जहां उन्हें अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दर्द आकर्षक बनाना पड़ रहा है ताकि लोग रुकें, तस्वीरें तो देखें, पोस्ट शेयर करें, उनकी बात तो फैले, बहस करें और शायद तब जाकर सत्ता तक उनकी आवाज पहुंचेगी। किसी भी देश के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि उसके सबसे होनहार युवा अपने सपनों का निर्माण करने के बजाय टूटे हुए सपनों का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो। इसीलिए इन तस्वीरों को सिर्फ एक आंदोलन की तस्वीर मत समझिए, यह भी मत समझिए कि आंदोलन रील बनाने के लिए है। ये छात्र सिर्फ इसलिए अपने आंदोलन को आकर्षक बनाने के लिए मजबूर है क्योंकि वो अपने मुद्दों पर समाज, देश, सरकारों का ध्यान चाहते हैं और यही इन संघर्ष कर रहे युवाओं की असली पीड़ा है। देखिए,

0: हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये क्रिएटिविटी जो आज इस आंदोलन में दिख रहा है ये वाकई काबिले तारीफ है, और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उस क्रिएटिविटी की हर तरफ प्रशंसा हो भी रही है, लेकिन इन बच्चों को ऐसी स्थिति में लाने पर मजबूर किसने किया उसके खिलाफ हमारी आवाज है। ये क्रिएटिविटी आंदोलन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए थी, ये क्रिएटिविटी उनकी जिंदगी के सपनों के पूरे करने की यात्रा में शामिल होना चाहिए था कि भाई उनकी नौकरी लगी और नौकरी में उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, उनके अच्छे जगह दाखिला लगा और उस पढ़ाई में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन ताकत कहां झोंकनी पड़ रही है? आंदोलन में। सरकार कहती है उसके दरवाजे हमेशा अपने युवाओं के लिए खुले हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये ऐसे दरवाजे हैं जिन पर भले ताला नहीं है लेकिन इन पर सुनने वाले कान भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको 13 साल के इस बच्चे को सुनना होगा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची से आने वाले पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से अपील करता है, और जानते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। सुनिए।
1: गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 2-3 years 5 years की मेहनत यूं ही रायगढ़ चली गई, जब वो आते तो पता चलता कि ये पेपर कैंसिल हो गया, ये पेपर रद्द कर दिया गया, तो पेपर लीक हो गई। तो मैं सोचा नहीं, मुझे भी आवाज उठानी चाहिए फॉर माई फ्यूचर एंड फॉर दीदीज एंड भैया फ्यूचर। सो जस्ट वी आर अपीलिंग दैट एवरी एग्जाम शुड बी टेकन विद कंडक्टेड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड विद द फेयर ओपिनियन। जनरली सर रांची एक बार पॉपुलर हुआ था एमएस धोनी सर की वजह से, और जंतर मंतर जो कि दिल्ली है और उसमें ज्यादा तादाद में प्रोटेस्ट भी हुई, इसलिए सेलिब्रिटीज और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो भी इस सड़क पर आए थे इस प्रोटेस्ट को देखने। यहाँ पे जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है वो पूरे पीसफुली तरीके से हो रहा है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो रहा था। मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे तादाद की डिफरेंस है, वहाँ पे तादाद और क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे तादाद और क्वांटिटी कम है। बस हम एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, सिर्फ हम एक ही मांग कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन सर से, बिकॉज वी वांट आवर राइट्स, आवर अकाउंटेबिलिटी। वी वांट दैट एवरी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड, नॉट ओनली जेपीएससी, नॉट ओनली जेएसएससी, एवरी एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे।
0: कई लोग कहते हैं कि उन्हें झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों का मुद्दा अब तक समझ नहीं आया है, तो ऐसे लोगों को आज हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसमें इस आंदोलन की वजह साफ साफ नजर आती है। ये तस्वीर है उस तराजू की जिसमें सरकारी नौकरियों का पूरा रेट चार्ट बनाया गया है। जैसे इसमें लिखा है कि एफआरओ की नौकरी का रेट 50 लाख रुपए, महिला सुपरवाइजर की नौकरी का रेट 20 लाख रुपए, माध्यमिक आचार्य की नौकरी का रेट 35 लाख रुपए, आबकारी पुलिस की नौकरी का रेट 15 लाख रुपए और पंचायत सचिव की नौकरी का रेट भी 15 लाख रुपए। सोचिए अगर किसी व्यवस्था में सचमुच नौकरियों का रेट कार्ड छप जाए तो फिर परीक्षा, मेरिट, मेहनत, ईमानदारी, इसका क्या मतलब रह जाएगा। आज ये तमाम युवा प्रदर्शनकारी इसी रेट कार्ड को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हैं और सरकार के लिए ये गाना गा रहे हैं कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। देखिए,
2: 20 लाख, डीजीटी के लिए 20 लाख, वीडियो सीओ के लिए 1 करोड़ और डीएसपी के लिए जो है सो आपको निर्धारित यहाँ पर नहीं किया है, काहे कि उसमें 1.25 करोड़।
3: तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे छाते उठ जाएंगे तो हाथ बांधोगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो।
4: इस तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप एफआरओ का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, मध्यमे आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया।
0: इनकी व्यथा कौन सुनेगा? इस आंदोलन में शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लोकनायक बिरसा मुंडा जी और दिवंगत नेता शिबू सोरेन जी की तस्वीर को मंच पर रखा गया है। और सोचिए ये बात कितनी खूबसूरत है, ये बच्चे हेमंत सोरेन की सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी विरोध प्रदर्शन में उन्होंने उनके पिता शिबू सोरेन की तस्वीर को प्रेरणा के तौर पर अपने साथ रखा है। इससे पता चलता है कि यह आंदोलन छात्रों के असली मुद्दों का है, उन्हें भी बातों की गंभीरता समझ में आ रही है। वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं कि युवा कैसे देशभक्ति के गानों से अपना जोश बढ़ा रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए।
5: Get out!

0: अब आपको देश की नई पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सुनवाते हैं। मुंबई में छात्रों के साथ एक खास संवाद के दौरान मोहन भागवत ने युवाओं की खुलकर तारीफ की, कहा कि देश की व्यवस्था को सुधारने में युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ कहा कि आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से कहीं ज्यादा ईमानदार है, कहीं ज्यादा देशभक्त है। उन्होंने चेताया कि अगर युवाओं से संवाद में कमी रहती है तभी जंतर मंतर जैसे आंदोलन होते हैं। संवादहीनता ही इन टकरावों की सबसे बड़ी वजह है। आंदोलनों और प्रदर्शनों के मुद्दे पर भागवत ने दो टूक कहा कि अगर जेंजी सड़क पर उतरते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एंटी नेशनल है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन सिस्टम में सुधार के लिए और पूरी मर्यादा में ही होनी चाहिए।
1: इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर मैं कह रहा हूँ कि जेल भी अगर एजुकेशन कर दे तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
2: जी सर,
1: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है तो होना चाहिए।
3: और जेन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
2: अरे वाह, बढ़िया है।
3: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
0: जाता है कि किसी देश की महानता सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था, ऊंची इमारतों और तेज रफ्तार विकास से नहीं मापी जा सकती। किसी राष्ट्र की असली पहचान उसके समाज, उसके तौर तरीके, उसकी संवेदनशीलता से होती है, और इस बात से भी होती है कि वो अपने सबसे कमजोर और सबसे बुजुर्ग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वो सिर्फ बागबान जैसी फिल्म देखकर दो आंसू बहाता है, या घर जाकर ये समझता है कि जो उन्हें इस दुनिया में लाए उनकी क्या कीमत है। अगर बात भारत की करें तो दुनिया हमेशा हमारे देश को उसके पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों, बड़ों के लिए, सम्मान के लिए पहचानती है। कहते हैं भाई इतने बड़े बड़े लोग नौकरी कर रहे हैं फिर भी अपने माता पिता के साथ रहते हैं। हाँ, हमारा देश है ऐसा, हमारे लिए रिश्ते बड़े अहम होते हैं, जीवन से भी बड़े होते हैं। सदियों से यही कहा जाता रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है, जहां माता पिता सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि श्रद्धा का विषय होते हैं, जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है। लेकिन आज सोशल मीडिया के इस दौर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये खड़ा है कि क्या हमारा समाज अब भी वैसा ही है जैसा हम उसे मानते हैं, और क्या रिश्तों की वही गरिमा आज भी बची हुई है। आज हम आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि हमारे समाज के सामने रखा गया एक आईना है। पहली तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की है। एक बुजुर्ग पिता जिसने जीवन भर अपने परिवार का ख्याल रखा, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, उनके भविष्य के लिए संघर्ष किया, जब उनके जीवन की अंतिम यात्रा शुरू हुई तब उनकी बेटियां ही उसमें शामिल नहीं हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए अंतिम संस्कार में आना संभव नहीं होगा, इसलिए वो वीडियो कॉल पर ही अपने पिता के इस अंतिम संस्कार को देख पाएंगी, वीडियो कॉल पर। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जब यह वीडियो कॉल किया गया तब एक बेटी ने अपने पिता की चिता जलने से पहले ही यह पूछ लिया कि इस अंतिम संस्कार में और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर उसे और यह सब देखना होगा। एक पल ठहर कर सोचिए उस पिता की आत्मा पर क्या बीती होगी जिसने अपने अंतिम दिन एक वृद्धाश्रम में ही बिताए, जिनके पास परिवार था, बेटियां थी, रिश्ते थे, लेकिन विदाई की घड़ी में कंधे समाज ने दिए, अपनों की मौजूदगी मोबाइल की स्क्रीन तक सिमट गई। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। यहां एक मां पर आरोप है कि उसने अपने ही नवजात बच्चे को सिर्फ इसलिए 3 लाख रुपए में बेच दिया ताकि उन पैसों से वो नया मकान बनवा सके। जब ये खबर पहली बार हमारे सामने आई तो हमें वाकई विश्वास नहीं हुआ। बच्चे से बड़ा घर, हमें लगा कि शायद कहीं कोई गलत फहमी हुई होगी, ये मामला ऐसा नहीं होगा, ऐसा सीधा नहीं होगा। लेकिन जब हमने FIR पढ़ी तो उसमें लिखी बातें पढ़कर हम स्तब्ध रह गए। सबसे हैरान की बात ये थी कि आरोप सिर्फ माँ पर नहीं, आरोप यह है कि जिस अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ वही के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराने में मदद की और रिश्वत लेकर पूरे सौदे को अंजाम तक पहुंचाया, यानी जिस जगह पर एक बच्चे का स्वागत होना चाहिए वहीं उस मासूम की जिंदगी का सौदा हो गया। मां की गोद नहीं मिली, पैसों के लिए बेच दिया गया। ये दोनों घटनाएं इतनी विचलित करने वाली थी कि हमने तय किया कि आज सबसे पहले हम समाज का यही कड़वा सच आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हमारे बीच हो रही हैं, अगर बच्चे वीडियो कॉलिंग पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो इसको किसी भी श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो संवेदनाएं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, रिश्तों को देखने का लोगों का नजरिया है, वो बदल रहा है और वो शायद धरातल से भी नीचे पहुंच रहा है। इस बात को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं जिसमें तीन बेटियां ये कहते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची कि उन्हें मुंबई, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और नेपाल से आने में वक्त लग जाएगा। और जानते हैं इन्हें आना कहां था? इन्हें सोनीपत के उस वृद्धाश्रम में जाना था जहां शिवचरण गुप्ता ने बीमारी के दौरान अपना दम तोड़ा। जब बेटियों के कहने पर वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया तब सबसे बड़ी बेटी नेपाल से वीडियो कॉल पर जुड़ी। हमारे पास जो वीडियो है उसमें वो एक जगह भावुक भी नजर आती हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर अपने पिता को खोने का अफसोस तक नहीं है वो शायद गलत है, क्योंकि एक जगह पर वो भावुक भी नजर आ रही है। नेपाल से वीडियो कॉल पर अपने पिता का अंतिम संस्कार देख रही अनीता एक पल के लिए भावुक हुई थी, लेकिन सवाल तब उठे जब बाद में उन्होंने मुखाग्नि से पहले ही ये पूछ लिया कि अंतिम संस्कार में और वक्त कितना लगेगा। वृद्धाश्रम के लोगों का कहना है कि ये सुनकर उनका शरीर ठंडा पड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो बेटी समय की कमी के कारण अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आई उसके पास वीडियो कॉल पर भी उनका अंतिम संस्कार देखने के लिए वक्त नहीं था। देखिए,
4: दिक्कत कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ।
5: अच्छा अच्छा, 20 तारीख से पहले तो देखते, अभी मैं आपको बताती हूँ ना।
4: हाँ जी हाँ जी,
5: अच्छे से हो गया ना सारा काम?
6: हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया।
5: ठीक है,
6: भेज दूंगा आपके आने पे होगा सारा काम।
7: हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना।
6: ये संस्कार हुआ है
7: अभी, तो संस्कार हुआ है
5: अभी, और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नहाएंगे, शिमला जलाएंगे?
6: नहीं अभी समस्या है ना, मैं पिता को अपनी बेटी

0: लगे रहो दिलदार
1: टिकट दे बना के
2: छोड़ो
1: नहीं चल रही है नहीं चल रही है दस दस पंद्रह मिनट में हो गया कि हाँ हाँ
3: कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर कुछ भी कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शिवचरण गुप्ता कभी महाराष्ट्र के एक बड़े कपड़ा कारोबारी होते थे। उन्होंने मेहनत से अपना संसार बसाया। उनके पास किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। तीन बेटियां थी जिन्हें वो अक्सर अपना बेटा कहकर पुकारते थे। उन्होंने तीनों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उनमें से दो बेटियां आगे जाकर टीचर भी बनी। समय बीता, बेटियों की शादियां हुई, फिर वही हुआ जो अक्सर हर पिता के जीवन में होता है। घर धीरे धीरे खाली होने लगा। शिवचरण गुप्ता और उनकी पत्नी अकेले रह गए। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से शिवचरण गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं हुए। करीब एक साल पहले वो सोनीपत के इस वृद्धाश्रम में आकर रहने लगे, जहां पहले उनकी पत्नी मीना गुप्ता का देहांत हुआ और शिवचरण गुप्ता अकेले पड़ गए। एक महीने पहले जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसके बारे में उनकी बेटियों को बताया गया तो आरोप है कि वो उन्हें देखने नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता ने ही उन्हें आने से मना कर दिया था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पूछने की क्या जरूरत थी। जब पिता एक वृद्धाश्रम में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे, तभी बेटियों को जिद करके वहां आना चाहिए था, लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं। शिवचरण गुप्ता इस आघात से इतना टूट चुके थे कि उन्होंने अपनी मौत से पहले अपना शरीर दान करने का फैसला किया। जब मृत्यु के बाद ये बात बड़ी बेटी को पता चला तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आंखें दान करके उनके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम को 5,100 रुपए भी भेजे, लेकिन बाद में वृद्धाश्रम के लोगों ने यह पैसा भी वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि अंतिम संस्कार का खर्च समाज खुद उठाएगा। और यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। उन लोगों का यह मानना था कि जब जीते जी कोई बेटी उन्हें देखने नहीं आई तो मरने के बाद यह 5100 रुपए के क्या मायने। और जब उनके अस्थियों के विसर्जन की बात आई तब भी बेटियों ने यह कहा कि उन्हें आने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। इसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने ही उनकी अस्थियों का विसर्जन करने का फैसला लिया। हालांकि यहां इस बात को साफ करना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले में अब तक बेटियों का पक्ष सामने नहीं आया है। अगर वो सामने आती हैं, कोई उनकी मजबूरी है, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की भी कोशिश की, और जैसे ही उनका पक्ष हमारे सामने आएगा हम वो जरूर आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई कुछ पारिवारिक ऐसी मजबूरियां थी जिसकी वजह से तीनों बेटी नहीं आ पाई। ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्या वजह थी। लेकिन अभी वृद्धाश्रम के लोग क्या कह रहे हैं, उनके अंदर कुछ टूटा है, उनकी बात सुनिए।

0: देखिए, बड़ी बिटिया थी, भावुक तो थी वो, इसमें मतलब हम ये कहें कि नहीं थी, अपनी भावुक थी, ये तो हर कोई होता है।
1: मैं तो बड़ा दुख का विषय है कि उन बच्चों के माथे पे सिनक तक नहीं थी, आंसू तक मैंने आंखों में नहीं देखे, मैं बिल्कुल सब कुछ लाइव देख रहा था वहां पे। एक बेटी का ये बोलना कि जब बाप की चिता सामने जल रही हो, कि ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, तो आप मानिए कि जब हम सारी क्रिया करने लग रहे हैं तो बच्चियों का ये बोलना कि कितनी देर लगेगी, ये मतलब एक बहुत बड़ी क्रूरता है।
2: आजकल जो आज की पीढ़ी है वो मोबाइल में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में उलझी हुई, रील में उलझी हुई, लेकिन जो बुजुर्ग थे इनकी बेटियां तो उम्र दराज हैं, बड़ी उम्र की हैं, नेपाल में रहती है, बॉम्बे में रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी।
3: कहते कलयुग है, इसी को कलयुग कहते हैं। मैंने ये जरूर सुना था कि लड़के अपने माँ बाप से विमुख हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां तो आधी रात को भी आवाज दो तो भागी आती है। कैसी विडंबना इस कार्य के अंदर जो कल घटित है, सारा शहर क्या, जिस आदमी से बात होती है कि ये ऐसा कलयुग आया जरूर था, लेकिन तो घोर कलयुग आ गया है।
4: आपका भी दिल शायद भारी

0: हो गया होगा इस खबर को देखकर। कई लोग ये लिख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट रहा है। अब ये इस तरह की कोई पहली आखिरी घटना नहीं है। इसी साल 21 जुलाई को अमरोहा में एक बुजुर्ग पिता का अंतिम संस्कार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके चारों बेटे संपत्ति के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे। यही नहीं, इन लोगों ने अपने पिता के शव को तब तक अर्थी नहीं चढ़ने दिया जब तक पंचायत बुलाकर संपत्ति के बंटवारे का फैसला नहीं हुआ। पैसा कितना बड़ा हो जाता है। इसी साल फरवरी महीने में जालौन में भी एक बुजुर्ग पिता के अंतिम संस्कार को इसलिए रोक कर रखा गया क्योंकि उनके दोनों बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद था और इन दोनों बेटों ने इस विवाद के कारण अपने पिता की अर्थी उठाने से इनकार कर दिया। 15 मई 2025 को तो राजस्थान के कोटपुतली में सारी मर्यादाएं टूट गई थी। एक बेटे ने इसलिए अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया क्योंकि वो उनके चांदी के कंगन मांग रहा था। सोचिए हमारे देश में हुआ, उस देश में जिसे श्रवण कुमार का देश कहा जाता है। अरे श्रवण कुमार ना बन पाइए तो मत बनिए, लेकिन कम से कम आंखों का पानी इतना तो रखिए कि उनके चले जाने के बाद ये सब ना करना पड़े। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं जिन्हें बताने के लिए ये शो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि बागवान जैसी फिल्म जाकर देखकर बहुत लोग उस पर आंसू बहाते हैं। अब देखिए, इन घटनाओं में सबसे दुखद बात जानते हैं, अपने बूढ़े माता पिता का वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार करना। क्या आप यकीन करेंगे कि आज हमारे देश में इसका पूरा बाजार बन चुका है? हमने इस खबर को देखने के बाद इस माइंडसेट को, इस मानसिकता को समझने की कोशिश की तो जो हमारे सामने आया उस वो हमें हैरान कर रहा है। अलग अलग शहरों में ऐसी कई कंपनियां काम कर रही हैं जो वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कराने का काम करती हैं। ये कंपनियां अंतिम यात्रा, शव वाहन, फ्रीजर बॉक्स, शमशान बुकिंग, धार्मिक अनुष्ठान, ऑनलाइन श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार की लाइव स्ट्रीमिंग, विदेश से पार्थिव शरीर लाने जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सहूलियत की भी हैं, लेकिन जब अपने ही बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉल पर अपने पिता, अपनी माँ का अंतिम संस्कार देखें, इससे दुखद क्या हो सकता है। पैकेज बने हुए हैं इन लोगों के, दिल्ली, मुंबई, केरल, चेन्नई, ऐसे शहरों में कई लोग इन कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। इनमें भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने बूढ़े माता पिता, दादा दादी, किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होना चाहते या नहीं हो पाते, और इसके लिए ये लोग इन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। उन्हें हजारों रुपए देकर एक पैकेज खरीदते हैं जिसमें अंतिम संस्कार इन कंपनियों द्वारा किया जाता है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग उनके बच्चों को दिखा दी जाती है। सोचिए, ये वो चीजें हैं जो हमारे समाज में हो रही हैं और लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें ये चीजें अब विचलित भी नहीं करती। और ये भी तब हो रहा है जब हमारे देश में अभी बुजुर्गों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। भारत में 15 से 59 साल के लोगों की आबादी 64.8% है, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी लगभग 11.5%। यानी जब इस देश में बुजुर्गों की आबादी कम है तब कई लोग उनका वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कर रहे हैं या उन्हें वृद्धाश्रम में रहने के लिए भेज रहे हैं। सोचिए, आज से 10 साल बाद 2036 में जब बुजुर्गों की आबादी बढ़ने लगेगी तब हमारे देश में क्या होगा। इस स्थिति को देखते हुए केरल में पहली बार बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक अलग मंत्रालय या विभाग बनाया गया है। इसका नाम है एल्डरली वेलफेयर डिपार्टमेंट। और ये विभाग इसलिए बनाया गया है क्योंकि केरल में बुजुर्गों की आबादी 20% हो चुकी है जबकि भारत में ये लगभग 12% है। केरल में कई माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, वो वीडियो कॉल्स पर ही उनका अंतिम संस्कार करवाने के लिए इन कंपनीज की सेवाएं लेते हैं। और पता है इन कंपनियों की सेवाएं क्यों बढ़ रही हैं? ये कंपनियां कहती हैं कि दूर कहीं से आकर अंतिम संस्कार करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है, वक्त ज्यादा लगता है, काम से छुट्टी नहीं मिलती या लेनी पड़ती है। यही देखते हुए अब भारत जैसे देश में वीडियो कॉल पर दूर से अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसी में कई बुजुर्ग तो इतने ज्यादा, मतलब क्या ही कहा जाए उनके बारे में, दुखद स्थिति में रहते हैं कि उन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। एम्स के मुताबिक भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा ऐसे शवों का अंतिम संस्कार होता है जो लावारिस होते हैं या जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इस वक्त देश में 1,658 वृद्धाश्रम सरकारी मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम है, 600 से ज्यादा निजी वृद्धाश्रम है, जिनमें अधिकतम 21,525 बुजुर्ग रह सकते हैं। यानी जो बुजुर्ग अपने घरों को छोड़ देते हैं उनमें कईयों को तो रहने का भी ठिकाना नहीं मिलता, कई मामलों में संपत्ति लेकर माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बच्चे अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते तो उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। और ये फैसला क्यों जरूरी था उसके लिए आप साल 2021 की इन तस्वीरों को भी देखिए। आगरा में जब एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई तो कुछ रिश्तेदार उनकी संपत्ति हड़पने के लिए एक वकील लेकर अस्पताल पहुंच गए। जब उन्होंने इस बुजुर्ग महिला का शव इस एम्बुलेंस में देखा तो जमीन के कागजातों पर उनका अंगूठा लगवाने के लिए इन लोगों ने शव को नहीं बख्शा, मृत हालत में एक वकील ने शव का अंगूठा पकड़कर कई जमीनें उनके रिश्तेदारों के नाम करा ली। और जब ये तस्वीरें लोगों ने देखी तो उनके मन में एक बात आई कि ये कैसा कलयुग है। खैर, इस कलयुग को देखना हो तो ये घटना भी कम विचलित कर नहीं करती। दक्षिणी दिल्ली में रहने वाला एक पिता अपनी 18 साल की अविवाहित गर्भवती बेटी को आगरा लेकर गया। सबको ये बताया गया कि उसका इलाज कराने के लिए वो आगरा ले जा रहा है, लेकिन वहां जाकर इसने अपनी बेटी को चंबल नदी में डुबोकर जान से मार दिया। यही नहीं, अपनी बेटी की हत्या करने के बाद इस पिता ने उसके पैर छुए, ये कहा कि शादी से पहले गर्भवती होकर इस बेटी ने पाप किया था इसलिए उसे मारना ही उसके लिए उचित था। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें भी आज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हमने सोचा आज कुछ अंदर झांका जाए, कुछ अपने आंखों से हवा होते पानी को वापस लाया जाए और ये समझा जाए कि जिन लोगों ने दुनिया में लाया उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं और जिन्हें हम दुनिया में लेकर आ रहे हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं। यार, परिसीमन और विदेशों से मिलने वाली फंडिंग को लेकर जो नए बिल लाना चाहती है उनके लिए सांसदों को एकजुट किया जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ज्वाइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की जिसमें चर्चेस से जुड़े पादरी और कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। ये बैठक एक घंटे तक चली थी जिसमें विदेशी फंडिंग से जुड़े बिल को लेकर इनकी आपत्तियां रखी गई थी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैली मूर ने यह कहा था कि अगर भारत सरकार इस कानून को लेकर आई तो यह कानून भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्तों में बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भारत सरकार का यह नया कानून ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाओं और चर्चों पर कब्जा करने के लिए लाया गया है, इसे ईसाई पर सीधा क्रिश्चियनिटी पर सीधा हमला माना जाएगा। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में मूर के इस बयान पर कई नेताओं और लोगों ने चिंता जताई है क्योंकि वो उसको सीधा सीधा इस बिल को कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब होंगे, अगर ये बिल आया तो ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है। इस बिल पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। आज समझना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है और इस सवाल इतने सारे इस FCRA बिल को लेकर क्यों उठ रहे। तो हमने सोचा सरल भाषा में आपको बता दें कि ये बिल है क्या। इस नए बिल का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 और ये पुराने FCRA कानून है उसका एक बदला हुआ रूप है। सरल शब्दों में समझे तो FCRA विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए बनाया गया एक कानून है जिसमें सरकार ये कहती है कि NGO, ट्रस्ट, चर्च, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या सामाजिक संस्थाओं के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए इन संस्थाओं को कुछ नियमों का पालन करना होगा। क्या नियम होंगे? जैसे ये बताना होगा कि पैसा किसने भेजा, कितना भेजा, क्यों भेजा और इसका इस्तेमाल कहां हुआ है, यानी लेखा जोखा देना होगा। ऐसा भी नहीं कि ये कानून मौजूदा सरकार में पहली बार आया। आज से 50 साल पहले साल 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी फंडिंग के लिए पहली बार इस कानून को लागू किया था। उस वक्त कांग्रेस सरकार का ऐसा मानना था कि अगर विदेशी फंडिंग की निगरानी नहीं हुई तो इससे चुनाव प्रभावित होंगे, सरकार पर दूसरे देशों का प्रभाव पड़ेगा, आतंकवाद अलगाववाद को फंडिंग हो सकती है। यानी सरकार को जब ऐसा लगा कि विदेशी फंडिंग से सरकारें गिराई जा सकती हैं कहीं कोई विरोध प्रदर्शन आंदोलन कराया जा सकता है, कहीं किसी प्रोजेक्ट फैक्ट्री या प्लांट को बंद कराया जा सकता है, तब ये कानून बना। ये दावा भी गलत है कि मौजूदा सरकार इस कानून में पहली बार बदलाव कर रही है। इस कानून में पहला संशोधन 1984 में हुआ, जब विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। इसके बाद 2010 में यूपीए की सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाया। ये तय हुआ कि अब किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन केवल 5 सालों के लिए होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, और निगरानी को लेकर ज्यादा सख्ती की जाएगी। इसके बाद साल 2020 में मौजूदा सरकार ने पहला संशोधन किया, दूसरा संशोधन साल 2022 में किया गया। यानी समय के साथ इस कानून में बदलाव होते रहे और सरकार अभी ऐसा कह रही है कि वो पहली बार ऐसे संशोधन इस कानून में नहीं कर रही है। अब ये समझिए कि मौजूदा कानून में सरकार ऐसे कौन से बदलाव करना चाहती है जिन पर विवाद है, जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। इसमें पहला प्रावधान है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का। इसके तहत अगर विदेशों से फंडिंग लेने वाली कोई संस्था बंद हो जाती है या उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस संस्था की सारी संपत्ति इस अथॉरिटी के अधिकार में चली जाएगी। यानी मान लीजिए अगर किसी संस्था ने विदेशों से फंडिंग लेकर अस्पताल बनाया, स्कूल बनाया या कोई धार्मिक स्थल बनाया, बाद में वो संस्था बंद हो गई, तो उसकी संपत्ति इस अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अब इस पर विरोध करने वाले लोगों और संस्थाओं का यह कहना है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है। यानी उन्हें डर है कि सरकार अगर जानबूझकर किसी संस्था का लाइसेंस ही कैंसिल कर दे तो उसकी संपत्तियां इस अथॉरिटी के पास चली जाएंगी। जबकि सरकार ये कह रही है कि ये डर या ऐसी कोई भी आशंका सही नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर किसी संस्था का लाइसेंस दोबारा बहाल होता है तो उसे उसकी संपत्तियां वापस लौटा दी जाएंगी। अगर हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता है तब ऐसी स्थिति में इन संपत्तियों को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बात को लेकर बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि ऐसा होने से कई चर्च सरकार के कब्जे में चले जाएंगे, जबकि सरकार कहती है कि ये सब झूठ है। सरकार का कहना है कि जो चर्च, मस्जिद, मंदिर विदेशी फंडिंग से बनाए गए हैं उनका कभी भी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जाएगा। यहां ये समझना भी जरूरी है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार कहती है कि इसके पीछे ऐसे कई मामले हैं जिनमें कुछ लोग एनजीओ बनाकर पहले विदेशी फंडिंग लेते थे, फिर उस एनजीओ को बंद कर देते थे और बाद में संपत्तियों की ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती थी। ऐसा ना हो और इन संपत्तियों की ट्रैकिंग की जा सके, यही सोचकर सरकार ने इस बिल में यह प्रावधान जोड़ा है। दूसरा प्रावधान इसमें यह है कि अगर किसी एनजीओ ने अपना रजिस्ट्रेशन 5 साल में फिर से रिन्यू नहीं कराया तो उसका रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। इसी में यह नियम भी जोड़ा गया है कि अगर किसी एनजीओ ने 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए की विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस पर विरोध करने वाले लोगों का बड़ा तर्क यह है कि जो छोटे एनजीओ हैं, जो छोटे संगठन हैं और जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते वो बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि वो ये नियम इसलिए ला रही है क्योंकि अभी बहुत सारे एनजीओ रजिस्ट्रेशन लेकर बैठ जाते हैं लेकिन काम नहीं करता। सरकार का दावा है कि जो डमी एनजीओज हैं, जिन पर विदेशी फंडिंग को एक जगह से दूसरी जगह घुमाने का आरोप लगता है पैसा इधर से उधर करने के लिए, उनके लिए यह बदलाव किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें तीसरा और सबसे अहम प्रावधान यह जोड़ा है कि अब से एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को विदेशों से मिली फंडिंग ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। चौथा प्रावधान रिपोर्टिंग को लेकर है। इसमें विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों को यह बताना होगा कि उन्होंने विदेशों में किस संस्था से पैसा लिया, किससे लिया, किस उद्देश्य से लिया, किस राज्य में खर्च किया और किस चीज पर खर्च किया, मतलब कहां कहां खर्च हुआ है उसका ब्यौरा। यानी अगर किसी एनजीओ ने मध्य प्रदेश में स्कूल बनाने के लिए विदेशी फंडिंग ली होगी तो उसे उस पैसों को किसी और चीज पर खर्च नहीं करना है, वो नहीं कर सकते। अगर आपका उद्देश्य था स्कूल बनाना तो आपको स्कूल ही बनाना होगा। और यही नहीं, वो एनजीओ इस पैसे को किसी दूसरे राज्य में नहीं बेच सकेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप पैसा ले रहे हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाएंगे और उससे आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं या उससे आप आपस में बांट रहे हैं। विदेशों से पैसा अगर किसी राज्य में स्कूल या कोई भी चीज बनाने के लिए आया है तो उससे वही काम किया जाएगा और वो विदेशी फंडिंग दूसरे कामों में इस्तेमाल हो ही नहीं पाएगा। माना जा रहा है कि ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि अभी सरकार को लगता है कि पैसा तो किसी और काम के लिए आता है, खर्च किसी और काम पर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात सिर्फ मौजूदा सरकार को लग रही है। साल 2012 तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि इससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। उस वक्त जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साइंस पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था कि विदेशों से फंडिंग लेने वाले कुछ एनजीओज इन विरोध प्रदर्शनों को करवा रहे। बाद में यूपीए सरकार में ही गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच संभाली थी और ये कहा था कि 3 एनजीओ ने सामाजिक कामों के लिए विदेशों से फंडिंग ली और बाद में यही पैसा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कराने में लगाया, जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब इस बिल के सबसे अहम बिंदु पर आते हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन का जिक्र किया गया है। सरकार कहती है कि उसने ऐसे सभी धार्मिक कामों और गतिविधियों की एक सूची बनाई है जो विदेशों से फंडिंग लेकर किए जा सकते हैं, लेकिन इन कामों में धर्म परिवर्तन और उसके प्रचार प्रसार को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब विदेशों से फंडिंग लेकर धार्मिक स्थलों का रखरखाव हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, गरीबों की मदद भी हो सकती है, अस्पताल चलाए जा सकते हैं, स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं हो सकता। भारत में 52,156 एनजीओ और संस्थानों को विदेशी फंडिंग का लाइसेंस दिया गया है, जिनमें सिर्फ 14,435 के करीब एनजीओ हैं जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। 22,496 हैं जो कि लाइसेंस रद्द है। अब देखिए, जो 14,435 हैं जो सक्रिय हैं, जबकि 72% एनजीओ के लाइसेंस जो है वो या तो रद्द है या रिन्यू नहीं हुए हैं। दूसरा, भारत उन देशों में शामिल है जहां इन एनजीओ को सबसे ज्यादा विदेशों से फंडिंग आती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2019 से 22 के बीच 55,741 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई। अगर सिर्फ 2024-25 की बात करें तो सिर्फ इस एक साल में 22,963 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई और यह पैसा कम नहीं है। अगर आप भारत के इस नक्शे को देखेंगे तो हमारे देश के जिन 5 राज्यों में विदेशी फंडिंग लेने वाले एनजीओ की संख्या सबसे ज्यादा है, उसमें तमिलनाडु पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर है। इसके अलावा रेंटेक डिजिटल के मुताबिक 2023 के मुकाबले भारत में चर्चेस की संख्या 6% बढ़ी है। इनमें भी सबसे ज्यादा एनजीओ आंध्र प्रदेश में है, फिर तमिलनाडु में है, तीसरे स्थान पर सूची में तेलंगाना है। यहां सरकार एक और बात यह कहती है कि इस कानून में सांसद, विधायक, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, जज, राजनीतिक दल, पत्रकारों के विदेशी फंडिंग लेने पर रोक लगाई गई है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भारत का लोकतंत्र प्रभावित ना हो। लेकिन सरकार कहती है कि अगर ये विदेशी फंडिंग भारत के लोकतंत्र को प्रभावित करने लगे तो वो क्या करेगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इस्लामिक नेटो बनाने वाले हैं। तीनों देशों ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है। इस अग्रीमेंट के मुताबिक इन तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो तीनों देश मिलकर लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐसा ही एक डिफेंस पैक्ट हुआ था जिसमें अब तुर्की भी शामिल हो गया है और ये तीनों देश चाहते हैं कि अन्य मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि मक्का में हुए समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस अग्रीमेंट के तहत ये तीनों देश दुश्मन के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये तीनों ही देश रणनीतिक साझेदारी के लिए एक साथ आए हैं। तीनों ही देशों की अपनी अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे सऊदी अरब के पास कच्चा तेल, पैसा है, तुर्की पहले से नेटो का सदस्य है, उसके पास नेटो ग्रेड के हथियार हैं और इस नए इस्लामिक नेटो में वो हथियार सऊदी और पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसलिए तीनों देशों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हालांकि इस्लामिक नेटो कितना कामयाब होगा ये कहना मुश्किल है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ था वो भी अभी तक असरदार साबित नहीं हुआ है। इस डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान ने करीब 95,000 करोड़ रुपए के बदले सऊदी अरब में 25,000 पाकिस्तान सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां, अन्य हथियार पहुंचाए और वादा किया था कि अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मिलकर लड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब तो ईरान ने खूब सारे हमले किए हुती आतंकियों के खतरनाक अटैक के जवाब में, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, कोई पलटवार नहीं किया। सऊदी अलग भुगतता रहा लेकिन पाकिस्तान घुड़। अभी इस डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलकर हूती के खिलाफ लड़ना चाहिए था उस वक्त। इस्लामिक नेटो में शामिल तीसरे देश तुर्की का भी इस नए इस्लामिक नेटो में एक्टिव होना मुश्किल है। दरअसल वो पहले से ही नेटो का मेंबर है। अगर उसने इस नए ग्रुप में शामिल होने की कोशिश की तो उसे अमेरिका का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान ने तो बस सऊदी अरब के पैसों के चक्कर में एक डिफेंस पैक्ट कर लिया है, कुछ कटोरे में आ जाएगा, जबकि उसे भी पता है कि अगर वो सऊदी अरब की लड़ाई में उतरा तो उसे बहुत नुकसान होगा। अब आपको रशिया यूक्रेन जंग का एक ऐसा सच बताएंगे जिसने मानवीय संवेदनाओं को एक गंदे बिजनेस में बदल दिया है। इधर रशिया की तरफ से युद्ध लड़ रहे सैनिक पति का जनाजा उठता है, उधर पत्नी की मतलब उसको पैसे मिल जाते हैं और उसके लिए खुशियों की शुरुआत होती है। मतलब कल्पना करके ये कहने में भी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन सोचिए ये कितना क्रूर, कितना अमानवीय होगा। अब ऐसा आरोप क्यों लग रहा है कि जहां जंग के मैदान में सैनिक का खून बहने पर करोड़ों के मुआवजे की लूट का खेल शुरू हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट CNN की है। इस खबर से जुड़ी केस स्टडी और ग्राउंड रिपोर्ट्स CNN ने की है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने मोहब्बत और मौत को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने पर रशिया की सरकार ने सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया था, जिसके तहत युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिक के उत्तराधिकारी यानी नेक्स्ट ऑफ किन को 60 लाख से 90 लाख रुपए तक भारी भरकम मुआवजा दिया जाता है। इस मुआवजे को हासिल करने के लिए रशिया में भीतर एक ऐसा शातिर सिंडिकेट एक्टिव हो गया है जो सैनिकों की मौतों पर जश्न मना रहा है। ऐसे पैसे को हासिल करने के लिए कुछ जालसाज महिलाएं जानबूझकर सैनिकों को अपने जाल में फंसाती हैं, युद्ध के मुहाने पर जाने से ठीक पहले शादी रचाती हैं और उनके शहीद होते ही करोड़ों का मुआवजा लेकर हवा हो जाती हैं। रशिया में इन ठग महिलाओं को ब्लैक विडोज कहा जा रहा है। ये घिनौना खेल अब खुलेआम एक बिजनेस का रूप ले चुका है और ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने पूरे रशिया को झकझोर दिया है। एक मिलिट्री अस्पताल की नर्स ने वहां इलाज करा रहे गंभीर रूप से घायल 5 सैनिकों से चुपचाप शादी कर ली। 5 सैनिकों से बार में आपस में सब अनजान थे, उनमें से जैसे जैसे सैनिक दम तोड़ते गए ये नर्स उनके डेथ बेनिफिट्स बटोरती रही। बाद में इस नर्स का काला चिट्ठा सामने आया। एक पॉडकास्ट में एक महिला रियल एस्टेट एजेंट ने हंसते हंसते ये सलाह दी कि अगर किसी को अपार्टमेंट खरीदना है तो वो किसी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वाले सैनिक से शादी कर ले, सैनिक के मारे जाने के बाद 90 लाख मिलेगा, आसानी से घर खरीद लेगी। यहां तक कहा कि ये बिजनेस है। बहुत सारी महिलाएं ऐसा कर रही हैं। बाद में इन दोनों महिलाओं को माफी मांगनी पड़ी और इसमें उन्हें लंबी कम्युनिटी सर्विस की सजा भी भुगतनी पड़ी है। एक और मामले में एक सैनिक ने ऑनलाइन संपर्क में आई महिला से 10 दिन में शादी की। युद्ध में जाने के बाद जब फौजी को पता चला कि उसकी नई नवेली पत्नी सोशल मीडिया पर दूसरे व्यक्तियों के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रही है, उसने तलाक की अर्जी दे दी। कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले ही ये सैनिक शहीद हो गए और वो शातिर पत्नी मुआवजे की कानूनी हकदार बन बैठी। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगा दी। मामला सिर्फ कुछ महिलाओं की चालाकी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अब सेना और प्रशासन के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों से भी जुड़ चुके हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है जब एक वारंट ऑफिसर, एक सार्जेंट और एक मिलिट्री अकाउंटेंट पर आरोप लगा कि वो मिलकर एक सिंडिकेट चला रहे थे। ये लोग अनाथ या अपने परिवार में अकेले पुरुषों को चुनते थे, उनकी शादियां ऐसी महिलाओं से कराते थे, फिर उनकी उन सैनिकों को जानबूझकर युद्ध के सबसे खतरनाक और जो सुसाइडल फ्रंट लाइन है उन मिशंस पर भेज देते ताकि जल्द से जल्द मारे जाते वो लोग और मिलने वाला मुआवजा आपस में बांट लिया जाता। रशिया की एक 37 साल की लड़की, उसकी कहानी किसी को भी झकझोर देगी। इसके 59 वर्षीय पिता फ्रंट लाइन पर गोली लगने से मारे गए। इसके बाद लड़की को पता चला कि उसके पिता ने सेना में जाने से ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी लड़की से शादी कर ली थी जिसे इस लड़की ने कभी देखा तक नहीं था। इसके बाद मारिया के पिता का अपार्टमेंट इस महिला का हो गया, वो उसे बेचकर गायब हो गई और इस लड़की के हाथ कानूनी रूप से कुछ नहीं आया। अब रशिया की संसद से लेकर आम जनता तक इस बात पर शोर मचा रही है कि देश के वीरों के बलिदान और उनके परिवारों को इन शातिर भेड़ियों से कैसे बचाया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट CNN की है। इस खबर से जुड़ी केस स्टडी और ग्राउंड रिपोर्ट्स CNN ने की है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहे किसी का हक खाकर बादाम नहीं खाए जाते, दवाइयां ही खानी पड़ती है।
1: मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मानसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृह मंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
5: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यह चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
6: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुखे है, बहरे है, क्या है?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
7: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
1: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
8: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर पर नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं देखा, हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीस ने अपना मत रखा है। अच्छा माने कांग्रेस का ही नुकसान है।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
8: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे हैं और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी। आज तक ब्यूरो।
9: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा।
10: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेंट जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
1: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं।
10: अगर आप
1: ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
11: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
12: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
1: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
6: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते, वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
1: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी, इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है। लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
13: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट, डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर हमारा तो सवाल यह है 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
1: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
14: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू कर लो ना, कह दो विथ इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स, तो ये हकीकत है। इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
1: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
15: 50% लेडीज को उनके सीटी मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एससीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एससीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एससीआरए का विरोध करेंगे।
16: एससीआरए चं जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी? बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
9: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे, और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
17: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र है, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष है, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
18: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों, जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
19: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और JSSC के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, JSSP में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन CGL में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने देखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
20: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दलों की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मानसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
5: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
6: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
7: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
1: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
7: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर में नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं देखा, हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो
8: पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीस ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का नुकसान है।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
8: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल

0: मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
1: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेंट चाहेंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
2: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं, मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा। और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
3: दान पात्र में चोरी, महापाप। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोगों। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना है तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है। इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की। परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
4: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं?
2: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
5: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते। वो उनके विचार दौड़ते रहता, उनके माइंड में वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है, कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते हैं उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
2: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
6: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट। डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है? अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
2: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
7: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू करो ना, कह दो विथ इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
2: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
8: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के

0: गांव ज्यादा है वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हलके उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दाव के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
2: एफसीआरए चा जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका। हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
3: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
4: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र है अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे। बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
5: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
6: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्रवाई अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और JSSC के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, JSSP में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन CGL में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
7: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बैनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बैनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि BJP ने दो टूक कहा कि ऐसे हमलों से BJP का कोई लेना देना नहीं है।
8: पश्चिम बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
9: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
10: पुलिस क्या कर रहे हैं, इतना
9: पुलिस BJP को प्रोटेक्शन दे रहा है।
8: TMC BJP पर हमलावर है। TMC आरोप लगा रही है कि BJP के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
11: BJP पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटिन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
8: TMC की सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ BJP के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
10: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम, अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालात।
8: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
12: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किए है, बहुत दोष किए है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला, और वो भी इतना उम्र के महिला।
8: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि TMC बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
7: ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
8: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से TMC के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
3: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है, और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
13: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है, और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है, तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है, तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नृसिंह के अवतार की झलक मिल रही है, तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
14: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
15: पहले भी आ चुके?
14: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
15: मांगा था जो पूरा हुआ है?
14: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
15: ये घर वाले सही रहे, और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी, पूरी हुई।
13: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है, तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी, और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो।
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।

0: मानसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।
1: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
2: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले, दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
3: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
2: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
4: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
5: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
2: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
6: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
2: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
7: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुखे है, बहरे है, क्या है?
2: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
8: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है, वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
2: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं, और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
9: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं, कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं, और कई एमपीस ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का ही नुकसान है।
2: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
9: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ, और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है, और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
2: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी? आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
10: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेंट जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
2: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं, मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं, और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
11: दान पात्र में चोरी, महापाप, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोगों का, और SIT के बाद SIT गठन। हमारा मानना है तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
12: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
2: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
7: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है, कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते हैं उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
2: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
13: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट। डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है? अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
2: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
14: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू करो ना, कह दो विथ इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
2: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
15: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसा हालात बने पड़े हुए।
2: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
16: एफसीआरए चा जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
2: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी? बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
17: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र है, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष है, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
18: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
2: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक 4 ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। 4 मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
19: SPC, JSSC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और JSSC के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग जांच क्यों, JSSP में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन CGL में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषियों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
2: छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
20: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है, और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
2: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने दो टूक कहा कि ऐसे हमलों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
21: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
22: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
23: क्या कर रहे हैं इतना
22: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
21: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
24: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
21: टीएमसी के सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
25: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत।
21: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
26: मारना, पकड़ना, कादर फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
21: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
27: ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
21: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
0: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
2: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है तो एक झांकी में भगवान शिव के आदियोगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नृसिंह के अवतार की झलक मिल रही है तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
1: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
3: पहले भी आ चुके हो?
1: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है?
1: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
3: ये घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी,
2: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
2: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यह चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
5: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुख्य है, बहरे है, क्या है?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
6: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
1: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं, और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
6: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर पर नारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीज ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का नुकसान है।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
6: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत कर

0: बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे तो इसका नुकसान किसका होगा।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी। आज तक ब्यूरो।
2: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा।
3: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेज जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
1: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
4: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
5: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
1: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
6: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते, वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
1: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी, इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है। लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
7: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट, डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
1: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है।
8: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा। जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ।

0: विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है, अब कल से लागू करो ना, कह दो विद इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
1: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डीलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
2: 50% लेडीज को उनके सीटी मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ कट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
3: एफसीआरए जे बिल है ते आत्ताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
4: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
5: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
6: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है, अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
7: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्रवाई अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी, पत्नी, उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और JSSC के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों? JSSP में गिरफ्तारी, छापेमारी, लेकिन CGL में न छापेमारी, न पूछताछ, न कार्रवाई, ये क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे इस जांच को लेकर के, दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, इन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
8: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बैनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बैनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि BJP ने दो टूका कि ऐसे हमलों से BJP का कोई लेना देना नहीं है।
9: पश्चिम बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
10: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से MK-64 पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
11: पुलिस क्या कर रहे हैं? इतना
10: पुलिस BJP को प्रोटेक्शन दे रहा है।
9: TMC BJP पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
11: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
9: टीएमसी की सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
12: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोलंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम, अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत।
9: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
13: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किए है, बहुत दोष किए है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
9: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
8: ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
9: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
4: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
14: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नृसिंह के अवतार की झलक मिल रही है तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
15: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
16: पहले भी आ चुके
15: हो? हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
16: मांगा था जो पूरा हुआ है?
15: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
16: ये घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी, पूरी हुई।
14: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की
2: जय,
1: भारत माता की
2: जय,
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
3: रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज।

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
5: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यह चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
6: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुख्य है, बहरे है, क्या है?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
7: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
1: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं, और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
7: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर भंडारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो
8: पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपी ने अपना मत रखा है। अच्छा माने कांग्रेस का नुकसान है।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
8: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहे और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी। आज तक ब्यूरो।
9: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा।
10: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेज जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
1: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
11: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
12: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
1: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
6: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बन नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते, वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
1: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इस पे सरकार का खोट नजर आता है।
13: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट, डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर दो हमारा तो सवाल यह है 2023 में जो पारिश हुआ था महिला आरक्षण विधेयक वो रुका क्यों है अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ उसे लागू करें कम से कम 2029 में आज की तारीख से लागू कर दें कोई आपत्ति नहीं होगी 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें हम साथ देंगे लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
1: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता सरकार को समस्या क्या है
14: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी कितनी बार पास होगा जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है अब कल से लागू करो ना कह दो विद इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स तो ये हकीकत है इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है
1: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए
15: 50% लेडीज को उनके सीटी मिलेंगी पंजाब बड़ा सूबा है एमएलए ज्यादा होंगे हल्के गांव ज्यादा है वो छोटे होंगे कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे एमपी और बनेंगे इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थोड़ा सा बोझ कट जाएगा बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे
16: एफसीआरए चा जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे ही मागणी आहे आमची
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा आज तक ब्यूरो
9: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है बड़ा बदलाव हुआ है आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है
17: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना वेबसाइट जारी करना ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है हम सभी छात्र हैं अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है साक्ष्य उसके पास है तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिपीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके अभी हमारे पास साक्ष्य एग्जाम को रद्द होने चाहिए
18: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है अभी भी समय है मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों, जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आइसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
19: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्रवाई अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी, पत्नी, उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और JSSC के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों? JSSP में गिरफ्तारी, छापेमारी, लेकिन CGL में न छापेमारी, न पूछताछ, न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे इस जांच को लेकर के, दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, इन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
20: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
9: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बैनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बैनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि BJP ने दो टूका कि ऐसे हमलों से BJP का कोई लेना देना नहीं है।
0: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
21: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री पोस्ट पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं
22: देखा।
21: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
0: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
23: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
0: टीएमसी के सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
24: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोलंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत।
0: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
25: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किए है, बहुत दोष किए है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
0: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
20: ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
0: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
9: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
1: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नृसिंह के अवतार की झलक मिल रही है तो एक झांकी में
2: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आगे कांवड़ लेने,
3: पहले भी आ चुके हो।
2: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
4: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे।
3: पहले भी कभी ले गए?
4: हाँ पहले भी,
1: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है, बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।

मानसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान।

0: दुनिया की विसात पर ताकत का खेल, कौन हुआ पास तो कौन कहां कैसे हो गया फेल, धरती के नक्शे पर क्या कुछ बदला। आज तक पर लेकर हाजिर हम आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें आप और हम मिलकर पढ़ेंगे दुनिया में हुए हर छोटे बड़े बदलाव की कहानी। जानेंगे कि आखिर इस खेल के बड़े पावर प्लेयर्स कौन है वो पावरफुल किरदार। साथ ही आप और हम मिलकर जानेंगे कि विश्व में हो रहे इन तमाम बदलावों का आप पर, हम पर, हमारी जेब पर, जिंदगी पर कितना होगा असर। तो चलिए करते हैं शुरुआत पावर प्ले की। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। तो पावर प्ले में सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर स्टोरी के साथ में। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई अब 5 महीने से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, मगर इस लड़ाई में जितनी मिसाइलें, जितने ड्रोन दागे गए, जितना इस्तेमाल किया गया, उतना ही कंफ्यूजन बम का भी इस्तेमाल किया गया है। हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी और अगर खत्म होगी तो कैसे खत्म होगी, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं कि हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, कभी कहते हैं कि हम डील के लिए तैयार हैं और डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। क्या बयानों का ये पूरा उलझाव कोई सोची समझी रणनीति है या फिर किसी रणनीति के अभाव की निशानी है? आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, ये घमासान बढ़ता रहा, तो ये लड़ाई आखिर कहां जाकर थमेगी? तो चलिए पावर प्ले में करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रेन की मैपिंग।
1: The denuclearization of Iran has to happen.
2: I'm losing faith in them because they do lie. We have great people talking. Marco's involved.
3: They're all involved. Talks aren't happening.
2: Very good people. We're the best people. But they'll make a deal. You're 100%, and they don't happen. I've gone into deals that there is no chance of getting them done, and it happens, and they happen easily.
4: पूरी दुनिया इस सवाल को लेकर उलझी हुई है कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर दफ्तर में रूज़वेल्ट डेस्क के पीछे बैठा शख्स यानी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कैसा खेल खेल रहा है जिसके झटके पूरी दुनिया झेल रही है। लेकिन इस सवाल को लेकर अमेरिका इन्हीं पूरी दुनिया में दो खेमे भी दिखाई देते हैं और दो नजरिए भी। पिछले 5 महीनों में ईरान को लेकर ट्रंप का रवैया एक लूप में चक्कर लगा रहा है जिसमें अचानक सैनिक हमला शुरू होता है, फिर एकाएक ही बातचीत का प्रस्ताव भी आ जाता है, फिर धमकी दी जाने लगती है। जानकारों का एक तबका मैडमैन थ्योरी का हवाला देता है, कहता है कि एक सोचा समझा हथियार है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, मगर ट्रंप के आलोचक मानते हैं कि ट्रंप के पास कोई थ्योरी है ही नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच तकरार, इनकार और इकरार का यही पैटर्न बीते 5 महीनों में बार बार नजर आया है, यानी वार पलटवार के साथ साथ पर्दे के पीछे सुलह समाधान और सौदे। ऐसे में ट्रंप के निर्णयों में आम चश्मे से पढ़ी जा रही अनिश्चितता भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। सवाल पूछा जाता है कि 17 जून को ईरान के साथ हुए जिस समझौते पर खुद ट्रंप ने दस्तखत किए, जिसे अपनी कामयाबी करार दिया, फिर आखिर वो करार महज 1 महीने के भीतर क्यों टूट गया? आलोचक कहते हैं कि अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति ट्रंप के पास ना तो ईरान में राजनीतिक बदलाव की कोई स्पष्ट योजना है और ना ही हॉर्मुज स्ट्रेट को स्थायी रूप से सुरक्षित करने का कोई रास्ता।
5: कोई शक नहीं, उनको लगता था कि ईरान जो है जिस प्रकार से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था उसके तहत कहीं ना कहीं वो मान जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा, क्योंकि आज की तारीख में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लड़ाई का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। वहां 20% जो पूरे वर्ल्ड का ऑयल जाता है, मगर ईरान ने उसको बंद कर दिया है क्योंकि ये सबसे बड़ा लीवरेज है ईरान के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और इसको सच्चाई है कि अमेरिका समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या।
4: दरअसल बीते 80 सालों से दुनिया की स्थिरता एक अनकहे नियम पर टिकी रही। कोई एक ताकत पूरे सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी उठाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यह भूमिका निभाई, लेकिन कोई भी व्यवस्था तभी चलती है जब कोई महाशक्ति ऐसी कीमत को उठाने को तैयार हो। आज जब ये व्यवस्था टूट रही है क्योंकि अमेरिका अब इसका दाम चुकाने से हिचक रहा है, यहीं से नजर आता है कि किंडल बर्गर ट्रैप यानी ऐसी स्थिति जिसमें वैश्विक व्यवस्था आसानी से नहीं बदलती, वो टूटती है। इसी को विश्लेषक पॉली क्राइसिस भी कहते हैं, यानी समस्याओं का दशाना। बहरहाल यही वजह है कि ट्रंप की ईरान नीति को मास्टर प्लान या भ्रम में खांचे में बांटना उतना आसान नहीं है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के लिए सबसे खतरनाक दौर वो नहीं होता जब एक साम्राज्य हावी हो, बल्कि सबसे खतरनाक दौर वो होता है जब दो साम्राज्यों के बीच का खालीपन हो। आज तक ब्यूरो।
0: तो पावर प्ले में अभी आपने देखी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रेन मैपिंग की कोशिश। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जिसको लेकर अमेरिका और ईरान बीते 5 महीनों से उलझ रहे हैं, जिस हॉर्मूज की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को मानो हार्ट अटैक आ रहा है। इसी बीमारी का इलाज करने के लिए अब खाड़ी के देश हॉर्मूज की बाईपास सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। नया नक्शा तैयार करने की कोशिश हो रही है।

जहां ये सारी कहानी न केवल लिखी जा रही है बल्कि ये सारी कहानी जहां पर इन दिनों उलझी हुई है, क्योंकि ये नक्शा समझना बहुत जरूरी है जो इस पूरे इलाके की इबारत को तय कर रहा है। और मेरे पीछे जो आप ये नक्शा देख रहे हैं, ये है खाड़ी का वो इलाका। आप अदन की खाड़ी का इलाका भी देख सकते हैं और साथ ही यहां आपको नजर आ रही होगी, ये अदन की खाड़ी का इलाका है और साथ ही यहां आपको नजर आ रहा है ये अदन की खाड़ी का इलाका और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका। लेकिन ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं, ये लाल लकीर दरअसल सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है और यही वह पाइपलाइन है, यानी ये जो आप देख रहे हैं यानबू तक खींचती हुई लाइन, यानी यह तेल का इलाका है और यहां से जो तेल की पाइपलाइन है वो लाल सागर की तरफ जाती है, इस इलाके तक सऊदी अरब अपना तेल पहुंचाता है और ये लाइफलाइन कही जा सकती है तेल की सप्लाई के लिहाज से। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमत $120 से ज्यादा पार नहीं पहुंची तो उसकी बड़ी वजह ये पाइपलाइन भी है। लेकिन यहां पर अब हम बात कर रहे हैं बाईपास सर्जरी की और इस बाईपास सर्जरी के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि पूरब से पश्चिम तक यानबू तक एक और पाइपलाइन बनाने की तैयारी सऊदी अरब कर रहा है और ये काम केवल सऊदी अरब ही नहीं कर रहा है बल्कि इस काम के अंदर जो अन्य देश हैं वो भी जुटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज के इस बाईपास के लिए ये जो आप दो जगहें देख रहे हैं होरफकन और फुजैरा, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की जगह है और हॉर्मुज से ये दूरी होने के कारण ये एक ऐसा रास्ता बनता है, ये एक ऐसी जगह बनती है जहां से संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अपने तेल की सप्लाई कर सकता है। हॉर्मुज के इस बाईपास के लिए एक और कोशिश चल रही है सीधे भारत तक पहुंचने की। भारत तक पहुंचने की कोशिश इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीदार है और ये जो पाइपलाइन आप पीछे देख रहे हैं ये अंडर सी पाइपलाइन की प्रस्तावित योजना है जो इस यानी ईरान अमेरिका और इजराइल के इस पश्चिम एशिया के संकट ने एक बार फिर टेबल पर ला दी है, यानी इस विचार पर इस प्रस्ताव पर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि क्यों ना यूएई से लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट तक पाइपलाइन बिछा दी जाए और इसके अंदर केवल संयुक्त अरब अमीरात ही नहीं, इस परियोजना के अंदर ओमान भी शामिल हो सकता है और ओमान भी अपने तेल का निर्यात भारत तक इसके जरिए कर सकता है। तो ये वो सारी कहानी है जिसे हम कह रहे हैं कि वो इस पूरे इलाके के अंदर बाईपास सर्जरी करने की कोशिश है, क्योंकि ओमान की भी कोशिश है कि ये जो पूरा इलाका है इस पूरे इलाके के अंदर ओमान अपने जो दुकम का पोर्ट है, सलाला का पोर्ट है, वो जो सारे उसके जो पोर्ट्स हैं उनके जरिए निर्यात कर सके, यानी जो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके को टाल दिया जाए, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके को यहां पर बाईपास कर दिया जाए। लेकिन अब आपको रूबरू कराते हैं इस खेल से ही जुड़े हुए चार किरदारों से, यानी पावर प्लेयर्स से, जो इस वक्त घटना चक्र की सुर्खियों में। तो आपको मिलवाते हैं उन पावर प्लेयर्स के साथ जिनका जिक्र हम कर रहे थे, जिनके किरदारों को लेकर आप नकारात्मक बात भी कर सकते हैं, सकारात्मक बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो चार चेहरे आप देख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं चेहरों की इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान के सेना प्रमुख यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। हम बात कर रहे हैं आसिम मुनीर की एक पावर प्लेयर के तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान में तख्ता पलट की लगातार अटकलें इस समय चल रही हैं, कोशिश हो रही है कि आसिम मुनीर एक बार फिर जनरल अयूब, जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के किरदार को निभाते हुए नजर आए, जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी सीधे इस्लामाबाद पहुंच जाए और सत्ता के सारे सूत्र जो हैं वो आसिम मुनीर के हाथ में नजर आए। अहम मानी जा रही है मुनीर की भूमिका इस लिहाज से भी क्योंकि वो न केवल पाकिस्तान की सत्ता के सूत्र तय कर रहे हैं बल्कि इस समय उन्हें लगता है कि वो वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी बेहद करीबी बन चुके हैं और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर सेना की ही पकड़ को मजबूत कर लिया जाए। इन किरदारों के चेहरे के अंदर अब आपको मोहसिन नकवी का भी चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी का ये जो चेहरा है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हरकारे हैं, यही मैसेंजर हैं जो इस्लामाबाद और तेहरान के बीच में जो संदेश है वो लेकर जाते हैं। मुनीर बात करते हैं अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में और उसके बाद उस संदेश को लेकर तेहरान यानी ईरान की राजधानी पहुंचते हैं मोहसिन नकवी। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ जो बयान दिए मोहसिन नकवी ने, उसको लेकर अटकलों का बाजार तेजी से गर्म हो गया है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे को बर्बाद कर दिया गया है, ये बात कौन कह रहा है? मोहसिन नकवी कह रहे हैं। वो मोहसिन नकवी, एशिया कप की चोरी की बात अभी यहां नहीं करेंगे, बात करेंगे मोहसिन नकवी के इस लिहाज से भी क्योंकि मोहसिन नकवी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो कि शहबाज शरीफ की ही सरकार के अंदर मंत्री हैं, उनके गृह मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तोहमत का ठीकरा फोड़ रहे हैं किसी

और के नाम और कह रहे हैं कि सरकार का प्रशासनिक ढांचा बर्बाद हो गया है। किसने बर्बाद किया है ये जवाब देने की बजाय वो सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 21 साल से पाकिस्तान के अंदर रिश्वत का खेल चल रहा है। साथ ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो भी मोहसिन नकवी के अंदर जबरदस्त देखने को मिल रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर जो खेल चल रहा है भारत के पड़ोस में, पाकिस्तान में, दक्षिण एशिया में और साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच में, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका मोहसिन नकवी की नजर आती है और इसीलिए मोहसिन नकवी एक पावर प्लेयर है। लेकिन इस खेल के अंदर अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो ईरान की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, वो चेहरा जो कई बार तस्वीरों के सामने आता रहा, बातचीत के अंदर अगुवाई करता नजर आया, यही इस्लामाबाद भी पहुंचे थे, यानी सैयद अब्बास अराकची कुछ समय पहले भारत भी आए थे, 5 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचे थे, पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत उन्होंने की। इसके साथ साथ यूएस का साथ देने को लेकर उन्होंने संयुक्त जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसको उन्होंने धमकी भी दे डाली। इसके अलावा इसराइल पर जंग को भड़काने का आरोप लगाते रहते हैं, इसको लेकर भी वो चर्चाओं में हैं। लेकिन बयानों से ज्यादा सैयद अब्बास अराकची के नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है कि वो ओमान पहुंचे मस्कट में फिर एक बार उस प्रस्ताव को लेकर कि क्यों ना स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओमान और ईरान मिलकर मैनेज करते हैं, आइए मिलकर $2 मिलियन वसूलते हैं हर उस जहाज से जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाला है। लेकिन इन तस्वीरों के किरदारों के अंदर एक चर्चा हो जाए जरा शेख हसीना को लेकर भी, क्योंकि भारत में मौजूद हैं और 2 साल बाद दुनिया के सामने आई और उन्होंने ऐलान किया कि वो दिसंबर 2026 के अंदर लौटना चाहती हैं, एक बार फिर ढाका पहुंचना चाहती हैं। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं इन तमाम पावर प्लेयर्स की और इन पावर प्लेयर्स के चलने वाले खेल के भारत पर होने वाले असर की भी, क्योंकि भारत के लिए आखिर ये सारी चीजें क्या मायने रखती हैं, क्या असर रखती हैं, ये जानना, इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। इस पूरी चीज का इंडिया इंपैक्ट कितना है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। और इसीलिए अब हम बात करते हैं इंडिया इंपैक्ट की, यानी आखिर भारत पर इन तमाम चीजों का कितना, कहां, कैसे असर हो रहा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इंडिया इंपैक्ट के अंदर बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर ये जो तेल का खेल चल रहा है, यानी जब भी दुनिया के अंदर कोई जंग होती है, कोई तनाव होता है, तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन तेल की कीमत जैसे ही $100 प्रति बैरल से पार पहुंचती है तो यहीं से दबाव का खेल शुरू हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि तेल की जब भी संकट आता है, जब भी कोई ऐसी समस्या आती है, तो लोग देखते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, देखते हैं गाड़ी के बढ़ते हुए खर्चे की तरफ। लेकिन यहीं पर लोग चूक कर जाते हैं। चूक इस लिहाज से कर जाते हैं क्योंकि तेल क्या ये जो पूरा खेल है, यानी एक बैरल का जो तेल है उसका महज 45% जो है, जो यहां पर आपको नक्शे पर नजर आ रहा है, ये जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट बताता है कि महज जो 45% है वो जाता है आपकी गाड़ी में ईंधन के तौर पर, लेकिन ये जो 55% का बड़ा हिस्सा है ये आपकी जिंदगी की हर चीज से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो कपड़े हमने पहने हैं, ये जो टैबलेट मेरे हाथ में है, ये जो पेन मेरे हाथ में है, ये तमाम चीजें जो इस तेल से ही बनी हुई है, कहीं ना कहीं इसी के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिहाज से ये पूरी चीज बहुत महंगी है, ये बहुत चीजों पर असर डालती है। साथ ही तेल और गैस का जो असर है वो आपके रोजमर्रा जिंदगी में, यानी थाली को प्रभावित करता है। भारत में आयात का खर्च तो बढ़ा ही है क्योंकि भारत तेल का बड़ा आयातक देश है, लेकिन नाइट्रोजन जो इसी से निकलता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का ही बाय प्रोडक्ट है, उसके कारण उर्वरक का एक बड़ा संकट खड़ा होता है, फर्टिलाइजर का संकट खड़ा होता है। और दुनिया की 8 अरब की आबादी को 2 वक्त की रोटी मिल सके उसमें एक बड़ी भूमिका इन नाइट्रोजन बेस्ड उर्वरकों की है, फर्टिलाइजर्स की है, और इसके कारण उनका संकट बढ़ता है, कीटनाशक का संकट बढ़ता है। और इसी संकट से मुकाबले के लिए माथापच्ची हर देश में चल रही है। भारत के अंदर बीते 5 महीनों के अंदर 4 CCS की बैठक हो चुकी है। हाल ही में 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी जो थी वो स्पेशल CCS की बैठक की। ये जो बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी इसकी अगुवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर CCS की एक्सटेंडेड बैठक थी। इसमें कृषि मंत्री भी शामिल थे, इसके अंदर पेट्रोलियम मिनिस्टर भी शामिल थे, इसके अंदर वित्त मंत्री शामिल थे, और तमाम जो अधिकारी थे उनको बुलाया गया था ये बात करने के लिए कि आखिर इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। 22 मार्च को एक्सपर्ट समूह बनाने का आदेश भारत की तरफ से दिया गया था। साथ ही 1 अप्रैल को खाद की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी कोशिश की गई, क्योंकि रबी का फसल है, रबी की जो बुआई है
उसके पहले खाद और उर्वरकों की जो सप्लाई है वो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, खासतौर पर भारत जैसे देश के लिए जहां पर कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम भूमिका रखती है। इसके अलावा 30 जुलाई को जो बैठक हुई उसमें वैकल्पिक खाद के स्रोतों पर भी विचार किया गया। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आखिर इंडिया इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है आपकी हमारी जिंदगी के ऊपर, ये जो दाम बढ़ने का संकट आप और हम इस समय झेल रहे हैं आखिर उसका दायरा कितना बड़ा है, उसका विस्तार कितना बड़ा है, यही हमने आपको समझाने की कोशिश की। और इस पूरे पावर प्ले के अंदर हम बात करते हैं कुछ ऐसे सिग्नल्स की भी जो न केवल भारत से जुड़ते हैं बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दो बड़े देश आपस में एक मामले को लेकर इस समय उलझते हुए नजर आ रहे हैं और वो है ह्यूमनॉइड रोबोट। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच इस समय ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स को लेकर एक रस्साकशी चल रही है। दोनों ही तकनीक की बड़ी ताकत रखने वाले देश हैं लेकिन इस समय भिड़े हुए हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने फैसला किया है कि चीन के जो रोबोट्स हैं वो अब अमेरिका के अंदर नहीं आएंगे। चीन का दबदबा रोबोट्स के क्षेत्र में न केवल बढ़ रहा है बल्कि अमेरिका के लिए एक खतरा बन रहा है, और इस खतरे के सिग्नल्स को लेकर यह जानना और समझना जरूरी है कि क्या भारत के लिए भी इसका किसी तरीके का कोई असर है, क्योंकि हम इसकी चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये सिग्नल कहीं ना कहीं भारत को भी प्रभावित करते हैं। हम बात कर रहे हैं इन तमाम ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, और ये रोबोट्स जो हैं वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाले समय में काम संभालने वाले हैं। इनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है, ये जो रोबोट्स हैं ना ये आने वाले समय के अंदर रोजगार के नए चुनौती देने वाले साबित हो सकते हैं, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं इनके आयात पर अमेरिका ने ये कहते हुए रोक लगा दी है चीन के कि ये हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी का खतरा बन सकते हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने तय किया है कि ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जिसे चीन की फैक्ट्रियों में तैयार किया जा रहा है उन्हें अब अमेरिका में नहीं आने दिया जाएगा, वो अमेरिका के लिए चुनौती है। इसके अलावा बिजली की ग्रिड संचार नेटवर्क को निशाना बना सकते हैं ये ह्यूमनॉइड रोबोट, ये अमेरिका कह रहा है जो खुद अपने यहां पर रोबोट्स बना रहा है। इसके अलावा दुनिया में करीब 85% जो ह्यूमनॉइड रोबोट हैं वो चीन बना रहा है। जी हां, दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश बड़ी तेजी से रोबोट तैयार कर रहा है। चीन के इस रोबोट के खेल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चीनी रोबोट पर रोक अमेरिकी कंपनियों का फायदा तो बढ़ाएगी लेकिन एक बड़ा संकट इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि चीन में 20 लाख जो रोबोट हैं और यूएस में करीब 4 लाख ही रोबोट हैं, यानी रोबोट की भी तुलना की जाए तो तराजू में इस समय चीन का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ये रोबोट अगर चीन बना रहा है तो किस चीज के लिए बना रहा है। चीन ने इसका एग्जाम्पल दिखाया है कि ये रोबोट तैयार किए जा रहे हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, यानी जो रोजगार के अवसर हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती है ह्यूमनॉइड रोबोट बनने जा रहे हैं। दुनिया की 8 अरब की आबादी, दुनिया के कई देशों के सामने रोजगार और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा एक संकट है, और बड़ी आबादी रखने वाले भारत जैसे देश के लिए तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो रोबोट की आंधी है इससे मुकाबला करने के लिए आखिर हमारे दरवाजे कितने मजबूत हैं, भारत इसके लिए क्या तैयारी कर रहा है, और यदि भारत की भी फैक्ट्रियों के अंदर और दुनिया की अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर यदि रोबोट काम करने लग जाएंगे तो फिर इंसान क्या करेगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल है जो इस तस्वीर के साथ में इस पूरे खेल के साथ में और गंभीर होता चला जा रहा है। तो पावर प्ले में हमने कोशिश की इन तमाम चीजों को, इन तमाम बदलावों को एक जगह समेटने की, पढ़ने की, ये जानने की कि आखिर जो कुछ दुनिया में चल रहा है ताकत का ये खेल आखिर कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, और ये आपकी हमारी जिंदगी आपकी हमारी जेब को कैसे प्रभावित कर रहा है, और आगे आपको और हमें किस तरह से तैयार रहने की जरूरत है। तो पावर प्ले की ये कोशिश आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
1: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र है, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे। बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
2: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
0: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने दो टूक कहा कि ऐसे हमलों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
3: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
4: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री पोस्ट पुलिस का सामने इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं
5: देखा।
4: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
3: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
6: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स, बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
3: टीएमसी की सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
7: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम, अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालात।
3: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
5: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है, ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते, वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
3: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि TMC बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है, क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
8: ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
3: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से TMC के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।

मॉनसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
5: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यह चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
6: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुख्य है, बहरे है, क्या है?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
7: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
1: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं, और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
7: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर बंधारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं। कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो
8: पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपीस ने अपना मत रखा है। अच्छा भाई, कांग्रेस का नुकसान है।
1: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
8: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी। आज तक ब्यूरो।
9: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्षी चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा।
10: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेज जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
1: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं, मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
11: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
12: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
1: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
6: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बन नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते, वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
1: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का खोट नजर आता है।
13: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट, डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर दो हमारा तो सवाल यह है 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक वो रुका क्यों है अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ, उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
1: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
14: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू करो ना, कह दो विद इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स, तो ये हकीकत है। इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
1: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
15: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
16: एफसीआरए चं जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी? बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
9: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
17: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
18: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच। ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
19: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते। मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्रवाई अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है? क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं? ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? अभय तिवारी, पत्नी, उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और JSSC के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों? JSSP में गिरफ्तारी, छापेमारी, लेकिन CGL में न छापेमारी, न पूछताछ, न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है? ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले। मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है। CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई। नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
20: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
9: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बैनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बैनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि BJP ने दो टूका कि ऐसे हमलों से BJP का कोई लेना देना नहीं है।
0: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
21: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री पोस्ट पुलिस का सामने इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं
22: देखा।
21: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
0: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
23: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
0: टीएमसी की सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
24: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम, अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं, हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालात।
0: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
25: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किए है, बहुत दोष किए है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
0: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
26: ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
0: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
9: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
1: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नृसिंह के अवतार की झलक मिल रही है तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
2: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आगे कांवड़ लेने,
3: पहले भी आ चुके
2: हो? हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी,
3: मांगा था जो पूरा हुआ है,
2: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
3: ये घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे, पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी,
1: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है, बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
9: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मानसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
5: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
6: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन।
7: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा।
8: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेज जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
1: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं, मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे।
9: अगर आप
1: ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
10: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग। और SIT के बाद SIT गठन, हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
1: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
9: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
1: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
6: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बंद नहीं सकते और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते। वो उनके विचार दौड़ते रहता उनके माइंड में, वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं, हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते हैं उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
1: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें

0: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट, डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर दो हमारा तो सवाल यह है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
1: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है?
2: वुमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा? जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू करो ना, कह दो विद इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स, तो ये हकीकत है। इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
1: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
3: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ कट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
1: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
4: एफसीआरए चा जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
1: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी? बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों के 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
6: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है 7 चूज के पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, 7 जो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।

0: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों, जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में TDPL के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये एक राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
1: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक चार ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। चार मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का तीसरा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
2: SPC, JS, SC, CGL परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन CID जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो CGL में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो JSSC कार्यालय में CGL आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये CID जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के CGL में चयन के संबंध में CID ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और JSSC के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, JSSP में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन CGL में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब CBI की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले SSC CGL की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले, मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है, CGL चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई, नेपाल कांड में CID की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
1: छात्रों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता CM हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
3: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
1: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने दो टूका कि ऐसे हमलों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
2: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
5: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस के सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
6: क्या कर रहे हैं
5: पुलिस? बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
2: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
7: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटिन्यूअसली द स्टोन्स वर थ्रोन।
2: टीएमसी के सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
8: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम। अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत।
2: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
9: मारना, पकड़ना, कादर फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
2: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
10: ममता बनर्जी की गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोग को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
2: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब ममता बनर्जी भी इससे अछूती नहीं रही। सवाल यह है कि सरकार इन हमलावरों को रोकने में असमर्थ क्यों है। आज तक ब्यूरो।
4: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
1: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है, तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है, एक झांकी में भगवान के नरसिंह के अवतार की झलक मिल रही है, तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
6: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आगे कांवड़ लेने,
11: पहले भी आ चुके
6: हो? हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
11: मांगा था जो पूरा हुआ है?
6: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
11: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी,
1: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है, बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: मॉनसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा?
1: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
2: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले, दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
3: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
2: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
4: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, चार दिन बचे हैं सदन में।
5: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है? कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
2: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
6: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
2: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी?
7: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है?
2: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता। रही बात अमित शाह के बोलने की, तो कौन सा मंत्री कब बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये विपक्ष नहीं तय करेगा।
8: कौन सा मंत्री कब बोलेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, ये सदन तय करता है चेयरमैन के अप्रूवल से, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सा मिनिस्टर किस विषय पे बोलना है ये सरकार तय करता है। वो ऑपोजिशन तय नहीं कर सकते कि कौन सा मंत्री कब बोलना चाहिए।
2: संसद का एक एक मिनट कीमती है, कानून बन सकता है, नीति पर बहस हो सकती है, किसी नागरिक की समस्या सदन तक पहुंच सकती है, किसी फैसले की कमियां सामने आ सकती हैं और किसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन ये कीमती समय नारेबाजी और प्रदर्शन में बीता जा रहा है।
9: ये ऑपोजिशन वाला ही खुद हाउस नहीं चलाते हैं, वो बाहर भंडारा लगा रहे हैं, तो गलत बात है ना। ऐसा कोई नहीं, देखो हाउस बिजनेस पास कर रहे, बिल पास कर रहे, राज्यसभा में तो अच्छा से चर्चा करके बिल पास कर रहे हैं, कांग्रेस और एक दो साथी लोग वॉकआउट कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बिल तो पास हो रहे हैं और चर्चा में लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और कई एमपी ने अपना मत रखा है। अच्छा बात है, कांग्रेस का नुकसान है।
2: बात सिर्फ इतनी नहीं है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से करीब 3 बार बात कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर चुके हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है।
9: राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलकर काम करें। लेकिन ऐसा चित्र दिखाते हैं बाहर में कि हम बिल्कुल पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे, तो इसका नुकसान किसका होगा?
2: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। अब सत्र अपने अंतिम दौर में है, अब सिर्फ 4 दिन की संसद की कार्यवाही और चलेगी। अब सवाल यही है कि क्या इन 4 दिनों में संसद बगैर हंगामे के चल पाएगी? आज तक ब्यूरो।
0: राहुल गांधी और पूरा विपक्ष सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह का जवाब नहीं मांग रहा, बल्कि वो परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, चढ़ावा चोरी, FCRA को लेकर भी हमलावर है। सवाल यह है कि क्या इन मुद्दों पर सरकार के साथ विपक्ष की चर्चा होगी या एक बार फिर सदन हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
10: परंपरा का अनुकूल नहीं है, यह ठीक नहीं है आपका व्यवहार। आप अगर भेज जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
2: संसद के दरवाजे तो खुलते हैं, मगर उसके बाद शुरू हो जाता है हंगामा, और हंगामा सिर्फ इस बात का नहीं कि अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखिए, पेपर लीक के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर किसी मुद्दे पर हंगामा बरपा है तो वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। विपक्ष ऐसे ही रोज प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी सांसद तख्तियों पर चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के स्लोगन लिख कर आते हैं, साथ में दान पात्र लाते हैं और फिर विपक्षी सांसद इस दान पात्र में दान डालकर सरकार का विरोध करते हैं।
11: दान पात्र में चोरी महापाप, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनके स्थान पर किस तरीके से उंगली उठ जाए लोग, और SIT के बाद SIT गठन। हमारा मानना तो इतना ही है कि लखनऊ वाली SIT ने छोटे खुलासा किए, अब जो बड़ी SIT बन रही है बड़े खुलासा करेंगे।
2: चढ़ावा चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर हंगामा बरपा है, इनमें परसीमन, महिला आरक्षण बिल और FCRA है। पहले बात परसीमन की, परसीमन के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा दक्षिण से है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना परसीमन बिल का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डीलिमिटेशन आबादी के आधार पर सीटें बांटेगा। दक्षिणी राज्य जनसंख्या कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। इसका मतलब है कि उत्तर के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेगी, दक्षिण को कम। दक्षिण राज्यों का कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो हमें सजा क्यों मिले। उधर कांग्रेस कह रही है कि 543 सांसद तो संभाले नहीं जाते, 850 सांसद कैसे संभालेंगे।
12: आप महिला आरक्षण करना चाहते हैं, 543 में से आप महिला आरक्षण कर दीजिए, एक तिहाई दे दीजिए। भाई 543 पे तो लोकसभा चलती नहीं, 850 करके क्या आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना बनाना चाहते हैं।
2: कांग्रेस सशंकित है कि परसीमन के नाम पर सरकार छल कर रही है।
7: डेमोक्रेसी में हम किसी के हाथ बन नहीं सकते हैं और उनके विचार को भी हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनके विचार दौड़ते रहता, उनके माइंड में वो किसी को पता नहीं चलता। बाकी के चीजें जो फिजिकली हम करते हैं, हमको पता चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन लंगड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन अंधा है, कौन काना है, बहरा है, मालूम होता है। लेकिन जो विचार है, जो क्या भागते हैं उनके मन में है, ये मालूम नहीं होता। जब वो एक्ट करेंगे तभी मालूम होगा। लेकिन हमारी स्थिति स्पष्ट है कि सभी दल के लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम चलेंगे।
2: डिलिमिटेशन को लेकर सरकार अपनी मंशा साफ कर रही है कि डिलिमिटेशन होगा तो सीटें बढ़ेंगी और जो सीटें बढ़ेंगी उन पर महिला उम्मीदवार चुनकर आएंगी। इस तरह से ये महिलाओं के लिए बेहतर है, लेकिन विपक्ष को इसमें सरकार का कोट नजर आता है।
13: डिलिमिटेशन पर हमारे विचार बड़े स्पष्ट। डिलिमिटेशन देश हित में नहीं, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। फिर से अगर दो हमारा तो सवाल ये है, 2023 में जो पारित हुआ था महिला आरक्षण विधेयक, वो रुका क्यों है, अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। उसे लागू करें कम से कम 2029 में, आज की तारीख से लागू कर दें, कोई आपत्ति नहीं होगी। 542 की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में, उसमें एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें, हम साथ देंगे। लेकिन महिला आरक्षण इनकी नीत है ना नियत है, ये उसकी आड़ में डिलिमिटेशन चाहिए।
2: विपक्ष पूछ रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू क्यों नहीं किया जा सकता, सरकार को समस्या क्या है।
14: विमेन रिजर्वेशन बिल आप लोग कम से कम थोड़ा कहा करिए सरकारी पक्ष को भी, कितनी बार पास होगा। जब हम नई इमारत में आए संसद के तो ये बिल पास हुआ, फिर जब पिछली बार डिलिमिटेशन के बहाने इस पर चर्चा हुई तो गजट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल मसला ही नहीं है। अब कल से लागू करो ना, कह दो विद इफेक्ट फ्रॉम एवरी इलेक्शन नाउ ऑनवर्ड्स। तो ये हकीकत है, इस हकीकत को जितना आप ढकोगे आपकी पॉलिटिक्स उतनी एक्सपोज होती है।
2: लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि डिलिमिटेशन बिल पास होना चाहिए।
15: 50% लेडीज को उनके सीटें मिलेंगी, पंजाब बड़ा सूबा है, एमएलए ज्यादा होंगे, हल्के गांव ज्यादा है, वो छोटे होंगे, कम से कम लोगों के दुख तकलीफ में जो 117 हल्के उससे बढ़कर और आदमी आ जाएंगे, एमपी और बनेंगे, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा सा बोझ घट जाएगा। बहुत आबादी अब हो गई है पंजाब की, सभी स्टेटों के ऐसे हालात बने पड़े हुए।
2: महिला आरक्षण बिल को लेकर भी संसद में गतिरोध चरम पर है, इसके साथ ही एफसीआरए को लेकर भी गहमा गहमी है। हालांकि सरकार की ओर से डिलिमिटेशन और एफसीआरए की कार्यसूची में अभी जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के किसी भी दावों के लिए मुस्तैद है। शरद पवार की पार्टी तो कह रही है कि वो एफसीआरए का विरोध करेंगे।
16: एफसीआरए चा जे बिल है ते आताच्या ज्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचा त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवारांचा विरोध आहे। म्हणून माझी विनम्रपणे विनंती आहे भारत सरकारला की घाई घाई करू नका, हे बिल जर त्यांची इच्छा असेल तर आम्ही विरोध करू, पण त्याच्यातून शेवटी बिल आली की त्याच्यावर चर्चा झाली पाहिजे, ही मागणी आहे आमची।
2: अब सवाल ये है कि क्या इन मुद्दों पर संसद चलेगी। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के अंतिम चरण में कांग्रेस ने 10 से 12 अगस्त के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा है। एनडीए के सभी सांसदों को सोमवार से दिल्ली में ही रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल वही है कि क्या संसद की कार्यवाही के बचे 4 दिन टकराव वाले होंगे या सदन शांति से चलेगा। आज तक ब्यूरो।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। रविवार को छात्रों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है। अब छात्रों के अनुसार सरकार ने जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने पर सहमति जताई है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी गतिरोध बना है। सरकार का कहना है कि सीजीएल परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत कराई गई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। उधर छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है और सोमवार को शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव की तैयारियां हैं। इसे देखते हुए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच में जेपीएससी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है।
17: हम सभी डेलीगेशन जो जा रहे हैं सरकार से अपना व्यक्तिगत मांग थोड़े मांग रहे हैं, झारखंड के संपूर्ण छात्रों का मांग मांग रहे हैं। तो सुझाव और मांग हम लोग का दोनों उनके पास है। ये सुझाव, ईमेल आईडी जारी करना, वेबसाइट जारी करना, ये खेला सरकार का हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सरकार का ये काम करने का तरीका है। हम सभी छात्र हैं, अभी भी यही हम मांग करते हैं कि हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। अब जब सरकार को पता है कि पेपर लीक हुआ है, साक्ष्य उसके पास है, तो सरकार सबसे पहले एग्जाम को रद्द करे, बाद में जब सिलेक्टेड कैंडिडेट कोर्ट जाएंगे तो सरकार वहाँ डिफीट करे कि जी बिल्कुल एग्जाम रद्द हुई थी, उस टाइम हम लोगों से मिस्टेक हुई, साक्ष्य जो सो भरपूर मात्रा में नहीं दे सके, अभी हमारे पास साक्ष्य, एग्जाम को रद्द होनी चाहिए।
18: पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है, अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों, जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं, उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नजीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें।
19: रांची में एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी ओर छात्रों को मनाने की कोशिश हो रही है। छात्रों को मनाने के लिए आज तीसरे दौर की बातचीत भी हुई। अब तक 4 ग्रुप सामने आए हैं, देवेंद्र महतो गुट और अभ्यर्थी न्याय मंच, ये दोनों गुटों ने धरना की शुरुआत की थी। इसके बाद इसमें JKLM नाम से एक छात्र गुट जुड़ा और जो सबसे नया संगठन इसमें शामिल हुआ है वो है AISA, आईसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अलावा पॉलिटिकल संगठनों के स्टूडेंट विंग्स हैं जो आंदोलन को खुलकर या फिर बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है ये भी समझिए। इतने ग्रुप हैं तो हर ग्रुप से अलग अलग बातचीत की जा रही है। 4 मंत्री सरकार की ओर से बातचीत में शामिल हैं। ये बातचीत का 3रा राउंड था। आंदोलनकारियों की मांग है कि आश्वासन नहीं समाधान चाहिए। इसी समाधान के लिए आज छात्र नए पोस्टर के साथ नजर आए।
20: एसपीसी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितताओं की कहानियां कितनी हैं, उसको भी छात्रों ने अपने तरीके से कहा है। बहुत लोग इन बारे में नहीं जानते, मसलन सीआईडी जो जांच कर रही है उसको लेकर के छात्रों ने कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल ये कि कार्यवाही अगर हुई तो सीजीएल में चुप्पी क्यों है, क्यों अभय तिवारी, उसकी पत्नी, उसके भाई तीनों चयनित हुए तो जेएसएससी कार्यालय में सीजीएल आयोजित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कोई छापेमारी क्यों नहीं, ये सीआईडी जांच है, उसे छात्र सवाल पूछ रहे हैं। अभय तिवारी की पत्नी एवं भाई से अब तक कोई पूछताछ कार्यवाही क्यों नहीं हुई है, अभय तिवारी पत्नी उसके भाई के सीजीएल में चयन के संबंध में सीआईडी ने अब तक क्या जांच की, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और जेएसएससी के अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई। कॉमन सवाल यह है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग जांच क्यों, जेएसएसपी में गिरफ्तारी छापेमारी लेकिन सीजीएल में न छापेमारी न पूछताछ न कार्यवाही, ये क्यों नहीं हो रही है। ये कई सारे इस जांच को लेकर के दरअसल इसीलिए वो भरोसे की कमी है कि छात्र कहते हैं कि अब सीबीआई की जांच हो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द, फिर दोषों पर कार्यवाही। उन्होंने लिखा है कई छात्र सामूहिक, उन्होंने तस्वीरें भी लगाई कि नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर हटाने के पुख्ता सबूत मिले, मास्टरमाइंड अभय तिवारी परीक्षा में दूसरा रैंक आता है, सीजीएल चयनित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई, नेपाल कांड में सीआईडी की टीम ने 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि की।
19: छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए अभिनेता पीयूष मिश्रा भी आज आंदोलन में पहुंचे। 16 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला है। अलबत्ता सीएम हेमंत सोरेन छात्रों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में ना आएं।
1: राजनीतिक दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है जो पूरा होगा।
19: इंतजार है उस पल का जब छात्र आंदोलन का सरकार समाधान निकालेगी। रांची से सत्यजीत और आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला किया गया। ममता बनर्जी पर पत्थर और चप्पल फेंकी गई। इस हमले के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी ने दो टूका कि ऐसे हमलों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
21: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना के बिजपुर में थी। अचानक भीड़ का एक जत्था उनके काफिले पर टूट पड़ा। किसी ने पत्थर फेंके, किसी ने कीचड़ फेंका और किसी ने चप्पल फेंकी। थोड़ी दूर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है।
22: मेरे को गाड़ी में बड़े बड़े पत्थर मारा गया, बाहर से एंट्री सोशल पुलिस का सामने में इतना गाड़ी को अटक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा।
23: पुलिस क्या कर रहे हैं, इतना
22: पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है।
21: टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया, उन्होंने ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया।
24: बीजेपी पीपल्स वर थ्रोइंग बिग स्टोन्स टू द इनटू द कार इटसेल्फ एंड कंटीन्यूअसली दी स्टोन्स वर थ्रोन।
21: टीएमसी के सांसद कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष गवाह हैं जिस समय हमला हुआ। वो बताती हैं कि हमला करने वाले सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि पुलिस वालों ने भी हमला किया।
25: पुलिस और बीजेपी की गूंज वो इकट्ठा होके इतने सारे ईंट फेंका, ब्रिक्स फेंका, पत्थर फेंका, सोचा नहीं जाता। हम चार थे, एक छोटी सी लड़की और दीदी कोल्लंद और हम। ये 163 BNS भी तोड़े नहीं हम, अगर उधर नहीं है 163, उधर 144 जो हम बोलते थे वो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं हम तोड़े नहीं। एक गाड़ी जा रहा था, दूसरा कोई गाड़ी भी नहीं था, फिर भी ये हालत।
21: लेकिन बीजेपी इस हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। बंगाल सरकार के मंत्री कह रही हैं कि इस तरह का हमला करना बीजेपी की संस्कृति नहीं है।
26: मारना, पकड़ना, कादा फेंकना, काली फेंकना, जूता का चप्पल फेंकना, ये हमारा संस्कृति नहीं हो सकता है। ये भाजपा का संस्कृति नहीं है। हो सकता है ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है, बहुत दोष किया है, लेकिन हम तो ये समर्थन कभी नहीं कर सकते। वो भी एक महिला और वो भी इतना उम्र के महिला।
21: बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि टीएमसी बेवजह बीजेपी पर आरोप लगा रही है क्योंकि इस हमले में दूर दूर तक बीजेपी का कोई रोल नहीं है।
3: ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कीचड़ फेंकना, पत्थर फेंकना, चप्पल फेंकने का साथ दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क नहीं है। और तृणमूल हम लोगों को सिखाने मत आए ये क्या हो रहा है। ये तृणमूल और तृणमूल का लड़ाई है, जनता और तृणमूल का लड़ाई है।
21: जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है तब से टीएमसी के नेताओं पर
0: सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था के अद्भुत रंग दिख रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक से बढ़कर एक अनोखे कांवड़ देखने को मिल रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर आस्था की रौनक बिखरी है और बड़ों के साथ साथ इस बार कम उम्र के कांवड़िए भी जोश दिखा रहे हैं।
2: भक्ति का उत्साह, आस्था का समंदर, भोलेनाथ के जयकारे और कांधे पर कांवड़। सावन के पावन महीने में पूरे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत नजारा दिख रहा है। कांवड़ में गंगा जल भरकर भोले के भक्त शिवालयों की तरफ बढ़ चुके हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा मार्ग पर इन दिनों एक से बढ़कर एक कांवड़ झांकियां दिख रही हैं। सावन के महीने की शुरुआत में तो इस मार्ग पर पैदल चलने वाले कांवड़ियों की भरमार दिख रही थी, लेकिन अब पैदल कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ की विशाल झांकियां सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। हर झांकी अपने आप में अनूठी है और भगवान शिव में गहरी आस्था की एक नई कहानी कह रही है। कहीं भगवान शिव को काल भैरव के रूप में दिखाया गया है तो कहीं बजरंग बली को शिव भक्ति में लीन दिखाया गया है। एक कांवड़ झांकी में अयोध्या के श्री राम मंदिर का स्वरूप झलक रहा है तो एक झांकी में भगवान शिव के आदि योगी स्वरूप की आभा दिख रही है। एक झांकी में भगवान के नृसिंह के अवतार की झलक मिल रही है तो एक झांकी में भगवान शिव और माँ काली का रूप सुशोभित है। इस कांवड़ में दशानन ने महादेव को अपने सिर पर उठा रखा है।
4: भोले बाबा की इच्छा पे आए थे, मन किया था आ गए कांवड़ लेने।
5: पहले भी आ चुके?
4: हाँ, तीसरा साल है मेरे, 18वीं कांवड़ है हमारी।
5: कुछ मांगा था जो पूरा हुआ है?
4: सब दे रखा भोले बाबा ने, मांगेंगे क्या।
5: यही है, घर वाले सही रहे और अपने जो भाई थे वो खुश रहे। पहले भी कभी ले गए? हाँ पहले भी, पूरी हुई।
2: फरीदाबाद के इन दो भाइयों ने भी ऐसी ही आस्था की मिसाल पेश की है। एक ने कांवड़ में 110 लीटर जल लिया है तो दूसरे ने 81 लीटर। दोनों ने 16 जून को अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की थी और पिछले करीब 50 दिनों से ये दोनों निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ के इन भक्तों में उम्र का कोई दायरा नहीं है। बड़ों के साथ साथ इस कांवड़ यात्रा में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 5 बच्चों की इस टोली में सबसे छोटी बच्ची 9 साल की है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है और शिव भक्तों ने अपनी इस कांवड़ साधना से जता दिया है कि इस पावन महीने में उनके लिए भोलेनाथ की आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। आज तक ब्यूरो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय पदक विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ चाय पर चर्चा की।

0: कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से मिले मोदी, चैंपियन से सुनी संघर्ष की कहानी, बढ़ाया हौसला। ये मुलाकात खास थी, ये मुलाकात थी उन चेहरों के साथ जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद देश का मान बढ़ाया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और चैंपियंस के साथ चाय पर खूब चर्चा हुई।
1: चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की
0: जय। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाली गंभीर बातें भी हुई तो हल्के फुल्के लम्हे भी दिखाई दिए। खिलाड़ी पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए काफी उत्साहित थे। इस बार ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों ने 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। अगले कॉमनवेल्थ गेम्स उस शहर में होने हैं जो अरसे तक पीएम नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रहा है। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान अहमदाबाद में होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान एक बार फिर बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो
2: रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज।

मानसून सत्र के आखिरी दिन चार अहम बिल, महिला आरक्षण, परिसीमन, एफसीआरए को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। पायलटगंज से राहुल ने फिर लगाया सियासी निशाना, सोमवार को संसद में अहम बिल की अटकलों के बीच बोले, गृहमंत्री को देना होगा जवाब, बीजेपी का पलटवार। झारखंड में सरकार और छात्रों की तीसरे दौर की वार्ता में भी नहीं निकला पूरा हल, आज विधानसभा मार्च का ऐलान, आंदोलन के बीच जेपीएससी के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, सोरेन बोले दोषियों को देंगे सजा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो, कहा जो खेलेगा वो खिलेगा। और ईडी डायरेक्टर का एक साल बढ़ा कार्यकाल, 13 अगस्त 2027 तक राहुल नवीन संभालेंगे प्रवर्तन निदेशालय की कमान। मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन में चर्चा कम और हंगामा ज्यादा हुआ है। मॉनसून सत्र में अब सिर्फ चार दिन बचे हैं, लेकिन सवाल यह है क्या जब संसद के दरवाजे खुलेंगे तो चर्चा होगी या एक बार फिर से हंगामा ही होगा।

0: सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है।
1: पीएम ने कहा जरूर था कि सरकार बहुमत से चलती है और देश सर्वसम्मति से, मगर देश चलाने वाली संसद खुद नहीं चल पा रही है। नारेबाजी, पोस्टरबाजी, विरोध प्रदर्शन और हंगामा, तारीखें बदलती गईं लेकिन हालात नहीं बदले। दिन गुजरे मगर विवाद नहीं, जस का तस वो अपनी जगह यथावत रहा। संसद के मानसून सत्र के 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति का पुल नहीं बन रहा, और जब संसद में संवाद रुकता है तो सिर्फ सदन की कार्यवाही नहीं रुकती, देश की रफ्तार में भी जैसे एक रोड़ा खड़ा होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का दरवाजा मानसून सत्र में कल फिर खुलेगा, लेकिन संसद चलेगी या नहीं इस पर सस्पेंस है। यह सस्पेंस इसलिए है क्योंकि विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जिन मांगों को लेकर है, उनमें पहली मांग तो यही है कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, छात्रों के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, उस पर अमित शाह जवाब दें।
2: द सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री डज नॉट हैव द करेज टू कम एंड सिट हियर।
1: विपक्ष कहता है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दें कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने का आदेश किसने दिया।
3: क्या आपको लगता है सदन में आएंगे गृहमंत्री? आप लोग बात कर रहे हैं, 4 दिन बचे हैं सदन में।
4: लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए।
1: विपक्ष सवाल करता है और जवाब में सरकार कहती है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा कर रहा है, अमित शाह लगातार अपना काम कर रहे हैं।
2: ये लोग हंगामा करके गायब हो जाते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी सुबह सुबह पार्लियामेंट में आते हैं और देर रात को ही वापस आते हैं, दिन भर वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं। ये नारा लगाने का जो तरीका है वो गलत है। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यह चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यह जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो?
1: विपक्ष कहता है कि अगर पीएम और अमित शाह संसद में नहीं आएंगे तो चर्चा कैसे होगी।
5: मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना, अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते, इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुख्य है, बहरे है, क्या है?
1: सरकार कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है, अगर काम नहीं कर रही होती तो संसद में वंदे मातरम से जुड़े कानून, एंटी पेपर लीक संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 नहीं पास होता।